0: के ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: Looking for even more of the audio you love? Upgrade to TuneIn Premium to remove ads, like this one, and score more of the content you love. That's more curated news.
3: If one party is saying we will never raise taxes, even on millionaires and billionaires.
2: More top sports.
4: And he's gonna go! There's the tying goal!
2: And everything in between.
5: The game is over!
2: Upgrade now for the premium listening experience.
6: चंद्रमा की वजह से हर समय तनाव रहता है क्या? चंद्रमा की वजह से डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं? कौन सी हैं चंद्रमा की समस्याएं और क्या है उनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: TIT भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
9: ओडिशा के पुरी धाम में आस्था का सैलाब। रथ यात्रा से पहले आज भगवान जगन्नाथ भक्तों को देंगे नवयौवन दर्शन। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। सोलह जुलाई को शुरू होगी रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ के साथ बलभद्र और सुभद्रा के रथ तैयार। पुरी में उत्सव का माहौल, सुरक्षा चाक चौबंद। आज दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2026। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे उद्घाटन। आज ISS के लिए रवाना होंगे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन। कजाकिस्तान के बैकनूर कॉस्मोड्रोम से दो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भरेंगे उड़ान। भारत इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज बर्मिंघम में दोपहर 3:30 बजे से मैच। रोहित विराट बुमराह के आने से टीम इंडिया के हौसले बुलंद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।
10: गुरु कहा गया और गुरु का काम जोड़ना। क्या काम है? सुग्रीव को राम जी से किसने मिलवाया? विभीषण को राम जी से किसने मिलवाया? बिछड़ी हुई माता जानकी जी को राम जी से किसने मिलवाया? बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी को, हनुमान जी ने। इन सबको हनुमान जी ने ही मिलवाया। हम इतना ही कह सकते, यदि आप भी राम जी से बिछड़ गए हो तो आपको भी हनुमान जी मिलवाए। ये पक्का है, ये पक्का है। और हनुमान जी जिसकी गारंटी ले ले, राम जी को उसका डाटा चेक नहीं करते। हाँ, जिसकी गारंटी हनुमान जी दे दें तो ये आदमी ठीक है, पर क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं होता। हाँ, ये पक्का है। विभीषण की गारंटी हनुमान जी ने ली, वेरिफिकेशन नहीं हुआ। वरना वेरिफिकेशन होता तो पता ये चलता कि जो शत्रु है उसका भाई है। बोले जो दुश्मन है उसका भाई है, और दुश्मन का भाई दुश्मन के ही समान है। इस पे भरोसा करने लायक नहीं। पर हनुमान जी बोले नहीं नहीं, हमारी गारंटी। राम जी बोले हनुमान जी की गारंटी है, बस बस छोड़ो छोड़ो। और हमें लगता कि हनुमान जी ने सुग्रीव की गारंटी दी, पर बुरा ना मानना, सुग्रीव से बेहतर बाली था। आप ये सुन के बड़ा चौंकेंगे, सुग्रीव से बेहतर बाली था। ये बात बहुत अप्रमाणित नहीं, बहुत प्रमाणित हम आपको कह पा रहे हैं। सुग्रीव से जब राम जी मिले तो सुग्रीव क्या कहता? सुग्रीव कहता कि मंत्रिन सहित सहित एक बारा, एक बार हम मंत्रियों के सहित यहां बैठे थे, कोई नारी होती हुई चली जा रही थी, ऊपर से उसने कुछ आभूषण नीचे फेंके हैं, यदि आप कहो तो मैं दिखाऊं। भगवान बोले हां दिखाओ। और वो आभूषण माता जानकी जी के। तो राम जी बोले तुमने किया क्या? बोले हमने कुछ किया तो नहीं, हम तो विचार कर रहे थे कि ये स्त्री को ले जा रहा है। तो लक्ष्मण जी बोले तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? बोले हम क्यों बोले, उनका उनका मामला, क्या मसला, काय को लफड़े में फंसे।
11: ऐसे बहुत लोग होते हैं, इसको सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लोग कहते हैं।
10: ये ना नंबर एक के स्वार्थी है। आजकल लोगों के अंदर यही सबसे बड़ी दिक्कत हो गई, क्यों लफड़ों में फंसे। अरे भाई, मानवता भी तो कुछ होती है। आजकल आदमी कोई किसी का साथ नहीं देता। हम बैठे थे, भोजन पा रहे थे, तो हमारी माँ, मनीला वाली माँ, फिलीपींस वाली माँ, कह रही थी, रोमा माँ, कि आजकल उसको कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ। हम प्रैक्टिकल, क्यों लफड़ों में फंसे।
11: अरे धत तेरे की ठटरी बराए ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ।
10: तुम सत्य को सत्य ना बोल पाओ तो तुमसे बेहतर तो रामचरितमानस का जटायु है। सुग्रीव से बेहतर जटायु था कि रावण ले जा रहा था, तब उसने रोती है, खबरदार रावण, खबरदार, किसी अबला स्त्री को, अकेली स्त्री को ले जा रहा, सावधान। मैं जटायु जरूर हूं पर ले जाने नहीं दूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा। जब तक सच में जटायु जमीन पर नहीं गिर गया तब तक लड़ता रहा रावण से। तो जटायु बेहतर है सुग्रीव से। बुरा ना मानना, वो व्यक्ति मरा हुआ है जो धर्म के लिए नहीं बोलता, भले ही वो जिंदा, मृतक मृतक सब के समान है। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि आप कई बार बहुत कड़वी बातें बोल जाते हैं, यदि ना बोलेंगे तो शास्त्र हमको जीने नहीं देगा। साधु का धर्म है न्याय संगत बात करना, सत्य को सत्य बोलना, ये साधु का धर्म है। और उनसे तो बेहतर है जो नहीं बोलते। और ऐसे लोग जरूर कान खोल करके बात को सुने कि हम क्यों लफड़ों में पड़े, हम क्यों बोले। कई बार कुछ हो जाता, घटना हो जाती, भैया हमने नहीं देखा, उसने पूरा देखा, हमने कौन कोर्ट में जाए, कौन गवाही दे, उसकी दो गवाही दे देने से इसने कांड किया है, कम से कम उसको सजा तो मिल जाएगी, अपराधी को सजा तो मिलेगी। पर आज ये सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि कोई किसी के खिलाफ बोलना नहीं चाहता, इसलिए तो अपराध बढ़ गए। देखते जा रहे हैं, अपराध होते जा रहे हैं, आदमी चुप है। पुराना मानना ये धर्म नहीं है, नैतिकता नहीं है, मानवता नहीं है। मानवता ये है, यदि तुम्हारे कहने से सत्य उजागर हो सकता है तो कह देना चाहिए। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया सुग्रीव के ऊपर, तो बाली से बेहतर, सुग्रीव से बेहतर बाली। लेकिन सुग्रीव को राम जी मिले, बाली को ना मिले, बाली को तो मारा। कारण सिर्फ एक था, हनुमान जी। हनुमान जी कारण थे क्योंकि सुग्रीव का पक्ष लिया। तो सुग्रीव ने तो कुछ नहीं कहा, माता जानकी जी जब जा रही थी कुछ नहीं कहा, सुग्रीव तो बोले ही नहीं। और बाली यदि हमसे, हमने आपको प्रारंभ में कहा कि हम बाली बेहतर मानते, आप कहेंगे कि आप बड़ी अजीब कथा सुना रहे हैं। नहीं, बाली बेहतर, बाली ये हमने जो संतों से सुना वो बात कह रहे, हम कोई अपनी मन की बात नहीं कह रहे, संतों से जो हमने सुना, महापुरुषों से जो सुना उसकी बात कह रहे। बाली ने भी भगवान से कहा,

बाली को मारा, राम जी का बाण बाली के हृदय में लगा, छाती में, सीने में, तो गिर पड़ा। तो भगवान पहुंच गए। जैसे ही भगवान सामने गए तो बाली कहता, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं आपका बैरी कैसे हो गया और सुग्रीव कैसे प्रिय हो गया? आप तो समदर्शी, सबको समान देखते हो, पर मैं आपका दुश्मन कैसे हुआ? तो भगवान ने बहुत दलीलें दी, तर्क दिए, पर बाली पहली बार भगवान के तर्क खारिज किए बाली, और इतने खतरनाक किए कि राम जी भी लगा कि जीतना मुश्किल है। हाँ, भगवान ने जो तर्क दिए, जरा वो सुनना। भगवान ने तर्क क्या दिया? भगवान ने कहा, पहली बात तो ये है, अनुज बधू भगनी सुतना

चार बेटी के समान स्त्रियां होती हैं। बाली बोला कौन कौन? राम जी बोले सुनो, अनुज वधु छोटे भाई की पत्नी, अनुज वधु भगनी यानी बहन, सुत नारी यानी बेटा की पत्नी और बेटी, ये चार बेटियों के समान होती हैं। इनके ऊपर कुदृष्टि डालने वाला बेटी के ऊपर कुदृष्टि डालने जैसा पाप पाता है। और तुमने अपने भाई की पत्नी का को अपने पास रख लिया, रोमा को, अपनी भाई की पत्नी को अपने पास रख लिया, ये तुमने अपराध किया कि नहीं किया? ऐसी राम जी कह ही रहे थे कि वो धीरे से बोला, बाली बेट रुको रुको रुको रुको, पहली बात तो अनुज वधु जो है, हमने अपनी भाई की पत्नी को रखा, हमने कैसे रखा ये हमें पता। दूसरी बात, ये जो कायदे हैं ना, आपके में चलते हैं, हमारे में नहीं चलते। राम जी बोले मतलब? मुस्कुरा करके बाली कहता है लेटा लेटा कि आप नर हो हम मानव, और हर समाज का नियम अलग अलग होता है। कहीं पर ऐसा नियम होता है, हिमाचल में ऐसा नियम है, दो भाइयों की एक पत्नी हो सकती है। हाँ, हिमाचल में कई समाज में ऐसा नियम है, दो भाइयों की एक पत्नी हो सकती है। और महाभारत में भी ये नियम था, पांच पांडवों की एक पत्नी थी, पांच पति हो सकते। और राजाओं का ऐसा नियम था कि राज सत्ता में अनेक पत्नियां बहु पत्नियां हो सकती। दशरथ जी के ही तीन रानियां थी। तो समाज की बात है अपने अपने। अच्छा, उस नियम में फिर कानून भी कुछ नहीं बोलता, अपने अपने समाज का नियम होता है। तो राम जी से बोले सुनो, अपने अपने समाज की बात है, ये हमारे समाज में ऐसा चलता है। राम जी बोले ठीक है, मान लिया मैं, पहली बार लगा के हमारी दलील विफल हो गई। तो राम जी ने दूसरी दलील दी, मूढ़ तो ही ए मूर्ख। बाली बोला हां बोलो।

0: अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, ये भी गलती की। बाली से भगवान दूसरी बात करें, दूसरी गलती की, क्या अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। तो बाली बोला, हमारी पत्नी ने क्या बोला? बोले वाह, जब तुमको सुग्रीव ललकार रहा था तो तुम्हारी पत्नी कह रही थी ना तारा, नाथ बाहर मत जाओ, ये सुग्रीव नहीं ललकार रहा, अंगद अभी बता रहा था कि कोई वनवासी से इसकी दोस्ती हो गई है, कोई राम है उनसे दोस्ती हो गई है, तो ये अपने बल पे नहीं ललकार रहा, राम के बल पर ललकार रहा, मत जाओ। बाली बोला, पहले एक बात बताओ, ये हमारी पति पत्नी की बातें आपने सुनी कैसे? ये बेडरूम की बात थी, आपने कैसे सुनी, आपको कैसे पता? राम जी बोले, तुम्हें पता है हम कौन है? बाली बोले, बताओ कौन है? बोले, हम अखंड ब्रह्मांड नायक हैं, कण कण में व्याप्त हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, बिन पद चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन बाणी भक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहे ग्राम बिनु वास असेखा, अस सब भात अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं वर्णी। है रामचरितमानस, इसमें निराकार ब्रह्म के बारे में कहा कि बिन पद चले सुने बिन काना, बिना पैरों के चलता बिना कानों के सुनता, तो हम वहां थे और हमने सुन लिया।
1: बाली बोला, थैंक यू। भगवान बोले, मतलब?
0: बोले, कम से कम आपने एक्सेप्ट तो किया कि आप भगवान हो, अब हमको संतुष्टि हो गई कि भला आपका। बाली बोला, प्रभु आपने चलो सुन मान लिया हमने, तो आपने ये नहीं सुना कि हमने कुछ कहा था?
1: भगवान बोले, क्या कहा था? बोले बा,
0: आपने सुना तो आपने वो नहीं सुना। बोले क्या?
1: कहे बाली सुनो भीर प्रिय समदर्शी भगवान,
0: जब हमारी पत्नी ने कहा कि मत जाओ बाहर, वो वनवासी राम जी हैं भगवान, वो सुग्रीव की तरफ से लड़ने के लिए आए हो, तुम मारे जाओगे, तो आप कह रहे कि पत्नी की बात क्यों नहीं मानी? तो हमने ये भी तो पत्नी को कहा था, यदि भगवान राम आए हैं तो वो समदर्शी हैं, समानता से देखेंगे, ना उनको बाली प्रिय होगा ना सुग्रीव प्रिय होगा, दोनों समान होंगे। इसलिए कारण कवन नाथ मोई मारा, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, इसलिए तो हम बाहर आए कि आप समदर्शी होगे, लेकिन बाहर आके पता लगा आपने बाण मार दिया, आप समदर्शी नहीं।
1: भगवान, अब भगवान को लगा ये भी दलील खारिज,
0: ये भी दलील गई। तो भगवान बोले, रुको,
1: हमारे ऊपर बहुत आरोप लगा लिए, अब हमारी भी सुनो।
0: क्या? भगवान बोले कि तुमने जो दूसरी प्रार्थना की थी हमने वो सुनी। बाली बोला, हमने दूसरी प्रार्थना कौन सी की? बोले वाह, आपने अपनी पत्नी को एक बात बोली थी ना। बोले क्या? जो कदापि मोहि मारिहि, यदि वो हमको मार भी दे, जो कदापि मोहि मारी है तो मैं हो हूं सनाथ, मैं अनाथ हूं, यदि राम जी मुझे मार दें तो हे पत्नी तुम मुझे समझना, मैं सनाथ हो गया, अनाथ नहीं रहा, सनाथ हो गया। भगवान बोले, तुमने ये जो प्रार्थना की उसी प्रार्थना के लिए हमने बाण मारा।
1: वाली बोला, गजब न्याय है आपका,
0: पहली वाली सुनी नहीं, लास्ट वाली मान ली। वाह प्रभु वाह वाह, मतलब हमने मारने वाली बात कही कि जो कदापि मोहि मारिहि तो मैं हूं सनाथ, ये सुन लिया आपने, और ऊपर वाली सुनी नहीं कि समदर्शी रघुनाथ, ये सुनी नहीं, मारने वाली जल्दी सुन ली। वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह, अब हम समझ गए, हम समझ गए, मैं बेरी
1: सुग्रीव प्रिया,
0: हम समझ गए आपको, मैं बेरी हूं सुग्रीव प्रिय। भगवान बोले, वाली ऐसा है, ज्यादा दुखी हो तो मेरे पास एक उपाय है। बोले क्या? हम अभी तीर बाहर निकाल के फिर से अमर होने का वरदान दे देते, लो ठीक है, अब ठीक है। बोले अब रहने दो,
1: अब नहीं हमें जीना है।
0: क्यों? बोले जिस मौत के लिए बड़े बड़े महात्मा तप करते हैं वो हमको ऐसे ही मिल गई ऑटोमेटिक, तो काय को बे बिजुली में अब जो है ये मौका गवाएं। बात भी सही है, रामचरितमानस में ऐसा लिखा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही, अंत समय राम नहीं कहे आता, जन्म जन्म अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जतन कराते पर अंत में राम कहां कही आता है। और बोले हमारे तो सामने, हम लोग जब कीर्तन गाते तो भगवान से क्या प्रार्थना करते?

0: लेकर मेरे प्राण तन से निकले हैं, इधर नाम क्या लेना, तुम ही सामने खड़े हो। जिस नाम को लेकर प्राण निकलने की प्रार्थना स्तुति बड़े बड़े महात्मा करते हैं, तब जाकर के उनको भी ये अवसर सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, और हमको ऑटोमेटिक मिल गया है, तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक काम जरूर करो आप।
1: भगवान बोले बताओ। बोले एक नहीं दो।
0: भगवान बोले दो बताओ।
1: पहली बार हारे हैं भगवान,
0: दो बताओ। बाली कहता प्रभु पहला वरदान दो कि हमें भक्ति मिले आपके।
1: वाह
0: क्या बढ़िया वरदान। अच्छा कुछ और मांगते तो भगवान और कुछ जल्दी दे देते, भक्ति थोड़ा देरी से देते।
1: पूछो क्यों,
0: पूछो क्यों? क्योंकि कुछ और मांगने में व्यक्ति फंसता और भक्ति देने में भगवान फंसते। ये घाटा है। तो भगवान इसलिए किसी को कुछ और मांगे, कोई कि भाई कुछ और मांगो, तो वो जल्दी दे देते हैं। भाई संतति मानो, मांगो संपत्ति, मांगो बहुत बढ़िया है, मांगो मांगो बेटा मांगो। क्या चाहिए? संपत्ति चाहिए, संतति चाहिए, घरवाली चाहिए, वाइफ, हाँ लो लो लो लो लो। क्या चाहिए? हस्बैंड, बहुत बढ़िया, मांगो मांगो मांगो, लो लो लो। पद चाहिए, कद चाहिए। पर कोई कह दे कि आप भक्ति चाहिए, मतलब आप चाहिए, वो थोड़ा खतरा होता है। क्योंकि अगर भक्त कोई भगवान का सेवक संपत्ति मांगता है तो उसको नाचना पड़ता, लेकिन कोई भक्ति मांगता है तो भगवान को नाचना पड़ता है, भगवान को नाचना पड़ता। और सच भी यही है, जब आप भागवत पढ़ो तो भागवत में ऐसा वर्णन आता है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाई निरंतर ध्यावे, ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहे अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो भगवान को नाचना पड़ता है यदि कोई भक्ति मांगे तो। उस बाली ने पहला वरदान क्या मांगा? भक्ति दो और मुक्ति तो हमें हो ही जानी। किसी ने कान में बाली के कहा कि मुक्ति मांग। बोले अब इनके मरने से ही मुक्ति ना मिलेगी तो कहां मिलेगी। बोले वो नहीं मांगे, भक्ति दो। तो पहला वरदान भक्ति दो।
1: भगवान बोले भक्ति दी।
0: दूसरा बोले हमारी जो संतति है।
1: बोले कौन? बोले बेटा इसको अपनी सेवा में लगा।
0: ये वरदान बाली का गजब का था। पूरी दुनिया में ऐसा कोई वरदान किसी ने नहीं मांगा हो जो बाली ने मांगा। पहला तो भक्ति दो और दूसरा हमारी संतति को अपनी सेवा में लगा लो। प्रायः लोग क्या कहते हैं, हम दान पुण्य कर रहे हैं, बेटा तू बिजनेस कर, तू धंधा कर, तू इन लफड़ों में मत पड़, बाबा जी के चक्कर में मत पड़, बागेश्वर वालों के चक्कर में मत पड़, हम इनसे निपट लेंगे, हम बात करते हैं, हम तुम्हारे लिए कुछ करते, पूजा पाठ कराते हैं, तू धंधा कर धंधा कर। लेकिन पहला बाली चतुर आदमी है जो कहता हे प्रभु, हे नाथ, आपने हमें सनाथ कर ही दिया, अब हमारे बालक अंगद को अपनी सेवा में लगा लो, अपनी चरणों की सेवा में लगाओ। ये अद्भुत है, कोई अपनी संतति को भगवान की भक्ति में लगाने का वरदान मांगे, समझना वो ऊंचे खानदान का आदमी है। ये फायदे का सौदा है। तो इस दृष्टि से यदि बाली के इस वृतांत को सुना जाए तो सुग्रीव से बेहतर बाली है कि नहीं है? है। लेकिन भगवान ने साथ किसका दिया? क्यों? एक कारण है, सुग्रीव और विभीषण के जीवन में यदि राम जी का प्रभाव आया, राम जी आए, उसका एकमात्र कारण हनुमान जी है। हम आपसे कहना यह चाह रहे कि जब सुग्रीव के हनुमान जी के कारण सुग्रीव को हनुमान राम जी मिल सकते,
1: तो हनुमान जी के कारण तुमको भी राम जी प्राप्त हो सकते।

0: चंद्रमा की वजह से हर समय तनाव रहता है? क्या चंद्रमा की वजह से डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं? कौन सी हैं चंद्रमा की समस्याएं और क्या है उनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: All across America, Spectrum Business is committed to delivering fast, reliable internet for $50 a month. That's why in Rochester, we're at this local coding class where fast internet keeps ideas flowing for less. And in Austin, our reliable fiber-powered internet lets this gym stream classes all day.
2: One more, let's go.
1: Without paying more. Get Spectrum Business internet for $50 a month when you sign up online at spectrum.com/50. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Jazz fans, rejoice. Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
1: क्या चंद्रमा की वजह से हर समय तनाव रहता है? क्या चंद्रमा की वजह से डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं? कौन सी हैं चंद्रमा की समस्याएं और क्या है उनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
4: तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर, खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है, खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है, ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
11: ओडिशा के पुरी धाम में आस्था का सैलाब, रथ यात्रा से पहले आज भगवान जगन्नाथ भक्तों को देंगे नव यौवन दर्शन, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। जुलाई को शुरू होगी रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ के साथ बलभद्र और सुभद्रा के रथ तैयार, पुरी में उत्सव का माहौल, सुरक्षा चाक चौबंद। आज दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2026, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे उद्घाटन। आज ISS के लिए रवाना होंगे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन, कजाकिस्तान के बैकनूर कॉस्मोड्रोम से दो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भरेंगे उड़ान। भारत इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज बर्मिंघम में दोपहर 3:30 बजे से मैच। रोहित विराट बुमराह के आने से टीम इंडिया के हौसले बुलंद।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
11: भगवान जगन्नाथ के करोड़ों भक्तों का खत्म होने वाला इंतजार, एक दिन बाद 16 जुलाई को शुरू होगी रथ यात्रा। रथ यात्रा से पहले आज भगवान जगन्नाथ भक्तों को देंगे नवयौवन दर्शन, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। मान्यता के अनुसार स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं और 15 दिनों तक दर्शन नहीं देते। इसके बाद जो अस्वस्थ होकर पहली बार दर्शन देते हैं तो उसे नवयौवन दर्शन कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां पूरी, वो रथ भी है तैयार जिसमें सवार होकर महाप्रभु जगन्नाथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे। भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा का रथ भी सजकर तैयार, यात्रा मार्ग की भी की जा रही है शानदार सजावट। पुरी में भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा उत्सव को सुरक्षित बनाने में जुटा प्रशासन, आपात स्थिति से निपटने के लिए समुद्र में मॉक ड्रिल करते दिखे लाइफगार्ड। लाइफगार्ड्स ने समुद्र के किनारे बीच पर किया रेस्क्यू का अभ्यास, आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी रेलवे स्टेशन का हुआ पुनर्विकास, प्रधानमंत्री 17 जुलाई को अत्याधुनिक सुविधाओं वाले मंगलागिरी रेलवे स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। अमृत भारत रेलवे स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत किया गया है रेलवे स्टेशन का विकास, प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे लोकार्पण। दिल्ली के लोगों को बिजली के बिल में नहीं लगा सरचार्ज, नहीं बढ़ा पावर परचेस एडजस्टमेंट कॉस्ट, ईंधन महंगा होने पर पीपीएसी के तहत बढ़ता है सरचार्ज। अहमदाबाद से सामने आई सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर, जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले मुस्लिम समुदाय ने मंदिर को भेंट किया सोने चांदी का बना रथ और 3 घोड़े। मुस्लिम समुदाय ने जमालपुर इलाके में से जगन्नाथ मंदिर के महंत को सौंपे सोने और चांदी से बने रथ, महंत ने शॉल देकर और मिठाई देकर किया सम्मानित। अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में से जगन्नाथ मंदिर में 16 जुलाई को निकलेगी 149वीं भव्य दिव्य रथ यात्रा, हजारों लोग होंगे शामिल। जगन्नाथपुरी के बाद अहमदाबाद में निकाली जाती है देश की दूसरी सबसे भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा, मुस्लिम समुदाय पिछले 26 साल से भेंट कर रहा है चांदी के रथ। अहमदाबाद के कई मुस्लिम बहुल इलाकों में भी गुजरती है रथ यात्रा, रथ यात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोग भी होते हैं शामिल। पुरी की तरह लेक सिटी उदयपुर में भी निकलेगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, 16 जुलाई को नगर भ्रमण पर निकलेंगे भगवान जगन्नाथ। उदयपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप, भक्तों का हाल जाने नगर भ्रमण पर निकलेंगे जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ। उदयपुर में जोरों पर चल रहा है भगवान जगन्नाथ के रथ को सजाने का काम, इस बार 95 किलो शुद्ध चांदी से बनाया गया है रथ, यात्रा मार्ग पर की जा रही है सजावट। उदयपुर में नीमच माता रोपवे पर आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों का लिया गया जायजा, मॉक ड्रिल के जरिए परखी गई तैयारियां। जिला प्रशासन की देखरेख में आयोजित संयुक्त मॉक ड्रिल और रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ एसडीआरएफ समेत स्थानीय एजेंसीज हुई शामिल। संभल के प्राचीन वंश गोपाल तीर्थ का 4.5 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है जीर्णोद्धार, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जीर्णोद्धार की रखी गई नींव। वंश गोपाल तीर्थ का बनेगा मुख्य द्वार, विश्राम कक्ष और महिला स्नान घर। संभल में 68 तीर्थ और 19 कूपों को खोजे जाने के बाद सीएम योगी ने तीर्थों को विकसित कराने का किया था ऐलान। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के लिए तैयारियां शुरू। सहारनपुर में डीएम एसएसपी ने अफसरों संग बनाई सुरक्षा और ट्रैफिक की रणनीति। श्रावण मास कांवड़ यात्रा और शिवरात्रि पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट में हुई समन्वय बैठक। कांवड़ यात्रा से जुड़े आयोजक और प्रतिनिधि रहे मौजूद। बिजनौर में कांवड़ यात्रा से पहले हाई अलर्ट। डीएम और एसपी ने पूरे रूट का किया निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश। पूरी आस्था और भक्ति के साथ जारी है अमरनाथ यात्रा। मुश्किल मौसम के बावजूद बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हर रोज पहुंच रहे हैं हजारों श्रद्धालु। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश के कोने कोने में पहुंच रहे श्रद्धालु। यात्रियों की सहूलियत के लिए प्रशासन के इंतजाम यात्रा को बना रहे हैं आसान। अमरनाथ यात्रा के दौरान देखने को मिल रहा है बाबा बर्फानी के भक्तों का जोश। बम बम भोले और बाबा बर्फानी के जयकारों से गूंज रही है घाटी। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से 40 सदस्यों का दल गुजरात के सोमनाथ के लिए रवाना। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के जिला प्रशासन की ओर मुफ्त यात्रा। डीएम ने किया रवाना। सोमनाथ रवाना हुए दल में 21 पुरुष और 19 महिलाएं शामिल हैं। सोमनाथ के महत्व से परिचित होना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना इस 7 दिन की यात्रा का है मकसद। बिहार में पर्यटन के नए युग की शुरुआत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म का शुभारंभ किया। 18 जुलाई से हेली टूरिज्म योजना की पहली उड़ान। पटना से प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए हेली सेवा। लोग 5,000 रुपए खर्च करके हेलीकॉप्टर और छोटे विमान से वाल्मीकि नगर, राजगीर और कैमूर जैसे पर्यटन स्थलों की हवाई सैर कर सकेंगे। मुजफ्फरपुर में एक बुजुर्ग पेंशन भोगी के खाते में 7 अरब जमा हुए लेकिन कुछ ही देर बाद बैलेंस 0 हो गया। बैंक के मुताबिक सिस्टम में खराबी की वजह से ऐसा हुआ। झांसी मंडल में दिव्यांग रेल कर्मचारियों को सौगात। पहली बार 56 कर्मचारियों को मिली 3-व्हीलर स्कूटी। आत्मनिर्भरता और सम्मान की गई उड़ान। आज दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2026। तैयारियां लगभग हो चुकी हैं पूरी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे भारत टेक्स 2026 का उद्घाटन। प्रदर्शनी में लगेंगे हजारों स्टॉल। 20 से ज्यादा देशों के डेलीगेट, 7,000 से ज्यादा खरीदार होंगे शामिल। 14 से 17 जुलाई तक चलेगा ये इवेंट। टेक्सटाइल, फैशन, सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड में देश की बढ़ती लीडरशिप का प्रतीक है ये इवेंट। राजस्थान के जैसलमेर रेलवे स्टेशन का हुआ कायाकल्प। 140 करोड़ की लागत से बदली रेलवे स्टेशन की सूरत। जैसलमेर को मिला अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हेरिटेज लोकवाला रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट, एक्सीलेटर, फूड प्लाजा समेत हवाई अड्डो जैसी सुविधाएं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने INDIE हाट का किया उद्घाटन। INDIE हाट में दिखेगी भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प कला की विरासत। 1 अगस्त से पश्चिम बंगाल के स्कूलों में स्टूडेंट्स को मिड डे मील उपलब्ध कराएगा स्कॉन। राज्य और केंद्र के अफसरों के साथ बैठक के बाद सीएम शुभेंदु ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बच्चों को मिलेगा अच्छी क्वालिटी का खाना। प्रति छात्र मिलने वाली राशि 6.78 रुपए से बढ़ाकर होगी 10 रुपए। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आंधी और बारिश। मौसम विभाग ने 17 से 19 जुलाई के बीच भारी बारिश का जताया अनुमान। मौसम विभाग ने त्रिपुरा में बारिश का जताया अनुमान। वेस्ट त्रिपुरा एंड स्वेचाला जिलों के लिए जारी किया बारिश का अलर्ट। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज बर्मिंघम के अजबेस्टन मैदान पर होगी भिड़ंत। दोपहर 3:30 से शुरू होगा मैच। रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गजों के चलते भारतीय टीम की स्थिति मजबूत। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 3 वनडे सीरीज जीती। टीम इंडिया की नजर अब सीरीज जीत का चौका लगाने पर। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड से 2-1 की हार के बाद स्वदेश पहुंची नॉर्वे की टीम, लोगों ने खिलाड़ियों का किया शानदार स्वागत। खिलाड़ियों का वेलकम करने के लिए राजधानी ओस्लो की सड़कों पर उतरे लोग, क्वार्टर फाइनल में हार के बावजूद टीम के दमदार प्रदर्शन से खुश दिखे लोग। क्रिकेट के मैदान से आई देश की जीत वाली गुड न्यूज, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर दर्ज की ऐतिहासिक जीत। लॉर्ड्स टेस्ट में भारत की बेटियों ने दिखा शानदार खेल, इंग्लैंड को पहली पारी में 170 और दूसरी पारी में 186 रन के स्कोर पर किया ऑल आउट। लॉर्ड्स टेस्ट में भारत ने पहली पारी में 285 रन और दूसरी पारी में 341 रन बनाकर घोषित की थी पारी, इंग्लैंड को दिया था 497 रन का लक्ष्य। लॉर्ड्स टेस्ट में यास्तिका भाटिया ने शानदार शतक बना, लॉर्ड्स में शतक बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी यास्तिका भाटिया। लॉर्ड्स टेस्ट की पहली पारी में क्रांति गौर ने 5 विकेट झटक कर हॉल ऑफ फेम में दर्ज कराया नाम, लॉर्ड्स पर टेस्ट में 5 विकेट झटकने वाली पहली गेंदबाज बनी। एशियन अंडर 19 और एशिया और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी, अंडर 23 वर्ग में 8 भारतीय मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे, 7 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक किया पक्का। महिला अंडर 23 वर्ग में भारत की 5 बॉक्सर फाइनल में पहुंची, निशा निकिता काजल मुस्कान और प्रियंका ने दमदार जीत दर्ज कर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। पुरुष अंडर 23 वर्ग में 3 भारतीय मुक्केबाजों ने कटाया फाइनल का टिकट, विश्वनाथ सुरेश गंगा और वंश ने शानदार प्रदर्शन कर बढ़ाई पदक की उम्मीदें। भारतीय महिला बॉक्सर्स ने सेमीफाइनल्स में दिखाया दबदबा, कई मुकाबलों में विरोधियों के खिलाफ रेफरी को एक तरफा जीत के कारण रोकना पड़ा मुकाबला। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के नाम 7 कांस्य पदक भी हुए पक्के, महिला वर्ग में तानु प्राची शिवानी और नैना जबकि पुरुष वर्ग में हितेश नीरज और ईशान ने जीते पदक। सेना के मेजर दीपक कुमार ने पूरी की दुनिया की सबसे ऊंची अल्ट्रा मैराथन, मेजर दीपक ने पूरा किया 70 किलोमीटर का मुश्किल उमलिंग ला चैलेंज। लद्दाख में सेना ने स्नो लेपर्ड एक्सपो का किया आयोजन, न्योमा निडर मुद समुदायों के लोगों में स्थानीय संस्कृति उद्यमी पर्यटन की संभावनाओं का जश्न। एक्सपो में स्थानीय हस्तशिल्प पारंपरिक खान पान सांस्कृतिक कार्यक्रम मनोरंजक गतिविधियों के साथ मेडिकल कैंप और क्रिकेट टूर्नामेंट फिनाले का भी किया गया आयोजन। चावल उत्पादक किसानों के लिए गुड न्यूज, जून में 16.48% बढ़ा देश का चावल निर्यात, एक साल में 0.86 बिलियन डॉलर से बढ़कर 1 बिलियन डॉलर हुआ निर्यात। देश के जेम्स एंड ज्वेलरी निर्यात में 34.64% का उछाल, एक साल में 1.79 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2.41 बिलियन डॉलर पहुंचा जेम्स एंड ज्वेलरी का निर्यात। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, अब 3 घंटे नहीं सिर्फ 40 मिनट में पहुंचेंगे कानपुर से लखनऊ। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और सीएम योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद, 4,200 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है तैयार। 63 किलोमीटर लंबा है कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, उद्घाटन के बाद तीनों नेताओं के उन्नाव से लखनऊ तक ट्रायल टेस्ट के लिए किया सफर। एक्सप्रेसवे पर होगी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट, हाईटेक कैमरे में होगी निगरानी। दोपहिया वाहन कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस पर नहीं चल सकेंगे, 27वें और 35वें किलोमीटर पर बनाए गए हैं 2 आधुनिक कंट्रोल रूम।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों
1: क्या चंद्रमा की वजह से हर समय तनाव रहता है, क्या चंद्रमा की वजह से डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, कौन सी हैं चंद्रमा की समस्याएं और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
12: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present, every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.
7: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
2: और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी कुंडली में, आपके जीवन में चंद्रमा अशुभ है तो उसके लक्षण क्या हैं और चंद्रमा की अशुभता को दूर करने के उपाय क्या हैं। अब जान लेते हैं दिनांक 14 जुलाई 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और चंद्रमा विद्यमान है मिथुन राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं चंद्रमा के लक्षणों के बारे में कि कैसे आप लक्षणों से अपने जीवन में चंद्रमा को समझ सकते हैं। चंद्रमा जब कुंडली में अशुभ हो तो क्या प्रभाव पड़ता है जीवन पर। अगर चंद्रमा निगेटिव होगा, चंद्रमा नकारात्मक होगा तो व्यक्ति को सांस की और शीत जन्य रोग, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम परेशान करेगी। चंद्रमा अगर कुंडली में अशुभ होगा तो व्यक्ति का मन हमेशा बिना कारण के परेशान रहेगा। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अशुभ है तो इस

बात मोटे तौर पर समझ लीजिए कि अगर आपके जीवन में बिना वजह की चिंताएं हैं, बिना वजह के तनाव हैं, मानसिक समस्याएं हैं, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ नहीं है। चंद्रमा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब ऐसा नहीं है कि सबका चंद्रमा अशुभ ही हो, चंद्रमा कुंडली में शुभ भी हो सकता है, बेहतर भी हो सकता है। तो जब कुंडली में चंद्रमा शुभ हो तो क्या प्रभाव होता है? अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ है तो व्यक्ति के चेहरे पर सौम्यता और करुणा रहती है। चंद्रमा अगर कुंडली में बेहतर हो तो ऐसा व्यक्ति लोगों में काफी प्रसिद्ध होता है, और ऐसे लोग जिनका चंद्रमा शुभ है महिलाओं में विशेष लोकप्रिय होते हैं। इनको दूध और दूध से बनी चीजें खाना बहुत अच्छा लगता है। और चंद्रमा अगर कुंडली में शुभता वाला हो तो आम तौर पर ऐसे लोग गोल मटोल भी होते हैं। और चंद्रमा अगर कुंडली में अच्छे परिणाम दे रहा हो तो ऐसे लोग माता के सहयोग से या स्त्रियों के सहयोग से जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं, ऐसा देखा गया है। चंद्रमा अगर कुंडली में अच्छा हो, शुभ हो, तो ऐसे लोगों को नहाने का बड़ा शौक होता है। सुगंधित जल से खुशबू वाला साबुन लगा करके ऐसे लोग खूब नहाते हैं। पानी से, स्विमिंग से, नहाने से इनको बड़ा प्रेम होता है, ऐसा देखा गया है। तो अगर चंद्रमा शुभ होगा तो उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि आप मेंटली बहुत मजबूत होंगे, और जीवन में कितना भी मुश्किल समय आए आप उस मुश्किल समय से बड़ी आसानी से बाहर निकल आएंगे। अगर चंद्रमा कुंडली में अशुभ परिणाम दे रहा है तो उससे बचने के क्या उपाय हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो आपने लक्षणों से ये समझ लिया कि आपका चंद्रमा शुभ है या अशुभ है। अगर चंद्रमा आपके लिए अशुभ है, आपको जीवन में अशुभ परिणाम दे रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से भगवान शिव को जल अर्पित करिए। रोज सुबह स्नान करके एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाइए। सोमवार के दिन केवल जल और फल का सेवन करके उपवास रखिएगा। गले में एक चांदी की चेन या कलाई में एक चांदी का कड़ा धारण करने से आपको लाभ होगा, मन की मजबूती बढ़ेगी। और चंद्रमा अगर अशुभ परिणाम दे रहा है तो काले रंग के वस्त्र कम से कम प्रयोग करें, और बहुत ज्यादा तीखी चीजों के प्रयोग से बचें।
चंद्रमा की अशुभता को दूर करने के लिए

रात में खुले आसमान के नीचे बैठें या अपनी बालकनी में बैठें जहां से आकाश दिख रहा हो, और चंद्रमा के मंत्रों का जप करें, ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः, या ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का निरंतर अगर आप जप करें खुले आसमान के नीचे, चंद्र के मंत्र का जप करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो आज हमने बात की चंद्रमा की शुभता और अशुभता के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य के लिए एक लकी टिप। अगर ऑफिस में बहुत सारा काम करने के बावजूद आपको नाम और यश नहीं मिलता है, तो जहां काम करते हैं अपने सामने उगते हुए सूर्य का चित्र लगाएं, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 14 जुलाई 2026 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। ऐसा अगर नित्य प्रातः करें तो बहुत अच्छा, और अगर 14 जुलाई को करें तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल जेन ज़ीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: ओडिशा के पुरी धाम में आस्था का सैलाब, रथ यात्रा से पहले आज भगवान जगन्नाथ भक्तों को देंगे नवयौवन दर्शन, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। जुलाई को शुरू होगी रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ के साथ बलभद्र और सुभद्रा के रथ तैयार, पुरी में उत्सव का माहौल, सुरक्षा चाक चौबंद। आज दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2026, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे उद्घाटन। आज ISS के लिए रवाना होंगे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन, कजाकिस्तान के बैकनूर कॉस्मोड्रोम से दो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भरेंगे उड़ान। भारत इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज बर्मिंघम में, दोपहर 3:30 बजे से मैच, रोहित विराट बुमराह के आने से टीम इंडिया के हौसले बुलंद।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज हम बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा की वजह से हमारे जीवन में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और इसका समाधान क्या है, लेकिन सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अगर आप अवसाद से गुजर रहे हो, अगर आपको डिप्रेशन रहता हो, तो जीवन में हरे रंग का ज्यादा प्रयोग करें, ग्रीन कलर का ज्यादा इस्तेमाल करें और रात में सोने के पहले थोड़ा समय अगर आप ध्यान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
0: तो कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि 14 जुलाई 2026 यानी कि मंगलवार का पंचांग क्या रहने वाला है।
1: दिनांक 14 जुलाई 2026 दिन मंगलवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, दोपहर 3:12 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 6:48 तक। राहु काल का समय दोपहर 3:04:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि चंद्रमा का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है।
1: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि चंद्रमा अगर जीवन में आपको अलग अलग तरह की समस्याएं दे रहा है तो उन समस्याओं का समाधान क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रमा हमारे जीवन पर असर कैसे डालता है, हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। देखिए, चंद्रमा किसी भी व्यक्ति के मन और सोच को प्रभावित करता है। आपका मन कैसा है, आपकी सोच कैसी है, ये चंद्रमा बता देता है। आपके जीवन में तनाव रहेगा या नहीं रहेगा ये बात भी चंद्रमा पर निर्भर करती है, चंद्रमा पर इसका असर पड़ता है। और चंद्रमा आपके मन और तनाव के अलावा आपके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां पैदा करता है, आपके जीवन में अप्स एंड डाउन्स ले आता है। चंद्रमा वो ग्रह है जो किसी व्यक्ति को चंचल भी बनाता है और गंभीर भी बनाता है, यानी अगर चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा होगा तो व्यक्ति चंचल स्वभाव का होगा, और अगर चंद्रमा पर शुभ ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होगा तो व्यक्ति गंभीर होगा। चंद्रमा की वजह से ही व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति आती है, व्यक्ति अपने जीवन में चैन और सुकून से रह पाता है। चंद्रमा अगर निगेटिव हो तो व्यक्ति को मन के रोग देता है, मानसिक बीमारियां, चिंताएं, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल समस्याएं ये चंद्रमा पैदा करता है। और चंद्रमा कभी कभी डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को भी प्रभावित करता है, पाचन तंत्र की समस्या देता है। चंद्रमा महिलाओं के जीवन में ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये महिलाओं के शारीरिक तंत्र को, गाइनिक सिस्टम को सीधा प्रभावित कर देता है। मोटे तौर पर आप ये जानिए कि आपका जो मन है, आपकी जो चिंता है, आपका जो तनाव है, ये संबंध रखता है चंद्रमा से। और अगर चंद्रमा बेहतर होगा तो आप जीवन में खुश रहेंगे, तनाव कम पालेंगे, चिंताएं कम करेंगे। और अगर चंद्रमा निगेटिव हुआ तो आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, मानसिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं।
0: और चलिए आप पंडित जी से जानेंगे कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
1: मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। संतान पक्ष की आपको उन्नति होगी। निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन की प्राप्ति होगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना मिल सकती है, रुके हुए काम पूरे होंगे, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए आगे बढ़ते हैं और आप पंडित जी से जान लेते हैं कि अगर चंद्रमा की वजह से आपको मन की समस्याएं रहती हैं तो इसका क्या समाधान है, क्या उपाय करने चाहिए।
1: देखिए, चंद्रमा जो समस्या सबसे ज्यादा देता है या जिस समस्या पर सबसे ज्यादा असर डालता है वो है आपकी मानसिक समस्या। तो अगर चंद्रमा की वजह से आपको मन की समस्या रहती है तो क्या उपाय करेंगे। जिन लोगों को मानसिक समस्या या मानसिक दिक्कत है उन्हें देर रात तक जगने से बचना चाहिए। भोजन में फल और सब्जियां उनको ज्यादा खानी चाहिए, नियमित रूप से स्नान करें और अगर सुगंधित जल से स्नान करें तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। चंद्रमा की वजह से अगर मन की समस्या है तो भगवान शिव का ध्यान करें और जितना संभव हो शिव जी के मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। और महीने में दो एकादशियां आती हैं, इन एकादशियों का उपवास भी रखना चाहिए। और चंद्रमा अगर आपको मन की बीमारी या मन की समस्या दे रहा है तो एक चांदी की चेन अपने गले में धारण करें, आपको लाभ होगा।
0: और चलिए आप पंडित जी से जान लेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का आज का दैनिक राशिफल।
1: कर्क राशि, अभी काम में जल्दबाजी ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, काम की रुकावट दूर होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है आपके सवाल का। पंडित जी, आज का पहला सवाल किसका रहने वाला है?
1: जी, आज का पहला प्रश्न दीपक जी ने हमें लिखा है, जयपुर राजस्थान से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 अगस्त 1978। जन्म का समय सुबह के 11:30। जन्म का स्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मैं काफी समय से जयपुर में नौकरी कर रहा हूं और अब मैं अपना ट्रांसफर चाहता हूं कि दिल्ली या दिल्ली के आसपास हो जाए। क्या मेरा ऐसा स्थान परिवर्तन हो सकता है? क्या मैं दिल्ली या दिल्ली के आसपास आ सकता हूं? दीपक, आपकी कुंडली के हिसाब से आप ज्यादातर अपने जन्म स्थान से दूर ही रहेंगे और उसमें आपको सफलता जीवन में ज्यादा मिलेगी। तो कुंडली के हिसाब से आप अभी जयपुर में बने रहेंगे, अगर स्थान परिवर्तन होता है तो वो 2027 के मध्य में हो सकता है, लेकिन दिल्ली या दिल्ली के निकट आने की संभावना कमजोर है। आपका करियर बेहतर हो, आपका जीवन बेहतर हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और चलिए, अब वक्त हो चला है आज का दूसरा सवाल लेने का। पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसका रहेगा?
1: जी, अगला प्रश्न वरुण जी ने हमें लिखा है और वरुण जी हमें बेंगलोर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 जनवरी 1990। जन्म का समय दोपहर में 3:05। जन्म का स्थान है इंदौर, मध्य प्रदेश। वरुण कह रहे हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहता हूं, क्या मेरा विवाह मेरी अपनी इच्छा से होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? वरुण, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है और ज्यादातर संभावना ये है कि साल 2027 के आरंभ में आप अपनी इच्छा से विवाह करेंगे, लेकिन विवाह करने के पहले कुंडली एक बार मिलवा लीजिएगा। अगर कोई कमी है तो पहले उसका उपाय कर लेना आपके लिए बेहतर होगा। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें, रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
0: और चलिए, कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और पंडित जी से जानेंगे कि अगर चंद्रमा की वजह से हर समय तनाव बना रहता है तो इसका क्या समाधान होगा और क्या उपाय करने चाहिए?
1: देखिए, अगर चंद्रमा नकारात्मक हो, निगेटिव हो, खास तौर से अगर चंद्रमा राहु या केतु से प्रभावित हो तो बिना वजह के हर समय तनाव बना रहता है। तो अगर चंद्रमा की वजह से हर समय तनाव रहता है तो क्या करेंगे? खान पान का अपने विशेष ध्यान रखिए, फास्ट फूड खाना, बहुत तेल मसाले वाली चीजें खाना कम करिए, भोजन में नमक थोड़ा कम खाइए, सोते समय अपना सर दक्षिण दिशा की ओर रखिएगा और अपनी सबसे छोटी वाली उंगली में, जिसको कनिष्ठा अंगुली कहते हैं, इसमें एक मोटा सा चांदी का छल्ला पहनिएगा। और अगर चंद्रमा की वजह से हर समय तनाव ज्यादा रहता है तो हरे रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करिएगा और रात में जब सोने जा रहे हैं तो फाइनली 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करने के बाद सोइएगा, आपको लाभ होगा।
0: और चलिए अब जान लेते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु का दैनिक राशिफल क्या है।
1: तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी, परिवार में समस्याओं से बचाव करें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए पंडित जी से जानेंगे कि अगर आप महिला हैं और स्वास्थ्य की आपको विशेष गड़बड़ियां रहती हैं तो इसके लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए।
1: देखिए, महिलाओं के जीवन में चंद्रमा की और मंगल की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। अगर आप महिला हैं, आपको गायनिक प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, हार्मोन्स की समस्या है चंद्रमा की वजह से, तो क्या करेंगी? ठंडे पानी से नहाने से बचिएगा, ठंडे पानी से स्नान ना करें, दूध से बनी हुई चीजों का सेवन करें, खास तौर से दोपहर के समय में दही का सेवन करना अच्छा होगा। पपीते का सेवन करना भी बहुत बेहतर होगा। और अगर महिलाओं को चंद्रमा की वजह से बीमारी है तो सलाह लेकर एक मोती या एक ओपल अगर धारण करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा शाम के समय सूर्यास्त के बाद चंद्रमा के मंत्र का जप करेंगी, ओम सोम सोमाय नमः या ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः, इसका जप करना बेहतर होगा।
0: और चलिए आप पंडित जी से जानेंगे कि मकर कुंभ और मीन राशि वालों का दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है।
1: मकर राशि, करियर में बदलाव के योग बने हुए हैं, यात्रा की स्थिति बन रही है, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: ना करें, दौड़ भाग बढ़ेगी, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आपका तीसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर हमारी मेल आईडी दी गई है, आप उसको मेल करके पंडित जी तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। चलिए अब वक्त हो चला है तीसरा सवाल लेने का। पंडित जी, आज का तीसरा सवाल किसका रहेगा?
0: जी, अगला प्रश्न अंजलि ने हमें लिखा है और अंजलि हमें मेल लिखती हैं देहरादून उत्तराखंड से। इनकी जन्म की तारीख है 10 फरवरी 1982। जन्म का समय 4 बजे शाम को, जन्म स्थान है देहरादून। अंजलि कह रही हैं कि इनका नौकरी को लेकर के हाल अच्छा नहीं है, ऑफिस में दिक्कतें बहुत हैं, तो क्या नौकरी छोड़ करके अपने व्यापार की तरफ जाना चाहिए? अंजलि, आपकी कुंडली के हिसाब से जो नौकरी में समस्याएं चल रही हैं, ये समस्याएं ज्यादा समय तक, लंबे समय तक नहीं चलेंगी, और आपकी कुंडली के हिसाब से आप ये जरूर कर सकती हैं कि अपनी नौकरी में बदलाव करें। नौकरी में बदलाव करने से आपकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। साल के अंत में 2026 के आखिरी समय में आपकी नौकरी बदलने की संभावना दिख रही है। फिलहाल एक मूंगा बनवा के पहनिए, 8-10 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें और सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज का चौथा सवाल किसका रहने वाला है पंडित जी से ये जान लेते हैं।
0: जी, अगला प्रश्न हेमा देवी ने हमें लिखा है और हेमा देवी हमें पटना से मेल लिखती हैं, अपनी पुत्री के विवाह के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 16 अक्टूबर 1994। जन्म का समय सुबह के 11:40। जन्म स्थान है पटना। ये पूछ रही हैं कि मेरी बेटी का विवाह कब तक होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। हेमा जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से उनकी शादी साल 2027 में होगी। अप्रैल 2027 के बाद 2027 में ही इनके विवाह की संभावना बनती है और वैवाहिक जीवन इनका कुल मिला जुला के बेहतर दिखाई दे रहा है। आप ऐसा करिए, अपनी बेटी को एक ओपल बनवा करके पहना दीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवाकर इनको पहनाइए और इनको बोलिए कि रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनको लाभ होगा।
1: और इसी के साथ पंडित जी से जान लेते हैं कि अगर चंद्रमा की वजह से आपके जीवन में कई समस्याएं रहती हैं तो किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी पूजा करने से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी।
0: जी देखिए, हर ग्रह को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग देवी देवताओं की पूजा के बारे में बताया गया है बहुत स्पष्ट रूप से। अगर हम शास्त्र की बात करें तो चंद्रमा को नियंत्रित करने के लिए माता गौरी की पूजा की बात कही गई है, लेकिन चंद्रमा से भगवान शिव का संबंध भी है। इसीलिए अगर चंद्रमा से स्वास्थ्य की समस्या हो रही है, चंद्रमा की वजह से धन की दिक्कत हो रही है, चंद्रमा की वजह से आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव और माँ गौरी यानी भगवान शिव और माँ पार्वती की अगर आप संयुक्त पूजा करें, ज्वाइंट पूजा करें, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा से संबंधित आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी।
1: और अब बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन 14 जुलाई को है। सबसे पहले उनको हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आप जान लेते हैं पंडित जी से कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।

0: 14 जुलाई को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने करियर का बहुत ध्यान रखिए। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक बना रहेगा। अविवाहितों का विवाह इस साल में हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो वर्ष बेहतर होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है ये जानने का।
0: आज की जिज्ञासा ये है कि चंद्रमा ग्रह के लिए किन चीजों का दान करना चाहिए और कब चंद्रमा के लिए दान करना बेहतर होता है। देखिए, चंद्रमा के लिए सफेद वस्तुओं का दान करना लाभकारी होता है और ये दान अगर सोमवार की शाम को किया जाए तो बहुत उत्तम होगा, बहुत बढ़िया होगा। लेकिन हर व्यक्ति चंद्रमा का दान नहीं कर सकता। चंद्रमा का दान तभी करिएगा जब चंद्रमा आपकी कुंडली में खराब हो, आपको अशुभ परिणाम दे रहा हो।
1: और चलिए आप जान लेते हैं कि 14 जुलाई 2026 यानी मंगलवार का शुभ पहर क्या है।
0: दिनांक 14 जुलाई 2026 दिन मंगलवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाइए। ऐसा करने से आपके कर्ज की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 14 जुलाई मंगलवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और आप पंडित जी से जानेंगे कि आज की गुडलक राशि क्या है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वर्तमान समय कैसा चल रहा है। आज की गुडलक राशि है मीन। इस समय आपके जीवन में बड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन करियर और विवाह के निर्णयों में सावधानी बनाए रखिएगा।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है।
0: आज के महा उपाय में बताते हैं कि अगर आप अपनी कोई विशेष मनोकामना पूरा करना चाहते हो तो क्या करेंगे। ये उपाय बुधवार से शुरू करके लगातार 11 दिनों तक करिएगा। रोज सवेरे गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। इसके बाद उनकी घी के दीपक से आरती करिए और रोज गाय को हरा चारा या हरा फल खिलाइएगा। अगर ऐसा लगातार 11 दिन तक करें तो आपकी विशेष मनोकामना अवश्य पूरी होगी।
1: तो तमाम जानकारियों के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: क्योंकि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: क्या आपको बेवजह तनाव हो जाता है? क्या छोटी छोटी बातों पर आप चिंता करते हैं? क्या मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम के शिकार हो जाते हैं? कहीं आपका चंद्रमा अशुभ तो नहीं? चंद्रमा की शुभता अशुभता के क्या हैं लक्षण और क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: You're listening Uninterrupted with TuneIn Premium. Enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
1: और चलिए अब बात बाबर फानी की कर लेते हैं। हर रोज बड़ी संख्या में तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा के लिए जत्थों में रवाना हो रहे हैं। अब तक इस यात्रा में करीब 2,00,000 श्रद्धालु पवित्र गुफा पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं। हर साल इस पवित्र यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। खबर यह है कि बाबर फानी के धाम तक पहुंचने के लिए तीसरा रास्ता तैयार करने की चर्चा जोरों शोरों से चल रही है।

बाबा बर्फानी के दर्शनों की आस इन आस्थावान भक्तों को श्री अमरनाथ धाम तक खींच लाई है। कोई परिवार संग आया है और कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ आया बाबा बर्फानी के दर्शन।

इस यात्रा पर आए इन श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। खड़ी चढ़ाई, पथरीला रास्ता और पल पल बदला।

0: में पवित्र गुफा की ओर रवाना हो रहे हैं। ये श्रद्धालु अभी दो मार्गों पहलगाम और बालटाल के रास्ते बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक पहुंच रहे हैं, लेकिन भविष्य में इस यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तीसरा मार्ग तैयार करने की चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि ये तीसरा मार्ग छोटा भी होगा और श्रद्धालुओं के लिए आरामदायक भी होगा।
1: कई सालों से एक प्रयास चल रहा था कि किस तरह से और एक नजदीक रास्ता अमरनाथ गुफा के लिए बनाया जाए। अब इस बात पर जो है चर्चा भी शुरू हो गई है और इस पर अब प्लानिंग भी बन रही है। घुमरी से जाने वाला ये रास्ता मात्र 6 किलोमीटर लंबा है और इसके लिए श्रद्धालुओं को कश्मीर आने की जरूरत नहीं है, वो दूसरा रास्ता यानी लद्दाख का रास्ता भी चुन सकते हैं, जहाजों के जरिए या फिर सड़क के माध्यम से अटल टनल से होते हुए जो रास्ता लद्दाख आता है हिमाचल से, वहाँ से आकर लद्दाख पहुँच सकते हैं और लद्दाख से फिर घुमरी जो कि सोनमर्ग करगिल हाईवे पे है, बालटल से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से सीधे अमरनाथ गुफा जा सकते हैं।
0: आपको बता दें कि अभी पवित्र गुफा तक जाने के लिए पारंपरिक रूप से दो मुख्य रास्ते हैं। पहला पहलगाम रूट जो लंबा है लेकिन कम खड़ी चढ़ाई, जबकि दूसरा बालटाल रूट जो छोटा है लेकिन खड़ी चढ़ाई वाला है। अब तीसरा रास्ता तैयार करने की प्लानिंग चल रही है। ये प्रस्तावित मार्ग लद्दाख से मीनामर्ग को करीब 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा को जोड़ेगा। ये रास्ता करीब 6 किलोमीटर का होगा। कहा जा रहा है कि जिस पर चलकर तीर्थयात्री एक ही दिन में पवित्र गुफा पहुंच सकेंगे।
1: एक रास्ता पहलगाम से होते हुए अमरनाथ गुफा जाता है जो रिवायती रास्ता है, सबसे लंबा रास्ता है और धार्मिक तौर पर भी श्रद्धालु उस रास्ते को चुनते हैं, क्योंकि ये लंबी यात्रा उन सभी धार्मिक पड़ावों से गुजरती है जो अमरनाथ यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे फिर वो चंदनवाड़ी हो, चाहे फिर वो शेषनाग हो, चाहे फिर वो पंचतरणी हो और फिर अमरनाथ गुफा। दूसरा रास्ता बालटल का, जो ज़्यादा पुराना नहीं है लेकिन नज़दीक रास्ता है। बालटल रास्ते से जाने के लिए श्रद्धालुओं को सोनमर्ग पहुँचना पड़ता है, लेकिन अब एक नया रास्ता लद्दाख की तरफ से अमरनाथ गुफा की ओर चर्चा में है। ये रास्ता दरअसल करगिल हाईवे में घुमरी की जगह से मात्र 6 किलोमीटर तक लंबा है और अमरनाथ गुफा सीधे पहुंचता है। अब जबकि अमरनाथ यात्रा को लेकर लोगों की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ हर साल बढ़ती जा रही है, उस बीच अब इस रास्ते को खोलने के लिए, बनाने के लिए चर्चाएं शुरू हो गई है।
0: श्रीनगर लेह मार्ग पर बन रही जोजिला टनल का काम पूरा होने के बाद सरकार अमरनाथ यात्रा का ये तीसरा मार्ग खोलने पर विचार कर रही है। दावा ये भी किया जा रहा है कि इस मार्ग की भौगोलिक परिस्थितियां मौजूदा बालटाल और पहलगाम मार्ग की अपेक्षा ज्यादा अनुकूल हैं। इस क्षेत्र में घाटियां चौड़ी और अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं, जिससे श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं तैयार करने के लिए पर्याप्त और सुरक्षित स्थान उपलब्ध होगा, जिससे न सिर्फ अमरनाथ श्रद्धालुओं की यात्रा और आरामदायक होगी बल्कि सुरक्षित भी होगी।
1: अगर ये रास्ता बनता है और फिर श्रद्धालुओं के लिए खुलता है तो अमरनाथ यात्रा श्रद्धालुओं के लिए और तीर्थयात्रियों के लिए करना और भी आसान होगा। गुड न्यूज टुडे के लिए तारिक लोन के साथ अशरफ वानी श्रीनगर से।
2: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
3: वायरल चौक में सबसे पहले वो तस्वीरें जो तालमेल का कमाल दिखाती है। इस मानव टावर को जरा देखिए, ये दही हांडी के वक्त बनने वाले गोविंदाओं के मानव पिरामिड को भी पीछे छोड़ रहे हैं। एक के बाद एक परत बनाते हुए ये पिरामिड जब हिलता है तो हर किसी की सांस थम जाती है, लेकिन उन्होंने मजबूती से एक दूसरे को पकड़ रखा है और सबने मिलकर अपने अटूट विश्वास और दृढ़ता से हिलते हिलाते इस पिरामिड को संभाल लिया है।
4: Yeah.
3: यूं तो कौवे आजकल दिखाई नहीं देते, इसलिए एक फ्लैट की बालकनी में उड़कर आया एक कौवा और उसके प्रति फ्लैट की महिला की करुणा लोगों का दिल जीत रही है। भूखे प्यासे कौवे

0: को दयालु महिला न सिर्फ पानी पिलाती है बल्कि उसे प्यार से खाना भी खिलाती है। उसका ये प्यार भरा काम सबके दिल को छू रहा है और बताता है कि दया भाव के ऐसे छोटे छोटे काम ही दुनिया को बेहतर बनाते हैं।
1: हेलो,
0: सोशल मीडिया पर वायरल है एक पत्नी की खुशी, जिसे देखकर लगभग हर पत्नी का दिल प्यार से भर आया है। बहुत दिनों बाद इनके पिया परदेश से लौटे हैं। ट्रेन से उतरते हुए महिला पति को चुपके से देखती है, खुशी से उछल जाती है और फिर पति को पीछे से सरप्राइज देती है। पति भी पत्नी को स्टेशन पर आया देख उसे गले से लगा लेता है। पति पत्नी की ये खुशी अब सामूहिक खुशी बन गई है। अब दुनिया के पटल पर पाकिस्तान की जो भिखारी छवि है, लगता है चीन ने उसकी तस्दीक कर दी है। चीन ने अपनी दोस्ती निभाते हुए पाकिस्तान को भीख मांगने वाला रोबोट मुहैया कराया है। ये रोबोट अब कटोरी लेकर सड़कों पर भीख मांगता नजर आ रहा है और बाकी के लोग उसे भीख दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर खूब वायरल है और दुनिया भर में इन तस्वीरों के जरिए यूजर्स हंस हंस कर लोटपोट हो रहे हैं। और अब इन तस्वीरों को देखिए, सोशल मीडिया पर विकास कार्यों की पोल खोलती ये तस्वीरें जमकर देखी जा रही है। पंजाब के मोगा में बेटियों को स्कूल पहुंचाने के लिए सरकार भले ही प्रतिबद्ध ना हो, लेकिन यहां की युवा प्रतिबद्ध है। वो बाढ़ के पानी में अपनी जान जोखिम में डालकर मानव श्रृंखला बनाकर लड़कियों और बच्चियों को सुरक्षित स्कूल पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों को देख लोग युवाओं की इस पहल को तो खूब सराहना कर ही रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार लोगों को खूब खरी खोटी भी सुना रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: क्या आपको बेवजह तनाव हो जाता है? क्या छोटी छोटी बातों पर आप चिंता करते हैं? क्या मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम के शिकार हो जाते हैं? कहीं आपका चंद्रमा अशुभ तो नहीं? चंद्रमा की शुभता अशुभता के क्या हैं लक्षण और क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: Jazz fans, rejoice! Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
11: ओडिशा के पुरी धाम में आस्था का सैलाब, रथ यात्रा से पहले आज भगवान जगन्नाथ भक्तों को देंगे नवयौवन दर्शन, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह।
12: को शुरू होगी रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ के साथ बलभद्र और सुभद्रा के रथ तैयार, पुरी में उत्सव का माहौल, सुरक्षा के चाक चौबंद।
11: प्रयागराज में आषाढ़ अमावस्या पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में डुबकी, विधि विधान से किया पूजा पाठ।
12: राजस्थान के सावलिया सेठ के भंडार से निकले 10 करोड़ 12 लाख रुपए, पहले चरण की गिनती पूरी, कल फिर से शुरू होगी भंडारे की गणना।
11: आज ISS के लिए रवाना होंगे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन, कजाकिस्तान के बैकनूर कॉस्मोड्रोम से दो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भरेंगे उड़ान।
12: भारत इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज बर्मिंघम में 2:30 बजे से मैच, रोहित विराट बुमराह के आने से टीम इंडिया के हौसले बुलंद।
9: टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट।
11: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा, गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
12: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा पराशर, बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन 5 खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा।
11: शुभ समाचार की शुरुआत जगन्नाथ रथ यात्रा के साथ होगी, पुरी में रथ यात्रा से जुड़ी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं, गुरुवार से रथ यात्रा होनी है, लिहाजा तीनों विशाल लकड़ी के रथ बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और कारीगर इन्हें सजाने के काम में जुटे हैं। प्रशासन ने भी रथ यात्रा के दौरान जुटने वाली भीड़ से निपटने के लिए तैयारियां कर ली हैं, और क्या क्या तैयारियां हो रही हैं ये आगे आपको बताएंगे।
12: तो वही मानसूनी मौसम में बारिश की कमी का सामना कर रहे देशवासियों के लिए गुड न्यूज है, थोड़े से इंतजार के बाद एक बार फिर से बारिश का दौर तेज हो सकता है। वैसे बीती रात भी दिल्ली में बारिश हुई है, इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई, तो कहां कहां पर आज बारिश होगी बताएंगे आगे।
11: तो भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज इतिहास रचेंगे। वो ISS के लिए रवाना होने वाले हैं। कजाकिस्तान के बैकनूर कॉस्मोड्रोम से दो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अनिल मेनन भी उड़ान भरेंगे। क्या कुछ वो अंतरिक्ष में करने वाले हैं, इसके बारे में भी आगे विस्तार से हम करेंगे बात।
12: वहीं आज ही भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत होने वाली है। ये मैच बर्मिंघम में दोपहर 3:30 बजे से होगा। इस मैच में रोहित विराट बुमराह के आने से टीम इंडिया के हौसले बुलंद है। मुकाबले को लेकर भारत की क्या रणनीति है, आगे बताएंगे।
11: तो साथ ही बात फीफा वर्ल्ड कप की भी होगी, जहां आज से सेमीफाइनल्स का रोमांच शुरू हो रहा है। आज पहला मुकाबला स्पेन और फ्रांस के बीच खेला जाएगा। ये मैच आज 12:30 बजे से शुरू होगा। इसको लेकर फैंस भी काफी उत्साहित हैं। वो फैंस का रोमांच भी हम आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की नौगिन न्यूज का।
12: ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। रथ यात्रा 16 जुलाई को पुरी में आयोजित की जाएगी। भक्त अब वार्षिक रथ उत्सव की पूर्व संध्या पर पुनर्जीवित देवताओं के पहले सार्वजनिक दर्शन नव जोबना दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही वहीं सरकार की तरफ से सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, यातायात विनियमन, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा और आपातकालीन कदम उठाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं।
11: अहमदाबाद में 149वीं जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले सांप्रदायिक सौहार्द की एक बेहतरीन मिसाल सामने आई है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमालपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर के महंत को 360 ग्राम चांदी और सोने की परत से बना एक विशेष रथ और 3 घोड़े भेंट किए हैं। ये परंपरा पिछले 27 वर्षों से चली आ रही है।
12: तो वहीं उदयपुर के ऐतिहासिक जगदीश मंदिर से 16 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। 15 दिनों के विश्राम के बाद भगवान 115 किलो चांदी से बने विशेष रजत रथ पर सवार होकर दोपहर 3 बजे नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। पुरी की तर्ज पर होने वाले इस भव्य आयोजन में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सजावट को लेकर भी उत्साह में नजर आए श्रद्धालु।

0: तो पूरी आस्था और भक्ति के साथ अमरनाथ यात्रा जारी है। मौसम की मार भी आस्था को नहीं दिखा पाई। श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उमड़ रही है। पवित्र अमरनाथ यात्रा में अब तक 1,00,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के साथ श्रद्धालु पवित्र गुफा तक पहुंचते रहे।
1: तो वहीं उत्तराखंड सरकार के संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित सोमनाथ और स्वाभिमान पर्व विशेष निःशुल्क ट्रेन यात्रा 2026 के तहत जिले के चयनित 40 श्रद्धालुओं का दल देहरादून के लिए रवाना हुआ। सोमनाथ रवाना हुए दल में 21 पुरुष और 19 महिलाएं शामिल हैं। सोमनाथ के महत्व से परिचित होना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना इस 7 दिन की यात्रा का मकसद है।
0: देश को स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का 7वां इंजन मिल गया है। अमेरिकी कंपनी जी एरोस्पेस ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A के लिए 7वां GE F-404IN-20 इंजन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को सौंप दिया है। साथ ही 6ठे इंजन में आई तकनीकी समस्या को सुधार कर उसे भी संचालन के लिए मंजूरी दे दी गई है, जिससे तेजस के उत्पादन में तेजी आई है। रक्षा मंत्रालय ने 2021 में 83 तेजस MK-1A जेट खरीदने के लिए HAL के साथ करार दिया था। इंजन के लिए जी एरोस्पेस के साथ 99 F-404 इंजन की डील हुई थी।
1: और क्रिकेट के मैदान से देश की जीत वाली गुड न्यूज आई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को पहली पारी में 170 और दूसरी पारी में 186 रन के स्कोर पर ऑल आउट किया। लॉर्ड्स में खेले गए पहले महिला टेस्ट में शानदार खेल दिखाने के लिए यास्तिका भाटिया और क्रांति गौड़ का नाम ऑनर बोर्ड पर दर्ज किया गया है।
0: फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड से एक्स्ट्रा टाइम में 2-1 से हारकर नॉर्वे की फुटबॉल टीम स्वदेश लौटी, जहां ओस्लो में 1,00,000 से अधिक प्रशंसकों ने नेशनल हीरोज की तरह शानदार उनका स्वागत किया। प्रशंसकों और नॉर्वेजियन शाही परिवार ने टीम के ऐतिहासिक प्रदर्शन का जश्न मनाया। खिलाड़ी अब स्वदेश लौटे तो प्रशंसकों ने सड़कों पर उतरकर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया।
1: वहीं रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड मेगा फिल्म रामायण के मेकर्स फिल्म को भारत के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अलग अलग फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। रामायण के मेकर्स ने इन दिनों देश में स्कूलों में एक नया कैंपेन चलाया, जिसके जरिए 400 से ज्यादा स्कूलों तक पहुंच बनाई जा रही है, ताकि बच्चों और युवाओं को भारतीय संस्कृति, रामायण की विरासत और फिल्म की थीम से जोड़ा जा सके। फिल्म 24 जुलाई को वर्ल्ड वाइड प्रीमियर किया जाएगा।

तो शुभ समाचार में सबसे पहले बात ओडिशा के पुरी में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा की करेंगे। यात्रा से जुड़ी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। तीनों विशाल लकड़ी के रथ बनकर तैयार हो चुके हैं और कारीगर इन्हें सजाने के काम में जुटे हैं। प्रशासन ने भी रथ यात्रा के दौरान जुटने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैयारियां कर ली हैं। इस बीच मंदिर में भगवान जगन्नाथ के नव यौवन दर्शन की रस्म निभाई जाएगी, जिसमें भगवान के स्वस्थ होने के बाद मंदिर के सेवायत भगवान जगन्नाथ प्रभु बलभद्र और देवी सुभद्रा का काजल और सिंदूर से श्रृंगार करेंगे। इस दौरान थोड़ी देर के लिए भगवान अपने भक्तों को दर्शन देंगे। रथ यात्रा से जुड़ी तमाम तैयारियां और रस्में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। तो देखिए, जगन्नाथ यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और रथ जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं और भक्त जो है वो जगन्नाथ की ओर रुख कर रहे हैं। और इस बीच मंदिर में भगवान जगन्नाथ के नव यौवन दर्शन की रस्म निभाई जाएगी, जिसमें भगवान के स्वस्थ होने के बाद मंदिर के सेवायत भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा का काजल और सिंदूर से श्रृंगार करेंगे।

0: बस एक दिन और, इंतजार की घड़ी अब बस खत्म होने वाली है। पुरी में भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की तैयारियां पूरी हो गई हैं। वो रथ तैयार है जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगे। साथ चलने वाले उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा का रथ भी सजकर तैयार है। न सिर्फ रथ बल्कि उस गुंडेचा मंदिर को भी सजाया संवारा जा रहा है, जहां भगवान रथ यात्रा करते हुए अपनी भाई बहन के साथ पहुंचेंगे। उत्सव की तैयारियों की ये तस्वीरें पुरी से आई हैं, जहां हर कोई रथ यात्रा के उल्लास में डूबा हुआ है। कलाकार तीनों रथों को सजाने में जुटे हैं, तो कुछ लोग सुंदर रंगोली बनाकर मंदिर परिसर में उत्सव की छटा बिखेर रहे हैं। कोई पूजा और अनुष्ठान से जुड़े कामों में लगा है, तो कोई रथ यात्रा में आने वाले भक्तों की व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटा है। मानो हर कोई रथ यात्रा में अपनी भागीदारी निभाने को आतुर हो।
1: सारे सब कुछ तो एक तरह से देखेंगे तो महाप्रभु जगन्नाथ ही कर रहे हैं, हम लोग सब निमित मात्र। अब जगन्नाथ मंदिर का समस्त सेवायत गण को ले लीजिए, दैतापति परिवार को ले लीजिए, श्री मंदिर प्रशासन को ले लीजिए, उड़ीसा सरकार को ले लीजिए, पूरी वासी को ले लीजिए, ये सब करते हैं सिर्फ महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रार्थना। यही प्रार्थना से ही प्रभु जगन्नाथ जी खुद भक्तों की मान रखने के लिए महाप्रभु जगन्नाथ ये रथ यात्रा खुद करा रहे।
0: रथ यात्रा की तैयारियों के बीच पुरी में एक और रस्म निभाई जाएगी, भगवान के नवयौवन दर्शन की रस्म। 14 दिन के अनासर काल के बाद पहली बार भगवान स्वस्थ होकर श्रृंगार करेंगे और अपने भाई बहन के साथ भक्तों को दर्शन देंगे। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं और 14 दिनों तक एकांत में विश्राम करते हैं। इसके बाद जब वो स्वस्थ होकर पहली बार भक्तों को दर्शन देते हैं, तो उसे नवयौवन दर्शन कहा जाता है। नवयौवन दर्शन को नेत्र उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। अनासर के 14 दिन बाद नवयौवन दर्शन मनाया जाता है। मान्यता है कि इन 14 दिनों में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और प्रभु बलभद्र स्वस्थ हो जाते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। इस खास रस्म के दौरान मंदिर के सेवक भगवान की आंखों में काजल लगाते हैं और चंदन सिंदूर का तिलक करते हैं। प्रभु सार्वजनिक रूप से दर्शन के लिए तैयार होते हैं। हालांकि इस बार ये दर्शन कम समय के लिए होगा। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि को रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा सिर्फ पुरी वासियों के लिए एक बड़ा धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि देश और दुनिया में मौजूद तमाम जगन्नाथ भक्तों के लिए किसी बड़े उत्सव से कम नहीं। इस साल भी रथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के लिए पुरी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है।
2: Very nice, very happy feeling to be here.
3: This is for the first time you are here or
2: no. Previously also.
0: धार्मिक मान्यता है कि लाखों भक्त रथ को खींचकर पुण्य कमाते हैं, पापों से मुक्ति पाते हैं और महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसीलिए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि ये आध्यात्मिक साधना, भक्ति और मोक्ष की यात्रा का प्रतीक मानी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो रथ यात्रा उत्सव को बस एक दिन रह गया है और पुरी में दुनिया भर से श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रथ यात्रा से पहले लाइफगार्ड्स ने समंदर किनारे रेस्क्यू मॉक ड्रिल का आयोजन किया और अलग अलग तरकीबों से अपनी तैयारियों को परखा। समंदर में फंसे व्यक्ति तक कैसे जल्द से जल्द पहुंचना है, उसे किनारे तक लाना है और प्राथमिक उपचार देना है, देखिए। तो आपसी तालमेल, बातचीत और इमरजेंसी रिस्पांस प्रोटोकॉल को भी यहां पर परखा गया है। ड्रिल के दौरान रेस्क्यू के सामान और इमरजेंसी गियर की भी जांच की गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए पहले से ही उपचार किए गए हैं और जल्द से जल्द जो समंदर में अगर व्यक्ति फंस जाए तो उसे कैसे वहां से बाहर निकालना है, किनारे तक उसे कैसे लाना है, उसकी यहां पर तैयारी की गई, उसको लेकर यहां पर पहल की गई है। और रथ यात्रा से पहले लाइफगार्ड्स ने समंदर किनारे रेस्क्यू मॉक ड्रिल का आयोजन किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग तरकीबों से अपनी तैयारियों को परखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति वहां पर समंदर में फंस जाए तो उसको जल्द से जल्द किनारे तक किस तरीके से लाना है, तो उसी तैयारियों को लेकर यहां पर समंदर में लाइफगार्ड्स ने तैयारी की है और इन सब परिस्थितियों का अभ्यास यहां पर किया गया है। भगवान जगन्नाथ और उनके भव्य मंदिर से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है। न सिर्फ देश बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर से जुड़ी कई बातें हैं जो चमत्कार से कम नहीं, चाहे वो भगवान की अधूरी मूर्ति हो या फिर हवा की दिशा में लहराता ध्वज। चलिए आपको मंदिर से जुड़े ऐसे रहस्यों के बारे में बताते हैं जो भगवान जगन्नाथ के प्रति भक्तों की श्रद्धा और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं।

अपूर्व आस्था का दिव्य धाम है ये। भगवान जगन्नाथ का मंदिर तो भव्य है ही, इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं और विश्वास भी हैरान करने वाला है। और मंदिर से जुड़ी कई बातें हैं जो रहस्य या चमत्कार की हद तक हैं। लाखों करोड़ों भक्तों की श्रद्धा मंदिर की जिन मूर्तियों से जुड़ी है, माना जाता है कि वो अधूरी है। ये मूर्तियां पत्थर या धातु की नहीं बल्कि नीम की लकड़ी यानी दारू से बनी है और इन मूर्तियों में हाथ पैर नहीं है। इसके पीछे कहानी है कि राजा इंद्रयुम्न ने भगवान विष्णु की मूर्तियां बनाने के लिए देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा जी से प्रार्थना की थी। विश्वकर्मा जी एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए, मगर एक शर्त रखी कि वो बंद कमरे में मूर्ति बनाएंगे और जब तक मूर्तियां पूरी नहीं हो जाती कोई कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। कई दिनों तक कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो रानी गुंडिचा के कहने पर राजा ने दरवाजा खुलवा दिया। इसके बाद विश्वकर्मा जी अंतर ध्यान हो गए और मूर्तियां वैसी ही अधूरी रह गई। आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में धरती पर रहना चाहते हैं। बस तब से आज तक भगवान जगन्नाथ किसी अधूरे लेकिन अत्यंत मनमोहक रूप में पूजे जाते हैं। मूर्तियों के साथ मंदिर के शिखर से जुड़ी भी कहानी है और जो रहस्य से भरी हुई है। आमतौर पर हवा जिस दिशा में चलती है कपड़ा या फिर झंडा उसी दिशा में लहराता है, पर शिखर पर लगा ये लाल रंग का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। इस 45 मंजिला ऊंची इमारत के शिखर पर स्थित ध्वज को हर दिन एक पुजारी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के उल्टा चढ़कर बदलता है। मान्यता ये है कि अगर एक दिन भी ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर के शिखर पर है अष्ट धातु से बना भव्य सुदर्शन चक्र, जिसे नील चक्र भी कहा जाता है। पुरी के किसी भी कोने में खड़े होकर देखा जाए फिर चक्र का मुख हमेशा देखने वाले की तरफ ही नजर आता है। सबसे खास बात है मंदिर में लहरों की आवाज का नहीं होना। हालांकि मंदिर समुद्र के किनारे पर है, पर मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार यानी सिंह द्वार के अंदर कदम रखते ही लहरों की आवाज पूरी तरह से गायब हो जाती है। द्वार से एक कदम बाहर आते ही लहरों का शोर सुनाई देने लगता है। मंदिर के प्रति भक्तों की आस्था भगवान जगन्नाथ के प्रति श्रद्धा से जुड़ी है, पर मंदिर के निर्माण से जुड़े कई चमत्कार हैं। जैसे इस मंदिर को प्राकृतिक तौर पर एक नो फ्लाई जोन माना जाता है, यानी इसके ऊपर से ना तो हवाई जहाज गुजरता है और ना पक्षी। इसी तरह की कहानी रसोई में बनने वाले महाप्रसाद को लेकर भी है। महाप्रसाद के लिए मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। चूल्हे पर रखे इन 7 बर्तनों में से सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है। जो बर्तन आग से संपर्क में होता है उसमें खाना सबसे आखिर में पकता है। मंदिर में हर दिन हजारों लाखों भक्त आते हैं, लेकिन प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। मान्यता यह है कि मंदिर बंद होने के समय प्रसाद अपने आप पूरा खत्म हो जाता है, यानी अन्न का एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: राजा अषाढ़ अमावस्या है और इसे भौमवती अमावस्या भी कहा जा रहा है। अगर अमावस्या मंगलवार को पड़ती है तो उसे भौमवती अमावस्या कहा जाता है। भौम का संबंध मंगल ग्रह और मंगलवार से है। सनातन परंपरा में इस दिन पितरों का तर्पण, पवित्र नदियों में स्नान, दान पुण्य और भगवान विष्णु, शिव तथा पीपल की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किए गए धार्मिक कार्यों का कई गुना फल प्राप्त होता है। तभी सुबह से प्रयागराज में त्रिवेणी किनारे जप दान का सिलसिला जारी है। श्रद्धालु पवित्र नदी में डुबकी लगा रहे हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान में मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी मंदिर। मंदिर में महीने की भंडार की गिनती के पहले ही दिन 10 करोड़ रुपए से ज्यादा नगद राशि ने सबको चौंका दिया। हर बार की तरह इस बार भी चतुर्दशी को दान पात्र खोले गए और बैंक कर्मियों और मंदिर मंडल के कर्मचारियों ने पूरे दिन नकद राशि की गिनती की। पहले चरण में ही 10,11,83,000 रुपए की नकदी मिली। हालांकि ये राशि केवल दान पात्रों से मिले दान का एक हिस्सा है। चढ़ावे में आई बाकी बची राशि के अलावा मंदिर को मिलने वाले चेक, ऑनलाइन दान और सोने चांदी के आभूषण और अन्य चढ़ावों की गिनती और मूल्यांकन अभी बाकी है। यानी अंतिम आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा होने की संभावना जताई जा रही है।
1: तो अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालु का उत्साह बना हुआ है। अब तक करीब 2,00,000 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। इस बीच श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब अमरनाथ यात्रा के लिए तीसरा रूट खोलने पर विचार हो रहा है, जो कि पहले के दोनों मार्ग बालटाल और पहलगाम से छोटा, आरामदायक और सुरक्षित होगा।

0: कठिन डगर है, लंबा सफर है, मगर उत्साह में कोई कमी नहीं। यह आस्था की मजबूत डोर ही है कि लाखों श्रद्धालु चुनौतियों को पार करते, बम बम भोले का जयकारा लगाते, बाबा बर्फानी के दर्शन के आस लिए चल पड़े हैं। एक दूसरे से अनजान लेकिन सब जाने पहचाने से, सबकी एक ही मंजिल, एक ही रास्ता जो महादेव के दर तक जाता है। खड़ी चढ़ाई, पथरीला रास्ता और पर्पल बदलता मौसम, लेकिन बाबा बर्फानी के भक्तों का जोश कम नहीं। आस्था का आलम यह है कि 3 जुलाई से शुरू हुई इस यात्रा में अब तक 2,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा में पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं।
1: इस साल की अमरनाथ यात्रा में पहले 10 दिन बीत चुके हैं और 10 दिन के ही दौरान 2,00,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह ने जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी इस बात को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या आखिर कोई और मुतबादिल रास्ता अमरनाथ गुफा की ओर जा सकता है।
0: फिलहाल अमरनाथ यात्रा पहलगाम और बालटाल 2 मार्गों से हो रही है, लेकिन भविष्य में इस यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 3रा मार्ग तैयार करने की चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि ये 3रा मार्ग छोटा भी होगा और श्रद्धालुओं के लिए आरामदायक भी। ये प्रस्तावित मार्ग लद्दाख के मीनामर्ग को करीब 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा को जोड़ेगा। ये रास्ता करीब 6 किलोमीटर का होगा, जिस पर चलकर तीर्थयात्री एक ही दिन में पवित्र गुफा पहुंच सकेंगे।
1: इसमें एक रास्ता पहलगाम से होते हुए अमरनाथ गुफा जाता है, जो रिवायती रास्ता है, सबसे लंबा रास्ता है और धार्मिक तौर पर भी श्रद्धालु उस रास्ते को चुनते हैं, क्योंकि ये लंबी यात्रा उन सभी धार्मिक पड़ावों से गुजरती है जो अमरनाथ यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे फिर वो चंदनबाड़ी हो, चाहे फिर वो शेषनाग हो, चाहे फिर वो पंचतरणी हो और फिर अमरनाथ गुफा। दूसरा रास्ता बालटल का, जो ज़्यादा पुराना नहीं है लेकिन नज़दीक रास्ता है। बालटल रास्ते से जाने के लिए श्रद्धालुओं को सोनमर्ग पहुँचना पड़ता है, लेकिन अब एक नया रास्ता लद्दाख की तरफ से अमरनाथ गुफा की ओर चर्चा में है। ये रास्ता दरअसल करगिल हाईवे में गुमरी की जगह से मात्र 6 किलोमीटर तक लंबा है और अमरनाथ गुफा सीधे पहुंचता है। अब जबकि अमरनाथ यात्रा को लेकर लोगों की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ हर साल बढ़ती जा रही है, उस बीच अब इस रास्ते को खोलने के लिए, बनाने के लिए चर्चाएं शुरू हो गई है।
0: दावा ये किया जा रहा है कि इस मार्ग की भौगोलिक परिस्थितियाँ मौजूदा बालटाल और पहलगाम मार्ग की अपेक्षा ज्यादा अनुकूल हैं। इस क्षेत्र में घाटियाँ चौड़ी और अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं, जिससे श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं तैयार करने के लिए पर्याप्त और सुरक्षित स्थान उपलब्ध होगा। श्रीनगर लेह मार्ग पर बन रही जोजिला टनल का काम पूरा होने के बाद सरकार अमरनाथ यात्रा का ये 3रा मार्ग खोलने पर विचार कर रही है।
1: अगर ये रास्ता बनता है और फिर श्रद्धालुओं के लिए खुलता है तो अमरनाथ यात्रा श्रद्धालुओं के लिए और तीर्थयात्रियों के लिए करना और भी आसान होगा। गुड न्यूज टुडे के लिए तारिक लोन के साथ अशरफ वानी श्रीनगर से।
2: और बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भारत इंग्लैंड वनडे सीरीज पर करेंगे बात, जहां धमाल मचाने को तैयार है रोको।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
4: क्या आपको बेवजह तनाव हो जाता है? क्या छोटी छोटी बातों पर आप चिंता करते हैं? क्या मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम के शिकार हो जाते हैं? कहीं आपका चंद्रमा अशुभ तो नहीं? चंद्रमा की शुभता अशुभता के क्या हैं लक्षण और क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है ड्रामा तो कहीं प्यार। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
6: TuneIn Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
9: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
7: गुड न्यूज टुडे.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे. असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
9: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
7: गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा.
2: ओडिशा के पुरी धाम में आस्था का सैलाब. रथ यात्रा से पहले आज भगवान जगन्नाथ भक्तों को देंगे नवयौवन दर्शन. श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह. जुलाई को शुरू होगी रथ यात्रा. भगवान जगन्नाथ के साथ बलभद्र और सुभद्रा के रथ तैयार. पुरी में उत्सव का माहौल, सुरक्षा चाक चौबंद. प्रयागराज में आषाढ़ अमावस्या पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में डुबकी. विधि विधान से किया पूजा पाठ. राजस्थान के सावलिया सेठ के भंडार से निकले 10 करोड़ 12 लाख रुपए. पहले चरण में गिनती पूरी, कल फिर से शुरू होगी भंडारे की गणना.

0: आज ISS के लिए रवाना होंगे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन। कजाकिस्तान के बैकनूर कॉस्मोड्रोम से दो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भरेंगे उड़ान।
1: भारत इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज बर्मिंघम में दोपहर 3:30 बजे से मैच। रोहित विराट बुमराह के आने से टीम इंडिया के हौसले बुलंद।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शुभ समाचार में। चलिए अब बात कर लेते हैं खेल जगत से जुड़ी। दरअसल इंग्लैंड से T20 सीरीज में मिली हार हर क्रिकेट फैन को अखर रही है, लेकिन अब वक्त है जीत के शुभ आगाज का, क्योंकि आज से टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज का शुभारंभ कर रही है। पहला मुकाबला आज दोपहर 3:30 बजे एजबेस्टन में खेला जाएगा और फैंस के लिए गुड न्यूज ये है कि आज रोहित विराट एक्शन में दिखेंगे। साथ ही करीब 3 साल बाद जसप्रीत बुमराह वनडे क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं, तो जाहिर है फैंस की निगाहें इन सितारों पर हैं और उम्मीद यही है कि आज जीत के साथ टीम इंडिया वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों का शंखनाद करेगी।
3: हार कभी कहानी का अंत नहीं होती, कई बार वही हार सबसे बड़े पलटवार की शुरुआत भी बनती है। T20 सीरीज की करारी चोट अभी ताजा है, लेकिन अब मैदान बदल चुका है, फॉर्मेट बदल चुका है और सबसे बड़ी बात टीम इंडिया का चेहरा भी बदल चुका है। बर्मिंघम के एजबेस्टन से 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हो रहा है और इस बार मैदान पर लौट आई है रोको की जोड़ी। रोहित शर्मा का दम, कोहली का विराट अनुभव, जसप्रीत बुमराह की घातक वापसी और KL राहुल की मौजूदगी, यानी वो खिलाड़ी जिन्होंने बरसों तक दुनिया की सबसे मजबूत टीमों को घुटनों पर झुकाया है। अब सवाल सिर्फ जीत का नहीं है बल्कि T20 की हार का जवाब देने का है और करोड़ों भारतीय फैंस इसी पलटवार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वनडे क्रिकेट में रोहित विराट ये वो कॉम्बिनेशन है जिसने दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाजों की नींद उड़ाई है। इंग्लैंड की सरजमी पर भी किंग कोहली का बल्ला खूब गर्जा है। इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली हैं। विराट ने यहां 16 मैच में 581 रन बनाए हैं जिसमें 1 शतक शामिल है, तो वहीं रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी किसी से कम नहीं। अंग्रेजों के खिलाफ महज 10 मैचों में 410 रन और लगभग 59 की औसत, यानी इंग्लैंड के पिच और रोको की जोड़ी, ये ऐसा समीकरण है जो मेजबानों की सबसे बड़ी टेंशन बन सकता है। ऊपर से शुभमन गिल का शानदार फॉर्म और मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर और KL राहुल, यानी भारत की बल्लेबाजी में क्लास भी है, एक्सपीरियंस भी और मैच को अपनी शर्तों पर खत्म करने का मादा भी। लेकिन अंग्रेजों के घर में पलटवार की राह आसान नहीं है। इंग्लैंड का आत्मविश्वास इस वक्त 7वें आसमान पर है। T20 सीरीज में उसने भारत को चारों खाने चित किया है। जोस बटलर, हैरी ब्रुक और जो रूट की वापसी, यानी अंग्रेजों की बल्लेबाजी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। इतना ही नहीं, मुकाबले से एक दिन पहले ही इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान करके साफ संदेश दे दिया है कि मेजबान टीम भारत को संभलने का मौका देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। कहते हैं क्रिकेट में बदलाव गुस्से से नहीं अपने खेल से लिया जाता है। T20 की हार अब बीता कल है, लेकिन उसका हिसाब अभी बाकी है। अगर अब रोहित का गेम चला, विराट का बल्ला बोला, गिल ने लय बरकरार रखी और बुमराह ने अपनी धार दिखाई, तो इंग्लैंड की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। लेकिन अगर मेजबान टीम ने T20 वाली रफ्तार कायम रखी तो भारत की अग्नि परीक्षा यहां भी होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और आंकड़ों के लिहाज से देखें तो वनडे में इंग्लैंड पर भारत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसका सबसे दिलचस्प पहलू है ये भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने पिछले 5 वनडे मुकाबले जीते हैं। ओवरऑल दोनों टीमों के बीच 110 मैच खेले गए हैं। भारत ने 61 जीते और 44 हारे हैं। 2 मैच टाई और 3 मुकाबले बेनतीजा रहे। फैंस को उम्मीद है कि वनडे फॉर्मेट में इंग्लैंड पर टीम इंडिया का दबदबा कायम रहेगा और टीम इंडिया जीत के साथ वनडे सीरीज का आगाज करेगी।
1: तो क्रिकेट में कुछ जीतें सिर्फ स्कोरबोर्ड पर दर्ज नहीं होती, वो इतिहास की किताबों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाती हैं। जिस लॉर्ड्स के मैदान पर जीत का सपना देखने के लिए भारतीय पुरुष टीम को 54 साल और 11 टेस्ट का इंतजार करना पड़ा, उसी क्रिकेट के मक्का में भारत की बेटियों ने अपना पहला ही टेस्ट खेला और महज 4 दिन में ऐसा विजय ध्वज फहरा दिया कि पूरी दुनिया तालियां बजाने पर मजबूर हो गई।
3: एक सौ 42 साल के इतिहास में पहली बार लॉर्ड्स ने महिला टेस्ट मैच की मेजबानी की और उस ऐतिहासिक मैदान पर भारत की बेटियों ने ऐसा प्रदर्शन किया कि क्रिकेट का सबसे प्रतिष्ठित मैदान भी उनके खेल को सलाम करता दिखाई दिया। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में भारत ने गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग तीनों एरिया में इंग्लैंड को न केवल पस्त किया बल्कि एक तरफा अंदाज में भारत ने ये मैच 270 रनों से जीत लिया। स्मृति मंधाना के बल्ले ने शुरुआत में ऐसी मधुर धुन छेड़ी कि जीत की पटकथा वहीं से लिखनी शुरू हो गई। हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने उस कहानी में भरोसे के रन जोड़े और भारत ने पहली पारी में 285 रन का मजबूत किला खड़ा कर दिया। इसके बाद गेंद भारतीय हाथों में आई और क्रांति गौर ने गेंद से ऐसी क्रांति मचाई कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी की गिल्लियां उड़ गईं। 5 विकेट लेकर उन्होंने सीधे लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा दिया। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ढेर हो गया और मैच की बागडोर पूरी तरह भारत के हाथ में आ गई। दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजों ने रनों की ऐसी बरसात की कि इंग्लैंड के लिए जीत का आसमान ही धुंधला पड़ गया। स्मृति ने फिर अर्धशतक जड़ा, यास्तिका भाटिया ने शतक की चमक बिखेरी और ऋचा घोष ने आखिर में तूफानी अंदाज में रन बरसाकर इंग्लैंड के सामने 457 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। इतना विशाल लक्ष्य और सामने भारतीय गेंदबाजों का अटूट इरादा, इंग्लैंड की पूरी बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। विकेट ऐसे गिरते रहे जैसे पतझड़ में पत्ते गिरते हैं। 186 रन पर पूरी टीम सिमट गई और भारत ने 270 रन की ऐसी ऐतिहासिक जीत दर्ज की जिसकी गूंज लॉर्ड्स की बालकनी से लेकर क्रिकेट इतिहास तक सुनाई देती रहेगी। ये जीत सिर्फ एक टेस्ट मैच की जीत नहीं है, ये एक नए दौर का ऐलान है। भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स की पिच पर ऐसा स्ट्रेट ड्राइव खेला है जिसकी गूंज आने वाली पीढ़ियां सुनेंगी। इन बेटियों ने ऐसा पुल शॉट लगाया है जिसने सदियों पुरानी धारणाओं को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और ऐसा विजयी छक्का जड़ा है जिसने बता दिया है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम मैच और इतिहास दोनों अपने नाम करना जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: तो भारतीय वनडे टीम के कैप्टन शुभमन गिल ने भी विमेन्स टीम को इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी।
4: Firstly, I think very proud moment for us. Our women's team winning a historic match at Lords, and I think we've all seen how special it is playing at that stadium. वहाँ पे खेलना कितना special होता है और वहाँ पे जीतना कितना special होता है. So huge congratulations to them.
1: तो देखिए, लॉर्ड्स टेस्ट में टीम इंडिया ने सिर्फ टेस्ट मैच ही नहीं जीता है, दिल भी जीते हैं। भारतीय टीम ने शानदार खेल भावना का परिचय देते हुए आखिरी टेस्ट खेल रही इंग्लिश बेटर टीम ब्यूमोंट और हीदर नाइट को मैदान पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया, साथ ही ड्रेसिंग रूम में इन दोनों खिलाड़ियों का सम्मान भी किया।

0: और चलिए अब रुक करते हैं फुटबॉल का, तो तैयार हो जाइए, धड़कनों की रफ्तार आपकी बढ़ने वाली है क्योंकि अब फीफा वर्ल्ड कप 2026 उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां एक चूक पूरे सफर पर भारी पड़ सकती है। अब शुरू हो रहा है सेमीफाइनल्स का महासंग्राम जहां दुनिया की चार सबसे बड़ी फुटबॉल ताकतें इतिहास पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखने के लिए मैदान में उतरेंगी। पहला मुकाबला स्पेन और फ्रांस के बीच खेला जाएगा।
1: फुटबॉल की दुनिया में एक मशहूर बात कही जाती है, चैंपियन वो नहीं बनते जो हर मैच खूबसूरती से खेलते हैं, बल्कि वो बनते हैं जो सबसे मुश्किल घड़ी में सबसे सही फैसला लेते हैं। लगभग एक महीने तक चले रोमांच, संघर्ष और पसीने के जंग के बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप में अब सिर्फ चार दावेदार बचे हैं, फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना और इंग्लैंड। अब इस टूर्नामेंट में आगे हर सेकंड की कीमत है, एक गलत पास, एक कमजोर टैकल या डिफेंस की एक छोटी सी चूक और सपना वहीं खत्म। लेकिन जो टीम इस अग्नि परीक्षा को पार कर जाएगी उसके सामने होगा फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर सुनहरे अक्षरों में नाम लिखवाने का सुनहरा अवसर।
2: पहला सेमीफाइनल डलास में खेला जाएगा जहां आमने सामने होंगी फ्रांस और स्पेन की टीमें, जबकि जुलाई को दूसरा सेमीफाइनल अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होगा। इन दोनों मुकाबलों के विजेता 19 जुलाई को विश्व कप के फाइनल में ट्रॉफी के लिए आखिरी जंग लड़ेंगे।
1: अब सवाल सिर्फ जीत का नहीं बल्कि फुटबॉल की सोच और दर्शन के प्रदर्शन का है। फैंस के मन में यही सवाल है कि क्या स्पेन का धैर्य फ्रांस की विस्फोटक रफ्तार को थाम पाएगा और क्या अर्जेंटीना का नॉकआउट मुकाबलों का एक्सपीरियंस इंग्लैंड के बेखौफ अंदाज पर भारी पड़ेगा। डलास का पहला सेमीफाइनल सिर्फ दो देशों की टक्कर नहीं बल्कि फुटबॉल की दो बिल्कुल अलग सोच का मुकाबला है। स्पेन गेंद को अपने कब्जे में रखकर मैच की धड़कन नियंत्रित करता है, जबकि फ्रांस विरोधी को गेंद देकर भी पल भर में घातक पलटवार से खेल का रुख बदल सकता है। दूसरे सेमीफाइनल में भी रणनीतियों की जंग कम दिलचस्प नहीं है। अर्जेंटीना की पहचान है गेंद छूटते ही उसे हाई प्रेसिंग से तुरंत वापस हासिल करना। वह इंग्लैंड की ताकत है तेज रफ्तार वर्टिकल फुटबॉल जहां गेंद मिलते ही सीधा विपक्षी के गोल पर हमला बोल दिया जाता है, यानी यहां हर अटैक मैच का भाग्य बदल सकता है। अब वर्ल्ड कप उस मोड़ पर आ पहुंचा है जहां करोड़ों दिलों की धड़कनें एक साथ चल रही हैं। कौन दबाव में टूटेगा, कौन इतिहास रचेगा, कौन फाइनल का टिकट कटाएगा और आखिर किसके सिर सजेगा दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल का ताज। इन सभी सवालों का जवाब अब सिर्फ कुछ मुकाबलों की दूरी पर है और उस फैसले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: तो जीत के जश्न की तस्वीरें तो आपने खूब देखी होंगी, लेकिन फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड से हार के बावजूद नॉर्वे ने अपनी टीम का स्वागत किसी विश्व विजेता की तरह किया। टीम वतन लौटी तो लोगों की भीड़ उनके स्वागत के लिए सड़कों पर उतर आई। देखिए खेल भावना की वो तस्वीर जिसने लोगों का दिल जीत लिया है।
3: मैदान में अपनी टीम को जीतते देखना कौन नहीं चाहता, लेकिन हार कर भी टीम को लेकर चाहत बनी रहे यही खेल की असल भावना है। नॉर्वे ने अपनी टीम का भव्य स्वागत करके दिखा दिया कि खेल में हार जीत से ज्यादा बड़ी खेल की भावना है। नॉर्वे की फुटबॉल टीम जैसे ही अपने मुल्क पहुंची, पूरा नॉर्वे बानो अपने प्लेयर्स के स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। राजधानी ओस्लो की सड़कों पर हर हाथ में देश का झंडा था और चेहरे पर अपनी टीम के लिए गर्व का भाव। वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड से 2-1 से हार के बावजूद टीम का स्वागत मुल्क में किसी विश्व विजेता की तरह से किया गया। टीम के खिलाड़ियों के चेहरे पर भले ही वर्ल्ड कप का सफर खत्म होने का मलाल था, लेकिन पूरा मुल्क मानो अपनी टीम को इस गम से निकालने के लिए एकजुट हो गया। खिलाड़ी जैसे मुल्की जमीन पर उतरे उनके विमान को पारंपरिक वाटर कैनन सलामी दी गई और इसके बाद खिलाड़ियों ने अपने परेड के जरिए शहर का अभिवादन स्वीकार किया। रॉयल पैलेस के बाहर हजारों प्रशंसक पहले से टीम के आने का इंतजार कर रहे थे। खिलाड़ियों ने सबसे पहले राजा से मुलाकात की और फिर टीम ने रॉयल पैलेस की बालकनी से लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद शुरू हुआ नॉर्वे का सबसे मशहूर सेलिब्रेशन वाइकिंग रो। इस बार खास बात ये रही कि क्राउन प्रिंस ने खुद ड्रम बजाकर इस सेलिब्रेशन की शुरुआत की। ब्यूरो रिपोर्ट कुकीज़ टुडे।
0: भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज इतिहास रचेंगे। दरअसल वो आज कजाकिस्तान के बैकनूर कॉस्मोड्रोम से दो रूसी यात्रियों के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के 8 महीने के मिशन पर रवाना होंगे। इसका समय रात 8:17 है। इस मिशन में अनिल मेनन के साथ रूसी अंतरिक्ष यात्री भी शामिल है। बताया गया है कि ये तीनों वहां बाकी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रहेंगे। ये मिशन 8 महीने का है। ISS पर वो मानव शरीर, चिकित्सा तकनीक और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों से जुड़े कई अहम प्रयोग करेंगे। अनिल मेनन का जन्म अमेरिका के मिनियापोलिस में हुआ था। मेनन आपातकालीन चिकित्सा विशेषज्ञ हैं और यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स में कर्नल के पद पर काबिज हैं।
4: और अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में हिट होती हैं, कुछ सुपरहिट भी बनती हैं, लेकिन बहुत कम फिल्में इतिहास लिखती हैं। ऐसी एक फिल्म है माइकल, जिसने अब कमाई का ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। 24 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई माइकल ने पहले दिन से ही दर्शकों का दिल जीत लिया। दमदार कहानी, शानदार अभिनय और बेहतरीन प्रस्तुति ने फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर लगातार मजबूत बढ़त भी दिलाई और अब इस फिल्म ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। माइकल ने दुनिया भर में $1 बिलियन की कमाई यानी कि 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इसी के साथ ये दुनिया की पहली बायोपिक फिल्म बन गई है जिसने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया।
0: और अब बात

प्रभाव से गहराई से जुड़ रहे हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी बाबा के आश्रम में जा चुके हैं और विशाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित और निर्देशित हनुमान अंश 31 जुलाई को फिलहाल रिलीज होगी।

0: सीताराम।
1: और फ्रांस की राजधानी पेरिस में बैस्टिल डे के मौके पर ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। मशहूर आइफल टावर के ऊपर रंग बिरंगी आतिशबाजी से पूरा आसमान जगमगा उठा। इस बार जश्न को और खास बनाने के लिए सैकड़ों ड्रोन भी उड़ाए गए जिन्होंने आसमान में अलग अलग आकृतियां बनाई। सबसे खास पल तब आया जब ड्रोन ने आसमान में आइफल टावर की ही तस्वीर बना दी। ये खूबसूरत नजारे को देखने के लिए हजारों लोग सड़कों पर जमा हुए और अपने मोबाइल में इसे कैद करते भी नजर आए। ब्रसेल्स डे फ्रांस का राष्ट्र दिवस है। ये साल 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति की याद में मनाया जाता है। हर साल इस मौके पर पूरे देश में परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शानदार आतिशबाजी का आयोजन किया जाता है।
2: अब वक्त हो गया इंस्टा स्टोरी का। आपको उस कलाकार की इंस्टा रील दिखाएंगे जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में पीछे नहीं है। देखिए आम्रपाली गुप्ता की फनी इंस्टा स्टोरी।
3: ये पढ़ो जरा, साइंस ने कंफर्म किया है कि बच्चे के अंदर माँ के सेल्स हमेशा मौजूद रहते हैं। अब पता लगा तुम्हारे मियाँ के अंदर तुम्हारी सास की रूह कैसे आ जाती है बोलने के लिए।
4: जो बीबी को मुसीबत कहते हैं उनको एक बात बता दूं, वो खुद ही नहीं आई थी चल के, आप ही उसको पू पू पो पो पी पी घम्मड़ घम्मड़ और नागिन डांस करते हुए लेने गए थे।
5: लोगों के पति होते होंगे चांद, मेरे वाला तो सूरज है। सूरज बात बात पे उबाड़ मारता है।
2: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही।
1: बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
7: क्या आपको बेवजह तनाव हो जाता है? क्या छोटी छोटी बातों पर आप चिंता करते हैं? क्या मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम के शिकार हो जाते हैं? कहीं आपका चंद्रमा अशुभ तो नहीं? चंद्रमा की शुभता अशुभता के क्या हैं लक्षण और क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
8: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है ड्रामा तो कहीं प्यार। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
9: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go, so you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज।

0: टुडे पर। खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
1: ओडिशा के पुरी धाम में आस्था का सैलाब। रथ यात्रा से पहले आज भगवान जगन्नाथ भक्तों को देंगे नवयौवन दर्शन, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। सोलह जुलाई को शुरू होगी रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ के साथ बलभद्र और सुभद्रा के रथ तैयार। पुरी में उत्सव का माहौल, सुरक्षा चाक चौबंद। प्रयागराज में आषाढ़ अमावस्या पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई संगम की डुबकी, विधि विधान से की पूजा पाठ। राजस्थान के सावलिया सेठ के भंडार से निकले 10 करोड़ 12 लाख रुपए, पहले चरण की गिनती पूरी, कल फिर से शुरू होगी भंडारे की गणना। आज ISS के लिए रवाना होंगे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन, कजाकिस्तान के बैकनूर कॉस्मोड्रोम से दो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भरेंगे उड़ान। भारत इंग्लैंड के बीच तीनों मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज बर्मिंघम में, दोपहर 3:30 बजे से मैच, रोहित विराट बुमराह के आने से टीम इंडिया के हौसले बुलंद।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी कुंडली में, आपके जीवन में चंद्रमा अशुभ है तो उसके लक्षण क्या हैं और चंद्रमा की अशुभता को दूर करने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 14 जुलाई 2026 दिन मंगलवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, दोपहर 3:12 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 6:48 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 14 जुलाई 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और चंद्रमा विद्यमान है मिथुन राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं चंद्रमा के लक्षणों के बारे में कि कैसे आप लक्षणों से अपने जीवन में चंद्रमा को समझ सकते हैं। चंद्रमा जब कुंडली में अशुभ हो तो क्या प्रभाव पड़ता है जीवन पर। अगर चंद्रमा निगेटिव होगा, चंद्रमा नकारात्मक होगा तो व्यक्ति को सांस की और शीत जन्य रोग, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम परेशान करेगी। चंद्रमा अगर कुंडली में अशुभ होगा तो व्यक्ति का मन हमेशा बिना कारण के परेशान रहेगा। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अशुभ है तो स्त्री पक्ष से या स्त्री को लेकर के जीवन में कष्ट बना रहेगा। महिलाओं की वजह से जीवन में दिक्कतें पैदा होंगी, हार्मोन्स की समस्या होगी और अवसाद का, डिप्रेशन का योग जीवन में बनेगा। चंद्रमा अगर अशुभ है तो रात को या जब भी आप सोते हैं उस समय गहरी नींद नहीं आएगी और बार बार नींद आपकी टूटेगी, बार बार नींद में चौंक करके आप उठ जाएंगे। अगर कुंडली में या जीवन में चंद्रमा अशुभ है
तो व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलता या व्यक्ति के संबंध अपनी माता से खराब होते हैं। एक बात मोटे तौर पर समझ लीजिए कि अगर आपके जीवन में बिना वजह की चिंताएं हैं, बिना वजह के तनाव हैं, मानसिक समस्याएं हैं, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ नहीं है। चंद्रमा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन की प्राप्ति होगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना मिल सकती है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, अभी काम में जल्दबाजी ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ऐसा नहीं है कि सबका चंद्रमा अशुभ ही हो, चंद्रमा कुंडली में शुभ भी हो सकता है, बेहतर भी हो सकता है। तो जब कुंडली में चंद्रमा शुभ हो तो क्या प्रभाव होता है? अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ है तो व्यक्ति के चेहरे पर सौम्यता और करुणा रहती है। चंद्रमा अगर कुंडली में बेहतर हो तो ऐसा व्यक्ति लोगों में काफी प्रसिद्ध होता है, और ऐसे लोग जिनका चंद्रमा शुभ है महिलाओं में विशेष लोकप्रिय होते हैं। इनको दूध और दूध से बनी चीजें खाना बहुत अच्छा लगता है, और चंद्रमा अगर कुंडली में शुभता वाला हो तो आम तौर पर ऐसे लोग गोल मटोल भी होते हैं। और चंद्रमा अगर कुंडली में अच्छे परिणाम दे रहा हो तो ऐसे लोग माता के सहयोग से या स्त्रियों के सहयोग से जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं, ऐसा देखा गया है। चंद्रमा अगर कुंडली में अच्छा हो, शुभ हो, तो ऐसे लोगों को नहाने का बड़ा शौक होता है, सुगंधित जल से खुशबू वाला साबुन लगा करके ऐसे लोग खूब नहाते हैं, पानी से, स्विमिंग से, नहाने से इनको बड़ा प्रेम होता है, ऐसा देखा गया है।
तो अगर चंद्रमा शुभ होगा तो उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि आप मेंटली बहुत मजबूत होंगे और जीवन में कितना भी मुश्किल समय आए, आप उस मुश्किल समय से बड़ी आसानी से बाहर निकल आएंगे। अगर चंद्रमा कुंडली में अशुभ परिणाम दे रहा है तो उससे बचने के क्या उपाय हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, काम की रुकावट दूर होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, अगर अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो आपने लक्षणों से ये समझ लिया कि आपका चंद्रमा शुभ है या अशुभ है। अगर चंद्रमा आपके लिए अशुभ है, आपको जीवन में अशुभ परिणाम दे रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से भगवान शिव को जल अर्पित करिए, रोज सुबह स्नान करके एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाइए। सोमवार के दिन केवल जल और फल का सेवन करके उपवास रखिएगा। गले में एक चांदी की चेन या कलाई में एक चांदी का कड़ा धारण करने से आपको लाभ होगा, मन की मजबूती बढ़ेगी। और चंद्रमा अगर अशुभ परिणाम दे रहा है तो काले रंग के वस्त्र कम से कम प्रयोग करें और बहुत ज्यादा तीखी चीजों के प्रयोग से बचें। चंद्रमा की अशुभता को दूर करने के लिए रात में खुले आसमान के नीचे बैठें या अपनी बालकनी में बैठें जहां से आकाश दिख रहा हो और चंद्रमा के मंत्रों का जप करें। ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का निरंतर अगर आप जप करें खुले आसमान के नीचे, चंद्र के मंत्र का जप करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा।
कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी, परिवार में समस्याओं से बचिएगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं, यात्रा की स्थिति बन रही है, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता ना करें, दौड़ भाग आपकी बढ़ेगी, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो आज हमने बात की चंद्रमा की शुभता और अशुभता के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य के लिए एक लकी टिप। अगर ऑफिस में बहुत सारा काम करने के बावजूद आपको नाम और यश नहीं मिलता है तो जहां काम करते हैं अपने सामने उगते हुए सूर्य का चित्र लगाएं, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 14 जुलाई 2026 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। ऐसा अगर नित्य प्रातः करें तो बहुत अच्छा, और अगर 14 जुलाई को करें तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: हनुमान जी को गुरु कहा गया। और गुरु का काम जोड़ना, क्या काम है? सुग्रीव को राम जी से किसने मिलवाया, विभीषण को राम जी से किसने मिलवाया, बिछड़ी हुई माता जानकी जी को राम जी से किसने मिलवाया? बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी को, हनुमान जी ने, इन सबको हनुमान जी ने ही मिलवाया। हम इतना ही कह सकते, यदि आप भी राम जी से बिछड़ गए हो तो आपको भी हनुमान जी मिलवाए। ये पक्का है, ये पक्का है। और हनुमान जी जिसकी गारंटी ले ले, राम जी फिर उसका डाटा चेक नहीं करते। हाँ, जिसकी गारंटी हनुमान जी दे दें कि ये आदमी ठीक है, पर क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं होता। हाँ, ये पक्का है। विभीषण की गारंटी हनुमान जी ने ली, वेरिफिकेशन नहीं हुआ, वरना वेरिफिकेशन होता तो पता ये चलता कि जो शत्रु है उसका भाई है। बोले जो दुश्मन है उसका भाई है, और दुश्मन का भाई दुश्मन के ही समान, इस पे भरोसा करने लायक नहीं। पर हनुमान जी बोले नहीं नहीं, हमारी गारंटी। राम जी बोले हनुमान जी की गारंटी है, बस बस छोड़ो छोड़ो। और हमें लगता कि हनुमान जी ने सुग्रीव की गारंटी दी, पर बुरा ना मानना, सुग्रीव से बेहतर बाली था। आप ये सुन के बड़ा चौंकेंगे, सुग्रीव से बेहतर बाली था। और ये बात बहुत अप्रमाणित नहीं, बहुत प्रमाणित हम आपको कह पा रहे। सुग्रीव से जब राम जी मिले तो सुग्रीव क्या कहता? सुग्रीव कहता कि मंत्रिन सहित सहित एक बारा, एक बार हम मंत्रियों के सहित यहां बैठे थे, कोई नारी होती हुई चली जा रही थी, ऊपर से उसने कुछ आभूषण नीचे फेंके हैं, यदि आप कहो तो मैं दिखाऊं। भगवान बोले हाँ दिखाओ। और वो आभूषण माता जानकी जी के। तो राम जी बोले तुमने किया क्या? बोले हमने कुछ किया तो नहीं, हम तो विचार कर रहे थे कि ये स्त्री को ले जा रहा है। तो लक्ष्मण जी बोले तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? बोले हम क्यों बोले, उनका उनका मामला, क्या मसला, काहे को लफड़े में फंसे।
1: ऐसे बहुत लोग होते हैं, इसको सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लोग कहते हैं। ये ना नंबर एक के स्वार्थी है। आजकल लोगों के अंदर यही सबसे बड़ी दिक्कत हो गई, क्यों लफड़ों में फंसे।
0: अरे भाई, मानवता भी तो कुछ होती है। आजकल आदमी कोई किसी का साथ नहीं देता। हम बैठे थे, भोजन पा रहे थे, तो हमारी मां, मनीला वाली मां, फिलीपींस वाली मां, कह रही थी रोमा मां कि आजकल उसको कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ। हम प्रैक्टिकल, क्यों लफड़ों में फंसे।
1: अरे धत तेरे की ठटरी बराए ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ।
0: तुम सत्य को सत्य ना बोल पाओ तो तुमसे बेहतर तो रामचरित मानस का जटायु है। सुग्रीव से बेहतर जटायु था कि रावण ले जा रहा था, तब उसने रोती है खबरदार रावण, खबरदार, किसी अबला स्त्री को, अकेली स्त्री को ले जा रहा, सावधान, मैं जटायु जरूर हूं पर ले जाने नहीं दूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। जब तक सच में जटायु जमीन पर नहीं गिर गया तब तक लड़ता रहा रावण से। तो जटायु बेहतर है सुग्रीव से। बुरा ना मानना, वो व्यक्ति मरा हुआ है जो धर्म के लिए नहीं बोलता, भले ही वो जिंदा, मृतक मृतक सौ के समान है। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि आप कई बार बहुत कड़वी बातें बोल जाते हैं, यदि ना बोलेंगे तो शास्त्र हमको जीने नहीं देगा। साधु का धर्म है न्याय संगत बात करना, सत्य को सत्य बोलना, ये साधु का धर्म है। और उनसे तो बेहतर है जो नहीं बोलते। और ऐसे लोग जरूर कान खोल करके बात को सुने कि हम क्यों लखनऊ में पड़े, हम क्यों बोले। कई बार कुछ हो जाता, घटना हो जाती, भैया हमने नहीं देखा, उसने पूरा देखा, हमने कौन कोर्ट में जाए, कौन गवाही दे, उसकी दो गवाही दे देने से जिसने कांड किया है कम से कम उसको सजा तो मिल जाएगी, अपराधी को सजा तो मिलेगी। पर आज ये सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि कोई किसी के खिलाफ बोलना नहीं चाहता, इसलिए तो अपराध बढ़ गए। देखते जा रहे हैं, अपराध होते जा रहे हैं, आदमी चुप है। बुरा ना मानना, ये धर्म नहीं है, नैतिकता नहीं है, मानवता नहीं है। मानवता ये है यदि तुम्हारे कहने से सत्य उजागर हो सकता है तो कह देना चाहिए। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया सुग्रीव के ऊपर, तो बाली से बेहतर, सुग्रीव से बेहतर बाली, लेकिन सुग्रीव को राम जी मिले, बाली को ना मिले, बाली को तो मारा। कारण सिर्फ एक था, हनुमान जी। हनुमान जी कारण थे क्योंकि सुग्रीव का पक्ष लिया। तो सुग्रीव ने तो कुछ नहीं कहा, माता जानकी जी जब जा रही थी कुछ नहीं कहा, सुग्रीव तो बोले ही नहीं। और बाली यदि हमसे, हमने आपको प्रारंभ में कहा कि हम बाली बेहतर मानते, आप कहेंगे कि आप बड़ी अजीब कथा सुना रहे हैं। नहीं, बाली बेहतर, बाली ये हमने जो संतों से सुना वो बात कह रहे, हम कोई अपनी मन की बात नहीं कह रहे, संतों से जो हमने सुना, महापुरुषों से जो सुना उसकी बात कह रहे। बाली ने भी भगवान से कहा।

बाली को मारा, राम जी का बाण बाली के हृदय में लगा, छाती में, सीने में, तो गिर पड़ा। तो भगवान पहुंच गए। जैसे ही भगवान सामने गए तो बाली कहता, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं आपका बैरी कैसे हो गया और सुग्रीव कैसे प्रिय हो गया? आप तो समदर्शी, सबको समान देखते हो, पर मैं आपका दुश्मन कैसे हुआ? तो भगवान ने बहुत दलीलें दी, तर्क दिए, पर बाली पहली बार भगवान के तर्क खारिज किए, बाली इतने खतरनाक किए कि राम जी भी लगा कि जीतना मुश्किल है। हाँ, भगवान ने जो तर्क दिए, जरा वो सुनना। भगवान ने तर्क क्या दिया? भगवान ने कहा, पहली बात तो ये है, अनुज बधू भगनी सुतना

चार बेटी के समान स्त्रियां होती हैं। बाली बोला कौन कौन? राम जी बोले सुनो, अनुज बधू छोटे भाई की पत्नी, अनुज बधू भगनी यानी बहन, सुतनारी यानी बेटा की पत्नी, और बेटी, ये चार बेटियों के समान होती हैं। इनके ऊपर कुदृष्टि डालने वाला बेटी के ऊपर कुदृष्टि डालने जैसा पाप पाता है। और तुमने अपने भाई की पत्नी का को अपने पास रख लिया, रोमा को, अपनी भाई की पत्नी को अपने पास रख लिया, ये तुमने अपराध किया कि नहीं किया? ऐसी राम जी कह ही रहे थे कि वो धीरे से बोला, बाली बेट रुको रुको रुको रुको, पहली बात तो अनुज बधु जो है, हमने अपनी भाई की पत्नी को रखा, हमने कैसे रखा ये हमें पता। दूसरी बात, ये जो कायदे हैं ना, आपके में चलते हैं, हमारे में नहीं चलते। राम जी बोले मतलब? मुस्कुरा करके बाली कहता है लेटा लेटा कि आप नर हो हम मानव, और हर समाज का नियम अलग अलग होता है। कहीं पर ऐसा नियम होता है, हिमाचल में ऐसा नियम है, दो भाइयों की एक पत्नी हो सकती है। हाँ, हिमाचल में कई समाज में ऐसा नियम है, दो भाइयों की एक पत्नी हो सकती है। और महाभारत में भी ये नियम था, पांच पांडवों की एक पत्नी थी, पांच पति हो सकते। और राजाओं का ऐसा नियम था कि राज सत्ता में अनेक पत्नियां बहु पत्नियां हो सकती, दशरथ जी के ही तीन रानियां थी। तो समाज की बात है अपने अपने। अच्छा, उस नियम में फिर कानून भी कुछ नहीं बोलता, अपने अपने समाज का नियम होता है। तो राम जी से बोले सुनो, अपने अपने समाज की बात है, ये हमारे समाज में ऐसा चलता है। राम जी बोले ठीक है, मान लिया, पहली बार लगा के हमारी दलील विफल हो गई। तो राम जी ने दूसरी दलील दी, मूर्ख तो ही ए मूर्ख। बाली बोला हां बोलो।

0: अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, ये भी गलती की। बाली से भगवान दूसरी बात करें, दूसरी गलती की, क्या अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। तो बाली बोला, हमारी पत्नी ने क्या बोला? बोले वाह, जब तुमको सुग्रीव ललकार रहा था तो तुम्हारी पत्नी कह रही थी ना तारा, नाथ बाहर मत जाओ, ये सुग्रीव नहीं ललकार रहा, अंगद अभी अभी बता रहा था कि कोई बनवासी से इसकी दोस्ती हो गई है, कोई राम है उनसे दोस्ती हो गई है, तो ये अपने बल पे नहीं ललकार रहा, राम के बल पर ललकार रहा, मत जाओ। बाली बोला, पहले एक बात बताओ, ये हमारी पति पत्नी की बातें आपने सुनी कैसे? ये बेडरूम की बात थी, आपने कैसे सुनी, आपको कैसे पता? राम जी बोले, तुम्हें पता है हम कौन है? बाली बोले, बताओ कौन है? बोले, हम अखंड ब्रह्मांड नायक है, कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, बिन पद चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्राम बिनु वास असेखा, अस सब भात अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं मरनी। है रामचरितमानस, इसमें निराकार ब्रह्म के बारे में कहा कि बिन पद चले सुने बिन काना, बिना पैरों के चलता बिना कानों के सुनता, तो हम वहां थे और हमने सुन लिया।
1: बाली बोला, थैंक यू। भगवान बोले, मतलब?
0: बोले, कम से कम आपने एक्सेप्ट तो किया कि आप भगवान हो, अब हमको संतुष्टि हो गई कि भला। बाली बोला, प्रभु आपने चलो सुन मान लिया हमने, तो आपने ये नहीं सुना कि हमने कुछ कहा था?
1: भगवान बोले, क्या कहा था?
0: बोले, बा आपने सुना तो आपने वो नहीं सुना। बोले, क्या?
2: कहे बाली सुनो भीर प्रिय समदर्शी भगवान,
0: जब हमारी पत्नी ने कहा कि मत जाओ बाहर, वो बनवासी राम जी हैं भगवान, वो सुग्रीव की तरफ से लड़ने के लिए आए हो, तुम मारे जाओगे, तो आप कह रहे कि पत्नी की बात क्यों नहीं मानी, तो हमने ये भी तो पत्नी को कहा था कि यदि भगवान राम आए हैं तो वो समदर्शी हैं, समानता से देखेंगे, न उनको बाली प्रिय होगा न सुग्रीव प्रिय होगा, दोनों समान। इसलिए कारण कवन नाथ मुई मारा, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, इसलिए तो हम बाहर आए कि आप समदर्शी होगे, लेकिन बाहर आके पता लगा आपने बाण मार दिया, आप समदर्शी नहीं।
1: भगवान, अब भगवान को लगा ये भी दलील खारिज,
0: ये भी दलील गई, तो भगवान बोले, रुको,
1: हमारे ऊपर बहुत आरोप लगा लिए, अब हमारी भी सुनो।
0: क्या? भगवान बोले कि तुमने जो दूसरी प्रार्थना की थी हमने वो सुनी। बाली बोला, हमने दूसरी प्रार्थना कौन सी की?
1: बोले, वाह,
0: आपने अपनी पत्नी को एक बात बोली थी ना।
1: बोले, क्या?
0: जो कदापि मोहि मारिहि, यदि वो हमको मार भी दे, जो कदापि मोहि मारी है तो मैं हूं सनाथ, मैं अनाथ हूं, यदि राम जी मुझे मार दें तो हे पत्नी तुम मुझे समझना, मैं सनाथ हो गया, अनाथ नहीं रहा, सनाथ हो गया। भगवान बोले, तुमने ये जो प्रार्थना की उसी प्रार्थना के लिए हमने बाण मारा।
1: बाली बोला, गजब न्याय है आपका,
0: पहली वाली सुनी नहीं, लास्ट वाली मान ली। वाह प्रभु वाह वाह, मतलब हमने मारने वाली बात कही कि जो कदापि मोहि मारे हैं तो मैं हूं सनाथ, ये सुन लिया आपने, और ऊपर वाली सुनी नहीं कि समदर्शी रघुनाथ, ये सुनी नहीं, मारने वाली जल्दी सुन ली। वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह, अब हम समझ गए, हम समझ गए, मैं बेरी
2: सुग्रीव प्रिया,
0: हम समझ गए आपको, मैं बेरी हूं सुग्रीव प्रिय। भगवान बोले, बाली ऐसा है, ज्यादा दुखी हो तो मेरे पास एक उपाय है। बोले, क्या? हम अभी तीर बाहर निकाल के फिर से अमर होने का वरदान दे देते, लो ठीक है, अब ठीक है।
1: बोले, अब रहने दो, अब नहीं हमें जीना है।
0: क्यों? बोले, जिस मौत के लिए बड़े बड़े महात्मा तप करते हैं वो हमको ऐसे ही मिल गई ऑटोमेटिक, तो काय को बेफिजूली में अब जो है ये मौका गवाएं। बात भी सही है, रामचरितमानस में ऐसा लिखा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही, अंत समय राम नहीं कहे आता, जन्म जन्म अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जतन कराते पर अंत में राम कहां कही आता है। और बोले, हमारे तो सामने, हम लोग जब कीर्तन गाते तो भगवान से क्या प्रार्थना

0: हम लोग प्रार्थना में कहते गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले हैं, इधर नाम क्या लेना, तुम ही सामने खड़े हो। जिस नाम को लेकर प्राण निकलने की प्रार्थना स्तुति बड़े बड़े महात्मा करते हैं, तब जाकर के उनको भी ये अवसर सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, और हमको ऑटोमेटिक मिल गया है, तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक काम जरूर करो आप।
1: भगवान बोले बताओ। बोले एक नहीं दो।
0: भगवान बोले दो बताओ। पहली बार हारे हैं भगवान, दो बताओ। बाली कहता प्रभु पहला वरदान दो कि हमें भक्ति मिले आपकी। वाह क्या बढ़िया वरदान। अच्छा कुछ और मांगते तो भगवान और कुछ जल्दी दे देते, भक्ति थोड़ा देरी से देते। पूछो क्यों, पूछो क्यों? क्योंकि कुछ और मांगने में व्यक्ति फंसता और भक्ति देने में भगवान फंसते। ये घाटा है। तो भगवान इसलिए किसी को कुछ और मांगे कोई कि भाई कुछ और मांगो तो वो जल्दी दे देते हैं। भाई संतति मानो मांगो, संपत्ति मांगो, बहुत बढ़िया है, मांगो मांगो बेटा मांगो। क्या चाहिए? संपत्ति चाहिए, संतति चाहिए, घरवाली चाहिए, वाइफ, हाँ लो लो लो लो लो। क्या चाहिए? हस्बैंड, बहुत बढ़िया, मांगो मांगो मांगो, लो लो लो। पद चाहिए, कद चाहिए। पर कोई कह दे कि आप भक्ति चाहिए, मतलब आप चाहिए, वो थोड़ा खतरा होता है। क्योंकि अगर भक्त कोई भगवान का सेवक संपत्ति मांगता है तो उसको नाचना पड़ता, लेकिन कोई भक्ति मांगता है तो भगवान को नाचना पड़ता है, भगवान को नाचना पड़ता। और सच भी यही है, जब आप भागवत पढ़ो तो भागवत में ऐसा वर्णन आता है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाई निरंतर ध्यावे, ताही अहिर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहे अहिर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो भगवान को नाचना पड़ता है यदि कोई भक्ति मांगे तो। उस बाली ने पहला वरदान क्या मांगा? भक्ति दो और मुक्ति तो हमें हो ही जानी। किसी ने कान में बाली के कहा कि मुक्ति मांग। बोले अब इनके मरने से ही मुक्ति ना मिलेगी तो कहां मिलेगी। बोले वो नहीं मांगा, भक्ति दो। तो पहला वरदान भक्ति दो,
1: भगवान बोले भक्ति दी।
0: दूसरा बोले हमारी जो संतति है।
1: बोले कौन? बोले बेटा इसको अपनी सेवा में लगा।
0: ये वरदान बाली का गजब का था। पूरी दुनिया में ऐसा कोई वरदान किसी ने नहीं मांगा हो जो बाली ने मांगा। पहला तो भक्ति दो और दूसरा हमारी संतति को अपनी सेवा में लगा लो। प्रायः लोग क्या कहते हैं, हम दान पुण्य कर रहे हैं, बेटा तू बिजनेस कर, तू धंधा कर, तू इन लफड़ों में मत पड़, बाबा जी के चक्कर में मत पड़, बागेश्वर वालों के चक्कर में मत पड़, हम इनसे निपट लेंगे, हम बात करते हैं, हम तो मेरे लिए कुछ करते, पूजा पाठ कराते हैं, तू धंधा कर धंधा कर। लेकिन पहला बाली चतुर आदमी है जो कहता हे प्रभु हे नाथ आपने हमें सनात कर ही दिया है, अब हमारे बालक अंगद को अपनी सेवा में लगा लो, अपनी चरणों की सेवा में लगाओ। ये अद्भुत है, कोई अपनी संतति को भगवान की भक्ति में लगाने का वरदान मांगे, समझना वो ऊंचे खानदान का आदमी है। ये फायदे का सौदा है। तो इस दृष्टि से यदि बाली के इस वृतांत को सुना जाए तो सुग्रीव से बेहतर बाली है कि नहीं है? है। लेकिन भगवान ने साथ किसका दिया? क्यों? एक कारण है, सुग्रीव और विभीषण के जीवन में यदि राम जी का प्रभाव आया, राम जी आए, उसका एकमात्र कारण हनुमान जी है। हम आपसे कहना यह चाह रहे थे जब सुग्रीव के हनुमान जी के कारण सुग्रीव को हनुमान राम जी मिल सकते, तो हनुमान जी के कारण तुमको भी राम जी प्राप्त हो सकते।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
2: वायरल चौक में सबसे पहले वो तस्वीरें जो तालमेल का कमाल दिखाती है। इस मानव टावर को जरा देखिए, ये दही हांडी के वक्त बनने वाले गोविंदाओं के मानव पिरामिड को भी पीछे छोड़ रहे हैं। एक के बाद एक परत बनाते हुए ये पिरामिड जब हिलता है तो हर किसी की सांस थम जाती है, लेकिन उन्होंने मजबूती से एक दूसरे को पकड़ रखा है और सबने मिलकर अपने अटूट विश्वास और दृढ़ता से हिलते हिलाते इस पिरामिड को संभाल लिया है। यूं तो कौवे आजकल दिखाई नहीं देते, इसलिए एक फ्लैट की बालकनी में उड़कर आया एक कौवा और उसके प्रति फ्लैट की महिला की करुणा लोगों का दिल जीत रही है। भूखे प्यासे कौवे को दयालु महिला न सिर्फ पानी पिलाती है बल्कि उसे प्यार से खाना भी खिलाती है। उसका ये प्यार भरा काम सबके दिल को छू रहा है और बताता है कि दया भाव के ऐसे छोटे छोटे काम ही दुनिया को बेहतर बनाते हैं।
3: हेलो,
2: सोशल मीडिया पर वायरल है एक पत्नी की खुशी, जिसे देखकर लगभग हर पत्नी का दिल प्यार से भर आया है। बहुत दिनों बाद इनके पिया परदेश से लौटे हैं। ट्रेन से उतरते हुए महिला पति को चुपके से देखती है, खुशी से उछल जाती है और फिर पति को पीछे से सरप्राइज देती है। पति भी पत्नी को स्टेशन पर आया देख उसे गले से लगा लेता है। पति पत्नी की ये खुशी अब सामूहिक खुशी बन गई है। अब दुनिया के पटल पर पाकिस्तान की जो भिखारी छवि है, लगता है चीन ने उसकी तस्दीक कर दी है। चीन ने अपनी दोस्ती निभाते हुए पाकिस्तान को भीख मांगने वाला रोबोट मुहैया कराया है। ये रोबोट अब कटोरी लेकर सड़कों पर भीख मांगता नजर आ रहा है और बाकी के लोग उसे भीख दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर खूब वायरल है और दुनिया भर में इन तस्वीरों के जरिए यूजर्स हंस हंस कर लोटपोट हो रहे हैं। और अब इन तस्वीरों को देखिए, सोशल मीडिया पर विकास कार्यों की पोल खोलती ये तस्वीरें जमकर देखी जा रही है। पंजाब के मोगा में बेटियों को स्कूल पहुंचाने के लिए सरकार भले ही प्रतिबद्ध ना हो, लेकिन यहां की युवा प्रतिबद्ध है। वो बाढ़ के पानी में अपनी जान जोखिम में डालकर मानव श्रृंखला बनाकर लड़कियों और बच्चियों को सुरक्षित स्कूल पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों को देख लोग युवाओं की इस पहल को तो खूब सराहना कर ही रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार लोगों को खूब खरी खोटी भी सुना रहे हैं।
4: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
5: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
6: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
0: पर जब से ये फौजी 360 की आया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
7: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
5: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
8: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
9: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
5: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
10: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
5: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
11: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
5: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
12: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
13: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
12: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना क्या मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
5: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
10: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
5: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
8: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ। जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है। इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
5: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
14: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
8: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
15: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
16: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
5: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
17: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
5: फौजी 360

0: है और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा। आप अपनी समस्या बताइए, अगर आपको बात सही लगती है फौजी 360, आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
2: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं, तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है। मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं, बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं, तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
3: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी, तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था, उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
4: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: टीवी पे फौजी के बारे में देखा, तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
6: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में, घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
7: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
8: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दमो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब

0: शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
4: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है ड्रामा तो कहीं प्यार। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे,
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, Sage University, transforming your passion into profession.
9: मॉनसून के दिनों में भी जम्मू कश्मीर के केरन घाटी में बढ़ रही सैलानियों की भीड़, वादी की खूबसूरती को निहारने दूर दूर से आ रहे सैलानी। 6 दशक बाद गिर के जंगलों में फिर से गूंज रही है इंडियन ग्रे हॉर्नबिल पक्षियों की चहचहाहट, राज्य सरकार के री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट को मिली सफलता। ओडिशा के पुरी धाम में आस्था का सैलाब, रथ यात्रा से पहले आज भगवान जगन्नाथ भक्तों को देंगे नव यौवन दर्शन, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। प्रयागराज में आषाढ़ अमावस्या पर उमड़ा आस्था का जन सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई संगम की डुबकी, विधि विधान से की पूजा अर्चना। राजस्थान के सावलिया सेठ के भंडार से निकले 10 करोड़ 12 लाख रुपए, पहले चरण की गिनती पूरी, कल फिर से शुरू होगी भंडार की गणना।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
9: भगवान जगन्नाथ के करोड़ों भक्तों का खत्म होने वाला है इंतजार, एक दिन बाद 16 जुलाई को शुरू होगी रथ यात्रा, पूरी में उत्सव का माहौल। रथ यात्रा से पहले आज भगवान जगन्नाथ भक्तों को देंगे नव यौवन दर्शन, श्रद्धालु में जबरदस्त उत्साह, दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। मान्यता के अनुसार स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं और 15 दिनों तक दर्शन नहीं देते, इसके बाद जब वो स्वस्थ होकर पहली बार दर्शन देते हैं तो उसे नवयौवन दर्शन कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की तैयारियां पूरी, वो रथ भी है तैयार जिसमें सवार होकर महाप्रभु जगन्नाथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे। भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा का भी रथ सजकर हो गया है तैयार, यात्रा मार्ग की भी की जा रही है शानदार सजावट। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले हुई मॉक ड्रिल, कई एजेंसियों ने लिया इसमें हिस्सा। जवानों ने इमरजेंसी और आपदा से निपटने के लिए किया मॉक ड्रिल, सुरक्षा को भी परखा गया। इमरजेंसी के दौरान लोगों ने सड़क को किया खाली, मॉक ड्रिल में एनसीसी कैडेट्स ने भी लिया हिस्सा। पूरी रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए 12,000 पुलिसकर्मी ड्रोन और एंटी ड्रोन उपकरणों की तैनाती। भुवनेश्वर पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी निष्ठल आनंद सरस्वती रथ यात्रा में होंगे शामिल। पूरी में भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा उत्सव को सुरक्षित बनाने में जुटा प्रशासन, आपात स्थिति से निपटने के लिए समुद्र में मॉक ड्रिल करते दिखे लाइफगार्ड। लाइफगार्ड्स ने समुद्र के किनारे बीच पर रेस्क्यू का किया अभ्यास, आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा। आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी रेलवे स्टेशन का हुआ पुनर्विकास, प्रधानमंत्री 17 जुलाई को अत्याधुनिक सुविधाओं वाले मंगलागिरी रेलवे स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। अमृत भारत रेलवे स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत किया गया है रेलवे स्टेशन का विकास, प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे इसका लोकार्पण। दिल्ली के लोगों को बिजली के बिल में नहीं लगा सरचार्ज, नहीं बढ़ा पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट, ईंधन महंगा होने पे पीपीएसी के तहत बढ़ता है सरचार्ज। अहमदाबाद से सामने आई सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर, जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले मुस्लिम समुदाय ने मंदिर को भेंट किए सोने चांदी का बना रथ और 3 घोड़े। मुस्लिम समुदाय ने जमालपुर इलाके में स्थित जगन्नाथ मंदिर के महंत को सौंपे सोने और चांदी से बने रथ, महंत ने शॉल देकर और मिठाई देकर किया उनका सम्मानित। अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में स्थित जगन्नाथ मंदिर से 16 जुलाई को निकलेगी 149वीं भव्य दिव्य रथ यात्रा, हजारों लोग होंगे इसमें शामिल। जगन्नाथपुरी के बाद अहमदाबाद में निकाली जाती है देश की दूसरी सबसे भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा, मुस्लिम समुदाय पिछले 26 साल से भेंट कर रहा है चांदी का रथ। अहमदाबाद के कई मुस्लिम बहुल इलाकों से भी गुजरती है जगन्नाथ रथ यात्रा, रथ यात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोग भी होते हैं शामिल। पूरी की तरह लेक सिटी उदयपुर में भी निकलेगी भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा, 16 जुलाई को नगर भ्रमण पर निकलेंगे भगवान जगन्नाथ। उदयपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप, भक्तों का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलेंगे जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ। उदयपुर में जोरों पर चल रहा है भगवान जगन्नाथ के रथ को सजाने का काम, इस बार 95 किलो शुद्ध चांदी से बनाया गया है रथ, यात्रा मार्ग पर की जा रही है विशेष सजावट। उदयपुर में नीमच माता रोपवे पर आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों का लिया गया है जायजा, मॉक ड्रिल के जरिए पर की गई तैयारियां। जिला प्रशासन की देखरेख में आयोजित संयुक्त मॉक ड्रिल और रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ एसडीआरएफ समेत स्थानीय एजेंसियां हुई शामिल। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ के भंडार से निकले 10 करोड़ 12 लाख रुपए, पहले चरण की गिनती पूरी। आज आषाढ़ अमावस्या के दिन नहीं होगी भंडारे की गिनती, 15 जुलाई यानी कल होगी चेक, ऑनलाइन मिले दान और सोने चांदी के चढ़ावे की गिनती। आषाढ़ अमावस्या पर सावलिया सेठ के दर्शन के लिए सुबह से ही लगी भक्तों की लंबी कतारें, भक्तों ने लगाए सावलिया सेठ के जयकारे। प्रयागराज में आषाढ़ अमावस्या में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई संगम की डुबकी। श्रद्धालुओं ने आषाढ़ अमावस्या पर मां गंगा की उतारी आरती, विधि विधान से की पूजा अर्चना। उज्जैन में आषाढ़ अमावस्या पर बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए इसमें शामिल। जलाभिषेक के बाद भगवान महाकाल का किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार, अमावस्या पर बाबा को शेषनाग का रजत मुकुट, मुंड माला और फूलों की सुगंधित मालाएं पहनाई गई। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से ही लगी भक्तों की लंबी कतार, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। देहरादून से सोमनाथ के लिए विशेष रेल यात्रा रवाना, सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। 6 दिवसीय इस विशेष यात्रा में प्रदेश के विभिन्न वर्गों से लगभग 700 श्रद्धालु सहभागी बने, इसमें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी, संत समाज तथा समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि हुए शामिल। संबल के प्राचीन वंश गोपाल तीर्थ का 4.5 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है जीर्णोद्धार। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जीर्णोद्धार की रखी गई नींव। वंश गोपाल तीर्थ का बनेगा मुख्य द्वार, विश्राम कक्ष और महिला स्नान पर संभल में 68 तीर्थ और 19 कूपों को खोले जाने के बाद सीएम योगी ने तीर्थों को विकसित कराने का भी किया था ऐलान। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के लिए तैयारियां शुरू। सहारनपुर में डीएम एसएसपी ने अफसरों संग बनाई सुरक्षा और ट्रैफिक की रणनीति। श्रावण मास कांवड़ यात्रा और शिवरात्रि पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट में हुई समन्वय बैठक। कांवड़ यात्रा से जुड़े आयोजक और प्रतिनिधि रहे इसमें मौजूद। बिजनौर में कांवड़ यात्रा से पहले हाई अलर्ट, डीएम और एसपी ने पूरे रूट का किया निरीक्षण। सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर दिए कड़े निर्देश। बिहार में पर्यटन के नए युग की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म का किया शुभारंभ। 18 जुलाई से हेली टूरिज्म योजना की पहली उड़ान। पटना से प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए होगी हेली सेवा। लोग 5,000 रुपए खर्च करके हेलीकॉप्टर और छोटे विमान से वाल्मीकि नगर, राजगीर और कैमूर जैसे पर्यटन स्थलों की हवाई सैर कर सकेंगे। मुजफ्फरपुर में एक बुजुर्ग पेंशन भोगी के खाते में 7 अरब जमा हुए, लेकिन कुछ ही देर बाद बैलेंस जीरो हो गया। बैंक के मुताबिक सिस्टम में खराबी की वजह से ऐसा हुआ था।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
10: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है ड्रामा तो कहीं प्यार। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर
1: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हल्के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद, यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ। ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
2: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
4: TuneIn Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
5: Today, Achhi Khabar, Sachi Khabar.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
11: मॉनसून के दिनों में भी जम्मू कश्मीर की केरन घाटी में बढ़ रही सैलानियों की भीड़, वादी की खूबसूरती को निहारने दूर दूर से आ रहे सैलानी। छह दशक बाद गिर के जंगलों में फिर से गूंज रही है इंडियन ग्रे हॉर्नबिल पक्षियों की चहचहाहट, राज्य सरकार के री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट को मिली सफलता। ओडिशा के पुरी धाम में आस्था का सैलाब, रथ यात्रा से पहले आज भगवान जगन्नाथ भक्तों को दे रहे नवयौवन दर्शन, श्रद्धालुओं में दिख रहा जबरदस्त उत्साह। प्रयागराज में आषाढ़ अमावस्या पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई संगम की डुबकी, विधि विधान से की पूजा अर्चना। राजस्थान के सावलिया सेठ के भंडार से निकले 10 करोड़ 12 लाख रुपए, पहले चरण की गिनती पूरी, कल फिर से शुरू होगी भंडारे की गणना।

हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है। करोड़ों श्रद्धालु माँ प्रभु के दर्शन के लिए उमड़ेंगे। जितनी प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है उतना ही रहस्यमय ये धाम है, जो चमत्कारों और गुप्त रहस्यों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। जहाँ ध्वज हवा की विपरीत दिशा में लहराता है और शिखर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती, ऐसे ना जाने कितने ही रहस्य इस पवित्र धाम से जुड़े हुए हैं। यहाँ से भौगोलिक नियम ही नहीं बदलते बल्कि सदियों से चली आ रही रस्में इंसानी सोच को भी हैरान कर देती है। आखिर क्या है इन चमत्कारों के पीछे का सच? क्या ये महज कोई संयोग है या फिर साक्षात ईश्वर की कोई अलौकिक शक्ति? अगले आधे घंटे में ऐसे कई रहस्यों के बारे में आप जानेंगे, बस आप बने रहिए हमारे साथ।

0: एक ऐसा स्थान जहाँ विज्ञान के नियम घुटने टेक देते हैं, एक ऐसा शिखर जहाँ कुदरत का हर कायदा समझ से परे हो जाता है, एक ऐसा रहस्य जहाँ कदम रखते ही भौतिक विज्ञान के नियम भी बेअसर हो जाते हैं। ये सिर्फ एक भव्य पूजा स्थल नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर का वो चमत्कार है जिसके आगे विज्ञान भी हाथ जोड़कर खड़ा है। ये है ओडिशा के पुरी में बना भगवान जगन्नाथ का पवित्र धाम। करीब 4 लाख स्क्वायर फीट में फैला यह वो दिव्य साम्राज्य है जहां स्वयं नारायण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ इंसानी रूप में लीला करते हैं। आध्यात्म के इस समंदर में जितने चमत्कार आस्था के हैं, उससे कहीं ज्यादा अजूबे इस मंदिर की वास्तुकला के हैं। पुरी का ये जगन्नाथ मंदिर अपने आप में न जाने कितने ही चमत्कारों को समेटे हुए है। कहते हैं कि जहां इंसानी दिमाग की सीमाएं खत्म हो जाती हैं, महाप्रभु जगन्नाथ की जादुई लीला वहीं से शुरू होती है। ऐसा ही एक चमत्कार मंदिर के शिखर पर मौजूद सुदर्शन चक्र से भी जुड़ा है। शिखर पर लगा टनों भारी सुदर्शन चक्र किसी अजूबे से कम नहीं। आप अगर पुरी में हैं और जगन्नाथ मंदिर की ओर निहार रहे हैं तो आपका हैरान होना लाजमी है, क्योंकि आप पुरी के किसी भी कोने में खड़े होकर इसे देखें, इसका मुंह हमेशा आपकी तरफ ही नजर आता है। अगर आप सोच रहे हैं कि सुदर्शन चक्र से जुड़ा ये एक लौता रहस्य है तो जरा ठहरिए। यहाँ विज्ञान को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब दोपहर की चमचमाती धूप में भी इस विशालकाय मंदिर की परछाई जमीन पर नहीं बनती। रोशनी का ये नियम यहाँ आकर दम तोड़ देता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कोई नहीं जानता। सिर्फ जानता है तो इतना कि ये महाप्रभु की लीला है। जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर शान से लहरा रहा ध्वज इसकी शान है। भले ही ये देखने में सामान्य सा लगता हो, लेकिन इसकी खूबी है कि ये हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। अगर हवा पूरब की तरफ बह रही हो तो झंडा दक्षिण की तरफ फहराएगा। इसी मंदिर के परिसर में लगे दूसरे झंडे हवा के हिसाब से लहराते हैं, लेकिन मंदिर का मुख्य ध्वज इनके विपरीत लहरा रहा होता है। एक पुजारी मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर लगे झंडे को रोज बदलता है। इसके लिए गुंबद पर उल्टे चढ़ना होता है। मान्यता है कि अगर एक दिन भी ये नियम टूटा तो मंदिर के कपाट अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएंगे। आधुनिक दुनिया में सरकारें वीआईपी इलाकों को नो फ्लाई जोन बनाती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर को कुदरत ने खुद ये दर्जा दिया है। इस मंदिर के ऊपर से आज तक किसी पक्षी को उड़ते नहीं देखा गया। यहाँ तक कि विमान भी मंदिर के ऊपर से उड़कर नहीं निकल पाते। मंदिर के ऊपर जब ड्रोन कैमरे उड़ाने की कोशिश की जाती है तब वो भी मुख्य गुंबद के पास पहुँचने से थोड़ा पहले ही दूसरी दिशा में मुड़ जाते हैं। माना जाता है कि मंदिर के गर्भगृह का चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि कोई भी इसे पार करके निकल नहीं सकता। महाप्रभु के दर्शन करने के लिए जब आप इस भव्य और दिव्य मंदिर में दाखिल होते हैं तो उसके लिए आपको जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार को पार करना पड़ता है। इस मुख्य द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का मंदिर लगभग समंदर किनारे मौजूद है। इसलिए सिंह द्वार में दाखिल होने से पहले तक आपको समंदर की लहरों का शोर साफ सुनाई देता है, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर कदम रखते हैं समंदर की वो कर्जना पूरी तरह गायब हो जाती है। लहरों के टकराने की तेज आवाज जैसे खामोश हो जाती है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। मनुष्य चाहे जितनी तरक्की कर ले, ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को सुलझाने का दावा कर ले, लेकिन महाप्रभु के इस दरबार में आकर उसकी हर तकनीक, हर दावा और हर थ्योरी बेमानी साबित होती है। महाप्रभु के सम्मान में यहाँ हवाएं अपना रुख बदलती हैं, परछाई अपना वजूद खो देती है और समंदर भी अपनी सीमा नहीं लांघता। ये महज एक मंदिर नहीं बल्कि वो पवित्र धाम है जहाँ जग के नाथ यानी भगवान जगन्नाथ की अनंत और अजन्मी महिमा और आभा हिलोरे मारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण का इकलौता मंदिर है जहां वो अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। समुद्र तट पर मौजूद ये मंदिर भगवान विष्णु के आठवें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। देखिए, मान्यता है कि यहां स्थापित श्री कृष्ण की काट की मूर्ति में आज भी उनका दिल धड़कता है। ये मंदिर सिर्फ रहस्यों का भंडार नहीं बल्कि यहाँ कई ऐसे रस्में और परंपराएं भी हैं जो अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है। उन्हीं में से एक है नवकलेवर और बनकलगी अनुष्ठान, जिसके लिए मंदिर को 4 से 5 घंटों के लिए बंद कर दिया जाता है और भक्तों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित होता है। जगन्नाथ धाम में सदियों से यह अनुष्ठान इतनी ही गोपनीयता के साथ किया जा रहा है।

0: महाप्रभु जगन्नाथ का ये पावन धाम सनातन संस्कृति का वो अलौकिक दरबार जहाँ ना जाने कितने ही अनसुलझे रहस्य मौजूद है। मंदिर की वास्तुकला जितनी अद्भुत है उतनी ही हैरान करने वाली है यहाँ की सदियों पुरानी गुप्त रस्में। आमतौर पर हिंदू धर्म में देवी देवताओं की मूर्तियाँ पत्थर या धातु की होती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण, बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्तियाँ नीम की लकड़ी यानी काष्ठ से बनी है। यही वजह है कि भगवान जगन्नाथ के इस पवित्र धाम में समय समय पर मूर्तियों को बदलने और उनके श्रृंगार की बेहद अनूठी परंपराएं निभाई जाती है। नवकलेवर यानी जगन्नाथ मंदिर की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण परंपरा। उड़िया भाषा में इसका अर्थ है नया शरीर धारण करना। ये रस्म हर 12 से 15 साल के बीच तब निभाई जाती है जब हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने में अधिक मास यानी 2 आषाढ़ पड़ते हैं। इस दौरान पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का सबसे रहस्यमय और गोपनीय हिस्सा है ब्रह्म पदार्थ। मान्यता है कि ये ब्रह्म पदार्थ भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ हृदय है। जब मुख्य पुजारी इस गुप्त रस्म को अंजाम देते हैं, तब पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है, मंदिर में भी अंधेरा कर दिया जाता है, साथ ही मंदिर की सुरक्षा को हर तरफ से मजबूत किया जाता है। चयनित पुजारियों की आंखों पर रेशम की पट्टी बांधकर मंदिर में भेजा जाता है ताकि कोई भी इस दिव्य ऊर्जा को साक्षात ना देख सके। मूर्तियों में से ब्रह्म पदार्थ निकाला जाता है और ध्यान से नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। कहा जाता है कि इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा होती है कि इसे देखने वाला अंधा हो सकता है। हालांकि इसे आज तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया जगन्नाथ मंदिर में सदियों से चली आ रही है। बनकलगी दिव्य श्रृंगार। नवकलेवर की तरह ही मंदिर में कुछ दिनों के अंतराल पर एक और बेहद महत्वपूर्ण और गुप्त रस्म निभाई जाती है, जिसे बनकलगी या श्री मुख श्रृंगार कहा जाता है। इस रस्म के दौरान महाप्रभु जगन्नाथ का विशेष श्रृंगार किया जाता है। बनकलगी एक पूरी तरह से गुप्त अनुष्ठान है, जिस दौरान करीब 4 से 5 घंटे के लिए मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इस श्रृंगार में केवल प्राकृतिक और दुर्लभ रंगों का उपयोग किया जाता है, जिसमें शंख का सफेद पाउडर, कस्तूरी, केसर और हिंगुल जैसी सामग्रियां शामिल होती है। ये दिव्य रंग न सिर्फ भगवान के श्री मुख को अलौकिक आभा देते हैं, बल्कि काष्ठ की मूर्तियों को सुरक्षित रखने का काम भी करते हैं। इस विशेष रस्म को दत्त महापात्र कहे जाने वाले विशेष पुजारियों का समूह अंजाम देता है। दरअसल रोजाना होने वाले बनाव श्रृंगार और पूजा पाठ की प्रक्रिया से काष्ठ की देव प्रतिमाओं पर असर पड़ता है। ऐसे में देव प्रतिमाओं के सजीले रूप को संवारने और बनाए रखने के लिए वर्ष में एक बार इस अनुष्ठान को किया जाता है। इस अनुष्ठान में कुदरत के रंगों का जादू ऐसा बरसता है कि इसके बाद देव प्रतिमाओं का मुख मंडल कस्तूरी केसर सा जगबगाता है, जिसे देख आस्थावानों को लगता है मानो ब्रह्मांड की सारी रंगत तीनों देवों के मुख पर उतर आई हो। जगन्नाथ धाम में सदियों से हर वर्ष बेहद गोपनीयता और श्रद्धा के साथ दिव्य नवकलेवर और बनकलगी अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: जितनी प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है उतनी ही अद्भुत है उनके मंदिर की रसोई। ऐसी रसोई जिसे दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई कहा जाता है, जहां हर दिन हजारों भक्तों का प्रसाद बनता है, लेकिन ना कभी प्रसाद कम पड़ता है और ना ही कभी बचता है। आस्था, परंपरा और रहस्य से जुड़ी इस अनोखी रसोई की कहानी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।

पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर का रोसा घर, दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई, जो न केवल अपनी प्राचीन परंपराओं के लिए जानी जाती है बल्कि इस रसोई से जुड़े रहस्यों का जवाब आज भी लोगों के पास नहीं है। एक ऐसी रसोई जहां हर दिन महाप्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के लिए भोग तैयार होता है। इस रसोई में सैकड़ों पारंपरिक रसोइये और उनके सहयोगी पीढ़ियों से सेवा करते आ रहे हैं, जिसकी बदौलत यही प्रसाद हजारों श्रद्धालुओं तक महाप्रसाद बनकर पहुंचता है। जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु जगन्नाथ को 56 भोग लगाए जाते हैं, जिन्हें दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। सुखिला प्रसाद, ये सूखा प्रसाद होता है जिसे श्रद्धालु लंबे समय तक रख सकते हैं और अपने साथ घर ले जा सकते हैं। तो वहीं दूसरा है शकुंडी प्रसाद, ये पका हुआ भोजन होता है जिसे मंदिर के आनंद बाजार में मिट्टी के बर्तनों में परोसा जाता है। जितना खास रसोई में तैयार किया प्रसाद होता है, उसे बनाने की विधि उससे भी ज्यादा खास है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में आज भी भोजन गैस या बिजली पर नहीं बल्कि मिट्टी के चूल्हों पर लकड़ी की आग में पकाया जाता है। रसोई में परंपरागत तरीके से मिट्टी के बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर खाना पकाया जाता है, जहां लकड़ी की आंच पर कई बर्तन एक साथ चढ़ाए जाते हैं, लेकिन आस्था और परंपरा के अनुसार सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पक जाता है और फिर इसके बाद नीचे का बर्तन। ये नजारा आज भी लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना रहता है, जिसमें एक के ऊपर एक साथ मिट्टी के सात घड़े रखे जाते हैं। इस विधि में इस्तेमाल होने वाले मिट्टी के बर्तनों को कुड़ुआ कहा जाता है। ये बर्तन कुम्हारों की ओर से विशेष रूप से मंदिर के लिए बनाए जाते हैं। प्रसाद पकाने के लिए केवल सूखी लकड़ियों का ही उपयोग होता है। आंच को बहुत तेज नहीं किया जाता बल्कि एक नियंत्रित तापमान पर भाप को ऊपर भेजा जाता है। श्रद्धालुओं के बीच मान्यता है कि सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पकता है, जबकि सामान्य तौर पर नीचे वाला बर्तन पहले गर्म होता है। एक बार भोजन पकने के बाद इन बर्तनों को तोड़ दिया जाता है। शुद्धता को ध्यान में रखते हुए इन बर्तनों को दोबारा रसोई में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो वहीं एक और खास मान्यता जगन्नाथ स्वामी के इस दरबार से जुड़ी है। कहते हैं यहाँ बनने वाला महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और न ही व्यर्थ हो जाता है। श्रद्धालुओं की संख्या चाहे जितनी हो, महाप्रभु की कृपा से सभी को प्रसाद मिल जाता है। यही विश्वास इस रसोई को दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बनाता है। रथ यात्रा के दौरान जब लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं, तब इसी विशाल रसोई की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। फिर भी सदियों पुरानी व्यवस्था, अनुशासन और सेवा भाव के साथ महाप्रभु का भोग और श्रद्धालुओं का महाप्रसाद बिना रुके चलता रहता है। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ के लिए महाभोग का प्रसाद तैयार करने

मंदिर की ये रसोई सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई ही रही, बल्कि सनातन परंपरा, सेवा और समर्पण की जीवंत मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: Spectrum Business delivers commitment with every connection across the country. Like in Milwaukee, our invincible Wi-Fi with 8-hour battery backup keeps business at this bar flowing even when the power goes out. And in Austin, our fast, reliable internet helps this gym stream classes all day.
1: One more, let's go.
0: Or in Albany, this vet clinic gets 100% U.S.-based support right when they need it, so they can focus on their most demanding patients. We turn service into partnership. Spectrum Business. Restrictions apply. Service is not available in all areas.
2: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
3: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे।
5: वायरल चौक में सबसे पहले वो तस्वीरें जो तालमेल का कमाल दिखाती है। इस मानव टावर को जरा देखिए, ये दही हांडी के वक्त बनने वाले गोविंदाओं के मानव पिरामिड को भी पीछे छोड़ रहे हैं। एक के बाद एक परत बनाते हुए ये पिरामिड जब हिलता है तो हर किसी की सांस थम जाती है, लेकिन उन्होंने मजबूती से एक दूसरे को पकड़ रखा है और सबने मिलकर अपने अटूट विश्वास और दृढ़ता से हिलते हिलाते इस पिरामिड को संभाल लिया है। यूं तो कौवे आजकल दिखाई नहीं देते, इसलिए एक फ्लैट की बालकनी में उड़कर आया एक कौवा और उसके प्रति फ्लैट की महिला की करुणा लोगों का दिल जीत रही है। भूखे प्यासे कौवे को दयालु महिला न सिर्फ पानी पिलाती है बल्कि उसे प्यार से खाना भी खिलाती है। उसका ये प्यार भरा काम सबके दिल को छू रहा है और बताता है कि दया भाव के ऐसे छोटे छोटे काम ही दुनिया को बेहतर बनाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल है एक पत्नी की खुशी, जिसे देखकर लगभग हर पत्नी का दिल प्यार से भर आया है। बहुत दिनों बाद इनके पिया परदेश से लौटे हैं। ट्रेन से उतरते हुए महिला पति को चुपके से देखती है, खुशी से उछल जाती है और फिर पति को पीछे से सरप्राइज देती है। पति भी पत्नी को स्टेशन पर आया देख उसे गले से लगा लेता है। पति पत्नी की ये खुशी अब सामूहिक खुशी बन गई है। अब दुनिया के पटल पर पाकिस्तान की जो भिखारी छवि है, लगता है चीन ने उसकी तस्दीक कर दी है। चीन ने अपनी दोस्ती निभाते हुए पाकिस्तान को भीख मांगने वाला रोबोट मुहैया कराया है। ये रोबोट अब कटोरी लेकर सड़कों पर भीख मांगता नजर आ रहा है और बाकी के लोग उसे भीख दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर खूब वायरल है और दुनिया भर में इन तस्वीरों के जरिए यूजर्स हंस हंस कर लोटपोट हो रहे हैं। और अब इन तस्वीरों को देखिए, सोशल मीडिया पर विकास कार्यों की पोल खोलती ये तस्वीरें जमकर देखी जा रही है। पंजाब के मोगा में बेटियों को स्कूल पहुंचाने के लिए सरकार भले ही प्रतिबद्ध ना हो, लेकिन यहां के युवा प्रतिबद्ध है। वो बाढ़ के पानी में अपनी जान जोखिम में डालकर मानव श्रृंखला बनाकर लड़कियों और बच्चियों को सुरक्षित स्कूल पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों को देख लोग युवाओं की इस पहल को तो खूब सराहना कर ही रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार लोगों को खूब खरी खोटी भी सुना रहे हैं।
3: गुड न्यूज़ टुडे

0: अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है ड्रामा तो कहीं प्यार। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
1: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
2: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
6: कर्नाटक में बनेगी देश की पहली सरकारी AI यूनिवर्सिटी। सीएम डीके शिवकुमार ने की घोषणा, कर्नाटक को जिम्मेदार AI के ग्लोबल हब के तौर पर पेश करने की है योजना। ओडिशा के पुरी धाम में आस्था का सैलाब, रथ यात्रा से पहले आज भगवान जगन्नाथ भक्तों को देंगे नव यौवन दर्शन, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। प्रयागराज में आषाढ़ अमावस्या पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में डुबकी, विधि विधान के साथ किया पूजा पाठ। राजस्थान के सावलिया सेठ के भंडार से निकले 10 करोड़ 12 लाख रुपए, पहले चरण की गिनती पूरी, कल फिर से शुरू होगी भंडारे की गणना। मॉनसून के दिनों में जम्मू कश्मीर की कैरन घाटी में बढ़ रही सैलानियों की भीड़, वादी की खूबसूरती को निहारने दूर दूर से आ रहे सैलानी। छह दशक बाद गिर के जंगलों में फिर से गूंज रही है इंडियन ग्रे हॉर्नबिल पक्षियों की चहचाहट, राज्य सरकार के री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट को मिली सफलता।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
6: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिलदेव।
7: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है, हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
6: भगवान जगन्नाथ के करोड़ों भक्तों का खत्म होने वाला है इंतजार, एक दिन बाद 16 जुलाई को शुरू होगी रथ यात्रा, पुरी में उत्सव का माहौल। रथ यात्रा से पहले आज भगवान जगन्नाथ भक्तों को देंगे नव यौवन दर्शन, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले मॉक ड्रिल, कई एजेंसियों ने हिस्सा लिया। जवानों ने इमरजेंसी आपदा से निपटने के लिए किया मॉक ड्रिल, सुरक्षा को भी परखा। पूरी रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए 12,000 पुलिसकर्मी, ड्रोन और एंटी ड्रोन उपकरणों की तैनाती की गई।
7: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ के भंडार में से निकले 10 करोड़ 12 लाख रुपए, पहले चरण की गिनती पूरी। आषाढ़ अमावस्या पर सांवलिया सेठ के दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार, भक्तों ने लगाए सांवलिया सेठ के जयकार। प्रयागराज में आषाढ़ अमावस्या पर उमड़ा आस्था का जन सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में डुबकी। उज्जैन में आषाढ़ अमावस्या पर बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। वहीं देहरादून से सोमनाथ के लिए विशेष रेल यात्रा रवाना, सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। संभल के प्राचीन वंश गोपाल तीर्थ का 4.5 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा जीर्णोद्वार, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जीर्णोद्वार की रखी गई नींव। वंश गोपाल तीर्थ का बनेगा मुख्य द्वार, विश्राम कक्ष और महिला स्नान घर। संभल में 68 तीर्थ और 19 कूपों को खोजे जाने के बाद सीएम योगी ने तीर्थों को विकसित करवाने का ऐलान किया था। यूपी में कांवड़ यात्रा के लिए तैयारियां शुरू, सहारनपुर में डीएम एसएसपी ने अफसरों संग बनाई सुरक्षा और ट्रैफिक की रणनीति। श्रावण मास कांवड़ यात्रा और शिवरात्रि पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए कलेक्ट्रेट में हुई समन्वय बैठक, कांवड़ यात्रा से जुड़े आयोजक और प्रतिनिधि रहे मौजूद। बिजनौर में कांवड़ यात्रा से पहले हाई अलर्ट, डीएम और एसपी ने पूरे रूट का निरीक्षण किया, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए दिशा निर्देश। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का किया उद्घाटन, लोगों को किया सम्मानित। उदयपुर में आपदा और इमरजेंसी से निपटने के लिए नीमच माता रोपवे पर मॉकड्रिल, एनडीआरएफ एसडीआरएफ समेत कई टीमों ने लिया हिस्सा। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज जाएंगे अंतरिक्ष स्टेशन कजाकिस्तान के बैकुनूर कॉस्मोड्रोम से, दो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जाएंगे आईएसएस। सेना के मेजर दीपक कुमार ने पूरी की दुनिया की सबसे ऊंची अल्ट्रा मैराथन, मेजर दीपक ने पूरा किया 70 किलोमीटर का मुश्किल उमलिंगला चैलेंज। वहीं देश के जेम्स एंड ज्वेलरी निर्यात में 34.66% की उछाल, एक साल में 1.79 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2.41 बिलियन डॉलर पहुंचा जेम्स एंड ज्वेलरी का निर्यात। 7 साल के बाद फिर से बड़े पर्दे पर गोविंदा की एंट्री, फिल्म रूपा और दुनियादारी में आएंगे नजर, मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोविंदा ने दी इसकी जानकारी। ऑपरेशन सफेद सागर का टीजर रिलीज, कारगिल युद्ध के दौरान इंडियन एयरफोर्स के मुश्किल ऑपरेशन को दिखाएगी सीरीज। वेब सीरीज आदर्श बाल विद्यालय का ट्रेलर रिलीज हो गया है, अभिमन्यु सिंह, अर्चना पूरन सिंह, नवीन कस्तूरिया और प्रसन्ना आपको नजर आएंगे 24 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, Amazon Prime पर आपको दिखाई देगी। इम्तियाज अली की बेटी ईदा ने बॉयफ्रेंड के साथ की सगाई, ईदा ने इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें। परिवार के साथ लंदन वेकेशन पर दिखी प्रियंका चोपड़ा, बेटी मालती ने निकाले मां के बालों के क्लिप, सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
1: 25 अच्छी खबरों के बाद खबर विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। तो चलिए ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ आज अपने भक्तों को दे रहे नवयौवन दर्शन। बड़ी संख्या में उमड़ रहे भक्त, कल से शुरू होने जा रही ये रथ यात्रा। आषाढ़ अमावस्या पर पवित्र नदियों में लगाई जा रही आस्था की पवित्र डुबकी, प्रयागराज संगम पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। आज आईएसएस के लिए रवाना होंगे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन। कजाकिस्तान के बैकुनूर कॉस्मोड्रोम से दो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भरेंगे उड़ान। भारत और इंग्लैंड के बीच में 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज बर्मिंघम में दोपहर 3:30 बजे से होगा ये मैच। रोहित विराट बुमराह के आने से टीम इंडिया के हौसले बुलंद। करगिल जंग में भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की महागाथा 7 अगस्त को ओटीटी पर दिखेगी ऑपरेशन सफेद सागर में वायुसेना के जाबाजी की दास्तान।

0: और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। 26 जुलाई भारत के सैन्य इतिहास में दर्ज वो तारीख जब भारतीय सेना ने कारगिल जंग में पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज की थी और कारगिल की चोटियों पर शान से तिरंगा लहराया था। आज से करीब 27 साल पहले 1999 में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ ये अभियान चलाया जिसे हम सब ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं।
1: सिल्वर स्क्रीन पर LOC कारगिल, शेरशाह समेत ऑपरेशन विजय से प्रेरित कई फिल्में अब तक रिलीज हो चुकी हैं जिनमें हमने भारतीय सेना की शौर्य और जाबाजी देखी, लेकिन इसी कारगिल जंग में भारतीय वायुसेना ने भी अपना सबसे खतरनाक हवाई मिशन शुरू किया था जिसे ऑपरेशन सफेद सागर के नाम से जाना जाता है। वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने इस जंग में पहली बार इजरायली लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया था
0: और इसी के साथ टाइगर हिल पर बने दुश्मन के बंकरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। भारतीय वायुसेना के इस शौर्य पराक्रम की झलक 2020 में आई फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में दिखी थी, लेकिन अब नेटफ्लिक्स भारतीय वायुसेना की इस गौरव गाथा पर पहली बार एक सीरीज लेकर आ रहा है, ऑपरेशन सफेद सागर, जिसमें वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की ये पूरी गाथा आप विस्तार से देख पाएंगे। जिमी शेरगिल, अभय वर्मा, सिद्धार्थ जैसे कलाकारों की ये सीरीज 7 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।

0: वो तारीख जब भारतीय वायु सेना ने कारगिल की पहाड़ियों पर छिपे पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ अपने सबसे जाबाज और खतरनाक हवाई मिशन शुरू किया था, ऑपरेशन सफेद सागर। दुनिया के सबसे मुश्किल मिशनों में से एक। मुश्किल इसलिए कि दुनिया में किसी भी देश की वायु सेना ने इससे पहले इतनी ऊंचाई पर जंग नहीं लड़ी थी। अब तक भारतीय वायु सेना तोसा मैदान फायरिंग रेंज में 10,000 फीट की ऊंचाई पर अभ्यास करती थी, लेकिन कारगिल में दुश्मन 14,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर बैठा था। घुसपैठ का दायरा पश्चिम में दराज से लेकर पूर्व में बटाली तक फैला हुआ था। एयरफोर्स के पायलटों को 15,000 से 18,000 फीट की पहाड़ी की दुर्गम चोटियों पर बम बरसाने थे, ये काम आसान नहीं था। एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन में बड़ी मुश्किलें थी, लेकिन भारतीय सेना की मदद और पाकिस्तानी घुसपैठ को खदेड़ने के लिए भारतीय वायु सेना ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू कर दिया। 26 मई की सुबह MiG-21, MiG-23 और MiG-27 ने घुसपैठियों के शिविरों और उनके सामान और आपूर्ति मार्ग पर हमला किया। ये सभी इलाके दरास, कारगिल और बटालिक के आसपास के थे। ये पूरा हिमालयी क्षेत्र बर्फ से ढका होने की वजह से सफेद समुद्र जैसा नजर आता था, इसीलिए इसे ऑपरेशन सफेद सागर का कोड नेम दिया गया। इस ऑपरेशन के कामयाब होने के लिए हमलों का सटीक होना बेहद जरूरी था। पहाड़ों की बनावट ऐसी थी कि अगर कोई बम अपने निशाने से 50 मीटर भी चूक जाता तो 2 किलोमीटर दूर जाकर गिरता था। इतनी ऊंचाई पर हमलावर हेलीकॉप्टर सही से काम नहीं कर रहे थे। दुश्मन ऊंचाई पर था और इसीलिए एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइलों का निशाना बनने का भी खतरा था, लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद लड़ाकू विमानों ने पूरे सेक्टर में लगातार हमले जारी रखे। 16 जून 1999 को भारतीय वायु सेना ने मुंथो ढालो में पाकिस्तानी लॉजिस्टिक्स कैंप का पता लगाया। इसके बाद ऑपरेशन में एंट्री हुई वायु सेना के गेम चेंजर विमान मिराज 2000 की, जिसने जंग में पूरी कहानी बदल दी। वायु सेना के इंजीनियरों ने रातों रात विमान पर लेजर गाइडेड बमों को फिट किया। ये पहली बार था जब भारतीय लड़ाकू विमानों से इतनी ऊंचाई पर लेजर गाइडेड बमबारी करने वाला था। मिराज 2000 ने 250 किलोग्राम के बमों से कारगिल की चोटी पर सुरक्षित बनाए गए पाकिस्तानी कैंप पर हमला किया और पाकिस्तानी कैंप को नष्ट कर दिया। मिराज के साथ साथ जगुआर लड़ाकू विमानों ने मुश्को घाटी में भी जमकर गाइडेड बम दागे। इन हमलों से बटालिक में पाकिस्तानी सेना की कमर टूट गई। मिराज 2000 विमानों ने सटीक हमलों से ऐसा कहर ढाया कि पाकिस्तानी फौज घुटने टेकने पर मजबूर हो गई और भारतीय वायु सेना की मदद से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए कारगिल की लड़ाई जीत ली।
1: लो फ्लाई करके फोटो खींचना।
0: भारतीय वायु सेना की यही गौरव गाथा अब नेटफ्लिक्स पर 7 अगस्त को ऑपरेशन सफेद सागर सीरीज में दिखाई जानी है। ऑपरेशन सफेद सागर के टीजर में वायु सेना के फैसले लेने की प्रक्रिया, पायलट की ट्रेनिंग और युद्ध के मैदान की असलियत दिखाई गई है। इस शो की शूटिंग भारतीय वायु सेना के ऑपरेशनल बेस पर बड़े पैमाने पर की गई है और इसमें बिग एयरक्राफ्ट और वायु सेना के जवान शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए अब बात कर लेते हैं फिल्म उत्तर द पुत्तर की। ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो कि 24 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। ये फिल्म अंधविश्वास, वास्तु और वैज्ञानिक सोच के बीच भी लड़ाई पर आधारित है। दरअसल इसमें मुख्य भूमिका में अनु कपूर के अलावा बृजेंद्र काला और पवन मल्होत्रा नजर आएंगे।
3: और देखिए क्या कुछ खास होने वाला है इस फिल्म में। उनसे बातचीत की हमारी सहयोगी प्रांजलि ने, सुनिए जरा।
4: एक है फिजिक्स, एक है मेटाफिजिक्स.
5: When are you going to get out of all these superstitions?
6: अब ये सुपरस्टिशन नहीं है, this is metaphysics. Planetary position. अगर ग्रह आपके अच्छे हो तो ऊपर वाला छप्पर फाड़ के दे देता है, और अगर आपके ग्रह खराब चल रहे हो तो ऊपर वाला.
7: आपके साथ मैं हूँ प्रांजलि सेठी, एक एक्टर, सिंगर, होस्ट और एक स्टोरी टेलर. आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं जिन्होंने हर जगह अपनी एक नई पहचान बनाई है, हर जगह अपना परचम लहराया है. अनु कपूर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. सर, मैं आपकी जो आने वाली है फिल्म उत्तर दा पुत्तर, एक तो इतना इंटरेस्टिंग टाइटल है इस फिल्म का, उससे शुरुआत करती हूँ.
8: जी जी.
7: आप एक फिजिक्स प्रोफेसर का उसमें रोल निभा रहे हैं और फिल्म है पूरा वास्तु पे, शास्त्र पे. एक फिजिक्स प्रोफेसर होने के बावजूद आप उसमें मानते हैं. आपको लगता है इंडिया में आज भी लोग साइंस से ज्यादा इन सब बिलीव्स में यकीन करते हैं?
8: जी.
7: आप कोई अपना एग्जांपल दे सकते हैं? आप भी करते हैं?
8: नहीं, मैं तो वैज्ञानिक चित्त और चेतना का व्यक्ति हूं जो एक रोल कर रहा है. उत्तर द पुत्तर उस फिल्म का नाम है जैसा अभी आपने फरमाया. इसके प्रोड्यूसर हैं श्री संदीप कपूर, डायरेक्टर हैं श्री रविंद्र सिवाच, उनका नाम है, और स्टारिंग रुखसार रहमान, श्री पवन मल्होत्रा, श्री ब्रजेंद्र काला और भी कुछ लोग जिनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य पहली बार प्राप्त हुआ, तो नाम नहीं याद है मुझे. सो यही फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट, और जिस फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट जितना मजबूत होगा, कंटेंट मजबूत होगा तो फिल्म अच्छी बन जाएगी.
7: क्या बात है. हमने ना कई बार सुना है सर, आप पेचेक से ज्यादा फिल्म की स्क्रिप्टिंग पे ध्यान देते हैं, उसको बहुत महत्व देते हैं.
8: जी.
7: उत्तर दा पुत्तर में ऐसी कौन सी चीज थी जिसके लिए आपने एक इंस्टेंटली हाँ कह दिया इस फिल्म को?
8: यही जो थी, ये विरोधाभास. ये विरोधाभास जो है, जो जीवन की असंगतियां बताई गई हैं कि एक फिजिक्स का प्रोफेसर है और सक्सेसफुल है वो, और ऑब्सेशन है उसका इन सारी विद्याओं के ऊपर, वास्तुशास्त्र है और भी दूसरे कर्मकांड हैं. और ऐसा ही नहीं है कि यहीं पर होते हैं, कर्मकांड पूरी दुनिया में होते हैं. ये जो विसंगतियां हैं, ये जो विरोधाभास है, वही कंटेंट को स्ट्रांग बनाते हैं. तो इतना अच्छा रोल करने को मिलेगा तो क्यों नहीं करेंगे हम.
7: बहुत बढ़िया. फिल्म की टैगलाइन है कर्म बढ़े या किस्मत, आप पर्सनली किस में बिलीव करते हैं?
8: ये मुझसे सवाल बहुत बार पूछा गया, और हर बार इस सवाल के जवाब के लिए मेरा एक ही उत्तर होता है, इस चीज के लिए हम सेपरेट बात करेंगे.
7: अगर आप गो टू गाना कौन सा, अगर हम अंताक्षरी खेलें, अगर आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, तो गो टू गाना कौन सा है आपका जो कोई
8: बहुत है? मैंने तो अंताक्षरी में लगभग 2,500 से 3,000 गाने गाए बगैर देखे हुए.
7: कोई दो लाइन हो जाए प्लीज. लेटर दूं मैं?
8: देखो, आप एक बार कोई ऐसा गाना गाऊं कि जो डायरेक्टली रिलेट हो जाए हमारी फिल्म उत्तर से.
7: बिल्कुल.
8: तो मुझे खुद ताज्जुब है, आनंद बख्शी ने बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं, कमर्शियली हिट फिल्म में गाने लिखे हैं, लेकिन ये जो दो लाइन मैं आपको सुनाने वाला हूं वो बहुत ज्यादा, कोई ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा पॉपुलर गाना होगा, लेकिन कंटेंट बहुत स्ट्रांग है उसका. सुनिएगा आप गाने.
7: बिल्कुल बिल्कुल
8: बिल्कुल उतना ही स्ट्रांग है जितना हमारी फिल्म उत्तर दा पुत्तर का कंटेंट है. और विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्टरी है अपने आप में. कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रडिक्टरी है. एक तरफ फिजिक्स है, एक तरफ ये अंधविश्वास है, ऑब्सेशन है इन सारी चीजों के लिए. तो सुनिए आनंद बख्शी का गाना. भग

ऐसा हर एक इंसान बनाया भगवान ने अपने जैसा।

0: जैसा हर एक इंसान बनाया, ये पाप कहाँ से उपजा, ये पाप कहाँ से उपजा, ये पुण्य कहाँ से आया, ये पाप कहाँ से उपजा, ये पुण्य कहाँ से आया, भगवान ने अपने ज, अगर भगवान ने, बड़े सिंपल है, भगवान ने अपने जैसा हर एक इंसान बनाया तो ये पाप कहाँ से उपजा, ये पुण्य कहाँ से आया,
1: क्या बात है,
0: समझे आप?
1: बिल्कुल समझी मैं। आप भगवान में मानते हैं सर?
0: बिल्कुल नहीं।
1: नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एक लंबे अरसे के बाद गोविंदा कमबैक के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। गोविंदा ने अपनी नई फिल्म रूपा का ऐलान कर दिया है, जिसके जरिए वो करीब 7 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने वाले हैं। इस फिल्म में गोविंदा एक्टिंग भी कर रहे हैं
2: और देखिए इसे प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। साथ ही फिल्म में ऑपोजिट डेब्यू कर रही हैं रानी स्वर्णाकर, नजर आएंगी उनके ऑपोजिट। और गोविंदा आखिरी बार 2019 में फिल्म रंगीला राजा में देखे गए थे और इस फिल्म में वो डबल रोल में भी थे, वो भी आपको आगे दिखाएंगे।
1: चलिए एक और फिल्म के बारे में आपको बता देते हैं, एक ऐसी फिल्म के बारे में बात कर लेते हैं जिसने वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। हॉलीवुड फिल्म माइकल ने कमाई का ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। 24 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई माइकल ने पहले दिन से ही दर्शकों का दिल जीता। दमदार कहानी, शानदार अभिनय और बेहतरीन प्रस्तुति ने फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर लगातार मजबूत बढ़त दिलाई
2: और अब इस फिल्म ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। माइकल ने दुनिया भर में $1 बिलियन की कमाई यानी कि करीब 8,600 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। इसी के साथ ये दुनिया की पहली बायोपिक फिल्म बन गई है जिसने ये ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया। इससे पहले 2018 में रिलीज हुई बोहेमिया रैप्सोडी ने $911 मिलियन यानी कि करीब 7,600 करोड़ की कमाई की।
1: अब देखिए माइकल ने बोहेमियन रैप्सोडी का सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया है।
2: और चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइम वीडियो की नई सीरीज आदर्श बाल विद्यालय की, जिसका ट्रेलर रिलीज हो गया है और इस सीरीज में के मेनन स्कूल प्रिंसिपल की भूमिका में नजर आएंगे। 24 जुलाई को रिलीज होने वाली इस सीरीज के ट्रेलर को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है।
1: इसमें देखिए स्कूल की घंटी, बच्चों की शरारतें, पढ़ाई का दबाव और इन सब के बीच में एक ऐसा प्रिंसिपल जो हर चुनौती का सामना अपने अलग अंदाज में करता है। OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो की नई वेब सीरीज आदर्श बाल विद्यालय के ट्रेलर की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। सीरीज में दिग्गज अभिनेता के मेनन स्कूल प्रिंसिपल की भूमिका निभा रहे हैं।
3: हेडमास्टर्स को ट्रेनिंग के लिए कैम्ब्रिज भेजा जाए,
4: इंग्लैंड वाला कैम्ब्रिज। मुझे बोर्ड्स में अच्छे रिजल्ट्स चाहिए वरना हम लोग कैम्ब्रिज नहीं जा पाएंगे।
5: Who's the father of genetics?
6: मैम ये तो जेनेटिक्स की माँ ही बता सकती है ना।
7: भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताओ।
5: चिकन सिक्स।
1: चलिए गोविंदा की बात कर लेते हैं जो लंबे अरसे के बाद कमबैक के लिए फाइनली तैयार हैं। गोविंदा ने अपनी नई फिल्म रूपा का ऐलान कर दिया है, जिसके जरिए वो करीब 7 साल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। इस फिल्म में गोविंदा एक्टिंग भी कर रहे हैं और इसे प्रोड्यूस भी करने वाले हैं।
2: फिल्म में ऑपोजिट डेब्यू कर रही है रानी और गोविंदा आखिरी बार, आपको याद होगा 2019 में फिल्म रंगीला राजा में देखे गए थे और इस फिल्म में वो डबल रोल में भी थे। फिल्म चली नहीं थी और अब 7 साल बाद रूपा फिल्म से वापसी कर रहे गोविंदा ने अपने कमबैक पर विस्तार से बात भी की है। देखिए,
8: मैं सोचा कि शुरुआत करते हैं रूपा और दुनियादारी के साथ, तो आज रूपा की शुरुआत करते हैं हम। ये सस्पेंस ड्रामा है और क्योंकि साथ में मैं काम कर रहा हूं तो कॉमेडी तो है ही है। जो इससे पहले आप लोगों ने मेरी बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी हैं, दूल्हे राजा, जो थ्रू आउट एंटरटेनिंग रही हैं, इस रूपा फिल्म में भी एक ऐसा ही नजारा होगा जिसमें लोग हंसे मस्ती करें। मैंने इससे पहले फिल्म बनाई आगे हीरो और वो उस हद में नहीं पहुंच पाई। उम्मीद करता हूं कि रूपा जो है ये, इससे पहले मैं कभी हीरो ओरिएंटेड फिल्म नहीं की या हीरोइन टाइटल पे फिल्म नहीं की, ये फर्स्ट टाइम है मेरे पूरे करियर में कि मैं 29-30 साल में ये फिल्म जो है ये रूपा के टाइटल पे है। मुझे लगता है कि जो रिक्वायर्ड चीजें थी, डायलॉग, स्क्रीन प्ले और जो रिक्वायर्ड चीजें थी फिल्म के पूरे करने, सब तैयार है। वी नीड अ पर्सन हु इज वेरी एजुकेटेड अबाउट ऑल दिस थिंग्स। एक टेक्निकल जो सूझबूझ रखा करते हैं, ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना चाहूंगा तो वो है। बट लास्ट मोमेंट पे ही वो होगा, जैसे आगे फिल्म में आखिर तक डिक्लेयर नहीं हुआ था। हम लोगों की आदत है, हम लोग आखिर तक डिक्लेयर नहीं करते। कई टाइम राइट ऑफ कर दिया गया मुझे कि अभी ये फिल्मों में नहीं आएगा, मैं पुनः शुरुआत करता हूँ। और माई से प्रार्थना करता हूँ कि जो मैंने सोचा है और जो लोग सोच नहीं सकते, किसी की भी सोच में नहीं आए ऐसा ये चित्रपट, खास तौर पे यंगस्टर्स के लिए, जिस वक्त वो ये देखेंगे थिएटर में, एक ऐसा सपना साकार होता हुआ नजर आएगा और ऐसा लगेगा कि क्या ये संभव है। मैं इसमें किसी अध्यात्म का डिस्कस नहीं करूंगा, मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं, मैं काम ऐसा कर दूंगा ऐसी ईमानदारी के साथ कि लोग कहें कि क्या ये संभव है, तब मुझे लगेगा मैं गोविंदा हूं। मैक्सिमम न्यू कमर्स होंगे और मैं वो लोगों से ऐसी एक्टिंग करूंगा कि मुझे लगेगा कि मेरे घर से कई सितारे आए और आसमान में जाके छा गए चांद के साथ। और ऐसे एक दर्जन सितारे मेरे प्रोडक्शन से आएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरा ऐसा सोचना है कि एक अलग ही टाइप का ये चित्रपट होगा, ये सिनेमा होगा, खास तौर पे यंगस्टर्स के लिए। बहुत ही एक्सपेक्टेशन के साथ यंगस्टर्स जिंदगी की शुरुआत करते हैं और कई एजम्पशन और प्रिजम्पशन में वो ऐसा लगता है कि वो लोग आ गए, और भ्रांतियों में वो ऐसा लगता है कि किसी ने धकेल दिया हो। और ये मुझे घर घर में दिखाई देता है, माया का वो हिस्सा जो हम दिखा सकते हैं अपनी औकात में, मैं उसे लेके प्रस्तुतिकरण करने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब सहयोग देंगे, क्योंकि ये सच से लोग अवगत हो ये बहुत आवश्यक है।
2: तो इंग्लैंड से T20 सीरीज में मिली हार हर क्रिकेट फैन को अखर रही है, लेकिन अब वक्त है जीत के शुभ आगाज का। आज से टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज का शुभारंभ कर रही है और पहला मुकाबला आज दोपहर 3:30 बजे एजबेस्टन में खेला जाएगा।
1: और देखिए, फैंस के लिए गुड न्यूज ये आई है कि आज रोहित विराट एक्शन में आपको दिखाई देंगे, साथ ही करीब 3 साल के बाद जसप्रीत बुमराह वनडे क्रिकेट में अपनी वापसी करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि फैंस की निगाहें इन सितारों पर हैं और उम्मीद यही है कि आज जीत के साथ टीम इंडिया वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों का शंखनाद करेगी।
9: हार कभी कहानी का अंत नहीं होती, कई बार वही हार सबसे बड़े पलटवार की शुरुआत भी बनती है। T20 सीरीज की करारी चोट अभी ताजा है, लेकिन अब मैदान बदल चुका है, फॉर्मेट बदल चुका है और सबसे बड़ी बात, टीम इंडिया का चेहरा भी बदल चुका है। बर्मिंघम के एजबेस्टन से 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हो रहा है और इस बार मैदान पर लौट आई है रोको की जोड़ी। रोहित शर्मा कदम, कोहली का विराट अनुभव, जसप्रीत बुमराह की घातक वापसी और केएल राहुल की मौजूदगी, यानी वो खिलाड़ी जिन्होंने बरसों तक दुनिया की सबसे मजबूत टीमों को घुटनों पर झुकाया है। अब सवाल सिर्फ जीत का नहीं है बल्कि T20 की हार का जवाब देने का है और करोड़ों भारतीय फैंस इसी पलटवार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वनडे क्रिकेट में रोहित विराट ये वो कॉम्बिनेशन है जिसने दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाजों की नींद उड़ाई है। इंग्लैंड की सरजमी पर भी किंग कोहली का बल्ला खूब गर्जा है। इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली हैं। विराट ने यहां 16 मैच में 581 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक शामिल है। तो वहीं रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी किसी से कम नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ महज 10 मैचों में 410 रन और लगभग 59 की औसत, यानी इंग्लैंड के पिच और रोको की जोड़ी, ये ऐसा समीकरण है जो मेजबानों की सबसे बड़ी टेंशन बन सकता है। ऊपर से शुभमन गिल का शानदार फॉर्म और मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर और केएल राहुल। यानी भारत की बल्लेबाजी में क्लास भी है, एक्सपीरियंस भी और मैच को अपनी शर्तों पर खत्म करने का मादा भी। लेकिन अंग्रेजों के घर में पलटवार की राह आसान नहीं है। इंग्लैंड का आत्मविश्वास इस वक्त सातवें आसमान पर है। T20 सीरीज में उसने भारत को चारों खाने चित किया है। जोस बटलर, हैरी ब्रुक और जो रूट की वापसी, यानी अंग्रेजों की बल्लेबाजी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। इतना ही नहीं, मुकाबले से एक दिन पहले ही इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान करके साफ संदेश दे दिया है कि मेजबान टीम भारत को संभलने का मौका देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। कहते हैं क्रिकेट में बदला गुस्से से नहीं, अपने खेल से लिया जाता है। T20 की हार अब बीता कल है, लेकिन उसका हिसाब अभी बाकी है। अगर अब रोहित का गेम चला, विराट का बल्ला बोला, गिल ने लय बरकरार रखी और बुमराह ने अपनी धार दिखाई, तो इंग्लैंड की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। लेकिन अगर मेजबान टीम ने T20 वाली रफ्तार कायम रखी तो भारत की अग्नि परीक्षा यहाँ भी होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो देखिए, क्रिकेट में कुछ जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर दर्ज नहीं होती, वो इतिहास की किताबों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाती है। जिस लॉर्ड्स के मैदान पर जीत का सपना देखने के लिए भारतीय पुरुष टीम को 54 साल और 11 टेस्ट का इंतजार करना पड़ा, उसी क्रिकेट के मक्का में भारत की बेटियों ने अपना पहला टेस्ट खेला।
1: और देखिए, महज 4 दिन में ऐसा विजय ध्वज फहरा दिया कि पूरी दुनिया तालियां बजाने पर मजबूर हो गई।
9: 142 साल के इतिहास में पहली बार लॉर्ड्स ने महिला टेस्ट मैच की मेजबानी की और उस ऐतिहासिक मैदान पर भारत की बेटियों ने ऐसा प्रदर्शन किया कि क्रिकेट का सबसे प्रतिष्ठित मैदान भी उनके खेल को सलाम करता दिखाई दिया। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में भारत ने गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग तीनों एरिया में इंग्लैंड को न केवल पस्त किया बल्कि एक तरफा अंदाज में भारत ने ये मैच 270 रनों से जीत लिया। स्मृति मंधाना के बल्ले ने शुरुआत में ऐसी मधुर धुन छेड़ी कि जीत की पटकथा वहीं से लिखनी शुरू हो गई। हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने उस कहानी में भरोसे के रन जोड़े और भारत ने पहली पारी में 285 रन का मजबूत किला खड़ा कर दिया। इसके बाद गेंद भारतीय हाथों में आई और क्रांति गौर ने गेंद से ऐसी क्रांति मचाई कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी की गिल्लियां उड़ गईं। 5 विकेट लेकर उन्होंने सीधे लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा दिया। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ढेर हो गया और मैच की बागडोर पूरी तरह भारत के हाथ में आ गई। दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजों ने रनों की ऐसी बरसात की कि इंग्लैंड के लिए जीत का आसमान ही धुंधला पड़ गया। स्मृति ने फिर अर्धशतक जड़ा, यास्तिका भाटिया ने शतक की चमक बिखेरी और ऋचा घोष ने आखिर में तूफानी अंदाज में रन बरसाकर इंग्लैंड के सामने 457 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। इतना विशाल लक्ष्य और सामने भारतीय गेंदबाजों का अटूट इरादा, इंग्लैंड की पूरी बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। विकेट ऐसे गिरते रहे जैसे पतझड़ में पत्ते गिरते हैं। 186 रन पर पूरी टीम सिमट गई और भारत ने 270 रन की ऐसी ऐतिहासिक जीत दर्ज की जिसकी गूंज लॉर्ड्स की बालकनी से लेकर क्रिकेट इतिहास तक सुनाई देती रहेगी। ये जीत सिर्फ एक टेस्ट मैच की जीत नहीं है, ये एक नए दौर का ऐलान है। भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स की पिच पर ऐसा स्ट्रेट ड्राइव खेला है जिसकी गूंज आने वाली पीढ़ियां सुनेंगी। इन बेटियों ने ऐसा पुल शॉट लगाया है जिसने सदियों पुरानी धारणाओं को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और ऐसा विजयी छक्का जड़ा है जिसने बता दिया है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम मैच और इतिहास दोनों अपने नाम करना जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और वनडे टीम के कैप्टन शुभमन गिल ने विमेन्स टीम को इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई भी दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको।
10: Firstly, very proud moment for us. Our women's team winning a historic match at Lords, and I think we've all seen how special it is playing at that stadium. वहाँ पे खेलना कितना special होता है और वहाँ पे जीतना कितना special होता है. So huge congratulations to them.
1: और चलिए इसी के साथ लंच टाइम में रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए रथ यात्रा, बस एक और दिन।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
12: सास-बहु और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कहीं है ड्रामा तो कहीं प्यार। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास-बहु और बेटियां में।
13: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
14: How they looked after game one.
15: I mean, they were frustrated.
13: The Daily.
16: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
13: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
17: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: कर्नाटक में बनेगी देश की पहली सरकारी AI यूनिवर्सिटी, CM DK शिव कुमार ने की घोषणा। कर्नाटक को जिम्मेदार AI के ग्लोबल हब के तौर पर पेश करने की योजना। ओडिशा के पुरी धाम में आस्था का सैलाब, रथ यात्रा से पहले आज भगवान जगन्नाथ भक्तों को देंगे नवयौवन दर्शन, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। राजस्थान के सांवलिया सेठ के भंडारे से निकले 10 करोड़ 12 लाख रुपए, पहले चरण की गिनती पूरी, कल फिर से शुरू होगी भंडारे की गणना। मॉनसून के लिए इन दिनों जम्मू कश्मीर की कैरन घाटी में बढ़ रही है सैलानियों की भीड़, वादी की खूबसूरती को निहारने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं सैलानी। छह दशक के बाद गिर के जंगलों में फिर से गूंज रही इंडियन ग्रे हॉर्नबिल पक्षियों की चहचहाहट, राज्य सरकार के री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट को मिली सफलता।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

तो लंच टाइम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर लेते हैं ओडिशा के पुरी में होने वाली रथ यात्रा की। यात्रा से जुड़ी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। तीनों विशाल लकड़ी के रथ बनकर तैयार हो चुके हैं और कारीगर इन्हें सजाने के काम में जुटे हैं। प्रशासन ने भी रथ यात्रा के दौरान जुटने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैयारी कर ली है। अब देखिए, इसी बीच मंदिर में भगवान जगन्नाथ के नव यौवन दर्शन की रस्में निभाई जाएंगी, जिसमें भगवान के स्वस्थ होने के बाद मंदिर के सेवायत भगवान जगन्नाथ प्रभु बलभद्र और देवी सुभद्रा का काजल और सिंदूर से श्रृंगार करेंगे। इस दौरान थोड़ी ही देर के बाद भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पधारेंगे।

0: बस एक दिन और, इंतजार की घड़ी अब बस खत्म होने वाली है। पुरी में भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की तैयारियां पूरी हो गई हैं। वो रथ तैयार है जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगे। साथ चलने वाले उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा का रथ भी सजकर तैयार है। न सिर्फ रथ बल्कि उस गुंडेचा मंदिर को भी सजाया संवारा जा रहा है, जहां भगवान रथ यात्रा करते हुए अपनी भाई बहन के साथ पहुंचेंगे। उत्सव की तैयारियों की ये तस्वीरें पुरी से आई हैं, जहां हर कोई रथ यात्रा के उल्लास में डूबा हुआ है। कलाकार तीनों रथों को सजाने में जुटे हैं, तो कुछ लोग सुंदर रंगोली बनाकर मंदिर परिसर में उत्सव की छटा बिखेर रहे हैं। कोई पूजा और अनुष्ठान से जुड़े कामों में लगा है, तो कोई रथ यात्रा में आने वाले भक्तों की व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटा है। मानो हर कोई रथ यात्रा में अपनी भागीदारी निभाने को आतुर हो।
1: सारे सब कुछ तो एक तरह से देखेंगे तो महाप्रभु जगन्नाथ ही कर रहे हैं, हम लोग सब निमित्त मात्र। अब जगन्नाथ मंदिर का समस्त सेवायतगण को ले लीजिए, दैतापति परिवार को ले लीजिए, उसी मंदिर प्रशासन को ले लीजिए, उड़ीसा सरकार को ले लीजिए, पूरी वासी को ले लीजिए, ये सब करते हैं सिर्फ महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रार्थना। यही प्रार्थना से ही प्रभु जगन्नाथ जी खुद भक्तों की मान रखने के लिए महाप्रभु जगन्नाथ ये रथ यात्रा खुद करा रहे।
0: रथ यात्रा की तैयारियों के बीच पुरी में एक और रस्म निभाई जाएगी, भगवान के नवयौवन दर्शन की रस्म। 14 दिन के अनासर काल के बाद पहली बार भगवान स्वस्थ होकर श्रृंगार करेंगे और अपनी भाई बहन के साथ भक्तों को दर्शन देंगे। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं और 14 दिनों तक एकांत में विश्राम करते हैं। इसके बाद जब वो स्वस्थ होकर पहली बार भक्तों को दर्शन देते हैं, तो उसे नवयौवन दर्शन कहा जाता है। नवयौवन दर्शन को नेत्र उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। अनासर के 14 दिन बाद नवयौवन दर्शन मनाया जाता है। मान्यता है कि इन 14 दिनों में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और प्रभु बलभद्र स्वस्थ हो जाते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। इस खास रस्म के दौरान मंदिर के सेवक भगवान की आंखों में काजल लगाते हैं और चंदन सिंदूर का तिलक करते हैं। प्रभु सार्वजनिक रूप से दर्शन के लिए तैयार होते हैं। हालांकि इस बार ये दर्शन कम समय के लिए होगा। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि को रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा सिर्फ पुरी वासियों के लिए एक बड़ा धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि देश और दुनिया में मौजूद तमाम जगन्नाथ भक्तों के लिए किसी बड़े उत्सव से कम नहीं। इस साल भी रथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के लिए पुरी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है।
2: Very nice, very happy feeling to be here.
3: This is for the first time you are here or previously also.
0: धार्मिक मान्यता है कि लाखों भक्त रथ को खींचकर पुण्य कमाते हैं, पापों से मुक्ति पाते हैं और महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसीलिए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि ये आध्यात्मिक साधना, भक्ति और मोक्ष की यात्रा का प्रतीक मानी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: देखिए, रथ यात्रा उत्सव को बस एक दिन रह गए हैं। पुरी में दुनिया भर से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रथ यात्रा से पहले लाइफ गार्ड्स ने समंदर किनारे रेस्क्यू मॉक ड्रिल का आयोजन किया
5: और अलग अलग तरकीबों से अपनी तैयारियों को परखा। समंदर में फंसे व्यक्ति तक कैसे जल्द से जल्द पहुंचना है, उसे किनारे तक कैसे लाना है और प्राथमिक उपचार देना है, इन सभी परिस्थितियों का अभ्यास किया गया। साथ ही आपसी तालमेल, बातचीत और इमरजेंसी रिस्पांस प्रोटोकॉल को भी परखा। ड्रिल के दौरान रेस्क्यू के सामान और इमरजेंसी गियर की भी जांच की गई है।
4: अमरनाथ यात्रा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। श्रद्धालुओं का उत्साह जस का तस बना हुआ है। अब तक करीब 2,00,000 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। इसी बीच श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर भी सामने आ गई है।
5: अब अमरनाथ यात्रा के लिए तीसरा रूट खोलने पर विचार हो रहा है, जो कि पहले के दोनों मार्ग बालटाल और पहलगाम से छोटा, आरामदायक और लोगों के लिए सुरक्षित भी होगा।

0: कठिन डगर है, लंबा सफर है, मगर उत्साह में कोई कमी नहीं। ये आस्था की मजबूत डोर ही है कि लाखों श्रद्धालु चुनौतियों को पार करते, बम बम भोले का जयकारा लगाते, बाबा बर्फानी के दर्शन के आस लिए चल पड़े हैं। एक दूसरे से अनजान लेकिन सब जाने पहचाने से, सबकी एक ही मंजिल, एक ही रास्ता जो महादेव के दर तक जाता है। खड़ी चढ़ाई, पथरीला रास्ता और पर्पल बदलता मौसम, लेकिन बाबा बर्फानी के भक्तों का जोश कम नहीं। आस्था का आलम यह है कि 3 जुलाई से शुरू हुई इस यात्रा में अब तक 2,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा में पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं।
1: इस साल की अमरनाथ यात्रा में पहले 10 दिन बीत चुके हैं और 10 दिन के ही दौरान 2,00,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह ने जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी इस बात को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या आखिर कोई और मुतबादिल रास्ता अमरनाथ गुफा की ओर जा सकता है।
0: फिलहाल अमरनाथ यात्रा पहलगाम और बालटाल 2 मार्गों से हो रही है, लेकिन भविष्य में इस यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 3रा मार्ग तैयार करने की चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि ये 3रा मार्ग छोटा भी होगा और श्रद्धालुओं के लिए आरामदायक भी। ये प्रस्तावित मार्ग लद्दाख के मीनामर्ग को करीब 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा को जोड़ेगा। ये रास्ता करीब 6 किलोमीटर का होगा, जिस पर चलकर तीर्थयात्री एक ही दिन में पवित्र गुफा पहुंच सकेंगे।
1: इसमें एक रास्ता पहलगाम से होते हुए अमरनाथ गुफा जाता है, जो रिवायती रास्ता है, सबसे लंबा रास्ता है और धार्मिक तौर पर भी श्रद्धालु उस रास्ते को चुनते हैं, क्योंकि ये लंबी यात्रा उन सभी धार्मिक पड़ावों से गुजरती है जो अमरनाथ यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे फिर वो चंदनवाड़ी हो, चाहे फिर वो शेषनाग हो, चाहे फिर वो पंचतरणी हो और फिर अमरनाथ गुफा। दूसरा रास्ता बालटल का, जो ज़्यादा पुराना नहीं है लेकिन नज़दीक रास्ता है। बालटल रास्ते से जाने के लिए श्रद्धालुओं को सोनमर्ग पहुँचना पड़ता है, लेकिन अब एक नया रास्ता लद्दाख की तरफ से अमरनाथ गुफा की ओर चर्चा में है। ये रास्ता दरअसल करगिल हाईवे में गुमरी की जगह से मात्र 6 किलोमीटर तक लंबा है और अमरनाथ गुफा सीधे पहुंचता है। अब जबकि अमरनाथ यात्रा को लेकर लोगों की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ हर साल बढ़ती जा रही है, उस बीच अब इस रास्ते को खोलने के लिए, बनाने के लिए चर्चाएं शुरू हो गई है।
0: दावा ये किया जा रहा है कि इस मार्ग की भौगोलिक परिस्थितियाँ मौजूदा बालटाल और पहलगाम मार्ग की अपेक्षा ज्यादा अनुकूल हैं। इस क्षेत्र में घाटियाँ चौड़ी और अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं, जिससे श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं तैयार करने के लिए पर्याप्त और सुरक्षित स्थान उपलब्ध होगा। श्रीनगर लेह मार्ग पर बन रही जोजिला टनल का काम पूरा होने के बाद सरकार अमरनाथ यात्रा का ये 3रा मार्ग खोलने पर विचार कर रही है।
1: अगर ये रास्ता बनता है और फिर श्रद्धालुओं के लिए खुलता है तो अमरनाथ यात्रा श्रद्धालुओं के लिए और तीर्थयात्रियों के लिए करना और भी आसान होगा। गुड न्यूज टुडे के लिए तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर से।
2: भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज इतिहास रचेंगे। दरअसल वो आज कजाकिस्तान के बैकुनूर कास्मोड्रोम से 2 रूसी यात्रियों के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के 8 महीने के मिशन पर रवाना होने वाले हैं। इसका समय रात 8:17 है और इस मिशन में अनिल मेनन के साथ रूसी अंतरिक्ष यात्री भी शामिल है। बताया गया है कि ये तीनों वहां पर बाकी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रहेंगे। ये मिशन 8 महीने का है और ISS पर वो मानव शरीर चिकित्सा तकनीक और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों से जुड़े कई अहम प्रयोग भी करेंगे। अनिल मेनन का जन्म अमेरिका के मिनियापोलिस में हुआ था। मेनन आपातकालीन चिकित्सा विशेषज्ञ हैं और यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स में कर्नल के पद पर भी काबिज हैं। और चलिए इसी के साथ लंच टाइम में यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए कुछ न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है ड्रामा तो कहीं प्यार। 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

0: एफिल टावर के ऊपर शानदार आतिशबाजी की गई है। रंग बिरंगी रोशनी से पूरा आसमान चमक उठा। इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए हजारों लोग सड़कों पर जुटे और अपने कैमरों में इस पल को कैद करते दिखे। इस बार सिर्फ आतिशबाजी ही नहीं बल्कि सैकड़ों ड्रोन ने भी आसमान में अलग अलग आकृतियां बनाई। सबसे खास था जब ड्रोन ने आसमान में एफिल टावर की तस्वीर बनाई। रोशनी, ड्रोन और आतिशबाजी का यह अनोखा संगम लोगों को खूब पसंद आया। ये जश्न बस्टील डे के मौके पर बनाया गया। बस्टील डे फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। साल 1789 में इसी दिन बस्टील जेल पर कब्जा किया गया था, जिसे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का बड़ा प्रतीक माना जाता है। तभी से हर साल 14 जुलाई के आसपास पूरे देश में परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भव्य आतिशबाजी के साथ ही दिन मनाया जाता है। पेरिस के जश्न ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कैमरे पर कैद ये नजारा लोगों के लिए लंबे समय तक यादगार बने रहेंगे। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम मैच के लिए बस इतना ही। और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छी और पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी हैं, आप देखते रहिए जेएनटी।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897, built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
2: Third period comes to an end, game two, headed to overtime.
1: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
2: They score!
1: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझा

0: देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
8: कर्नाटक में बनेगी देश की पहली सरकारी AI यूनिवर्सिटी। सीएम DK शिव कुमार ने की घोषणा, कर्नाटक को जिम्मेदार AI की ग्लोबल हब के तौर पर पेश करने की है योजना। ओडिशा के पुरी धाम में आस्था का सैलाब, रथ यात्रा से पहले आज भगवान जगन्नाथ भक्तों को देंगे नव यौवन दर्शन, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। राजस्थान के सावलिया सेठ के भंडार से निकले 10,12,00,000 रुपए, पहले चरण की गिनती पूरी, कल फिर से शुरू होगी भंडारे की गणना। मॉनसून के दिनों में भी जम्मू कश्मीर की केरन घाटी में बढ़ रही सैलानियों की भीड़, वादी की खूबसूरती को निहारने दूर दूर से आ रहे सैलानी। छह दशक बाद गिर के जंगलों में फिर से गूंज रही है इंडियन ग्रे हॉर्नबिल पक्षियों की चहचहाहट, राज्य सरकार के री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट को मिली सफलता।
1: गुड गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
8: भगवान जगन्नाथ के करोड़ों भक्तों का खत्म होने वाला है इंतजार, एक दिन बाद 16 जुलाई को शुरू होगी रथ यात्रा, पूरी में उत्सव का माहौल। रथ यात्रा से पहले आज भगवान जगन्नाथ भक्तों को देंगे नव यौवन दर्शन, श्रद्धालु में जबरदस्त उत्साह, दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। मान्यता के अनुसार स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं और 15 दिनों तक दर्शन नहीं देते हैं, इसके बाद जब वो स्वस्थ होकर पहली बार दर्शन देते हैं तो उसे नव यौवन दर्शन कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की तैयारियां हुई पूरी, पूर रथ भी है तैयार जिसमें सवार होकर महाप्रभु जगन्नाथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे। भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा का रथ भी सचकर हुआ तैयार, यात्रा मार्ग की भी की जा रही है शानदार सजावट। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले मॉक ड्रिल कई एजेंसियों ने लिया इसमें हिस्सा। जवानों ने इमरजेंसी और आपदा से निपटने के लिए किया मॉक ड्रिल, सुरक्षा को भी परखा। इमरजेंसी के दौरान लोगों ने सड़क को किया खाली, मॉक ड्रिल में एनसीसी कैडेट्स ने भी लिया हिस्सा। पूरी रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए 12,000 पुलिसकर्मी, ड्रोन और एंटी ड्रोन उपकरणों की तैनाती। भुवनेश्वर पहुंचे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी, निश्चल आनंद सरस्वती रथ यात्रा में होंगे शामिल। इम्फाल के श्री श्री गोविंदाजी मंदिर में कांग चिंगबा उत्सव की तैयारियां तेज, रथ को बनाने में जुटे कारीगर। भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के लिए भव्य रथों का हो रहा है निर्माण, 10 दिनों तक चलेगा उत्सव। कांग चिंगबा उत्सव को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम, कई जगह पर हुई जवानों की तैनाती। पूरी आस्था और भक्ति के साथ जारी है अमरनाथ यात्रा, अब तक करीब 3,00,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। श्रीनगर में बाबा बर्फानी का दिखा अनोखा भक्त, दिल्ली से कश्मीर तक साइकिल चलाकर पूरी की अमरनाथ यात्रा। अहमदाबाद से सामने आई सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर, जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले मुस्लिम समुदाय ने मंदिर को भेंट किए सोना चांदी का बना रथ और 3 घोड़े। मुस्लिम समुदाय ने जमालपुर इलाके में स्थित जगन्नाथ मंदिर के महंत को सौंपे सोने और चांदी से बने रथ, महंत ने शॉल देकर और मिठाई देकर किया उन्हें सम्मानित। अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में स्थित जगन्नाथ मंदिर से 16 जुलाई को निकलेगी 149वीं भव्य दिव्य रथ यात्रा, हजारों लोग इसमें शामिल होंगे। जगन्नाथपुरी के बाद अहमदाबाद में निकाली जाती है देश की दूसरी सबसे भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा, मुस्लिम समुदाय पिछले 26 सालों से फेंट कर रहा है चांदी का रथ। अहमदाबाद के कई मुस्लिम बहुल इलाके से भी गुजरती है जगन्नाथ रथ यात्रा, रथ यात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोग भी होते हैं शामिल। पूरी की तरह लेक सिटी उदयपुर में भी निकलेगी भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा, 16 जुलाई को नगर भ्रमण पर निकलेंगे भगवान जगन्नाथ। उदयपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप, भक्तों का हाल जानने नगर भ्रमण पे निकलेंगे जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ। उदयपुर में जोरों पर चल रहा है भगवान जगन्नाथ के रथ को सजाने का काम, इस बार 95 किलो शुद्ध चांदी से बनाया गया है रथ, यात्रा मार्ग पर भी की जा रही है विशेष सजावट। उदयपुर में नीमच माता रोप वे पर आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों का लिया गया जायजा, मॉक ड्रिल के जरिए परखे गई तैयारियां। जिला प्रशासन की देखरेख में आयोजित संयुक्त मॉक ड्रिल और रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ एसडीआरएफ समेत स्थानीय एजेंसियां हुई शामिल। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के सावलिया सीट के भंडार से निकली 10,12,00,000 रुपए, पहले चरण की गिनती हुई पूरी। आज आषाढ़ अमावस्या के दिन नहीं होगी भंडारे की गिनती, 15 जुलाई यानी कल होगी चेक, ऑनलाइन मिले दान और सोने चांदी के चढ़ावे की गिनती। आषाढ़ अमावस्या पर सावलिया सेठ के दर्शन के लिए सुबह से ही लगी भक्तों की लंबी कतारें, भक्तों ने लगाए सावलिया सेठ के जयकारे। प्रयागराज में आषाढ़ अमावस्या पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में आस्था की डुबकी। श्रद्धालुओं ने आषाढ़ अमावस्या पर माँ गंगा की उतारी विशेष आरती, विधि विधान से की पूजा अर्चना। उज्जैन में आषाढ़ अमावस्या पर बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में लोग हुए इसमें शामिल। जलाभिषेक के बाद भगवान महाकाल का किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार। अमावस्या पर बाबा को शेषनाग का रजत मुकुट, मुंडमाला और फूलों की सुगंधित मालाएं पहनाई गई। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से ही लगी भक्तों की लंबी कतार। भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। देहरादून से सोमनाथ के लिए विशेष रेल यात्रा रवाना। सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। 6 दिवसीय इस विशेष यात्रा में प्रदेश के विभिन्न वर्गों से लगभग 700 श्रद्धालु सहभागी बने। इसमें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी, संत समाज तथा समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि हुए शामिल। संबल के प्राचीन वंश गोपाल तीर्थ का 4.5 करोड़ रूपये की लागत से किया जा रहा है जीर्णोद्धार। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जीर्णोद्धार की रखी गई नींव। वंशगोपाल तीर्थ का बनेगा मुख्य द्वार, विश्राम कक्ष और महिला स्नान घर। संभल में 68 तीर्थ और 19 कूपों को खोजे जाने के बाद सीएम योगी ने तीर्थों को विकसित कराने का किया था ऐलान। यूपी में कांवड़ यात्रा के लिए तैयारियां शुरू। सहारनपुर में डीएम एसएसपी ने अफसरों संग बनाई सुरक्षा और ट्रैफिक की रणनीति। श्रावण मास कांवड़ यात्रा और शिवरात्रि पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट में हुई समन्वय बैठक। कांवड़ यात्रा से जुड़े आयोजक और प्रतिनिधि रहे इसमें मौजूद। बिजनौर में कांवड़ यात्रा से पहले आए अलर्ट। डीएम और एसपी ने पूरे रूट का किया निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए कड़े निर्देश। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज जाएंगे अंतरिक्ष स्टेशन। कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोन से 2 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जाएंगे आईएसएस। अंतरिक्ष यान सोयुज MS-29 से भारतीय समय के मुताबिक रात 8:17 पर बैकोनूर स्पेस सपोर्ट से भरेंगे उड़ान। करीब 3 घंटे बाद आईएसएस से जुड़ेंगे सोयुज MS-29। बुधवार देर रात करीब 1:30 अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करेंगे तीनों अंतरिक्ष यात्री। आईएसएस के 75वें अभियान का हिस्सा होंगे तीनों अंतरिक्ष यात्री। यूक्रेनी और भारतीय मूल के माता पिता के घर पैदा हुए अनिल मेनन अमेरिकी स्पेस फोर्स में कर्नल और इमरजेंसी मेडिसिन में फिजिशियन है। भारत में 1 साल रह चुके हैं मेनन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के दौरे के दौरान माइक्रोग्राविटी सेमीकंडक्टर समेत कई प्रयोग करेंगे अनिल मेनन। अनिल मेनन की पत्नी एना विलहम भी अंतरिक्ष यात्री हैं। सेना के मेजर दीपक कुमार ने पूरी की दुनिया की सबसे ऊंची अल्ट्रा मैराथन। मेजर दीपक ने पूरा किया 70 किलोमीटर का मुश्किल पुमलिंग लाल चैलेंज। लद्दाख में सेना ने स्नो लेपर्ड एक्सपो का किया आयोजन। न्योमा निडर मुद समुदाय के लोगों ने स्थानीय संस्कृति, उद्यमिता, पर्यटन की संभावनाओं का मनाया जश्न। एक्सपो में स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक खान पान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मनोरंजन गतिविधियों के साथ मेडिकल कैंप और क्रिकेट टूर्नामेंट फिनाले का किया गया आयोजन। चावल उत्पादक किसानों के लिए गुड न्यूज आई सामने। जून के महीने में 16.48% बढ़ा देश का चावल निर्यात। 1 साल में 0.86 बिलियन डॉलर से बढ़कर $1 बिलियन हुआ निर्यात। देश के जेम्स एंड ज्वेलरी निर्यात में 34.64% का उछाल। 1 साल में 1.79 बिलियन डॉलर से बढ़कर $2.41 बिलियन पहुंचा जेम्स एंड ज्वेलरी का निर्यात। बिहार में पर्यटन के नए युग की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म का किया शुभारंभ। 18 जुलाई से हेली टूरिज्म योजना के पहली उड़ान। पटना से प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए हेली सेवा। लोग 5,000 रूपये खर्च करके हेलीकॉप्टर और छोटे विमान से वाल्मीकि नगर, राजगीर और कैमूर जैसे पर्यटन स्थलों की हवाएं सैर कर सकेंगे। मुजफ्फरपुर में एक बुजुर्ग पेंशन भोगी के खाते में 7 अरब जमा हुए लेकिन कुछ ही देर बाद बैलेंस जीरो हो गया। बैंक के मुताबिक सिस्टम की खराबी की वजह से ऐसा हुआ था। झांसी मंडल में दिव्यांग रेल कर्मचारियों को सौगात। पहली बार 56 कर्मचारियों को मिली 3 व्हीकल स्कूटी, आत्मनिर्भरता और सम्मान की नई उड़ान। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का किया उद्घाटन। लोगों को किया गया इस दौरान सम्मानित। उदयपुर में आपदा और इमरजेंसी से निपटने के लिए नीमच माता रोपवे पर मॉक ड्रिल। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत कई टीमों ने लिया इसमें हिस्सा। जवानों ने रोपवे पे फंसे यात्री का रस्सी और चेयर के जरिए सुरक्षित उसे निकाला। एम्बुलेंस के जरिए उसे पहुंचाया गया अस्पताल। जवानों ने आपदा से निपटने की तैयारियों को परखा। रोप में फंसने की स्थिति में रेस्क्यू प्रक्रिया का सफल किया गया प्रदर्शन। शिलोंग में नेक्स्ट जेन एडमिनिस्ट्रेटिव और ई गवर्नेंस रिफॉर्म पर राष्ट्रीय सम्मेलन का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और सीएम कॉनराड संगमा हुए इसमें शामिल। मानसून के दिनों में भी जम्मू कश्मीर के कैरन घाटी में बढ़ रही है सैलानियों की भीड़। वादी की खूबसूरती को निहारने दूर दूर से आ रहे सैलानी। चेन्नई में सीएम विजय ने बांटे नियुक्ति पत्र। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का भी किया उद्घाटन। हुगली में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने रथ यात्राओं का किया उद्घाटन। डीएम और पुलिस कमिश्नर के साथ की बैठक। नर्मदा नदी में डूब रही युवती के लिए देवदूत बनी पुलिस। नदी में कूदकर युवती को निकाला गया। पुलिस जवान ने मौके पर सीपीआर देकर बचाई युवती की जान। युवती का अस्पताल में चल रहा है इलाज। दिल्ली एनसीआर में हुई हल्की बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। अरुणाचल प्रदेश में बांध का पानी छोड़े जाने से असम के लखीमपुर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। कई इलाके पानी में डूबे। बाढ़ से कई सड़कें पानी में डूब गए। गांवों का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। यातायात हुआ प्रभावित। बाढ़ के चलते कई एकड़ फसल हुई बर्बाद। किसान परेशान। प्रयागराज में बढ़ने लगा गंगा और यमुना नदी का जलस्तर। घाटे होने लगे हैं खाली। नेपाल में भारी बारिश से बागमती नदी उफान पर। मुजफ्फरपुर में कई इलाके पानी में डूबे। मुजफ्फरपुर मुख्यालय को जोड़ने वाला पीपा पुल में पानी भरा। शहर जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं लोग। नेपाल में भारी बारिश का दिखने लगा है असर। बगहा के वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़ा गया 1.70 लाख क्यूसेक पानी। बैराज से पानी छोड़े जाने से गंडक नदी का बड़ा जलस्तर। नदी किनारे वाले लोगों को किया गया सतर्क। वाल्मीकि बैराज से पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में भर गया है पानी। कई गांवों को किया गया है अलर्ट। 7 साल बाद फिर बड़े पर्दे पर गोविंदा की होगी एंट्री। फिल्म रूपा और दुनियादारी में आएंगे नजर। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोविंदा ने दी जानकारी। ऑपरेशन सफेद सागर का टीजर रिलीज। करगिल युद्ध के दौरान इंडियन एयरफोर्स के मुश्किल ऑपरेशन को दिखाई गई सीरीज। वेब सीरीज आदर्श बाल विद्यालय का ट्रेलर हुआ रिलीज। अभिमन्यु सिंह, अर्चना पूरन सिंह, नवीन कस्तूरिया और प्रसन्न अविष्ट की सीरीज में अहम भूमिका। 24 जुलाई से ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम पे होगी स्ट्रीम। इम्तियाज अली की बेटी ईदा ने बॉयफ्रेंड के साथ की सगाई। ईदा ने इंस्टाग्राम पे सगाई की तस्वीरें की शेयर। परिवार के साथ लंदन वेकेशन पर नजर आई प्रियंका चोपड़ा। बेटी मालती ने निकाले मां के बालों के क्लिप। सोशल मीडिया पर तस्वीरें की शेयर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
9: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में। कहीं है ड्रामा तो कहीं प्यार। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
10: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more, tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
11: खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: जीत के जश्न की तस्वीरें तो आपने खूब देखी होंगी, लेकिन फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड से हार के बावजूद नॉर्वे ने अपनी टीम का स्वागत किसी विश्व विजेता की तरह किया। देखिए टीम वतन लौटी तो लोगों की भीड़ उनके स्वागत के लिए सड़कों पर उतरी हुई नजर आई। देखिए खेल भावना की वो तस्वीर जिसने लोगों का दिल जीत लिया है।
13: मैदान में अपनी टीम को जीतते देखना कौन नहीं चाहता, लेकिन हार कर भी टीम को लेकर चाहत बनी रहे, यही खेल की असल भावना है। नॉर्वे ने अपनी टीम का भव्य स्वागत करके दिखा दिया कि खेल में हार जीत से ज्यादा बड़ी खेल की भावना है। नॉर्वे की फुटबॉल टीम जैसे ही अपने मुल्क पहुंची, पूरा नॉर्वे बानो अपने प्लेयर्स के स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। राजधानी ओस्लो की सड़कों पर हर हाथ में देश का झंडा था और चेहरे पर अपनी टीम के लिए गर्व का भाव। वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड से 2-1 से हार के बावजूद टीम का स्वागत मुल्क में किसी विश्व विजेता की तरह से किया गया। टीम के खिलाड़ियों के चेहरे पर भले ही वर्ल्ड कप का सफर खत्म होने का मलाल था, लेकिन पूरा मुल्क मानो अपनी टीम को इस गम से निकालने के लिए एकजुट हो गया। खिलाड़ी जैसे मुल्क की जमीन पर उतरे, उनके विमान को पारंपरिक वाटर कैनन सलामी दी गई और इसके बाद खिलाड़ियों ने अपने परेड के जरिए शहर का अभिवादन स्वीकार किया। रॉयल पैलेस के बाहर हजारों प्रशंसक पहले से टीम के आने का इंतजार कर रहे थे। खिलाड़ियों ने सबसे पहले राजा से मुलाकात की और फिर टीम ने रॉयल पैलेस की बालकनी से लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद शुरू हुआ नॉर्वे का सबसे मशहूर सेलिब्रेशन वाइकिंग रो। इस बार खास बात ये रही कि क्राउन प्रिंस ने खुद ड्रम बजाकर इस सेलिब्रेशन की शुरुआत की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
1: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
2: Jack, you're killing me.
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
3: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: अमरनाथ यात्रा में अब तक करीब 3 लाख भक्तों ने किए दर्शन, चरम पर है श्रद्धालुओं का उत्साह। 33 दिन की पैदल यात्रा कर जयपुर के 13 भक्त पहुंचे अमरनाथ। ओडिशा के पुरी धाम में आस्था का सैलाब, रथ यात्रा से पहले आज भगवान जगन्नाथ भक्तों को देंगे नव यौवन दर्शन, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। CBSE ने तीसरी भाषा का असेसमेंट फ्रेमवर्क किया जारी, तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं, स्कूल स्तर पर होगा मूल्यांकन, लेकिन 10वीं पास करने के लिए असेसमेंट क्लियर करना है जरूरी। कर्नाटक में बनेगी देश की पहली सरकारी AI यूनिवर्सिटी, सीएम DK शिव कुमार ने की घोषणा, कर्नाटक को जिम्मेदार AI के ग्लोबल हब के तौर पर पेश करने की है योजना। अभिनेता शाहरुख खान के बंगले मन्नत में रेनोवेशन का रास्ता हुआ साफ, पर्यावरण का हवाला देकर रेनोवेशन पर रोक लगाने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज।
3: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल।
6: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त पारुल चौधरी, लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए फिर एक बार सास बहू और बेटा का ये नया एपिसोड। आज का हमारा टॉपिक है हेयर बैंड्स, जो हमारे बालों को संभालने के काम में आते हैं, और उसके साथ साथ ये है एक इम्पॉर्टेंट फैशन एक्सेसरी जो फैशन के साथ साथ इवॉल्व हुए हैं, और इसी के साथ लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट से भरपूर हमारा ये एपिसोड, नजर डालते हैं हेडलाइंस पर।
7: मेरी बेचैनियों को जन्म
8: जा। सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, बारिश में शुरू होगा रीत और राघव का रोमांस, रोमांस पर लगेगा ट्विस्ट का ब्रेक,
7: मेरा दर्पण अखियां तेरी,
8: जगधात्री की परिवार को इम्प्रेस करने की कोशिश, तपस्या शुरू करेगी नया ड्रामा, सीरियल पति अनाड़ी में प्यार के रंग में रंगेंगे किशोरी और लाला, अभिमन्यु और मान्यता की मेहंदी की रस्म में दुआ पर मंडराएगा खतरा, अभिमन्यु उर्फ विक्रांत बनेगा रक्षक,
9: गोलमाल है भाई सब गोलमाल है।
8: सूरज और ईशा में काव्या के रिश्ते को लेकर शुरू होगी तशनेबाजी,

0: हरमन सुंदर में जादुई गुड़िया मचाएगी नया बवाल।
1: रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन।
0: और बारिश का मजा उठाते साथ साथ नजर आएंगे सालों बाद मोना और शहबाज।
2: रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन।
0: देखेंगे ये सभी रंग सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
3: किशोरी, आज तो है बैंड्स के आसपास ही हम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें। वैसे आपकी पर्सनालिटी काफी सिंपल है, पर फिर भी मैंने सोचा कि क्योंकि आज कर रहे हैं हम हेयर बैंड्स की शॉपिंग, क्यों ना एक प्यारा सा हेयर बैंड खरीद लूं आपके लिए। और देखिए, ये तो लिटरली स्वारोस्की स्टडेड है, जो लगेगा आप पर बहुत ही खूबसूरत। वैसे इतनी ही खूबसूरत है यहाँ पर किशोरी और लाला की ये कहानी भी। लेकर चलते हैं आप सबको पति अनाड़ी के सेट पर।

0: मैं हूँ।
1: शुरू हुई लक्ष्य और किशोरी की मोहब्बतें। रोमांस पर लगा पिटाई का ब्रेक।
2: जो हम नवा थे अब वो खफा है, कल हम सफर थे अब हैं जुदा।
1: लक्ष्य और किशोरी की नोक झोंक।

0: दंगल टीवी के सीरियल पति अनाड़ी में आज आ गया है मौसम रोमांस का, और इस रोमांस के रंग में रंग गए हैं किशोरी और लक्ष्य। देखिए कैसे एक दूसरे में ये खो गए हैं। कभी लड़ते हैं तो कभी मोहब्बत करते हैं, कुछ ऐसा ही है इनका अजब गजब रिश्ता।
1: क्या बोल रही है?
2: ये पता नहीं क्या लूजर लूजर बोलती रहती है एल देख के।
3: लूजर।
4: मेरा बस ये कहना है कि लाला जब मैं प्ले कर रहा था तो वो भी बहुत खूबसूरत किरदार था, एंड उसको जीने में एंड प्ले करने में बहुत मजा आया। एंड जितना लोगों ने लाला को प्यार दिया है उससे कहीं ज़्यादा मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग लक्ष्य को प्यार देंगे, क्योंकि ये भी बहुत फन लविंग एंड बहुत बैंटर वाला कैरेक्टर है, एंड बहुत मज़ा आने वाला है। ये नई नोकझोंक देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा।
0: वैसे इनका ये रोमांस जल्द ही पिटाई में बदल गया, जहां पर डंडा लेकर पहुंच गई किशोरी अपनी बहन के साथ। असल में लक्ष्य किशोरी के घर वालों को सच बताने यहां आया है, लेकिन किशोरी नहीं चाहती कि सच सामने आए, इसीलिए तो वो लक्ष्य को धमका रही है और पिटाई भी कर रही है। ऐसे में लक्ष्य अपनी जिद पर अड़ा है, लेकिन लगता है किशोरी के आगे वो हार मान लेगा।
5: क्योंकि अम्मा बाबूजी तो मंदिर गए,
6: अगर आज के बाद अम्मा और बाबूजी के सामने सच बोलने की कोशिश भी की तो ये मुंह खोलने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे हम। आज के लिए इतना ही काफी है।
1: ए, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, सच तो मैं सबको बता कर ही रहूंगा।
6: सच बोलकर आपके मुंह में छाले ना पड़ जाए। डेजर्ट है क्या है आपके?
5: हाँ जीजू, अब आप यहाँ पर सबको सच बताने आए थे ना, और हम ऐसा होने नहीं देंगे।
1: नंदनी को भी?
6: हाँ हाँ बिल्कुल, आपको रोकने का बस यही एक तरीका था। अब आपने तो सुना ही हुआ ना, एक से भले दो। बताइए कि डेजर्ट कैसे खाना पसंद करेंगे? कहा था ना नंदनी, जान जाए पर अकल ना जाए।
5: शुरू हो जाइए फिर जीजू।
6: बिल्कुल,
1: मतलब
6: ये मिस्टर लक्ष्य अग्रवाल कि आज के बाद मुंह खोलने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे आपको।
1: देखो तुम गलत कर रही हो। नहीं नहीं नहीं नहीं,
0: भाई इनकी ये नोकझोंक चल रही है, लेकिन हम आपको बता दे कि ये तो है लक्ष्य का डरावना सपना। जी हाँ, सपने में वो ये सब कुछ देख रहा है, लेकिन जब हकीकत में भी किशोरी से उसका सामना होता है तो वो डर जाता है।
1: मेरा सर, मेरा गला,
6: गला दर्द हो रहा है तो हम दवा
1: दे। नहीं नहीं नहीं, मैं
7: खौफ है मेरा, इतना खौफ है मतलब।
4: तो लक्ष्य की प्लानिंग थी,
7: मुझे अच्छा लगा।
4: लक्ष्य की प्लानिंग थी कि वो ये घर में आ चुकी है तो क्यों ना मैं इसके घर पे जाऊं और सबको बता दूं कि मैं इस रिश्ते को नहीं मानता हूं, भूल चूक में या फिर भोलेपन में लाला ने शादी कर ली होगी लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूं। लेकिन घर पे तो कुछ और ही ड्रामा चल रहा है, वहां पे मुझे खाना खिला रहे हैं, मेरा बहुत सम्मान हो रहा है। तो लक्ष्य दिल का बुरा नहीं है, उसको एक फीलिंग आई कि अगर लोग इतने अच्छे हैं तो ये सही टाइम नहीं है अभी लोगों को हर्ट करने का। तो उसी बीच में लक्ष्य सो भी जाता है घर में, वो गया था कि रिश्ता तोड़ने और वहाँ फैल के सोया हुआ है। एंड सपने में उसको एक ड्रीम सपने में ड्रीम आता है नाइस। नाइस तो सोते सोते उसको एक ड्रीम आता है कि नंदिनी और क्या नाम है तेरा, किशोरी, नंदिनी और किशोरी आते हैं और उसको डंडे से मारने वाले हैं.
6: आपका नाम क्या है? कुकी.
4: कुकी पुकी. उसको डंडे से मारने वाले हैं और सरिये से मारने वाले हैं. तो उसका वहां पे हो जाता है कि क्या हो रहा है, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए.
3: जो हम नवा थे अब वो खफा.
0: तो भाई इस नोक झोंक के बीच आ जाता है इन दोनों को एक फोन और ये वहां से चले जाते हैं. अब सीरियल में क्या नया ट्विस्ट आया है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
8: कि जो लोग नजर वाला चश्मा लगाते हैं ना उनके लिए हेयर बैंड परफेक्ट है, क्योंकि बार बार आंखों पर बाल आते हैं उससे वो परेशान होते हैं, हेयर बैंड से बाल संभल जाते हैं. वैसे यहाँ पर भी है हमारे लिए एंटरटेनमेंट का चश्मा, तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको मन सुंदर के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ एंटरटेनिंग और एक्साइटिंग हो रहा है कहानी में आज.
0: खुशियों को लगी गुड़िया की नजर.

पिता के गायब होने पर परेशान हुए रूही और नाहर। बाल बाल बची रुचिता।

0: दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में रूही को पता चल गया है कि रुचिता वो डॉल छोड़ नहीं रही। ऐसे में रूही चाहती है कि रुचिता से वो डॉल दूर हो जाए, इसलिए देखिए कैसे वो रुचिता के साथ खेल तो रही है लेकिन साथ ही उसने लुका छुपी का खेल खेलना शुरू कर दिया, जिसके चलते रुचिता पहुंच गई अपना दांव देने। और ऐसे में मौके का फायदा उठाते हुए रूही ने उस डॉल को गड्ढे में दफन कर दिया। और जाकर छिप गई, लेकिन उसे क्या पता कि उस गुड़िया में जादुई शक्ति है। ऐसे में जैसे ही रुचिता अपनी माँ को ढूंढने के लिए आगे बढ़ी, उस डॉल ने रुचिता को जमीन में खींच लिया। बस फिर क्या, रुचिता के न आने पर रूही परेशान हो गई और पहुंच गई रुचिता को ढूंढने, लेकिन उसे रुचिता कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में रूही की परेशानी और भी बढ़ गई है।
1: रुचिता, रुचिता
2: कहाँ? मम्मी!
1: रुचिता!
0: रुचिता के गायब होने पर रूही परेशान होकर चीख चीख कर अपनी बेटी को पुकार रही है। ऐसे में उसकी पुकार सुनकर वहाँ पर नाहर आ गया और उसकी परेशानी देखकर हैरान हो गया, लेकिन तभी रूही ने नाहर को रुचिता के गायब होने की खबर दी।
3: इस बार ऐसा हो रहा है कि मैं जॉगिंग से आ रहा हूँ, रूही पैनिक है, रुचिता को ढूंढ रही है। मैंने पूछा क्या हुआ तो वो बोलती है रुचिता अचानक से गायब हो गई, तो मैं भी पैनिक हो गया, हर जगह ढूंढ रहे हैं, मिली नहीं रही है। लेकिन उसके बाद मुझे कुछ दिखता है तो मैं देखता हूँ कि मिट्टी के अंदर वो है, मतलब कोई गड्ढे के अंदर वो धस गई है, पता नहीं कैसे दब गई है। अब मुझे कुछ आइडिया नहीं है, वो जो डॉल है, वो जो गुड़िया के साथ वो खेलती है, रहती है 24/7, उससे कुछ रिलेटेड है, लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता। जब डॉल को लेकर लड़ाई हुई है कई बार रूही और रुचिता के बीच, तो मैं हर बार रुचिता को बचा लेता हूँ। वो डांटती भी है, मैं बोलता हूँ ठीक है बच्चे हैं, बच्चों को लगाव हो जाता है, अटैचमेंट आ जाते हैं, मतलब टॉय से खिलौने से हो जाता है, इट्स फाइन। लेकिन उस टॉय से टॉय के साथ कुछ तो एक कहानी जुड़ा है, तो लेट्स सी वो कैसे क्रैक होता है। एंड अभी फिलहाल हम लोग रुचिता को ढूंढ लेते हैं, वो गड्ढे के अंदर रहती है और मैं उसे निकाल लेता हूँ। और अभी तक मुझे कोई आइडिया नहीं उस डॉल के बारे में, डॉल से रिलेटेड क्या हो रहा है, लेकिन जब पता चलेगा आई थिंक मैं कुछ इनपुट दे पाऊंगा उसके बारे में।
0: भाई रूही और नाहर की चीख पुकार सुनकर घर वाले भी बाहर आ गए और परेशान होने लगे। इसी बीच रूही ने दादी को बताया कि रुचिता उसी के साथ यहीं खेल रही थी लेकिन अचानक यहीं से गायब हो गई। ऐसे में दादी सुनकर हैरान है और तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि नाहर को जमीन के अंदर से आवाज सुनाई देती है। ऐसे में नाहर परेशान हो जाता है। बस फिर क्या, नाहर और रूही दोनों ही गड्ढा खोदने में लग जाते हैं और उसके अंदर से निकलती है रुचिता, जो डरी सहमी सी है।
3: नहीं नहीं नहीं, मैंने वही बोला ना कि शायद तुम्हें गलती से तुम्हारा पैर फिसल गया होगा, छुपम छुपाई खेल रहे थे तो पता नहीं होगा शायद, बट मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ रूही को। इससे पहले मैंने ब्लेम किया था रूही को इसलिए क्योंकि मैं जब डेली था किडनैप हो गई थी, इतनी बड़ी बात उसने मुझे बताई नहीं थी। उसने बोला कि मैंने मैसेज किया था, तो वो बहुत बड़ी बात है, मेरी बेटी किडनैप हो गई है, इसलिए मैंने गुस्सा किया था कि तुमने बताया क्यों नहीं, अगर एक बार खो चुका हूँ तुम दोनों को दोबारा नहीं खो सकता। सो उस वे में मैंने थोड़ा गुस्सा किया था, तो मुझे इन्फॉर्म किया नहीं गया था इसलिए। बट या अभी मैंने ब्लेम नहीं किया, बट एज ऑलवेज दादी ब्लेम्ड रूही कि तुम्हारी गलती है, तुमने फिर से खो दिया।
0: अब रुचिता तो सभी को यही बता रही है कि उसे जमीन से किसी ने खींचा है, लेकिन घर वाले ये बात मानने को तैयार नहीं। ऐसे में नाहर उसे ले तो जाता है, लेकिन रूही वो ये देखकर हैरान है क्योंकि उस गड्ढे से गुड़िया गायब है। ऐसे में रूही को यकीन हो गया है कि दाल में कुछ काला है। अब देखना होगा क्या रूही को पता चल पाएगा कि उस गुड़िया में जादुई शक्ति है। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: हमसे कह रहे हैं कि जो प्लास्टिक और मेटल हेयर बैंड्स होते हैं ना, ये काफी ड्यूरेबल होते हैं, इसलिए काफी लॉन्ग लास्ट करते हैं। वैसे बात तो सही है, और देखिए बचपन में तो हम यूज ही किया करते थे प्लास्टिक या फिर मेटल हेयर बैंड्स, क्योंकि फैब्रिक हेयर बैंड्स और सिलिकॉन हेयर बैंड्स तो तब तक आए नहीं थे। एक्चुअली सिलिकॉन हेयर बैंड्स तो होते हैं एक बहुत ही कंफर्टेबल ऑल्टरनेटिव। तो क्या कुछ हो रहा है ईशा और सूरज की इस कहानी में, आज लेकर चलते हैं आप सबको पति ब्रह्मचारी के सेट पर।

0: छाप गोल माल है।
1: ईशा और सूरज के बीच टशनेबाजी, लड़के वालों को लेकर मचा बवाल,
0: सीधे रस्ते की है।
1: काव्या पर टिका भैया और भाभी का रिश्ता, दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में सूरज के घर वालों ने तय किया है कि वो काव्या की दूसरी शादी करवाएंगे। ऐसे में आज ईशा ने लड़के वालों को घर बुलाया है काव्या को देखने के लिए। ऐसे में यहाँ पर रिश्ते जोड़े जा रहे थे कि तभी वहाँ पर पहुँच गया सूरज भी लेकर लड़के वालों को, वो भी अपनी तरफ से। बस फिर क्या, घर में ये नज़ारा देखकर कि लड़के वाले पहले से ही आए हुए हैं, सूरज एक पल के लिए तो हैरान हुआ, लेकिन यहाँ पर सूरज भी जिद पर आ गया है।
2: ऐसा लगता है कि यहाँ तो पहले से रिश्ते की बात चल रही है। हाँ, रिश्ते की बात चल रही है, लेकिन रिश्ता पक्का थोड़ी ना।
1: भाई भाव के डर से वरुण और उसके मम्मी पापा चुपचाप बैठ गए और ऐसे में काव्या से पूछताछ करने लगे। भाई लड़के वाले लड़की के बारे में क्या ही जानेंगे, यहाँ तो लड़की के भैया भाभी के बीच ही बहस छिड़ गई, क्योंकि ईशा अपनी तरफ से एक टीचर को लेकर आई है और सूरज अपनी तरफ से एक बिजनेसमैन को। बस फिर क्या, इसी बात को लेकर सूरज और ईशा के बीच टेंशन शुरू हो गया।
3: सूरज, काव्या के लिए लड़का
2: इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। गौरव एक काबिल बिजनेसमैन है और कल को अपना खुद का बहुत बड़ा बिजनेस है।
3: तो काबिलियत से बड़ी और कोई दौलत नहीं है। आशीष ने गोल्ड मेडल जीते एजुकेशन।
2: काव्या का शौक पूरा करने के लिए या उसके सपने को पूरा करने के लिए कल को ये मेडल हाथ में लेके बाजार में बेचने निकलेगा।
3: वरुण पैसों से खुशियां खरीद लेगा।
2: वरुण के पास खुद की गाड़ी है, वो भी 2 सीटर।
3: आशीष के पास सिंगल सीट।
2: वरुण काव्या की हर इच्छा पूरी करेगा।
3: सूरज, तुम्हारा लाया लड़का तुम्हारे जैसा ही निकलेगा, तो वो किसी की नहीं सुनेगा।
2: अच्छा, तो आपका लाया लड़का जैसे दूध का धुला है ना।
3: सूरज, मुझे बेकार में बहस नहीं करनी। काव्या तुम्हारे लाए लड़के के साथ शादी नहीं करेगी।
2: मेरी बहन उसी लड़के से शादी करेगी जैसे मैं चुनूंगा।
3: मैं काव्या की भाभी हूँ, मैं उसी लड़के से शादी करवाऊंगी जो काव्या के लिए सही हो। काव्या, तुम एक बार आशीष से बात करो।
4: या बिल्कुल, एक्चुअली ईशा और सूरज जो हैं दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। मतलब ईशा जी एज अ पति सूरज को एक्सेप्ट करती हैं एंड सूरज ईशा जी को ईशा जी के तौर पे एज अ पत्नी एक्सेप्ट करता है, नॉट आईपीएस, और ईशा जी की तरफ से ना ही दादा भाई। तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ है और सूरज की ये प्लानिंग है कि काव्या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, इसलिए काव्या के लिए रिश्ता देखूंगा ताइमा मैं। लेकिन ईशा जी यही बोलती है कि मैं भी लड़का अपनी तरफ से ढूंढूंगी जो काव्या के लिए बेहतर होगी। तो सूरज अपनी तरफ से लड़के वाले को लेकर आता है और ईशा जी ऑलरेडी लड़के वाले को लेकर बैठे रहती हैं, वो भी बुलाई रहती है। क्लैशेस हो जाते हैं दोनों में, दोनों एट अ टाइम वहाँ पे पहुँच जाते हैं लड़के वाले। तो वहाँ पे सूरज अपने लड़के की खूबियाँ बताता है काव्या के लिए और ईशा जी अपने लड़के की खूबियाँ बताती हैं काव्या के लिए।
1: अब ईशा ने तो तय कर लिया है कि काव्या उसी के पसंद के लड़के से शादी करेगी। ऐसे में वो चाहती है कि काव्या आशीष से कुछ पल के लिए बातें करे। ऐसे में आशीष जैसे ही उठकर जाने लगता है तो सूरज को आ जाता है गुस्सा और देखिए कैसे बड़े ही प्यार से आशीष के गालों पे हाथ फेरता है और उसे डराने धमकाने लगता है। बस फिर क्या, ये डर देखकर आशीष और उसकी मम्मी और बहन दोनों ही परेशान हो जाती हैं और इस रिश्ते को नकार करके वहाँ से चली जाती है और ईशा उन्हें रोकने की कोशिश में जुट जाती है।
5: हमें माफ कर दीजिए प्लीज। हमें जाने दीजिए प्लीज। चलो चलो।
6: अरे नमस्ते,
5: सुनिए, माफ कर।
4: तो ईशा जी समझ जाती है कि धमकी दे रहा है, ये कर रहा है, लेकिन एज अ दादा भाई है तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं लड़के वाले। एंड बाद में लड़के वालों को जब पता चलता है कि दादा भाई है और इसकी ही सुननी पड़ेगी, ये मानेगा नहीं, तो उसकी जो बहन रहती है वो उठ के भाग जाती है। तो मतलब ईशा जी की जो पार्टी है वो भाग जाती है, लेकिन जो मेरी पार्टी है वो रहती है वहाँ पे। फिर ईशा जी धमकी देना शुरू करती हैं।
1: बस फिर क्या, इसी बात को लेकर सूरज गुस्से में आ गया और ईशा से बहस करने लगा।
2: मेरे लायक हो भले भाग के डाले, पर वो आपकी लायक
3: हो नहीं। ओहो, इज्जत पे बात आई तो अपने आप को सही साबित करने के लिए झूठ बोलने लगा दादा।
5: झूठ नहीं बोल रहे हैं सूरज, मेरे सामने बोला है तुम्हारे लायक लोगों ने दहेज के बारे में। सड़ा चाची विश्वास नहीं तो पूछ।
4: ईशा जी यही बताती है कि तुम्हारा लड़का भी सही नहीं था, क्योंकि उसके खिलाफ बहुत सारे एक्सप्लोइटेशन के केसेस हैं, लड़कियों ने दर्ज कराए हैं पुलिस स्टेशन में। और सूरज भी बताता है कि आपके लड़के वाले जो आए थे वो भी कम नहीं थे, वो भी दहेज मतलब मांग रहे थे। तो यही है कि दोनों गलत लड़के वालों को चूज़ करके लाए थे और दोनों अपने अपने जगह सही थे। दोनों बस लड़ झगड़ रहे थे, हम बोल सकते हैं क्यूट बैंटर था, मतलब कि सीरियस बैंटर, बट वो थोड़ा सा कॉमिक जोन में कन्वर्ट हुआ है, तो ये ऑडियंस को ऑन स्क्रीन ही देखने में मजा आएगा काफी ज्यादा।
1: भाई इस बार तो दोनों के ही लाए हुए रिश्ते में खोट निकल गई। अब देखना होगा कि कैसे सूरज और ईशा काव्या के लिए लड़का ढूंढेंगे और कैसे इसी बीच दोनों की सहमति होगी, वो भी एक ही लड़के पर। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
6: राध्या तो हमसे कह रहे हैं कि रबर हेयर बैंड्स जो होते हैं ना, जिनमें इलास्टिक होती है, उससे ग्रिप अच्छा बनता है, लेकिन इलास्टिक ऑब्वियसली वर्न आउट हो जाती है और लूज हो जाता है। वैसे ये बताई है आपने पते की बात। एक्चुअली देखिए, मैं तो बार बार यही कह रही हूँ कि आजकल ये जो फैब्रिक हेयर बैंड्स और सिलिकॉन हेयर बैंड्स आए हैं ना, ये हैं एक अमेजिंग ऑल्टरनेटिव। तो चलिए अब लेकर चलते हैं आपको राध्या और प्रथम के पास और देखते हैं किस तरह आगे बढ़ रही है आज ये कहानी।
1: गया इंद्राइणी का राज। राध्या पर इंद्राइणी ने किए वार। प्रथम बना राध्या का रक्षक। दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में इंद्राइणी ने कोशिश तो खूब की थी राध्या को इस कंपटीशन से बाहर निकालने की, लेकिन खेल पलट गया क्योंकि इस कंपटीशन में राध्या ने फिर से वापसी कर ली है और उसे देखकर इंद्राणी का गुस्सा भड़क उठा है। इतना ही नहीं, इंद्राणी तो कुछ उठाकर उसको मार रही थी कि तभी वहां पर प्रथम आ गया राध्या की ढाल बनकर। उसने ना सिर्फ इंद्राणी को रोका बल्कि सच का साथ भी दिया। ऐसे में इंद्राणी का गुस्सा भड़क उठा।
7: पूरी रेप्यूटेशन का तमाशा बना के रख देते हो। इससे बेहतर यही होगा कि फालतू की पहेलियां बुझाने की बजाय और इस लड़की को पकड़वाइए। इतना सब कुछ करने के बाद वापस यहाँ पे चली आई, हिम्मत तो देखो इसकी। और हाँ, इसकी भोली भाली शक्ल में मत जाइए, इसका असली रूप तो हम सब ने देख लिया। मुझे तो समझ में नहीं आता कि बाहर कैसे आई, इसको सजा होनी ही चाहिए।
1: अब इंद्राणी तो पूरी कोशिश कर रही है कि वो सभी के सामने राध्या को गुनहगार ठहराए, लेकिन राध्या पूरे सबूत के साथ आई है। ऐसे में वो ना सिर्फ अपने ऊपर लगे इल्जाम को ठुकरा रही है, बल्कि उसने तो सभी के सामने ये सच भी बता दिया कि समायरा कोई और नहीं बल्कि इंद्राणी की बेटी है। बस फिर क्या, ये सुनकर इंद्राणी भी भभक उठी।
7: ये एक नंबर की धोबी है, अपनी फालतू की बातों से लोगों को फंसाना और उनकी बेइज्जती करने के अलावा इसे अब कुछ नहीं आता। पहले तो अपने परिवार की बेइज्जती की और अब ये मेरी रेपुटेशन खराब करने पर तुली है। इसे कुछ सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रही है, ये फरे भी कहीं भी।
8: फरे जी हम नहीं बल्कि आप, और हमने सबको गुमराह नहीं किया है बल्कि आपने किया है। चैनल को, जजेस, यहाँ तक की पूरी जनता, आप सच छुपाकर अपनी बेटी को कंपटीशन में ले आए और हमें पूरा यकीन कि आपने फैसले में भी पक्षपात किया है। आपने अपनी बेटी को ही सबसे ज्यादा नंबर दिया।
7: सवाल को लगाम दो लड़की, क्या बकवास किए जा रही हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि समायरा मेरी बेटी है?
9: अरे कैसे बच्चों वाली बातें कर रही है, सबूत के लिए ना डीएनए रिजल्ट ही काफी है, लेकिन फिर भी हम अपना सबूत साथ हैं।
10: नहीं, इंद्राणी जिस तरह से मतलब तस्से मस नहीं हो रही थी और हर तरह का उसने ट्राई कर लिया, मतलब सारी चीज़ें उठा उठा कर मार दी, कभी चप्पल मारा तो कभी बोतल उठा के मारी तो कभी वो कनपट्टी भी मार दी और पता नहीं क्या क्या, मतलब वायलेंट भी हो गई, चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के अपने आप को सच साबित करने की उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कहते ना सत्य परेशान होता है पराजित नहीं, तो इंद्राणी के कितने भी चीखने चिल्लाने पर ड्रामा करने से कोई डरा नहीं और एक एक करके सारी सच्चाई सारे सबूत जो कि जासूस बनी बैठी राधिया ने इकट्ठे किए थे वो सामने आ गए और इंद्राणी की पोल खुल गई।
1: पर प्रथम और राधिया तो पहले से ही तैयार थे क्योंकि उन्हें पता था कि इंद्राणी ये सवाल उठाएगी, ऐसे में दोनों ने मिलकर सभी के सामने इंद्राणी और समायरा की डीएनए रिपोर्ट दिखा दी। ऐसे में जजेस भी इंद्राणी पर नाराज हो रहे हैं, लेकिन इंद्राणी ने सारा इल्जाम फिर से राधिया के ऊपर मढ़ दिया कि राधिया ने उसकी बेटी को जान से मारने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, इंद्राणी ने तो राध्या पर फिर से हमला किया लेकिन प्रथम ने उसे रोक लिया और तो और राध्या ने सभी के सामने समायरा की मेडिकल रिपोर्ट भी दिखा दी और सभी के सामने बता दिया कि उसके बनाए हुए खाने में ऐसा केमिकल मिलाया गया है जिसके ज्यादा मिलाने पर खाने वाले की जान भी जा सकती है। इस पर इंद्राणी ने बवाल मचाना शुरू कर दिया।
7: ये सब तो हम सबको बताते लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि खाने में वो जहर मैंने मिलाया था।
8: लेकिन इस केमिकल का एक दुष्परिणाम भी है,

0: देखो तुम भी देखो।
1: अब जिस कॉन्फिडेंस से इंद्राणी ने अपना हाथ दिखाया उन्हें तो यही लगा था कि वो बच जाएंगी, लेकिन काला निशान देखकर सभी ने सवाल कर दिए। ऐसे में उन्होंने हेयर डाई का बहाना बता दिया। बस फिर क्या, प्रथम समझ गया कि अब इंद्राणी अपना सच नहीं बोलेगी। इसलिए देखिए कैसे उस वेंडर को ले आया जिसने वो केमिकल बेचा है, वो भी इंद्राणी को।
2: बोल किसको भेजा था वो केमिकल तूने? बोल।
3: इन्होंने ही लिया था।
0: ये क्या बकवास कर रहा है? वो कौन है ये? हाँ मैं नहीं जानती इसे। ये ना झूठा है, झूठ बोल रहा है, झूठा इल्जाम लगा रहा है मुझ पर। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
2: अरे तो मैडम ये जूते किसी और के दिखाना, सबूत है मेरे पास। ये देखो इन्होंने ऑनलाइन 5,000 किए थे।
1: अब इंद्राणी का सच तो सभी के सामने आ ही गया है, लेकिन ये सच उसकी बेटी के सामने भी आ गया है, जिस पर समायरा अपनी माँ पर ही नाराज हो रही है और उसे लग रहा है कि उसकी माँ ने उसे मौत के मुँह में डालने की कोशिश की है।
0: तुम ये किसकी बातें सुन रही हो? मैंने खाने में कुछ जहर वहर नहीं मिलाया था, मैंने तो बस वो जंगली जड़ी बूटी मिलाई थी जिसे खाकर जजेस को उल्टी आ जाए और वो राजा का खाना रिजेक्ट कर दे, फिर वो हार जाओ, तुम जीत जाओ। पर मुझे क्या पता था कि लास्ट मोमेंट में सारे रूल्स बदल जाएंगे और सभी कंटेस्टेंट को एक दूसरे का खाना टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन वो आपकी वजह से मेरी ये हालत हो गई। मैंने चाहा तो कुछ और था लेकिन वो कुछ और गया।
4: अब जबकि एक बात सच है कि भाई जो समायरा है वो खाना तो अच्छा ही बना दी है, इंद्राणी जी ने जो किया वो गलत है, लेकिन एक मौका उसे मिलना चाहिए। तो इंद्राणी ने ये भी नहीं सोचा था, बस यहीं तक सोचा था कि मैं सारे षड्यंत्र और ये अपने हथकंडे इस्तेमाल करके मैं मेरी बेटी को जिता दूंगी और उसको वो गोल्डन कैप मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं गोल्डन कैप तो मिली ना मिली पता नहीं, पर इंद्राणी को इस बात का यकीन हो गया कि सच्चाई और अच्छाई इस दुनिया में है और अभी भी अच्छे लोग हैं राध्या जैसे, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी एक और मौका देने के लिए तैयार है।
1: भाई राध्या तो है ही नेक दिल की, वो तो सभी का भला चाहती है, लेकिन अब देखना होगा क्या वो ये प्रतियोगिता जीत पाएगी। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: अब तो आप सबको एंटरटेनमेंट का हेयरबैंड पहना रही है ये खूबसूरत जोड़ी मोना अंबेगांवकर और शहबाज खान, जो शेयर कर रहे हैं हमारे साथ एक बहुत बड़ी गुड न्यूज। पूरे 30 साल बाद, जी हाँ 30 साल बाद ये नजर आ रहे हैं एक साथ फिर से एक फिल्म में जिसका नाम है गुड़हल। और आज हमारी टीम कर रही है इनसे खास मुलाकात, उसके साथ साथ एक मॉनसून वाला डे आउट। आहा वेल यहाँ तो है आपके लिए एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट दोनों एक साथ। लेकर चलते हैं आपको इस खूबसूरत जोड़ी के।
6: रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग

0: साल बाद साथ आए मोना और शहबाज। कहानी जानकी और कालीचरण की।
1: सुलग सुलग जाए मन भीगे आज।
0: बारिश का मजा उठाते मोना और शहबाज।
1: लगी कैसी अगन रिम झिम गिरे सा।
0: सास बहू और बेटिया में आज हमारे खास मेहमान हैं मोना अंबेगावकर और शहबाज खान, जो 30 साल बाद फिर एक बार स्क्रीन पर बतौर जोड़ी नजर आने वाले हैं। फैंस को देखने को मिलेगा इनकी जोड़ी का जादू। भाई आपको बता दे कि ये पहले भी नजर आ चुके हैं सीरियल थोड़ा सा आसमान में, साथ ही फिल्म द अवेकनिंग में, और फिर एक बार इन्हें मिला है साथ साथ काम करने का मौका फिल्म गुड़हल में, जिसमें वो निभा रहे हैं जानकी और कालीचरण का किरदार। भाई कहानी इन पर है कि कैसे इस उम्र में इन्हें कई सारे स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं। खैर फिल्म की कहानी के बारे में तो मोना और शहबाज हमें बताएंगे ही, लेकिन फिलहाल आज सास बहू और बेटिया के साथ देखिए कैसे ये मुंबई की बारिश का मजा उठा रहे हैं, गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं, खा रहे हैं वड़ा पाव और साथ ही हो रही है ढेर सारी बातें। तो चलिए

0: चलते हैं और सीधा करते हैं मॉनसून स्पेशल डे आउट की शुरुआत।
1: आज एक ऐसी जोड़ी हमारे साथ है जो कहेंगे एक बार फिर से साथ है 30 साल बाद। तो दोनों एक बार जब साथ में जब मतलब पता चला कि आपको साथ में आना है तो क्या रिएक्शन थे, फर्स्ट रिएक्शन क्या थे आप दोनों के?
2: भैया मेरा तो रिएक्शन, बिकॉज मैं तो मोना का फैन हूँ, शी इज अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, और उस जमाने में भी जब हम लोग काम करते थे तो आई यूज्ड टू बी इन ऑल ऑफ हर, शी इज यू नो जनरली अ फैबुलस एक्ट्रेस, और इतने सालों के बाद हम लोगों ने काम किया तो इट वॉज लाइक revival of old time.
3: I loved it.
1: आपका क्या रिएक्शन?
3: मुझे जब पता चला कि शाहबाज हैं तो I was like, oh, but I know him and I've done love scenes with him and I've looked at him with so much love in my youth. जब हम लोग बहुत ही खूबसूरत थे।
1: अभी भी है?
2: अभी भी बुरे नहीं है?
3: नहीं नहीं, एक मिनट, मेरे बारे में तो नहीं कह सकते। अगर आप उसने नहीं, आप अवेकनिंग देखो ना शाहबाज, I was really, we were beautiful. We were both of us, we were just beautiful and we had amazing chemistry. And we had such beautiful love scenes. उसमें एक वो चाय के बागान में है और चाय का ऐसा ढेर लगा हुआ है जो उन्होंने तोड़ के पत्तियां लाई हैं और उसके अंदर आ लव मेकिंग इन साइड दोज लीव्स, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट।
1: यहाँ जो है आज चाय के बागान नहीं लेकिन चाय की टपरी जरूर है,
2: तो चलिए चाय
3: चलिए चलिए चाय पीते हैं।
1: और मुंबई की बारिश कितनी एंजॉय कर पा रहे हैं?
2: ब्यूटीफुल मुंबई, आई लव मुंबई की बारिश,
3: आई लव मुंबई की बारिश स्पेशली क्योंकि मेरे एक खिड़की के बाहर आम का पेड़ है जो कल दो दिन से ऐसा झूल रहा है मस्ती में और जिस पर तोते बैठते हैं, यू नो, सो इट्स जस्ट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, सो आई लव इट।
2: और इस बार जो इतनी गर्मी हुई है, यू नो, इट वॉज सो बैड, वी वर ऑल वेटिंग फॉर द रेन्स टू कम, एंड अभी देखो आई है तो ऐसे आई है कि बस छप्पर फाड़ गया।
0: तो भाई चाय की चुस्कियों के साथ करते हैं और भी कई सारी बातें जहां वो अपनी फिल्म गुडहल का एक्सपीरियंस भी बताएंगे, साथ ही इतने सालों बाद साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी।
3: 17 साल की उम्र से शूटिंग की चाय ऐसी होती है, वही पीते पीते अब यहां तक पहुंचे हैं। हाँ, घर पे कॉफी पीते हैं अपने शौक से, लेकिन सेट पे तो चाय ही होती है।
1: पहले के शो की बात करें अगर तो अवेकनिंग जैसे कि आपने कहा, तो क्या कुछ था, क्या कुछ कहानी किसके अराउंड थी, थोड़ा दर्शकों को एक बार फिर याद दिलाएं।
2: वो एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको स्टोरी, क्योंकि वो मेरी फेवरेट स्टोरी है, वो इट इज एक्चुअली माय फेवरेट स्टोरी। ये बेस्ड ऑन लियो टॉलस्टॉय की एक नॉवल होती थी, इट वॉज कॉल्ड अवेकनिंग, उसी के ऊपर
3: बेस्ड।
2: द रेजरेक्शन, यस, एंड देन उसमें वी शॉट इन आसाम, ब्यूटीफुल लोकेशंस, मतलब क्यों मोना, यू रिमेंबर दिस?
3: और ये कौन सा ईयर होगा? वो नागांव में शूट किया था, 30 years ago, हमें नहीं, आई एम बैड विद नंबर्स, बट इट वाज डेफिनेटली यस
2: 97 आई थिंक 97 96, एंड वहां पे तेजपुर द ग्रेट भूपेन हजारिका वाज द प्रोड्यूसर एंड अनदर ग्रेट कल्पना लाजमी वाज द डायरेक्टर, जिनकी इनकी बनती नहीं थी और ये और कल्पना हमेशा लड़ते रहते थे।
3: नहीं, मैं बहुत बीमार थी तब, मैं वहाँ पहुंची, किसी ने मुझे बताया नहीं मलेरिया बेल्ट है, तो मैं मलेरिया में शूट कर रही थी, मुझे आईवी लगाया हुआ था, मैं आईवी निकाल करके शॉट देकर जाके आईवी लगा के फिर लेट जाती थी, मुझे लिटरली कटर स्टैंड पे उन लोगों ने आईवी लगाया हुआ था, तो आई वाज वेरी इल एट दैट टाइम और मुझे ब्रेक नहीं मिल रहा था और मैं यंग थी और जोश में थी, तो हाँ हमारे झगड़े होते थे लेकिन वी डिड वेरी गुड वर्क टुगेदर, वी डिड वेरी, और हमेशा हर बार कुछ करके प्यार करके नहीं होता है काम, कभी कभी लड़ झगड़ के भी होता है काम और उसमें भी एनर्जी हाँ होनी भी चाहिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
2: गुड़हल में भी सब लेजेंडरी एक्टर्स हैं हमारे जैसे।
3: गुड़हल इज अ ब्यूटीफुल फिल्म। अच्छा, बाय द वे आपको बता दूं, हंगामा पे ऑलरेडी रिलीज हो गई है और उसका फीडबैक आ रहा है मैम, बहुत ही अमेजिंग फीडबैक आ रहा है सर, लोग रो करके युवराज को, हमारे डायरेक्टर को फोन करके बोल रहे हैं कि ऐसी फिल्म ही तो हमें देखनी थी। क्या हो गया पता है, बहुत टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाली मार धाड़ की बेकार की हेट फिल्ड फिल्में हैं जो सब नहीं देखना चाहते, लोगों को प्यार मोहब्बत भी देखना है, लोगों को फैमिलीज देखनी है, रियल लोग देखने हैं, यू नो, अगर लड़ाई भी है तो वो एक ह्यूमन लेवल पे हो, ऐसा नहीं कि कोई अमेजिंग सा कैरेक्टर तलवार लेके वहाँ से छलांग मारा, ऐसे कितने लोग आप जानते हैं जो लंगोट पहन के वहाँ से तलवार लेके छलांग मारते, कोई नहीं,
2: वो सब फैंटेसीज अब नहीं देखना चाहते,
1: वो सारा रियल है, जो लोग रिलेट कर पा रहे हैं.
3: मैम इट इज बेस्ड ऑन ट्रू लाइफ कैरेक्टर्स सर. हम जो हम दोनों के जो लोग हैं, हम दोनों का जो किरदार है, वी आर एक्चुअली द डायरेक्टर्स पेरेंट्स, रियल लाइफ पेरेंट्स.
2: बहुत अच्छा काम किया है उसने भी.
3: And our life is also very much based on his life.
0: तो भाई गर्मा गर्म चाय के साथ ढेर सारी बातें तो हो गई, लेकिन बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में बचिया और वड़ा ना खाएं, ऐसा भला कैसे हो सकता है. तो ये दोनों पहुंच गए हैं बचिया और वड़े का मजा उठाने के लिए.
2: ये वाला पकोड़ा दो ना.
3: ये क्या पालक का है ना? ये पालक का है.
4: पालक का खाएंगे?
2: हाँ खा लेंगे.
3: वेरी गुड. वो नॉर्मली ये खाते हैं आलू. नहीं मुझे नहीं खाना. हाँ बढ़िया है.
2: समोसा गरम है क्या? वड़ा ही दे दो. चलो यार
3: हाँ वड़ा दे दीजिए, लेकिन पाव नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ वड़ा.
2: हाँ मुंबई का वड़ा दे दो. मुंबई
3: का वड़ा. एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी बेसिकली कि बहुत कम इस कद के हीरो मिलते हैं. आजकल सारे हीरो ना मेरे कद के होते हैं. तो आई एम जस्ट हैप्पी टू बी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अ मैन हु आई मीन टू टॉल मैन एनी वे.
2: Yeah,
3: I'm always delighted to have him towering over me.
2: Yeah, and I must tell Mona that you are as beautiful as before.
3: Oh, sir, thank you.
2: You will always be beautiful as ever.
3: Thank you, sir. You are so kind. You are very kind. मैं पकड़ती हूँ आप खाइए.
2: ये बड़ा है और ये थोड़ा थोड़ा.
3: आप भी खाइए. हम भी खाएंगे.
2: आपको भी खिलाते हैं.
0: तो भाई बारिश के इस मौसम में अब बारी गाना गाने की. और ऐसे में देखिए दोनों हो गए नॉस्टैल्जिक.
3: नेशनल एंथम है वो. मुंबई का एंथम है बारिशों का.
2: आज रपड़े जाए तो हमें.
3: हाँ वो भी. हाँ वो डेफिनेटली स्मिता पाटिल. हाँ माय आइकॉन. उनकी वजह से तो इंडस्ट्री में आए हम. उनका काम देख देख करके सोचा कि ऐसा काम करना है हमें. इसीलिए एटलीस्ट आई केम इनटू द बिजनेस थिंकिंग ऑफ स्मिता पाटिल.
2: आई केम बिकॉज़ ऑफ अमित जी. हम लोग दोनों के फेवरेट एक्टर थे उसमें. रिम जिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन. रिम जिम गिरे सावन.
3: क्या बात.

0: से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप हमारी खूबसूरत फिल्म गुड़हल जरूर देखें, जो कि एक बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म है। और आगे मोना जी बताएंगे।
1: इट्स अ लव स्टोरी और जब प्यार आपका कैसे बोलूं, नहीं तो प्लॉट चला जाएगा। हाँ नहीं, लेकिन अगर आपका प्यार पूरा नहीं होता ना, तो आप पर क्या बीतती है और दुनिया आपके साथ कैसे सलूक करती है, इसके बारे में ये फिल्म है। ज़रूर देखिए गुड़हल। इस वक्त हंगामा सब्सक्रिप्शन चैनल पे है, स्ट्रीम हो चुकी है ऑलरेडी। हमें ऑलरेडी बहुत अच्छे रिएक्शंस भी मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग वेट करेंगे कि आप लोग भी देखें और प्लीज़ कमेंट करें कि आपको फिल्म कैसी लगी।
0: ऑल द बेस्ट टू युवराज पराशर, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। बारिश का मौसम है, भजिया लीजिए हाथ में और लगाइए गुड़हल और देखिए, एंजॉय कीजिए।
1: और देखिए ना बारिश कैसी हो रही है, और पेड़ देखिए, दरख्त देखिए, आसमान देखिए, इतनी खूबसूरती है यहाँ पे। और वाइल द गवर्नमेंट टेल्स यू कि अभी बाहर मत आना क्योंकि रेड अलर्ट है, तो पिक्चर देखिए गुड़हल।
0: दूसरी बात, गुड़हल का मतलब आप लोग सोच रहे हैं गुड़हल क्या है, गुड़हल एक तरह का एक फूल है, होता है फ्लावर,
1: मराठी में उसको जासवंद बोलते हैं, गणपति को चढ़ाया जाता है।
0: जी हाँ जी।
2: भाई मोना और शाहबाज की ये केमिस्ट्री पर्दे पर तो देखने को मिलेगी ही, लेकिन इनकी दोस्ती बिहाइंड द सीन भी है काफी पक्की। आइए अब करते हैं खास मुलाकात राइटर और डायरेक्टर युवराज पराशर से, जो बताएंगे अपनी इस फिल्म गुड़हल के बारे में कुछ और खास बातें, और साथ ही इनके किरदारों के बारे में भी कुछ और खास बातें।
3: एक्सपीरियंस गुड़हल को डायरेक्ट करने का बहुत ही अमेजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मेरी पहली फिल्म है और ये लिखी भी मैंने ही है। चूँकि इसका मुद्दा मेरे बहुत दिल के क्लोज था पेरेंट्स के ऊपर, हम इतने कंटेंट देखते हैं, इतनी फिल्में देखते हैं, लेकिन लोग पेरेंट्स के ऊपर कुछ नहीं बनाते हैं, रिश्तों की कहानी है ये, और मैंने किसी को गलत दिखाने की कोशिश नहीं की है इसमें, ना ही किसी बहू को, ना किसी बेटे को, ना किसी सास को। एक्चुअली सिचुएशंस हमारी गलत होती हैं, लेकिन हम उनको हैंडल ठीक से नहीं कर पाते हैं, और अगर उनको हम हैंडल ठीक से कर लें तो आज मैं समझता हूँ हमारे देश में आश्रम नहीं होंगे। बिकॉज मेरा मकसद यही है कि बस पेरेंट्स की जगह आश्रम में नहीं है, पेरेंट्स की जगह हमारे घर में है, हमारे दिल में है। एंड ड्यूरिंग इवन दिस फिल्म, व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर दिस फिल्म, आप बिलीव करेंगे सेम चीज़ जहां हम शूट कर रहे थे, वहां बगल में एक बंगलो था, जो कि हमें मालूम पड़ा कि बेटा और बहू बंगला बेच के चले गए, और माँ बेचारी वहाँ दो दिन से बैठी हुई थी बंगले के बाहर कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी जब तक मेरा बेटा लौट के नहीं आएगा। और दैट टाइम यस रियल, और हम शूट कर रहे थे इस फिल्म की वहाँ पे, उसी से कुछ 100 मीटर की दूरी पे। तो मुझे किसी ने बताया कि सर आप जो शूट कर रहे हो वो तो यहाँ रियल में हो रहा है, और मैं जाके देख के आया तो लिटरली वो लेडी वहाँ बैठी हुई थी, और वो अपने शायद होश खो बैठी थी कि नहीं मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा जब तक नहीं आएगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, लेकिन बेटा तो मकान बेच के चला जा चुका था। ये फिल्म मैंने ज़्यादातर आगरा में शूट की है, क्योंकि कहानी मैंने इसमें जो कैरेक्टर्स दिखाए हैं आगरा के रहने वाले हैं, चूँकि मैं आगरा का हूँ, मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा आसान था वहाँ शूट करना। कुछ छोटा सा पार्ट इसका एक मुंबई में भी शूट किया है। एक्चुअली मोना जी के साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, तो मोना जी तो ऑलरेडी मेरे दिमाग में थी व्हेन आई वाज राइटिंग द स्क्रिप्ट, कि मेरी जानकी मोना जी से कोई अच्छी प्ले कर ही नहीं सकता है। लेकिन जब कालीचरण के कैरेक्टर के लिए मैं शाहबाज जी को मिला, आई मीन उनके व्यवहार से, उनके बातचीत करने के अंदाज से, मुझे नहीं लगा कि इससे बेटर कोई कालीचरण प्ले कर सकता है। एंड जब वो फिल्म में आए, उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया, तो आई वॉज एज अ डायरेक्टर सेटिस्फाइड कि यस, ये दोनों एक दूसरे के लिए इस फिल्म के लिए बने थे। लेकिन जब ये बात मुझे मालूम पड़ी कि दोनों पहले 30 साल पहले एक फिल्म साथ में एज ए हीरो हीरोइन भी कर चुके हैं, तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि 30 साल बाद इनको फिर से एज ए हीरो हीरोइन मैं लेके आ रहा हूँ।
2: तो भाई आप सभी हो जाइए तैयार गुड़हल की ये मजेदार कहानी देखने के लिए। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: आज तो हेडबैंड्स के आसपास ही हम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें, और देखिए इनमें है कितनी सारी वैरायटी। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है एक रियलिटी शो, जिसमें होती है हमारे लिए एंटरटेनमेंट की वैरायटी, कहीं कॉमेडी, कहीं थ्रिल, कहीं ड्रामा, कहीं स्टंट्स। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं अब आपको हमारे इस अगले रियलिटी शो के मंच पर, और देखते हैं कैसे हैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट के रंग।
2: ट्रेटर्स का नया सीजन, नए कंटेस्टेंट्स, नया धमाल। अमेज़न प्राइम पर जल्द आने वाला है द ट्रेटर्स सीजन 2, जिसके होस्ट करण जौहर होंगे। ऐसे में सामने आई है लिस्ट कि कौन कौन इस सीजन में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ सकते हैं। हालांकि अब तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ नाम सामने आए हैं जो द ट्रेटर्स सीजन 2 का हिस्सा हो सकते हैं। तो पहला नाम सामने आ रहा है मुनव्वर फारूकी का, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन तो है ही, साथ ही साथ बिग बॉस सीजन 17 के विनर रह चुके हैं और लॉकअप सीजन 1 के विनर भी। और अगर वो द ट्रेटर्स में आ गए तो होगा धमाल अनलिमिटेड। इसके अलावा एक और स्टैंड अप कॉमेडियन है जो कि है कुल्लू यानी कि आदित्य, और खबरें हैं कि ये भी ट्रेटर्स सीजन 2 का हिस्सा हो सकते हैं।

इसके अलावा फुकरा इंसान जिन्हें आप बिग बॉस ओटीटी में देख चुके हैं वो इन्फ्लुएंसर हैं, रियलिटी शोज होस्ट करते हैं और अब वो नजर आ सकते हैं ट्रेडर्स में। अगला नाम है रिया चक्रवर्ती का, जो कि एक एक्ट्रेस है और कई कंट्रोवर्सीज में उनका नाम आता है।

अगली है पारुल गुलाटी, जो एक एक्ट्रेस के साथ साथ एंटरप्रेनर है। इनका नाम भी सामने आ रहा है कि ये भी ट्रेडर्स के इस सीजन में नजर आ सकती है। अगला नाम है शालिनी पस्सी, जो बॉलीवुड वाइफ्स में नजर आ चुकी है और है काफी हाई फाई।

अगला नाम श्वेता तिवारी का है। भाई ये बिग बॉस सीजन 3 की विनर रह चुकी है, खतरों के खिलाड़ी में नजर आ चुकी है, यानी कि इन्हें है रियलिटी शोज का एक्सपीरियंस और यही एक्सपीरियंस वो लेकर आएंगी ट्रेटर्स के इस सीजन में। कई फिल्मों में विलन का किरदार निभा चुके दलीप ताहिल नजर आ सकते हैं द ट्रेटर्स के इस नए सीजन में।

0: अगला नाम रैपर और सिंगर इक्का का है। अब देखना होगा कि इस रियलिटी शो में वो अपने सिंगिंग और रैपिंग का जादू चलाएंगे या फिर दिखेगी इनकी अलग साइड। अगला नाम है साउथ मॉडल रिदा थरना का और सुनने में आ रहा है द ट्रेटर्स के सीजन 2 में ये नजर आएंगी। यानी कि ये तो रही कंटेस्टेंट्स की लिस्ट जो द ट्रेटर्स सीजन 2 में नजर आ सकते हैं। यानी कि इसमें है टीवी सीरियल्स, ओटीटी, ओटीटी स्टार्स, इन्फ्लुएंसर्स, सबका मिश्रण। यानी कि एंटरटेनमेंट तो फुल ऑन होने वाला है, तो हो जाइए तैयार क्योंकि कई और नाम जुड़ सकते हैं और कुछ नाम माइनस भी हो सकते हैं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: ये जो है बैंड्स है ना, ये तो है एक अमेजिंग फैशन एक्सेसरी जो हमारे लुक पर लगा देते हैं चार चांद और होते हैं बहुत ही रॉकिंग। लेकिन लगातार अगर आप हेयर बैंड्स का इस्तेमाल करेंगे तो बाल अक्सर उलझकर टूट जाते हैं और हो जाएगा आपके लिए शॉकिंग। कुछ ऐसे ही रॉकिंग, कुछ ऐसी ही शॉकिंग है हमारे पास ये सारी खबरें जिन्हें ले आए हैं हम एक साथ ओनली फॉर यू इन फॉर्म ऑफ रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
0: बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। बात करते हैं सीरियल सैराब की। भाई खबरों की माने तो सीरियल में रोहित चंदेल के किरदार को रिप्लेस कर सकते हैं सागर पारे या तो फिर अविनाश मिश्रा। अब तक कोई नाम कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन रोहित चंदेल को रिप्लेस करने की बातें हो रही हैं। इसी के साथ देख लीजिए सैराब के सेट से ये बीटीएस नजारे, जहां शूटिंग भी हो रही है और मस्ती भी।
2: ऐसा लगता है जैसे उड़ना ही भूल गई शान और वहाँ से शान
3: डन। अरे
4: लग गया, फिर में वायर लग गया।

0: शिवांगी गेम ही नहीं समझ रही है, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है गेम में उसका।
1: कास्ट में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है वो जितने होने चाहिए।
2: नजर डालीजिए लॉकअप के नए प्रोमो पर, जहां पर होने वाला है मिडविक एविक्शन, यानी रियलिटी शो में आ गया है ट्विस्ट।
0: सुनी नहीं है, बाहर जाके और बहुत कुछ सीखना चाहिए उसको।
1: उनका जो एटीट्यूड है वो बदतमीज है,
3: वो बात सुनती नहीं है, वो सिर्फ अगला जवाब सोच रही होती है कि क्या देना है।
4: डिसीजन फाइनल हो गया है, आप दोनों ही आज लॉकअप से टर्मिनेटेड।
5: दिस इज द शॉक टू द ऑडियंस,
4: वेलकम टू केओस, टुडे इज जजमेंट डे।
1: व्हाट?
4: ओह, आज अभी इसी वक्त दो लोग टर्मिनेट होंगे।
6: व्हाट? नहीं,
7: ओह माय गॉड, व्हाट इज गोइंग टू हैपन?
4: कंट्रोलर्स, आप अपने डिपेंडेंट्स में से इन्हीं दो को टर्मिनेट कर सकते हैं।
2: इसी के साथ खबरें तो ये भी है कि लॉकअप में होने वाली है एक नहीं बल्कि दो दो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज, और सुनने में आ रहा है वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर आएंगे आसिम रियाज और रुरु, लेकिन अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। जल्द लेकर आ रहे हैं तुम्बर 2। ऐसे में आलिया भट्ट इस फिल्म के लिए कंफर्म हो गई है, जिन्होंने कर ली है कास्ट ज्वाइन।
8: गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स पे कुछ फाइन लगा है तो वो मैं भरने आया हूँ। फाइन कहाँ भरना होता है
9: वो नहीं पता।
2: नजर डाल लीजिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नए प्रोमो पर, जहाँ पर मुश्किल में पड़े हैं जेठालाल और काट रहे हैं ऑफिस के चक्कर।
1: आगे जाके पूछिए,
10: तीसरे वाले पे जाके शर्मा जी से मिलो।
11: दुकान पे लगी सील को हटाने में जेठालाल की निकल गई हवा।
12: कल अगर आप आते तो मैं फाइन ले लेता, आज नहीं ले सकता।
13: ये कैसी जगह है, यहाँ कोई भूत हुआ तो?
14: भूत भूत कुछ नहीं होते अलीसा जी, आजकल तो घोस्टिंग भी इंसान ही करते हैं।
2: जियो हॉटस्टार पर जल्द आने वाला है अलीबाबा और 40 भूत, सामने आया है इसका टीजर। आपको बता दे कि इसमें नजर आएंगे आशा नेगी और विशाल वशिष्ठ।
15: कौन कौन हंसा?

0: अपनी फैमिली के साथ चला, नहीं तो गुम हो जाओगी।
1: रवि दुबे और सरगुन मेहता का प्रोडक्शन हाउस ड्रीम याता एंटरटेनमेंट लेकर आ रहा है स्टार प्लस पर नया शो जिसका नाम है सयोनी, और इसमें नजर आएंगी रश्मि देसाई जो निभाएंगी ट्विंस की मम्मी का किरदार, जिनके किरदार का नाम होगा माया। वैसे इसके अलावा इसमें नजर आएंगी गौतम विक और जानवी सोनी। सामने आई है इसकी पहली झलक, आप भी डाल लीजिए इस पर एक नजर।
2: आज माता रानी से क्या मांगा?
3: माँ होकर भी है गोनाथ, क्या दोनों की दुनिया आ पाएगी एक साथ?
1: सारा अली खान पहुँच गई है वेकेशन पर, वो कर रही है अपने चाइल्डहुड फ्रेंड संग इंटरनेशनल ट्रिप, जहाँ से उन्होंने शेयर किए हैं ये नज़ारे।

0: कहते हैं कीचड़ में कमल खिलता है और आज हम खड़े हैं ऐसे ही बदबूदार कीचड़ में। ये है आदर्श बाल विद्यालय।
1: अपने हेडमास्टर को बुलाओ।
2: सर, ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, 49 नॉट आउट सर।
3: जल्द आने वाली है नई सीरीज जिसका नाम है आदर्श बाल विद्यालय। ऐसे में सामने आया है इसका ट्रेलर।
4: मुझे बोर्ड्स में अच्छे रिजल्ट्स चाहिए वरना हम लोग कैम्ब्रिज नहीं जा पाएंगे।
5: Who's the father of genetics?
6: मैम, ये तो जेनेटिक्स की माँ ही बता सकती है ना।
7: भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताओ।
8: चिकन 65।
9: नीम का पत्ता कड़वा है।
10: आपके बच्चों को टीचर्स नहीं स्वयं भगवान की जरूरत पड़ेगी।
3: जूलियट जर्दी के सेट से सामने आए हैं ये BTS नजारे जो शेयर किए हैं जसमीत कौर यानी हीर ने।

जाने अनजाने हम मिले कर रही है बोट राइड। रीत, राघव और उन्नति हो गए हैं कश्ती पे सवार। देख लीजिए ये BTS नजारे।

0: कह रही हैं कि टाइट हेयर बैंड्स लगाने से ना फोरहेड पर प्रेशर आ जाता है और कभी कभी सरदर्द भी हो सकता है। वैसे देखिए सरदर्द तो है यहाँ पर इनकी कहानी में भी, आप तो समझ ही गए होंगे मैं किसे सरदर्द बुला रही हूँ। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको रीत और राघव के पास और देखते हैं कैसे आगे बढ़ रही है आज इनकी ये कहानी। क्या फिर से आया है यहाँ पर कोई ड्रामा? ऑफकोर्स यस।
1: मेरी बेचैनियों को जान न जा।
2: रीत और राघव का बारिश रोमांस।

फिर शुरू हुई नई नोकझोंक। सीरियल में सांप वाला ट्विस्ट,

जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में आज बड़े दिनों बाद रीत और राघव को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिला है और ये मौका इन्हें दिया है इस मौसम ने। जी हाँ, बारिश में दिखा इनका रोमांस। देखिए कैसे दोनों एक दूसरे से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं।

0: राघव कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब हम चाय पियेंगे यहाँ बैठ के तो वहाँ हम दोनों अकेले नहीं होंगे, हमारे साथ हमारा छोटा मेहमान भी होगा. और वो इंजॉय कर रहे हैं बारिश वाला मौसम और चाय पीना. और रियलाइज करती है कि यू नो असल में एक्चुअली हैप्पीनेस जो होती है वो बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होती है, वो यही छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे कि आपके साथ एक अच्छा इंसान जिससे आप प्यार करते हो, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना और हैप्पी फैमिली. या सो वो ऐसी थोड़ी सी क्यूट सी बातें चल रही है उनकी.
1: लेकिन जल्द ही इस रोमांस पर ब्रेक भी लग गया जब फिर एक बार शुरू हो गई रीत और राघव की नोकझोंक, जहां राघव रीत को समझा रहा है और रीत अपनी जिद पर अड़ी है. साथ ही वो कई ऐसे सच है जो राघव से छुपा रही है, क्योंकि रीत को लगता है कि राघव अब उस पर भरोसा नहीं करता है. इसी बात को लेकर दोनों में बहस छिड़ गई है.
2: या तुम्हें एंडी पसंद नहीं, क्या हो जाए?
3: क्यों कह रहे हैं? मैं क्यों नहीं चाहूंगी ऐसा? और खास तौर से तब जब वो खुद इस रिश्ते के लिए तैयार है. मेरी वहां ना आने की सिर्फ एक ही वजह थी, और वो ये थी कि मैं उस औरत का इंतजार कर रही थी जिसने हमें वो चिट्ठी भेजी थी जिसमें लिखा था कि रियान जिंदा है.
2: मैं जानता था तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह वहां ना पहुंच, पर ये बात निकलवाने के लिए तुम्हें सब
3: आपको इस वक्त मजाक सूझ रहा है जबकि मेरे अंदर तूफान आ रहा है.
2: ये मुसीबत तुमने खुद अपनी लाइफ में बुलाई है. जब वो लेटर आया था मैंने तुम्हें क्या कहा था कि किसी ने हमारे साथ बत्ता मजाक किया, उसके बाद भी तुम इस सब चीजों को सीरियसली ले. कोई औरत हमारी दीदी को लेकर वहां आई, कोई आया?
3: अपने मन की आवाज सुन रही हूँ. आपने इतनी आसानी से कह दिया कि आप मेरा साथ छोड़ देंगे. नहीं रा, मैं समझ गई हूँ कि आप मेरे साथ तब तक ये जब तक आपको मुझ पे भरोसा है. जिस दिन आपका भरोसा हिल गया उस दिन आप मेरा हाथ भी छोड़ देंगे. और अच्छा ही हुआ कि आज मैंने ये भी जान लिया.
0: राघव से मैं ये छुपा रही हूँ कि मुझे उसी औरत का कॉल आया था जिसने हमें चिट्ठी भेजी थी ये कह के कि रियांश जिंदा है. और उसके बाद हम हॉस्पिटल गए, पुलिस स्टेशन गए, सब कुछ कर लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ. एंड देन राघव वॉज कन्विंस्ड कि ये सब मेरा वहम है, और क्योंकि मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ अब और मेरा बच्चा भी नहीं है इस दुनिया में, तो इसलिए मैं ये सब वहम मुझे आ रहे हैं एंड ऑल दैट. बट अभी जब मुझे फ़ोन आया तो रीत को कि उस औरत की आवाज़ में सच्चाई लगी. उसे लगा जेन्युइनली वो शायद कुछ जानती है जो मुझे पता चल जाए अपने बच्चे के बारे में. तो वो राघव को बहुत यू नो एक्साइटेडली बताना चाहती थी, बट देन उसके दिमाग में थॉट आया कि राघव बिलीव नहीं करेगा उस पर और वो शायद फिर से इसे वहम कह के टाल दे और क्या पता मुझे जाने भी ना दे मिलने, तो इसलिए उसने वो बात छुपाई.
1: लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब बुआ जी यानी कि शालिनी लेकर आती है नया षड्यंत्र यानी कि सांप वाला ट्विस्ट. जी हाँ, रियांश को मारने की फिराक में तो शालिनी कब से थी, और आज उसे वो मौका मिल ही गया क्योंकि रियांश अकेला जो है कमरे में, ऐसे में वो ले आई है टोकरी में सांप, और उसे मारने के लिए उसने इस सांप को बच्चे के बिस्तर पर ही छोड़ दिया है.
4: मैंने कहा है कि उसे बड़ा शौक है ना तुम्हें दुनिया के सामने अपने आप को तेरी असली माँ दिखाने का. हाँ, उसे तेरे लिए कुछ अच्छी अच्छी टेस्टी टेस्टी बेबी फूड बनाने लगे, कुछ अपना पसंद खाना होगा. हाँ, पता है मैंने ऐसा क्यों किया? ओ हाँ, ताकि वो कैसे गायब हो जाए और मैं तुझे मार सकूँ. नहीं नहीं नहीं नहीं मेरे सुपरस्टार, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी. मैं तो चाहती थी कि तुम मेरी टीम में आ जाए, मेरा ढाल बने, मेरा हथियार बने. हमने एक दूसरे को यही प्रॉमिस किया था. लेकिन तेरी जो ये ओवर स्मार्ट अपनी असली माँ है ना रीत रिपोर्टर, इसने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा. क्योंकि अगर मुझे जिंदा रहना है तो तुझे मरना होगा. दुख के साथ मुझे तुझे कहना ही पड़ेगा हमेशा के लिए.
1: भाई आज तो शालिनी के दिल की नफरत साफ देखने को जाहिर है.

0: लेकिन इससे पहले कि रियांश को कुछ होता, सही समय पर वहाँ रीत आ जाती है और रीत सांप को देख लेती है। बस फिर क्या, बच्चे की जान बचाने के लिए वो खुद की जान खतरे में डाल देती है और सांप रीत को काट लेता है।
1: इतना जहरीला सांप।
2: सांप? रियाज,

0: ऐसे में वहाँ राघव और बाकी के घर वाले पहुँचते हैं। रीत तो बेहोश है, ऐसे में राघव गोद में उठाकर रीत को अस्पताल लेकर भागता है। तो भाई अब देखना होगा रीत इस जहरीले सांप के काटने से बच पाएगी या फिर कहानी में कोई नया मोड़ आएगा, ये देखना होगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: हमारी जो जगदात्री है ना, वो रेगुलर हेयर बैंड्स नहीं पहनती, वो तो पहनती है पंगे वाला हेयर बैंड। क्योंकि देखिए, खुलकर पंगा ले लेती हैं, फिर होता है यहाँ पर एक हाई एक्शन सीक्वेंस और आते हैं इनके सामने नई नई ट्विस्ट। तो कौन सी नई सिचुएशन का सामना कर रही हैं आज हमारी जगदात्री, चलिए पता कर कर आते हैं, लेकर चलते हैं आप सबको जगदात्री के सेट पर।
2: मेरा
0: बहुरानी होने का फर्ज निभाती जगधात्री,
2: मुझको रस आने लगा जब से चहकी बतिया तेरी।
0: जगधात्री की हैप्पी फैमिली,
2: तेरा मारा रसिया।
0: शुरू हुआ तपस्या का तमाशा।

जी टीवी के सीरियल जगधात्री में आज जगधात्री काफी खुश है क्योंकि एक साथ डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठकर ब्रेकफास्ट जो करने वाला है। ऐसे में जगधात्री देखिए कैसे तैयारियां कर रही है। तभी वहां पहुंच जाती है माया और शिवाय। ऐसे में आंखों में शिवाय और जगधात्री में भी बातें हो रही है। खैर इसके बाद जगधात्री अपने काम में लग जाती है और सभी लोग टेबल पर आ जाते हैं।

0: गैसिया। इतना ही नहीं, आज तो माया फैमिली फोटो भी खींच रही है सबके साथ। ऐसे में सभी लोग काफी खुश है।
1: कृष्णा, कृष्णा, आ जाओ तुम यहाँ। चलिए सब लोग, लेट्स टेक फोटो।

0: लेकिन ये सब कुछ तपस्या और उसके चाहने वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। वो फोटो तो खिंचवा रहे हैं लेकिन चेहरे पर गुस्सा है। तपस्या तो बस यही चाह रही है कि जैसे तैसे ये हैप्पी मोमेंट पर ब्रेक लगे और तमाशा शुरू हो, जिसके लिए उसने प्लानिंग भी कर ली है। और देखिए, मिल गया तपस्या को मौका। जैसे ही महेश अपनी चेयर पर बैठने आ रहे होते हैं, तपस्या उनकी चेयर पर बैठ जाती है, जिस पर माया तपस्या को चिल्लाती है।
1: अरे कोई बात नहीं, उसे वहां बैठना है। बैठ बैठ। अरे रुद्र नजर नहीं आ रहे?
2: कहा है आपके पति देव रुद्र?
1: नो, बट क्या है ना, कभी कभी रूटीन बहुत बोरिंग होते हैं, रूटीन को बदलते रहना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं।
0: और इसी बात को लेकर तपस्या ड्रामा शुरू कर देती है। वो अपनी बहन जगधात्री के खिलाफ भी बहुत कुछ कह रही है और साथ ही अपने हक की भी बात कर रही है। ऐसे में आज तपस्या का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है और फैमिली के हैप्पी मोमेंट को तपस्या ने खराब कर ही दिया।
3: ये बात सिर्फ बाबू की डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है, हमारे संस्कार मैडम वैल्यूज को डिसरिस्पेक्ट करने की
0: फिलहाल तो जगधात्री से तपस्या को काफी प्रॉब्लम्स हो रही है। ऐसे में अब जगधात्री और माया मिलकर क्या करेंगी, कैसे तपस्या का गुस्सा शांत होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: ये फिलहाल सिचुएशन है आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन आपके बाल तो संभल सकते हैं। आज तो हम कर रहे हैं इस खूबसूरत से स्टोर में हेयर बैंड्स की शॉपिंग। तो बताइए कौन सा हेयर बैंड खरीदूं मैं आपके लिए। फैब्रिक हेयर बैंड्स होते हैं बहुत ही कंफर्टेबल, वैसे यहाँ नहीं है बिल्कुल भी कंफर्ट, क्योंकि ये नए नए ट्विस्ट तो क्रिएट कर रहे हैं, इनके सामने अनकंफर्टेबल सिचुएशंस। लेकर चलते हैं आपको मन्नत के पास।

प्रसन्नता की मेहंदी में झूमे दूल्हे राजा। विक्रांत की याददाश्त वापस लाने में दुआ की एक कोशिश। हादसे से बाल बाल बची दुआ। कलर्स के सीरियल मन्नत में मान्यता और अभिमन्यु की शादी की रस्में शुरू हो गई हैं और आज हो रही है मान्यता की मेहंदी की रस्म, जहां पर मान्यता एक ओर बैठकर अपने हाथों में अभिमन्यु के नाम की मेहंदी रचवा रही है तो वहीं अभिमन्यु खुशी के मारे झूम रहे हैं पूरे परिवार संग। और अभिमन्यु को यूं झूमता देख मान्यता भी खुश हो रही है।

0: बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच. और मुझे असली की मेहंदी भी लग चुकी है जो कि आप देख सकते हैं. ये एक बनारसी लहंगा है, बनारसी साड़ी का लहंगा, तो काफ़ी हल्का है, बहुत हैवी नहीं है. और साथ में मैंने पेयरअप करी है ईयरिंग और मांग टीका और नेकलेस और बस हेयर मेकअप, दैट्स इट. बहुत खुशी हो रही है उसको देख के, तो बस मैं शर्मा ही गई. तो वो डांस कर रहा है और उसका डांस देख के मैं शर्मा जाती हूँ. फिर वो मेरे पास आता है, फिर वो मुझे जूस पिलाता है, तो मैं बहुत खुश हूँ.
1: बिल्कुल सही कहा, आज तो मान्यता खुशियों के बादलों में झूम रही है क्योंकि अभिमन्यु बहुत खुश है. इतना ही नहीं, अभिमन्यु तो उसे जूस भी पिला रहा है, ऐसे में उसकी खुशी दुगनी होगी ही. लेकिन उसे क्या पता कि यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि मन्नत ही नहीं बल्कि मन्नत की बिटिया रानी दुआ भी पूरी कोशिश कर रही है कि वो अपने पापा की याददाश्त वापस लेकर आए. ऐसे में देखिए कैसे दुआ ने मान्यता और अभिमन्यु दोनों को ही कठपुतली के डांस का सरप्राइज दे दिया, जिसे देखकर मन्नत और अभिमन्यु दोनों खुश हो रहे हैं. लेकिन उन्हें नहीं पता कि दुआ कठपुतली के जरिए मन्नत और विक्रांत की कहानी बयां कर रही है.
2: एक थी बंदी बूढ़ी वाली, खाना बनाना था उसे प्यारा, फिर उसे मिला गुरुद्वारे में शहजादा प्यारा. फिर हुआ उनकी कहानी का टेक ऑफ हेलीकॉप्टर राइड के साथ. बंदी ने की नॉनस्टॉप बात, शहजादे ने सोचा नहीं था.
0: ड्रामा क्रिएट होने वाला है, बहुत बड़ा सस्पेंस खुलने वाला है. जो मेरी दीदी का बेटा है वो विक्रांत के घर में था, तो अब मेरी बहन को पता चलने वाला है कि वो उनका बच्चा है, तो बहुत बड़ा ड्रामा रिवील होने वाला है.
1: खैर, दुआ ने कोशिश तो बहुत की थी विक्रांत की याददाश्त वापस लाने की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. उल्टा विक्रांत सभी के सामने जाकर बच्चों की तारीफ करता है और तो और उनकी नज़र भी उतारता है और पैसे भी न्योछावर करता है ताकि बच्चों को किसी की नज़र ना लगे. ऐसे में दुआ ने हार नहीं मानी और देखिए कैसे अपनी माँ मन्नत के साथ मिलकर मखाने की खीर का ट्विस्ट लेकर आ गई, जिसे चखते ही अभिमन्यु को कुछ कुछ याद आने लगा. लेकिन वो उठकर वहाँ से जाने लगा कि तभी बच्चों ने उसे रोक लिया और शुरू किया कॉम्पिटिशन कि सबसे ज्यादा खीर कौन खाएगा. बस फिर क्या, शुरू हो गया कॉम्पिटिशन और एक एक कर सब आउट होने लगे. लेकिन विक्रांत वो खीर खाए जा रहा है क्योंकि उसकी यादें ताज़ा हो रही हैं. भाई अभिमन्यु तो मन्नत की बातों को नजरअंदाज करता है, वहीं दूसरी ओर दुआ नया खेल खेलती है, सामने लगे सजावटी बोर्ड को हिलाने लगती है ताकि वो बोर्ड उसके ऊपर गिर जाए. और उसे यकीन है कि उसके पापा उसे बचाने जरूर आएंगे और होता भी यही है. विक्रांत सही समय पर पहुंच जाता है दुआ को बचाने, लेकिन जैसे ही वो बोर्ड विक्रांत और दुआ के ऊपर गिरने जाता है तो वहाँ मन्नत पहुँच जाती है. अब दुआ, बंटी और यूवी यही चाहते हैं कि विक्रांत की याददाश्त लौट आए, लेकिन अभिमन्यु उसके तो गुस्से का पारा चढ़ गया क्योंकि उसने दुआ को वो बोर्ड हिलाते हुए देख जो लिया था.
3: क्या कर रही थी तू? क्या थी ये लापरवाही? और तू तू इसकी माँ है ना, तो जिम्मेदारी संभालना अपनी, हद कर दे. दोनों तुम माँ बेटी दोनों एक जैसे हो. अरे बच्चे को साथ ले आइए ना, तेरे ख्याल रख ले इसका, इसको कुछ हो जाता फिर.
4: क्या यार, इना विना मत डांटो, दिख नहीं रहा कि आपको डर रहे हुए हैं दोनों. रहने दे बेटी, इनका हक बनता है हमें डांटने का.
1: अब धुंधली यादें ताज़ा हो रही हैं तो कहीं न कहीं नाराजगी भी होगी. खैर, अभिमन्यु तो वहाँ से चला जाता है लेकिन मन्नत उसे पूरा यकीन है कि आज नहीं तो कल विक्रांत की याददाश्त वापस आएगी ही, लेकिन उसे अपनी बेटी दुआ पर भी गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसकी बेटी दुआ ने जानबूझकर किया है और मन्नत ने उसकी चोरी पकड़ ली है।
5: मैं कुछ नहीं सुनूंगी, आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप दोबारा ऐसा कुछ नहीं करोगी, कुछ ऐसा नहीं करोगी जिससे आपको चोट पहुंचेगी, प्रॉमिस।
4: नो नो मम्मा, आई एम सॉरी, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी।
5: पिंकी प्रॉमिस।
1: मन्नत ने तो अपनी बेटी दुआ को यकीन दिला दिया है कि उनका प्यार कभी खोएगा नहीं। अब देखना होगा कि मन्नत और कितने जतन करेगी। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
6: वक्त लूज सॉफ्ट हेयर बैंड आपको बाल टूटने से और बाल उलझने से बचाता है। वैसे बात तो सही है, और इसी टिप के साथ साथ अब लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए अगली खबर, जिसमें है आपके लिए एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, थ्रिल और ड्रामा सब कुछ एक साथ। यानी यहां तो है आपके लिए मनोरंजन भरपूर। हम जानते हैं आपसे नहीं हो रहा है इंतजार, लेट्स चेक इट आउट।
7: वृंदा का हुआ रो रो कर बुरा हाल,
8: हो के जुदा रो लेड़ दे, रो लेड़ दे।
7: साथ साथ नजर आए संजय और स्वाति,
8: मेरे

0: के सीरियल तू ही रे दिल में वृंदा कृष्णा बेन के यहाँ रह रही है। ऐसे में देखिए कैसे वो वहाँ का सारा काम कर रही है। भाई वृंदा काम कर ही रही होती है कि उसे दिख जाते हैं संजय और स्वाति साथ साथ, जो एक फूल की दुकान पर गुलदस्ता लेने पहुँचे हैं। ऐसे में इन दोनों को साथ देखकर वृंदा का दिल तो टूट जाता है, लेकिन वो छुप जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि संजय और स्वाति के रिश्ते में दरार पड़े। ऐसे में कृष्णा बेन भी संजय को देखती है और देखे कैसे उसकी कार की तरफ दौड़ लगाती है उसे रोकने के लिए और उसे ये बताने के लिए कि वृंदा यहीं पर है, लेकिन वृंदा कृष्णा बेन को ऐसा करने से रोक लेती है।
1: एक्चुअली संजय जी से भाग के ताकि वो मूव ऑन कर पाए या फिर अपनी लाइफ अच्छे से जी पाए, भाग के मैं यहाँ पर आई थी, सुसाइड करने जा रही थी, कृष्णा बहन ने बचाया था, तो मुझे लगा था कि शायद से अब उनकी लाइफ अलग चलेगी, मेरी लाइफ अलग चलेगी। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि संजय जी यहाँ पे भी आ गए हैं। अब वो मुझे ढूंढते ढूंढते आए या फिर किस चीज़ के लिए आए, वो मंदिर में प्रे कर रहे होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद से मेरे लिए प्रे करें। तो उस स्प्लिट सेकंड के बाद मुझे पता चलता है कि उनके साथ उनकी बेटर हाफ भी आई है, स्वाति। तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है क्योंकि मैंने इतना जल्दी, मुझे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी मुझे स्वाति देखने के लिए मिलेंगी। तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस सीन था, बहुत ज़्यादा।
0: ऐसे में वृंदा कृष्णा बेन को समझाती है कि वो नहीं चाहती कि संजय और स्वाति के रिश्ते में दरार पड़े, इसीलिए वो उनके सामने नहीं जाना चाहती। ऐसे में कृष्णा बेन भी समझती है, लेकिन देखिए कैसे वृंदा का दिल टूट गया है और वो फूट फूट कर रो रही है।
1: संजय जी ने मेरी जान बचाने के लिए शादी की थी, लेकिन मैं तो अपने मन से हर चीज़ से मैं तो कमिटेड हूँ ना इस शादी में, क्योंकि मैं तो प्यार भी करती हूँ। आई लव दिस गाय संजय। तो उस वजह से वृंदा इतनी इमोशनल है, और जैसे कि आपको बताया अभी तक तो आपको कैरेक्टर ट्रेट्स पता चल गए होंगे, बहुत इमोशनल है, बहुत नाइव है, बहुत इनोसेंट है। तो वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसकी रिलेशनशिप में, स्वाति और संजय की रिलेशनशिप में कोई भी गलतफहमी हो या फिर लड़ाई हो।
0: वहीं दूसरी तरफ काकी को भी सच का पता चल चुका है, उसे ये सच सुनकर झटका लगा है कि उसके साथ गेम खेला जा रहा है।
2: बेटी इतना प्यार दूंगी तो मेरी ना उसकी बात बने, देख ले
3: मैं कुछ बात करना।
2: हाँ बोल ना बेटा बोल।
3: ये सब एक दिखावा है।
2: क्या कुछ शर्म है, दिखावा थोड़ी ना है, देर क्यों मैं ये सब।
3: मेरी बात ध्यान से सुनिए, तो कविता दीदी और माधवी मैडम दोनों मिलकर आपके साथ चाल खेल रही है। उस दिन मैंने कविता दीदी और माधवी मैडम दोनों को फोन पर बात करते हुए सुन लिया था।
2: क्या सुना तुमने?
3: स्वाति को सिर्फ यहाँ पर आपको और संजू भैया को अलग करने के लिए लाया जा रहा है, इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है उनका। बस यही चाहती है कि आप इस घर से, इस परिवार से पूरी तरह से दूर हो जाए। आपका सच जानना बहुत जरूरी था, ये सब देख के अभी बन रुखा जा रहा कि मैं आपसे कैसे सच बताऊँ।
0: तो भाई इन सब उलझनों के बीच अब देखना होगा कि कैसे वृंदा खुद को संभालेगी और रिश्तों को सुधारेगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: एंटरटेनमेंट का है बैंड तो पहनाता है हमें ये शो जिसका नाम है तुम होना। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको तुम होना के इस मंच पर और दिखाते हैं इसकी ये झलक। वेल, यहाँ भी है हमारे लिए एंटरटेनमेंट जोरदार और ऊपर से हम सबके फेवरेट सुपर होस्ट राजीव खंडेलवाल। गेट सेट गो।
5: हिम्मत 100 में से 150, जिम्मेदारियां निभाना 100 में से 200, खुद के लिए वक्त निकालना इसमें फेल होगी। 19 साल की उम्र में शादी क्या

0: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और अब लोग इन्हें देखकर कहते हैं जीना इसी का नाम। मुंबई से कल्पना शिंदे जी।
1: मैंने जो स्ट्रगल किया है ना, तभी मैं अकेली थी और मेरे बेटे और मेरी सास, तो मेरे साथ में कोई नहीं था सर। तो मैं जॉब पे भी जाती थी, मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल में भी जाती थी देखने, और तब मेरे बच्चे का एग्जाम भी चालू था और मेरा छोटा बच्चा विराज बॉम्बे आता था, इसलिए तब मेरे को बहुत ऐसा लगता था कि कोई तो चाहिए था साथ देने, लेकिन तभी किसी ने साथ नहीं दिया क्योंकि जॉब नहीं छोड़ सकती थी। जॉब छोड़ती तो घर कैसा चलता था। मेरे बच्चे ने और मेरे सासू माँ ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया।
2: जब से वो शादी करके आए, उसको कुछ मैंने अपने मन से तो दिया ही नहीं है, उसने जो भी किया है अपना स्ट्रगल करके किया है। तो अगर कोई मेरा ब्रेन ये हुआ था, हेमरेज हो गया था, ओ भगवान की कृपा थी या क्या था मालूम नहीं, सावित्री ने जैसे सत्यवान को जैसे प्राण लेके आए थे ना, वैसे इसने मेरे प्राण लेके आए। मेरे लिए तो भगवान ही है ये।
3: अरे बाबा।
0: मुस्कुराहट बांटना 100 में से 100, फैमिली को संभालना 100 में से 100, और मुश्किलों से लड़ना 100 में से 2 करोड़। लेकिन एक वक्त था जब मिसकैरेज से लेकर घातक बीमारी तक क्या नहीं सहा इन्होंने। विदिशा मध्य प्रदेश से जोरदार तालियां हमारी सुपरस्टार नेहा जी के लिए। आप सबकी जिंदगी में इतना कुछ आपने लोगों ने देखा है, इतना कुछ आपने बांटा है, और आज आप खड़ी हैं यहाँ पर अपने सपनों को जीने के लिए।
4: 2017 में मैं प्रेग्नेंट हुई थी, तो 7 मंथ प्रेग्नेंट थी, तो मेरा मिसकैरेज हो गया। देन उसके बाद धीरे धीरे मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगी। मेरी गायनिक ने बोला कि थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आपको हेमटोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। तो वहाँ पे हमने सारे चेकअप कराए, जो ब्लड कैंसर होता है, टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, वो डिसीज हो गया। लाइक वो पैरों तले जमीन खिसकना, वो मैंने फील किया।
5: वो जो पहले 4-5 महीने थे ना, वो बहुत ज्यादा वैसे थे, मतलब एक तो दवाई खाने के बाद है ना, वो रात को तड़पती थी पूरी तरह से, और मैं बाजू में रहता था, मेरे को भी नींद गायब हो जाती थी। तो कई बार ऐसा लगता था यार, मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये तड़पते तड़पते ऊपर जाने वाली है क्या। तो हम लोग मस्ती मजाक करके ना, बहुत पॉजिटिवली करके कि भाई देखो यार

0: ये बीमारी ऐसी होती है, आप जितना मतलब कि कोई सा भी स्टेज हो, लेकिन अगर आप बहुत पॉजिटिव माहौल रखोगे ना घर में और पेशेंट को ये फील मत कराओ बस कि वो बीमार है, तो डेफिनेटली मतलब कुछ तो असर होता है।
1: पहले मुझे ऐसा लगता था ये बंदे को मेरी फिक्र है कि भी नहीं, पर जब ये टाइम पीरियड आया तब मुझे पता चला कि नहीं, वो बहुत प्यार करते हैं।
2: तो कैसी रही इन हेयर बैंड्स के आसपास एंटरटेनमेंट की बातें? अब देखिए, ये हेयर बैंड्स तो हम औरतों की स्टाइलिंग का अहम हिस्सा है, उसी तरह हमारे शो सास बहू और पीरिया का अहम हिस्सा है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। लेकिन क्या करें, अब तो वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, तो मुलाकात होगी आपसे सेम टाइम सेम जगह ऑन नियॉन सास बहू और बेटियां। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे स्टाइलिश, स्टे कूल, बाय बाय।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession।
3: अमरनाथ यात्रा में अब तक करीब 3,00,000 भक्तों ने किए दर्शन, चरम पर है श्रद्धालुओं का उत्साह। 33 दिन की पैदल यात्रा कर जयपुर के 13 भक्त पहुंचे अमरनाथ। CBSE थर्ड लैंग्वेज की नहीं होगी बोर्ड परीक्षा, इंटरनल एग्जाम के जरिए होगा मूल्यांकन। 10वीं पास का सर्टिफिकेट पाने के लिए तीसरी भाषा में पास होना जरूरी। कर्नाटक में बनेगी देश की पहली सरकारी AI यूनिवर्सिटी, CM DK शिव कुमार ने की घोषणा। कर्नाटक को जिम्मेदार AI के ग्लोबल हब के तौर पर पेश करने की है योजना। अभिनेता शाहरुख खान के बंगले मन्नत में रेनोवेशन का रास्ता हुआ साफ, पर्यावरण का हवाला देकर रेनोवेशन पर रोक लगाने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज। मानसूनी मौसम में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं चमोली के फूलों की घाटी, अब तक 11,000 पर्यटकों ने किए दीदार। फीफा वर्ल्ड कप के रंग में रंगा पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर, डार्क चॉकलेट और फूड कलर से बनाई लियोनेल मेसी की जीवंत प्रतिमा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें।
3: भगवान जगन्नाथ के करोड़ों भक्तों का खत्म होने वाला है इंतजार, एक दिन बाद 16 जुलाई को शुरू होगी रथ यात्रा, पुरी में उत्सव का माहौल। रथ यात्रा से पहले आज भगवान जगन्नाथ भक्तों को देंगे नव यौवन दर्शन, श्रद्धालु में जबरदस्त उत्साह, दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। मान्यता के अनुसार स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं और 15 दिनों तक दर्शन नहीं देते हैं। इसके बाद जब अस्वस्थ होकर पहली बार दर्शन देते हैं तो उसे नव यौवन दर्शन कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की तैयारियां हुई पूरी, वो रथ भी है तैयार जिसमें सवार होकर महाप्रभु जगन्नाथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे। भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा का रथ भी सजकर तैयार, तो यात्रा मार्ग की भी की जा रही है शानदार सजावट। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले मॉक ड्रिल कई एजेंसियों ने लिया इसमें हिस्सा। जवानों ने इमरजेंसी और आपदा से निपटने के लिए किया मॉक ड्रिल, सुरक्षा को भी परखा गया। इमरजेंसी के दौरान लोगों ने सड़क को किया खाली, मॉक ड्रिल में एनसीसी कैडेट्स ने भी लिया हिस्सा। पूरी रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए 12,000 पुलिसकर्मी, ड्रोन और एंटी ड्रोन उपकरणों की तैनाती। भुवनेश्वर पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी, निश्चल आनंद सरस्वती रथ यात्रा में होंगे शामिल। इम्फाल के श्री श्री गोविंदाजी मंदिर में कांग चिंगबा उत्सव की तैयारियां तेज, रथ को बनाने में जुटे कारीगर। भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के लिए भव्य रथों का हो रहा है निर्माण, 10 दिनों तक चलेगा उत्सव। कांग चिंगबा उत्सव को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम, कई जगह पर हुई जवानों की तैनाती। पूरी आस्था और भक्ति के साथ जारी है अमरनाथ यात्रा, अब तक करीब 3,00,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। श्रीनगर में बाबा बर्फानी का दिखा अनोखा भक्त, दिल्ली से कश्मीर तक साइकिल चलाकर पूरी की अमरनाथ यात्रा। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी है चार धाम यात्रा, केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 14,00,000 पार। महज ढाई महीने में पहली बार 14,00,000 श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ धाम, अभी 3 महीने की यात्रा बाकी, प्रतिदिन 2,000 भक्त कर रहे हैं दर्शन। केदारनाथ धाम में खराब मौसम पर भारी दिखी लोगों की आस्था, श्रद्धालु में दर्शन पूजन का जोरदार उत्साह। केदारनाथ में बारिश के बीच अलर्ट पे प्रशासन ने संवेदनशील स्थानों पर बढ़ाई जवानों की तैनाती। केदारनाथ में इस बार नया रिकॉर्ड बनाने की उम्मीद, यात्रियों के लिए डेंजर जोन पर जवान तैनात। बद्रीनाथ में भी खराब मौसम पर भारी दिखी श्रद्धालु की आस्था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे भगवान के दर्शन। बद्रीनाथ धाम में अब तक कुल 14,82,000 श्रद्धालुओं ने किए भगवान के दर्शन, पिछले दो दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही है बारिश। बद्रीनाथ धाम में बारिश के बीच उफान पर अलकनंदा नदी, मानसून के चलते अद्भुत नजर आ रहा है यात्रा मार्ग का प्राकृतिक सुंदरता। बारिश के बीच धुंध की मोटी चादर में लिपटी नजर आई ऊंची ऊंची पहाड़ियां, बादलों से घिरे तीर्थ की बड़ी सुंदरता। हेमकुंड साहिब में भी उमड़ा आस्था का मेला, अब तक 1,92,000 से ज्यादा भक्तों ने टेका मत्था। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ के भंडार से निकले 10,12,00,000 रुपए, पहले चरण की गिनती हुई पूरी। आज आषाढ़ अमावस्या के दिन नहीं होगा भंडारे की गिनती, 15 जुलाई यानी कल होगी चेक, ऑनलाइन मिले दान और सोने चांदी के चढ़ावे की गिनती। आषाढ़ अमावस्या पे सावलिया सेठ के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की लगी लंबी कतारें, भक्तों ने लगाए सावलिया सेठ के जयकारे। प्रयागराज में आषाढ़ अमावस्या पे उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में आस्था की डुबकी। श्रद्धालुओं ने आषाढ़ अमावस्या पर मां गंगा की उतारी आरती, विधि विधान से की पूजा अर्चना। उज्जैन में आषाढ़ अमावस्या पर बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए इसमें शामिल। जलाभिषेक के बाद भगवान महाकाल का किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार, अमावस्या पर बाबा को शेषनाग का रजत मुकुट मुंडमाला और फूलों की सुगंधित मालाएं पहनाई गई। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से ही लगी भक्तों की लंबी कतारें, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। देहरादून से सोमनाथ के लिए विशेष रेल यात्रा रवाना, सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। 6 दिवसीय इस विशेष यात्रा में प्रदेश के विभिन्न वर्गों से लगभग 700 श्रद्धालु सहभागी बने, इसमें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी, संत समाज तथा समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि हुए शामिल। संबल के प्राचीन वंश गोपाल तीर्थ का 4.5 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है जीर्णोद्धार, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जीर्णोद्धार की रखी गई नींव। वंश गोपाल तीर्थ का बनेगा मुख्य द्वार, विश्राम कक्ष और महिला स्नान घर, संभल में 68 तीर्थ और 19 कूपों को खोजे जाने के बाद सीएम योगी ने तीर्थों को विकसित कराने का किया था ऐलान। यूपी में कावड़ यात्रा के लिए तैयारियां शुरू, सहारनपुर में डीएम एसएसपी ने अफसरों संग बनाई सुरक्षा और ट्रैफिक की रणनीति। श्रावण मास कावड़ यात्रा और शिवरात्रि पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट में हुई समन्वय बैठक, कावड़ यात्रा से जुड़े आयोजक और प्रतिनिधि रहे इस दौरान मौजूद। बिजनौर में कावड़ यात्रा से पहले हाई अलर्ट, डीएम और एसपी ने पूरे रूट का किया निरीक्षण, सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर दिए कड़े निर्देश। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज जाएंगे अंतरिक्ष स्टेशन, कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोन से 2 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जाएंगे आईएसएस। अंतरिक्ष यान सोयूज MS-29 से भारतीय समय के मुताबिक रात 8:17 पे बैकोनूर स्पेस पोर्ट से भरेंगे उड़ान, करीब 3 घंटे बाद आईएसएस से जुड़ेगा सोयूज MS-29। बुधवार देर रात करीब 1:30 बजे अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करेंगे तीनों अंतरिक्ष यात्री, आईएसएस के 75वें अभियान का हिस्सा होंगे तीनों अंतरिक्ष यात्री। यूक्रेनी और भारतीय मूल के माता पिता के घर पैदा हुए अनिल मेनन अमेरिकी स्पेस फोर्स में कर्नल और इमरजेंसी मेडिसिन में फिजिशियन है, भारत में 1 साल रह चुके हैं मेनन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के दौरे के दौरान माइक्रोग्राविटी सेमीकंडक्टर समेत कई प्रयोग करेंगे अनिल मेनन। अनिल मेनन की पत्नी एना विल्हेम भी अंतरिक्ष यात्री है। सीबीएसई ने R3 भाषा असेसमेंट फ्रेमवर्क किया जारी, 10वीं में तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं, स्कूल स्तर पर होगा मूल्यांकन लेकिन 10वीं पास करने के लिए असेसमेंट क्लियर करना है जरूरी। कर्नाटक में बनेगी देश की पहली सरकारी एआई यूनिवर्सिटी, सीएम डीके शिव कुमार ने की इसकी घोषणा, कर्नाटक को जिम्मेदार एआई के ग्लोबल हब के तौर पर पेश करने की है योजना। 6 दशक बाद गिर के जंगलों में फिर से गूंज रही है इंडियन ग्रे हॉर्नबिल पक्षियों की चहचहाट, राज्य सरकार के री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट को मिली सफलता। गिर सोमनाथ में एक साथ सड़क पर दिखे 11 शेरों का झुंड, लोगों ने कैमरे में किया तस्वीर को कैद, सोशल मीडिया पर किया शेयर। आईआईटी आईएसएम धनबाद में न्यूक्लियर साइंस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन, ऊर्जा सुरक्षा में खनन और न्यूक्लियर साइंस की बढ़ती भूमिका पर जोर। बिहार में पर्यटन के नए युग की हुई शुरुआत, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म का किया शुभारंभ। 18 जुलाई से हेली टूरिज्म योजना की पहली उड़ान, पटना से प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए हेली सेवा। लोग 5,000 रुपए खर्च करके हेलीकॉप्टर और छोटे विमान से वाल्मीकि नगर, राजगीर और कैमूर जैसे पर्यटन स्थलों की हवाई सैर कर सकेंगे। मुजफ्फरनगर में एक बुजुर्ग पेंशन भोगी के खाते में 7 अरब जमा हुए, लेकिन कुछ ही देर बाद बैंक बैलेंस जीरो हो गया। बैंक के मुताबिक सिस्टम में खराबी की वजह से ऐसा हुआ था। झांसी मंडल में दिव्यांग रेल कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात, पहली बार 56 कर्मचारियों को मिली 3-व्हीकल स्कूटी, आत्मनिर्भरता और सम्मान की नई उड़ान। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का किया उद्घाटन, लोगों को किया गया सम्मानित। उदयपुर में आपदा और इमरजेंसी से निपटने के लिए नीमच माता रोपवे पर मॉक ड्रिल, एनडीआरएफ एसडीआरएफ समेत कई टीमों ने लिया इसमें हिस्सा। जवानों ने रोपवे में फंसे यात्री का रस्सी और चेयर के जरिए सुरक्षित उन्हें उतारा गया, एम्बुलेंस के जरिए पहुंचाया गया उन्हें अस्पताल। जवानों ने आपदा से निपटने की तैयारियों को परखा, रोपवे में फंसने की स्थिति में रेस्क्यू प्रक्रिया का सफल प्रदर्शन किया। शिलोंग में नेक्स्ट जेन एडमिनिस्ट्रेटिव और ई गवर्नेंस रिफॉर्म पर राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ आयोजन, केंद्र मंत्री जितेंद्र सिंह और सीएम कॉनराड संगमा हुए इसमें शामिल।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
4: Summer's too good to run on empty. Save 30% on more than 4,000 vitamin and body care items at Fresh Time Market from July 22nd through July 28th. Stock up on your wellness essentials like Mary Ruth's multivitamins, Truvani plant-based protein powder, Brownie's facial patches, and Sunbum sunscreen. Because feeling your best should be part of every summer adventure. See you and your friends July 22nd through the 28th. Fresh Time Market, rooted in your well-being.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो यह है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्तर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजनकरी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं, फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: Happy birthday, America. It's time to celebrate and play your favorite Las Vegas casino games by American-owned SpinQuest.com. What's better than fireworks and American pie? Hitting a blackjack in the palm of your hand, and you won't lose your fingers. Over 1,000 games, including slots and live dealers, and $30 coin packs are on sale for $10. SpinQuest.com. Buy American players for American players.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: अमरनाथ यात्रा में अब तक करीब 3 लाख भक्तों ने किए दर्शन, चरम पे है श्रद्धालुओं का उत्साह। 33 दिन की पैदल यात्रा कर जयपुर के 13 भक्त पहुंचे अमरनाथ। सीबीएसई थर्ड लैंग्वेज की नहीं होगी बोर्ड परीक्षा, इंटरनल एग्जाम के जरिए होगा मूल्यांकन। 10वीं पास का सर्टिफिकेट पाने के लिए तीसरी भाषा में पास होना जरूरी। कर्नाटक में बनेगी देश की पहली सरकारी एआई यूनिवर्सिटी, सीएमडी के शिव कुमार ने की इसकी घोषणा। कर्नाटक को जिम्मेदार एआई के ग्लोबल हब के तौर पर पेश करने की है योजना। एक्टर शाहरुख खान के बंगले मन्नत में रेनोवेशन का रास्ता हुआ साफ, पर्यावरण का हवाला देकर रेनोवेशन पर रोक लगाने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज। मानसूनी मौसम में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे चमोली में फूलों की घाटी, अब तक 11,000 पर्यटकों ने किया दीदार। फीफा वर्ल्ड कप के रंग में रंगा पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर, डार्क चॉकलेट फूड कलर से बनाए लियोनेल मेसी की जीवंत प्रतिमा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनो।
3: नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं दीपाली सिन्हा। नवरात्र में हम शक्ति की उपासना करते हैं, तो गुप्त नवरात्र में हम आदि शक्ति की पूजा के साथ ही 10 महाविद्याओं की भी साधना करते हैं। आज हम जानेंगे आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्र की महिमा। कहते हैं कि जिस भी साधक ने गुप्त नवरात्र में माँ भगवती की कृपा पा ली, उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, संकट और बाधाएं उससे कोसों दूर हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं गुप्त नवरात्र की महिमा क्या है और क्या है गुप्त नवरात्र का विधान।

0: कामनाओं की सिद्धि के हैं ये गुप्त नवरात्र। गोपनीय साधना से बन जाएगी आपकी बार। अभिष्ट की कामना करवाएंगे आषाढ़ के ये गुप्त नवरात्र। 10 महाविद्याओं की उपासना से होगा कल्याण। माना जाता है कि गुप्त नवरात्र में हम भगवती की उपासना तो करते ही हैं, लेकिन ये नवरात्र गुप्त सिद्धियों और तंत्र साधनाओं को परिपूर्ण करने के लिए सर्वोत्तम माने गए हैं। माँ दुर्गा को पूजने के लिए आप अभी तक यही जानते होंगे कि साल में 2 बार नवरात्रि आती है, लेकिन आज हम आपको आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि इन दिनों में आदिशक्ति को प्रसन्न करके कौन से वरदान हासिल किए जा सकते हैं। पंचांग की तिथि कहती है कि ये नवरात्रि ऋतु परिवर्तन के समय आती है। चूंकि ये गुप्त नवरात्र आषाढ़ मास में पड़ते हैं, इसलिए इसे आषाढ़ गुप्त नवरात्र कहा जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है।
1: चैत्र और आश्विन मास में जो नवरात्र होता है वो प्रकट होता है, प्रचलित होता है, लेकिन 2 ऐसे नवरात्र है जो गुप्त रूप से साधनाओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आषाढ़ महीने के नवरात्र हो चाहे माघ महीने के नवरात्र हो, गुप्त नवरात्र जो है वह तंत्र साधना, तांत्रिक सिद्धि, गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं।
0: गुप्त नवरात्रि और इसका महत्व। सामान्यतः हम वर्ष में पड़ने वाले केवल 2 नवरात्रों के बारे में जानते हैं, चैत्र या वासंतिक नवरात्र और आश्विन या शारदीय नवरात्र। 2 और नवरात्र भी हैं जिनमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। कम लोगों को इसका ज्ञान होने के कारण या इसके छिपे हुए होने के कारण इसको गुप्त नवरात्र कहते हैं। वर्ष में 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है, माघ शुक्ल पक्ष में और आषाढ़ शुक्ल पक्ष में। ये चारों ही नवरात्र ऋतु परिवर्तन के समय मनाए जाते हैं। महाकाल संहिता और तमाम शाक्त ग्रंथों में इन चारों नवरात्रों का महत्व बताया गया है। इनमें विशेष तरह की इच्छा की पूर्ति तथा सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूजा और अनुष्ठान किया जाता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि साधना, उपासना तथा गुप्त विद्याओं के लिए गुप्त नवरात्र विशेष महत्व रखते हैं। दुर्गा सप्तशती, देवी भागवत महापुराण आदि ग्रंथों में गुप्त नवरात्रि का वर्णन मिलता है। चलिए आपको बताते हैं कि ज्योतिषाचार्य क्या कहते हैं गुप्त नवरात्र की प्रतिपदा तिथि पर। गुप्त नवरात्र शुभ मुहूर्त और संयोग 14 जुलाई दोपहर 3:12 पर शुरू होगी, जो अगले दिन 15 जुलाई को 11:50 पर समाप्त होगी। घट स्थापना मुहूर्त सुबह 5:33 से सुबह 10:09 तक होगा। गुप्त नवरात्र का समापन पारण के साथ ही 23 जुलाई को होगा। कहते हैं कि गुप्त नवरात्रों में 12 साल बाद मधुर संयोग बन रहा है। गज केसरी योग और बुध पुष्य योग का दुर्लभ संयोग है। 15 जुलाई को पुष्य नक्षत्र और कर्क राशि में चंद्रमा की स्थिति रहेगी। चंद्रमा और गुरु की युति से गज केसरी योग बनेगा। गुरु का एक ही राशि में आगमन 12 वर्ष में होता है, इसलिए ये संयोग बेहद विशेष माना जा रहा है। माना जाता है कि भगवती की उपासना का विधान एक ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और 2 प्रकट। प्रकट नवरात्र को हम सार्वजनिक हर्षोल्लास के साथ भगवती की उपासना करते हैं, जबकि गुप्त नवरात्र के नाम से ही जाहिर होता है कि इसमें साधना को गुप्त रखने का विधान है, लेकिन भाव दोनों ही नवरात्रों के समान है।
1: गुप्त नवरात्र और प्रचलित नवरात्र में मूल रूप से अंतर यही है कि जो 2 प्रचलित नवरात्र हैं उसमें माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है, माता के इन रूपों की पूजा की जाती है, जबकि गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की उपासना विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें मंत्र का जप, ध्यान, अनुष्ठान विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये सब कुछ गोपनीय तरीके से किया जाता है।
0: सामान्य और गुप्त नवरात्रि में अंतर। सामान्य नवरात्रि में सात्विक और तांत्रिक पूजा दोनों की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में ज्यादातर तांत्रिक पूजा ही की जाती है। गुप्त नवरात्रि में ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, इसमें साधना को गोपनीय रखा जाता है। गुप्त नवरात्रि में पूजा और मनोकामना जितनी गोपनीय होगी, सफलता उतनी ही ज्यादा मिलेगी। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि गुप्त नवरात्र की पूजा का सबसे उत्तम समय आधी रात से सूर्योदय तक माना गया है। एक अंतर और है जो गुप्त नवरात्र को चैत्र और अश्विन नवरात्रों से अलग बनाता है। सामान्य नवरात्रों में हम देवी के नौ स्वरूपों की उपासना करके उनसे वरदान पाते हैं, जबकि गुप्त नवरात्र को गुप्त कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि शाक्त परंपरा और शाक्त ग्रंथों को मानने वाले इस दिनों में देवी की 10 महाविद्याओं की उपासना करते हैं। लेकिन आम भक्त भी इन दिनों में देवी की सामान्य उपासना कर सकते हैं, वो चैत्र या अश्विन नवरात्रों में करते चले आ रहे हैं।
1: इसमें 10 जो महाविद्या हैं उनकी उपासना करते हैं। कोई आकर्षण के लिए करता है, कोई विकर्षण के लिए करता है, कोई तंत्र साधना के लिए करता है, कोई मंत्र साधना करने के बाद अपने भविष्य के जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए करता है, कोई शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान करता है, कोई अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विशेष अनुष्ठान करता है, कोई अब रोग से मुक्ति के लिए करता है, कोई ऋण से मुक्ति करने के लिए करता है। 10 रूपों के 10 महाविद्याओं की उपासना करता है और सिद्धि को प्राप्त करता है।
0: माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि की ये वो बेला आध्यात्मिक साधकों, ज्योतिषों और तंत्र मंत्र का अभ्यास करने वाली देवी भक्तों के लिए सर्वोत्तम काल होता है। चलिए अब आपको देवी की 10 महाविद्याओं की महिमा बताते हैं। माँ पार्वती के 10 रूप, 10 महाविद्याएं, माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपु सुंदरी, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगला मुखी, माँ मातंगी, माँ कमला।
1: इसमें 9 दिनों तक विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए। 9 दिनों में देवी के उग्र और सौम्य दोनों रूपों की उपासना की जाती है। इस अवधि में तंत्र साधना, मंत्र साधना करते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं।
0: माना जाता है कि माँ पार्वती के क्रोध से निकली थी 10 देवियाँ, जो 10 दिशाओं में प्रकट हुई, जिनकी उपासना से टल जाती हैं सारी बलाएं। यही 10 महाविद्या यानी 10 शक्तियाँ हैं, जिन्होंने दैत्यों और राक्षसों का वध किया था। इनमें से हर एक देवी अलग अलग प्रकार की शक्तियों और ज्ञान से परिपूर्ण है, और ये सभी शक्तियाँ माँ पार्वती से निकली है। अलग अलग कारणों और उद्देश्यों से हुई थी इनकी उत्पत्ति। कहते हैं कि संसार में उत्पन्न होने वाली हर चीज के मूल में 10 महाविद्याएं हैं। मान्यता है कि इस समय की गई पूजा सबसे प्रभावशाली होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की कृपा हासिल करने के लिए होती है एक खास विधि, जिससे माँ तुरंत ही प्रसन्न हो जाती है। माँ दुर्गा की पूजन विधि के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, तब तक आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: गुप्त नवरात्र में माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए मुख्य रूप से विशेष साधना की जाती है। इसका ज्यादा प्रचार नहीं होता है, अपनी साधना को गोपनीय रखा जाता है। माना जाता है कि गुप्त नवरात्र में पूजा और मनोकामना जितनी ज्यादा गोपनीय होंगी, मनोरथ उतना ही जल्दी परिपूर्ण और सिद्ध होगा। गुप्त नवरात्र में आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाले कुछ विशेष प्रयोग अब आपको बताते हैं।

0: आ गई है अम्बे रानी की परम कल्याणकारी तिथि। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करने वाली गुप्त नवरात्र। माना जाता है कि गुप्त नवरात्र में की गई शक्ति की साधना कुंडली के समस्त दोषों को दूर कर देती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि नवरात्रों में शनि राहु और केतु जैसे ग्रहों की शांति के लिए भी विशेष पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं। चलिए सबसे पहले आपको गुप्त नवरात्र में देवी की भक्ति का विधान बताते हैं। गुप्त नवरात्र में माँ की पूजा विधि। अगर कलश की स्थापना की है तो दोनों वेला मंत्र जाप चालीसा या सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दोनों ही समय आरती भी करना अच्छा होगा। माँ को दोनों वेला भोग भी लगाएं। सबसे सरल और उत्तम भोग है लौंग और बताशा। माँ के लिए लाल फूल सर्वोत्तम होता है। माँ को आक मदार दूब और तुलसी बिल्कुल ना चढ़ाएं। अपना खान पान और आहार सात्विक रखें।
1: जहाँ पर हम प्रचलित नवरात्र में माँ भगवती के नौ रूपों की विशेष आराधना करते हैं, वहीं पर गुप्त नवरात्र में दस महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है। दस महाविद्या की साधना के लिए, तंत्र साधना के लिए, आंतरिक साधना के लिए, सिद्धि प्राप्ति करने के लिए यह नवरात्र बहुत महत्वपूर्ण होता है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अलग अलग स्वरूपों में भक्तों का उद्धार करती हैं देवी माँ। गुप्त नवरात्रों में भी वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले भक्त 9 दिनों तक भगवती के 9 स्वरूपों की उपासना कर सकते हैं। कलश स्थापना से लेकर नवरात्र में नित्य निभाई जाने वाली परंपराओं का पालन कर सकते हैं। लेकिन शाक्त समुदाय इन 9 दिनों में देवी की खास उपासना करता आ रहा है। देवी दुर्गा और 10 महाविद्याओं की पूजा करें। मंत्र जप और ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक साधना को मजबूत करें। नकारात्मक बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थनाओं के माध्यम से प्रतिकूल ग्रहों के प्रभावों को कम करें। मानसिक शांति आंतरिक शक्ति के लिए उपासना करें। सफलता समृद्धि और मानव कल्याण को माने। ज्योतिष के जानकारों की माने तो गुप्त नवरात्र में देवी की उपासना से आप देवी की कृपा का पात्र बन सकते हैं, अपने सारे मनारथ सिद्ध कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि गुप्त नवरात्र में किए जाने वाले ज्योतिष प्रयोग। माना जाता है कि गुप्त नवरात्र में ज्योतिषों के बताए ये महा उपयोग आपके लिए बेहद कारगर हो सकते हैं। गौर से देखिए। विवाह में बाधा हो तो देवी को पीले फूलों की माला अर्पित करें। खास मंत्र का जाप करें। मंत्र रहेगा कात्यायनी महामाए महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुता देवी पति में कुरुते नमः।
1: गुप्त नवरात्र में विवाह से संबंधित कोई समस्या है, गुप्त नवरात्र में धन से संबंधित कोई समस्या है, जीवन में नकारात्मक ऊर्जा से कोई संबंधित समस्या है, कोई वशीकरण कर लिया है इससे संबंधित कोई समस्या है, कोई तंत्र साधना कर तंत्र क्रिया कर दिया है उससे संबंधित कोई समस्या है, इस सब के निराकरण के लिए, इस सब के समापन के लिए विशेष पूजा किया जा सकता है।
0: ज्योतिष मानते हैं कि अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है या फिर आपके जीवन में संतान को लेकर कोई समस्या है, इन गुप्त नवरात्रों में कीजिए भगवती की उपासना और तपस्या, फिर देखिए कैसे आपके जीवन में बाहर आ जाती है। संतान प्राप्ति में समस्या हो तो देवी को पान का पत्ता अर्पित करें। खास मंत्र का जप करें। मंत्र रहेगा नंद गोप ग्रहे जाता यशोदा गर्भ संभवा तत्सतो नाशी शायमी विंध्या चल निवासिनी।
1: संतान की प्राप्ति के लिए गोपाल कृष्ण मंत्र, इसकी भी साधना गुप्त नवरात्र में किया जा सकता है, उसका विशेष फल प्राप्त हो सकता है। इसमें ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा इस मंत्र का भी जप करके।
0: देवी की साधना करने वाले साधक मानते हैं कि गुप्त नवरात्रों में जो भी सच्चे मन से देवी से मांगा जाता है वो आदिशक्ति की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होता है। चलिए अब आपको बताते हैं ज्योतिषों का बताया वो महा उपाय जो आपके रोजगार और नौकरी से जुड़ा है। नौकरी में समस्या हो तो देवी को बताशे पर रखकर लौंग अर्पित करें, खास मंत्र का जप करें, मंत्र रहेगा सर्वा बाधा विनुर्मुक्ते धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय।
1: रोजगार से संबंधित समस्या को दूर करने के लिए सभी प्रकार के बाधाओं से मुक्ति के लिए एक मंत्र का अनुष्ठान किया जा सकता है। गुप्त नवरात्र में बहुत ही प्रभावशाली होता है ऐसा माना जाता है, वह है ओम सर्वा बाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का अनुष्ठान किया जा सकता है, इससे सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त होती हैं।
0: गुप्त नवरात्रि की तिथि पर माँ जगदम्बा के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के तमाम उपाय करते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं गुप्त नवरात्र से जुड़ा एक महाप्रयोग, जिसे करने के बाद आपकी सभी बाधाओं का अंत हो सकता है। तो गौर से देखिए महा उपाय। गुप्त नवरात्र का महाप्रयोग, एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए, उस पर माँ की मूर्ति या प्रतिकृति की स्थापना करें। माँ के समक्ष एक बड़ा घी का एक मुखी दीपक जलाएं। प्रातः और साया माँ के विशिष्ट मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र होगा ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चह। आपकी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें।
1: इसके अतिरिक्त माता बंगला मुखी की पूजा गुप्त नवरात्र में बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसमें सुयोग्य ब्राह्मणों से विशेष अनुष्ठान अगर कराया जाए, नौकरी प्राप्ति की पूजा के लिए अनुष्ठान कराया जाए, तो सरलता के साथ नौकरी की प्राप्ति हो जाती है ऐसा माना जाता है।
0: माना जाता है कि कोई भी उपासना तभी फलकारी होती है जब पूर्ण संकल्प के साथ उस पूजा के सभी नियमों का विधि विधान से पालन किया जाए। चलिए अब आपको बताते हैं गुप्त नवरात्रों में किन मान्यताओं का पालन करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के नियम, गृहस्थ देवी दुर्गा की सात्विक उपासना करें, वही तांत्रिक 10 महाविद्याओं की गूढ़ साधना करते हैं। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, देवी कवच, अर्गला स्त्रोत्र या सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र का पाठ करें, सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्रोध, झूठ, निंदा और तामसिक भोजन से दूर रहें। 9 दिनों तक नियमित दीपक जलाकर माँ भगवती की आराधना करें। नकारात्मक विचारों, विवादों और अपशब्दों से बचें। बिना ज्ञान के तंत्र साधना का प्रयोग न करें, केवल सात्विक रूप से माँ दुर्गा की पूजा और मंत्र जप करें।
1: अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, माँ भगवती की विशेष आराधना करनी चाहिए, बच्चियों का सम्मान करना चाहिए, उनकी रक्षा के लिए मन में संकल्प लेना चाहिए। इससे माँ भगवती की परम कृपा प्राप्त होगी और विशेष अनुष्ठान के तौर पर माता भगवती बंगलामुखी का विशेष अनुष्ठान करना चाहिए, चाहे वो कैरियर से संबंधित हो, वैवाहिक जीवन से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, राजनीति से संबंधित हो, शत्रुकृत बाधा से संबंधित हो, विशेष अनुष्ठान करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
0: चमत्कारी है आदिशक्ति की शक्तियाँ, जो न केवल भक्तों का उद्धार करती है बल्कि उनके जीवन में आशा का संचार करती है। इसलिए आप भी आषाढ़ की उस गुप्त नवरात्रि में पूजा उपासना और मंत्रों का जप करके देवी माँ को प्रसन्न कर लीजिए। साथ ही ज्योतिष में बताए महाप्रयोग भी करके देखिए, इससे शक्ति स्वरूपा निश्चित ये आपके कष्टों को हर लेंगी और देंगी सुख शांति का वरदान।
2: और इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
4: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
5: Schwarber to right field, and it will leave.
4: From the first pitch of the season to the stretch run,
5: that's the ball game.
4: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: देखिए जीत के जश्न की तस्वीरें तो आपने खूब देखी होंगी, लेकिन फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड से हार के बावजूद नॉर्वे ने अपनी टीम का स्वागत किसी विश्व विजेता की तरह किया है। देखिए टीम वतन लौटी तो लोगों की भीड़ उनके स्वागत के लिए सड़कों पर उतर आई। देखिए खेल भावना की वो तस्वीर जिसने लोगों का दिल जीत लिया है।
7: मैदान में अपनी टीम को जीतते देखना कौन नहीं चाहता, लेकिन हार कर भी टीम को लेकर चाहत बनी रहे यही खेल की असल भावना है। नॉर्वे ने अपनी टीम का भव्य स्वागत करके दिखा दिया कि खेल में हार जीत से ज्यादा बड़ी खेल की भावना है। नॉर्वे की फुटबॉल टीम जैसे ही अपने मुल्क पहुंची, पूरा नॉर्वे बानो अपने प्लेयर्स के स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। राजधानी ओस्लो की सड़कों पर हर हाथ में देश का झंडा था और चेहरे पर अपनी टीम के लिए गर्व का भाव। वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड से 2-1 से हार के बावजूद टीम का स्वागत मुल्क में किसी विश्व विजेता की तरह से किया गया। टीम के खिलाड़ियों के चेहरे पर भले ही वर्ल्ड कप का सफर खत्म होने का मलाल था, लेकिन पूरा मुल्क मानो अपनी टीम को इस गम से निकालने के लिए एकजुट हो गया। खिलाड़ी जैसे मुल्क की जमीन पर उतरे उनके विमान को पारंपरिक वाटर कैनन सलामी दी गई और इसके बाद खिलाड़ियों ने अपने परेड के जरिए शहर का अभिवादन स्वीकार किया। रॉयल पैलेस के बाहर हजारों प्रशंसक पहले से टीम के आने का इंतजार कर रहे थे। खिलाड़ियों ने सबसे पहले राजा से मुलाकात की और फिर टीम ने रॉयल पैलेस की बालकनी से लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद शुरू हुआ नॉर्वे का सबसे मशहूर सेलिब्रेशन वाइकिंग रो। इस बार खास बात ये रही कि क्राउन प्रिंस ने खुद ड्रम बजाकर इस सेलिब्रेशन की शुरुआत की। ब्यूरो रिपोर्ट कुकीज टुडे।
6: फ्रांस की राजधानी पेरिस में बास्टिल डे के मौके पर आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। आईफिल टावर के ऊपर आतिशबाजी और ड्रोन शो ने ऐसा नजारा पेश किया जिसे देखने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े।
8: ये नजारा है फ्रांस की राजधानी

0: सरस आकृतियां बनाई। सबसे खास था जब ड्रोन ने आसमान में आईफिल टावर की तस्वीर बनाई। रोशनी, ड्रोन और आतिशबाजी का यह अनोखा संगम लोगों को खूब पसंद आया। ये जश्न बस्टील डे के मौके पर बनाया गया। बस्टील डे फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। साल 1789 में इसी दिन बस्टील जेल पर कब्जा किया गया था, जिसे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का बड़ा प्रतीक माना जाता है। तभी से हर साल 14 जुलाई के आसपास पूरे देश में परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भव्य आतिशबाजी के साथ ही दिन मनाया जाता है। पेरिस के जश्न ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कैमरे पर कैद ये नजारा लोगों के लिए लंबे समय तक यादगार बने रहेंगे। रिपोर्ट टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे।
2: वायरल चौक में सबसे पहले वो तस्वीरें जो तालमेल का कमाल दिखाती है। इस मानव टावर को जरा देखिए, ये दही हांडी के वक्त बनने वाले गोविंदाओं के मानव पिरामिड को भी पीछे छोड़ रहे हैं। एक के बाद एक परत बनाते हुए ये पिरामिड जब हिलता है तो हर किसी की सांस थम जाती है, लेकिन उन्होंने मजबूती से एक दूसरे को पकड़ रखा है और सबने मिलकर अपने अटूट विश्वास और दृढ़ता से हिलते हिलाते इस पिरामिड को संभाल लिया है। यूं तो कौवे आजकल दिखाई नहीं देते, इसलिए एक फ्लैट की बालकनी में उड़कर आया एक कौवा और उसके प्रति फ्लैट की महिला की करुणा लोगों का दिल जीत रही है। भूखे प्यासे कौवे को दयालु महिला न सिर्फ पानी पिलाती है बल्कि उसे प्यार से खाना भी खिलाती है। उसका ये प्यार भरा काम सबके दिल को छू रहा है और बताता है कि दया भाव के ऐसे छोटे छोटे काम ही दुनिया को बेहतर बनाते हैं।
3: हेलो।
2: सोशल मीडिया पर वायरल है एक पत्नी की खुशी, जिसे देखकर लगभग हर पत्नी का दिल प्यार से भर आया है। बहुत दिनों बाद इनके पिया परदेश से लौटे हैं। ट्रेन से उतरते हुए महिला पति को चुपके से देखती है, खुशी से उछल जाती है और फिर पति को पीछे से सरप्राइज देती है। पति भी पत्नी को स्टेशन पर आया देख उसे गले से लगा लेता है। पति पत्नी की ये खुशी अब सामूहिक खुशी बन गई है। अब दुनिया के पटल पर पाकिस्तान की जो भिखारी छवि है, लगता है चीन ने उसकी तस्दीक कर दी है। चीन ने अपनी दोस्ती निभाते हुए पाकिस्तान को भीख मांगने वाला रोबोट मुहैया कराया है। ये रोबोट अब कटोरी लेकर सड़कों पर भीख मांगता नजर आ रहा है और बाकी के लोग उसे भीख दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर खूब वायरल है और दुनिया भर में इन तस्वीरों के जरिए यूजर्स हंस हंस कर लोटपोट हो रहे हैं। और अब इन तस्वीरों को देखिए, सोशल मीडिया पर विकास कार्यों की पोल खोलती ये तस्वीरें जमकर देखी जा रही है। पंजाब के मोगा में बेटियों को स्कूल पहुंचाने के लिए सरकार भले ही प्रतिबद्ध ना हो, लेकिन यहां की युवा प्रतिबद्ध है। वो बाढ़ के पानी में अपनी जान जोखिम में डालकर मानव श्रृंखला बनाकर लड़कियों और बच्चियों को सुरक्षित स्कूल पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों को देख लोग युवाओं की इस पहल को तो खूब सराहना कर ही रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार लोगों को खूब खरी खोटी भी सुना रहे हैं।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897, built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
6: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations, like Hey Buena.
7: La Que Buena.
6: ESPN Radio.
8: We know LeBron has to be the best player on the planet to
6: The Daily.
9: From the New York Times.

0: I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
1: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
2: अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की जोरदार तैयारी, यात्रा रूट पर ग्रैंड रिहर्सल, मंदिर में ध्वजारोहण के बाद महाआरती। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक 44 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, बद्रीनाथ में करीब 15 लाख श्रद्धालु। अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं का जोश आए, अब तक करीब 3 लाख भक्तों ने किए दर्शन, 33 दिन की पैदल यात्रा कर जयपुर से पहुंचे भक्त। सैलानियों से गुलजार हुई चमोली की फूलों की घाटी, अब तक 11,000 पर्यटकों ने किए दीदार, रंग बिरंगे फूलों का दिखा मनमोहक नजारा। फीफा वर्ल्ड कप के रंग में रंगा पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर, डार्क चॉकलेट और फूड कलर से बनाई लियोनेल मेसी की प्रतिमा, फुटबॉल प्रेमियों के लिए बना आकर्षण का केंद्र।

शादियां नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। आज का मुद्दा यही जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। दरअसल बात इसलिए हो रही है क्योंकि वह सोशल मीडिया पर छिड़ी हुई है। एक दक्षिण भारतीय लड़की ने शादी को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है, जिसके बाद वीडियो के नीचे कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। कोई पक्ष में राय दे रहा है तो कोई विपक्ष में राय दे रहा है। तो क्या आज भी दबाव में तय होती हैं शादियां? एक बेटी के बाल कटवाने पर छिड़ी ये कैसी बहस? रीतियों की बेड़ियों में बंधे सात फेरे कब तक? ऐसे तमाम सवालों का जवाब आज हम तलाशेंगे। हमारे साथ मैरिज काउंसलर, समाजशास्त्री, समाज सेवी और कानूनी जानकार भी मौजूद रहेंगे।

0: तो पूरी चर्चा शुरू हुई दरअसल एक सोशल मीडिया वीडियो के बाद जो कि वायरल हो गया और इस वीडियो में लड़की सर मुंडवाती नजर आ रही है। दरअसल इसी के साथ लड़की ने इंस्टाग्राम पर एक कैप्शन लिखा है, माय मॉम प्लांट माय मैरिज, और इसी को लेकर बहुत सारे यूजर्स ने अलग अलग अपनी राय शेयर की है। वीडियो पर 24 मिलियन यानी कि 2,40,00,000 से ज्यादा व्यूज आ भी चुके और करीब 5,000 लोगों ने इसे रीशेयर किया है। साथ ही साथ 4,00,000 लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, 6,000 से ज्यादा लोगों ने कमेंट किया है और कई लोगों ने इसे शादी के दबाव के खिलाफ प्रतीकात्मक कदम माना है। कमेंट में पूछा गया है कि क्या सर मुंडवाने का कारण वास्तव में शादी का विरोध था। वैसे लड़की ने पूरी बात शेयर नहीं की है, डिटेल्स बहुत ज्यादा नहीं दी गई हैं। कुछ यूजर्स का तर्क यही है कि अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले लेने का अधिकार हर व्यक्ति को होना चाहिए और कुछ लोगों ने लड़की के आत्मविश्वास को सराहा है, जबकि कुछ यूजर्स ने शादी और परिवार की सोच पर चर्चा की है। तो क्या ये वीडियो नजीर बनेगा? आखिर रीतियों की बेड़ियां क्यों? क्या अब आधुनिक सोच जरूरी नहीं है? ये ऐसे सवाल हैं जो कि 6,000 से ज्यादा कमेंट्स में पूछे गए हैं और साथ ही साथ लोगों ने इस पर अपनी राय भी रखी है। तो कब आजाद होंगी शादियां, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल मीनल पाठक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और लगातार अपनी बात भी रखती हैं। मीनल, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि इसको लेकर ये वीडियो पहली बात तो अगर आपने देखा है तो आपके जहन में क्या सवाल आया? हालांकि नीचे तमाम तरह के कमेंट्स हैं, हर कोई अपनी अपनी राय इसको लेकर दे रहा है, अपने अपने विचार इसको लेकर रख रहा है। आपने जब ये वीडियो देखा तो पहली बात जो आपके जहन में आई, आपके मन में आई?
1: I found this as a form of a protest, a very peaceful form of a protest. I'm sure कि लड़की ने अपने मन की बात अपने पेरेंट्स से अपनी फैमिली के साथ शेयर की गई होगी एंड दे वर नॉट एग्रीइंग टू हर टर्म्स और हर कंडीशंस एंड उसके खिलाफ उसने एक बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट यू नो डाला है और उसने वो बहुत हिम्मत के साथ अपने पब्लिक अकाउंट पे डाला है। तो बहुत सराहनीय बात है कि आपने एक ऐसा कदम लिया है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर अ पॉइंट जब लड़की की एक फैमिली ही उसका साथ या उसका सपोर्ट नहीं बन पाती है, देन शी हैज नोवेयर एल्स टू गो, बिकॉज आप अपनी फैमिली को, अपने ब्रदर्स को, अपने पेरेंट्स को ही तो अपना सबसे बड़ा साथी मानते हैं, जो आपको आजीवन सपोर्ट करते हैं। अगर वो ही आपके लाइफ के इतने बड़े डिसीजन में आपके साथ नहीं खड़े हैं और आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप किसी भी तरह बस उनकी मर्जी से शादी कर लें, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन एंड आई थिंक एज अ लास्ट स्टेप शी हैज डन दिस एंड आई थिंक कई मतलब बच्चे इस टाइप में बहुत भयभीत करने वाले स्टेप्स ले लेते हैं जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी। बट मुझे ऐसा लगता है एज अगेंस्ट समथिंग लाइक दैट, जो सेल्फ हार्मिंग होता है, आपके जीवन के लिए खराब होता है, उसके हिसाब से तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइड पे स्टेप है जिसमें उसने एक फुल प्रोटेस्ट किया है कि मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करवा रहे हैं, तो लेट्स सी अगर इस तरह से यू नो द दूल्हा इज रेडी टू अपना उसको अपनाने के लिए।
0: और आपने इसमें देखा होगा मिलियंस इसके व्यूज हो गए हैं, 6,000 से ज्यादा लोगों ने इसको लेकर कमेंट किया, अपनी अपनी राय लोग रख रहे हैं, लोग सजेस्ट भी इसको लेकर कर रहे हैं। लेकिन एक बहस जो इसके बाद जरूर छिड़ गई है समाज में कि हम जिस सदी में जी रहे हैं जहां पर बेटा बेटी दोनों को बराबर माना जाता है, जहां पर बेटियों के हक की हमेशा बात की जाती है, कानून भी बेटियों को इक्वली अधिकार हक देता है, लेकिन आज की तारीख में भी जब शादी जैसी बात आती है तो आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे परिवार हैं जो यही मान के चलते हैं कि चाहे वो लड़का है या लड़की है, शादी हमारी ही मर्जी से हो तो बेटर है।
1: बिकॉज हमारा जो एक सोशल कस्टम या हमारी जो एक सोसाइटी की अप्रोच चलती आ रही है उसमें हमेशा ऐसा हुआ है कि जो शादी है सिर्फ लड़का लड़की की शादी नहीं होती है, शादी परिवारों के बीच में होती है। तो हमेशा ये रहा गया, मतलब हमेशा से ये चलन भी रहा गया कि जो पेरेंट्स हैं वो पूरी दूसरी फैमिली को इवेल्युएट करते हुए, उनका पास्ट इवेल्युएट करते हुए कि ग्रैंडफादर्स और ग्रैंडमदर्स कैसे थे, क्या गोत्र रहा उनका और आपका क्या गोत्र है, वो सारी चीजों को नजर रखते हुए फिर ही शादी की बात आगे चलाते हैं। सो इट्स लाइक it's a kind of a villain of families in itself, and it's not just a you know a fling between a boy and a girl. So us cheez ko dekhte hue shaadiyan ki jaati hain, which according to me is a very positive way to approach a new beginning, which is like a marriage. But aaj ke time pe cheeze bahut badal chuki hain. Girls bahut zyada independent hain, they are earning for themselves and they just don't want ki koi aur उनके बिहाफ पे ये इतना बड़ा लाइफ का डिसीजन ले ले. बिकॉज आप मानिए या ना मानिए, आपकी लाइफ पे आपकी जो शादी वाला डिसीजन है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके 90% और मे बी लिटिल मोर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन दैट वन डिसीजन ओनली. बिकॉज आप अपनी जिंदगी शादी के बाद किसके साथ पूरा व्यतीत करने वाले हैं, किस फैमिली में रहने वाले हैं, उन फैमिली की क्या अप्रोच है, आपको वहां पर कितना प्यार मिल रहा है, ये सब बहुत ज्यादा मैटर करता है. तो लड़कियों को अब ये लग रहा है कि जब वो इंडिपेंडेंट हो चुकी है तो दे शुड ऑल्सो बी अलाउड टू टेक देयर ओन डिसीजन. एंड
0: ठीक है, दो सवाल यहाँ पर मीनल आपके पास लौटूंगी. डॉक्टर निशा खन्ना हमारे साथ जुड़ चुकी है. डॉक्टर निशा, पहली बात तो मैं चाहूंगी कि अगर आपने ये वीडियो देखा है तो सबसे पहली बात आपके मन में क्या आई, पहले आप वो बता दीजिए, फिर उसके बाद जो मीनल ने अपनी बात रखी है मैं उस पर सवाल करूंगी आपसे.
2: मैंने वो वीडियो भी देखा और उसका अकाउंट भी अभी लॉग इन होने से पहले ही, और मुझे ये पब्लिसिटी स्टंट लग रहा है. आई एम सॉरी, इट्स नथिंग एल्स देन क्रिएटिंग ए कंटेंट. आई हैव सीन हर प्रोफाइल, आई हैव सीन हर अर्लियर पोस्ट. It's more about a publicity stunt. I am thinking about that. क्योंकि उसके बाकी भी मैंने वीडियोज देखे जो पहले थे, मुझे नहीं लग रहा कि वो इतनी ही भी कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती है जहाँ उसके पेरेंट्स जबरदस्ती कर रहे होंगे और प्रोटेस्ट में उसको बाल कटवाने पड़े होंगे. आई एम फाइंडिंग इट आउट. आजकल के बच्चे हैं या यूथ है, और यूथ जो है वो अटेंशन सीकिंग के लिए बहुत सारी चीजें करती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी बॉडी के साथ, अपने हेयर्स के साथ, अपने स्टाइल के साथ तब चेंज करने की कोशिश करते हैं जब हमें लाइफ में कुछ नॉवल्टी चाहिए होती है. वी आर सीकिंग फॉर नॉवल्टी. इट इज नॉट अबाउट अ प्रोटेस्ट कि भाई मेरी शादी जहां आप करना चाह रहे हो मैं नहीं करना चाह रही, तो वो तो सीधा मुंह से आप ना बोल सकते हैं. इतने मॉडर्न है, हम कंटेंट बना रहे हैं जहाँ वो उसकी पिक्चर्स है, मेल्स के साथ भी है, मुझे लग रहा है फ्रेंड्स या सिबलिंग्स जो भी हो गए फ्रेंड्स के साथ भी मुझे लग रही है. तो ऐसा नहीं है कि मुझे लग रहा है कि वो इतनी भी कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती है या उसकी सोच इतनी कंजर्वेटिव है कि अपने व्यू पॉइंट को रखने के लिए उसे अपने बाल कटवाने की जरूरत होगी. आई एम थिंकिंग इट्स सिंपली ए पब्लिसिटी स्टंट.
0: ये आपकी बात डॉक्टर निशा खन्ना, आपकी बात सही भी हो सकती है. चलिए, रेखा जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है, मनीषा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. एक बार आप सभी का रिएक्शन मैं ले लूं, फिर उसके बाद क्योंकि मीनल के अपने व्यूज हैं, डॉक्टर निशा खन्ना ने अपने विचार रखे हैं. रेखा जी, वीडियो अगर आपने देखा है, पहली चीज, पहला थॉट जो आपके दिमाग में आया इस वीडियो को देखने के बाद, क्या लग रहा है?
3: मुझे लगता है कि वो उन्होंने सिर्फ एक अटेंशन ड्रॉ करने के लिए ये करा है. क्योंकि अगर कोई वाकई के अंदर, अगर जैसे एक स्टोरी बनाई गई थी, ऑफकोर्स अब तो उन्होंने डिस्क्लेमर दे दिया है कि नहीं, उनको कोई भी तरह का उनको प्रेशर नहीं करा गया था उनकी माँ ने शादी करने के लिए. परंतु जिस समय उन्होंने वीडियो बनाया और जो उन्होंने कैप्शन दिया, बिल्कुल ये दिखाता है कि उन्होंने अटेंशन ड्रॉ करने के लिए दिया था. उसका मैरिज से कोई रिलेशन नहीं था. एक जैसे कहते हैं ना कि एक शॉक वैल्यू करने के लिए, एक शॉक इफेक्ट करने के लिए, जिसके अंदर वो कामयाब भी हो गई. इसको मैरिज से लिंक करने का कोई फायदा नहीं है. और ये आई थिंक दिस इज आजकल ये जनरेशन, जो जेन जी जिसको कहते हैं, मैं तो कहूंगी उसकी प्रॉब्लम है. क्योंकि दिस टू मच दैट दे हैव इन देयर हैंड्स. उनके हाथों के अंदर ये जो सोशल मीडिया का जो एक बहुत बड़ा एक अट्रैक्शन, या मैं डिस्ट्रैक्शन कहूंगी, उनकी लाइफ के अंदर ऐसा बन गया है कि उनको हर समय अटेंशन चाहिए, और उस अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं. तो जैसे कहते हैं ना कि एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज, होता चना बाजे घना. तो ये उस तरह का एक मेरे को लगता है कि एक ये इस लड़की ने किया है.
0: लेकिन अगर इन्होंने उस तरीके से भी किया है, डॉक्टर निशा, रेखा जी, कंटेंट क्रिएट करने के लिए भी किया है, तो यहां पर जरा गौर कीजिए, 24 मिलियन 2.4 करोड़ व्यूज, मतलब ये तो अपने पर्पस में पूरी तरह से कामयाब हुई है. 5,000 लोगों ने इसको रीशेयर किया है, 4,00,000 लोगों ने लाइक किया है, 6,000 से ज्यादा कमेंट्स इसको लेकर आए हैं. इसका मतलब तो वो अपने मिशन में कामयाब हुई है.
3: बिल्कुल हो गई. वो यही चाहती थी, अटेंशन ड्रॉ करना, और वो उनको अटेंशन मिल गया. और मतलब जैसे कहते हैं ना, दोनों बातों का कोई कोरिलेशन नहीं है. अगर उनको, अगर उनकी मदर उनको जबरदस्ती कहीं पर शादी करवा रही थी जैसे पहले आया था मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर, तो भी उसको प्रोटेस्ट करने का तरीका एक जो एक मच्योर्ड लड़की से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आजकल के बच्चे जो हैं, आजकल जिस तरह की एजुकेशन मिल रही है, जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज उनको अपने घर में है, परिवार में है, एजुकेशन में है, समाज के अंदर है, अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो मत करो भाई शादी, किसने जबरदस्ती करी है, ये तुम करके तुम क्या दिखाना चाह रहे हो, मतलब अपने बाल अपना सिर मुंडवा के आपकी क्या मदर आपको क्या जबरदस्ती अभी भी करना चाहेंगी तो करेंगी, अगर आप नहीं शादी करना चाहती तो भाग सकते हैं, मना कर सकते हैं, आप पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं, आप एक स्वाधीन नागरिक है इन भारत वर्ष के, और जो हमारा संविधान जो आपको एक जो हमारे अधिकार मिल रखे हैं फंडामेंटल राइट्स, उसके अंदर अपना जीवन जीने का अधिकार भी है जैसे आप चाहते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट भी कहता है कि अगर आप शादी किसी के इच्छा के विरुद्ध हुई है तो वो शादी मानी नहीं जाएगी, तो कोई तरह का अगर उनके ऊपर प्रेशर था तो प्रेशर को रोकने के लिए जो सही तरीका है प्रोटेस्ट करने का वो करिए, अपने पेरेंट्स से बातचीत करिए, अपने फैमिली से बात करिए, आपके फ्रेंड जोन से बातचीत करके कोई सोल्यूशन निकालिए, क्योंकि पेरेंट्स आपकी अगर जबरदस्ती शादी कर भी रहे हैं तो आपके दुश्मन नहीं है, अगर वो भी उन्होंने अपनी तरीके से कोई लड़का ढूंढा होगा उनके लिए जो उनको सूटेबल नहीं लग रहा, हो सकता है कि दोनों का विचार जो है उनमें फर्क आ रखा है, परंतु अगर आपके विचारों में फर्क आ भी रखा है तो आप इस तरीके से जो आप अपने ये अपने बाल मंडवा के जो आप दिखाना चाह रही है क्या हासिल कर रहे हैं, आपने कुछ भी हासिल
0: नहीं किया। रेखा जी जल्दी से एक बार मनीषा जी से मैं जानना चाहूंगी, मनीषा जी वीडियो देखने के बाद, हालांकि रेखा जी के सवाल का जवाब मीनल आप ही को देना होगा, डॉक्टर निशा के भी सवाल का जवाब, लेकिन उससे पहले मनीषा जी वीडियो अगर आपने देखा है, वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में पहला सवाल क्या आया है?
4: अभी ये प्रोग्राम शुरू होने से जस्ट पहले मैंने वीडियो देखा था और उसमें काफी वो रिलैक्स है, बिल्कुल अपने मन से वो करा रही हैं, उन्हें जरा भी स्ट्रेस उनका दिख नहीं रहा है, लेकिन इसकी कुछ स्पेसिफिक वजह हो सकती है जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट अगर हम देखते हैं, अगर हम इसको शादी से रिलेट करते हैं या हम शादी से रिलेट नहीं करते हैं, दोनों सिनेरियोज में यहाँ पे देखिए एकदम इंडिविजुअल की पर्सनल चॉइस है पहली बात तो ये इस पे बहुत ज्यादा इसमें कोई हमें ओपिनियन ड्रॉ करना कुछ कंक्लूड करना ठीक नहीं है, पहली चीज तो ये। दूसरा हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें एक चीज जो कहीं लगती है कि सबकॉन्शियस लेवल पे कहीं पे वो एक ओनरशिप यू नो अपनी जो फिजिकल उनकी जो बॉडी है उसकी ओनरशिप वो एक कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्शन जा रहा है कि वो उसकी ओनरशिप उनके पास है। दूसरा एक कहीं एक ये लाइन ड्रॉ करता है या एक डिस्टेंस करना खुद को पास से, जो उनकी पास लाइफ है उसको वो डिस्टेंस कर रही है अपनी प्रेजेंट लाइफ से या जो लाइफ उनकी अबाउट टू स्टार्ट जो शुरू होने वाली। तीसरा पॉइंट एक यहाँ पे मैं ये जरूर बोलूंगी कि कहीं ना कहीं वो टेस्ट कर रही है एक ऑथेंटिसिटी, जिनसे भी उनकी शादी तय हुई है चाहे उनके मन मुताबिक हुई है या नहीं हुई है मुताबिक, या अगर वो क्योंकि हमें एग्जैक्ट हिस्ट्री पता नहीं है तो ये भी अटकलें बेस्ड ही है, जो भी अजम्पशंस हम लगा रहे हैं उस पे बेस्ड। तो उसमें थर्ड एक जो एस्पेक्ट है वो ये है कि एक ऑथेंटिसिटी वो टेस्ट कर रहे हैं कि एक फिजिकल ब्यूटी पे ना जाकर जो रियल उनकी ब्यूटी है, जो आंतरिक वो है, एक पर्सन वो उनका जो भी एक पर्सनालिटी है, जो उनकी सोल है, तो वो जो भी इंसान है वो उसको कितना समझ पाता है, उनकी जो बाहर से जो सुंदरता दिख रही है उसको ना देखे, क्योंकि अगर कोई भी वो भी अगर बॉल्ड है तो डेफिनेटली ये अनएक्सेप्टेबल होता है, और स्पेशली शादी का टाइम है, मैरिजेबल लड़की है और लड़के की साइड से ऐसा एक्सपेक्टेड होता ही नहीं है कि लड़की के बाल नहीं है और वो भी अभी वाले अपने
0: ठीक है, ये भी एक व्यू हो सकता है। मैं अब जल्दी से सबसे पहले तो रेखा जी और डॉक्टर निशा मानती नहीं है, उनका ये कहना है कि ये सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने के लिए हो सकता है, मीनल इस पर जवाब।
1: See, I have not like literally gone and checked every record and every news report, but prima facie to me it seems like a you know a revolt by aajkal ke jaise Gen Z kids hain, it's a sign of a revolt ki agar and jo uska caption hai wo bhi clearly yahi bol raha hai ki my mother aaj ke age mein bhi my mother is trying to fix my marriage and she's just basically revolting against that, aur ye uska ek बहुत ही पीसफुल वे ऑफ रिवोल्ट है। और ये कह देना कि अगर आपको शादी नहीं करनी है तो आप सिंपली ना कर दीजिए, तो कितनी बार ऐसा होता है कि आपका ना माना जाता है। आई नो दिस, आई एम जस्ट कोटिंग अनदर केस, ये सिया अग्रवाल का भी जो केस था उसमें शी इज कमिंग आउट एंड सेइंग कि मैंने ना बोला था एंड इट वाजंट एक्सेप्टेड एंड समथिंग दैट्स हाउ शी इज प्लांटेड समथिंग सो हिनियस एज अ केस. तो हमारी इंडियन सोसाइटी अभी इस लेवल पे भी नहीं आई है कि लड़की ने बोला कि ना मुझे इससे शादी नहीं करनी तो एवरीबॉडी विल बी लाइक ठीक है ठीक है ठीक है अब नहीं करो. ऐसा नहीं है. मतलब द ना इज नॉट लाइक अ नो.
0: रेखा जी कितनी बार लड़की की ना को मान लिया जाता है?
3: देखिए परिवार के ऊपर डिपेंड करता है, सर्कमस्टांसेस के ऊपर, किस तरह का परिवार है. पढ़े लिखे लोग माफ करिए इस सर्कमस्टांसेस के अंदर लड़की पली बड़ी है. अगर आजकल जो हम देख रहे हैं कि सब लड़कियों को एजुकेशन दी जाती है शहरों में, तो क्या गांवों के अंदर भी दी जाती है? और आजकल की लड़कियां जो है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी लड़की के ऊपर दबाव डाला जाए. और अगर उसके माँ बाप उसको नहीं मानते कि हाँ तुम्हारी हमारी जो इच्छा तुम्हारी है उसको, वो हमारे को मैटर नहीं करती, तो कोई भी लड़की जबरदस्ती शादी करेगी. आजकल मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, बाकी भी जो इतनी एजुकेशन है, लड़कियों के पास इतनी पावर है. अब जैसे अगर सिया का भी जो केस अभी मीना जी ने जिक्र किया, वो सब अब वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है. उनको जिस तरह के मॉडर्न घर की और पैसे वाले घर की लड़की है, वो जस्टिफाई करना चाह रही है अपने गलत एक्शन को, जो ऑफ कोर्स एक साइकोलॉजिस्ट ज्यादा बता.
0: लेकिन रेखा जी, अच्छा एक सवाल जो रेखा जी मेरे मेरे जहन में भी आ रहा है, चलिए मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ. आजकल दबाव ऐसे नहीं बनाया जाता, एक एक तरीका दबाव बनाने के, मेरे ख्याल से जो हमारे साथ दोनों साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे से इसको समझा पाएंगी, डॉक्टर निशा, दबाव बनाने का तरीके अलग अलग होते हैं. बच्ची से इतना लाड प्यार कर दिया जाता है, उससे उसको इतना इमोशंस में बहा दिया जाता है कि बच्ची कहती है कि हाँ अगर मेरे पिता ने या मेरी माँ ने किसी को ढूंढा है मेरे लिए तो मैं कैसे उसको मना कर सकती हूँ. और मतलब इतना इमोशनल प्रेशर होता है, चाह के भी लड़की ना नहीं कर पाती है.
2: देखिए डिपेंडेंट पर्सनैलिटी की जो आप बात कर रहे हैं, वो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी है. किसी भी तरह से बच्चे को इंडिपेंडेंट नहीं बनाया जाता. और अगर वो इंडिपेंडेंट डिसीजन पर्सन,
0: खास तौर पर अगर हम शादी जैसे फैसलों की बात करें तो
2: मैम, जब शादी का फैसला एक सिर्फ एक बहुत मेजर फैसला है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट बनने नहीं दिया जाता. मान लीजिए मैं बड़ी बड़ी फैमिलीज की बात कर रही हूँ, वहां पर फीमेल्स मोस्ट ऑफ द टाइम उनको पॉकेट मनी दी जाती है, वो अपने कपड़ों पर, अपनी शॉपिंग्स पर पैसे खर्च करते हैं, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. मान लीजिए उन्हें कहीं जाना है तो ड्राइवर प्रोवाइड करा दिया जाता है, उन्होंने कोई शॉपिंग करनी है उन्हें पैसे दे दिए जाते हैं. तो वो जो मैनेजमेंट ऑफ द थिंग्स है, जैसे मैनेजमेंट ऑफ द हाउस हो गया, मैनेजमेंट ऑफ द ऑफिस हो गया, तो मेजरली बहुत कम लोग होते हैं जो इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. यानी कि शादी के बाद सिर्फ घर संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बच्चे नहीं कर पाते. मतलब मैं तो ऐसे केसेस करती हूँ जहां पर दो दो तीन तीन मेड्स होती हैं सिर्फ बच्चों को संभालने के लिए. किसी को घर का काम नहीं करना होता, मैनेजमेंट करना होता है, पर वो भी नहीं कर पाते क्योंकि वो डिपेंडेंट पर्सनालिटीज होते हैं. कुछ हम में सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ट्रेट्स भी होते हैं, हम खुद को हमेशा विक्टिमाइज करके ही देखते हैं. डिप्रेसिव पर्सनैलिटीज भी होती है, जो आपने बात की, पेरेंट्स इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं बच्चों को कि मैंने तुम्हें पढ़ाया है, मैंने तुम्हें लिखाया है, मैंने तुम्हें इस काबिल बनाया है, ऐसी बातें. या हमने तुम्हें इसलिए पाल पोस कर पढ़ा नहीं किया है कि तुम अपनी मर्जी से शादी करो. और जैसे फॉर पर्टिकुलर केस, उस कल्पना केस में ये भी कहा जा रहा है कि केतन की शायद सिस्टर से उसके भाई की भी शादी होनी थी, कुछ ऐसा भी था. तो फैमिली प्रेशर जो होता है वो एक अलग तरीके से, जैसे आपने बोला, वो अलग तरीके से होता है. और वो अगेन उसके बीज हमारे चाइल्डहुड से ही होते हैं, जिसमें हम पर्सन को बचपन से ही ट्रेन करते हैं कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, इफ यू वॉन्ट टू मैरी यू कैन मैरी द पर्सन जो तुम्हारे माँ बाप चुनेंगे. तुमने उस पर्सन से शादी करनी है जिसे तुम्हारे माँ बाप अप्रूव करेंगे या तुम्हारी सोसाइटी अप्रूव करेगी. अगर आप एक बनिया क्लास को बिलोंग करते हो, आप एक जाट कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, आप एक राजपूत कम्युनिटी को, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल्स, आई एम नॉट टॉकिंग, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अपनी कम्युनिटी से बाहर ही नहीं जाना चाहते.
0: और स्टेटस भी बहुत बड़ा फैक्टर है ना निशा जी.
2: बिल्कुल बिल्कुल, फाइनेंशियल स्टेटस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है,
0: सोशल फाइनेंशियल दोनों स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं.
2: बिल्कुल बिल्कुल. और एक चीज इस पर्टिकुलर केस में जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, मैंने उसके कंटेंट को देखने की कोशिश की है, मुझे कहीं नहीं लगा कि वो लड़की कोई भी चीज मैसेज कर रही है. वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी रैंडम मोमेंट्स को डाल रही है, रैंडम पोजेस डाल रही है, कोई एजुकेशनल स्टफ नहीं डाल रही है. मतलब जो मैं कहना चाह रही हूँ.
0: अच्छा निशा जी, चलिए मैं ये बात मान लेती हूँ, चलिए हम ये बात माने, आप भी और रेखा जी भी ये बात कह रही हैं कि ये कंटेंट क्रिएट करने की बात हो सकती है, जिसमें मैंने पहले भी जिक्र किया कि मिलियंस ऑफ व्यूज उसके हो गए, यानी कि वो उसमें सक्सेसफुल रही है। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं निशा जी। पहली बात तो जिस बात का जिक्र आप कर रही, मान लीजिए कि वो एक कंटेंट क्रिएटर है और उसने ये सब कुछ किया और आपने उसकी बाकी सारी पोस्ट को देखा और आपको लगता नहीं है कि वो इस तरह की फैमिली से बिलोंग करती है जहां पर जो इतनी कंजर्वेटिव हो, जिसके लिए उसको यहां पर अपने सर मुंडवाना पड़े। लेकिन ऐसे बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जिनकी फैमिली तक को ये नहीं पता होता कि उनका बच्चा किस तरह का कंटेंट बना रहा है, बिल्कुल उससे कोसों दूर होते हैं, उनको सोशल मीडिया चलाना ही नहीं आता। ये भी तो एक बात हो सकती है इसमें।
2: नहीं देखिए, ऐसे भी होते हैं जो अकाउंट्स बनाते हैं, अपने पेरेंट्स को इस अकाउंट में ऐड नहीं करते हैं, दो दो अकाउंट्स बनाते हैं, एक फैमिली अकाउंट होता है और एक पर्सनल अकाउंट होता है। बट अगर कोई इतने ज्यादा फॉलोअर्स है तो मुझे नहीं लगता ऐसा पर्सन छुपा रहता है। रही बात आप जिन लोगों की एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो हो सकता है अनएजुकेटेड क्लास लोग हों, जहां पर जिनको मोबाइल यूज करने का नहीं पता। जैसे कई बार कई ऐसे केसेस भी हमने किए जिसमें बच्चे ने सुसाइड कर लिया है, 14 लाख रुपए पिता के अकाउंट से निकाल रहे हैं, पिता का अकाउंट भी अप्रोचेबल था। तो जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए वो बहुत रेयर केसेस में होता है, मैं मान लेती हूँ। आज हम सिया का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो सिया के केस में भी उसके पेरेंट्स ने अगर उसे प्रेशराइज किया तो उसके पास पूरा हक था कि वो उन्हें मना कर सकती थी, वो घर से जा सकती थी, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा सकती थी, होटल में रह सकती थी, कोई किसी तरीके का प्रोटेस्ट कर सकती थी। क्योंकि आज सोशल मीडिया एक माध्यम है जहां पर हम अपनी फीलिंग्स को पोस्ट करते हैं, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है जब हमारे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। अगेन, सपोर्ट सिस्टम के नाम पर अब इसके पास कौन था कौन नहीं था वो मुझे नहीं पता है। बट हाँ, मैं ये बात से भी अग्री करती हूँ कि लोग अकाउंट्स बनाते हैं, फैमिली को उस अकाउंट का राइट का नहीं पता होता, या फैमिली का अकाउंट सेपरेट होता है, आपका पर्सनल अकाउंट सेपरेट होता है। बट अगेन, मैं एजुकेशनल स्टफ की बात कर रही हूँ। इस पोस्ट में और उसकी पूरी प्रोफाइल में कहीं भी मुझे कोई एजुकेशनल स्टफ नहीं मिला है जिसमें वो लड़की अपनी फीलिंग्स की बात कर रही है कि मेरे दिल में इतनी फीलिंग्स हैं, मैं बहुत दुखी हूँ। एक होता है ना, मतलब वो अपने पोजेस डाल रही है अलग अलग, तो मुझे वो नॉर्मल जो अटेंशन सीकिंग के या हम अपने हैप्पी मोमेंट्स को है उसको डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आजकल व्यूज ही उन पर आते
0: हैं, कंटेंट से रिलेटेड। ठीक है, अब रेखा जी, चलिए इसी बात को हम आगे बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कि वो कंटेंट क्रिएट कर रही है, मान लीजिए कि उसके तो उसके जहन में एक सवाल ये भी है कि मेरे इतने फॉलोअर्स है। जब आपके इतने फॉलोअर्स होते हैं ना, तो आप एक अलग दुनिया में जीने लग जाते हैं। आपको लगता है कि शायद ये फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर या इंस्टाग्राम पर नजर आ रहे हैं, सही में आपके कितने फॉलोअर्स है उससे आप कोसों दूर, आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में जीने लग जाते हैं। उस बीच अगर इस लड़की की शादी तय हो जाती है, जो कि वो एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि हो सकता है कि वो चाह रही हो कि अगर शादी हो गई तो उसके बाद शायद इतने फॉलोअर्स ना रहे, ये भी एक मन में डर रहता है क्योंकि उस वर्चुअल दुनिया में वो लड़की जी रही है, तो वो कितना बड़ा प्रेशर है, ये भी एक फैक्ट हो सकता है इसके पीछे, ये भी एक फैक्टर हो सकता है।
3: देखिए, अगर शादी आपकी बिना मर्जी के हुई है, जैसे मैंने पहले कहा था, तो वो कानूनी तौर के ऊपर लीगल मैरिज नहीं मानी जाएगी। जहां पर ये अटेंशन ड्रॉइंग जो हम ये देख रहे हैं कि जो ये लड़की जो कर रही है कि किस पर्पज से उसने ये वीडियो बनाया मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि एक बाल, जैसे कि निशा जी ने भी कहा कि उन्होंने सिर्फ अपने बाल मंडवाने का सिर मंडवाने का एक वीडियो डाला है और उसके साथ में लिखा है कि मेरी मदर ने मेरी शादी फिक्स कर दी। ये नहीं लिखा है कि मेरी मदर ने मेरी इच्छा के विरुद्ध करी है या मैं नहीं चाहती इस शादी को आगे करना। तो यहाँ पर जो अगर उनके फॉलोअर्स शादी करने के बाद अगर कम भी हो जाते हैं और लोग कहते हैं कि देखिए यहाँ पर तो एक तरफ तो ये अपना ऐसा शो कर रही थी और अब ये अटेंशन ड्रॉ करने वाली और बात जो थी वो पूरी हो गई और अब इन्होंने देखो जी शादी भी कर ली, तो ये सब चीजें, तो मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि बेसिकली तो ये एक साइकोलॉजी का मसला है। एज ए लॉयर मैं तो इसमें यही कमेंट कर सकती हूँ कि इस वीडियो का कोई सिर पैर नहीं है। और अगर कानून की बात करते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट बहुत क्लियर है कि जो शादी आपकी इच्छा के विरुद्ध होती है वो कानूनी तौर के पर अवैध मानी जाएगी। हाँ, परंतु ये बात उनको प्रूव करनी पड़ेगी। सिर्फ ये कह के अगर फर्ज करिए कि वो शादी कर भी लेती हैं उसी शख्स से जो इनकी मदर ने जिस लड़के को चूज किया है और उसके बाद भी वो इस वीडियो का सहारा लेके दिखाना चाहती है कोर्ट के अंदर कि देखिए ये शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए क्योंकि मेरी इच्छा के विरुद्ध थी और इसका सबूत ये वीडियो है, तो ये इनके बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है। अगर ये सोच रहे कि ये वीडियो बना के बाद में इस शादी की जिम्मेदारी से नैतिक और कानूनी दोनों से निकल जाएंगी और इस वीडियो का सहारा लेंगी, तो ये वीडियो उनको कभी भी हेल्प नहीं करेगा क्योंकि ये वीडियो एक रैंडम वीडियो है, इसका कोई कानूनी वैधता नहीं है। क्यों बनाई, किसी प्रेशर में बनाई, किसी के कहने पर कराई करी, मजाक में करी, इसका कुछ इसका कोई वैल्यू नहीं है इस वीडियो की। हाँ, अगर अगर ये आखिर के अंदर अगर ये शादी को अगर कर भी लेती हैं और उस शादी की जिम्मेदारी आगे नहीं निभाना चाहती, तो इनको अपना इंडिपेंडेंट तरीके से साबित करना पड़ेगा कि देखिए ये शादी को नल एंड वॉइड माना जाए क्योंकि ये मेरी इच्छा के विरुद्ध है। और जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो 3-4 कंडीशंस है उनको पूरा नहीं करती है, मतलब जैसे उम्र के बारे में लिखा जाता है, आपका कोई और स्पाउस नहीं होना चाहिए जब आप शादी करती हैं, आपके एक ही धर्म के अंदर होना चाहिए, तो कई तरह की कंडीशंस जो है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी ले डाउन करी गई है। और उसी तरीके से स्पेशल मैरिज एक्ट में भी अगर आप अपने धर्म से नहीं शादी कर रही हैं और आप इंटर रिलीजन अगर शादी कर रही हो तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कर सकती है, उसके अंदर आपको धर्म बदलने की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं होती है। तो उस अगर आप जिसको हम कहते हैं कोर्ट मैरिज, स्पेशल मैरिज एक्ट जो होती है वो कोर्ट मैरिज के अंदर जो जो करी जाती है, तो वहां पर भी आपकी इच्छा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वहां पे आपको एफिडेविट देना पड़ता है कि देखिए मैं अपनी इच्छा से शादी कर रही हूँ। तो जब लड़की ने खुद ये एफिडेविट दे दिया कि मैं अपनी इच्छा से शादी कर रही हूँ, तो बात खत्म हो जाती है। पढ़ी लिखी लड़की होगी तभी वो एफिडेविट को दे सकती है। तो मैं यहाँ पर कुल मिला के यही कहूंगी कि शायद ये जो वीडियो है आज इतना इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया और आज हम इसका डिस्कशन आपके चैनल पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में जो 1 महीने पहले जो केतन मर्डर केस हुआ है, जहां पे सिया जो है उसको कई तरह के लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, ये कह के देखिए वो कहीं किसी तरीके से शायद जस्टिफाइड थी, पेरेंट्स उनको जबरदस्ती कर रहे थे, वो ना नहीं कर सकी वगैरह वगैरह। पर किसी भी सूरत में कानून की अगर हम बात करें तो माँ बाप का प्रेशर भी अगर आपके ऊपर है और आप अगर शादी करते हो उस माँ बाप के प्रेशर में आके, चाहे वो इमोशनल प्रेशर है, चाहे वो सोशल प्रेशर है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रेशर है, किसी भी तरीके का प्रेशर है, अगर आप उसमें शादी करते हैं तो आप उसके लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। जब तक आप उसके ऊपर ये आप कानूनी तौर पर नहीं साबित कर देते कि वो प्रेशर आपके ऊपर ऐसा था कि आप दबाव के अंदर आके वो शादी आपको करनी ही पड़ी, अदरवाइज बाकी सारी जो बातें हैं वो आपके लिए एक बहाने बन जाते हैं, आपको उसकी कोई मदद नहीं मिल सकती।
0: हाँ, चले यही से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं आप हमारे साथ।

0: Good News Today.
1: कब आजाद होंगी शादियां, इसी को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है, व्यूज करोड़ों में चले गए हैं उसके, और 6000 से ज्यादा लोगों ने उस पर अपना कमेंट भी लिखा है, जहां पर एक लड़की अपना सर मुंडवा रही है ये कहते हुए कि मेरी माँ ने मेरी शादी पक्की कर दी। इसको लेकर हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, जिनकी अलग अलग राय है इस वीडियो को लेकर। कुछ ये मान रहे हैं कि एक कंटेंट क्रिएट करने का तरीका भी हो सकता है, और कुछ मान रहे हैं कि वाकई में शादी का प्रेशर भी हो सकता है। मनीषा जी, अगर हम मान लें कि अगर ये कंटेंट क्रिएट करने का भी तरीका है, और अगर उस लड़की की मनस्थिति की भी बात कर लें, कहीं आपको ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं वर्चुअल दुनिया में जी रही है, रियलिटी से कोसों दूर है, और इस वजह से, और पेरेंट्स ने शादी तय कर दी है, शादी करना नहीं चाह रही, उसके बाद की लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही, क्या ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है?
2: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनका एक लाइफ का बड़ा ट्रांजिशन है, और आई थिंक पेरेंट्स के साथ अच्छे ही हैं उनके संबंध, और इमोशनल है वो, ऐसा लगता है कि इमोशनल है, सेंसिटिव है, और एक डिफरेंट तरीके से उन्होंने इस चीज को एक्सप्रेस किया है, ऐसा पॉसिबल है। और लाइफ ट्रांजिशन में ऐसा लोग ऐसा स्टेप ले सकते हैं, इस तरह से सडनली कुछ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक उनका एक ये मोटिव हो सकता है कि टेस्ट करना, जो एक सोसाइटल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको रीडिफाइन करना, कि अगर एक्चुअल में वो पर्सन जस्ट अरेंज मैरिज है तो वो उस पर्सन को कैसे टेस्ट किया जाए। तो हो सकता है ये भी कहीं ना कहीं उनके मन में हो, या फिर एक ईगो हर एक की होती है, सो एक डिटैचमेंट फ्रॉम ईगो, उसको भी एक्सप्रेस करने के डिफरेंट पर्सनालिटीज डिफरेंट तरीके अपनाती है। तो इस केस में ठीक है, कंटेंट वो बात से मैं सहमत हूँ, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आजकल वर्चुअल वर्ल्ड में ही हमारी जेंजीज है, इवन मिलेनियल्स भी, जेंजीज का हमने नाम बहुत ज्यादा हमने लिया हुआ है, लेकिन क्या मिलेनियल्स नहीं है ऑनलाइन, उनके उनके पोस्ट नहीं आती हैं, लेकिन क्योंकि जून के महीने में ही इतने सारे केसेस हुए हैं, बड़े वियर्ड से केसेस आजकल आने लगे हैं, तो हमारा फोकस कहीं और चला गया है आजकल। तो कहीं ना कहीं जो मकसद है वो हो सकता है कुछ और हो, और वो जो भी उनका प्रपोजल है उनको टेस्ट करना हो सकता है, और इनडायरेक्टली अपने पेरेंट्स को एक मैसेज कन्वे करना हो सकता है कि मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर रियल जेन्युइन पर्सन है तो वो मुझे एक्सेप्ट करेगा। तो आजकल के जो बच्चे हैं, अगेन वो क्या तरीके उनके मन में आते हैं और वो उसको इम्प्लीमेंट करने में हेजिटेट, थोड़ा सा कम करते हैं, तो दिस मे बी माइट बी वन रीजन क्यों उन्होंने ऐसा किया।
1: बिल्कुल मीनल, आपने सबकी बात सुनी, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप?
3: आई स्टिल बिलीव कि यू नो, आजकल ऐसा नहीं है कि लाइफ में मैरिज का प्रेशर नहीं है, एंड आई वुड लाइक टू से कि इस तरह का प्रोटेस्ट इज मच बेटर देन द केसेस लाइक सोनम रघुवंशी, कि आप शादी में फोटोज में इतना खुश हैं, फैमिली को ये दिखा रहे हैं कि आपने बात मान ली है, फिर आप अपने हनीमून में जाके अपने हस्बैंड को मार रहे हैं। बट और फिर जब यहाँ पर हमारे इंडियन लीगल सिस्टम की बात आती है, तो मतलब वी नो हाउ ब्यूटीफुल आवर लीगल सिस्टम इज, बट 10 महीनों के बाद उस लड़की को बेल दे दी गई, मतलब दिस इज सो हीनियस एज अ क्राइम, और आप उसके बाद 10 महीने बाद उस लड़की को बेल दे देंगे सेइंग कि आई डोंट नो व्हाट एवर द रीजन लीगली मस्ट बी गिवन, आई मीन वेयर आर वी गोइंग। तो मुझे तो लगता है उस सबसे बहुत ज्यादा अच्छा है इस तरह से सोसाइटी में प्रोटेस्ट करना, रेदर देन you know just agreeing to your parents and agreeing to your family and getting married when you don't even want to get married. It's not that she wants somebody else, and I don't really want to judge her on the kind of account she has. Wo uska personal Instagram account hai, aapko uska post pasand aata hai to aap use follow kariye, nahi aata to aap follow mat kariye, but you can't judge her for what she is posting. It's her account and she has absolutely every right to judge whatever she, you know, post whatever she wants, and same way she has posted this because usko aisa lagta hai ki this is her way of actually showing what she is feeling about getting married and getting married in a way in which her mother has decided her to get married.
1: Acha, aap ye baat manti hain Meenal ki aaj ki tareekh mein bhi aise bahut se parivar hain jahan par betiyan chah ke bhi na nahi kar sakti?
3: Bilkul, aapko kya lagta hai ye Sonam Raghuvanshi aur ye jo cases ho rahe hain isme ladkiyon ne soch samajh ke aise shaadi ki maan ke, ऑब्वियसली दे ऑलरेडी आर इन्वॉल्व आउटसाइड दोज मैरिजेस. अगर उनको बोलने का हक होता, वो ओपन कर सकती, तो दे वुड हैव गॉट इनटू दोज मैरिजेस एट ऑल. बट सोसाइटी के प्रेशर से, सोसाइटी के डर से कि लोग क्या कहेंगे और उनके पेरेंट्स की बहुत बदनामी हो जाएगी, और उनके पेरेंट्स ने बचपन से ये बातें पता कर ली हैं, और उनके पेरेंट्स का बचपन का रिश्ता है, दोस्ती है, यारी है, अब वो अकेले इस बात के लिए ना कैसे कह दे, और उनके पूरे संसार का, जिसे कहते हैं ना, बोझ आप अपने एक छोटी सी बेटी के कंधों पे डाल देते हैं कि बच्चे अगर तूने ये शादी से ना कर दी तो हम तो इज्जत से हम चले गए. सो यू नो दैट काइंड ऑफ अ बर्डन यू पुट ऑन अ स्मॉल 23-24 ईयर ओल्ड गर्ल. और ये ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, आई थिंक एवरी 10th फैमिली दिस मस्ट बी हैपनिंग. और ये यू नो डिस्पाइट ऑल द एजुकेशन सिस्टम, डिस्पाइट शी बीइंग इंडिपेंडेंट एंड अर्निंग, स्टिल घर का, इज्जत का बहुत बड़ा एक वो सहरा लगा दिया जाता है यू नो लड़की की उस पे, कि अगर तुम हमारे यू नो सेट स्टैंडर्ड से बाहर कहीं निकल कर किसी तरह से शादी करना चाहोगी तो इट विल ब्रिंग अ बैड नेम टू द होल फैमिली. And that's that we know it happens. It's a part of our society. Ab just because I'm saying this, I'm not against love marriages, and I'm not against girls going out of the you know family bondages and getting married. But I'm just saying ki this is there. Our society is going through a complete change from a society जहाँ पर लड़कियों के पास बोलने की आवाज भी नहीं थी.
1: ठीक
3: अब
1: है,
3: वो you know they are trying to find out the ways in which they want to protest. कुछ बहुत मीक वेज में, कुछ बहुत साइलेंट वेज में, कुछ बहुत आउटरेजियस वेज में, बट देयर आर गर्ल्स हु इज ट्राइंग टू स्पीक अप कि आप अपनी इज्जत खुद संभाल लीजिए, मेरी शादी से अपने फैमिली और अपने कुनबे की इज्जत मेरी शादी से लिंक मत करके रखिए,
1: ठीक है
3: ये
1: निशा
3: मेरी
1: जी.
3: लाइफ है.
1: एक और चीज फिर इसमें आती है कि अगर ये तरीका प्रोटेस्ट करने का है, और अगर हम माने कि कंटेंट क्रिएट करने के लिए किया गया है और ये जेंजी का प्रोटेस्ट है, अलग तरीके का प्रोटेस्ट है, तो इसमें एक और चीज आती है कि उनको तो सिंगल स्टेटस भी बहुत ज्यादा पसंद है. ये भी हो सकता है कि शादी नहीं करना चाह रहे हो.
2: एक चीज मैं बोलूंगी, अगर हम जेंजीज हो, यूथ हो, जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पर एक चीज बोलूंगी, शादी का जब ना बोलने का प्रेशर होता है वो लड़का और लड़की दोनों पर इक्वल होता है. अगर पेरेंट्स कंट्रोलिंग हैं तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की को लेकर कंट्रोलिंग होंगे, वो लड़के को लेकर भी होते हैं. क्योंकि मैं मैरिज काउंसलिंग के केसेस करती हूँ, तो ऐसे बहुत सारे लड़के होते हैं जहां पर पेरेंट्स उनको प्रेशराइज करते हैं कि उनकी पसंद से लड़की से शादी करेंगे. वो उनकी पसंद की लड़की से शादी नहीं करना चाहते जिससे उनका लड़का पसंद करता है, जो चाहे वो कल्चर अलग हो, चाहे वो सिटीजनशिप अलग हो, चाहे वो स्टेटस लेवल अलग हो. तो ये सिर्फ जेंडर को लेकर फीमेल पर प्रेशर नहीं होता. जब आप ऐसी फैमिलीज को बिलोंग करते हैं जहाँ पेरेंट्स कंट्रोलिंग होते हैं, वो दोनों जेंडर्स पर कंट्रोलिंग होते हैं, सिर्फ फीमेल पर बर्डन नहीं होता. दूसरी चीज रही बात, क्योंकि मैं दोनों तरह का केसेस करती हूँ तो मैं इसे सिर्फ फीमेल से कोरिलेट नहीं करूंगी, वो पेरेंटिंग का प्रॉब्लम है. रही बात जब सोनल रघुवंशी की बात करें या किसी की भी बात करें, हम ये नहीं कह सकते और किसी के मारने को जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ना बोलने की चॉइस नहीं थी. दीज पीपल मस्ट बी हैविंग साइकोपैथिक टेंडेंसीज, सोशियोपैथिक टेंडेंसीज. हम इस बात को ये नहीं बढ़ावा दे सकते कि आप अगर शादी से इनकार नहीं करोगे तो हम सामने वाले पर्सन की जान ले लेंगे. तो एक चीज तो वो बहुत क्लियर है, अगर ऐसे केसेस में हम ये जस्टिफिकेशन के लिए प्रयोग भी नहीं कर सकते. पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी सीख है कि वो बच्चों को शादियां जबरदस्ती ना करें, वो जहां करना चाहते हैं बच्चे वहां करें, क्योंकि बच्चे किस एक्सटेंड तक आगे बढ़ सकते हैं ये पेरेंट्स जानते भी नहीं है, क्योंकि किसी की नेगेटिविटी की कोई हद नहीं होती और कोई लिमिट नहीं होती. रही बात जब हम अगेन बात करते हैं कि प्रोटेस्ट करने का तरीका है, कई बार लोग अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं और जब वो बाहर की दुनिया में चेंज नहीं कर सकते तो उन्हें लगता है अपने हेयर स्टाइल में चेंज कर लिया जाए, अपने पहरावे के तरीके में चेंज कर लिया जाए, बिकॉज लाइफ में मुझे कुछ न्यू चाहिए. रही बात अगर हम इसको ये भी माने कि ये शादी के नाम को लेकर प्रोटेस्ट है उसका, बहुत अच्छी बात है. अगर वो प्रोटेस्ट कर रही है तो खुलकर फिर अपनी फीलिंग्स को लिखे. तो जैसा कि रेखा जी ने बोला कि अब उसने डिस्क्लेमर भी दे दिया है कि ऐसा कुछ नहीं था, तो मुझे लग रहा है फिर डिस्क्लेमर देने की भी जरूरत नहीं है. अगर फीलिंग्स है और पर्सनल अकाउंट है, हम इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं तो खुलकर सामने के लिए नहीं आती. क्योंकि अगर आपकी पर्सनैलिटी दो अकाउंट्स लेकर चल रही है जिसमें पेरेंट्स को नहीं पता और आप नहीं पता, ये अपने आप में एक सबूत है आप एक कंफ्लिक्टेड पर्सनैलिटी है. जो मैं बाहर हूं और जो मैं अंदर हूं, दो अलग पर्सनैलिटीज, यहीं से शुरुआत होती है कंफ्लिक्टेड सोसाइटी की, कॉन्फ्लिक्टेड लोगों
1: ये
2: की,
1: निशा जी, ये खास तौर पर निशा जी, इसी में इंक्लूड करते हैं. ये सोशल मीडिया के आने के बाद, व्यूज के चक्कर में, पॉपुलर होने के चक्कर में, फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में, ये ट्रेंड तो आजकल बहुत आम हो गया है. मैम इमोशनल इंस्टेबिलिटी बहुत कॉमन है. मैंने शायद बहुत बार आपके चैनल के थ्रू भी बोला है. अगर हार्वर्ड का लास्ट ईयर का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें उन्होंने बोला था लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, आई वुड से पीपल आर ओनली नियर अबाउट 15% ऑफ द पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज सेल्फ अवेयर. तो जब हम सेल्फ अवेयर ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है हमारे बिहेवियर का दूसरों पर क्या असर पड़ रहा है, हम फीडबैक को पॉजिटिव लेते हैं कि नहीं लेते हैं, हम हमारे कुछ पैटर्न्स हैं हम उनको नोटिस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, हमारा कुछ वैल्यू सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर पाते हैं या नहीं कर पाते, हम हमेशा रिएक्शन देते हैं रिस्पांस नहीं देते हैं. तो जब भी हम किसी इंसान के प्रोटेस्ट करने के तरीका बहुत अच्छा तरीका है. अब जब अतुल सुभाष के मौत खबर आई थी, अब उसके बाद कितने केसेस आ गए, कोई मरने जा रहा है वो वीडियो बना देता है. अतुल सुभाष भी मेंटली हेल्दी नहीं था क्योंकि उसने उस बच्चे के बारे में ही सोचा. अगर मदर गलत कर रही थी तो फादर ने भी सुसाइड करके, मदर उसकी ही सुसाइड के प्रेशर का केस झेल रही है, उस बच्चे 5 साल के बच्चे की जिंदगी का क्या है. तो मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत कॉमन है हमारे वर्ल्ड में, हम इन चीजों को ना नकारे. जितने भी लोग चाहे वो सुसाइड करते हैं, अगर ऐसे कंटेंट को भी हम पोस्ट कर रहे हैं बहुत हाईलाइट करता है हम किसी इमोशनल प्रेशर में है. बेटर है एआई और सोशल मीडिया को छोड़कर किसी प्रोफेशनल के पास जाके उसे खुलकर सारी बात बताए, झूठ नहीं बताए, खुलकर सारी बात बताए. चाहे वो आपके 4 अफेयर रहे हैं, 10 अफेयर रहे हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आप ड्रग्स लेते हैं नहीं लेते हैं, आप ड्रिंक्स करते हैं नहीं करते, आप वेप करते हैं नहीं करते, ये सच बोलना. आप इनफिडेलिटी में है नहीं है, तभी कोई डॉक्टर कोई साइकोलॉजिस्ट कोई साइकेट्रिस्ट आपकी मदद कर सकता है. अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं प्लीज डॉक्टर को बताइए. अगर आपका किसी को मारने का मन कर रहा है प्लीज डॉक्टर को बताइए, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ चैट जीपीटी और सोशल मीडिया. ठीक है, एक और चीज जो रेखा जी आपसे समझना चाहूंगी, आजाद सोच या फिर इंडिपेंडेंट सोच आप किसको कहेंगे. ठीक है, आजकल हम इसी शो के माध्यम से कह रहे हैं कि शादियों को भी आजाद होना चाहिए, सबकी मर्जी बराबर होनी चाहिए और मायने भी रखती है. क्या टोटली बच्चों पर छोड़ दिया जाए शादी का फैसला, क्या उसमें माँ बाप का सजेशन भी जरूरी नहीं, क्योंकि आजकल ये भी देखा गया है कि प्रोटेस्ट इस वजह से भी होते हैं कि पेरेंट्स सजेस्ट कर रहे हैं. क्या बिल्कुल पेरेंट्स को बाहर रख देना चाहिए इस डिसीजन में, क्योंकि आपकी फैमिली आपकी पूरी जिंदगी का एक बहुत अहम फैसला है और दो परिवार जुड़ रहे हैं, केवल लड़का और लड़की नहीं जुड़ रहे, दो परिवार जुड़ रहे हैं.
0: मैं इसमें यहाँ पर कहूंगी कि देखिए, एक है जो सिर्फ हम कानूनी बात करें कि कानून क्या कहता है, और दूसरा पहलू है कि एक प्रैक्टिकल व्यावहारिकता की बात करें, क्योंकि हमको सिर्फ एक किताबी ज्ञान की बात नहीं करना चाहती आपके चैनल के माध्यम से. हाँ, कानून कहता है कि आप 18 साल की लड़की हो गई, वो बिल्कुल स्वच्छंद है, वो जो करना चाहे अपने जीवन को जैसा जीना चाहती है वो जी सकती है, उसको अपने माँ बाप की भी परमिशन लेने की कानूनी तौर के ऊपर जरूरत नहीं है, ये कानून कहता है. पर नैतिकता क्या कहती है, आपके खुद के ह्यूमन वैल्यूज क्या कहती है, आपका आपका अपने परिवार के साथ क्या बॉन्डिंग है, आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या फील करते हैं, क्या एक आपका एक हैप्पी फैमिली के अंदर आपकी परवरिश हुई है, ये दूसरी बातें हैं जिसको हम कहेंगे नैतिकता की बातें हैं. तो अगर आप जैसे आपने कहा कि क्या आप अपने पेरेंट्स को बिल्कुल शादी के उससे रखिए, हाँ अगर किसी लड़की या किसी लड़के को ऐसा लगता है कि आज अगर मैं एक बात कहूँ, ये सिर्फ एक कानूनी बात नहीं है पर एक व्यवहारिकता की बात है, और आज के जमाने के अंदर जो एज अ लॉयर मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि आज इतनी सारी आजादियां मिल गई, यू नो कानून में तो ऑलरेडी आजादी थी, फंडामेंटल राइट्स तो थे, पर जो आज सोशल मीडिया की वजह से आपको फ्रीडम मिल गई, आपको एजुकेशन की फ्रीडम मिल गई, लड़कियों को अपने पांव पर खड़े होने की फ्रीडम मिल गई, जो पहले लड़कियों को काम भी करने नहीं देना चाहते थे पेरेंट्स की, लड़कियों को घर के बाहर भी ना भेजे कमाने के लिए, आज इतनी तरह की जब आपको आजादियां मिल गई तो उसके बाद में लोग खुश क्यों नहीं है. आज कोर्ट्स के अंदर एक फैमिली लॉयर की हैसियत से अगर मैं बोलूं तो आजकल फैमिली कोर्ट्स के अंदर पांव रखने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि किन किन बातों से परिवार टूट रहे हैं वो मतलब मैं खुद एक शॉक रह जाती हूँ कि मतलब क्या लड़की बता क्या रही है, किस वजह से वो अपने पति को छोड़ चुकी है या पति ने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ दिया है, क्यों दोनों के बीच में इतनी दरार आ गई है. क्योंकि आज मैं यहाँ पर कहूंगी कि एक जो हमारी जनरेशन है, और मैं किसी के ऊपर एक व्यक्तिगत कमेंट नहीं करना चाहती किसी आज की जनरेशन के ऊपर, परंतु अपने एक्सपीरियंस से यही कह सकती हूँ कि आजकल एक बहुत कंफ्यूज्ड हमारे जो यूथ है जहां पर एजुकेशन तो मिल गई पर आपको वो सिर्फ एक किताबी ज्ञान मिला, और आपको ये जो आप समझ नहीं पाए, आप मेच्योरिटी नहीं आ पाई है, जहां पर हम कहते हैं ना आई मी माई सेल्फ, मैं फ्री पर्सन हूं, मैं जैसे
2: जी
0: मर्जी करूं। अरे भैया कोई किसी ने आपको मना नहीं करा है, परंतु जिसको एक बैलेंस तरीके से चलने का कहते हैं, तो आज जब लड़कियों को इतनी एजुकेशन मिल गई है, लड़कों को इतनी एजुकेशन मिल गई है,
2: बिल्कुल
0: तो फिर इतने परिवार क्यों टूट रहे हैं?
2: बिल्कुल
0: क्योंकि
2: बिल्कुल,
0: आपके अंदर
2: ये भी एक
0: मेच्योरिटी नहीं
2: सवाल
0: आई
2: है
0: है।
2: रेखा जी, वक्त अभी इतना ही है, ये भी एक सवाल है। तो कब आजाद होंगी शादियां, इसी को लेकर चर्चा कर रहे थे। एक महिला ने जो सोशल मीडिया पर वीडियो डाला है उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं, बहुत सारे कमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं, और एक तरीके से समाज में बहस भी छिड़ी हुई है। इसी को लेकर तमाम खास मेहमानों से हमने चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रही हमारे साथ, देख रहे हैं।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: और अब बात एक ऐसी डिवाइस की जो चलते फिरते उठते बैठते इंसानी दिल की ईसीजी कर देगी। दिल का दौरा एक ऐसा खतरा है जो पता न चलने पर कुछ ही मिनटों में किसी की जिंदगी पर विराम लगा सकता है। एक इंजीनियर कपल ने अपने पिता की दिल की समस्या होने के बाद स्नेकलेट लाइफ नाम की दुनिया की सबसे छोटी 12 लीड ईसीजी डिवाइस बनाई है जो कहीं भी दिल का हाल बता सकती है।

0: किसी लेटेस्ट कार के रिमोट की तरह दिखने वाली इस डिवाइस का इस्तेमाल गाड़ी लॉक अनलॉक या बूट खोलने के लिए नहीं होता, बल्कि इंसानी दिल का हाल बताती है। संकेत लाइफ नाम की ये डिवाइस जो आपकी जेब में समा सकती है, वो एक ईसीजी उपकरण है जो आपके दिल की धड़कन, उसकी लय और इलेक्ट्रिकल सिग्नलों को रिकॉर्ड करती है। सबसे खास बात यह है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए किसी कार्डियोलॉजिस्ट या किसी योग्य और प्रशिक्षित तकनीशियन के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जेब में रखे रखे इंसान को हार्ट अटैक, असामान्य धड़कन या दिल की दूसरी बीमारियों का पता चल जाएगा। इस मशीन से ये भी पता चल जाएगा कि मरीज को तुरंत डॉक्टर की जरूरत है या नहीं। पॉकेट में समा जाने वाले इस ईसीजी डिवाइस को राहुल और नेहा रस्तोगी नाम के एक इंजीनियर कपल ने बनाया है, जो उत्तर प्रदेश के नोएडा के रहने वाले हैं। दिल की सेहत बनाने वाली इस बेहद कमाल सी डिवाइस को बनाने का आइडिया उनको अपने घर से ही मिला। साल 2013 में राहुल के पिता को दिल से जुड़ी समस्या हुई, जिस पर डॉक्टरों ने सीने में दर्द होते ही उनकी ईसीजी करने की सलाह दी ताकि दिल के दौरे को टाला जा सके। हालांकि किसी भी वक्त ईसीजी की सलाह उनके डर का कारण बन गई।
1: छोटी सी डिवाइस को बनाने वाले राहुल और नेहा मेरे साथ में हैं। एक वक्त था जब दोनों अपनी अपनी नौकरी करते थे, लेकिन जुनून ऐसा जगा कि नौकरी वोकरी छोड़कर सब कुछ इसको बनाने में लग गए और आज 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो राहुल, पहला सवाल आपसे कि कैसे शुरू हुई इसकी जर्नी?
2: मेरे फादर को, जो लखनऊ में रहते थे, उनको हार्ट की प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई और डॉक्टर ने सिर्फ यही चीज़ बोली थी कि कभी भी चेस्ट में सीने में दर्द हो, क्योंकि आर्टरीज उनकी 80-90% ब्लॉक थी, जो बहुत उस टाइम कॉमन इंडिया में है, तो तुरंत ईसीजी ले लेना। अब चूँकि वो लखनऊ में रहते थे तो पहली चीज़ तो मैंने उन्हें यहाँ बुलाया। उसके बाद हार्ट का जो दर्द है वो कभी भी हो रहा है, सुबह 3 बजे हो रहा है, दोपहर में हो रहा है, हम पास में हैं चेन्नई, जब हम ईसीजी कराने भी जा रहे हैं तो भी 2-2 घंटा लग रहा है और डॉक्टर साहब को रिपोर्ट देखते हुए तो 2-2.5 घंटे से ऊपर हो जाता है। तो यही दिल में डर रहता था कि इसी बीच कहीं पे कुछ हो ही ना जाए।
0: इस घटना ने राहुल और उनकी इंजीनियर पत्नी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें यह डर सताने लगा कि दोनों की गैर हाजिरी में अगर उनके पिता के साथ कुछ हो जाता है और जिसका समय पर पता नहीं चलता है तो क्या होगा।
2: हम लोगों ने पहली चीज की कि मार्केट में देखें कि कोई ऐसे घर बैठे डिवाइस हो, जो कि पूरे वर्ल्ड में उस टाइम नहीं था। तब हम लोगों ने इसको ये सोचा कि हम लोग घर में बनाते हैं, तो हम लोगों ने पहला प्रोटोटाइप एक माचिस की डिब्बी में बनाया, जो फिर हमने अपोलो के डॉक्टर्स को दिखाया और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने बताया कि इसको कैसे एक पूरा मेडिकल डिवाइस में बनाया जा सकता है। तो फिर हम लोगों ने उसी रास्ते पर आगे गए।
0: खास बात यह है कि बहुत ही सरल और बिना दर्द वाले ईसीजी मेडिकल टेस्ट की तरह इसमें कोई लंबे तार या जेल लगाने की जरूरत नहीं होती है। मरीज को केवल अपनी उंगलियों से इस डिवाइस को छूना होता है। इसे दुनिया की सबसे छोटी वायरलेस 12 LED पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस में से एक माना जाता है। इसे स्मार्टफोन से जोड़कर कुछ ही सेकंड में मेडिकल ग्रेड ईसीजी रिकॉर्ड किया जा सकता है और रिपोर्ट को तुरंत डॉक्टर से शेयर भी किया जा सकता है।
3: पहला प्रोटोटाइप हमने जब दिखाया डॉक्टर्स को, तो पहला तो फीडबैक यही था कि हमने थंब से खाली सिंगल लीड ईसीजी करना वाली डिवाइस बनाई थी, तो डॉक्टर्स को पसंद आया। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि सिंगल लीड ईसीजी इतना कारगर नहीं है, क्योंकि अगर आपको ईसीजी से पूरी हार्ट की प्रॉब्लम या बीमारी डायग्नोज करनी है तो आपको एक 12 लीड ईसीजी ही करना पड़ता है, जो कि उस टाइम सिर्फ हॉस्पिटल्स में ही होता था और बड़ी मशीन द्वारा होता था। तो डॉक्टर्स ने ये बोला कि अगर ये इसी डिवाइस को, जो तुम पॉकेट डिवाइस बना के लाए हो, इसको तुम 12 लीड में कन्वर्ट कर दो, तो ये एक अनोखा डिस्ट्रप्शन होगा, क्योंकि फिर कोई भी अपना 12 लीड ईसीजी, जो कि एक कंक्लूसिव ईसीजी होता है, वो करके आपको डॉक्टर को भेज सकता है ईसीजी रिपोर्ट और अपना पता लगा सकता है कि प्रॉब्लम तो नहीं है।
0: संकेत लाइफ डिवाइस को सभी तरह के सर्टिफिकेशन और अप्रूवल मिल चुके हैं।
2: बेसिकली क्या है, लीड का मतलब, जैसे अभी हम सिर्फ 2 थम्स का अगर यूज़ करें ऐसे, तो हम देखते हैं आजकल स्मार्ट वॉचेस में भी ये ईसीजी आती है, लेकिन जब हम अस्पताल जाते हैं तो हम देखते हैं कि 12 जगहों से तार निकलता है, तो वो 12 ग्राफ बनते हैं। और हमारी इंडियन पॉपुलेशन में जो हम स्मार्ट वॉच वगैरह से करते हैं, वो उतनी बड़ी 1% ऑफ डिसीज़ है। बाकी की जो 99% डिसीज है वो बेसिकली चेस्ट से निकलती हैं। तो 12 लीड का मतलब हम इसको अलग अलग जगहों पे टच कर सकते हैं और फिर हम ईसीजी निकाल सकते हैं।
0: एक सफल मेडटेक स्टार्टअप का रूप ले चुकी इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नोएडा में है, जहां अस्तित्व में आई इस तकनीक का इस्तेमाल अस्पतालों, एम्बुलेंस, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों और घरों में हार्ट मॉनिटरिंग के लिए किया जा रहा है।
3: बहुत देश विदेश के पब्लिकेशंस में हमारा पब्लिश हो चुका है, CDSCO द्वारा प्रमाणित है, जो कि इंडिया का FDA है जो मेडिकल डिवाइसेस को रेगुलेट करता है। तो CDSCO द्वारा प्रमाणित है, ISO है, हम लोग हम अपनी डिवाइसेस खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जितने भी मानक हैं, जितना भी क्वालिटी को लेके या एक्यूरेसी को लेके जितना भी हमारा जो भी इंडिया में इंटरनेशनली मानक हैं, वो सब हमने पार
1: कर लिए।
0: अब राहुल और नेहा की जोड़ी ऐसे फिट बैंड पर काम कर रही है जो खून का सैंपल लिए बिना शुगर लेवल बता भी देगी। यानी एक पिता की बीमारी से शुरू हुआ ये सफर आज भारत के हेल्थ टेक सेक्टर की प्रेरणादायक सफलता की कहानी बन चुका है।
1: तो आप सोच

0: आपके हार्ट में क्या हो रहा है, आपके दिल की हेल्थ कैसी है, ये आप तुरंत पता लगा सकते हैं। और क्या ऐसी कोई गड़बड़ी हो रही है जिससे आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो अगर नहीं है तो क्या मेरे ख्याल से ये उस डॉक्टर की एक फीस ही बचा रही है, जहां आप सिर्फ शंका में होते हैं और छोटी मोटी चीज़ों के लिए ECG के लिए आप डॉक्टर के पास भाग जाते हैं। तो कई तरह से ये लाभदायक है। मेरे ख्याल से देश की जनता अगर इसका इस्तेमाल कर रही है तो उनके लिए भी ये ना सिर्फ सेहत के लिहाज से बल्कि इकोनॉमिकली भी उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होने वाली है। कैमरामैन शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, नोएडा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Hey, it's Billy Bush. Tune in to my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Nothing feels better on a hot summer day than coming home to a nice air-conditioned house. If your AC is on the fritz, don't sweat it. Call the pros at the Waterworks Heating and Cooling. We service all makes and models and can provide great savings on a Lennox home comfort system that delivers that perfect feeling. The Waterworks Heating and Cooling Services. Call us at 614-232-2222 and schedule fast service today. The Waterworks. Better care, better value, better results.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।
3: चाय आ गई है, चाय का मजा तभी आता है जब हाथ में फोन हो। क्या देख रही हैं आप?
4: बहुत इम्पोर्टेंट रील जो आप सबको देखनी चाहिए, पहले इंस्टाग्राम पे चले जाओ और फिर चेक कर लो।
3: सेगमेंट जो है वो सबसे पहले
4: चाय पे चर्चा। क्या है चाय पे चर्चा? इज ऑल अबाउट गॉसिप ना।
3: बारिश नहीं हो रही ना, बिना बारिश के चाय
5: देख क्या रही थी आप, ये तो बता दीजिए। अब
4: ये मैं आपको बताऊंगी 5:30 बजे।
5: अच्छा चलो ठीक है, तब तक
3: कराएंगे ना कि आज क्या है सोशल मीडिया पे ना,
4: सोशल मीडिया की हलचल क्या है।
3: लेकिन फिलहाल जो देश में हलचल है वो आपको बताते हैं। हलचल है रथ यात्रा को लेकर, इससे जुड़ी तमाम खबरें आपको दिखाएंगे क्योंकि 16 जुलाई से रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। महाप्रभु जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच पहुंचेंगे, उनको दर्शन देंगे, नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। श्रद्धालु भी उत्साहित हैं, देश में विदेशों से भी श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। तो कैसी है रथ यात्रा को लेकर तैयारी, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में इसकी तैयारियां हो रही हैं, हर जगह की तस्वीरें आपको दिखाएंगे।
4: नमस्कार, मैं हर्ष गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। हॉलीवुड फिल्म माइकल ने दुनिया भर में 9600 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं और बन गई है दुनिया की ऐतिहासिक मुकाम पाने वाली पहली बायोपिक फिल्म। तो 7 साल के बाद एक्टर गोविंदा का किस तरह से बॉलीवुड में कमबैक हो रहा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। साथ ही इंडियन एयरफोर्स की गौरव गाथा पर पहली बार एक सीरीज ला रहा है नेटफ्लिक्स, तो ऑपरेशन सफेद सागर की तमाम खासियत से आपको रूबरू करवाएंगे।
5: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो देखिए, आस्था के रंग होने वाले हैं आज के कार्यक्रम में, बात एंटरटेनमेंट की भी होगी और देखिए आने वाले दिनों में देश के अंदर मॉनसून क्या गुड न्यूज लाने वाला है, क्या और कब तक उमस भरी गर्मी से राहत आपको मिलने वाली है, इस पर भी डिटेल से बातचीत होगी। और साथ ही रोशनी, ड्रोन और आतिशबाजी के अनोखे संगम को दर्शाते फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बैस्टिल डे की भी खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: टीआईटी भोपाल जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की जोरदार तैयारी यात्रा रूट पर ग्रैंड रिहर्सल मंदिर में ध्वजारोहण के बाद महाआरती। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा अब तक 44 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन बद्रीनाथ में करीब 15 लाख श्रद्धालु। सैलानियों से गुलजार हुई चमोली की फूलों की घाटी अब तक 11,000 पर्यटकों ने किए दीदार रंग बिरंगे फूलों का दिखा मनमोहक नजारा। दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्सटाइल एक्सपो का शुभारंभ 17 जुलाई तक चलेगा कार्यक्रम देश विदेश से जुटेंगे उद्योगपति। टिहरी पुलिस ने बनाई टीम गौरा नारी सुरक्षा को लेकर प्रशासन की पहल सेल्फ डिफेंस और साइबर अपराध से बचाने की दे रहे ट्रेनिंग। और चलिए वही तस्वीरें जो सुबह से लगातार आपको दिखा ही रहे हैं। साल में देखिए एक अवसर ऐसा आता है जब भक्त भगवान को दर्शन के लिए नहीं जाते बल्कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच में पहुंच जाते हैं। यही है श्री जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा।
3: बिल्कुल, देखिए रथ यात्रा की तैयारियों से पूरा पूरी शहर भक्तिमय हो चुका है। तीनों दिव्य रथ सज करके तैयार हो चुके हैं, श्रद्धालुओं का तांता लगने लगा है और अब सबकी निगाहें उस शुभ घड़ी पर टिकी हुई हैं जब जय जगन्नाथ के जयघोष के बीच रथ यात्रा का शुभारंभ होगा।

0: हर साल करोड़ों श्रद्धालु जिस पल का इंतजार करते हैं वो पावन घड़ी अब दस्तक देने वाली है। जगत के नाथ श्री जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच आने को तैयार हैं। नगर भ्रमण के लिए उनका दिव्य रथ सजकर तैयार है। बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी अपने अपने रथों पर विराजमान होकर इस भव्य यात्रा का हिस्सा बनेंगे। अब बस इंतजार है उस दिव्य क्षण का जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के द्वार तक पहुंचेंगे।
1: मेरे पीछे आप ये तीनों रथ देख सकते हैं। तीनों रथ अब पूरी तरह की जो तैयारी है ये तैयारी एक तरफ खत्म होने वाला है और बच एक ही दिन का बाकी है। एक दिन बाद यानी जुलाई 16 तारीख को भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा मैया रथ यात्रा में शामिल होंगे, भक्तों को दर्शन देंगे, भक्तों से मिलने के लिए आएंगे। जो भक्त सालों भर भगवान का मंदिर के अंदर नहीं जा पा रहे हैं वो खुद भगवान सालों में एक बार जैसे आते हैं, इस बार भी जुलाई 16 तारीख को आएंगे और भक्तों को दर्शन देंगे।
0: भगवान बलभद्र का रथ ताल ध्वज कहलाता है जो लाल और हरे रंग से सुसज्जित होता है। देवी सुभद्रा दर्प दलन या देव दलन रथ पर विराजमान होती हैं, जिसका आवरण लाल और काले रंग का होता है। वहीं भगवान जगन्नाथ नंदी घोष या गरुड़ ध्वज रथ पर विराजते हैं जो लाल और पीले रंग से अलंकृत होता है।
1: ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो रथ है ये नंदीघोष रथ है और ये नंदीघोष रथ का जो आपको ये जो दिखा रहा हूँ ये जो कलर है रेड और येलो ये कलर भगवान को बहुत पसंद है।
0: रथ यात्रा के लिए पूरी भक्तिमय रंग में रंग चुका है। चौक चौराहों से लेकर रथ यात्रा मार्ग तक हर तरफ भव्य सजावट की छटा बिखरी हुई है। भगवान जगन्नाथ की एक झलक पाने और ऐतिहासिक रथ यात्रा की साक्षी बनने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु पुरी पहुंच रहे हैं।
1: इस बार 2026 रथ यात्रा को देखने के लिए ये भव्य रथ यात्रा में शामिल होने के लिए अब से पुरी में भक्तों का भीड़ अब देखने के लिए मिल रहा है।
0: ये वो दुर्लभ बेला है जब भक्त भगवान के पास नहीं जाते बल्कि भगवान स्वयं अपने भक्तों से मिलने निकलते हैं। और जब जगत के नाथ श्री जगन्नाथ अपने मंदिर से बाहर आते हैं तो दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ना स्वाभाविक है।
2: बहुत अच्छा आके बहुत अच्छा लग रहा है। जगन्नाथ जी की कृपा है, बहुत कृपा है। जगन्नाथ जी ने हमें को बार बार बुला रहा है, हम भक्त लोगों को, इसलिए हम आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है जी।
3: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भगवान के लिए। हम किंचित पुण्य काम करके हैं उसके लिए भगवान दर्शन के लिए हमको मिल गया।
4: भगवान का रथ देख रहे हैं कैसा लग रहा है?
3: बहुत बहुत मन बहुत बहुत संतोष लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। इट्स वेरी ग्रेटफुल टू अस।
0: आस्था उल्लास और भक्ति का ऐसा संगम शायद ही कहीं और देखने को मिले। पुरी में हर चेहरा भगवान जगन्नाथ के स्वागत के लिए उत्साहित है।
5: पहली बार हूँ, इतना मुझे ऐसा लग रहा कि मुझे मैं पुण्य है इधर आने का। मैं कभी नहीं आई हूँ इधर, भगवान ही मुझे बुलाए है।
4: खुशी लग रहा है?
5: बहुत खुशी, बहुत आनंद लग रहा है।
6: कुछ भी बोल नहीं सकते, मन में इतना खुशी है कि हम लोगों को स्वामी ने बुलाया हुआ है यहाँ पे।
4: मतलब रथ यात्रा आप पहले कभी देखे थे?
6: नहीं, पहली बार है, लाइफ टाइम में पहली बार है हम लोगों को।
0: भक्त ही नहीं देश के कोने कोने से साधु संत और महात्मा भी इस महामिलन के साक्षी बनने के लिए पुरी की पावन धरा पर पहुंच चुके हैं। हर किसी की एक ही कामना है, रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ के दर्शन हो और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। पुरी से अजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: चलिए आपको रौनक दिखाते हैं पुरी की। सीधा अजयनाथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी। अजय, इस वक्त दिखाइए जरा तस्वीरें कैसी है वहां की। अभी अगर हम देखें 5:15 का वक्त है, रथ यात्रा शुरू हालांकि 16 तारीख से होनी, लेकिन उससे पहले आज वहां पर किस तरह का माहौल है, कितनी संख्या में भक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं?
8: मैं आपको पहले वो नजारा दिखाना चाहूंगा। भगवान स्वस्थ हो रहे हैं और भगवान को स्वस्थ होने के बाद, भगवान स्नान पूर्णिमा के बाद बुखार में थे, भगवान का तबियत खराब हो गया था और भगवान आज नौबजौवन देश में पहली बार भक्तों को मिलेंगे, हालांकि वो बहुत कम टाइम है, हालांकि एक घंटा हो, तो भगवान और भक्तों का बीच में जो बंद था वो खुल गया है। आज भगवान भक्तों को नवजौवन दर्शन देंगे, एक घंटे के लिए देंगे और पूरा नजारा आपको मैं दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, ये भीड़ आप देख सकते हैं, ये भीड़ को देख के ही पता चलता है कि भगवान को देखने के लिए भक्तों लोगों का मन में वो जो भाव, वो जो इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म हुआ है। 14-15 दिन का जो इंतजार था वो इंतजार अब कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है और आज नवजौवन वेश में भगवान पहली बार भक्तों से मिलेंगे और रथ यात्रा के लिए पूरी तैयारी होगा और 16 तारीख को भगवान रथ में विराजमान होंगे और जिस भक्त सालों भर भगवान को देख नहीं पाता है उस भक्तों को भगवान मिलेंगे और भक्तों का मन में ये भक्ति, वो श्रद्धा, वो प्रेम आप देख सकते हैं। मैं
7: बिल्कुल बेहद खूबसूरत तस्वीरें, 16 तारीख से यात्रा शुरू होनी है और देखिए कितनी दिव्य भव्य। और जो अगर आपको याद हो शगुफ्ता सरगम, हम लोग जब हर साल दिखाते हैं तस्वीरें, वहां पर तिल रखने की जगह नहीं होती है, इतनी भीड़ होती है और हर किसी को ये रहता है कि वो रथ के पास पहुंचे, दर्शन करे, उसको छू ले,
9: स्पर्श करे। बिल्कुल जुड़ गए हैं अजय दोबारा से हमारे साथ। अजय आपके पास आते हुए, अजय जो तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ कैमरा में, पीछे बहुत ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, उनको कंट्रोल मैनेज करने के लिए भारी तादाद में अभी से पुलिस बल वहां पे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जरा बातचीत कीजिए कि कैसे मैनेज किया जा रहा है इतने बड़े क्राउड को।
8: मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भक्तों, जो भक्त यहाँ घंटों से यहाँ इंतजार में हैं, भक्तों का मन में जो श्रद्धा है, जो इंतजार है, भक्त कैसे इंतजार में है, कैसे भगवान को मिलने के लिए कैसे इंतजार में है और ये भीड़ को मैनेज करने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं, पूछेंगे भक्तों से, पूछेंगे कितने देर से यहाँ है, कैसे दर्शन के लिए इंतजार है, मन में क्या है, पूछेंगे एक बार भक्तों से, फिर पुलिस बल से भी बात करेंगे। क्या कहाँ से हैं आप?
10: तेलंगाना हैदराबाद से।
8: कितने देर से यहाँ है?
10: हम करीब 4-5 घंटे से यहाँ खड़ा हुआ हूँ लाइन पे, 2 घंटे की तो बात
8: है। अच्छा, दर्शन भगवान का, ये नवजौवन दर्शन पहले हुआ है पहले से कभी?
10: एक घंटी बाद है।
8: क्या मन में क्या है?
10: भगवान का दर्शन करना अच्छे से, बहुत आए हैं
8: हम लोग। कहाँ से है सर?
10: महाराष्ट्र अमरावती।
8: क्या बोलना चाहेंगे?
10: थोड़ी आनंद है, भगवान के दर्शन करते हुए।
8: ये आप देख सकते हैं, ये भक्त जो है अंदर जो थे, अब भीड़ इतना बढ़ गया कि इन लोगों को बाहर आना पड़ा। मैम मैम, क्या बात है, क्यों बाहर आ गए, लाइन से क्यों बाहर आ गए? आप देख रहे हैं एक के बाद एक आदमी यहाँ, वो जो लाइन में थे, लाइन से निकल आ रहे हैं। क्या दिक्कतें हो रहा है, क्यों लाइन से बाहर आ जा रहे हैं, बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? सर क्या नाम है आपका? कहाँ से है सर? कहाँ से है सर? मतलब क्या था, प्रॉब्लम क्या है, क्या क्यों निकल आ गए?
7: चलिए बहुत शुक्रिया, तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं। देखिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए यहाँ पर और अभी से ही। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर होता है वो होता है मौसम का, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है।
9: बिल्कुल,
7: तो एक तरफ देखिए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन कड़े सुरक्षा इंतजाम कर रहे हैं, चप्पे चप्पे की निगरानी के लिए सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है।
9: और देखिए रथ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। इसी कड़ी में पुरी में पुलिस ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया।

0: पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 16 जुलाई वो शुभ घड़ी होगी जब महाप्रभु जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे, लेकिन उससे पहले भक्तों की असीम भीड़ इस पल की साक्षी बनने के लिए उमड़ने लगी है। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत है, रथ यात्रा के दिन पुरी में भक्तों का मेला लगेगा। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो रहे हैं, तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल हो रही है जिसमें पुलिस और प्रशासन के साथ ही एनसीसी स्काउट्स और वॉलंटियर्स भी शामिल हुए।
1: इस बार सबसे ज्यादा भीड़ होने वाला है, जैसे कि 10 से 15 लाख से भी ऊपर बहुत ज्यादा भीड़ होने वाला है। इसमें हम जैसे कि ग्रीन कॉरिडोर करके एम्बुलेंस को मेडिकल तक पहुंचाने में बहुत सारी मदद करते हैं, और ग्रीन कॉरिडोर की वजह से बहुत जल्दी एम्बुलेंस मेडिकल तक पहुंच जाता है।
0: इस साल रथ यात्रा में पहले के मुकाबले ज्यादा संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है, जिससे किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। हालात को देखते हुए पूरे रथ मार्ग पर पुलिस और सुरक्षा बल की तैनाती रहेगी। ड्रोन, सीसीटीवी और कंट्रोल रूम के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। स्वास्थ्य सेवाएं, एम्बुलेंस, पेयजल और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रथ यात्रा से पहले लाइफ गार्ड्स ने समंदर किनारे भी रेस्क्यू मॉक ड्रिल की। समंदर में फंसे शख्स तक कैसे जल्दी से जल्दी पहुंचना है, उसे किनारे तक लाना और शुरुआती उपचार देना इस मॉक ड्रिल में शामिल था। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सिर्फ पुरी वासियों के लिए ही एक बड़ा धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि देश और दुनिया में मौजूद तमाम जगन्नाथ भक्तों के लिए भी किसी बड़े उत्सव से कम नहीं। ऐसे में इंतजाम बेहद पुख्ता है।
2: 13,000 से ज्यादा जो आर्म फोर्सेस हैं उनको मुतैन किया जाएगा, 19 आईपीएस ऑफिसर्स को, अराउंड 19 ऑफिसर जो हैं, 19 ऑफिसर को ये पूरी व्यवस्था देखने के लिए, निगरानी करने के लिए पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। इसके साथ 15 जो CFPF कंपनियां हैं इनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, और इसके साथ 1700 से ज़्यादा बायो टॉयलेट्स, ताकि लोगों को टॉयलेट्स के लिए कुछ ऐसे प्रॉब्लम ना हो, इसलिए 1700 से ज़्यादा बायो टॉयलेट्स और 8 टेम्प्रारी जो मेडिकल हैं, टेम्पररी मेडिकल भी इंस्टॉल किया जाएंगे।
0: अब इंतजार उस ऐतिहासिक क्षण का है जब भव्य रथों पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और मां सुभद्रा के साथ भक्तों के बीच निकलेंगे। इस दौरान जय जगन्नाथ की गूंज सुनाई देगी और पूरी नगरी में एक बार फिर आस्था, एकता और सनातन परंपरा की अद्भुत झलक दिखाई देगी। पूरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो देखिए, यूं तो पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ को समर्पित ये मंदिर कई रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। भगवान श्री कृष्ण का ये कैसा इकलौता मंदिर है जहां वो अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। समुद्र तट पर मौजूद इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ पर स्थापित श्री कृष्ण की काष्ठ की मूर्ति में आज भी उनका दिल धड़कता है, जिसकी कहानी रस्मों और परंपराओं में रची बसी हुई है।
4: दरअसल भगवान जगन्नाथ के इस पवित्र धाम में समय समय पर इन मूर्तियों को बदलने और उनके श्रृंगार की बेहद अनूठी परंपरा निभाई जाती रही हैं, जिनमें से एक है नवकलेवर और बनक लगी अनुष्ठान। और इस परंपरा को निभाने के लिए मंदिर को 4-5 घंटों के लिए बंद कर दिया जाता है और भक्तों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित हो जाता है।

0: महाप्रभु जगन्नाथ का ये पावन धाम सनातन संस्कृति का वो अलौकिक दरबार जहाँ ना जाने कितने ही अनसुलझे रहस्य मौजूद है। मंदिर की वास्तुकला जितनी अद्भुत है उतनी ही हैरान करने वाली है यहाँ की सदियों पुरानी गुप्त रस्में। आमतौर पर हिंदू धर्म में देवी देवताओं की मूर्तियाँ पत्थर या धातु की होती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण, बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्तियाँ नीम की लकड़ी यानी काष्ठ से बनी है। यही वजह है कि भगवान जगन्नाथ के इस पवित्र धाम में समय समय पर मूर्तियों को बदलने और उनके श्रृंगार की बेहद अनूठी परंपराएं निभाई जाती है। नवकलेवर यानी जगन्नाथ मंदिर की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण परंपरा। उड़िया भाषा में इसका अर्थ है नया शरीर धारण करना। ये रस्म हर 12 से 15 साल के बीच तब निभाई जाती है जब हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने में अधिक मास यानी 2 आषाढ़ पड़ते हैं। इस दौरान पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का सबसे रहस्यमय और गोपनीय हिस्सा है ब्रह्म पदार्थ। मान्यता है कि ये ब्रह्म पदार्थ भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ हृदय है। जब मुख्य पुजारी इस गुप्त रस्म को अंजाम देते हैं, तब पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है, मंदिर में भी अंधेरा कर दिया जाता है। साथ ही मंदिर की सुरक्षा को हर तरफ से मजबूत किया जाता है। चयनित पुजारियों की आंखों पर रेशम की पट्टी बांधकर मंदिर में भेजा जाता है ताकि कोई भी इस दिव्य ऊर्जा को साक्षात ना देख सके। मूर्तियों में से ब्रह्म पदार्थ निकाला जाता है और ध्यान से नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। कहा जाता है कि इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा होती है कि इसे देखने वाला अंधा हो सकता है। हालांकि इसे आज तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया जगन्नाथ मंदिर में सदियों से चली आ रही है। बन कलगी दिव्य श्रृंगार। नव कलेवर की तरह ही मंदिर में कुछ दिनों के अंतराल पर एक और बेहद महत्वपूर्ण और गुप्त रस्म निभाई जाती है, जिसे बन कलगी या श्री मुख श्रृंगार कहा जाता है। इस रस्म के दौरान महाप्रभु जगन्नाथ का विशेष श्रृंगार किया जाता है। बन कलगी एक पूरी तरह से गुप्त अनुष्ठान है, जिस दौरान करीब 4 से 5 घंटे के लिए मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इस श्रृंगार में केवल प्राकृतिक और दुर्लभ रंगों का उपयोग किया जाता है, जिसमें शंख का सफेद पाउडर, कस्तूरी, केसर और हिंगुल जैसी सामग्रियां शामिल होती है। ये दिव्य रंग न सिर्फ भगवान के श्री मुख को अलौकिक आभा देते हैं, बल्कि काष्ठ की मूर्तियों को सुरक्षित रखने का काम भी करते हैं। इस विशेष रस्म को दत्त महापात्र कहे जाने वाले विशेष पुजारियों का समूह अंजाम देता है। दरअसल रोजाना होने वाले बनाव श्रृंगार और पूजा पाठ की प्रक्रिया से काष्ठ की देव प्रतिमाओं पर असर पड़ता है। ऐसे में देव प्रतिमाओं के सजीले रूप को संवारने और बनाए रखने के लिए वर्ष में एक बार इस अनुष्ठान को किया जाता है। जगन्नाथ धाम में सदियों से हर वर्ष बेहद गोपनीयता और श्रद्धा के साथ दिव्य नव कलेवर और बन कलगी अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: वहीं बात करें उत्तराखंड में चल रही चार धाम यात्रा की, तो विशेषकर बद्रीनाथ धाम में आजकल श्रद्धालुओं की काफी चहलकदमी है। दरअसल मौसम यहां बेहद सुहाना बना है, बारिश रुककर हो रही है, इसलिए रास्तों में भी रुकावट नाम मात्र ही नजर आ रही है।
2: वैसे ये भी बताते चलें कि बद्रीनाथ धाम ही नहीं बल्कि चमोली के श्री हेमकुंड साहब में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि मौसम वहां पर भी ऐसा ही बना है, बावजूद इसके श्रद्धालुओं की संख्या में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। देखिए किस तरीके से श्रद्धा का सैलाब यहां पर भी उमड़ रहा है।
3: बद्रीनाथ धाम में अब तक 14,82,000 तो हेमकुंड साहिब में 1,92,000 श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं। वहीं मौसम की बात करें तो इस बार अभी तक पहाड़ों में मानसून उस तरह से सक्रिय नहीं हुआ है। हालांकि कभी कभार बारिश देखने को मिल रही है, बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, हेमकुंड साहिब में देखने को मिल रहा है।
4: उत्तराखंड के ऊंचे क्षेत्रों में खासकर चमोली जिले में इन दिनों मौसम भले ही नरम गरम है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, मॉनसून की बेरुखी भी नजर आ रही है। बावजूद इसके चारधाम यात्रा में से एक भगवान बद्री विशाल का दरबार और पवित्र हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा आस्था से गुलजार है। बद्रीनाथ धाम में कल कल बह रही अलकनंदा का इन दिनों शोर सुनाई दे रहा है, लेकिन इस शोर से कहीं ज्यादा यहाँ उमड़ रही आस्था का ही नाद है, जिसे देशी विदेशी श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के रूप में देखा भी जा सकता है। बताया जा रहा है कि पिछले सालों की तुलना में इस साल मॉनसून बेहद कमजोर है, इसलिए पहाड़ों पर खासतौर से ऊंचाई वाले इलाकों में तो बारिश कम ही दर्ज की गई है, लेकिन चारधाम दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं की आवक में अभी तक कोई खास कमी नहीं आई है। इस वर्ष 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, श्रद्धालुओं ने काफी संख्या में वहां पहुंचकर दर्शन किए और तब से लेकर अब तक 14,82,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। वहीं 23 मई को खुले हेमकुंड साहिब के कपाट के बाद अब तक 1,92,000 से ज्यादा सिख श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। यानी मौसम अनुकूल है, यात्रा मार्ग भी सुचारू है, तो चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह भी लगातार बना हुआ है, खासकर बद्रीनाथ में, जहां भले ही बारिश कम हो रही है मगर मौसम बेहद मुफीद है। ऊपर से यात्रा मार्ग पर कम बारिश होने की वजह से आवाजाही भी सुचारू है। यही कारण भी है कि श्रद्धालु बिना किसी बड़ी परेशानी के भगवान बद्री विशाल के साथ ही सिख श्रद्धालु भी पवित्र हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के दर्शन कर रहे हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: तो देखिए उधर कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह जो है वो लगातार बना हुआ है। अब तक करीब 2,00,000 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं और लगातार उनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है।
1: अब देखिए इसी बीच श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अब अमरनाथ यात्रा के लिए तीसरा रूट खोलने पर विचार हो रहा है, जो पहले के दोनों मार्गों बालटाल और पहलगाम से छोटा, आरामदायक और काफी सुरक्षित होगा।

0: कठिन डगर है, लंबा सफर है, मगर उत्साह में कोई कमी नहीं। ये आस्था की मजबूत डोर ही है कि लाखों श्रद्धालु चुनौतियों को पार करते, बम बम भोले का जयकारा लगाते, बाबा बर्फानी के दर्शन के आस लिए चल पड़े हैं। एक दूसरे से अनजान लेकिन सब जाने पहचाने से, सबकी एक ही मंजिल, एक ही रास्ता जो महादेव के दर तक जाता है। खड़ी चढ़ाई, पथरीला रास्ता और पर्पल बदलता मौसम, लेकिन बाबा बर्फानी के भक्तों का जोश कम नहीं। आस्था का आलम यह है कि 3 जुलाई से शुरू हुई इस यात्रा में अब तक 2,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा में पहुँच कर दर्शन कर चुके हैं।
1: इस साल की अमरनाथ यात्रा में पहले 10 दिन बीत चुके हैं और 10 दिन के ही दौरान 2,00,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह ने जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी इस बात को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या आखिर कोई और मुतबादिल रास्ता अमरनाथ गुफा की ओर जा सकता है।
0: फिलहाल अमरनाथ यात्रा पहलगाम और बालटाल 2 मार्गों से हो रही है, लेकिन भविष्य में इस यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 3रा मार्ग तैयार करने की चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि ये 3रा मार्ग छोटा भी होगा और श्रद्धालुओं के लिए आरामदायक भी। ये प्रस्तावित मार्ग लद्दाख के मीनामर्ग को करीब 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा को जोड़ेगा। ये रास्ता करीब 6 किलोमीटर का होगा, जिस पर चलकर तीर्थयात्री एक ही दिन में पवित्र गुफा पहुंच सकेंगे।
1: इसमें एक रास्ता पहलगाम से होते हुए अमरनाथ गुफा जाता है, जो रिवायती रास्ता है, सबसे लंबा रास्ता है और धार्मिक तौर पर भी श्रद्धालु उस रास्ते को चुनते हैं, क्योंकि ये लंबी यात्रा उन सभी धार्मिक पड़ावों से गुजरती है जो अमरनाथ यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे फिर वो चंदनबाड़ी हो, चाहे फिर वो शेषनाग हो, चाहे फिर वो पंचतरणी हो और फिर अमरनाथ गुफा। दूसरा रास्ता बालटल का, जो ज़्यादा पुराना नहीं है लेकिन नज़दीक रास्ता है। बालटल रास्ते से जाने के लिए श्रद्धालुओं को सोनमर्ग पहुँचना पड़ता है, लेकिन अब एक नया रास्ता लद्दाख की तरफ से अमरनाथ गुफा की ओर चर्चा में है। ये रास्ता दरअसल करगिल हाईवे में गुमरी की जगह से मात्र 6 किलोमीटर तक लंबा है और अमरनाथ गुफा सीधे पहुंचता है। अब जबकि अमरनाथ यात्रा को लेकर लोगों की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ हर साल बढ़ती जा रही है, उस बीच अब इस रास्ते को खोलने के लिए, बनाने के लिए चर्चाएं शुरू हो गई है।
0: दावा ये किया जा रहा है कि इस मार्ग की भौगोलिक परिस्थितियाँ मौजूदा बालटाल और पहलगाम मार्ग की अपेक्षा ज्यादा अनुकूल हैं। इस क्षेत्र में घाटियाँ चौड़ी और अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं, जिससे श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं तैयार करने के लिए पर्याप्त और सुरक्षित स्थान उपलब्ध होगा। श्रीनगर लेह मार्ग पर बन रही जोजिला टनल का काम पूरा होने के बाद सरकार अमरनाथ यात्रा का ये 3रा मार्ग खोलने पर विचार कर रही है।
1: अगर ये रास्ता बनता है और फिर श्रद्धालुओं के लिए खुलता है तो अमरनाथ यात्रा श्रद्धालुओं के लिए और तीर्थयात्रियों के लिए करना और भी आसान होगा। गुड न्यूज टुडे के लिए तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर से।
2: मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सावलिया जी मंदिर के खजाने की गिनती ने सभी को चौंका दिया। जब मंदिर के मासिक भंडार की गिनती की गई तो पहले ही 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा मिला। हर बार की तरह इस बार भी चतुर्दशी पर दान पात्र खोले गए। मंदिर मंडल के कर्मचारियों ने बैंक कर्मियों की मौजूदगी में नकदी की गिनती की तो पहले ही चरण में 10,11,83,000 रुपए की गणना हुई।
3: देखिए, खास बात ये है कि ये जो राशि है सिर्फ दान पात्र से मिले नगद चढ़ावा का हिस्सा है। इस दान पात्र के अलावा मंदिर को मिलने वाले चेक, ऑनलाइन दान, सोने चांदी के आभूषण और अन्य चढ़ावे की गिनती अभी बाकी है। ऐसे में देखिए, उम्मीद ये जताई जा रही है कि अंतिम आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। आज अमावस्या होने की वजह से धार्मिक परंपरा के अनुसार खजाने की गिनती का काम स्थगित कर दिया गया है। कल से गिनती को एक बार फिर से दोबारा शुरू कर दिया जाएगा।
2: चलिए, इसी के साथ चाय पर चर्चा में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए कमाई में कौन सी फिल्म बनी हॉलीवुड की धुरंधर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
5: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की जोरदार तैयारी, यात्रा रूट पर ग्रैंड रिहर्सल, मंदिर में ध्वजारोहण के बाद महाआरती। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक 44 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए, बद्रीनाथ में 15 लाख श्रद्धालु। दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्सटाइल एक्सपो का शुभारंभ, 17 जुलाई तक चलेगा कार्यक्रम, देश विदेश से जुटेंगे उद्योगपति। सैलानियों के लिए सुरक्षा के लिए कुल्लू प्रशासन का फैसला, 15 जुलाई से 15 सितंबर तक ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग पर रोक, मॉनसून के चलते एहतियात। टिहरी पुलिस ने बनाई टीम गौरा, नारी सुरक्षा को लेकर प्रशासन की पहल, सेल्फ डिफेंस और साइबर अपराध से बचाने की दे रहे ट्रेनिंग।
4: चलिए अब बात एक और ऐसी फिल्म की जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। हॉलीवुड फिल्म माइकल ने कमाई का ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। 24 अप्रैल को यह फिल्म रिलीज हुई। माइकल ने पहले दिन से ही दर्शकों का दिल जीता, दमदार कहानी, शानदार एक्टिंग और बेहतरीन प्रस्तुति ने फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर लगातार मजबूत बढ़त भी दिलाई।
1: और अब इस फिल्म ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है, क्या वो उपलब्धि है आपको बताते हैं। देखिए, माइकल ने दुनिया भर में यानी वर्ल्ड वाइड $1 बिलियन की कमाई यानी कि 9,600 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है और इसी के साथ ये दुनिया की पहली बायोपिक फिल्म बन गई है जिसने ये ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है।
5: She's

0: माइकल जैक्सन, पॉप संगीत की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसके अनोखे डांस की कॉपी करने की कोशिश तो कई करते हैं लेकिन उसके करीब तक भी पहुंच नहीं पाते। दुनिया के सबसे बड़े उसी पॉप किंग की बायोपिक पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है। फिल्म का नाम तो आप जानते ही होंगे, माइकल। I'm just getting started. 24 अप्रैल को सिनेमा घरों में रिलीज हुई माइकल ने पहले दिन से ही दर्शकों का दिल जीतना शुरू कर दिया था। वर्ड ऑफ माउथ ने इसकी रफ्तार बनाए रखने में मदद की और हर गुजरते दिन के साथ माइकल कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती चली गई। माइकल जैक्सन के किरदार को उनके भतीजे जैफर जैक्सन ने बड़े पर्दे पर उतारा। जैफर ने अंदाज और आवाज से जैक्सन को जिस दमदार तरीके से जिया है उसकी चर्चा तो ट्रेलर रिलीज के साथ ही शुरू हो गई थी। दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस आंकड़े भी माइकल की दीवानगी की गवाही दे रहे हैं। माइकल ने विदेशों में 629.8 मिलियन डॉलर यानी करीब 5,996 करोड़ रुपए की कमाई की। अकेले यूएस में ही माइकल ने 371.8 मिलियन डॉलर यानी करीब 3,568 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इस तरह फिल्म ने कुल 1 बिलियन डॉलर यानी 9,616 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। कमाई के इस जादुई आंकड़े को पार करने वाली माइकल वर्ल्ड सिनेमा के इतिहास की पहली बायोपिक बन गई है। इससे पहले भी कुछ हॉलीवुड फिल्म्स ने कमाई का रिकॉर्ड बनाया है लेकिन अब तक के तमाम रिकॉर्ड को माइकल ने वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर धराशायी कर दिया है। सबसे पहले इसने बोहेमियन रैप्सोडी को पीछे छोड़ा जिसने तब दुनिया भर में 911 मिलियन डॉलर यानी तब करीब 7,835 करोड़ की कमाई की थी। इसके बाद इसने क्रिस्टोफर नोलन की ओपनहाइमर को पीछे छोड़ा जिसने दुनिया भर में 977 मिलियन डॉलर यानी तब करीब 8,402 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म में माइकल जैक्सन के शुरुआती दिनों से लेकर आखिर के दिनों को दर्शाया गया है। इसमें माइकल जैक्सन के संघर्ष, इसके बाद उनकी सफलता और स्टार बनने का सफर दिखाया गया है और अब माइकल जैक्सन की ये बायोपिक कमाई की इस कीर्तिमान के साथ वर्ल्ड सिनेमा में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: 26 जुलाई भारत के सैन्य इतिहास में दर्ज वो तारीख जब भारतीय सेना ने करगिल जंग में पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल की थी और करगिल की चोटियों पर शान से तिरंगा फहराया था। आज से करीब 27 साल पहले यानी 1999 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया था जिसे हम सब ने ऑपरेशन विजय के नाम से जाना। सिल्वर स्क्रीन पर LOC, करगिल, शेरशाह समेत ऑपरेशन विजय से प्रेरित कई फिल्में अब तक रिलीज हो चुकी हैं जिनमें हमने भारतीय सेना की शौर्य और जांबाजी को देखा भी है। लेकिन इसी करगिल जंग में भारतीय वायुसेना ने अपना सबसे खतरनाक हवाई मिशन शुरू किया था जिसे ऑपरेशन सफेद सागर के नाम से जाना जाता है। वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने इस जंग में पहली बार इजरायली लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया था और टाइगर हिल पर बने दुश्मन के बंकरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। भारतीय वायुसेना के इस शौर्य और पराक्रम की झलक 2020 में आई फिल्म गुंजन सक्सेना द करगिल गर्ल में नजर आई थी लेकिन अब नेटफ्लिक्स भारतीय वायुसेना की इस गौरव गाथा पर पहली बार एक सीरीज रिलीज करने जा रहा है, ऑपरेशन सफेद सागर, जिसमें वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की पूरी गाथा विस्तार से दिखाई जाएगी। जिमी शेरगिल, अभय वर्मा, सिद्धार्थ जैसे कलाकारों की ये सीरीज 7 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम।
2: हम उन पे आग बरसा सकते हैं।

0: वो तारीख जब भारतीय वायु सेना ने कारगिल की पहाड़ियों पर छिपे पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ अपने सबसे जाबाज और खतरनाक हवाई मिशन शुरू किया था, ऑपरेशन सफेद सागर। दुनिया के सबसे मुश्किल मिशनों में से एक, मुश्किल इसलिए कि दुनिया में किसी भी देश की वायु सेना ने इससे पहले इतनी ऊंचाई पर जंग नहीं लड़ी थी। अब तक भारतीय वायु सेना तोसा मैदान फायरिंग रेंज में 10,000 फीट की ऊंचाई पर अभ्यास करती थी, लेकिन कारगिल में दुश्मन 14,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर बैठा था। घुसपैठ का दायरा पश्चिम में दराज से लेकर पूर्व में बटाली तक फैला हुआ था। एयरफोर्स के पायलटों को 15,000 से 18,000 फीट की पहाड़ी की दुर्गम चोटियों पर बम बरसाने थे, ये काम आसान नहीं था। एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन में बड़ी मुश्किलें थी, लेकिन भारतीय सेना की मदद और पाकिस्तानी घुसपैठ को खदेड़ने के लिए भारतीय वायु सेना ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू कर दिया। 26 मई की सुबह MiG-21, MiG-23 और MiG-27 ने घुसपैठियों के शिविरों और उनके सामान और आपूर्ति मार्ग पर हमला किया। ये सभी इलाके दरास, कारगिल और बटालिक के आसपास के थे। ये पूरा हिमालयी क्षेत्र बर्फ से ढका होने की वजह से सफेद समुद्र जैसा नजर आता था, इसीलिए इसे ऑपरेशन सफेद सागर का कोड नेम दिया गया। इस ऑपरेशन के कामयाब होने के लिए हमलों का सटीक होना बेहद जरूरी था। पहाड़ों की बनावट ऐसी थी कि अगर कोई बम अपने निशाने से 50 मीटर भी चूक जाता तो 2 किलोमीटर दूर जाकर गिरता था। इतनी ऊंचाई पर हमलावर हेलीकॉप्टर सही से काम नहीं कर रहे थे। दुश्मन ऊंचाई पर था और इसीलिए एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइलों का निशाना बनने का भी खतरा था, लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद लड़ाकू विमानों ने पूरे सेक्टर में लगातार हमले जारी रखे। 16 जून 1999 को भारतीय वायु सेना ने मुंथो ढालों में पाकिस्तानी लॉजिस्टिक्स कैंप का पता लगाया। इसके बाद ऑपरेशन में एंट्री हुई वायु सेना के गेम चेंजर विमान मिराज 2000 की, जिसने जंग में पूरी कहानी बदल दी। वायु सेना के इंजीनियरों ने रातों रात विमान पर लेजर गाइडेड बमों को फिट किया। ये पहली बार था जब भारतीय लड़ाकू विमानों से इतनी ऊंचाई पर लेजर गाइडेड बमबारी करने वाला था। मिराज 2000 में 250 किलोग्राम के बमों से कारगिल की चोटी पर सुरक्षित बनाए गए पाकिस्तानी कैंप पर हमला किया और पाकिस्तानी कैंप को नष्ट कर दिया। मिराज के साथ साथ जगुआर लड़ाकू विमानों ने मुश्को घाटी में भी जमकर गाइडेड बम दागे। इन हमलों से बटालिक में पाकिस्तानी सेना की कमर टूट गई। मिराज 2000 विमानों ने सटीक हमलों से ऐसा कहर ढाया कि पाकिस्तानी फौज घुटने टेकने पर मजबूर हो गई और भारतीय वायु सेना की मदद से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए कारगिल की लड़ाई जीत ली।
1: लो फ्लाई करके फोटो
0: खींचना। भारतीय वायु सेना की यही गौरव गाथा अब नेटफ्लिक्स पर 7 अगस्त को ऑपरेशन सफेद सागर सीरीज में दिखाई जानी है। ऑपरेशन सफेद सागर के टीजर में वायु सेना की फैसले लेने की प्रक्रिया, पायलट की ट्रेनिंग और युद्ध के मैदान की असलियत दिखाई गई है।
2: कब एक फोटो देखी स्क्वाड ने बॉम्बिंग की?
3: बॉम्ब ऑफ टारगेट सर,
4: सर यू टोल्ड मी वंस, नो वंस एवर रेडी फॉर बॉम्ब।
0: इस शो की शूटिंग भारतीय वायु सेना के ऑपरेशनल बेस पर बड़े पैमाने पर की गई है और इसमें बिग एयरक्राफ्ट और वायु सेना के जवान शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: 90s वाले जो किड्स है ना, उनको चीची बड़े पसंद है ना। चीची बोले तो
6: गोविंदा का नाम लेते हैं ना, दिमाग में मेरे वही गाना आ जाता है, नीलम एंड गोविंदा वाला, वो बर्फ पे दोनों डांस कर रहे थे।
5: गोविंदा इनफैक्ट देखिए कॉमेडी के मामले में हर किसी के फेवरेट रहे हैं. उस जमाने में ये हर किसी के फेवरेट होते थे. कूली नंबर वन और कौन कौन सी मूवीज थी.
6: बहुत सारी फिल्में थी और अगर
3: से पार्टनर आखिरी रही है क्या उनकी. मुझे लगता है जो आखिरी कमर्शियल हिट रही है वो पार्टनर ही रही है सलमान खान के साथ.
5: जो हमने देखी नहीं वैसे.
3: पार्टनर नहीं देखी. पार्टनर तो बहुत हिट हुई. उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में भी की हैं
5: जो हमने नहीं देखी.
3: जानना जरूरी है नहीं बहुत ज्यादा. मुझे ऐसा लगता है कि गोविंदा के लिए बहुत जरूरी है कि ओटीटी जैसा कॉन्टेंट भी वो चूज करे क्योंकि लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं. जैसे आपने कहा ना उनके जो गाने हैं और उनकी रवीना टंडन के साथ केमिस्ट्री कितनी.
6: करिश्मा कपूर के साथ. नीलम के साथ बहुत इनिशियल डेज में.
3: हाँ नीलम के साथ भी बहुत अच्छी थी.
5: चलिए कहानी यही है कि लंबे अरसे के बाद गोविंदा इज फाइनली मेकिंग अ कमबैक. कमबैक के लिए कौन सी मूवी है वो आपको दिखा देते हैं. ये उनकी हीरोइन उनके साथ फ्रेम में है. फिल्म का नाम है रूपा जिसके जरिए वो करीब 7 साल के बाद बड़े पर्दे पर फाइनली इज मेकिंग अ कमबैक और इन्हें खुद ही प्रोड्यूस भी कर रहे हैं.
3: बिल्कुल. देखिए बात इस फिल्म की करें तो फिल्म में उनके ऑपोजिट डेब्यू कर रही है रानी स्वर्णकार. वो इस वीडियो में नजर भी आ रही है गोविंदा के साथ. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो दोनों साथ में स्पॉट हुए. गोविंदा आखिरी बार साल 2019 में फिल्म रंगीला राजा में नजर आए थे. इस फिल्म में वो डबल रोल में नजर आए थे. फिल्म चली नहीं थी. कमर्शियल सक्सेस नहीं हुई थी. हो सकता है इसका नाम आपने ना भी सुना हो. और अब 7 साल बाद रूपा फिल्म से वापसी कर रहे गोविंदा ने अपने कमबैक पर विस्तार से बात की.
7: शुरुआत करते हैं रूपा और दुनियादारी के साथ. तो आज रूपा की शुरुआत करते हैं हम. ये सस्पेंस ड्रामा है और क्योंकि साथ में मैं काम कर रहा हूं तो कॉमेडी तो है ही है. जो इससे पहले आप लोगों ने मेरी बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी हैं दूल्हे राजा जो थ्रू आउट एंटरटेनिंग रही हैं. इस रूपा फिल्म में भी एक ऐसा ही नजारा होगा जिसमें लोग हंसे मस्ती करें. मैंने इससे पहले फिल्म बनाई आ गया हीरो और वो उस हद में नहीं पहुंच पाई. उम्मीद करता हूं कि रूपा जो है ये इससे पहले मैं कभी हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म नहीं की या हीरोइन टाइटल पे फिल्म नहीं की. ये फर्स्ट टाइम है मेरे पूरे करियर में कि मैं 29-30 साल में ये फिल्म जो है ये रूपा के टाइटल पे है. मुझे लगता है कि जो रिक्वायर्ड चीजें थी डायलॉग स्क्रीन प्ले और जो रिक्वायर्ड चीजें थी फिल्म के पूरे गाने सब तैयार हैं. वी नीड अ पर्सन हु इज वेरी एजुकेटेड अबाउट ऑल दिस थिंग्स. एक टेक्निकल जो सूझबूझ रखा करते हैं ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना चाहूंगा तो वो है. बट लास्ट मोमेंट पे ही वो होगा. जैसे आगे फिल्म में आखिर तक डिक्लेयर नहीं हुआ था. हम लोगों की आदत है हम लोग आखिर तक डिक्लेयर नहीं करते. कई टाइम राइट ऑफ कर दिया गया मुझे कि अभी ये फिल्मों में नहीं आएगा. मैं पुनः शुरुआत करता हूँ और माई से प्रार्थना करता हूँ कि जो मैंने सोचा है और जो लोग सोच नहीं सकते किसी की भी सोच में नहीं आए ऐसा ये चित्रपट खास तौर पे यंगस्टर्स के लिए जिस वक्त वो ये देखेंगे थिएटर में एक ऐसा सपना साकार होता हुआ नजर आएगा और ऐसा लगेगा कि क्या ये संभव है. मैं इसमें किसी अध्यात्म का डिस्कस नहीं करूंगा. मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं.
6: ब्रेक के लिए रुकेंगे. ब्रेक के उस पार देखिए बारिश के सीजन में जेसीबी से रेस्क्यू ऑपरेशन.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. मोर
9: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: सुबह ऐसा मौसम हो रहा था कि बस बारिश अभी आई और अभी आई, किसी ने 4 बजे उठ के दर्शन कर लिए बारिश, है ना।
3: 4 बजे
5: मतलब बजे वो खिड़की पे छीटे थे तो मुझे लगा कि हल्की बूंदाबांदी हुई। वैसे एक्चुअली दिल्ली और बहुत सारे इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है, हमें नसीब नहीं हुई।
3: मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये भी एरिया वाइज है, एरिया वाइज है, ये ट्रेलर ही ट्रेलर चल रहा है, फिल्म तो आ नहीं रही है।
5: ये फिल्म देखो ना, दूसरे राज्यों में नजर आ रही, दिल्ली एनसीआर में भले ही नजर आए ना आए, दूसरे राज्यों में ये फिल्म नजर आ रही। गुवाहाटी की तस्वीरें आप देखिए, कितनी बारिश हुई, पानी वहां पर जमा हुआ। दिल्ली एनसीआर में कह रही थी ना सुबह से बहुत अच्छा सा बादलों का डेरा था, देखिए बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं। हालांकि आज मैं वही वेदर साइट पे चेक कर रही थी, हाल फिलहाल में तो फिलहाल कुछ नजर आ नहीं रहा कि बारिश आएगी। और एक और तस्वीर आपको हम उत्तरकाशी की भी दिखा रहे हैं, वहां पर देखिए कैसे जेसीबी से रेस्क्यू हो रहा है।
10: मतलब कहीं पर राहत है तो कहीं पर आफत की तस्वीर,
3: आफत की तस्वीर है। बारिश आती है तो अपने साथ परेशानी भी लेकर आती है, खैर दिल्ली वालों को तो बारिश का इंतजार जरूर है। देखिए उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश से कई जगह जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है, कई इलाकों में सड़कें क्षतिग्रस्त होने की वजह से मार्ग बाधित है। देखिए ग्रामीणों और पर्यटकों को उफनते नालों को पार करने के लिए जेसीबी मशीन के बकेट का सहारा लेना पड़ रहा है, इस तरीके की तस्वीरें भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। दरअसल उत्तरकाशी देश विदेश के ट्रैकर्स के बीच हर की दून, केदारकांठा सहित कई लोकप्रिय ट्रैकिंग रूटों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और यही वजह है कि काफी संख्या में यहाँ पर सैलानी आते हैं। लेकिन भारी बारिश के चलते सड़कें टूट जाने और आवाजाही ठप होने से स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी मुश्किलों का लगातार सामना कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ग्रामीण जेसीबी के बकेट में बैठकर नाला पार करते हुए नजर आ रहे हैं।
10: अब देखिए जगह जगह की तस्वीरें आपको दिखाई रहे हैं, तो विदेश लिए चलते हैं। चीन में भारी बारिश से बाढ़ आ गई है। चीन में हेबेई प्रांत के चेंगदे शहर में बाढ़ का पानी इतना तेज था कि सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां खिलौनों की तरह बह गई। लोगों ने अपने मोबाइल कैमरा से वीडियो बनाए हैं जो अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं।
3: बिल्कुल देखिए, रिकॉर्ड किए गए वीडियो में पानी की रफ्तार इतनी तेज नजर आ रही है जिसमें गाड़ियां देखते ही देखते बह गई हैं। ये बाढ़ इस साल चीन से टकराने वाले सबसे शक्तिशाली तूफान बावी के बाद आई है।
5: चलिए आपको गिर सोमनाथ लिए चलते हैं, और जब गिर सोमनाथ की बात होती है तो जाहिर सी बात है कि वहां के शेरों का जिक्र होता है, वही आपको दिखाने वाले हैं। यहां पर जालवाल तलाला रोड पर कल सुबह 11 शेरों वाला एक झुंड बीच सड़क पर चहलकदमी करता नजर आया। शेरों के पूरे कुनबे को सड़क के बीचों बीच बेखौफ अंदाज में घूमते हुए देखा जा रहा था। कुछ समय के लिए हालांकि यातायात भी थोड़ा सा थम गया, सड़क से गुजर रहे वाहन चालकों ने अपने वाहन रोक भी दिए और इस अनोखे नजारे को करीब से भी देखा। इस दौरान कार चालक ने पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो बनाया, अपने मोबाइल पर इसे रिकॉर्ड किया जो काफी वायरल है।
10: और देखिए वन विभाग ने वीडियो की पुष्टि करते हुए बताया है कि नजारा जामवाल तलाला रोड का ही है। गिर में शेरों की बढ़ती संख्या के कारण ऐसे दृश्य कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन एक साथ 11 शेरों का सड़क पर नजर आना बेहद दुर्लभ माना जाता है।
3: तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: Forty-nine, fifty.
12: What you doing?
11: Oh, hey, Watson. Just getting jacked up for the summer with my pull-up routine. Ooh.
12: No, Buzz. We get jacked up because electric rates often go up during the hot summer months.
11: More expensive? When we're needed most? Weird flex.
12: Good thing people can lock in an affordable electric plan with APG&E. Then it's the same predictable rate every month.
13: Learn more at APGE.com.
14: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Hey Buena.
15: La Que Buena.
14: ESPN Radio.
15: We know LeBron has to be the best player on the planet to
14: have. The Daily.
16: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
14: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: दुनिया के सबसे रोमांचक रेस में गिनी जाती है सैन फर्मिन फेस्टिवल की बुल रन, जहां परंपरा का मेल रोमांच से होता है।
10: बिल्कुल, स्पेन के पाम्पलोना शहर में बुल रन का ये सदियों पुराना रिवाज आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है।
17: स्पेन के पैम्पलोना शहर में मशहूर सैन फर्मिन फेस्टिवल का आखिरी बुल रन भी पूरे जोश और रोमांच के साथ पूरा हुआ। परंपरा, रफ्तार और हिम्मत का अनोखा संगम दिखाई दिया। सुबह सुबह पैम्पलोना की सड़कों पर उत्साह साफ नजर आता है। बुल रन शुरू होने से पहले प्रतिभागी सैन फर्मिन की प्रतिमा के सामने जुटते हैं, नारे लगाते हैं और सुरक्षित दौड़ की कामना करते हैं। फिर आती है वो घड़ी जो वहाँ मौजूद सभी लोगों की धड़कनें बढ़ा देती है। एक पटाखे की आवाज और गेट खुलते ही तेज रफ्तार से बुल बाहर निकलते हैं और उनके साथ शुरू होती है दुनिया की सबसे चर्चित और रोमांचक रेस। संकरी गलियों में बुल के आगे आगे दौड़ते प्रतिभागी, दोनों तरफ खड़े हजारों दर्शक और हर मोड़ पर रोमांच अपने चरम पर नजर आता है। इस दौरान कुछ लोग फिसलकर गिर भी जाते हैं, लेकिन दौड़ लगातार आगे बढ़ती रहती है। कुछ ही मिनटों में बुल शहर की गलियों से होते हुए बुल रिंग के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। प्रतिभागी भी उनके साथ एरीना में दाखिल होते हैं और इसी के साथ इस साल आखिरी बुल रन सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है। सैन फर्मिन फेस्टिवल सिर्फ एक दौड़ भर नहीं, बल्कि स्पेन की संस्कृति और परंपरा का बड़ा उत्सव है। हर साल दुनिया भर से हजारों लोग इस अनोखे आयोजन का हिस्सा बनने और इसे करीब से देखने पैम्पलोना पहुंचते हैं। यही वजह है कि बुल रन आज भी दुनिया के सबसे चर्चित पारंपरिक आयोजनों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: तो अभी के लिए बस इतना ही। चाय पर चर्चा में कल फिर शाम

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music, your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
2: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
3: पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, मंदिर के बाहर उमड़ा आस्था का मेला, भगवान दे रहे नव यौवन दर्शन। धूमधाम से जारी चार धाम की यात्रा, अब तक 44 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, बद्रीनाथ में करीब 15 लाख श्रद्धालु पहुंचे। दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्सटाइल एक्सपो का शुभारंभ, 17 जुलाई तक चलेगा कार्यक्रम, देश विदेश से जुटेंगे उद्योगपति। सैलानियों की सुरक्षा के लिए कुल्लू प्रशासन का फैसला, 15 जुलाई से 15 सितंबर तक ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग पर रोक, मॉनसून के चलते एहतियात। जयपुर बना दुनिया का 6वां सबसे खुशहाल शहर, टाइम आउट 2026 की टॉप 10 लिस्ट में शामिल, पिंक सिटी के बाद मिला एक और टाइटल।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की

0: तैयारियों की तमाम तस्वीरें जगन्नाथ मंदिर प्रांगण से लगातार आ रही हैं और हम आपको जीएनटी पर दिखा भी रहे हैं। आज श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ का नव यौवन श्रृंगार किया गया। 14 दिनों के बाद मंदिर के कपाट खुले और भगवान ने नव यौवन रूप में भक्तों को दर्शन भी दिए। परंपरा के अनुसार भगवान के स्वस्थ होने की सूचना देने मंदिर के सेवायत पुरी के राजा के पास पहुंचे, ये उसी की तस्वीरें हैं। हर साल रथ यात्रा से पहले जगन्नाथपुरी में ये परंपरा यूं ही निभाई जाती है। मंदिर के सेवायत राजा के पास संदेश लेकर जाते हैं कि भगवान अब स्वस्थ हो गए हैं, वो भक्तों को दर्शन दे सकते हैं। श्री मंदिर के कपाट खुल गए हैं और यात्रा की आज्ञा भगवान से ले ली गई है। दरअसल मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार आ जाता है और 15 दिन तक वो बीमार रहते हैं और इस दौरान किसी को दर्शन नहीं देते। इस दौरान श्री मंदिर में उनका विधिवत तरीके से उपचार चलता है। भगवान के उपचार की प्रक्रियाओं को अनुष्ठान भी कहते हैं। उपचार के बाद भगवान ठीक हो जाते हैं। 14 दिन के अनासर काल के बाद पहली बार भगवान स्वस्थ होकर श्रृंगार करते हैं। रथ यात्रा से एक दिन पहले होने वाले इस श्रृंगार को नव यौवन श्रृंगार कहते हैं। नव यौवन दर्शन को नेत्र उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इस खास रस्म के दौरान मंदिर के सेवक भगवान की आंखों में काजल लगाते हैं, चंदन सिंदूर का उनको तिलक करते हैं। नव यौवन श्रृंगार पूजा के साथ भगवान से रथ यात्रा के लिए आज्ञा ली जाती है। यही रस्म आज निभाई गई। इस पर सीधे जगन्नाथपुरी से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजय नाथ।
1: बस एक ही दिन की इंतजार है, भगवान जगन्नाथ यहां आएंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। जुलाई 16 तारीख को भव्य रथ यात्रा मनाया जाएगा, इसलिए पूरी में अब से भक्तों का भीड़ देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन आज ये नवजौवन दर्शन है और नेत्रोत्सव भी है। भगवान जो बुखार में थे, भगवान का तबियत ठीक नहीं था, अनासर में थे, भगवान का तबियत आज ठीक हो गया है। भगवान आज पहली बार आज भगवान आ रहे हैं और भगवान आज ठीक हो रहे हैं, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। आज भगवान कैसे भक्तों को कैसे पहली बार दर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, क्या नाम है आपका?
2: हमारा नाम छवि कोठारी है।
3: आज राजदरबार में क्यों गए थे? राजदरबार से भगवान का प्रसाद लेके गया था, इसको बोला महाराज आप प्रसाद लीजिए, हमारा दरवाजा आज खोलेगा।
1: क्यों?
3: क्या भगवान दवाई खा के अच्छा हो गया, इसलिए भगवान का अच्छा हो गया।
1: संदेश लेके गए,
3: एक संदेश लेके गया था, भगवान अच्छा हो गया, अब भगवान दरवाजा खोलेगा, पट खोलेगा। ठीक, कोई बात नहीं, पट खोल दियो।
1: मतलब भगवान आज से ही पूरा दर्शन देगा?
3: पूरा दर्शन, दो घंटा दर्शन देगा।
1: फिर आज कल का क्या है?
3: कल का भगवान तो रथ यात्रा करेगा, खिचड़ी खाएगा भगवान। कल जाएगा नहीं, परसों जाएगा। कल भगवान दिन भर भगवान भूख खाएगा, दिन भर भूख खाएगा।
1: तो भगवान बुखार में थे, भगवान का तबियत ठीक नहीं था, जो 15 दिन भगवान अनासर में थे, भगवान का तबियत अब ठीक हो गया है, ये संदेश लेके राजदरबार में पंडित लोग गए थे। राजदरबार में ये संदेश दिए कि भगवान का तबियत ठीक हो गया है और भगवान आज दो घंटे के लिए दर्शन को भगवान भक्तों को दर्शन देंगे। और ये नवजौवन और नेत्रोत्सव, ये दर्शन देखने के लिए भक्तों का भीड़ आप देख सकते हैं। मैं दिखाऊँगा आपको, ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये भगवान को देखने के लिए, भगवान का एक झलक पाने के लिए, जो भगवान 15 दिन अनासर में थे आज अपने रूप में आ रहे हैं। और यही नवजौवन का जो दर्शन, ये दर्शन को देखने के लिए भक्तों का ये भीड़ आप देख के आपको पता चल रहा होगा कि लोगों का मन में भगवान को देखने के लिए, पूरी में ये जो भीड़ देख के ही पता चल रहा है कि भगवान को देखने के लिए इनका मन में कितना भाव है, कितना प्रेम है, कितना श्रद्धा है।
0: और चलिए, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आज आपको बता दें, नवयौवन श्रृंगार की परंपरा यहाँ पर निभाई गई है। भगवान के दर्शन करने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ लगातार आ रहे हैं। ये उसी परंपरा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सेवायत के हाथ पे ये पूजा की थाली भी आप देख सकते हैं। 14 दिन के बाद, क्योंकि श्री मंदिर के कपाट खुले हैं और भगवान जगन्नाथ का आज नव यौवन श्रृंगार हुआ है। आपको बता दें, बीमार होने के बाद आज भगवान स्वस्थ हुए और अब भगवान तैयार हैं अपने दर्शन देने के लिए। और यही तस्वीरें लगातार आपको दिखाते भी रहेंगे। जगन्नाथपुरी की ये तस्वीरें हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा, जिसमें आस्था और उत्साह के उल्लास में ये पूरी नगरी डूबी हुई है। पुरी की सड़कों पर ऐसे ही श्रद्धा भाव की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। भगवान जगन्नाथ का ये पावन धाम अपने आप में काफी अनोखा है और श्री जगन्नाथ की मौजूदगी के चलते पुराणों में भी पुरी को धरती का वैकुंठ कहा गया है। और देखिए ऐसी ही अद्भुत तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे। भगवान जगन्नाथ का ये पावन धाम अपने आप में बहुत अनोखा है। श्री जगन्नाथ की मौजूदगी के चलते पुराणों में पुरी को धरती का वैकुंठ कहा गया है। ब्रह्म और स्कंद पुराण के मुताबिक यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के चलते यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। लेकिन फिर जगन्नाथ धाम की स्थापना कैसे हुई और पुरी में कैसे शुरू हुई रथ यात्रा की ये परंपरा, चलिए आज आपको सुनाते हैं वो कहानी जिसकी शुरुआत हुई थी सतयुग की एक रात में, जब उज्जैन के राजा इंद्रद्युम्न को एक सपना आया था।

आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात जगन्नाथपुरी की। भगवान जगन्नाथ की नगरी एक बार फिर से आस्था के उत्सव में मगन है। पुरी की सड़कों पर भगवान के आगमन का इंतजार हो रहा है। बस एक दिन का वक्त बचा है। 16 जुलाई गुरुवार से जगन्नाथ रथ यात्रा का श्री गणेश हो रहा है। इसी बीच उत्सव की

0: हे राजा इंद्रदेव, समुद्र के तट पर मेरी प्रतीक्षा करो। मैं दारु ब्रह्म के रूप में प्रकट होऊंगा। मैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन के रूप में प्रकट होऊंगा।
1: ये कहानी है उनकी जिन्हें सारा संसार जगत का पालनहार बुलाता है। कहानी उनकी जिनके होने से संसार का ये भाग धरती का वैकुंठ कहलाने लगा। कथा उनकी जो स्वयं मधुरे हैं, पर जगत की हर रीत उन्हीं से पूरी होती है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी। और यहीं विराजते हैं सारे जगत के नाथ, भगवान जगन्नाथ। ये बात है सतयुग की। उन दिनों आज के उज्जैन को अवंतिका या अवंती कहा जाता था। तब अवंती पर सूर्यवंश के राजा इंद्रद्युम्न का शासन था। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार एक संत ने राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु के एक बेहद दिव्य रूप नील माधव स्वरूप के बारे में बताया। बताया जाता है कि भगवान नील माधव के दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ माने जाते थे। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न भगवान नील माधव का मंदिर खोजने में जुट गए। देश के चारों कोनों में उन्होंने लोग भेजे, लेकिन उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। कहानी आगे बताती है कि वर्षों की प्रतीक्षा और आराधना के बाद आखिरकार एक रात राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनसे कहा कि वे सागर तट पर दारु ब्रह्म के रूप में प्रकट होंगे। एक रोज समुद्र की उफनती लहरों के साथ एक विशाल दिव्य लकड़ी का तना बहकर तट पर आ लगा। उस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के पवित्र चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। राजा समझ गए यही दारु ब्रह्म है। बड़े सम्मान के साथ उस दिव्य तने को महल में लाया गया। इसके बाद देव शिल्पी विश्वकर्मा एक बढ़ई के रूप में राजा के पास पहुंचे और राजा ने उन्हें लकड़ियों से भगवान की मूर्तियां बनाने का काम सौंप दिया। लेकिन काम शुरू करने से पहले बढ़ई बने विश्वकर्मा जी ने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि जब तक मूर्तियां पूरी नहीं बन जाती, तब तक कोई भी मेरे कमरे में नहीं आएगा। राजा ने उनकी बात मान ली और महल के एक कमरे में मूर्तियां बनाने का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन बढ़ई ने जब बहुत दिनों तक कमरे का दरवाजा नहीं खोला, तो एक दिन रानी गुंडीचा ने कौतूहलवश कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की। ऐसा होते ही बढ़ई ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और कहा कि आपने मेरी शर्त तोड़ दी है। मूर्तियां अब तक अधूरी हैं, लेकिन अब मैं ये काम पूरा नहीं कर सकता।
2: रानी ने परेशान होकर महाराज ने राजा जी को बोले कि हम दरवाजा खोल देंगे। तो इसी समय राजा जी ने बोले नहीं, वो कंडीशन किए हैं और हम क्यों खोलेंगे। तो रानी ने बोले देखिए, अगर वो गुजर जाएंगे कि कुछ हो जाएगा तो हमको पाप लगेगा, नरक का पाप लगेगा, तो हमको मन नहीं करे, हम खोल देंगे। जब दरवाजा खोल दिए तो देखिए, तो जो कारीगर जो थे महापुर को मूर्ति बनाने वाले, वो नहीं थे, लेकिन तीनों भगवान थे। तीनों भगवान ऐसे रूप पे थे आज जो रूप में आप देख रहे हैं। हाथ पांव सब था, लेकिन हाथ पांव नहीं था।
1: विचित्र दुविधा थी। राजा और रानी के सामने भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन के विग्रह मौजूद थे, लेकिन वे पूर्ण नहीं थे। हाथ अधूरे, पैर अधूरे, स्वरूप अधूरा। राजा इंद्रद्युम्न हताश हो गए। कहानी में आगे वर्णन मिलता है कि तभी आकाशवाणी हुई कि यही भगवान का इच्छित स्वरूप है और उन्हें इसी रूप में स्थापित कर दिया जाए।
2: तो राजा रानी ने चकित हो गए और महाप्रभु के पास में शरण में आ गए कि महाप्रभु कितना बड़ा भूल हमने कर दिया, दरवाजा खोल दिया, अब तो विघ्न रूप है, अभी तो पूजा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। तो इसी समय स्वप्नादेश हुआ महापुरुष जगन्नाथ जी की तरफ से कि नहीं नहीं हम कलयुग में इसी रूप में पूजा पाएंगे। तो इसके बाद में महापुरुष जगन्नाथ वो इसी रूप में पूजा पा रहे हैं, हाथ पांव नहीं है, आँख के पलक नहीं है, लेकिन वो सबको काम कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं, सबका हाथ तो हला के सबका जो दुख है उसको ले रहे हैं, हरण कर रहे हैं, और कान नहीं है लेकिन सबका बात सुन के उनका भी सब कार्य सिद्ध कर रहे हैं।
1: फिर क्या था, भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा जी की अधूरी मूर्तियों की ही प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई और पूरे विधि विधान के साथ उन्हें श्री मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया। तभी से भगवान की ऐसी ही मूर्तियों की पूजा की जा रही है, लेकिन भगवान की इन मूर्तियों को 15 साल में एक बार बदलने की परंपरा भी है। लेकिन भगवान की मूर्ति बदलने की ये प्रक्रिया बेहद रहस्यात्मक ढंग से निभाई जाती है। बताया जाता है कि जब मंदिर में मूर्तियां बदली जाती हैं, शहर की बिजली काट दी जाती है। जिस पुजारी को मूर्तियां बदलने की जिम्मेदारी मिलती है उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्यों में सबसे बड़ा आश्चर्य वो ब्रह्म पदार्थ है जिसे पुरानी मूर्तियों में से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। मान्यता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को आज तक किसी ने नहीं देखा है। माना जाता है कि ये भगवान का हृदय है जो द्वापर युग से आज तक धड़क रहा है। मूर्ति बदलने वाले आज भी भगवान की धड़कनों को महसूस करते हैं। अनोखे हैं भगवान जगन्नाथ और उतनी ही अनूठी है उनके प्राकट्य की कहानी। भगवान जगन्नाथ की महिमा और उनके प्राकट्य का सबसे विस्तृत वर्णन स्कंद पुराण के उत्कल खंड में मिलता है। भगवान जगन्नाथ की यही कहानी आगे चलकर रथ यात्रा से भी जुड़ती है। कहानी आगे बताती है कि जब से रानी गुंडीचा ने भगवान की अधूरी मूर्तियों को देखा था, वे उनसे संतान की तरह स्नेह करने लगी थी। अब जब भगवान उनके महल को छोड़ श्री मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो रहे थे, उन्हें लग रहा था मानो उनका पुत्र ही उनसे दूर जा रहा हो। कहते हैं रानी गुंडीचा के इस वात्सल्य भाव और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि वे हर वर्ष आषाढ़ माह में अपने भाई और बहन के साथ उनसे मिलने जरूर आएंगे और 7 दिनों के लिए पुत्र की तरह उनके साथ रहेंगे। भगवान के इसी वचन को निभाने के लिए रथ यात्रा का संकल्प लिया गया।

0: पुरी में शुरुआत हुई उस परंपरा की, जिसे आज भी बेहद श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाया जाता है।
1: ये रथ यात्रा बहुत सालों से चल रहा है। ये स्वयं जगन्नाथ जी ने उनका निश्रुत जो वाणी होता है वो गुंडीचा रानी को सत किए थे कि मैं 9 दिन ये यात्रा करूँगा। तो ये कीर्ति को रक्षा करने के लिए ये यात्रा हो रहा है 9 दिन का।
0: मान्यता है कि तभी से हर वर्ष भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ रथ पर सवार होकर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं और 7 दिनों तक वहीं विराजमान रहते हैं। चूंकि जगन्नाथ प्रभु की प्रतिमा का निर्माण गुंडीचा मंदिर में ही हुआ था, इसलिए इसे भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर और उनका प्राकट्य स्थल माना जाता है। पुरी के मुख्य समारोह मार्ग बड़ा डंडा के एक छोर पर श्री जगन्नाथ मंदिर है, तो उसी सड़क के दूसरे छोर पर लगभग 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर मौजूद है। ये मंदिर प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ पहुंचकर भगवान अपने भाई बहन के साथ विश्राम करते हैं और विशेष व्यंजनों का भोग लगाते हैं। इस दौरान भगवान मुख्य मंदिर के गर्भगृह से बाहर आकर बहुत करीब से सभी आम और खास भक्तों को दर्शन देते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर में भगवान को जो भी भोग लगाया जाता है उसे आड़प महाप्रसाद कहते हैं।
2: ये कलयुग का एक ही मात्र भगवान जगन्नाथ जी हैं जो रथ में एक बार साल में एक बार बाहर आते हैं और भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ के ऊपर में वो बाहर आते हैं। तीनों रथ में जगन्नाथ जी आते हैं, बलदाव जी और माता सुभद्रा देवी रथ पे आते हैं। तो जाते हैं गुंडीचा बाड़ी जनकपुरी करके, जहाँ पर महापुरुष 9 दिन तक वहाँ उनका विशेष नीतिकांत है, वहाँ भी जैसा है, वहाँ भी एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर सब व्यवस्था वहीं पर होता है।
0: ऐसी मान्यता है कि गुंडीचा मंदिर में भगवान के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। रानी गुंडीचा और भगवान जगन्नाथ के बीच वात्सल्य और प्रेम के इसी भाव के चलते गुंडीचा मंदिर को मासी माँ का मंदिर भी कहा जाता है। कहते हैं भगवान को मासी माँ के मंदिर तक ले जाने वाली इस भव्य रथ यात्रा में शामिल होना बड़े सौभाग्य की बात है। तभी तो हर साल भक्ति की इसी डोर से बंधे भक्त जगन्नाथपुरी की सड़कों पर भगवान के रथ के चारों ओर आस्था का उत्सव मनाते हैं। भक्ति का भाव और भक्तों का उल्लास पुरी रथ यात्रा की आत्मा है। पुराणों में रथ यात्रा के फल को 100 यज्ञों के बराबर बताया गया है। पुरी की पवित्र भूमि पर जब ये रथ यात्रा निकलती है तो भक्त और भगवान एकाकार नजर आते हैं। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अब देखिए, रथ यात्रा में सिर्फ एक दिन बचा है और इस यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण भगवान उनके भाई बहनों के साथ बनकर तैयार हैं रथ। चलिए आपको दिखाते हैं इस बार कैसे सजे हैं भगवान के ये रथ।
4: इस बार 2026 जुलाई 16 तारीख को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मनाया जाएगा और ये रथ यात्रा को भव्य और सुंदर करने के लिए पूरी प्रशासन और ये उड़ीसा सरकार के तरफ से हर तरह की व्यवस्था किया गया, हर तरह की बंदोबस्त किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो रथ है ये नंदीघोष रथ है और ये नंदीघोष रथ का जो आपको ये जो दिखा रहा हूँ ये जो कलर है रेड और येलो, ये कलर भगवान को बहुत पसंद है और इसलिए भगवान को ये कपड़ा वाला रथ में लिया जाता है। नंदीघोष रथ में आप अगर देखेंगे तो 16 चक्का और 4 घोड़े रहते हैं और आप देख सकते हैं नंदीघोष के साथ बलभद्र और देवी सुभद्रा के भी अलग अलग रथ रहता है और अलग अलग रथ में अलग अलग पहिया, अलग अलग चक्का और इसके साथ अलग अलग की घोड़े भी रहते हैं। अगर हम ये बात करेंगे तालध्वज रथ का बात करेंगे तो तालध्वज रथ में 14 चक्का और 4 घोड़े। दर्प दलन रथ का अगर बात करेंगे तो दर्प दलन रथ में इस हिसाब से 12 चक्का 4 घोड़े और नंदीघोष रथ में 16 चक्का 4 घोड़े रहते हैं।
3: और चलिए, तैयारियां कैसी हैं, तस्वीरें कैसी हैं, सीधा बताने के लिए हमारे सहयोगी अजय नाथपुरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जो तस्वीरें 5 बजे के आसपास आप दिखा रहे थे ना कि उत्साह उत्सव लगातार जारी है, तस्वीरें एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखाइए कि किस तरह से और कहां पर तैयारियां पहुंची हैं।
5: मैं आपको ये पूरा तस्वीर पूरी से दिखा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं ये भगवान जगन्नाथ को देखने के लिए भक्तों का ये भाव, ये भीड़ आप देख सकते हैं। मैं आपको ये भीड़ दिखाना चाहता हूँ, ये भीड़ आप देख सकते हैं। और भगवान का मिलन आज हो रहा है, जो मिलन कुछ ही दिन से बंद था। भगवान का तबियत खराब था, भगवान भक्तों से मिल नहीं पा रहे थे, और भक्त भगवान का आज मिलन हो रहा है। आज 9 बजे वेश में भगवान भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और ये भक्त केवल उड़ीसा नहीं, केवल देश नहीं, विदेश से भी ये भक्त यहाँ जुड़ रहे हैं भगवान को देखने के लिए, भगवान का झलक पाने के लिए। ये लाखों भक्तों का भीड़ में इकट्ठे हुए हैं, और भक्तों का ये भीड़ देख के आपको पता चल रहा होगा कि भक्तों का मन में जो इंतजार था भगवान को देखने के लिए, भगवान का उस रूप को देखने के लिए, उस जगन्नाथ रूप को देखने के लिए, आपको ये भी मैं स्क्रीन पर जो दिखा रहा हूँ, भगवान का ये रूप आप देख सकते हैं, इसको नवजौवन रूप बोला जाता है। इस रूप को दूर से आप देख रहे हैं, जो मंदिर के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, जो नियम के मुताबिक 1 घंटे के लिए जो टिकट के हैं उन लोगों को अंदर छोड़ा जाता है, लेकिन जो लोग टिकट नहीं किए हैं, जो लोग भीड़ के बाहर हैं, वो गेट के बाहर भगवान का ये मूर्ति को देख रहे हैं, भगवान को बाहर से दर्शन कर रहे हैं। ये भी भगवान का वही नवजौवन रूप है, जिस रूप को भक्त अंदर भी जाके देख रहे हैं, और इस भव्य रूप को देखने के लिए, इस भव्य रूप का एक झलक पाने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ जुड़ रहे हैं। दूर दूर से, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, सब आज भगवान के पास आ रहे हैं, भगवान से मिल रहे हैं, भगवान को अपना मन में जो मांग है वो मांग आज मांग रहे हैं। क्योंकि भगवान बुखार हुआ था, भगवान को बुखार हुआ था, भगवान का तबियत ठीक नहीं था। दसवें के दिन भगवान को मोदक लगी हुआ था, और मोदक भोग होने के बाद एकादशी के दिन भगवान का कड़ी लगी हुआ था, और इसके बाद भगवान का तबियत ठीक हुआ है। और ये तबियत ठीक होने के बाद आज राज प्रसाद को पंडित लोग ये संदेश लेके गए थे कि भगवान का तबियत ठीक हो गया है, भगवान आज 9 बजे देश में आज दर्शन देंगे।
3: तस्वीरें तो आप लगातार दिखा रहे हैं, और ये भी बताइए साथ ही साथ कि श्रद्धालु जो हैं, देखिए देश से तो आ ही रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि विदेशों से भी दर्शन करने के लिए, भगवान को स्पर्श करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। मौसम एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, साथ ही साथ उसके बारे में भी जानकारी दीजिए जरा।
5: देखिए आज सुबह से यहाँ मौसम पूरा बिगड़ गया है, सुबह से बारिश, पूरा एकदम सुबह से बारिश हो रहा है। अब तक मैं अब जहाँ पे खड़ा हूँ, ये मंदिर के सामने खड़ा हूँ, और बारिश अभी भी हो रहा है, लेकिन भक्तों का भीड़ कम नहीं हो रहा है। भक्तों का भीड़, भक्तों के मन में भगवान को देखने के लिए वो इच्छा कहीं 1% कम नहीं हुआ है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं, ये बड़दंड यानी सिंह द्वार के एकदम सामने का नजदीक ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा देख रहे हैं भक्तों का भीड़। रथ यात्रा 1 दिन बाकी है, लेकिन भगवान का नवजौवन ये देश देखने के लिए, बस 1 घंटे का यही देश को देखने के लिए, रूप को देखने के लिए आप देख रहे हैं। पूरा यहाँ से लेकर के पूरा 500-700 मीटर तक जहां से आपको दिख रहा है वहां तक ये भीड़ है, और हजार तादाद में यहाँ भक्त जुड़ रहे हैं, भगवान को देखेंगे, भगवान से मिलेंगे।
3: बिल्कुल,
5: जिस दिन का इंतजार था आज उस दिन, आज वो दिन आ गया है। और भगवान कल एक दिन बंद रहेगा दर्शन, रथ यात्रा के लिए कल भी एक दिन दर्शन बंद रहेगा, इसलिए आज
3: सुरक्षा व्यवस्था कैसी है अजय, वो भी जरा बता दीजिए तस्वीरों में। हालांकि जहां भी नजर मेरी जहां तक जा रही है, मुझे पुलिस का पहरा तो नजर आ रहा है, कैसा है पुलिस का पहरा और कितनी बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस बल की तैनाती है, वो भी बताइए जरा।
5: शहर में गली में चप्पे चप्पे में पुलिस बल की तैनात किया गया है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में चूक ना हो, इसलिए हर तरह की व्यवस्था किया गया है। 13,000 आसपास अगर हम बोलेंगे तो 13,000 पुलिस फोर्स मुतयन होंगे, आर्म फोर्स जो है वो मुतयन होंगे, और इसके साथ 476 से ज्यादा जो सीसीटीवी AI कैमरा है वो भी इंस्टॉल हुआ है, ताकि हर तरह की चीजें, हर तरह की जो चीजें हो रही है यहाँ, इसके ऊपर निगरानी रखा जाएगा, इसलिए पूरी व्यवस्था हुआ है। और इसके साथ 19 IPS ऑफिसर जो है उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, वो भी इस चीजों को मॉनिटर करेंगे। और इसके साथ 15 PFDF का जो कंपनियां हैं उनका भी ऑफिसर्स यहाँ जुड़ रहे हैं, और इसके साथ 30 से ज्यादा जो रूट है इमरजेंसी रूट इवैक्यूएशन रूट जो होता है 30 से ज्यादा किया गया है ताकि कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो, ऐसे कुछ भीड़ बढ़ जाए तो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए इवैक्यूएट करने के लिए इवैक्यूएशन रूट भी बनाया गया है। और इस हिसाब से और भी एम्बुलेंस बहुत सारे एम्बुलेंस और मेडिकल टीम को भी
3: इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे तो उनको नियंत्रण में करने के लिए जाहिर सी बात है कि पुलिस बल की तैनाती बड़ी संख्या में यहां पर की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए अजय आपका। और चलिए इसी से जुड़ी हुई दिव्य और भव्य रथ यात्रा की तस्वीरें जीएनटी पर लगातार आपको दिखाते रहेंगे। आज की पेशकश में फिलहाल लेता ही अच्छी खबरें जारी है, देखते रहिए जीएनटी।

0: कांग्रेस नेता ने राम मंदिर में दिए दान वापस मांगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के विवाद बोल का सच क्या? जहां दफनाए गए खामनेई, वहीं अमेरिका ने बरसाए बम। बंदर छीन नहीं पाया बोतल। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए वैभव शुक्ला के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
1: Hey, it's Harry Douglas for Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
2: Third period comes to an end, game two, headed to overtime.
1: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
2: They score!
1: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: क्या आप छोटी छोटी बात पर घबरा जाते हैं? क्या आत्मविश्वास के साथ समस्याओं का सामना नहीं कर पाते? क्या बार बार मुकदमेबाजी और सर्जरी के योग बन जाते हैं? कहीं आपका मंगल अशुभ तो नहीं? क्या है मंगल की शुभता अशुभता के लक्षण और क्या हैं इसके उपाय? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
12: पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, मंदिर के बाहर उमड़ा आस्था का मेला, भगवान दे रहे नव यौवन दर्शन। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक 44 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, बद्रीनाथ में करीब 15 लाख श्रद्धालु पहुंचे। दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्सटाइल एक्सपो का शुभारंभ, 17 जुलाई तक चलेगा कार्यक्रम, देश विदेश से जुटेंगे उद्योगपति। सैलानियों के लिए सुरक्षा के लिए कुल्लू प्रशासन का फैसला, 15 जुलाई से 15 सितंबर तक ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग पर रोक, मानसून के चलते एहतियात। जयपुर बना दुनिया का छठा सबसे खुशहाल शहर, टाइम आउट 2026 की टॉप 10 लिस्ट में शामिल, पिंक सिटी के बाद मिला एक और टाइटल।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
12: देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम की यात्रा, केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 14 लाख पार, महज 2.5 महीने में पहली बार 14 लाख श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ धाम, अभी 3 महीने की यात्रा बाकी, प्रतिदिन 2000 भक्त कर रहे दर्शन। केदारनाथ धाम में खराब मौसम पर भारी दिखी आस्था, श्रद्धालुओं में दर्शन पूजन का जोरदार उत्साह। केदारनाथ में बारिश के बीच में अलर्ट पर प्रशासन, प्रशासन ने संवेदनशील स्थानों पर बढ़ाई जवानों की तैनाती। केदारनाथ में इस बार नया रिकॉर्ड बनने की उम्मीद, यात्रियों के लिए डेंजर जोन पर जवानों की तैनाती। बद्रीनाथ में खराब मौसम पर भारी दिखी आस्था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे दर्शन। बद्रीनाथ धाम में अब तक कुल 14,82,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। पिछले दो दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही बरसात। बद्रीनाथ धाम में बारिश के बीच में उफान पर अलकनंदा नदी, मॉनसून के चलते अद्भुत नजर आ रही यात्रा मार्ग की प्राकृतिक सुंदरता। बारिश के बीच में धुंध की मोटी चादर में लिपटी नजर आई ऊंची ऊंची पहाड़ियां, बादलों से घिरे तीर्थ की बढ़ी सुंदरता। हेमकुंड साहिब में उमड़ा आस्था का मेला, अब तक 1,92,000 से ज्यादा भक्तों ने टेका मत्था। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं भव्य रथ यात्रा से पहले एक ग्रैंड रिहर्सल, 30,000 से ज्यादा पुलिस समेत सुरक्षा बलों की तैनाती। रिहर्सल से पहले जगन्नाथ मंदिर में हुई मंदिर में ध्वजारोहण और महाआरती के बाद परंपरागत नृत्योत्सव विधि, राज्य के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी रहे मौजूद। अहमदाबाद में सुरक्षित रथ यात्रा के लिए गुजरात पुलिस की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था, 100 से ज्यादा ड्रोन से होगा यात्रा मार्ग का सर्वेलांस। देवघर में बालानंद ब्रह्मचारी आश्रम में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज, 2005 से निकल रही रथ यात्रा। फूलों से सजाया जाता है विशाल रथ, पुरी से लाई गई नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं भगवान की प्रतिमाएं। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले मॉकड्रिल हुई, कई एजेंसियों ने हिस्सा लिया। जवानों ने इमरजेंसी और आपदा से निपटने के लिए की मॉकड्रिल, सुरक्षा को भी परखा। इमरजेंसी के दौरान लोगों ने सड़कों को किया खाली, मॉकड्रिल में एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। पूरी रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए 12,000 पुलिसकर्मी ड्रोन और एंटी ड्रोन उपकरणों की तैनाती।

0: भुवनेश्वर पहुंचे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती रथ यात्रा में होंगे शामिल। इम्फाल के श्री श्री गोविंदा जी मंदिर में कांग चिगंबा उत्सव की तैयारियां तेज, रथ को बनाने में जुटे कारीगर। भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के लिए भव्य रथों का हो रहा निर्माण, 10 दिनों तक चलेगा उत्सव। कांग चिगंबा उत्सव को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम, कई जगहों पर जवानों की तैनाती। पूरी आस्था भक्तिभाव के साथ जारी है अमरनाथ यात्रा, अब तक करीब 3 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। श्रीनगर में बाबा बर्फानी का दिखा अनोखा भक्त, दिल्ली से कश्मीर तक साइकिल चलाकर पहुंचा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ के भंडारे से निकले 10 करोड़ 12 लाख रुपए, पहले चरण की गिनती पूरी। आषाढ़ अमावस्या के दिन नहीं होगी भंडारे की गिनती, 15 जुलाई यानी कल होगी चेक, ऑनलाइन मिले दान और सोने चांदी के चढ़ावे की गिनती। आषाढ़ अमावस्या पर सांवलिया सेठ के दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की कतारें, भक्तों ने लगाए सांवलिया सेठ के जयकारे। प्रयागराज में आषाढ़ अमावस्या पर उमड़ा आस्था और जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने आषाढ़ अमावस्या पर मां गंगा की आरती की, विधि विधान से पूजा की। सैलानियों से गुलजार हुई चमोली की फूलों वाली घाटी, अब तक 11,000 पर्यटकों ने दीदार किया। रंग बिरंगे दुर्लभ हिमालय फूलों का मनमोहक नजारा दिखा, जुलाई अगस्त के मुख्य सीजन में घाटी पर दिखता है ये नजारा। इस साल 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दी गई थी फूलों की घाटी, 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में अपने चरम पर होती है वैली की सुंदरता। हरिद्वार में जोरों पर कांवड़ यात्रा की तैयारी, कांवड़ियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रबंध। प्रशासन ने 25 जुलाई तक सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए, एसएसपी के साथ डीएम ने भी समीक्षा की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2028-29 के अस्थायी सदस्य पद के लिए अपना अभियान शुरू किया, बोले हमारा शांति विजन ही दुनिया को संकट से बचाएगा। कैंपेन की शुरुआत करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट संदेश दिया कि भारत दुनिया को अधिक सुरक्षित शांतिपूर्ण बनाएगा। 2028-29 कार्यकाल के लिए यूएनएससी के चुनाव जून 2027 में होंगे। एशिया प्रशांत समूह की एकमात्र सीट के लिए भारत तजाकिस्तान के बीच मुकाबला। फीफा वर्ल्ड कप के रंग में रंगा पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर, डार्क चॉकलेट और फूड कलर से बनाई लियोनेल मेसी की प्रतिमा। इस प्रतिमा में बेहद बारीकी से उकेरे गए मेसी के चेहरे के इमोशंस, दाढ़ी, बाल, जर्सी के रंग। यूपी रेरा यानी उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर, तय जीएसटी दर से ज्यादा पैसे नहीं दे ले सकते बिल्डर। दिल्ली में आयोजित भारत टैक्स 2026 में बिहार पवेलियन का उद्घाटन केंद्र कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह हुए शामिल। डेरे में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए शानदार पहल, पुलिस ने किया टीम गौरा का गठन। सेल्फ डिफेंस और साइबर अपराध से बचाने की दे रहे ट्रेनिंग, महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा जागरूकता त्वरित सहायता करेगी सुनिश्चित। स्कूल कॉलेजों और संवेदनशील स्थानों पर नियमित गश्त करेगी टीम, स्कूलों कॉलेजों अन्य संवेदनशील स्थानों पर छात्राओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना मकसद। सीबीएसई ने R3 भाषा असेसमेंट फ्रेमवर्क किया जारी, 10वीं में तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं। कर्नाटक में बनेगी देश की पहली सरकारी AI यूनिवर्सिटी, CMDK शिवकुमार ने की घोषणा। 6 दशक के बाद गिर के जंगलों में फिर से गूंज रही इंडियन ग्रे हॉर्नबिल पक्षियों की चहचहाहट, राज्य सरकार के री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट को मिली सफलता। गिर सोमनाथ में एक साथ सड़कों पर दिखे 11 शेर का झुंड, लोगों ने कैमरा में कैद की इनकी तस्वीरें। IIT ISM धनबाद में न्यूक्लियर साइंस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, ऊर्जा सुरक्षा में खनन न्यूक्लियर साइंस की बढ़ती भूमिका पर जोर। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का उद्घाटन किया, लोगों को किया सम्मानित। उदयपुर में आपदा और इमरजेंसी से निपटने के लिए नीमच माता रोपवे पर मॉक ड्रिल, NDRF SDRF समेत कई टीमों ने हिस्सा लिया। जवानों ने रोपवे पर फंसे यात्रा का रस्सी और चेयर के जरिए सुरक्षित उतारा, एम्बुलेंस के जरिए पहुंचाया अस्पताल। जवानों ने आपदा से निपटने की तैयारियों को परखा, रोपवे में फंसने की स्थिति में रेस्क्यू प्रक्रिया का सफल प्रदर्शन। शिलांग में नेक्स्ट जेन एडमिनिस्ट्रेटिव और ई गवर्नेंस रिफॉर्म्स पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री पहुंचे। मानसून के दिनों में जम्मू कश्मीर की कैरन घाटी में बढ़ रही सैलानियों की भीड़, वादी की खूबसूरती को निहारने दूर दूर से आते हैं सैलानी। चेन्नई में सीएम विजय ने बांटे नियुक्ति पत्र, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन। हुगली में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने रथ यात्राओं का उद्घाटन किया, डीएम और पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक। नर्मदा नदी में डूब रही युवती के लिए देवदूत बनी पुलिस, नदी में कूदकर युवती को निकाला। पुलिस जवान ने मौके पर सीपीआर देकर बचाई युवती की जान, युवती का अस्पताल में चल रहा इलाज। नेपाल में भारी बारिश से बागमती नदी उफान पर है, मुजफ्फरपुर में कई इलाके पानी में डूबे। मुजफ्फरपुर मुख्यालय को जोड़ने वाला पीपा पुल में पानी में डूब गया है, यह शहर जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे लोग। नेपाल में भारी बारिश का असर, बगहा के वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़ा गया 1.70 लाख क्यूसेक पानी। बैराज से पानी छोड़े जाने से गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर, नदी किनारे वाले लोगों को सतर्क किया गया। वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में भर गया पानी, कई गांवों को अलर्ट किया गया। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज जाएंगे अंतरिक्ष स्टेशन। कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्ट्रोड्रोम से 2 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जाएंगे आईएसएस। अंतरिक्ष यान सोयूज MS-29 से भारतीय समय के मुताबिक 8:17 पर बैकोनूर स्पेस पोर्ट से भरेंगे उड़ान। बुधवार देर रात करीब 1:30 अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करेंगे 3 अंतरिक्ष यात्री, आईएसएस के 75वें अभियान का हिस्सा होंगे। यूक्रेनी और भारतीय मूल के माता पिता के घर पैदा हुए अनन मेनन अमेरिकी स्पेस फोर्स में कर्नल और इमरजेंसी मेडिसिन में फिजिशियन हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के दौरान माइक्रोग्रेविटी, सेमीकंडक्टर समेत कई प्रयोग करेंगे अनिल मेनन। आज रात खेला जाएगा फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल, फ्रांस और स्पेन के बीच में होगी भिड़ंत। लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह पक्की करने की कोशिश में फ्रांस, वहीं 2010 के बाद एक बार फिर से फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगा स्पेन। 20 साल के बाद फीफा वर्ल्ड कप में आमने सामने होंगे फ्रांस और स्पेन। वर्ल्ड कप में इससे पहले दोनों की आखिरी भिड़ंत 2006 में हुई थी। इस मुकाबले में किलियन एम्बापे और लामिन यमाल जैसे सुपरस्टार होंगे आमने सामने। मौजूदा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 8 गोल कर गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे एम्बापे। ओवरऑल दोनों टीमों के बीच में अब तक हुए हैं 38 मुकाबले, जिसमें स्पेन ने 18 और फ्रांस ने 13 मैच जीते हैं। धुरंधर के बाद बॉक्स ऑफिस पर आएगी रणबीर कपूर की प्रलय। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले महीने शुरू हो जाएगी इस मूवी की शूटिंग। तुम्बाड 2 में नजर आएंगी आलिया भट्ट, 3 दिसंबर 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पैनोरमा स्टूडियोज ने पंजाबी सिनेमा में मजबूत की अपनी पकड़, 3 पंजाबी फिल्में अर्जेंटीना, थापी और रांझिया के वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल राइट्स हासिल किए। धमाल 4 का बॉक्स ऑफिस पर कमाल जारी, 85 करोड़ के पार रहा अब तक का ग्रॉस इंडिया कलेक्शन। हॉलीवुड फिल्म इविल डेड बर्न के लिए भारत नंबर 1 मार्केट, वीकेंड पर भारत में फिल्म का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 12 करोड़। 7 साल बाद फिर से बड़े पर्दे पर गोविंदा की एंट्री, फिल्म रूपा और दुनियादारी में आएंगे साथ में नजर। ऑपरेशन सफेद सागर का टीजर रिलीज हो गया है, कारगिल युद्ध के दौरान इंडियन एयरफोर्स के मुश्किल ऑपरेशन को दिखाएगी सीरीज। वेब सीरीज आदर्श बाल विद्यालय का ट्रेलर रिलीज, अभिमन्यु सिंह, अर्चना पूरन सिंह और नवीन नजर आएंगे। इम्तियाज अली की बेटी ईदा ने बॉयफ्रेंड के साथ की सगाई, ईदा ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की। परिवार के साथ लंदन वेकेशन पर दिखी प्रियंका चोपड़ा, बेटी मालती ने निकाले मां के बालों के क्लिप्स। एफिल टावर पर रोशनी का शानदार नजारा, बेस्टिल डे पर एफिल टावर के ऊपर आतिशबाजी और ड्रोन शो किया गया। ड्रोन शो बना आकर्षण का केंद्र, सैकड़ों ड्रोन ने आसमान में कई शानदार आकृतियां बनाई। फ्रांस से पूरे देश में राष्ट्रीय पर्व बेस्टिल डे धूमधाम से मनाया, इस भव्य जश्न को देखने हजारों लोग पहुंचे। 14 जुलाई को मनाया जाने वाला बेस्टिल डे 1789 में बेस्टिल जेल पर कब्जे और फ्रांसीसी क्रांति की याद दिलाता है। रंग बिरंगी आतिशबाजी, ड्रोन लाइट शो ने एफिल टावर के आसपास का आसमान रोशन कर दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक साथ खिले 2 कॉप फ्लावर बोटैनिकल गार्डन में सुलभ नजारे को देखने के लिए आए लोग। कॉप्स फ्लावर की सबसे बड़ी पहचान इसकी बदबू, फूल के खिलते ही से आती है सड़े मांस जैसी गंध। सिर्फ 24 से 48 घंटे तक रहता है यह अनोखा नजारा। इंडोनेशिया का यह दुर्लभ पौधा 2 से 3 साल में सिर्फ एक बार खिलता है। ये फूल लोगों को संरक्षण के लिए जागरूक करता है। इस खिले हुए दुर्लभ फूल को देखने के लिए लोग आते हैं। फूल की बदबू पर विजिटर्स के मजेदार रिएक्शंस, किसी ने इसे कूड़ेदान जैसी गंध बताया तो किसी को लगी बदबूदार जानवर जैसी महक। यूरोप में पड़ रही भीषण गर्मी, बेल्जियम समेत कई देशों में पारा 30 डिग्री के पार। छांव और एसी का सहारा लेने को मजबूर हुए फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस में वाइल्ड फायर ने हजारों हेक्टेयर जंगल जलाए। यूरोप में गर्मी से बचने की जद्दोजहद, लोग ज्यादा से ज्यादा खुद को रख रहे डिहाइड्रेट। कई देशों में स्कूल बंद और बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई, पूरे यूरोप में दिख रहा क्लाइमेट चेंज का असर। प्रशासन की लोगों से घरों में बने रहने की अपील, बुजुर्गों और बच्चों को बाहर ना निकलने की सलाह।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: कांग्रेस नेता ने राम मंदिर में दिए दान वापस मांगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के विवाद बोल का सच क्या? जहां दफनाए गए खामनेई, वहीं अमेरिका ने बरसाए बम। बंदर छीन नहीं पाया बोतल। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए वैभव शुक्ला के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
3: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
4: continue to face political pressure to reach a peace deal,
3: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
0: बद्रीनाथ धाम में आजकल श्रद्धालुओं की काफी चहल पहल देखी जा रही है। दरअसल मौसम यहां बेहद सुहाना बना हुआ है, बारिश रुक रुक कर होती है, इसीलिए रास्तों में भी रुकावट नाम मात्र ही नजर आती है। केवल बद्रीनाथ धाम ही नहीं, चमोली जिले में बसे हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में आस्थावान लगातार आ रहे हैं।
9: बद्रीनाथ धाम में अब तक 14,82,000 तो हेमकुंड साहिब में 1,92,000 श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं। वहीं मौसम की बात करें तो इस बार अभी तक पहाड़ों में मानसून उस तरह से सक्रिय नहीं हुआ है, हालांकि कभी कभार बारिश देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, हेमकुंड साहिब में देखने को मिल रहा है।
8: उत्तराखंड के ऊंचे क्षेत्रों में खासकर चमोली जिले में इन दिनों मौसम भले ही नरम गरम है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, मॉनसून की बेरुखी भी नजर आ रही है। बावजूद इसके चारधाम यात्रा में से एक भगवान बद्री विशाल का दरबार और पवित्र हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा आस्था से गुलजार है। बद्रीनाथ धाम में कल कल बह रही अलकनंदा का इन दिनों शोर सुनाई दे रहा है, लेकिन इस शोर से कहीं ज्यादा यहाँ उमड़ रही आस्था का ही नाद है, जिसे देशी विदेशी श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के रूप में देखा भी जा सकता है। बताया जा रहा है कि पिछले सालों की तुलना में इस साल मॉनसून बेहद कमजोर है, इसलिए पहाड़ों पर खासतौर से ऊंचाई वाले इलाकों में तो बारिश कम ही दर्ज की गई है, लेकिन चारधाम दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं की आवक में अभी तक कोई खास कमी नहीं आई है। इस वर्ष 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, श्रद्धालुओं ने काफी संख्या में वहां पहुंचकर दर्शन किए और तब से लेकर अब तक 14,82,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। वहीं 23 मई को खुले हेमकुंड साहिब के कपाट के बाद अब तक 1,92,000 से ज्यादा सिख श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। यानी मौसम अनुकूल है, यात्रा मार्ग भी सुचारू है, तो चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह भी लगातार बना हुआ है, खासकर बद्रीनाथ में, जहां भले ही बारिश कम हो रही है मगर मौसम बेहद मुफीद है। ऊपर से यात्रा मार्ग पर कम बारिश होने की वजह से आवाजाही भी सुचारू है। यही कारण भी है कि श्रद्धालु बिना किसी बड़े परेशानी के भगवान बद्री विशाल के साथ ही सिख श्रद्धालु भी पवित्र हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के दर्शन कर रहे हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: बात फ्रांस की राजधानी पेरिस की कर लेते हैं, जहां बैस्टिल डे के मौके पर आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। एफिल टावर के ऊपर आतिशबाजी और ड्रोन शो ने ऐसा नजारा पेश किया जिसे देखने के लिए हजारों लोग सड़कों पर निकल पड़े।
10: ये नजारा है फ्रांस की राजधानी पेरिस का, जहां मशहूर एफिल टावर के ऊपर शानदार आतिशबाजी की गई है। रंग बिरंगी रोशनी से पूरा आसमान चमक उठा। इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए हजारों लोग सड़कों पर जुटे और अपने कैमरों में इस पल को कैद करते दिखे। इस बार सिर्फ आतिशबाजी ही नहीं बल्कि सैकड़ों ड्रोन ने भी आसमान में अलग अलग आकृतियां बनाई। सबसे खास था जब ड्रोन ने आसमान में एफिल टावर की तस्वीर बनाई। रोशनी, ड्रोन और आतिशबाजी का यह अनोखा संगम लोगों को खूब पसंद आया। ये जश्न बस्टिल डे के मौके पर बनाया गया। बस्टिल डे फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। साल 1789 में इसी दिन बस्टिल जेल पर कब्जा किया गया था, जिसे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का बड़ा प्रतीक माना जाता है। तभी से हर साल 14 जुलाई के आसपास पूरे देश में परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भव्य आतिशबाजी के साथ ही दिन मनाया जाता है। पेरिस के जश्न ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कैमरे पर कैद ये नजारा लोगों के लिए लंबे समय तक यादगार बने रहेंगे। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: दुनिया की सबसे रोमांचक रेस में गिनी जाती है सैन फर्मिन फेस्टिवल की बुल रन, जहां परंपरा का मेल रोमांच के साथ होता है। स्पेन के पाम्पलोना शहर में बुल रन का ये सदियों पुराना रिवाज आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है।
11: स्पेन के पैम्पलोना शहर में मशहूर सैन फर्मिन फेस्टिवल का आखिरी बुल रन भी पूरे जोश और रोमांच के साथ पूरा हुआ। परंपरा, रफ्तार और हिम्मत का अनोखा संगम दिखाई दिया। सुबह सुबह पैम्पलोना की सड़कों पर उत्साह साफ नजर आता है। बुल रन शुरू होने से पहले प्रतिभागी सैन फर्मिन की प्रतिमा के सामने जुटते हैं, नारे लगाते हैं और सुरक्षित दौड़ की कामना करते हैं। फिर आती है वो घड़ी जो वहाँ मौजूद सभी लोगों की धड़कनें बढ़ा देती है। एक पटाखे की आवाज और गेट खुलते ही तेज रफ्तार से बुल बाहर निकलते हैं और उनके साथ शुरू होती है दुनिया की सबसे चर्चित और रोमांचक रेस। संकरी गलियों में बुल के आगे आगे दौड़ते प्रतिभागी, दोनों तरफ खड़े हजारों दर्शक और हर मोड़ पर रोमांच अपने चरम पर नजर आता है। इस दौरान कुछ लोग फिसल कर गिर भी जाते हैं, लेकिन दौड़ लगातार आगे बढ़ती रहती है। कुछ ही मिनटों में बुल शहर की गलियों से होते हुए बुल रिंग के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। प्रतिभागी भी उनके साथ एरिना में दाखिल होते हैं और इसी के साथ इस साल आखिरी बुल रन सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है। सेन फर्मिन फेस्टिवल सिर्फ एक दौड़ भर नहीं बल्कि स्पेन की संस्कृति और परंपरा का बड़ा उत्सव है। हर साल दुनिया भर से हजारों लोग इस अनोखे आयोजन का हिस्सा बनने और इसे करीब से देखने पैम्पलोना पहुंचते हैं। यही वजह है कि बुल रन आज भी दुनिया के सबसे चर्चित पारंपरिक आयोजनों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
12: क्या आप छोटी छोटी बात पर घबरा जाते हैं? क्या आत्मविश्वास के साथ समस्याओं का सामना नहीं कर पाते? क्या बार बार मुकदमेबाजी और सर्जरी के योग बन जाते हैं? कहीं आपका मंगल अशुभ तो नहीं? क्या है मंगल?

0: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
1: continue to face political pressure to reach a peace deal,
0: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
5: पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, मंदिर के बाहर उमड़ा आस्था का मेला, भगवान दे रहे हैं नवयौवन दर्शन। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक 44 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, बद्रीनाथ में करीब 15 लाख श्रद्धालु। दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्सटाइल एक्सपो का शुभारंभ, 17 जुलाई तक चलेगा कार्यक्रम, देश विदेश से जुटेंगे उद्योगपति। सैलानियों के लिए सुरक्षा के लिए कुल्लू प्रशासन का फैसला, 15 जुलाई से 15 सितंबर तक ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग पर रोक, मॉनसून के चलते एहतियात। जयपुर बना दुनिया का छठा सबसे खुशहाल शहर, टाइम आउट 2026 की टॉप 10 लिस्ट में शामिल, पिंक सिटी के बाद मिला एक और टाइटल।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार।
5: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त है 7 गुड न्यूज का। हम हाजिर हैं, आपको बताएंगे आज की 7 अच्छी खबरें। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की, राजस्थान के मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम कहे जाने वाले श्री सांवलिया जी मंदिर के मासिक भंडार की गिनती के पहले ही दिन 10 करोड़ रुपए से अधिक नगद राशि चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुई। ऐसे में हमारी आज की सबसे पहली गुड न्यूज भी यही है, सांवलिया सेठ मंदिर में 10 करोड़ का चढ़ावा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ स्थित श्री सांवलिया सेठ का मंदिर देश के प्रमुख आस्था केंद्रों में से एक है, जहां हर महीने लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, भगवान श्री सांवलिया सेठ के दर्शन करते हैं और श्रद्धानुसार दान भी अर्पित करते हैं। इस मंदिर की मान्यता यह है कि भगवान को अपना बिजनेस पार्टनर बनाने से बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है, और यही वजह है कि यहां हर महीने होने वाले चढ़ावे की गिनती करोड़ों में होती है। सोने चांदी विदेशी मुद्राएं बहुमूल्य वस्तुएं भी यहां से निकलती हैं। मंदिर में प्राप्त होने वाले चढ़ावे पर केवल मेवाड़ ही नहीं बल्कि देश भर के श्रद्धालुओं की नजर रहती है। इस बार गिनती के पहले ही दिन चढ़ावे में 10 करोड़ 11 लाख 83 हजार रुपए की नगद राशि मिली है। ये राशि केवल दान पात्रों से प्राप्त नगद दान की एक हिस्सा है। चढ़ावे में आई बाकी बची राशि के अलावा मंदिर को मिलने वाले चेक, ऑनलाइन दान, सोने चांदी के आभूषण और दूसरे चढ़ावों की गिनती और उनका मूल्यांकन अभी बाकी है। ऐसे में अंतिम आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है।
6: राजस्थान के सांवरिया सेठ मंदिर की मासिक गिनती शुरू हो चुकी है और हर बार की तरह इस बार भी एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। हर महीने चतुर्दशी पर यह गिनती की जाती है और इस महीने भी जब ये गिनती शुरू हुई तो पहले ही दिन, मैं आपको ये बता दूं कि पहले दिन की सिर्फ दान पात्र की गिनती जो है उसमें 10 करोड़ से अधिक की राशि जो है वो गिनी जा चुकी है। पूरा जो बैंक कर्मी है और उसके साथ साथ जो मंदिर मंडल है वो सभी ये गिनती करने जुट गए हैं और दान पात्र जब खोले

0: ले गए तो पहले दिन 10,11,83,000 तक की गिनती जो है वो अभी तक की जा चुकी है, जिसमें बचे हुए दान पात्र अभी बाकी हैं और साथ ही साथ में जो भी ऑनलाइन दान आता है, चेक के थ्रू जो पेमेंट्स आते हैं वो, या फिर सोने चांदी के आभूषण या फिर अन्य जो सोर्सेज हैं दान के, वो अभी गिने नहीं गए हैं। और ये पहले दिन में ही ये जो आंकड़ा है वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है। बोला जाता है कि सांवरिया सेठ में बहुत ज्यादा जो दान है वो किया जाता है, पर 10 करोड़ का जो आंकड़ा है वो इस बार पार हो चुका है पहले ही दिन। हालांकि मंगलवार यानी कि आज के दिन ये जो गिनती है ये अभी स्थगित की गई है, क्योंकि अमावस्या का दिन है, तो अमावस्या के दिन ये गिनती जो है वो नहीं की जाती है।
1: पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए तैयार है और रथों की अंतिम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मंदिर प्रशासन से लेकर सुरक्षा एजेंसियों तक पूरी तरह से अलर्ट और देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुंचने लगे हैं। हमारी आज की दूसरी गुड न्यूज भी इसी से जुड़ी हुई है। रथ तैयार, भगवान जगन्नाथ के पधारने का इंतजार। पुरी में एक तरफ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन भी कड़े सुरक्षा इंतजाम कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है और अब हर किसी को बस उस पल का इंतजार है जब महाप्रभु जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर के लिए रवाना होंगे।
2: महाप्रभु जगन्नाथ की नगरी पुरी एक बार फिर आस्था और उल्लास के रंग में सराबोर होने वाली है। जगन्नाथ रथ यात्रा के आरंभ से पहले ही देश और विदेश से श्रद्धालुओं ने पुरी नगरी में पहुंचना शुरू कर दिया है।
3: श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की।
2: पुरी में मौजूद हर चेहरे पर उल्लास है, हर दिल में भक्ति का सैलाब है, क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा में अब सिर्फ एक दिन का समय बाकी है।
4: हम तो 3 साल से आ रहा है लगातार।
5: कैसा लगा? जगन्नाथ
4: जी से बहुत अच्छा, आके बहुत अच्छा लग रहा है। जगन्नाथ जी की कृपा है, बहुत कृपा है। जगन्नाथ जी ने हमें को बार बार बुला रहा है।
2: पुरी की सड़कों पर श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार बढ़ता जा रहा है। रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट पर भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। देश के अलग अलग राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी भक्त महाप्रभु के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। रथों की अंतिम सजावट पूरी कर ली गई है।
6: पुरी में भक्तों का भीड़ अब देखने के लिए मिल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आप ये तीनों रथ देख सकते हैं। तीनों रथ अब पूरी तरह की जो तैयारी है, ये तैयारी एक तरफ खत्म होने वाला है और बच एक ही दिन का बाकी है। एक दिन बाद यानी जुलाई 16 तारीख को भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा मैया रथ यात्रा में शामिल होंगे, भक्तों को दर्शन देंगे, भक्तों से मिलने के लिए आएंगे।
2: श्री गुड़ीचा मंदिर से लेकर श्री मंदिर तक पूरे मार्ग को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। हर ओर भक्ति, श्रद्धा और उत्सव का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है और इस उत्सव का हिस्सा बनने जा रहे लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है।
7: कुछ भी बोल नहीं सकते, मन में इतना खुशी है कि हम लोगों को स्वामी ने बुलाया हुआ है यहाँ पे।
2: यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं, ऐसे में प्रशासन ने भी व्यापक तैयारियां की है। यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे रथ मार्ग पर पुलिस और सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। ड्रोन, सीसीटीवी कैमरों और कंट्रोल रूम के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं, एम्बुलेंस, पेयजल और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से सम्पन्न हो सके।
8: सबसे ज्यादा भीड़ होने वाला है, जैसे कि 10 से 15 लाख से भी ऊपर बहुत ज्यादा भीड़ होने वाला है। इसमें हम जैसे कि ग्रीन कॉरिडोर करके एम्बुलेंस को मेडिकल तक पहुंचाने में बहुत सारे मदद करते हैं।
2: श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रथ यात्रा से पहले लाइफगार्ड्स ने समंदर किनारे रेस्क्यू मॉक ड्रिल का आयोजन किया और अलग अलग तरकीबों से अपनी तैयारियों को परखा। समंदर में फंसे व्यक्ति तक कैसे जल्द से जल्द पहुंचना है, उसे किनारे तक लाना है और प्राथमिक उपचार देना है, इन सब परिस्थितियों का अभ्यास किया गया। साथ ही आपसी तालमेल, बातचीत और इमरजेंसी रिस्पांस प्रोटोकॉल को भी परखा गया। ड्रिल के दौरान रेस्क्यू के सामान और इमरजेंसी गियर की भी जांच की गई। अब इंतजार उस ऐतिहासिक क्षण का है जब विशाल रथों की रस्सियां लाखों श्रद्धालु अपने हाथों से खींचेंगे और जय जगन्नाथ के गगन भेदी जय घोष के बीच महाप्रभु भक्तों के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे और पुरी नगर में एक बार फिर आस्था, एकता और सनातन परंपरा की अद्भुत झलक देखने के लिए मिलेगी। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: बाबा बर्फानी के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था लगातार नई मिसाल कायम कर रही है। अमरनाथ यात्रा में अब तक श्रद्धालुओं की संख्या 3 लाख के करीब पहुंच चुकी है। हमारी आज की तीसरी गुड न्यूज भी यही है, भक्ति की शक्ति। साइकिल पर दिल्ली से अमरनाथ। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कोई पैदल यात्रा कर रहा है, कोई कई किलोमीटर लंबा सफर तय कर बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहा है। राजस्थान के जयपुर से निकले 13 श्रद्धालुओं का एक जत्था 33 दिनों की पैदल यात्रा पूरी करके कांजीगुंड पहुंचा। वहीं दिल्ली के एक शिव भक्त ने कार, ट्रेन या विमान नहीं बल्कि साइकिल से दिल्ली से कश्मीर तक का लंबा सफर तय कर अमरनाथ की यात्रा पूरी की।

0: बाबा बर्फानी के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था अटूट है और यही आस्था और विश्वास इस कठिन पहाड़ी यात्रा को आसान बनाती है। बाबा के दर्शन के लिए भोलेनाथ के भक्त कई कई किलोमीटर पैदल चलकर अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। न थकान उन्हें रोक पा रही है, न मौसम की चुनौतियाँ, क्योंकि मंजिल है बाबा बर्फानी का दरबार।
1: मेरी 25वीं और 26वीं यात्रा है। पिछली यात्रा में इस यात्रा में जमीन आसमान का फर्क है, तो जो सुविधा और प्रशासन की तरफ से सुविधा की फैसिलिटी दी गई है वो अद्भुत है। इस जगह में इतनी फैसिलिटी मिलनी जन्नत के बराबर है।
0: यात्रा को अभी 11 दिन ही हुए हैं, लेकिन इन 11 दिन में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। खास बात यह है कि यात्रा के इस उत्सव में हर दिन आस्था का एक अलग ही रूप देखने के लिए मिल रहा है। आस्था की एक अनूठी तस्वीर यात्रा मार्ग पर देखने के लिए मिल रही है। 13 श्रद्धालुओं का ये जत्था पिछले 33 दिनों से लगातार पैदल यात्रा कर रहा है, लेकिन कदम लगातार मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। आस्था की डगर पर बाबा बर्फानी के प्रति विश्वास भक्तों को हर कदम पर मंजिल की ओर आगे बढ़ा रहा है। और इसी डगर पर एक बाबा बर्फानी का भक्त ऐसा मिला जो राजधानी दिल्ली से साइकिल पर लंबा सफर तय कर अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचा और बाबा के दर्शन किए।
2: साइकिल पर यात्रा पे आए थे अमरनाथ के, तो यात्रा हमारी हो चुकी है, तो दर्शन करके मैं आ गया। तो यहाँ से श्रीनगर घूम के फिर मैं उत्तराखंड जाऊंगा। उत्तराखंड से कैलाश पर्वत होके फिर गंगोत्री धाम से जल लूंगा, फिर 11 अगस्त को महाशिवरात्रि को अपने यहाँ दिल्ली में चढ़ाऊंगा मंदिर में।
0: वैसे जम्मू कश्मीर पहुंच रहे श्रद्धालु केवल बाबा बर्फानी के दर्शन ही नहीं कर रहे, बल्कि स्थानीय लोगों की आजीविका को भी नई रफ्तार दे रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से होटल, गेस्ट हाउस, टैक्सी चालक, दुकानदार, रेस्टोरेंट, हस्तशिल्प कारोबारियों और स्थानीय छोटे व्यापारियों के कारोबार में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यात्रा पूरी करने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थलों का भी रुख कर रहे हैं। श्रीनगर की डल झील, मुगल गार्डन, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और अन्य दर्शनीय स्थलों पर भी पर्यटकों की अच्छी चहल पहल देखने को मिल रही है। और इन दिनों रियासी में बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज भी अमरनाथ यात्रियों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बन गया है। देश भर से आने वाले हजारों श्रद्धालु अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान इस ऐतिहासिक इंजीनियरिंग उपलब्धि को देखने के लिए यहां रुक रहे हैं। अमरनाथ यात्रा सिर्फ आस्था का महापर्व नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा देने का जरिया बना हुआ है। श्रीनगर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे।
3: आगे बढ़ते उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा, श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। मॉनसून के आने के बाद भी यात्रा को लेकर भक्तों में आस्था अटूट है। अब तक 44 लाख से ज्यादा भक्तों ने चारधाम यात्रा के दर्शन कर लिए हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ में भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे। हमारी आज की अगली गुड न्यूज यानी गुड न्यूज नंबर 4 यही है, चारधाम यात्रा जारी पर एहतियात से। भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ में आस्था और श्रद्धा आज भी पहले की तरह ही कायम है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस वर्ष का मानसून पहाड़ों में पिछले वर्षों से काफी अलग दिखाई दे रहा है। जहां सामान्य तौर पर इस मौसम में लगातार तेज बारिश देखने को मिलती है, वहीं इस बार बारिश का दौर थोड़ा सा कमजोर है। कभी चटक धूप तो कभी हल्के बादल छा जाते हैं, लेकिन लगातार होने वाली मानसूनी बारिश को देखते हुए बद्रीनाथ यात्रा मार्ग को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। भक्तों का रेला आज भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचा। इस साल 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे और इसके बाद से लेकर अब तक 14 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके। वहीं 23 मई को श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने के बाद से अब तक 1,92,000 से ज्यादा सिख श्रद्धालु यहां पर मत्था टेक चुके हैं।
4: बद्रीनाथ धाम में अब तक 14,82,000 तो हेमकुंड साहिब में 1,92,000 श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं। वहीं मौसम की बात करें तो इस बार अभी तक पहाड़ों में मानसून उस तरह से सक्रिय नहीं हुआ है, हालांकि कभी कभार बारिश देखने को मिल रही है, बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, हेमकुंड साहिब में देखने को मिल रहा है, लेकिन जो पहाड़ों में हमेशा अमूमन 20 जून के बाद जो बारिश का मौसम देखने को मिलता था, जो पहाड़ों में भूस्खलन और तमाम गतिविधियां देखने को मिलती थी, वो इस बार पूरी तरह से मौसम का बदलाव, मौसम का चक्र इस कदर बदल गया है कि जुलाई के महीने में इस तरह की गर्मी और इस तरह से धूप खिली हुई है देखने को मिल रहा है। वहीं यात्रा की बात करें तो बद्रीनाथ धाम में हालांकि यात्रा संख्या में जरूर कमी देखने को मिल रही है, लेकिन उत्साह लगातार बना हुआ है, चाहे हेमकुंड साहिब की बात करें या फिर बद्रीनाथ धाम की बात करें। बद्रीनाथ धाम के कपाट इस बार 23 अप्रैल को खोले गए थे और अब तक रिकॉर्ड श्रद्धालु लगभग 15 लाख संख्या होने को है। अगले 3 से 4 दिनों में 15 लाख ये संख्या पार हो जाएगी। वहीं हेमकुंड साहिब में 1,92,000 जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच चुके हैं और अभी भी लगातार यात्रा का उत्साह बना हुआ है।
3: आगे बढ़ते उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह कितना है उसकी गवाही यहां पहुंचने वाले आंकड़े भी दे रहे हैं। यहां पर चल रही चारधाम यात्रा में 44 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए 14,02,782 लोग पहुंचे। वहीं बद्रीनाथ में 14,82,601 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि गंगोत्री धाम में 6,91,446 श्रद्धालु और यमुनोत्री धाम की बात की जाए तो 6,41,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस तरह से अब तक चारधाम यात्रा में कुल 44,13,618 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं श्री हेमकुंड साहिब की बात करें तो 2,00,000 श्रद्धालु यहां भी मत्था टेक चुके हैं। उधर मध्य रेलवे ने रेल यात्रा पर निगरानी के लिए एक नए सिस्टम का परीक्षण शुरू कर दिया है और इसके तहत रेल इंजनों में VSS यानी वीडियो सर्विलांस सिस्टम को लगाया जा रहा है और ये सिस्टम इंजन के अंदर होने वाले हर गतिविधि पर निगरानी रखता है। ऐसे में हमारी अगली गुड न्यूज नंबर 5 यही है, रेलवे इंजन में कैमरे से लोको पायलट पर नजर। VSS प्लेन में लगे ब्लैक बॉक्स की तरह ही काम करता है और इस सिस्टम से हादसे यहाँ पर किसी भी घटना के बाद लोको पायलट की गतिविधियों की पूरी जानकारी मिल सकती है।

0: भारतीय रेलवे ट्रेनों को सुरक्षित बनाने के लिए एक नया प्रयोग कर रही है। इसके लिए इंजनों में एक नई निगरानी व्यवस्था की शुरुआत की जा रही है। उत्तर मध्य रेलवे ने वीडियो सर्विलांस सिस्टम यानी VSS का ट्रायल शुरू किया है। पहले चरण में ये सिस्टम एक लोकोमोटिव यानी रेलवे इंजन में लगाया गया है। जिस तरह हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स दुर्घटना के बाद हादसे की वजह पता लगाने में मदद करता है, उसी तर्ज पर वीडियो सर्विलांस सिस्टम भी काम करेगा। दरअसल इस सिस्टम में 6 हाई रेजोल्यूशन कैमरे और एक वॉइस रिकॉर्डर लगा होता है। इन 6 कैमरों में इंजन के आगे और पीछे एक एक कैमरा लगा होगा जो ट्रैक और उसके सामने की गतिविधियों को रिकॉर्ड करेगा। कैबिन के अंदर 4 कैमरे लगे होंगे जो लोको पायलट और सहायक लोको पायलट की गतिविधियों पर नजर रखेंगे, जबकि वॉइस रिकॉर्डर दोनों के बीच होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड करेगा। आने वाले दिनों में वीडियो सर्विलांस सिस्टम 26 ट्रेनों में परीक्षण के तौर पर लगाया जाएगा।
1: भारतीय रेलवे भी VSS बॉक्स लेकर आया है, जो रेलवे इंजन है उसमें तकरीबन 26 इंजनों पर वो VSS बॉक्स लगा रहे हैं। उस VSS बॉक्स के जरिए दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाया जा सकेगा।
0: इंजनों में ये सिस्टम लगे होने से हादसे के बाद अहम जानकारी मिनटों में मिल पाएगी। अगर किसी ट्रेन का एक्सीडेंट होता है या कोई असामान्य घटना सामने आती है तो कैमरों की रिकॉर्डिंग और वॉइस रिकॉर्डर की मदद से ये समझना आसान हो जाएगा कि हादसे से पहले इंजन में क्या हो रहा था। इसे पता लगाया जा सकेगा कि लोको पायलट और सहायक के बीच क्या बातचीत हुई, ट्रैक पर क्या स्थिति थी और आखिर गलती कहाँ हुई। इससे जाँच तेज होगी और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए बेहतर कदम उठाए जा सकेंगे।
2: कोई भी तरह की आवश्यकता होती है, किसी भी तरह की कोई घटना, दुर्घटना अथवा कोई शिकायत आती है, लोको पायलट की अलर्टनेस के बारे में कोई कंप्लेन आती है, किसी भी तरह की कोई कंप्लेन आती है, कोई भी आवश्यकता पड़ती है, किसी इवन न केवल कंप्लेन बल्कि अगर ट्रेनिंग पर्पज से भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस वीडियो सर्विलांस सिस्टम का एनालिसिस करके ये जान सकते हैं कि उसके अंदर जो हमारे लोको पायलट हैं, जो असिस्टेंट लोको पायलट हैं, जो हमारा लोको का केबिन है, उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन हो रहे थे, उस समय क्या गतिविधियां हो रही थी।
0: रेलवे इस नई व्यवस्था में विदेशी उपकरणों पर निर्भरता कम करने जा रही है। इस सिस्टम में स्वदेशी और ज्यादा सुरक्षित कैमरा और रिकॉर्डिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर पहले चरण में 26 ट्रेनों में इस तकनीक का ट्रायल होगा। ट्रायल सफल रहने पर इसे आगे और ट्रेनों में भी लागू किया जा सकता है। वीडियो सर्विलांस सिस्टम सिर्फ हादसों की जांच के लिए नहीं बल्कि लोको पायलट और अन्य स्टाफ की कार्यप्रणाली पर नजर रखने में भी मदद करेगा। ड्यूटी के दौरान उनकी गतिविधियां और बातचीत रिकॉर्ड होने से कर्मचारियों में सतर्कता बढ़ेगी और लापरवाही की संभावना कम रहेगी। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देश के रेगिस्तानी धरती राजस्थान के जैसलमेर में अब ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित जैसलमेर रेलवे स्टेशन पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में हमारी आज की छठी गुड न्यूज यही है, एयरपोर्ट जैसा रेलवे स्टेशन। जैसलमेर रेलवे स्टेशन हेरिटेज वास्तुकला और अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं वाला स्टेशन है जो पश्चिमी राजस्थान की नई पहचान बनने जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर, लिफ्ट, फूड प्लाजा सहित एयरपोर्ट जैसी तमाम सुविधाएं मौजूद होंगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के मुताबिक जैसलमेर रेलवे स्टेशन का नया मुख्य स्टेशन भवन G+2 संरचना में लगभग 8,327 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित किया गया है। भवन के बाहरी भाग में जैसलमेर के प्रसिद्ध स्वर्णिम पीले पत्थर का उपयोग किया गया है, जिससे स्टेशन को शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप भव्य हेरिटेज स्वरूप मिल सके। विशाल एंट्री और एग्जिट गेट हैं जो कि इसे आकर्षक और सशक्त बनाते हैं। स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए 10 लिफ्ट, 10 एस्केलेटर प्लेटफॉर्मों के को जोड़ने वाला 6 मीटर चौड़ाई का 2 फुट का ओवरब्रिज, विशाल एयर कॉन्कोर्स, आधुनिक वेटिंग लॉन्च, विस्तृत सर्कुलेटिंग एरिया, सुव्यवस्थित पार्किंग और दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं मौजूद हैं।
4: जैसलमेर स्टेशन अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है। इसकी लागत लगभग 140 करोड़ रुपए है। इस स्टेशन को पूरी तरीके से मॉडर्न पैसेंजर एमिनिटीज से इक्विप किया गया है। सर्कुलेटिंग एरिया से लेकर प्लेटफॉर्म तक हर फैसिलिटी को एकदम पैसेंजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिंक करके बिल्कुल मॉडर्न किया गया है। चाहे वो पार्किंग हो, चाहे सर्कुलेटिंग एरिया हो, चाहे प्लेटफॉर्म के वेटिंग बोन्स हो, लिफ्ट हो, एस्केलेटर हो, एक्वी हो, हर व्यवस्था को इस स्टेशन पर प्रोवाइड किया गया है।
3: गुजरात के गिर जंगल में शेरों का एक शानदार और रोमांचक दृश्य देखने को मिला। यहां एक दो नहीं बल्कि पूरे 11 शेर एक साथ सुबह की सैर करने निकले। शेरों के इस अनोखे नजारे ने गिर के जंगलों से गुजर रहे पर्यटकों को आनंदित कर दिया, उत्साह से भर दिया। ऐसे में हमारी आज की सातवीं गुड न्यूज यानी कि आखिरी गुड न्यूज यही है मॉर्निंग वॉक पर शेर परिवार। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के जामवाल तलाला रोड पर एक खूबसूरत नजारा देखने को मिला, जब गिर के जंगल में सुबह करीब 7 बजे के आसपास अचानक सड़क पर शेरों का एक पूरा कुनबा नजर आया। सड़क पर एक साथ 11 शेरों की मौजूदगी के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी थम गया और गुजरने वाली कारों और अन्य वाहनों के चालकों ने अपने वाहन रोक दिए। सड़क के बीचों बीच बेखौफ अंदाज में टहलते शेरों को देखकर लोग रोमांचित हुए। इस अद्भुत और दुर्लभ नजारे को सड़क से गुजर रहे एक कार चालक ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है और अब ये वीडियो खूब वायरल भी हो रहा है। ये थी 7 बजे की 7 गुड न्यूज। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़। और
3: बस एक दिन बाद पधारने वाले हैं महाप्रभु। पुरी में जुटने लगे भक्त, दिखने लगे रंग। चार धाम में आस्था का मॉनसून। खादी वस्त्रों में कस्तूरी कॉटन की एंट्री। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
6: Summer's too good to run on empty. Save 30% on more than 4,000 vitamin and body care items at Fresh Time Market from July 22nd through July 28th. Stock up on your wellness essentials like Mary Ruth's multivitamins, Truvani plant-based protein powder, Brownie's facial patches, and Sunbum sunscreen. Because feeling your best should be part of every summer adventure. See you and your friends July 22nd through the 28th. Fresh Time Market, rooted in your well-being.
7: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: You're listening Uninterrupted with TuneIn Premium. Enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
2: कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर। जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, मंदिर के बाहर उमड़ा आस्था का मेला, भगवान दे रहे हैं नव यौवन दर्शन। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा, अब तक 44 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, बद्रीनाथ में करीब 15 लाख श्रद्धालु। दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्सटाइल एक्सपो का शुभारंभ, 17 जुलाई तक चलेगा कार्यक्रम, देश विदेश से जुटेंगे उद्योगपति।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
9: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की तरह फैल जाते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में ढल दिया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टेलीविजन स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में फैल जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को लांघ जाती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ती जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा यह होता है कि लोग बिना सोचे बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ कर देते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी पर। देखिए, फैक्ट चेक में आज हम सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राम मंदिर को दान किए गए पैसे वापस मांगे हैं। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है, जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो ईरान के मशहद का है, जहां पर आयतुल्ला अली खामेनेई का जनाजा पहुंचते ही अमेरिका ने मिसाइल बरसा दिया। क्या है वायरल दावे की पूरी सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
9: देखिए, अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोप लगे हैं, और इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच भी जारी है। इन सबके बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस जीतू पटवारी के बयान का एक पोस्टकार्ड वायरल हो रहा है, जिसके साथ दावा यह किया जा रहा है कि जीतू पटवारी ने राम मंदिर को दान किए गए पैसे वापस मांगे हैं। वायरल पोस्टकार्ड में टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैंने राम मंदिर के लिए 1100 रुपए दान किए थे, मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
10: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों से हुई पूछताछ में चोरी के तरीके से लेकर रकम को ठिकाने लगाने तक कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। इन सब के बीच सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नाम पर एक पोस्ट कार्ड वायरल हो रहा है। इसमें पटवारी की तस्वीर और नाम का इस्तेमाल करते हुए दावा किया गया कि उन्होंने राम मंदिर के लिए 1100 रुपए दान किए थे और वो पैसा उन्हें वापस चाहिए। इस कथित बयान को कई सोशल मीडिया यूजर्स वायरल कर रहे हैं। एक फेसबुक यूजर ने पोस्टकार्ड को शेयर करते हुए लिखा कि ये जीतू पटवारी है, अगर ये पोस्ट उस तक पहुंचती है तो मुझे अपना अकाउंट नंबर भेज दे, मैं ब्याज सहित उसे वापस कर दूंगा। जय श्री राम। यूजर्स इस पोस्टकार्ड को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
9: देखिए, अयोध्या स्थित राम मंदिर को मिले चढ़ावे की कथित चोरी और गबन के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ शीर्ष अदालत ने मंदिर का प्रबंधन करने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी कर दिया और मामले की जांच कर रही विशिष्ट जांच टीम को अब तक की कार्रवाई पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। इन सबके बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नाम पर एक पोस्टकार्ड वायरल हो रहा है और इसमें पटवारी की तस्वीर और नाम के इस्तेमाल करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि उन्होंने राम मंदिर के लिए 1100 रुपए दान किए थे और वो पैसा उन्हें वापस चाहिए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह दावा तेजी से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे दावे का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल दावे की पुष्टि की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले जीतू पटवारी के सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला, लेकिन सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई पोस्ट तस्वीर नजर नहीं आई जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। इसके अलावा हाल फिलहाल में अगर जीतू पटवारी ने राम मंदिर को लेकर इस तरह का कोई भी बयान दिया होता तो अपने आप में बड़ी खबर होती। हर मीडिया आउटलेट्स पर यह खबर सुर्खियां जरूर बटोर रही होती, लेकिन कहीं कुछ हमें देखने को नहीं मिला। इसके अलावा फैक्ट चेक की टीम ने मध्य प्रदेश के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन वहां पर भी मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का ऐसा कोई बयान हमको देखने को नहीं मिला। ऐसे में हमें दावे पर शक हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर उतारा। तो देखिए, पहला सवाल तो जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर दावा सही है तो उसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी अब तक हमें क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल यह कि कहीं एडिटेड पोस्टकार्ड वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा, क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
10: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये पोस्टकार्ड तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक की टीम एक्टिव हुई और इसकी जांच में जुटी। सबसे पहले हमने ये जानने का प्रयास किया कि जीतू पटवारी ने राम मंदिर पर ऐसा कोई बयान दिया है जैसा कि वायरल किया जा रहा है, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली। अगर जीतू पटवारी ने वायरल पोस्टकार्ड जैसा कोई बयान दिया होता तो वो सुर्खियों में जरूर आता। सर्च के दौरान हमें जीतू पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो मिला। यूनिवार्ता के इंस्टाग्राम हैंडल पर मौजूद इस वीडियो में राम मंदिर, चंदा चोरी और मुख्यमंत्री के जमीन विवाद को लेकर आरोप लगाते हुए सुना जा सकता है। ये वीडियो 23 जून 2026 को अपलोड किया गया। फेक पोस्टकार्ड में इस्तेमाल की गई तस्वीर के बारे में जानने का भी प्रयास किया। तस्वीर में जीतू पटवारी को जैकेट पहने और अपने एक हाथ में कुछ पेपर्स लिए हुए देखा जा सकता है। सर्च करने पर हमें ये तस्वीर एक आधिकारिक वेबसाइट पर मिली। 17 मार्च 2024 की एक खबर में इसे इस्तेमाल किया गया था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, वायरल पोस्टकार्ड फेक है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
9: मिडल ईस्ट में एक बार फिर से महाजंग छिड़ चुकी है। हॉर्मूज पर कब्जे को लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने आ चुके हैं और एक तरफ अमेरिका ने ईरान के 140 से ज्यादा ठिकानों को तहस नहस कर दिया, दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका सैन्य अड्डों पर मिसाइलें दागी हैं। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पूरा कब्जा चाहता है, जबकि अमेरिका का साफ कहना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय रास्ता है जिस पर किसी का भी कब्जा बर्दाश्त नहीं है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है जिसके जरिए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो ईरान के मशहद का है जहां पर आयतुल्ला अली खामेनेई का जनाजा पहुंचते ही अमेरिका ने मिसाइलें बरसा दी। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट देखिए।
10: ईरान में अपने पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को आखिरी विदाई देने हजारों लोग सड़कों पर उतरे। तेहरान, कोम, नजफ, कारबला और मशहद में उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। उन्हें 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। 28 फरवरी को अमेरिकी इजरायली एयर स्ट्राइक में अली खामनेई की मौत हो गई थी। इस बीच अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने हो गए हैं। दोनों ही ओर से एक दूसरे के टारगेट पर हमला किया जा रहा है। अब ईरान पर अमेरिकी हमला बताकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि आयतुल्ला खामनेई का जनाजा मशहद पहुंचते ही अमेरिका ने यहां मिसाइल हमले कर दिए। वीडियो में भयानक आग और इसकी जगह से आसमान में काले धुएं का गुब्बार देखा जा रहा है। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि आयतुल्ला अली खामनेई का जनाजा मशहद पहुंचा तो अमेरिका ने वहां मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी तरह मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
9: दरअसल मिडल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने ईरान में 140 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात पर मिसाइली हमले किए। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो ईरान के मशहद का है, जहां पर आयतुल्ला अली खामेनेई का जनाजा पहुंचते ही अमेरिका ने मिसाइल बरसा दिए। बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिकी इजरायली एयर स्ट्राइक में अली खामेनेई की मौत हो गई थी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार वायरल किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे दावे का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने इसकी पड़ताल की, तो देखिए दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने वीडियो की तहकीकात की। फैक्ट चेक की टीम ने इंटरनेट और इंटरनेशनल मीडिया एजेंसी ने वेबसाइट्स पोर्टल को लगातार खंगाला। इस दौरान हमें यह जानकारी मिली कि 9 जुलाई को खामेनेई का अंतिम संस्कार मशहद में संपन्न हुआ और इस दौरान अमेरिका के मशहद जाने वाले रेलवे पुलों को निशाना बनाने की खबरें निकलकर आई थी, लेकिन जनाजा पहुंचते ही मिसाइल हमले की कोई जानकारी नहीं थी। क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता अपने आप में यह बहुत बड़ी खबर होती, हर मीडिया आउटलेट्स पर उपलब्ध होती, लेकिन कहीं हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर उतारा। तो देखिए पहला सवाल जाहिर तौर पर यह उठता है कि हमले का ये वीडियो कब का हो सकता है, कहां का हो सकता है। दूसरा सवाल ये कि कहीं हमले के पुराने वीडियो को ईरान अमेरिका जंग से जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
10: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये मिडिल ईस्ट आई के यूट्यूब चैनल पर मिला। यहाँ इसे 6 मई 2025 को अपलोड किया गया था। इससे एक बात तो यही साबित हो जाती है कि ये वीडियो पुराना है और हालिया घटनाक्रम से संबंधित नहीं है। डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये वीडियो यमन का है और उस वक्त का है जब इसराइल ने यहाँ के अल हुदैदा बंदरगाह और बासिल जिले पर हमला किया था। इस हमले में इसराइल के 30 से ज्यादा विमानों ने कम से कम 48 बम गिराए थे। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी की 5 मई 2025 की खबर के मुताबिक ईरान समर्पित हूती विरोधियों ने इसराइल के मुख्य हवाई अड्डे पर मिसाइल हमले किए थे। इसके जवाब में एक दिन बाद इसराइल ने यमन के बंदरगाह पर हवाई हमले किए थे। इजरायली सेना ने अपने बयान में कहा था कि उन्होंने हूती ठिकानों को निशाना बनाया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कम से कम 35 लोग घायल हो गए थे। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल वीडियो मई 2025 का है। इसराइल ने यमन के अल हुदैदा बंदरगाह और बासिल जिले पर हमला किया था और ये वीडियो इस हमले से जुड़ा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
9: फिलहाल ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार वायरल वर्ल्ड की हलचल।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
11: बस एक दिन बाद पधारने वाले हैं महाप्रभु। पुरी में जुटने लगे भक्त, दिखने लगे रंग। चार धाम में आस्था का मॉनसून। खादी वस्त्रों में कस्तूरी कॉटन की एंट्री। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
12: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
13: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
0: के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
9: वक्त तो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। आप देखिए कुछ ऐसे वीडियोज जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
10: माँ की ममता अनमोल होती है, लेकिन पिता का त्याग भी किसी मिसाल से कम नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक डिलीवरी बॉय अपनी छोटी बच्ची को सीने से बांधकर काम करता नजर आ रहा है। बच्ची की माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पिता ने उसकी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाई है। रोजी रोटी और बेटी दोनों का फर्ज निभाता ये पिता लोगों का दिल जीत रहा है।

बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी की ये तस्वीरें जबरदस्त वायरल हैं। बच्चों ने एक्टिविटी शुरू की कुर्सी से, लेकिन जब कुर्सी हटा दी गई, तब एक भी बच्चा गिरा नहीं। सब एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। जाहिर है इस एक्टिविटी के साथ बच्चे साथियों के लिए समर्पण, त्याग और कर्तव्य परायणता भी सीख ले रहे हैं, जो जिंदगी में कामयाब होने के लिए उनके लिए बेहद जरूरी है।

इस दुनिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। वायरल हो रहे इस वीडियो में ऐसा ही नजारा देखने को मिला। वीडियो में देखा जा सकता है कि भीड़भाड़ वाले इलाके में कई भारतीय जवान खड़े हैं। तभी एक छोटा सा बच्चा वहां आता है और जवान से हाथ मिलाकर उन सबको अनोखा करतब दिखाने लगता है। जिस तरह से वो करतब करता है उसे हर कोई देखने पर मजबूर हो जाता है और जवान का दिल जीत लेता है। इतनी कम उम्र में जिस तरह ये बच्चा अनोखा करतब कर रहा है वो वाकई तारीफ के काबिल है।

ये वीडियो इंटरनेट पर लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। इस वीडियो में कुछ महिला मजदूर बच्चों के साथ क्रिकेट खेलती नजर आती हैं। शुरुआत में ये सिर्फ एक साधारण मोहल्ले का मैच लगता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में खेल का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। महिलाएं जिस आत्मविश्वास और जोश के साथ बल्लेबाजी करती हैं, उसे देखकर वहां मौजूद बच्चे ही नहीं, वीडियो देखने वाले लाखों लोग भी हैरान रह जाते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही एक महिला के हाथ में बल्ला आता है, वो पूरे आत्मविश्वास के साथ गेंद का सामना करती है। इसके बाद वो ऐसे जोरदार शॉट लगाती है कि गेंद सीधे बाउंड्री की ओर चली जाती है। एक के बाद एक लगाए गए शानदार शॉट्स देखकर वहां मौजूद बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। दूसरी महिला भी पूरे उत्साह के साथ बल्लेबाजी करती है और मैदान का माहौल तालियों, हंसी और खुशियों से भर जाता है।

0: धनी भाई देखिए मोरल डाउन हो गया है आपका। हाँ एनर्जी फूट रही है, देखो कितना बढ़िया पर्वत है आपके पास। धनी भाई देखिए मोरल डाउन हो रहा है। अरे भाई साहब ये रास्ता तो बन गया।
1: अमरनाथ यात्रा का एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कठिन चढ़ाई के बीच घटी एक छोटी सी घटना ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। कुछ प्रेरणादायक शब्दों ने ऐसा असर दिखाया कि इंटरनेट पर लोग भारतीय जवान और उनके जज्बे की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में एक श्रद्धालु कठिन चढ़ाई चढ़ते चढ़ते बेहद थका हुआ नजर आता है। ऐसा लगता है कि उसके कदम अब आगे बढ़ने की ताकत खो चुके हैं। तभी वहाँ ड्यूटी पर मौजूद एक भारतीय जवान उसके पास पहुँचता है और बेहद शांत व आत्मीय अंदाज में उसका उत्साह बढ़ाने लगता है। जवान की आवाज में अपनापन और भरोसा साफ महसूस होता है, जो श्रद्धालु के चेहरे पर भी नई उम्मीद लेकर आता है।
0: अरे भाई साहब ये रास्ता तो बन गया, कैसा होगा आ जाइए इधर थोड़ा सा। हाँ ये देखो आप सीट चलने लगे, एक दूसरे का हेल्प करिए, मोरल अप करिए, चलते रहिए, रुके ना, मोरल डाउन हो रहा है।
1: जवान की सरल लेकिन प्रेरणादायक शब्द मानो थके हुए यात्रियों के लिए नई ऊर्जा का स्रोत बन जाते हैं। कुछ ही पलों में माहौल बदल जाता है और श्रद्धालु फिर से आगे बढ़ने का हौसला जुटाता दिखाई देता है।
0: हाँ ये देखो आप सीट चलने लगे, एक दूसरे का हेल्प करिए, मोरल अप करिए, चलते रहिए, रुके ना, मोरल डाउन हो रहा है आपका। जय हिंद सर, जय हिंद सर, जय हिंद जी, चलते रहिए।
1: लंबे समय तक ट्रेनिंग और मेहनत के बाद जब कोई जवान पहली बार छुट्टी लेकर अपने घर लौटता है तो उसका स्वागत किसी त्योहार से कम नहीं होता। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही भावुक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सेना में भर्ती होकर घर लौटे बेटे का उसकी माँ और गाँव वालों ने दिल खोलकर स्वागत किया। दरअसल वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि भारतीय सेना की वर्दी पहने एक जवान अपने गाँव पहुँचता है। उसे देखते ही परिवार के लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। सबसे ज्यादा भावुक उसकी मां नजर आती है, जिनकी आंखों में बेटे को देखकर गर्व और खुशी साफ दिखाई देती है। इसके बाद गांव में जश्न का माहौल बन जाता है।

सोशल मीडिया पर ये मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला और बंदर के बीच कोल्ड ड्रिंक की बोतल को लेकर ऐसी जंग छिड़ जाती है कि देखने वाले भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला किसी पहाड़ी पर्यटन स्थल पर हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर खड़ी होती है, तभी वहाँ मौजूद एक बंदर की नज़र उसकी बोतल पर पड़ जाती है। बंदर बिना किसी डर के सीधे महिला के पास पहुँच जाता है और बोतल छीनने की कोशिश करने लगता है। पहले तो महिला उसे प्यार से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन जब बंदर बार बार बोतल पकड़ने लगता है तो वो भी अपनी कोल्ड ड्रिंक बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देती है। महिला जैसे ही आगे बढ़ने लगती है, बंदर अचानक फिर से उसके पीछे पहुंच जाता है। इस बार वो ऐसा मौका देखता है कि एक झटके में कोल्ड ड्रिंक की बोतल छीनकर वहां से भाग निकलता है। जिस बोतल को बचाने के लिए महिला इतनी देर तक बंदर से भिड़ती रही, आखिरकार वही बोतल बंदर के हाथ लग जाती है। ये मजेदार पल वीडियो को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है और यही वजह है कि लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक परिवार पिकनिक मनाने नदी किनारे गया था। अचानक उनकी नज़र एक बिल्ली पर पड़ी, जो पानी के किनारे चुपचाप घात लगाए बैठी थी। जैसे ही कोई मछली पास आई, बिल्ली ने अपनी तेज फुर्ती दिखाई, पंजा मारकर उसने मछली को पानी से बाहर निकाल लिया। पूरी प्रक्रिया इतनी तेज थी कि परिवार के लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही बिल्ली अपना शिकार लेकर फरार हो गई। वीडियो में बिल्ली की एकाग्रता और सटीक हमला देखकर लोग दंग रह गए। सोशल मीडिया पर एक चीन के चिड़ियाघर से एक मजेदार मामला सामने आया है। दरअसल चीन के चोंगकिंग के लेह लुदू पार्क में युही नाम का चिंपैंजी अपनी मादा साथी से झगड़ गया था। गुस्से में उसने एक टी शर्ट उठाई और उसे पानी में डुबोकर रगड़ रगड़ कर धोना शुरू कर दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि चिंपैंजी कितनी मेहनत से कपड़े साफ कर रहा है। उसकी हरकतें बिल्कुल इंसानों जैसी लग रही हैं। वीडियो के कैप्शन में पूरे मामले की जानकारी दी गई। वीडियो तेजी से वायरल हुआ और लाखों लोगों ने इसे लाइक, शेयर और कमेंट किया।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़। और
1: क्या आप छोटी छोटी बात पर घबरा जाते हैं? क्या आत्मविश्वास के साथ समस्याओं का सामना नहीं कर पाते? क्या बार बार मुकदमेबाजी और सर्जरी के योग बन जाते हैं? कहीं आपका मंगल अशुभ तो नहीं? क्या है मंगल की शुभता अशुभता के लक्षण और क्या हैं इसके उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: Tune in to How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
4: समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से
2: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढकर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत सिंधवा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएं, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। बस एक दिन बाद पधारने वाले हैं महाप्रभु, पुरी में जुटने लगे भक्त, दिखने लगे आस्था के रंग। चारधाम में आस्था का मॉनसून, अब तक 44 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। और पारंपरिक भारतीय डिजाइन का नया अवतार, ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो के दौरान खादी में कस्तूरी कॉटन की एंट्री। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, मंदिर के बाहर उमड़ा आस्था का मेला, भगवान दे रहे नवयौवन दर्शन। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक 44 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। बद्रीनाथ में करीब 15 लाख श्रद्धालु। दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्सटाइल एक्सपो का शुभारंभ, 17 जुलाई तक चलेगा कार्यक्रम, देश विदेश से जुटेंगे उद्योगपति। जैसलमेर रेलवे स्टेशन का हुआ कायाकल्प, विरासत और आधुनिकता का दिखा अनोखा संगम, 140 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास। जयपुर बना दुनिया का छठा सबसे खुशहाल शहर, टाइम आउट 2026 की टॉप 10 लिस्ट में शामिल, पिंक सिटी के बाद मिला एक और टाइटल। आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की ही बात करेंगे, जो 16 तारीख से देश भर में बड़ी धूमधाम के साथ निकाली जाएगी। लेकिन रथ यात्रा को लेकर जैसी रौनक ओडिशा के पुरी में देखने को मिल रही है, वैसी कहीं और नहीं। आज परंपरा के मुताबिक 15 दिनों तक अस्वस्थ रहने के बाद पहली बार महाप्रभु जगन्नाथ ने भक्तों को नवयौवन दर्शन दिए। इस बीच रथ यात्रा का जिम्मा संभाल रही तमाम एजेंसियों ने तैयारियों को परखने के लिए मॉकड्रिल भी की, ताकि रथ यात्रा का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा सके।

0: बस एक दिन बाद भगवान जगन्नाथ के शहर पुरी में आस्था और भक्ति का अनंत सैलाब उमड़ने वाला है। पुरी की सड़कों पर चारों तरफ भक्तों की भीड़ होगी और होगा उत्सव का माहौल, जिसमें क्या आम और क्या खास, हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को बेताब है ताकि महाप्रभु के मनोहारी दर्शन का लाभ उठा पाए। इस रथ यात्रा के शुरू होने से पहले होने वाली पूजा पाठ और अनुष्ठान जोर शोर से मंदिर में चल रहे हैं। इसी कड़ी में आज 15 दिन बाद स्वस्थ होकर महाप्रभु ने भक्तों को नव यौवन दर्शन दिया, जिसके बाद मंदिर के सेवायतों ने ये सुखद खबर पुरी के राजा को दी कि भगवान जगन्नाथ अब पूरी तरह ठीक हो गए हैं।
1: ये नवयौवन दर्शन है और नेत्रोत्सव भी है। भगवान जो बुखार में थे, भगवान का तबियत ठीक नहीं था, अनासर में थे, भगवान का तबियत आज ठीक हो गया है। भगवान आज पहली बार आज भगवान आ रहे हैं और भगवान आज ठीक हो रहे हैं, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। आज भगवान कैसे भक्तों को कैसे पहली बार दर्शन कर रहे हैं।

0: हैं, इसके बारे में पूरा बात करेंगे, हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं।
1: आज राजदरबार में क्यों गए थे? राजदरबार भगवान का प्रसाद लेके गया था, इसको बोला महाराज आप प्रसाद लीजिए, हमारा दरवाजा आज खोलेगा।
2: क्यों?
1: क्या भगवान दवाई खा के अच्छा हो गया, इसलिए भगवान का अच्छा हो गया,
2: संदेश लेके गए,
1: एक संदेश लेके गया था, भगवान अच्छा हो गया, अब भगवान दरवाजा खोलेगा, पट खोलेगा। ठीक, कोई बात नहीं, पट खोल दियो।
3: भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू होगी, जो 24 जुलाई तक विभिन्न पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ संपन्न होगी। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक यात्रा करेंगे और वहीं गुंडीचा मंदिर में 9 दिन विश्राम करेंगे। इसके बाद बहुधा यात्रा के रूप में महाप्रभु वापस अपने मुख्य मंदिर लौटेंगे। इन 9 दिनों के दौरान पुरी में जैसा भक्तिमय माहौल देखने को मिलता है, वैसा कहीं और नजर नहीं आता। इसलिए ये रथ यात्रा सनातन परंपरा के सबसे भव्य और आस्थावान उत्सवों में गिनी जाती है।
0: गुंडीचा माँ के साथ भगवान का क्या रिश्ता है, कैसे क्यों मिलने जा रहे हैं?
4: गुंडीचा माँ जिसको बोलते हैं, वो राजा इंद्रदुम्न का पत्नी थे, अवंती का राजा जो थे राजा इंद्रदुम्न, वो दर्शन करने के लिए जगन्नाथ पुरी आए थे। तब नील माधव का दर्शन नहीं हुआ, भगवान स्वप्नादेश देकर दारवी तन धारण करके उनको दर्शन दिया, जो विग्रह बना दिया गया 14 दिन में। विश्वकर्मा खुद जगन्नाथ जी वो कारपेंटर के रूप में आए थे और खुद को बनाया, और वही स्मृति के लिए भगवान जब बर उनको जो जाचा कि त्रिभुवन में ऐसा बर जो कि अमर बर, वो प्रदान किया कि वो जोड़ हस्त में वो मना किया कि भगवान यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हो आप है तो मुझे निबंस कर दीजिए, और हर साल आपका जन्म वेदी जो गुंडीचा मंदिर यहाँ आप कृपा करके पधारिए। ये वचन को निभाने के लिए भगवान घोष यात्रा में वहाँ 9 दिनात्मक यात्रा में गुंडीचा मंदिर में जाते हैं।
3: पुरी की ये रथ यात्रा इसलिए भी बहुत विशेष है क्योंकि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपने मंदिर से बाहर आकर आम भक्तों से मिलते हैं। यही वजह है कि इस रथ यात्रा के लिए बड़ी संख्या में भक्तों के पुरी पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया है। देश ही नहीं, विदेशी धरती से भी जगन्नाथ भक्त पुरी दौड़े चले आ रहे हैं। मान्यता है कि जो श्रद्धालु सच्चे भाव से रथ की रस्सी खींचता है, उसके पाप धुल जाते हैं और मोक्ष का मार्ग खुलता है। यही वजह है कि हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं।
0: भगवान का ये रथ यात्रा क्यों मनाया जाता है?
4: रथ यात्रा मनाया जाता है क्योंकि जो लोग मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, वो लोगों का दर्शन करने के लिए जो पतित जन होते हैं, और सब लोगों को भगवान आलिंगन करने के लिए, दर्शन देने के लिए, उनको पावन बनाने के लिए ये पावन यात्रा, पतित पावन यात्रा, इसको घोष यात्रा कहा जाता है। नंदी घोष रथ में भगवान जगन्नाथ जी बैठते हैं, ताल ध्वज में बलदाव जी बड़ा भैया बैठते हैं, और देवी रथ बा दर्पदलन रथ में सुभद्रा मैया बैठते हैं। बैठ के भक्त लोगों को, जो विधर्मी लोग है जो कि साल भर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, उन लोगों को पावन करने के लिए भगवान का ये यात्रा अनुष्ठित होता है।
0: आप देख सकते हैं देश का हर कोने से भक्त यहाँ जुड़ रहे हैं, कैसे भगवान का ये भव्य लीला को देखेंगे, भगवान का ये भव्य रथ यात्रा को देखेंगे। इसलिए छोटे से लेकर बूढ़े पूरा यहाँ भीड़ जमा रहे हैं, कैसे भगवान का ये रथ यात्रा को देखेंगे, कैसे इसमें शामिल होंगे, और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह की टाइट किया जा रहा है ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो, भीड़ में कुछ असुविधा ना हो।
3: वही 16 तारीख को पुरी में आयोजित होने वाली रथ यात्रा से पहले एजेंसियों ने मॉक ड्रिल भी की, जिसमें भगदड़ या फिर किसी तरह की प्राकृतिक आपदा से निपटने की तैयारियों को न सिर्फ परखा गया बल्कि एजेंसियों के बीच तालमेल बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया।
5: बेसिकली बिहेवियरल एस्पेक्ट में ब्रीफ किया है कि जैसे टेंपल इनसाइड है उनका बिहेवियर टुवर्ड्स डिवोटीज दैट शुड बी लाइक फैसिलिटेशन करना है, उनको अच्छे से दर्शन कराना है, उनको गुड बिहेवियर देना है, तो एक हैसल फ्री दर्शन हो पाएगा और एक उनका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी रह पाएगा, उसके लिए हमने इंतजाम किया है।
3: भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर देश के दूसरे शहरों में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अहमदाबाद से लेकर देवघर तक और अकोला से लेकर उदयपुर तक महाप्रभु के महा उत्सव का जश्न बस कुछ घंटों बाद शुरू होने वाला है। पुरी से अजय नाथ, अहमदाबाद से अतुल तिवारी, देवघर से शैलेंद्र मिश्रा और उदयपुर से पंकज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: और अगली खबर चारधाम यात्रा से जुड़ी, जिसकी शुरुआत साल 19 अप्रैल से हुई थी और अब तक 44 लाख से ज्यादा लोग चार धाम की यात्रा कर चुके हैं। जून के आखिरी हफ्ते में उत्तराखंड में मॉनसून एक्टिव होने के बाद कई बार ये यात्रा बाधित हुई, लेकिन यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के जोश और उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिली।

0: वही जोश, वही उत्साह और वही उमंग जो नजर आ रही है चार धाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों में। ये हाल किसी एक धाम पर जाने वाले तीर्थयात्रियों का नहीं है, बल्कि चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं का है, जो देश के अलग अलग हिस्सों से देवभूमि की इस पवित्र यात्रा पर रोजाना आ रहे हैं। ये ताजा तस्वीरें बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की हैं, जहां खराब मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं। हालांकि शुरुआती दिनों के मुकाबले इस वक्त थोड़ी भीड़ कम जरूर हुई है, लेकिन तीर्थ यात्रियों के जोश में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है।
1: पहाड़ों में भले ही मानसून सक्रिय है और लगातार बारिश हो रही है, बावजूद इसके बाबा केदार की यात्रा लगातार जारी है। अभी तक 14 लाख से अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। मानसून सीजन के चलते इन दिनों कुछ हद तक धाम पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या में कुछ कमी आई है। बावजूद इसके हर रोज 1500 के आसपास तीर्थ यात्री बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं।
0: इस साल चार धाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल को हुई थी। पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे, फिर 22 अप्रैल को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे, जबकि 23 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले थे, जिसके बाद से ही रोजाना हजारों की संख्या में लोग इस यात्रा पर पहुंचे हैं। इसी की बदौलत अब तक चार धाम जाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 44 लाख को पार कर चुका है, जिनमें सबसे ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंचे हैं। वहां अब तक 14,82,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। वहीं बाबा केदारनाथ के धाम में अब तक 14,03,000 से ज्यादा भक्त दर्शन कर चुके हैं, जबकि हर रोज 1300 से 1500 के आसपास भक्त केदार के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। बात अगर गंगोत्री धाम की करें तो वहां अब तक 6,91,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि यमुनोत्री धाम में अब तक 6,41,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।
2: ये प्रथम चरण की यात्रा थी, उसमें करीब 14 लाख लोगों ने अभी तक दर्शन कर चुके हैं और मानसून के बाद भी जिस प्रकार का मानसून का रवैया है, उसके बाद भी अच्छे दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तो इस बार अभी क्या है कि बरसात का सीजन है, जगह जगह स्लाइडिंग जोन होते हैं, तो इस बार पूर्व की भांति भी और इस बात को सावधानी करते हुए लोग जो है जगह जगह पर जागरूक किया जा रहा है कि किस समय जाना चाहिए, बारिश के टाइम पे कैसे जाना चाहिए, लोग बारिश के टाइम पे रुकना चाहिए। कई प्रकार की बातें हैं, अलग अलग हमारे जितने भी प्रशासन के लोग वहां पर लगे और हमारे समिति के कुछ लोग हैं, तो वो लोग जो है समय समय पर यात्रियों को सुविधा देने का काम कर रहे हैं।
0: 19 अप्रैल से अब तक कई बार मौसम का बिगड़ा मिजाज इस यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की परीक्षा ले चुका है, खास तौर पर जून के आखिरी हफ्ते से, जब से राज्य में मॉनसून एक्टिव हुआ है। तब से बारिश और लैंडस्लाइड ने कई बार यात्रा में खलल डाला है, जिसके चलते कुछ देर के लिए यात्रा भी रोकनी पड़ी है, मगर चारधाम यात्रियों के जोश और उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिली है।
3: इस तरफ आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं यमुनोत्री नेशनल हाईवे के बड़कोट में और ये यात्री पंजीकरण जांच केंद्र है और यहाँ पर ये यात्रियों के वाहनों की कतार आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है पुलिस के द्वारा एहतियातन इन वाहनों को रोका गया है। कितने राउंड आपने आप लगा चुके हैं चार धाम के?
4: सर मैं चार धाम के 5 राउंड लगा चुका हूँ चार धाम के, और बाकी 2 धाम के मैं लगा दिए 3 और 1 धाम के लगाए मैंने 4।
3: एक समझदार नागरिक की यही पहचान होती है कि एहतियातन पुलिस के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि आपको यहाँ पर रुक जाना चाहिए। तो वैसे ही तीर्थयात्रियों का और वाहन संचालकों का भी कहना है कि हमको जो है जो दिशा निर्देश मिल रहे हैं उनको फॉलो करना है।
0: हर साल मॉनसून सीजन में चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यात्रा का जिम्मा संभाल रही एजेंसियां मॉनसून सीजन को लेकर भी खास तैयारी करती हैं, जिससे यात्रा पर ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता है। यही वजह है कि मॉनसून के इस सीजन के दौरान भी ये यात्रा पूरे जोश और उत्साह के साथ जारी है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा और देहरादून से अंकित शर्मा, गुड न्यूज टुडे।
5: और अब बात करते हैं दिल्ली में आज से शुरू हुए ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स की, जहां पारंपरिक भारतीय डिजाइनों का नया अवतार देखने को मिल रहा है। साड़ियों और लहंगों पर दिखने वाले डिजाइन अब वेस्टर्न आउटफिट्स में उतारे जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी डिमांड विदेशी मार्केट में भी बढ़ गई है। 14 जुलाई से 17 जुलाई तक चलने वाले इस आयोजन में खादी के परिधानों में कस्तूरी कॉटन की एंट्री हो गई है, जो कभी बाजार से लगभग गायब हो चुकी थी। फास्ट फैशन के इस दौर में पर्यावरण संरक्षण का संतुलन बनाने की भी कोशिश है।

0: 16 लाख वर्ग फुट की छत के नीचे 1,30,000 से ज्यादा व्यापारियों के जमावड़े का उद्देश्य बेहद खास है। भारत टेक्स के बैनर तले देश की टेक्सटाइल ताकत दुनिया के सामने दिखाई जा रही है। दिल्ली के भारत मंडपम में कपड़ा उद्योग से जुड़ी पूरी दुनिया एक छत के नीचे सिमट आई है। देश के सबसे बड़े ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो की चकाचौंध के बीच 7,000 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस मेगा इवेंट का मकसद देश के कपड़ा उद्योग से जुड़े कपड़ा निर्माताओं, खरीदारों, निवेशकों और डिजाइनरों का अंतर्राष्ट्रीय मंच मुहैया कराना है। उनके उत्पाद के साथ तकनीक के इस्तेमाल को भी दुनिया के सामने लाना है। ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो में ऐसे कई डिजाइनर्स हैं जो देश के छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के बुनकरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्पाद दिखाने का मौका दे रहे हैं। पारंपरिक डिजाइनों को वेस्टर्न आउटफिट पर उतार रहे हैं ताकि नए अवतार की वजह से उनकी कला बच सके।
1: अमूमन इस तरह के डिजाइन आप इंडियन ट्रेडिशंस में किसी लहंगे पर देखते हैं, सूट पर देखते हैं या साड़ी पर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये डिजाइन एक वेस्टर्न ड्रेस पर दिखाई पड़ रहा है। शैना मेरे साथ में है जो कि निफ्ट से टेक्सटाइल डिजाइनिंग इन्होंने की है और ये सारी डिजाइंस इनकी हैं, बहुत क्रिएटिव हैं और बहुत नयापन आपको इसमें दिखाई पड़ता है। कोशिश ये है कि पहला कि जो भी ये बनाएंगी वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा, दूसरा लोकल आर्टिसंस को कैसे कनेक्ट किया जाए नई डिजाइन के साथ, ये भी कोशिश शैना करते हुए दिखाई पड़ रही है। तो क्या कुछ नया आप यहाँ पर लेके आए?
2: मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा जो एक्सपोर्ट के और बाहर के ब्रांड्स हैं वहाँ से इंस्पायर्ड होकर ड्रेसेस को पैनल प्रिंट जैसे कि एम्ब्रॉयडरी, एम्बेलिसमेंट, सरफेस टेक्निक, मैं वो सारे ट्राई करूँ और वेस्टर्न ड्रेसेस पे उसको इनबिल्ड करूँ और न्यू तरीके से उसको शो करूँ ताकि वो अच्छा लगे और रिप्रेजेंटेटिव हो न्यू वे में।
1: ट्रेडिशनल डिजाइन को या फिर जो उसका तरीका है, जैसे हम जो भी आर्ट वर्क देख रहे हैं साड़ी पर होता था, लहंगे पर होता था, इन्हें वेस्टर्न पर लाने का रीज़न क्या था?
2: वो पीपल थिंक कि इंडियन ड्रेसेस, बीड वर्क एंड ऑल सिर्फ साड़ियाँ और सलवार सूट पे अच्छे लग सकते हैं। देन आई थिंक कि वाई कांट वी मिक्स इट अप एंड कंटेम्पराइज एंड मेक इट इंडो वेस्टर्न।
0: कपड़ों के डिजाइन में क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं। पारंपरिक तौर पर कपड़ों की डिजाइनिंग और प्रिंटिंग में पानी की भारी बर्बादी होती है। कपड़ों की डिजाइनिंग यानी कि उनकी रंगाई में सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, फिर कपड़े को चमकाने और मुलायम बनाने में भी भारी पानी बहता है। कपड़ों से अतिरिक्त रंग और रसायनों को हटाने के लिए भी पानी से बार बार धुलाई करने की जरूरत होती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कपड़ों पर तरह तरह के डिजाइन प्रिंट करने वाली ये मेड इन इंडियन मशीन क्रांतिकारी साबित हो रही है।
1: कहा जाता था कि पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पानी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता था, किसी भी कपड़े को साफ करने में, उसे डाई करने में या फिर उसको प्रोसेस करने में, लेकिन अब एक ऐसी मेक इन इंडिया मशीन तैयार कर दी गई है जिसमें जीरो वाटर यानी कि बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं होता है। आप आसानी से इससे कपड़ों के ऊपर प्रिंटिंग कर सकते हैं। मेरे साथ अरुण वासने जी हैं। सर, बिल्कुल नई तकनीक, कितना फ़ायदा एनवायरनमेंट को?
3: देखिए, ये बहुत ही इनोवेटिव टेक्निक है जिसमें हम आज तक, जैसा आपने बताया कि प्रिंटिंग के दौरान, डाइंग और प्रिंटिंग ही ऐसे दोनों सेगमेंट हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जिसमें सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन और डिस्चार्ज होता है। कलरजेट एक इंडिया का ब्रांड है और हिंदुस्तान में हम लोग ने R&D करके ये मशीन बनाई है और लगभग 40 से 50 मशीन हम हिंदुस्तान में सप्लाई कर चुके हैं। इस प्रोसेस के अंदर हम ना तो स्टीमिंग ना वॉशिंग का तकनीक जो ट्रेडिशनल प्रिंटिंग में यूज़ होता है, और आपकी जो कलर की जो गैमेट है और जो कलर का रिसेप्शन है वो बिल्कुल ही नायाब तरीके से मिलता है।
1: सर, थोड़ा मशीन भी देख लेते हैं। ये हम आपको क्वालिटी दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो इस मशीन के जरिए जो प्रिंट होकर जो कपड़ा आया है वो किस तरह का। देखिए, क्वालिटी में आपको कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ेगा। प्रिंटिंग बहुत साफ, बहुत बारीक है। अब मशीन आपको हम दिखाते हैं जो कि इंडिया में ही बन रही है और इंडियन जो पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको चेंज करने की कोशिश कर रही है। तो सर, ये पूरी मशीन जो है, ये हम देख रहे हैं, इसको बनाने में, इनोवेट करने में आप लोग को कितना समय लगा?
3: देखिए, ये 3 दशकों से ये कंपनी कलरजेट डिजिटल प्रिंटिंग में है और किस पिछले करीब 5 या 7 साल पहले ही हमने ये इनोवेशन निकाला है। इसके अंदर हम जो कलर है वो इंक जेट प्रिंटिंग के माध्यम से आपका कपड़े के ऊपर आता है और इसमें 8 बेसिक कलर होते हैं और उस आठों कलर के कॉम्बिनेशन से आप मिलियंस ऑफ कलर बना सकते हैं। तो वो बहुत ही आज के डेट में जो भी डिज़ाइनर्स हैं, नई तरह से ब्रांड्स हैं, उनको अपने डिज़ाइंस जल्दी जल्दी चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि फास्ट फैशन का ज़माना है। कंज्यूमर चाहता है कि मैं अपने कपड़े जल्दी जल्दी नए तरह के बनाऊं, तो उसमें डिजिटल प्रिंट का काफ़ी बड़ा योगदान है।
1: सर, पहले जो एक ट्रेडिशनल प्रिंटिंग हुआ करती थी, डाइंग हुआ करती थी, आपके ख्याल से उसमें कितने पानी का इस्तेमाल होता था, जो कि अब ज़ीरो हो गया?
3: हाँ, मतलब आप देखिए,
1: फ़र्क मतलब क्या है?
3: फ़र्क ये है कि अगर उसमें 100 लीटर लगता था, तो इसमें आप मान के चलिए मतलब 1 लीटर भी नहीं लगेगा।
0: अब खादी केवल राजनेताओं और बुजुर्गों का पहनावा नहीं रही, आधुनिक डिजाइन्स, फैशनेबल कट्स और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की तरफ आकर्षित देश के युवाओं के बीच खादी एक बड़ा फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। कस्तूरी कॉटन की भी अपनी एक अलग ही कहानी है। एक वक्त पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से गायब हो चुकी थी खादी, कस्तूरी कॉटन के लिए एक नया जीवन लेके आई है।
1: मेरे पीछे जो वॉल देख रहे हैं आप, इस वॉल पर खादी की पूरी यात्रा दिखाई गई है कि खादी किस तरह से भारत में शुरू हुआ और फिर कैसे कैसे उसकी यात्रा आगे बढ़ती है। स्वदेशी था पहले, फिर धीरे धीरे ग्लोबल हुआ। लेकिन खादी को अभी जब हम उसकी बात करते हैं, तो हम समझते हैं कि खादी सिर्फ वही है जो पॉलिटिशियंस पहनते हैं, नेता पहनते हैं। खादी को अभी भी एक ऐसे फैशनेबल ब्रांड में बदलने की कोशिश की जा रही है जिससे यूथ कनेक्ट हो पाए, जिससे यंग लोग जुड़ पाएँ, और ऐसी एक कोशिश सफल होती हुई हमें यहाँ दिखाई पड़ रही है भारत टेक्स में। आप देखिए कि पहले जो खादी, अभी भी जो खादी आता है, अधिकतर वो बहुत मोटा होता है देखने में, चाहे उसको कुर्ता लें आप या शर्ट लें। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि खादी में एक कॉटन जिसका नाम है कस्तूरी कॉटन, उसको मिक्स किया गया और उसके ज़रिए इतने सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स, इस तरह के कपड़े तैयार किए गए हैं जो देख कर, छू कर, पहन कर एहसास ही नहीं होता कि इसे आप खादी है। देखिए ये शर्ट है, और ऐसे फाइन डिज़ाइंस आपको खादी में यूजुअली नहीं मिलते थे, अभी भी नहीं मिलते हैं, बहुत रेयर है ये। ऐसे ही देखिए आप कितने सारे डिज़ाइन के कॉम्बिनेशन हैं, कितने कलर कॉम्बिनेशन हैं, ना सिर्फ शर्ट्स में बल्कि ट्राउज़र्स भी जो आप देख रहे हैं, ये भी खादी से ही बनाई गई है। ये तो एक बात रही खादी की, कि खादी को कैसे यूथ है उससे कनेक्ट किया जा रहा है। मैं आपको एक बार डिज़ाइन भी इसके दिखा देता हूँ कि आजकल के जो डिज़ाइन चल रहे हैं, जो कि यूथ को, यंगस्टर्स को, जेंजीज को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, वो डिज़ाइन आपको खादी में मिल जाएंगे।
0: 16 लाख वर्ग फुट में 20,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को शोकेस किया गया है। 4 दिनों तक चलने वाले आयोजन में 14 देशों की कंपनियां और 20 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद बखुद लगती हैं। नवजोत सिंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
6: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
7: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
6: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
8: They score!
6: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे मंगल के लक्षणों की, मंगल की शुभता और अशुभता के प्रभाव क्या होते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रातः 11:50 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, रात के 9:46 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 15 जुलाई बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में, चंद्रमा और बृहस्पति कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं मंगल के लक्षणों के बारे में। किन लक्षणों से जान सकते हैं कि हमारा मंगल शुभ है या अशुभ है? तो सबसे पहले कैसे जानें कि हमारा मंगल खराब है? देखिए, मंगल अगर अशुभ होगा, मंगल अगर खराब होगा तो व्यक्ति क्रूर और हिंसक स्वभाव का होगा, वायलेंट होगा, क्रोध तुरंत प्रकट होगा। मंगल अगर गड़बड़ है तो आत्मविश्वास और साहस का जो स्तर है, आत्मविश्वास और साहस का जो लेवल है वो कमजोर हो जाएगा। व्यक्ति को संपत्ति और जमीन के मामले में, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और अगर मंगल गड़बड़ होगा तो व्यक्ति को रक्त संबंधी समस्याएं, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम परेशान करेंगी। मंगल अगर गड़बड़ है तो अक्सर कर्ज और मुकदमेबाजी जीवन में लगी रहेगी। और ज्यादा अशुभ अगर मंगल हुआ तो आपको जेल भी जाना पड़ेगा, जेल के दर्शन हो सकते हैं। अगर विवाह भाव से मंगल का संबंध हो और मंगल नकारात्मक हो तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है,
वैवाहिक जीवन में मुकदमेबाजी, मारपीट, तलाक, डिवोर्स, ये सब स्थितियां पैदा हो जाती हैं। मंगल पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, रिश्तों की समस्या पर ध्यान दें, अनावश्यक तनाव न पालें, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, करियर की समस्या हल होगी, मन की चिंताएं दूर होंगी, आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, आर्थिक लाभ होने के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य हो सकते हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर में लाभकारी बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर चिंता ना करें, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तो मंगल जब अशुभ होगा तो क्या प्रभाव होगा वो आपने जाना। अगर आपका मंगल अनुकूल है, शुभ है, तो इसके क्या प्रभाव होंगे? अगर मंगल शुभ है, अनुकूल है, तो व्यक्ति साहसी और उदार होगा, दूसरों की सहायता करेगा, बड़ा कॉन्फिडेंट होगा, उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़िया गजब का होगा। मंगल अगर अच्छा होगा तो व्यक्ति को साहस के क्षेत्र में, तकनीक यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जीवन में ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। जब मंगल शुभ होता है तो व्यक्ति धनवान होता है और उसके पास प्रॉपर्टी काफी होती है, काफी जमीन जायदाद उसके पास रहती है। और मंगल के अच्छा होने पर व्यक्ति का पारिवारिक संबंध, फैमिली के साथ रिलेशन बेहतर बना रहता है। नॉर्मली जिनका मंगल शुभ होता है उनके जीवन पर एक सुरक्षा हमेशा रहती है और ऐसे लोगों को सामान्यतः कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। सामान्यतः उम्र के 28 साल के बाद इनको जीवन में ज्यादा सफलता मिलती है। तो अगर आपका मंगल शुभ है तो दो लक्षण जरूर है उसके, आपके अंदर साहस और आत्मविश्वास बहुत होगा। और अगर मंगल आपका शुभ स्थिति में है तो व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी, जमीन, ये ज्यादा होने की संभावना रहती है। मंगल पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे
एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, यात्राओं से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, स्थान परिवर्तन हो सकता है, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, कोई बड़ी समस्या आपकी हल होगी, धन लाभ की स्थिति बन रही है, जीवन साथी को लाभ होगा, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, रिश्तों की समस्या दूर होगी, करियर की रुकावट दूर होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य बेहतर होगा, स्वास्थ्य का लाभ होगा, कोई मनोकामना पूरी होगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, गणेश जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तो आपने अगर लक्षणों से ये जान लिया, लक्षणों से ये समझ लिया कि मंगल आपका अशुभ है, मंगल आपका गड़बड़ है, तो क्या उपाय करेंगे? मंगलवार का उपवास रखना शुरू करिए, मंगलवार का व्रत रखिए और इस दिन नमक का सेवन मत करिए, इस दिन नमक मत खाइएगा। एक नियम बना लीजिए, रोज सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करिए, एक बार सुबह और एक बार शाम को। मंगल के मंत्र का जप मध्य दोपहर में करिएगा, ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। जमीन पर या जमीन के निकट सोने का प्रयास करिए, लो फ्लोर की पलंग पर या जमीन पर दरी और बिस्तर डालकर सोइए, भूमि की ऊर्जा से आपका मंगल बेहतर होगा। और मंगल को बेहतर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि भाई बहनों के साथ अपने रिश्ते आपको बेहतर बनाए रखने चाहिए। अगर आप मंगल को अच्छा रखना चाहते हैं तो नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़िए और परिवार में रिश्तों को ठीक बनाए रखिए। अगर मंगल बहुत ही ज्यादा खराब है, मंगल अगर मारक है, जीने मरने का प्रश्न पैदा कर रहा है, तब मंगल के लिए कुमार कार्तिकेय की पूजा की जाती है। कुमार कार्तिकेय की पूजा करने से आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, व्यर्थ का तनाव मत पालिए, जल्दबाजी में काम करने से बचें,
परिवार के बड़ों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, काम की अधिकता रहेगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, नया काम कर सकते हैं, सेहत अच्छी होती जाएगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, मंगल की अशुभता सबसे ज्यादा दो जगहों पर दिखाई देती है। अगर मंगल ज्यादा अशुभ हो, ज्यादा नकारात्मक हो, तो जीवन में सर्जरी होने की, दुर्घटना होने की और मुकदमेबाजी की संभावना जरूर बनती है। और दूसरे नंबर पर मंगल, अगर मंगल दोष पैदा कर रहा हो या विवाह के मामले में असर डाल रहा हो, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। तो अगर मंगल इतना ज्यादा खराब है कि आप मुकदमे में उलझे हुए हैं या बार बार सर्जरी हो रही है, तब आप भगवान कार्तिकेय की पूजा करिए, जिनको सुब्रमण्यम स्वामी भी कहते हैं, उनकी पूजा करना बहुत उत्तम होगा। और अगर कुंडली में मंगल दोष की वजह से या मंगल की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, तब आप मंगल के मंत्र का जप करें, ओम अंग अंगारकाय नमः या ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जप करें। यानी मंगल को शांत करने के लिए, मंगल की खराब से खराब स्थिति से निपटने के लिए भगवान कार्तिकेय की पूजा और मंगल का मंत्र जप करना अनुकूल होगा। तो आज हमने बात की मंगल के शुभता और अशुभता के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य के लिए एक लकी टिप। अपने घर के बाथरूम को हमेशा साफ सुथरा रखिए और प्रयोग करने के बाद इसका दरवाजा बंद रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे घर में लोगों का स्वास्थ्य हमेशा बेहतर बना रहेगा। अब जान लेते हैं दिनांक 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को लड्डू अर्पित करिए, कोई भी लड्डू, और घर से निकलते समय उस लड्डू को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।
नमस्कार।

0: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
1: Right field, and it will.
0: From the first pitch of the season to the stretch run.
1: And that's the ball game.
0: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: बात सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे खास वीडियो की करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्लोवाकिया दौरे के दौरान स्लोवाक नेशनल काउंसिल के चेयरमैन रिचर्ड राशी को बिहार का पारंपरिक ठेकुआ तोहफे में दिया। इसके बाद स्लोवाक नेता ने इस खास गिफ्ट का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। रिचर्ड राशी ने शेयर किए वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी से मिले पारंपरिक बिहारी ठेकुआ की झलक दिखाई। वीडियो में वो खूबसूरती से सजे लकड़ी के डिब्बे को खोलते हुए नजर आते हैं। उन्होंने इस गिफ्ट को सामान्य कूटनीतिक तोहफों से बिल्कुल अलग बनाया। नगरी आगरा से यूपी पुलिस की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई। ताजमहल पर तैनात ताज सुरक्षा पुलिस ने एक बार फिर से अतिथि देवो भव और वासुदेव कुटुंबकम की भावना का की नजीर पेश की है। अर्जेंटीना से पर्यटक का एक दल ताजमहल के पश्चिमी गेट पर पहुंचा। इस ग्रुप में शामिल एक विदेशी महिला भारतीय संस्कृति के रंग में रंग कर साड़ी पहनकर आई थी, लेकिन साड़ी संभालने का तरीका न पता होने की वजह से वो काफी असहज महसूस कर रही थी। विदेशी मेहमान को परेशान देख ड्यूटी पर तैनात महिला आरक्षी गुड्डी देवी तुरंत मदद के लिए आगे आई। उन्होंने बड़ी आत्मीयता से विदेशी महिला की साड़ी को ठीक किया और उसे कंफर्टेबल महसूस करवाया। और बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच बढ़ते व्यापारिक रिश्ते की करेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापारिक सहयोग को मजबूत बनाने के लिए भारत का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल न्यूजीलैंड पहुंचा, जिसमें ताला नगरी अलीगढ़ की भी मौजूदगी रही। शहर के जाने माने उद्योगपति और हैरिसन ग्रुप के सीईओ उमंग मोंगा भी इस 15 सदस्यीय भारतीय डेलीगेशन का हिस्सा बने। इस बेहद अहम दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की संभावनाओं को तलाशने और नए इन्वेस्टमेंट्स को लेकर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि इस दौरे के बाद अलीगढ़ के उद्योगों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए दरवाजे खुलेंगे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: क्या गुप्त नवरात्रि सामान्य नवरात्रि से ज्यादा शक्तिशाली है? क्या गुप्त नवरात्रि में कोई भी साधना कर सकता है? गुप्त नवरात्रि में साधना और पूजा का क्या है विधान और कौन से मिलेंगे इसमें वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है।
1: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। रहा जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होते हैं, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
1: पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, मंदिर के बाहर उमड़ा आस्था का मेला, भगवान दे रहे हैं नवयौवन दर्शन। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक 44 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए, बद्रीनाथ में करीब 15 लाख श्रद्धालु। दिल्ली दिवाली के भारत मंडपम में भारत टेक्सटाइल एक्सपो का शुभारंभ 17 जुलाई तक चलेगा कार्यक्रम, देश विदेश से जुटेंगे उद्योगपति। जैसलमेर रेलवे स्टेशन का हुआ कायाकल्प, विरासत

0: आषाढ़ माह की अमावस्या पर गंगा स्नान करने से सभी शुभ कार्य और जप तप का अक्षय पुण्य प्राप्त होने की मान्यता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने, उसके बाद जल में काले तिल और कुश मिलाकर पितरों को तर्पण देने से पितृ दोष दूर होने के साथ परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। आषाढ़ अमावस्या के स्नान को लेकर संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर विशेष व्यवस्था भी नजर आई। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रियों का पवित्र गुफा में पहुंचने का क्रम जारी है। कड़ी सुरक्षा और सुविधाओं की दुरुस्त व्यवस्था के साथ पहलगाम और बालटाल के रास्तों से अमरनाथ यात्री पवित्र गुफा तक पहुंच रहे हैं। अमरनाथ यात्रा में अब तक श्रद्धालुओं की संख्या 3 लाख तक पहुंच चुकी है। इन सबके बीच में राजस्थान के जयपुर से पैदल यात्रा कर रहे 13 श्रद्धालुओं का एक जत्था 33 दिन की यात्रा के बाद काजीगुंड पहुंचा। सभी तीर्थयात्री यात्रा को लेकर की गई व्यवस्था और सुरक्षा की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रीनगर में आस्था की एक और तस्वीर देखने को मिली। ये वो श्रद्धालु है जिन्होंने दिल्ली से कश्मीर तक साइकिल चलाकर अमरनाथ यात्रा पूरी की। बारिश का सिलसिला बंद होने से चारधाम यात्रा में एक बार फिर से श्रद्धालुओं की अच्छी संख्या नजर आ रही है। केदारनाथ धाम में बारिश थमने के बाद अब एक बार फिर से चहलकदमी बढ़ गई। श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर मंत्रमुग्ध दिखाई दे रहे हैं। इस सीजन में 14,03,000 से ज्यादा यात्री बाबा केदार के दर पर पहुंच चुके हैं। बारिश के दौरान यात्रियों की संख्या में कुछ कमी भले ही आई हो, लेकिन यात्रा बाधित नहीं हुई। बाबा बद्री विशाल के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुओं का बद्रीनाथ धाम पहुंचना जारी है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए आ रहे हैं। यहाँ भी बारिश को लेकर श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं देखी गई, लेकिन अब फिर से अच्छी खासी संख्या में श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। इस साल 14,82,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। वहीं सिखों के पवित्र स्थल श्री हेमकुंड साहिब में 1,92,000 से ज्यादा श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। राजस्थान में मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम कहे जाने वाले श्री सांवलिया सेठ मंदिर के मासिक भंडार की गिनती शुरू होने के पहले ही दिन 10 करोड़ रुपयों से ज्यादा की नगद राशि सामने आई। हर बार की तरह इस बार भी चतुर्दशी को दान पात्र खोले गए और बैंक कर्मियों समेत मंदिर मंडल के कर्मचारियों ने पूरे दिन नगद राशि की गिनती की, जिसमें पहले चरण में 10,11,83,000 रुपए की नगद राशि की गिनती हुई। ये राशि केवल दान पात्रों से प्राप्त नगद दान का एक हिस्सा है, बाकी चढ़ाओं की गिनती और मूल्यांकन अभी बाकी है। अमावस्या के चलते धार्मिक परंपरा के मुताबिक काउंटिंग का कार्य मंगलवार 14 जुलाई को स्थगित रहा। अब बुधवार 15 जुलाई बुधवार से शेष नगद राशि की गिनती दोबारा शुरू होगी। उसके बाद चेक, ऑनलाइन दान, बहुमूल्य चढ़ावों का हिसाब किताब पूरा कर मंदिर मंडल अंतिम आंकड़ा जारी करेगा। ये तस्वीरें गुजरात के गिर सोमनाथ के जामताल तलाला रोड की हैं, जो गिर के जंगल इलाके से होकर गुजरती है। इस रोड से गिर के जंगल से शेरों का एक शानदार वीडियो सामने आया। वीडियो में एक दो नहीं बल्कि 11 शेर एक साथ दिखाई पड़े। 13 जुलाई की सुबह करीब 7 बजे के आसपास अचानक सड़क पर शेरों का एक कुनबा नजर आया, जिससे इस रोड से गुजरने वाली गाड़ियों का पहिया कुछ समय के लिए धीमा पड़ गया। सड़क के बीचों बीच इन शेरों के झुंड को देखकर गाड़ी चालक रोमांचित हो गए। इस नजारे को सड़क से गुजर रहे कार चालक ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।
1: बात करते हैं श्री राम की नगरी अयोध्या की। रामलला के मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इस वर्ष भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हाल ही में चढ़ावा चोरी की घटनाओं के दावों के बीच भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने साफ किया है कि भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ है और ज्यादातर दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या 2025 से अधिक रही है। वहीं पुलिस कंट्रोल रूम के आंकड़ों में भी दावा किया गया है कि अयोध्या में श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बढ़ रही है। छुट्टियों और विशेष अवसरों पर दर्शनार्थियों की संख्या 1 लाख के पार भी पहुंची है।
2: राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के बाद से अयोध्या में रामलला के दर्शनार्थियों में कोई कमी नहीं आई है। राम मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की एक रिपोर्ट वायरल हो रही है। देश के तमाम राज्यों से रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में दर्शन पूजन का क्रम सामान्य रूप से जारी भी है। श्रद्धालुओं का कहना है कि किसी एक घटना को करोड़ों लोगों की आस्था से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। रामलला हमारे आराध्य हैं और अयोध्या हमारी सनातन आस्था की प्रतीक है। रिपोर्ट के अनुसार 21 जून से 3 जुलाई के बीच 11,54,000

0: 793 श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया है, जबकि इसी अवधि में पिछले साल 2025 में 9,12,540 लोगों ने मंदिर में दर्शन किए थे। राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें दर्शन व्यवस्था काफी सुव्यवस्थित और संतोषजनक लगी। दूर दराज से पहुंचे कई भक्तों ने ये भी बताया कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है, दर्शन की प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से संचालित हो रही है और प्रशासन की ओर से भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त इंतजाम भी हैं। श्रद्धालुओं ने इसके साथ ही कहा कि रामलला के दर्शन कर उन्हें आध्यात्मिक शांति और भावनात्मक संतोष की अनुभूति हुई।
1: राम जन्मभूमि का ये यात्री सुविधा केंद्र है और यहाँ पे जो आंकड़े दर्शा रहे हैं उसके साथ जो भीड़ है, जो भरमार है, वो लोगों को दिखा रहा है। सीधा सीधा 9 लाख से संख्या जब 11 लाख की होती है, 11.5 लाख तक वो पहुंचती है, ये इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है। और यहाँ पे लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि लोग कहाँ से आ रहे हैं, कब से दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे किस हिसाब से दर्शन चल रहे हैं। सीधा बात करने की लोगों को कोशिश करेंगे, यहाँ पे लोग बैठे भी हैं। आप लोग भैया कहाँ से हैं? दर्शन किया?
2: गया जी।
1: दर्शन कर लिया?
2: हाँ।
1: दर्शन बढ़िया से हो रहा है?
2: हाँ, बढ़िया से हो रहा है।
1: इसके पहले भी आए कि
2: नहीं? हाँ,
1: कितनी?
2: पिछले साल आए थे नहाने के लिए, वो हुआ था ना कुंभ मेला, उसी में।
1: उसमें काफी भीड़ थी?
2: बहुत भीड़।
1: आज भी भीड़ है?
2: आज भी भीड़ है, बहुत भीड़ है, लेकिन हम लोग सुबह में दर्शन किए थे पिछली बार, तो उतनी भीड़ नहीं थी, जल्दी जल्दी दर्शन हो गए।
1: अभी इस वक्त ज्यादा भीड़ है?
2: हाँ, अभी इस वक्त ज्यादा भीड़, आज मंगलवार भी है।
1: देखिए, दर्शनार्थी भी खुद कह रहे हैं, इसके पहले भी हम आए थे, वो भीड़ वो संख्या नहीं थी, लेकिन आज की जो आंकड़े बता रहे हैं वो भीड़ वो संख्या है। और यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे श्रद्धालु है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आप
3: गया जी से?
1: गया जी से दर्शन किया?
3: हाँ जी, दर्शन किया।
1: भीड़ बढ़िया थी नहीं?
3: बहुत अच्छी भीड़ है।
1: पहले भी आप आए थे कि नहीं?
3: हाँ, आई थी, कुंभ मेला में आई थी।
1: कुंभ मेला में? हाँ, तो भी काफी भीड़ होगी?
3: बहुत ज्यादा, एक्सेस बहुत ज्यादा।
1: कैसे दर्शन हुए? अच्छे?
3: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, दिल खुश हो गया, मन बाग बाग।
1: मैनेजमेंट कोई दिक्कत
3: नहीं? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया,
1: रामलला के अच्छे दर्शन?
3: बहुत अच्छे, रामलला की जय हो।
1: देखिए, लोग हैं यहाँ पे, दर्शनार्थी है, तो काफी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और 2025 के जो आंकड़े हैं उससे जो अधिक आंकड़े दर्शाए जा रहे हैं 2026 के, वो मौजूदा हालात में है।
0: श्री राम मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इस साल भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। पुलिस कंट्रोल रूम के आंकड़े बताते हैं कि 21 जून 2026 को 94,419 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि इसी दिन 2025 में ये संख्या 81,303 थी। 28 जून 2026 को सबसे ज्यादा 1,02,672 श्रद्धालु मंदिर पहुंचे, जो इस अवधि का सबसे बड़ा आंकड़ा रहा। 26 जून को 97,603, 27 जून को 97,134 और 30 जून को 96,112 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हालांकि कुछ दिनों में 2025 की तुलना में दर्शनार्थियों की संख्या कम भी रही। 22 जून 2026 को 75,845 श्रद्धालु आए, जबकि 2025 में ये संख्या 88,756 थी। इसी तरह 29 जून 2026 को 84,102 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि साल 2025 में 84,443 श्रद्धालु पहुंचे थे। वहीं 3 जुलाई 2026 को 87,652 श्रद्धालुओं ने श्री राम लला के दर्शन किए, जबकि 2025 में यह आंकड़ा 83,863 था। पुलिस कंट्रोल रूम के आंकड़े बताते हैं कि श्री राम मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बढ़ रही है। वहीं छुट्टियों और विशेष अवसरों पर दर्शनार्थियों की संख्या 1 लाख के पार भी पहुंच रही है। ऐसे में प्रशासन भी इस बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, यातायात और दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम कर रहा है। अगर अयोध्या के उत्साह और भक्तों के जोश को समझना हो तो सरयू घाट आना बेहद जरूरी हो जाता है। यहाँ भारी संख्या में राम भक्त और दूर दूर से आए परिवार सरयू घाट पर राम की पैड़ी पर स्नान करते नजर आए।
4: हमारी मौजूदगी इस वक्त राम की पैड़ी पर है और सरयू का जो किनारा है वो भी आपको दिखा रहे हैं और राम की पैड़ी की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तमाम युवा परिवार भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। मौसम भी इस वक्त अच्छा है और सरयू का तट है, सरयू मैया का जो कलकल कर बहता जल है उससे आनंदित होते ये युवा आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभिनंदन भी इनका नगर निगम कर रहा है अयोध्या से, और इस तरीके से फिलहाल ये आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं और मौज करते भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो सामने वो राम की पैड़ी का दृश्य है जहाँ अयोध्या में कुछ महीनों बाद दीपोत्सव मनाया जाएगा, और जिस तरह का दीपोत्सव हर साल मनता है, हर साल एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, जिससे अयोध्या का नाम केवल देश में ही नहीं बल्कि ग्लोबली होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या का नाम होता है। और ये तस्वीरें जो है ना, ये बताती हैं जरूर चंदा चोरी, तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, कार्रवाई भी चल रही है, SIT की जांच भी चल रही है, लेकिन इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें अयोध्या पसंद है, इन्हें यहाँ का वातावरण पसंद है, इन्हें सरयू मैया का की वो जो छांव है वो पसंद है, और कहीं ना कहीं ये अयोध्या को जीने वाले लोग हैं। दूर दूर से आते हैं, ऐसा नहीं है कि सब यहाँ के हैं, होंगे यहाँ के भी, साउथ से, मध्य प्रदेश से, आप माने राजस्थान से ये लोग आए हुए हैं। कितने विदेशी आपको दिख रहे हैं आज अयोध्या में।
0: स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या पहले की तरह बनी हुई है। होटल्स, धर्मशालाएं, बाजार और धार्मिक स्थल सामान्य रूप से चल रहे हैं और पूरे शहर में धार्मिक वातावरण बना हुआ है।
5: होटल में लाइक जैसा पहले अपना ये वाला सीजन, वैसे भी ऑफ सीजन हुआ करता था, और इस टाइम पे अमूमन जो है भीड़ कम ही रहती है अयोध्या में। मौसम का आप कह सकते हैं, ज्यादातर ये टाइम लोगों का हिल स्टेशन में जाने का होता है, तो ये वाला सीजन वैसे भी हम लोगों के लिए ऑफ सीजन का रहता है। तो बट हाँ, मेरे को नहीं लगता कि इस वजह से भीड़ में कुछ असर पड़ा होगा, क्योंकि हमारे अभी भी कुछ डेट्स ऐसे हैं जिसमें ऑक्यूपेंसी हमारा 80% से ऊपर है, और कुछ डेट्स तो हमारा खैर जाएगा 50% से नीचे भी है, बट कई डेट है।
0: राम मंदिर में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या ये संकेत देती है कि अयोध्या देश के सबसे प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्रों में तेजी से अपनी पहचान मजबूत कर रही है। बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे स्थानीय धार्मिक पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव और मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: भारत ने 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट पर दावेदारी पेश की है। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
0: भारत ने आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य पद के लिए अपना कैंपेन शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में #IndiaForUNSCPeacePlanetProgress थीम के तहत इस कैंपेन की शुरुआत की। विदेश मंत्री ने साफ संदेश दिया कि भारत दुनिया के लिए ज्यादा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और न्याय संगत माहौल बनाने का काम करेगा। यूएनएससी के चुनाव जून 2027 में होने वाले हैं। एशिया प्रशांत समूह की एकमात्र सीट के लिए भारत और ताजिकिस्तान के बीच कड़ा मुकाबला है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से भारत के सबसे बड़े वैश्विक वस्त्र और परिधान कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने 4 दिनों तक चलने वाले इस मेगा इवेंट का शुभारंभ किया और बिहार पवेलियन का उद्घाटन किया। यह आयोजन वस्त्र, फैशन, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की वैश्विक ताकत को प्रदर्शित करता है। इस वैश्विक आयोजन में देश विदेश के खरीदार, उद्योगपति, डिजाइनर और नीति निर्माता एक मंच पर जुटे हैं। 17 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को वैश्विक टेक्सटाइल हब के रूप में स्थापित करना, निर्यात बढ़ाना और MSME और छोटे उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए टिहरी गढ़वाल की SSP ने सभी थानों में टीम गौरा शक्ति का गठन किया। प्रशिक्षित टीम स्कूल, कॉलेजों और संवेदनशील स्थानों पर नियमित गश्त करेगी, छात्राओं को आत्मरक्षा, साइबर सुरक्षा और महिला हेल्पलाइन की जानकारी देगी और साथ ही उनकी शिकायतों का तुरंत समाधान सुनिश्चित भी करेगी। जिन थानों में महिला सब इंस्पेक्टर तैनात हैं, वहां वही टीम गौरा शक्ति का नेतृत्व करेंगी, जबकि दूसरे थानों में एडिशनल सब इंस्पेक्टर और महिला हेड कांस्टेबल टीम की कमान संभालेगी। टीम गौरा शक्ति का मुख्य उद्देश्य स्कूल्स, कॉलेजेस और दूसरे संवेदनशील स्थानों पर छात्राओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। इसके लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों की छुट्टी के समय नियमित पेट्रोलिंग की जाएगी, ताकि छेड़छाड़, उत्पीड़न और दूसरी किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। हरिद्वार में सावन के महीने में कांवड़ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। DM खुद यहां तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। कांवड़ मार्गों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित संस्थाओं को 25 जुलाई तक सभी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस बार कांवड़ मेला और कुंभ मेले के कार्य समानांतर रूप से चल रहे हैं, तो कुंभ मेले के कार्यों में जुटी संस्थाओं के साथ कोऑर्डिनेशन से कांवड़ मेले में काम भी हो रहे हैं। यहां लगातार काम जारी है। इसके साथ ही कांवड़ मेले के शुरू होने से पहले ही कांवड़ यात्रियों के लिए मार्गों को खोल दिया जाएगा।
6: और अब बात करते हैं महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा की। देश भर में 16 तारीख को बड़ी धूमधाम से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाएगी। परंपरा के मुताबिक 15 दिनों तक अस्वस्थ रहने के बाद आज पहली बार महाप्रभु जगन्नाथ ने भक्तों को नव यौवन दर्शन दिए हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है।

महाप्रभु जगन्नाथ के करोड़ों श्रद्धालु हर साल जिस पल का इंतजार करते हैं वो पावन घड़ी अब दस्तक देने वाली है। महाप्रभु जगन्नाथ की नगरी पूरी एक बार फिर आस्था और उल्लास के रंग में सराबोर होने वाली है। 16 जुलाई को वो शुभ घड़ी होगी जब महाप्रभु जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे।

0: जगन्नाथ रथ यात्रा के आरंभ से पहले ही देश और विदेश से श्रद्धालुओं ने पुरी पहुंचना शुरू कर दिया है। पुरी में मौजूद हर चेहरे पर उत्साह है, हर दिल में भक्ति का सैलाब है, क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा में अब सिर्फ एक दिन का समय बाकी है।
1: बस एक ही दिन की इंतजार है, भगवान जगन्नाथ यहां आएंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। जुलाई 16 तारीख को भव्य रथ यात्रा मनाया जाएगा, इसलिए पूरी में आपसे भक्तों का भीड़ देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन आज ये नवजौवन दर्शन है और नेत्रोत्सव भी है। भगवान जो बुखार में थे, भगवान का तबियत ठीक नहीं था, अनासर में थे, भगवान का तबियत आज ठीक हो गया है। भगवान आज पहली बार आज भगवान आ रहे हैं और भगवान आज ठीक हो रहे हैं, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। आज भगवान कैसे भक्तों को कैसे पहली बार दर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, क्या नाम है आपका?
2: हमारा नाम छवि कोठारी है।
1: पंडित जी, क्या है मतलब भगवान बुखार में थे, भगवान को नहाने के बाद भगवान को बुखार हो गया था?
2: बेटा, जब भगवान जो नहाया था, 42 दिन भगवान का चंदन लगा हुआ था, चंदन लग कर ठंडा हुआ था, ठंडे के बाद वो ठंडे के पानी दे देगा तो इंसान भूखार बन जाएगा। हम क्या, वो जो कोई हो भूखार हो जाएगा, वो दवाई खाएगा अच्छा होगा, ठंडा हो जाएगा दवाई खाएगा, दवाई के बाद में जो भगवान अच्छा हो जाएगा तो चक्का विजय होगा। चक्का विजय होगा दशम में, जो शुक्रवार जो चक्का विजय हुआ है, भगवान तीन भगवान चक्का विजय हुआ, इनका बाद में भगवान को जो एकादशी आएगा, एकादशी खली लागी होता है। खली लाग मैंने जो भगवान का जो कपड़ा जो घेरता है, इनको नाम तो खली लाग होता है। इसके बाद में भगवान जो द्वादश गया है, त्रयोदश में जो घड़ा जो लगाया है, जो घड़ा लग के भगवान का जो पेड़ा है घुमाया, इसके बाद एक दिन बिता दिया।
0: पुरी की सड़कों पर श्रद्धालुओं का सैलाब बढ़ता जा रहा है। रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट पर भक्तों के पहुंचने का सिलसिला अनवरत जारी है। देश के अलग अलग राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी भक्त महाप्रभु के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब बस इंतजार है उस दिव्य क्षण का, जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के द्वार तक पहुंचेंगे।
1: पूरी में भक्तों का भीड़ अब देखने के लिए मिल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आप ये तीनों रथ देख सकते हैं। तीनों रथ अब पूरी तरह की जो तैयारी है, ये तैयारी एक तरफ खत्म होने वाला है और बच एक ही दिन का बाकी है। एक दिन बाद यानी जुलाई 16 तारीख को भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा मैया रथ यात्रा में शामिल होंगे, भक्तों को दर्शन देंगे, भक्तों से मिलने के लिए आएंगे। जो भक्त सालों भर भगवान का मंदिर के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, वो खुद भगवान सालों में एक बार जैसे आते हैं, इस बार भी जुलाई 16 तारीख को आएंगे और भक्तों को दर्शन देंगे।
0: ये वो दुर्लभ बेला है जब भक्त भगवान के पास नहीं जाते, बल्कि भगवान स्वयं अपने भक्तों से मिलने जाते हैं। और जब जगत के नाथ श्री जगन्नाथ अपने मंदिर से बाहर आते हैं तो दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। श्री गुंडीचा मंदिर से लेकर श्री मंदिर तक पूरे मार्ग को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। हर ओर भक्ति, श्रद्धा और उत्सव का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है।
3: कुछ भी बोल नहीं सकते, मन में इतना खुशी है कि हम लोगों को स्वामी ने बुलाया हुआ है यहाँ पे।
1: मतलब रथ यात्रा आप पहले कभी देखे थे?
3: नहीं, पहली बार है, लाइफ टाइम में पहली बार है हम लोग।
4: मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे, मैं पुण्य है इधर आने का, मैं कभी नहीं आई हूँ इधर, भगवान ही मुझे बुलाए।
1: खुशी लग रहा है?
4: बहुत खुशी, बहुत आनंद लग रहा है।
0: भगवान बलभद्र का रथ ताल ध्वज कहलाता है, जो
5: कहा जाता है नंदीघोष रथ में भगवान जगन्नाथ जी बैठते हैं, ताल ध्वज में बलदाव जी बड़ा भैया बैठते हैं और देवी रथ व दर्पदलन रथ में सुभद्रा मैया बैठते हैं। बैठ के भक्त लोगों को, जो विधर्मी लोग है जो कि साल भर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, उन लोगों को पावन करने के लिए भगवान का ये यात्रा अनुष्ठित होता है।
0: पूरी रथ यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं, ऐसे में प्रशासन ने भी व्यापक तैयारियां की हैं, लिहाजा यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुरी में पूरे रथ मार्ग पर पुलिस और सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे और कंट्रोल रूम के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं, एम्बुलेंस, पेयजल और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके।
6: श्री बलभद्र महाप्रभु श्री जगन्नाथ एंड देवी सुभद्रा जी का जो रथ यात्रा है अभी, उसके लिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट पुलिस ने किया हुआ है और उसके लिए हमने 220 प्लाटून ऑफ फोर्सेस, 19 आईपीएस ऑफिसर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एडिशनल एसपीस एंड थाउजेंड्स ऑफ एसआई एंड एएसआई डिप्लॉयमेंट है। इसमें हम जो 8 वर्टिकल्स में है, बेसिकली क्राउड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का जो बंदोबस्त किया हुआ है पुलिस में, तो इनसाइड टेम्पल अरेंजमेंट हुआ है जिसमें कि सेक्टर वाइज हम डिवीजन किया हुआ है टेम्पल के, जैसे कि सिंह द्वार से बाहर घुमटी है, बाहर घुमटी से भीतर घुमटी होके जो हमारा मुक्ति मंडप होके बिमला देवी, माँ बिमला देवी है, माँ महालक्ष्मी का टेम्पल है, कीर्तन चकड़ा है, तो इस एरिया को हमने डिवाइड किया हुआ है सेक्टर वाइज। उसमें हमारा जो पुलिस ऑफिसर है जो वो ड्यूटी में रहेंगे तैनात, बेसिकली क्राउड का ओवर मैनेजमेंट करेंगे, क्राउड कंट्रोल का, एंड डिवोटी जो आएंगे उनका रिवर्स फ्लो को रोकेंगे एंड उसमें जो बैरिकेडिंग क्रॉस नहीं करेंगे वो सब चीज़ हमने उन्हें ब्रीफ करके रखा है। बेसिकली बिहेवियरल एस्पेक्ट में ब्रीफ किया है कि जैसे टेम्पल इनसाइड है उनका बिहेवियर टुअर्ड्स डिवोटीज दैट शुड बी लाइक फैसिलिटेशन करना है, उनको अच्छे से दर्शन कराना है, उनको गुड बिहेवियर देना है।
0: श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रथ यात्रा से पहले लाइफगार्ड्स ने समंदर किनारे रेस्क्यू मॉक ड्रिल का आयोजन किया और अलग अलग तरीकों से अपनी तैयारियों को परखा। समंदर में फंसे व्यक्ति तक कैसे जल्दी से जल्दी पहुंचना है, उसे किनारे तक कैसे लाना है और फर्स्ट एड कैसे देना है, इन हालातों से निपटने के लिए अभ्यास किया गया। साथ ही आपसी तालमेल, बातचीत और इमरजेंसी रिस्पांस प्रोटोकॉल को भी परखा गया। ड्रिल के दौरान रेस्क्यू के सामान और इमरजेंसी गियर की भी जांच की गई। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सिर्फ पुरी वासियों के लिए ही एक बड़ा धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि देश और दुनिया में मौजूद तमाम जगन्नाथ भक्तों के लिए भी किसी बड़े उत्सव से ये कम नहीं है। अब इंतजार उस ऐतिहासिक क्षण का है जब विशाल रथों की रस्सियां लाखों श्रद्धालु अपने हाथों से खींचेंगे और जय जगन्नाथ के गगनभेदी जय घोष के बीच महाप्रभु भक्तों के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे। श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास है कि इन विशाल रथों की पवित्र रस्सियों को छूने मात्र से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और वे अनगिनत पापों से धुलकर पुण्य कमाते हैं। पूरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: और अब बात उत्तराखंड में चल रही चार धाम यात्रा की, तो विशेषकर बद्रीनाथ धाम में आजकल श्रद्धालुओं की काफी चहल पहल है। दरअसल मौसम यहां पर बेहद सुहावना बना हुआ है, बारिश रुक रुक कर हो रही है और इसीलिए रास्तों में भी रुकावट नाम मात्र ही नजर आती है। बद्रीनाथ धाम ही नहीं बल्कि श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में भी आस्थावान पहुंच रहे हैं।
8: बद्रीनाथ धाम में अब तक 14,82,000 तो हेमकुंड साहिब में 1,92,000 श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं। वहीं मौसम की बात करें तो इस बार अभी तक पहाड़ों में मानसून उस तरह से सक्रिय नहीं हुआ है, हालांकि कभी कभार बारिश देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, हेमकुंड साहिब में देखने को मिल रहा है।
9: उत्तराखंड के ऊंचे क्षेत्रों में खासकर चमोली जिले में इन दिनों मौसम भले ही नरम गरम है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, मॉनसून की बेरुखी भी नजर आ रही है। बावजूद इसके चारधाम यात्रा में से एक भगवान बद्री विशाल का दरबार और पवित्र हेमकुंड साहिब

0: गुरुद्वारा आस्था से गुलजार है। बद्रीनाथ धाम में कल कल बह रही अलकनंदा का इन दिनों शोर सुनाई दे रहा है, लेकिन इस शोर से कहीं ज्यादा यहां उमड़ रही आस्था का ही नाद है, जिसे देशी विदेशी श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के रूप में देखा भी जा सकता है। बताया जा रहा है कि पिछले सालों की तुलना में इस साल मॉनसून बेहद कमजोर है, इसलिए पहाड़ों पर खासतौर से ऊंचाई वाले इलाकों में तो बारिश कम ही दर्ज की गई है, लेकिन चारधाम दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं की आवक में अभी तक कोई खास कमी नहीं आई है। इस वर्ष 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, श्रद्धालुओं ने काफी संख्या में वहां पहुंचकर दर्शन किए और तब से लेकर अब तक 14,82,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। वहीं 23 मई को खुले हेमकुंड साहिब के कपाट के बाद अब तक 1,92,000 से ज्यादा सिख श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। यानी मौसम अनुकूल है, यात्रा मार्ग भी सुचारू है, तो चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह भी लगातार बना हुआ है, खासकर बद्रीनाथ में। जहां भले ही बारिश कम हो रही है, मगर मौसम बेहद मुफीद है। ऊपर से यात्रा मार्ग पर कम बारिश होने की वजह से आवाजाही भी सुचारू है। यही कारण भी है कि श्रद्धालु बिना किसी बड़ी परेशानी के भगवान बद्री विशाल के साथ ही सिख श्रद्धालु भी पवित्र हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के दर्शन कर रहे हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: खुद पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की तमाम अहम खबरें मौजूद हैं। इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाएं, इसलिए चलिए धन बाजार की खबर ले।
0: ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली। मंगलवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 561 अंकों की गिरावट के साथ 77,054 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयर्स वाला एनएसई निफ्टी 158 अंकों की गिरावट के साथ 24,052 पर बंद हुआ। मंगलवार को गोल्ड की कीमतों में फिर गिरावट देखने को मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 700 रुपए गिरकर 1,46,300 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत में भी गिरावट देखी गई। 14 जुलाई को 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 8,900 रुपए गिरकर 2,26,100 रुपए पर पहुंच गई। नए वैश्विक संकट के बीच 14 जुलाई को कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ने से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में फिर गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 62 पैसे कमजोर होकर 96.30 के स्तर पर बंद हुआ।
1: और न्यूज पद पर आगे बढ़े उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, मंदिर के बाहर उमड़ा आस्था का मेला, भगवान दे रहे हैं नवयौवन दर्शन। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक 44,00,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। बद्रीनाथ में करीब 15,00,000 श्रद्धालु। दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्सटाइल एक्सपो का शुभारंभ, 17 जुलाई तक चलेगा कार्यक्रम, देश विदेश से जुटेंगे उद्योगपति। जैसलमेर रेलवे स्टेशन का हुआ कायाकल्प, विरासत और आधुनिकता का दिखा अनोखा संगम, 140 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास। जयपुर बना दुनिया का छठा सबसे खुशहाल शहर, टाइम आउट 2026 की टॉप 10 लिस्ट में शामिल, पिंक सिटी के बाद मिला एक और टाइटल। और न्यूज पद पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर वायरल चौक पर ठहरकर उन वीडियोस को देख लेते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले हैं और कुछ इमोशनल करने वाले।
3: गाय को सनातन में माता कहा जाता है और ऐसे ही संस्कार बच्चों में बचपन से ही दिए जाते हैं। जो बता रही हैं ये वायरल तस्वीरें, खुद ही देख लीजिए।

0: ये छोटी सी बच्ची पहले गाय को रोटी देती है, फिर प्रणाम करके आशीर्वाद लेती है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हैं और यूजर्स बच्ची को दिए जा रहे संस्कारों को सराह रहे हैं। सनातन परंपरा की झलक दिखाती है वायरल तस्वीरें देखिए। एक मंदिर में ये श्रद्धालु गरुड़ पर्व के दौरान अपने नृत्य से अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। इस घूमने वाले नृत्य को देखकर हर कोई अब उसके संतुलन के साथ स्थिरता को देख मंत्रमुग्ध है। यूजर्स इसकी आस्था और भक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। एक पंडित जी के कौशल का ये वीडियो भी खूब चर्चा में है, जहां पंडित जी शायद किसी घर में चल रहे कार्यक्रम में पूजा पाठ कराने के बाद घर की दीवार पर स्वास्तिक लगा रहे हैं। उन्होंने एक थाली की मदद से घर की दीवार पर बड़े कौशल और कुशलता से वो स्वास्तिक लगा दिया। अब जो देख रहा है पंडित जी के कौशल को सलाम कर रहा है। लगातार मेहनत और अनुभव का कमाल क्या होता है, इन तस्वीरों को देखिए जरा। इन मजदूरों ने अपने काम को एक खेल की तरह लिया। वो अपना काम करते हुए कितने खुश हैं, ये साफ नजर आ रहा है। इसीलिए वो अपने काम में इतने पारंगत हो चुके हैं कि उनका एक दूसरे को उछाल कर दिया जा रहा सामान से भरा बोरा एक बार भी मिस नहीं हो पा रहा। सोशल मीडिया पर लोग इन तस्वीरों को खूब देख रहे हैं और इनकी तुलना दिग्गज बल्लेबाजों के साथ करते हुए बोल रहे हैं कि दिग्गज खिलाड़ियों के बल्ले से भले ही बॉल मिस हो सकती है, लेकिन इन्होंने एक भी बोरा मिस नहीं किया। ये वायरल तस्वीरें आपका दिल जीत लेंगी। वीडियो में देखिए एक माँ गोदी में बच्चा लिए बारिश से भीगती हुई एक जगह शरण लेती है, जहाँ मौजूद एक महिला पुलिस वाली बच्चे के कपड़े बदलने में उसकी मदद करती है। पुलिस वाली माँ की गोदी में बच्चा रोते रोते ना सिर्फ शांत होता है बल्कि ऐसी मुस्कान बिखेरता है कि हर देखने वाले के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जाहिर सी बात है आप भी स्माइल कर रहे होंगे।
1: न्यूज पथ के सफर में सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 की। इस इंडेक्स में भारत के एक शहर को भी जगह मिली है। हाल ही में टाइम आउट की ओर से जारी हुई हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में राजस्थान की राजधानी जयपुर को जगह मिली है। दुनिया भर के सबसे खुशहाल शहरों की लिस्ट में जयपुर को छठा स्थान हासिल हुआ है और लिस्ट में जगह पाने वाला भारत का ये एकमात्र शहर है। इस इंडेक्स में इंग्लैंड का ऐतिहासिक शहर बाथ लंदन पहले स्थान पर है, दूसरे नंबर पर पनामा सिटी, तीसरे नंबर पर है मैक्सिको का ग्वाडलहारा, इसके बाद लिस्ट में चौथे नंबर पर कोलंबिया का मेडेलिन और पांचवे स्थान पर पोलैंड का क्राको शहर शामिल है। दुनिया भर में पिंक सिटी के नाम से विख्यात जयपुर को इस सूची में छठा रैंक हासिल हुआ है। जयपुर को मिली यह उपलब्धि शहर की खूबसूरत सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक शहरी विकास को दर्शाती है। जयपुर के बाद अमेरिका का शिकागो, साउथ अफ्रीका का केपटाउन, चीन का शंघाई और स्वीडन का गैटनबर्ग शहर टॉप 10 लिस्ट में शामिल है। हैप्पी सिटी की रैंकिंग स्थानीय लोगों के सर्वेक्षण और संस्कृति, हरियाली, भोजन, कला और हेल्थ केयर मोबिलिटी जैसे 64 मानकों के आधार पर तय की गई है। दुनिया के टॉप 10 खुशहाल शहरों में जयपुर को जगह मिलना भारत के लिए एक बड़ी बात है। इस उपलब्धि को लेकर हमने जयपुर में लोगों से बात की और उनकी राय जाननी चाहिए।
2: जयपुर को अपने कल्चर, अपने हेरिटेज के लिए तो जाना ही जाता है, पर हाल ही में एक नया टाइटल और इस शहर को मिला है जो कि हैप्पीएस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड का है। टाइम आउट ने हाल ही में एक लिस्टिंग निकाली है जिसमें पूरे विश्व भर से 10 शहर अलग अलग जगह के हैं और उनको हैप्पीएस्ट सिटी का टाइटल दिया गया है, जिसमें टॉप 6 नंबर पे भारत है और पूरे इस लिस्ट में भारत सिर्फ टॉप 6 में एक बार आया है। और भारत में भी जयपुर वो शहर है जिसको हैप्पीएस्ट सिटी बोला गया है और बिल्कुल ही बोला जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो लाइफ है, यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा रिच है। हर कोई यहाँ आना पसंद करता है, चाहे वो छुट्टियां बिताने हो, चाहे वो एक बेसिक वीकेंड हो, क्योंकि यहाँ की जो लाइफ है उसको पर्यटकों का कहना है कि थोड़ी सी पीसफुल होती है। यहाँ आमेर फोर्ट की अभी मैं आपको कुछ झलक दिखा रही हूँ, जहाँ पे ऑलरेडी हम देख सकते हैं कई सारे टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और वो जो पीस जो जितने भी टूरिस्ट हैं वो कहते हैं वो यहाँ पे साफ नजर आ रहा है, चाहे वो बोटिंग करते हुए पर्यटक हो या फिर यहाँ पे फोटोज क्लिक कराते हुए हो, यहाँ साफ नजर आ रहा है कि क्यों चाहे वो धूप हो, छाव हो, बारिश हो, पर हमेशा टूरिस्ट यहाँ पे नजर आते हैं, क्योंकि ये यहाँ का रिच कल्चर है। यहाँ की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बताई जाती है।
3: जयपुर एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड पिंक सिटी है एंड यहाँ पे दूर दूर से लोग एक्सप्लोर करने आते हैं।

0: देखने आते हैं टूरिस्ट एरिया को, एंड यहाँ का ड्रेसअप सेंस मतलब कि लाइक राजस्थानी ड्रेसेस लोग जो हम लोग भोपाल से आए हैं तो काफी ज्यादा पसंद करते हैं, एंड यहाँ के जो अमर फोर्ट्स है एंड जल महल है एंड बहुत सारी जंतर मंतर, मतलब बहुत सारा टूरिस्ट एरिया है, तो हम लोग मतलब कि काफी ज्यादा हम क्या एंड इंडिया में मतलब बाहर बाहर से जो विदेशी लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, तो जयपुर को बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा ही पसंद करते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है,
1: यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, किसी से कुछ पूछने पे बहुत ही अच्छे ढंग से बताते हैं यहाँ के लोग।
2: वैसे तो हम लोग बनारस का कल्चर देखे हुए हैं, बनारस में भी लोग जिंदा दिल रहते हैं, वही चीज यहाँ भी है, यहाँ भी लोग जिंदा दिल मतलब खुल के जिंदगी जीते हैं। और जयपुर बहुत ही अच्छा सिटी है भाई, राजस्थान में मतलब कल्चर को लेके एनवायरमेंट को लेके हर चीज बहुत अच्छा है।
3: जयपुर बहुत खुश शहर, ये तो मेरा अनुभव रहा है। अभी हम जिस गाड़ी से आए हैं उसके ड्राइवर से भी बात किया और वैसे लोगों से, जयपुर बहुत खुश शहर है और यदि अपॉर्चुनिटी मिला तो ये रहने लायक भी शहर है, लोग खुश शहर।
4: अच्छा होगा
3: हाँ, ये लोगों से मिलके उनका व्यवहार देख के लगा और शहर भी काफी क्लाइमेट अच्छा है, शहर सुंदर है, रहने लायक है, रह सकते हैं, आदमी का व्यवहार अच्छा है।
5: फिल्म तुम्बा 2 में हुई आलिया की एंट्री, इसी के साथ ऐसी और खबरों को देखने के लिए चलते हैं फिल्मी मोड़ पर।
6: फिल्म तुम्बा 2 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बाद अब अभिनेत्री आलिया भट्ट की भी एंट्री हो गई है। मेकर्स ने आलिया के इस फिल्म का हिस्सा बनने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। तुम्बा 2 का निर्माण सोहम शाह फिल्म और जयंती लाल गड़ा की पेन स्टूडियोज के बैनर तले मिलकर किया जा रहा है। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई फिल्म तुम्बा का सीक्वल है। तुम्बा 2 का निर्देशन आदेश प्रसाद कर रहे हैं। ये फिल्म 3 दिसंबर 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पैनोरमा स्टूडियोज ने पंजाबी सिनेमा में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए 3 पंजाबी फिल्मों के वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल राइट्स हासिल किए हैं। पैनोरमा स्टूडियोज ने 2026 में रिलीज होने वाली 3 पंजाबी बड़ी फिल्में अर्जेंटीना, थापी और रांझिया के वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हासिल किए हैं। अर्जेंटीना में एमी विर्क और सरगुन मेहता मुख्य भूमिका में हैं, तो वहीं थापी में नीरू बाजवा और सनी सिंह नजर आएंगे, जबकि रांझिया में हार्डी, संधु और सिमरत कौर हैं। जाफर जैक्सन की हॉलीवुड फिल्म माइकल ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। ये फिल्म 1 बिलियन US डॉलर का कलेक्शन करने वाली दुनिया की पहली फिल्म बन गई है, यानी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रुपए के हिसाब से फिल्म ने दुनिया भर में 9500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया। इसके साथ ये दुनिया की पहली बायोपिक फिल्म बन गई जिसने ये मुकाम हासिल किया। हॉलीवुड फिल्म इविल डेड बर्न के लिए भारत नंबर 1 मार्केट बनकर उभरा है। इस फिल्म के लिए भारत इंटरनेशनल ओपनिंग वीकेंड मार्केट के तौर पर नंबर 1 बन गया। इविल डेड बर्न ने ऑब्सेशन और द ममी जैसी हॉलीवुड फिल्मों को भारत में ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन के मामले में पीछे छोड़ दिया। फिल्म इविल डेड बर्न का रविवार तक नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 12 करोड़ रुपए, जबकि ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ 36 लाख रुपए हो चुका था। ये उपलब्धि इस साल ग्लोबल बॉक्स ऑफिस में भारत के तेजी से बढ़ते महत्व को दिखाती है।
5: और अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं। आज बात छत्तीसगढ़ के उस बैंड की जिसके सदस्य दुनिया को अपनी आंखों से भले ही ना देख पाते हों, लेकिन सुर और धुनों के धनी हैं। हालात के आगे हथियार डालने के बदले एक युवक ने संगीत को आत्मनिर्भरता का जरिया बनाना तय किया और एक बैंड बनाकर अब राज्य में जगह जगह कार्यक्रम पेश करते हैं। इस बैंड में उसने अपने जैसे ही नहीं देख पाने वाले लोगों को भी जोड़ा है।

0: जहाँ चाह वहाँ राह, मतलब ये कि अगर किसी काम को करने की दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन हो तो इंसान हर मुश्किल हालात को पार कर आगे बढ़ने का रास्ता तलाश लेता है, और इसी की मिसाल है ये संगीत की टोली। कोई मगन होकर ढोलक बजा रहा है तो किसी की उंगलियां तेजी से हारमोनियम पर दौड़ रही हैं। गायन के साथ अलग अलग वाद्य यंत्रों का ये तालमेल देखना और सुनना एक अलग ही सुकून का एहसास कराने वाला है। बैंड की ये टोली बेहद ही खास है। इनमें से कोई देख भले ही नहीं पाता है, लेकिन इनमें वो कला है जो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। संगीत की ये कला अब पूरे छत्तीसगढ़ में गूंज रही है। 15 से 20 सदस्यों वाला ये ग्रुप माँ सरस्वती जागरण बैंड के जरिए छत्तीसगढ़ में जगह जगह भक्ति संगीत का कार्यक्रम पेश करता है।
1: पहले पिता जो लोग हमारे गाते बजाते थे, है ना, तो पहले पिताजी लोगों को मैं देखता था। पहले नॉर्मल रहा, है ना, तो पिताजी लोगों को देखता था, उनके साथ जाता था। उनके बाद कि इसमें फिर मन लगता गया कि काश मैं भी गांव में भी बजाऊं। तो उसके बाद एक सफर छोटा छोटा, जिसे घर में बर्तन उर्तन बजाना उजाना, तो इसे फिर सफर चालू हुआ। फिर पिताजी का देख देख के उनके साथ, फिर उसी समय फिर पढ़ाई लाइफ से जुड़े, तो वहाँ कहीं ना कहीं अब संगीत में थोड़ा बहुत वहाँ से शिक्षा मिल गई। उसी सफर उसके बाद से फिर आगे बढ़ते गए।
0: ऋतिक ठाकुर इस बैंड के मुखिया हैं, जिनकी आंखों की रोशनी 13 साल की उम्र में चली गई थी। उस वक्त तो इन्हें ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ खत्म सा हो गया, लेकिन धीरे धीरे खुद को इन्होंने न सिर्फ संभाला बल्कि पूरे हौसले के साथ आगे बढ़ना तय किया और संगीत के माध्यम से ही अपनी जिंदगी को संवारने में जुट गए। इसकी शिक्षा ली और फिर संगीत पथ पर आगे बढ़ते चले गए।

0: कुछ कुछ तो कांटेक्ट में आते गए और कुछ कुछ लोगों के पास जाके रखना पड़ा बात कि ऐसा ऐसा है ना। तो उनके बाद फिर उनके माता पिता के मतलब परमिशन से उनके फिर एक दो बार लाना ले जाना करते हैं हमारे फैमिली की तरफ से कोई भी उनका सपोर्ट में। बाकी फिर रीति तो फिर ऐसी जाते गए फिर बात रखते गए तो लगभग फिर एक उसके बाद तैयार हुए दो चार लोग। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर सब जुड़ते गए। हमारे लिए कला ही सब कुछ है ना। तो मैं इसको बहुत ऊंचाई स्तर तक लेके जाता मतलब जाना चाहता हूँ जहाँ तक मैं सक सकूँ माता रानी की।
1: इन खास कलाकारों ने अपने जुनून को पूरा करने के लिए भेदभाव ताने और सामाजिक चुनौतियों का सामना भी किया, लेकिन इन सब के मन में कुछ कर गुजरने का जो जज्बा था उसके दम पर ही ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इस बैंड के सदस्यों ने बाकायदा संगीत की शिक्षा भी ली है और अब जागरण की दिव्य प्रस्तुति से ये न सिर्फ लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं बल्कि इसके जरिए खुद पर आश्रित भी हैं। किसी की मोहताज नहीं।
2: मैं पढ़ाई किया हूँ वहाँ तो गुरु जी हैं सिखाने के लिए संगीत शिक्षक, तो वो ढोलक वहीं से सीखा हूँ।
3: और इनके साथ कैसे जुड़े?
2: मैं राजनांदगांव में हम लोगों के कार्यक्रम थी तो वहाँ ऋतिक भाई भी गए हुए थे तो मेरी मुलाकात वहीं से हुई, तब से मैं इस टीम में जुड़ा हुआ हूँ। लगभग दो साल होने को है। वहाँ ने तो आंखें नहीं दी देने के लिए, लेकिन मैं अपने मन पे यही सोचता हूँ कि अपने जिंदगी में मैं यही कार्य करूं जो कि भगवान के प्रति पूरा जीवन समर्पण रहा है।
4: हम गाने सुनते थे और ऐसे ही टाइम पास मतलब खेल खेल में गुनगुनाते थे गाते थे। उसके बाद मेरा दाखिला हुआ आमा खेरवा मनेन्द्रगढ़ नेत्रहीन विद्यालय अपना जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ। उसके बाद अब वहाँ भी सारे स्टूडेंट्स थे जैसे कि वो भैया ने बताया राज सिंह भैया ने, हम लोग साथ में ही पढ़ते थे
2: जी।
4: तो वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट थे तो हम लोग मतलब बजाते हुए देखते थे। धीरे धीरे अपना रुचि बढ़ा, उसके बाद हमने वहाँ से बस गाना ही स्टार्टिंग किया था। फिर जैसे ही जैसे बड़े हुए तो शास्त्रीय संगीत का ज्ञान हुआ।
1: इन सब ने संगीत के लिए खुद को समर्पित कर दिया है जिसने इन्हें आत्मविश्वास से भरा हुआ है और इन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। ये इतनी स्वाभिमानी है कि किसी की दया नहीं चाहते बल्कि अपने हुनर का सम्मान चाहते हैं और पूरे सम्मान के साथ ही कहीं जाकर अपना कार्यक्रम पेश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: फ्रांस की राजधानी पेरिस में धूमधाम से मनाया गया बासिल डे। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर जहां देश और दुनिया की कई और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
6: फ्रांस की राजधानी पेरिस में बासिल डे के मौके पर ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। मशहूर आईफिल टावर के ऊपर रंग बिरंगी आतिशबाजी से पूरा आसमान जगमगा उठा। इस बार जश्न को और खास बनाने के लिए सैकड़ों ड्रोन भी उड़ाए गए जिन्होंने आसमान में अलग अलग आकृतियां बनाई। सबसे खास पल तब आया जब ड्रोन ने आसमान में आईफिल टावर की ही तस्वीर बना डाली। इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए हजारों लोग सड़कों पर इकट्ठे

0: हुए और अपने मोबाइल में इसे कैद करते नजर आए। बैसिल डे फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। ये दिन साल 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति की याद में मनाया जाता है। हर साल इस मौके पर पूरे देश में परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शानदार आतिशबाजी होती है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक साथ दो कॉर्प्स फ्लावर खिले हैं। यहाँ के बोटैनिकल गार्डन में इस दुर्लभ नजारे को देखने लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कॉर्प्स फ्लावर अपनी बदबू के लिए पहचाना जाता है। इस फूल के खिलते ही इससे सड़े मांस जैसी गंध आती है। इसके खिलने का ये अनोखा नजारा सिर्फ 24 से 48 घंटे तक रहता है। इंडोनेशिया का ये दुर्लभ पौधा 2 से 3 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है। ये फूल लोगों को संरक्षण के लिए जागरूक करता है। यूरोप में भीषण गर्मी पड़ रही है। बेल्जियम समेत कई देशों में पारा 30 डिग्री के पार चला गया है और यहाँ लोग छांव और एसी तक का सहारा लेने को मजबूर हैं। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और ग्रीस में वाइल्ड फायर ने हजारों हेक्टेयर जंगल जलाए हैं। पूरा यूरोप गर्मी से बचने की जद्दोजहद में जुटा है। लोग ज्यादा से ज्यादा खुद को डिहाइड्रेट कर रहे हैं। कई देशों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। पूरे यूरोप में क्लाइमेट चेंज का बड़ा असर नजर आ रहा है। प्रशासन ने लोगों से घरों में बने रहने की अपील की है। बुजुर्गों और बच्चों को बाहर ना निकलने की भी सलाह दी गई है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान से रवाना हो गए। ये प्रक्षेपण भारतीय समय के अनुसार रात 8:17 पर कजाकिस्तान स्थित बैकनूर कॉस्मोड्रोम से हुआ। इसके साथ ही 8 महीने लंबे मिशन की शुरुआत हुई है, जो अगले साल अप्रैल में पूरे चालक दल की धरती पर वापसी के साथ पूरा होगा। मेनन ने सोशल मीडिया पर कहा कि वो इस अहम मिशन के लिए पूरी तरह रेडी हैं। उन्होंने नासा, अपने परिवार और दोस्तों का उनके लगातार सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया। डॉक्टर अनिल मेनन भारतीय मूल के हैं और उनके पारिवारिक संबंध केरलम के पलक्कड़ जिले के वोट्टापालम से हैं।
1: और न्यूज पथ पर थोड़ी देर रुकेंगे ब्रेक प्लाजा पर और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे खेल की खबरें दिखाने खेल चक्कर में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
3: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
4: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
3: Smartless.
5: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
3: Marketplace.
6: Big three on the program today, or, you know, the big three of the...
3: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
1: दुनिया की सबसे रोमांचक रेस में गिनी जाती है सैन फर्मिन फेस्टिवल की बुल रन, जहाँ परंपरा का मेल रोमांच से होता है। स्पेन के पाम्पेलोना शहर में बुल रन का ये सदियों पुराना रिवाज आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है।
2: स्पेन के पैम्पलोना शहर में मशहूर सैन फर्मिन फेस्टिवल का आखिरी बुल रन भी पूरे जोश और रोमांच के साथ पूरा हुआ। परंपरा, रफ्तार और हिम्मत का अनोखा संगम दिखाई दिया। सुबह सुबह पैम्पलोना की सड़कों पर उत्साह साफ नजर आता है। बुल रन शुरू होने से पहले प्रतिभागी सैन फर्मिन की प्रतिमा के सामने जुटते हैं, नारे लगाते हैं और सुरक्षित दौड़ की कामना करते हैं। फिर आती है वो घड़ी जो वहाँ मौजूद सभी लोगों की धड़कनें बढ़ा देती है। एक पटाखे की आवाज और गेट खुलते ही तेज रफ्तार से बुल बाहर निकलते हैं और उनके साथ शुरू होती है दुनिया की सबसे चर्चित और रोमांचक रेस। संकरी गलियों में बुल के आगे आगे दौड़ते प्रतिभागी, दोनों तरफ खड़े हजारों दर्शक और हर मोड़ पर रोमांच अपने चरम पर नजर आता है। इस दौरान कुछ लोग फिसल कर गिर भी जाते हैं, लेकिन दौड़ लगातार आगे बढ़ती रहती है। कुछ ही मिनटों में बुल शहर की गलियों से होते हुए बुल रिंग के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। प्रतिभागी भी उनके साथ एरीना में दाखिल होते हैं और इसी के साथ इस साल आखिरी बुल रन सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है। सैन फर्मिन फेस्टिवल सिर्फ एक दौड़ भर नहीं, बल्कि स्पेन की संस्कृति और परंपरा का बड़ा उत्सव है। हर साल दुनिया भर से हजारों लोग इस अनोखे आयोजन का हिस्सा बनने और इसे करीब से देखने पैम्पलोना पहुंचते हैं। यही वजह है कि बुल रन आज भी दुनिया के सबसे चर्चित पारंपरिक आयोजनों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: फीफा वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में 20 साल बाद फ्रांस और स्पेन डला स्टेडियम में भिड़ेंगे। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुक करते हैं खेल जगत का।
3: भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला बर्मिंघम के एस्वेस्टन स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले वनडे मैच में कप्तान शुभमन गिल के मास्टर प्लान के आगे इंग्लैंड के बल्लेबाज धाराशाही हो गए हैं। भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर ब्रार ने अपनी सनसनीखेज गेंदबाजी से तहलका मचा दिया। ब्रार ने पारी के 13वें ओवर में ऐसी जादुई गेंदबाजी की कि इंग्लैंड के दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों को महज 3 गेंदों के भीतर ही पवेलियन वापस लौटना पड़ा। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 258 रन बनाकर भारत को 259 रनों का लक्ष्य दिया है। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही है। इसके बाद दूसरा और तीसरा वनडे 16 जुलाई और 19 जुलाई को खेला जाएगा। हाल ही में समाप्त हुई 5 मैचों की T20 सीरीज में इंग्लैंड ने भारत को 4-0 से हरा दिया था। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ियों मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी ITTF की ताजा पुरुष डबल्स रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 2 पर पहुंच गई है। सीनियर वर्ल्ड रैंकिंग में किसी भी भारतीय खिलाड़ी या जोड़ी की अब तक की सर्वोच्च रैंकिंग है। इस जोड़ी ने पिछले सप्ताह की नंबर 3 रैंकिंग में एक स्थान का सुधार किया और 2022 में महिला डबल्स में वर्ल्ड नंबर 4 तक पहुंची। मणिका बत्रा अर्चना कामत का भारतीय रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। मानव मानुष के 3390 अंक हैं, जबकि चीन की लिन शिडोंग हुआंग यूजोंग की जोड़ी 5160 अंकों के साथ नंबर 1 पर है। फ्रांस और स्पेन 20 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप में आमने सामने होंगे। दोनों टीमों के बीच 2026 फीफा वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज देर रात 12:30 बजे डलास स्टेडियम में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में इससे पहले दोनों की आखिरी भिड़ंत 2006 में हुई थी, जब फ्रांस ने राउंड 16 में स्पेन को 3-1 से हराया था। ओवरऑल दोनों टीमों के बीच अब तक 38 मुकाबले हुए हैं, जिनमें स्पेन ने 18 और फ्रांस ने 13 मैच जीते हैं, जबकि 7 मुकाबले ड्रॉ रहे। फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बापे शानदार फॉर्म में हैं। वो मौजूदा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 8 गोल कर गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे हैं। दूसरी ओर स्पेन की उम्मीदें 19 साल के स्टार लामिन यमाल पर टिकी हैं। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड से 2-1 की हार के बाद जैसे ही नॉर्वे की टीम स्वदेश पहुंची, लोगों ने अपने खिलाड़ियों का शानदार स्वागत किया। खिलाड़ियों का वेलकम करने के लिए लोग राजधानी ओस्लो की सड़कों पर उतर आए। क्वार्टर फाइनल में हार के बावजूद अपनी टीम के दमदार प्रदर्शन से खुश लोगों ने खेल भावना की ऐसी तस्वीर दिखाकर दुनिया भर के लोगों का दिल जीत लिया।
1: और न्यूज पथ में मेरी यानी नवजोत संधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक
4: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। व्हेदर यू वांट टू रिलैक्स, फोकस और टर्न थिंग्स अप, यू विल फाइंड द राइट स्टेशन। हियर फ्रॉम द टॉप स्टेशंस लाइक टुडेस हिट्स, क्लासिक रॉक, कॉफी हाउस एंड मोर। Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: अब मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
6: अविश्वास में विश्वास बसता है।
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: क्या गुप्त नवरात्रि सामान्य नवरात्रि से ज्यादा शक्तिशाली है? क्या गुप्त नवरात्रि में कोई भी साधना कर सकता है? गुप्त नवरात्रि में साधना और पूजा का क्या है विधान और कौन से मिलेंगे इसमें वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: Talk Sport presents The S Word with Will Gavin and Matt.

0: Take It Easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
1: शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
6: दिल्ली NCR में बदल गया मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज हवा के साथ हुई बारिश, गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, मंदिर के बाहर उमड़ा आस्था का मेला, भगवान दे रहे नव यौवन दर्शन। दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्सटाइल एक्सपो का शुभारंभ, 17 जुलाई तक चलेगा कार्यक्रम, देश विदेश से जुटेंगे उद्योगपति। जैसलमेर रेलवे स्टेशन का हुआ कायाकल्प, विरासत और आधुनिकता का दिखा अनोखा संगम, 140 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास। जयपुर बना दुनिया का छठा सबसे खुशहाल शहर, टाइम आउट 2026 की टॉप 10 लिस्ट में हुआ शामिल, पिंक सिटी के बाद मिला एक और टाइटल। फीफा वर्ल्ड कप के रंग में रंगा केरल का त्रिशूर, ब्राजील अर्जेंटीना की जर्सी वाली धोती बनी फुटबॉल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र, मैसी की जर्सी की खासी डिमांड।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

जब भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने भव्य रथों पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलेंगे। 14 दिनों के अनासार काल के बाद नवयौवन दर्शन और नेत्रोत्सव की रस्म पूरी होने से श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। उधर देखिए, रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा, स्वास्थ्य, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आज आपको नवयौवन दर्शन और नेत्रोत्सव के बारे में विस्तार से बताएंगे। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े ऐसे रहस्यों पर भी बात होगी जो दुनिया को हैरान कर देती है। तो आइए शुरुआत करते हैं जगन्नाथ मंदिर के अद्भुत माहौल से। देखिए, श्रद्धालुओं में गजब का जोश है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ सज धज कर तैयार हो चुके हैं और पूरा शहर भी भगवान के स्वागत के लिए तैयार है। एक दिन बाद यानी 16 जुलाई को रथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं और इसे देखते हुए पूरे शहर में सुरक्षा, स्वास्थ्य, यातायात और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम कर दिए गए हैं। अब सभी की जो निगाहें हैं उस क्षण पर टिकी हुई हैं जब जय जगन्नाथ के उद्घोष के बीच महाप्रभु अपने भक्तों के दर्शन देने के लिए निकलेंगे। देखिए जगन्नाथ मंदिर से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां बात कर रहे हैं रथ यात्रा की, जिसमें मात्र एक दिन अवशेष रह गए हैं और इसलिए पुरी में दिन रात तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पुरी महाप्रभु के स्वागत के लिए पूरी तरीके से सजी हुई है और लाखों श्रद्धालुओं की निगाहें जो है उस पावन क्षण पर टिकी हुई हैं।

0: पल जिसका इंतजार सिर्फ ओडिशा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बसे करोड़ों श्रद्धालु पूरा साल करते हैं। वो अवसर जब भगवान अपने सिंहासन से उतरकर सीधे भक्तों के बीच आते हैं, जब पुरी की हर सड़क आस्था का मार्ग बन जाती है, जब चारों ओर सिर्फ एक ही स्वर सुनाई देता है, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां अंतिम पड़ाव पर हैं। तीनों दिव्य रथ सज चुके हैं, पुरी पूरी तरह से तैयार है और सबकी निगाहें उस घड़ी पर टिकी हैं जब महाप्रभु अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे।
1: मेरे पीछे आप ये तीनों रथ देख सकते हैं, तीनों रथ अब पूरी तरह की जो तैयारी है, ये तैयारी एक तरफ खत्म होने वाला है और बच एक ही दिन का बाकी है। एक दिन बाद यानी जुलाई 16 तारीख को भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा मैया रथ यात्रा में शामिल होंगे, भक्तों को दर्शन देंगे, भक्तों से मिलने के लिए आएंगे। जो भक्त सालों भर भगवान का मंदिर के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, वो खुद भगवान सालों में एक बार जैसे आते हैं, इस बार भी जुलाई 16 तारीख को आएंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। आप
0: भगवान बलभद्र का रथ ताल ध्वज कहलाता है, इसका आवरण लाल और हरे रंग से सजाया जाता है। देवी सुभद्रा दर्प दलन, जिसे देव दलन भी कहा जाता है, उस रथ पर विराजती हैं, जिसका स्वरूप लाल और काले रंग से सुसज्जित होता है। वहीं भगवान जगन्नाथ नंदी घोष, जिसे गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है, उस दिव्य रथ पर विराजते हैं, जिसकी पहचान लाल और पीले रंग की भव्य सजावट है।
1: ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो रथ है, ये नंदीघोष रथ है। और ये नंदीघोष रथ का जो आपको ये जो दिखा रहा हूँ, ये जो कलर है रेड और येलो, ये कलर भगवान को बहुत पसंद है।
0: पुरी में इस समय हर ओर उत्सव का ही माहौल नजर आ रहा है। मंदिर परिसर, मुख्य सड़कें, बाजार, चौक चौराहे और रथ यात्रा मार्ग आकर्षक सजावट से जगमगा रहे हैं। पूरा शहर मानो भगवान के स्वागत के लिए सज गया हो। देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु लगातार पुरी पहुंच रहे हैं। विदेशों से भी बड़ी संख्या में भक्त आए हैं यात्रा के साक्षी बनने के लिए। हर किसी की बस एक ही इच्छा है कि रथ पर विराजमान भगवान के दर्शन हो जाएं और उनका आशीर्वाद मिल जाए।
1: इस बार 2026 रथ यात्रा को देखने के लिए, ये भव्य रथ यात्रा में शामिल होने के लिए अब से पुरी में भक्तों का भीड़ अब देखने के लिए मिल रहा है।
0: साधु संत, महात्मा, अखाड़ों के प्रतिनिधि और विभिन्न धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग भी पुरी पहुंच चुके हैं। उनके लिए ये केवल उत्सव नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभव का सबसे महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। तीनों रथों को पारंपरिक शैली में सजाने का काम अंतिम चरण में है। रंग बिरंगे विशेष कपड़े बारीकी से तैयार किए गए, पीतल के आभूषण और पारंपरिक कारीगरी रथों की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देती है। इन कलाकृतियों को तैयार करने वाले कारीगर पीढ़ियों से इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: बहुत अच्छा, आके बहुत अच्छा लग रहा है। जगन्नाथ जी की कृपा है, बहुत कृपा है। जगन्नाथ जी ने हमें को बार बार बुला रहा है, हम भक्त लोगों को, इसलिए हम आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है जी।
3: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भगवान के लिए। हम किंचित पुण्य काम करके हैं, उसके लिए भगवान दर्शन के लिए हमको मिल गया।
0: श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। इस बार पहले से अधिक केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती है। लगभग 200 अतिरिक्त एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट विभिन्न स्थानों पर जिम्मेदारी संभालेंगे। पूरे रथ मार्ग पर पुलिस, विशेष सुरक्षा दल और प्रशासनिक अधिकारी लगातार मौजूद रहेंगे।
4: उसके लिए मल्टीलेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट पुलिस ने किया हुआ है और उसके लिए हमने 220 प्लाटून ऑफ फोर्सेस, 19 आईपीएस ऑफिसर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एडिशनल एसपीस एंड थाउजेंड्स ऑफ एसआई एंड एएसआई डिप्लॉयमेंट है। इसमें हम जो 8 वर्टिकल्स में है, बेसिकली क्राउड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का जो बंदोबस्त किया हुआ है पुलिस में, तो इनसाइड टेम्पल अरेंजमेंट हुआ है जिसमें कि सेक्टर वाइज हम डिवीजन किया हुआ है टेम्पल के, जैसे कि सिंह द्वार से बाहर गुमटी है, बाहर गुमटी से भीतर गुमटी होके जो हमारा मुक्ति मंडप होके बिमला देवी, माँ बिमला देवी है, माँ महालक्ष्मी का टेम्पल है, कीर्तन चकड़ा है, तो इस एरिया को हमने डिवाइड किया हुआ है सेक्टर वाइज। उसमें हमारा जो पुलिस ऑफिसर है जो, वो ड्यूटी में रहेंगे तैनात, बेसिकली क्राउड का ओवर मैनेजमेंट करेंगे, क्राउड कंट्रोल का, एंड डिवोटी जो आएंगे उनका रिवर्स फ्लो को रोकेंगे, एंड उसमें जो बैरिकेडिंग क्रॉस नहीं करेंगे, वो सब चीज हमने उन्हें ब्रीफ करके रखा है।
0: यात्रा के दौरान सुरक्षा के इंतजामों में आधुनिक तकनीक का भी पूरा उपयोग किया जा रहा है। ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी नेटवर्क और अत्याधुनिक कंट्रोल रूम के माध्यम से हर गतिविधि पर 2400 घंटे नजर रखी जाएगी। आपदा प्रबंधन को लेकर भी विशेष योजना तैयार की गई है। पुलिस, फायर सर्विस, एनसीसी, स्काउट्स और स्वयं सेवकों ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल की। साथ ही समुद्र तट पर तैनात लाइफ गार्ड्स ने भी रेस्क्यू अभ्यास किया, क्योंकि यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु समुद्र तट पर भी पहुंचते हैं, इसीलिए हर पहलू को ध्यान में रखकर तैयारियां की गई हैं।
5: सबसे ज्यादा भीड़ होने वाला है, जैसे कि 10 से 15 लाख से भी ऊपर बहुत ज्यादा भीड़ होने वाला है। इसमें हम जैसे ग्रीन कॉरिडोर करके एम्बुलेंस को मेडिकल तक पहुंचाने में बहुत सारी मदद करते हैं, और ग्रीन कॉरिडोर की वजह से बहुत जल्दी एम्बुलेंस मेडिकल तक पहुँच जाता है।
0: स्वास्थ्य सेवाओं को पहले की तुलना में और मजबूत बनाया गया है। कई अस्थायी अस्पताल बनाए गए हैं, एम्बुलेंस, डॉक्टर्स की टीमें, मेडिकल स्टाफ, प्राथमिक उपचार केंद्र और दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पीने के स्वच्छ पानी, मोबाइल शौचालय, विश्राम स्थल और सहायता केंद्र भी अलग अलग स्थानों पर बनाए गए हैं। यातायात व्यवस्था को भी नए सिरे से तैयार किया गया है। विभिन्न मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई है, पार्किंग की अलग व्यवस्था बनाई गई है, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चरणबद्ध प्रवेश और निकास की योजना लागू की जाएगी। इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई स्थानों पर बड़ी एलईडी स्क्रीन्स भी लगाई गई हैं। इनके माध्यम से दूर खड़े लोग भी रथ यात्रा और मंदिर में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों का सीधा प्रसारण देख पाएंगे। इससे भीड़ का दबाव भी कम करने में मदद मिलेगी। बस अब इंतजार केवल उस ऐतिहासिक क्षण का है जब विशाल रथों के पहिए आगे बढ़ेंगे, लाखों हाथ श्रद्धा के साथ रस्सियां खींचेंगे और जय जगन्नाथ के उद्घोष से पुरी गूंज उठेगी। इस पल का इंतजार पुरी के साथ साथ पूरे देश को भी है। पुरी से अजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: देखिए, रथ यात्रा से पहले मंगलवार का दिन भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए खास रहा, क्योंकि 14 दिनों के अनासर काल के बाद भगवान जगन्नाथ ने नव यौवन दर्शन देकर भक्तों को आनंदित कर दिया। धार्मिक परंपराओं के अनुसार उपचार पूर्ण होने के बाद नेत्रोत्सव की रस्म निभाई गई और महाप्रभु के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। इसके साथ ही रथ यात्रा का उत्सव और बढ़ गया। बुधवार को भगवान जगन्नाथ को 3 भोग दिए जाएंगे और अगले दिन वो अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथों पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर की यात्रा पर निकल पड़ेंगे। चलिए आपको नवयौवन दर्शन और नेत्रोत्सव की भव्य तैयारियां दिखाते हैं।

0: खुशी से खिल उठा है धाम, क्योंकि स्वस्थ हो गए हैं भगवान। भक्तों में उमंग है, पुरोहितों में उत्साह, क्योंकि 14 दिन बाद भगवान की सेहत ठीक जो हो गई है। उनका एकांतवास खत्म हो गया है। मंदिर में महाप्रभु के नव यौवन दर्शन हुए और इसकी सूचना मंदिर के प्रथम सेवक यानी पुरी के राजा को देने सेवायतों का दल चल पड़ा, हाथों में पारंपरिक ध्वज और प्रसाद का थाल लिए।
1: बस एक ही दिन की इंतजार है, भगवान जगन्नाथ यहां आएंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। जुलाई 16 तारीख को भव्य रथ यात्रा मनाया जाएगा, इसलिए पूरी में अब से भक्तों का भीड़ देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन आज ये नवजौवन दर्शन है और नेत्रोत्सव भी है। भगवान जो बुखार में थे, भगवान का तबियत ठीक नहीं था, अनासर में थे, भगवान का तबियत आज ठीक हो गया है। भगवान आज पहली बार आज भगवान आ रहे हैं।
2: जब भगवान जो नहाया था, बैल सी दिन भगवान का चंदन लगी हुआ था, चंदन लग कर ठंडा हुआ था, ठंडे के बाद ठंडे के पानी दे देगा तो इंसान भूखा बन जाएगा। हम क्या है, वो जो कोई हो भूखा हो जाएगा, वो दवाई खाएगा अच्छा होगा, ठंडा हो जाएगा दवाई खाएगा।
0: जैसे कि धार्मिक मान्यता है, स्नान पूर्णिमा के बाद से भगवान जगन्नाथ को बुखार था और इस अनासर काल में यानी एकांतवास के दौरान उनका उपचार हो रहा था। सादे सूती वस्त्रों में भगवान को रखा गया, फलों का रस और हल्का भोजन दिया गया। जड़ी बूटियों से भगवान जगन्नाथ का ज्वर यानी बुखार ठीक हुआ और उन्होंने एक बार फिर से अपने दिव्य रूप में भक्तों को नवयौवन दर्शन दिया। नवयौवन दर्शन से पहले अनासर के दौरान पूजे जाने वाले पट देवताओं को रस्मी तौर पर विसर्जित किया जाता है। 7 देवताओं को फिर अपनी अपनी जगह पर भेज दिया जाता है। इसके बाद अनासर कमरा खोला जाता है। नवयौवन दर्शन के बाद नेत्रोत्सव किया जाता है, जिसमें चांदी के बर्तनों में पवित्र काला रंग तैयार करके तुलसी की डंडियों से तीनों मूर्तियों की पुतलियों में रंग भरा जाता है। मंदिर की परंपरा के मुताबिक भक्ति संगीत और वाद्य यंत्रों की धुन के बीच पुजारी देवताओं की कमल जैसी आंखों को औपचारिक रूप से पूरा करते हैं और नेत्रोत्सव रस पूरी होती है।
1: नवजौवन और नेत्रोत्सव, ये दर्शन देखने के लिए भक्तों का भीड़ आप देख सकते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको, ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये भगवान को देखने के लिए, भगवान का एक झलक पाने के लिए, जो भगवान 15 दिन अनासर में थे आज अपने रूप में आ रहे हैं। और यही नवजौवन का जो दर्शन, ये दर्शन को देखने के लिए भक्तों का ये भीड़ आप देख के आपको पता चल रहा होगा कि लोगों का मन में भगवान को देखने के लिए, पूरी में ये जो भीड़ देख के ही पता चल रहा है कि भगवान को देखने के लिए इनका मन में कितना भाव है, कितना प्रेम है, कितना श्रद्धा है।
0: नेत्रोत्सव के दौरान माना जाता है कि जो दिव्यता अभी तक पट छवियों में थी, वो अब पवित्र लकड़ी से बनी भगवान जगन्नाथ समेत तीनों मूर्तियों में वापस आ गई। मान्यता है कि फिर से जवान हुए देवताओं की पहली झलक जिसे मिलती है वो बहुत सौभाग्यशाली होता है।
2: नवजौवन देखने के लिए सब सारे लोग भीड़ है, ये जब जाएगा घुसेगा तो भगवान के दर्शन करके आएगा, कोई नहीं पाएगा कोई पाएगा।
1: अच्छा, मतलब भगवान आज से ही पूरा दर्शन देगा,
2: दर्शन 2 घंटा दर्शन देगा।
1: फिर आज काल का क्या है?
2: काल का भगवान का रथ यात्रा करेगा, खिचड़ी खाएगा भगवान, काल जाएगा नहीं परसों जाएगा। अच्छा। काल भगवान दिन भर भगवान भूख खाएगा। अच्छा। दिन भर भूख खाएगा।
0: जगत के पालनहार के दर्शन करने हजारों की तादाद में भक्त उमड़े। दर्शन के लिए वक्त सिर्फ कुछ ही घंटों का था और इसीलिए सभी की बारी तो नहीं आई, पर मन सभी का गदगद हुआ। मंदिर के सेवायतों के चेहरे पर आनंद है, ये परंपरा सदियों से यूं ही निभाई जा रही है। नवयौवन दर्शन के बाद भगवान के स्वस्थ होने की सूचना सबसे पहले पुरी के राजा को दी जाती है। पुरी के राजा यानी गजपति महाराज को भगवान जगन्नाथ का प्रथम सेवक माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान वो छेरा पहरा की रस्म निभाते हैं और सोने की झाड़ू से रास्ते की सफाई करते हैं, चंदन का पानी छिड़कते हैं। पुरी के राजा को साक्षात भगवान जगन्नाथ का प्रतिनिधि माना जाता है। हालांकि राजा के तौर पर उनके पास कोई अधिकार नहीं, पर गजपति महाराज पुरी के प्रमुख धार्मिक प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। रथ यात्रा के दौरान जब भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर चले जाते हैं, तब राजा मंदिर में मुख्य अनुष्ठान और सेवाओं की देखरेख करते हैं।
2: भगवान का प्रसाद लेके गया था, इसको बोला महाराज आप प्रसाद लीजिए, हमारा दरवाजा आज खोलेगा।
1: क्यों?
2: क्या भगवान दवाई खा के अच्छा हो गया, इसलिए भगवान का अच्छा हो गया।
1: संदेश लेके गए,
2: संदेश लेके गया था, भगवान अच्छा हो गया, अब भगवान दरवाजा खोलेगा, पट खोलेगा।
0: नवयावन और नेत्रोत्सव के बाद भगवान बड़े भाई और बहन के साथ रथ पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर यानी मौसी के घर जाएंगे। इस यात्रा में भगवान अपने भक्तों के बीच होंगे, जिसमें न तो कोई राजा होगा और न ही कोई रंग। पुरी के राजा साधारण वस्त्रों में झाड़ू से रथों को साफ करेंगे, रथों का रास्ता बुहारेंगे। पुरी को और देश दुनिया से आने वाले भक्तों को उस पल का इंतजार है जब दिव्य और भव्य रथ यात्रा शुरू होगी। यात्रा में शामिल होने संत आए हैं, महंत आए हैं, साधारण लोगों के साथ शंकराचार्य भी आए हैं। भगवान जगन्नाथ जब रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगे, रथ खींचने का सौभाग्य देंगे, उस पल का इंतजार है, बस एक दिन की बात है।
1: 14 दिन के बाद आज भगवान भक्तों से मिलने के लिए आज भगवान फिर से आ रहे हैं और भगवान का नवजौवन वेश देखने के लिए भक्तों का काफी भीड़ यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे भगवान का ये नवजौवन वेश, आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये वेश, कितना मनमोहक ये नज़ारा आप देख सकते हैं। ये सुंदर तस्वीर आप देख रहे हैं, भगवान 15 दिन से भक्तों को दर्शन नहीं दे रहे थे, भक्तों को मिल नहीं रहे थे, लेकिन आज भक्तों से मिल रहे हैं। भक्तों से कुछ ही घंटों के लिए भगवान भक्तों को मिलेंगे, दर्शन देंगे, फिर ये दर्शन बंद रहेगा। कल रथ यात्रा, परसों और कल रथ यात्रा के लिए थोड़ा दर्शन बंद रहेगा, और इसलिए जो दूर दूर से आए हैं वो भी भगवान को देखने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि आज से ही भक्तों का ये भीड़ देखने के लिए मिल रहा है। जो भक्त भगवान को कुछ ही दिन से देख नहीं रहे थे, वो आज भगवान को फिर से देखने के लिए, भगवान का ये जो रिचुअल्स है, भगवान का ये जो नीति है, इसको देखने के लिए, ये नवजौवन वेश को देखने के लिए भक्तों का भीड़ आज इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं ये भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने वाला ये तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये पूरा कितने तादाद में भक्तों का भीड़ आप देख सकते हैं, हजारों संख्या में भक्त आज यहाँ जुड़ रहे हैं। भक्त और भगवान का महामिलन आज हो रहा है और एक ही दिन बाद भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए यहाँ आएंगे, रथ के ऊपर विराजमान होंगे। तीन भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और प्रभु जगन्नाथ, भाई बहन तीन आएंगे, भगवान को ये भक्तों को दर्शन देंगे। जो भक्त मंदिर के अंदर नहीं जा पाते हैं सालों भर, सालों में एक बार आएंगे और दर्शन देंगे, क्योंकि आज जो भगवान का बनक लागी नीति है, नेत्रोत्सव नीति है, और इसके साथ साथ भगवान का नवजौवन वेश भी है, और ये तीनों चीज़ को एक साथ देखने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए भक्तों का भीड़ आज ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि यहाँ बारिश एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन बारिश को ये लोग बारिश को खातिर नहीं कर रहे हैं, बारिश को देख नहीं रहे हैं। बारिश जितना भी हो, भक्तों का भीड़ कम नहीं हो रहा है। भक्त भगवान के बीच में वो जो मिलन है, वो मिलन को बारिश आज रोक नहीं पा रहा है। जितना भी बारिश हो रहा है, सुबह से अब तक बारिश हो रहा है, लेकिन 8-9 घंटे बारिश होने के बाद भी हजारों संख्या में भक्तों का भीड़ पुरी में देखने के लिए मिल रहा है। पुरी से अजय कुमार, गुड न्यूज टुडे।
3: खास कार्यक्रम में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

क्या गुप्त नवरात्रि सामान्य नवरात्रि से ज्यादा शक्तिशाली है? क्या गुप्त नवरात्रि में कोई भी साधना कर सकता है? गुप्त नवरात्रि में साधना और पूजा का क्या है विधान? और कौन से मिलेंगे इसमें वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।

0: has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
1: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
0: to live sports action.
2: To the near side corner, to wrap around, he scores!
0: And your favorite music. TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
3: मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
2: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: दिल्ली NCR में बदल गया मौसम का मिजाज। कई इलाकों में तेज हवा के साथ हुई बारिश। गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज। मंदिर के बाहर उमड़ा आस्था का मेला। भगवान दे रहे हैं नव यौवन दर्शन। दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्सटाइल एक्सपो का शुभारंभ। 17 जुलाई तक चलेगा कार्यक्रम। देश विदेश से जुटेंगे उद्योगपति। जैसलमेर रेलवे स्टेशन का हुआ कायाकल्प। विरासत और आधुनिकता का दिखा अनोखा संगम। 140 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास। जयपुर बना दुनिया का छठा सबसे खुशहाल शहर। टाइम आउट 2024 की टॉप 10 लिस्ट में शामिल। पिंक सिटी के बाद मिला एक और टाइटल। फीफा वर्ल्ड कप के रंग बिरंगा केरल का त्रिशूर। ब्राजील अर्जेंटीना की जर्सी वाली धोती बनी फुटबॉल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र। मैसी की जर्सी की खासी डिमांड।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: अमरनाथ यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड। 12 दिनों में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए लिखा कि ये बाबा बर्फानी के प्रति लोगों की अटूट आस्था का प्रमाण। सामान्य मौसम भी शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। यात्रा मार्ग पर तैनात माउंटेन रेस्क्यू टीमें लगातार सतर्क। 57 दिनों तक चलेगी साल। 3 जुलाई से शुरू हुई श्री अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा समापन। श्रीनगर में बाबा बर्फानी का दिखा अनोखा भक्त। दिल्ली से कश्मीर तक साइकिल चलाकर पूरी की अमरनाथ यात्रा। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा। केदारनाथ धाम श्रद्धालुओं का आंकड़ा 14 लाख के पार। महज 2.5 महीने में पहली बार 14 लाख श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ धाम। अभी 3 महीने की यात्रा बाकी। प्रतिदिन 2000 भक्त कर रहे हैं दर्शन। केदारनाथ धाम में खराब मौसम पर भारी दिखे आस्था। श्रद्धालुओं में दर्शन पूजन का जबरदस्त उत्साह। केदारनाथ में बारिश के बीच अलर्ट पर प्रशासन। प्रशासन ने संवेदनशील स्थानों पर बढ़ाई जवानों की तैनाती। केदारनाथ में इस बार नया रिकॉर्ड बनने की उम्मीद। यात्रियों के लिए डेंजर जोन पर जवान तैनात। बद्रीनाथ में खराब मौसम पर भारी दिखे आस्था। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन। बद्रीनाथ धाम में अब तक कुल 14,82,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन। पिछले 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर जारी है बारिश। बद्रीनाथ धाम में बारिश के बीच तूफान पर अलकनंदा नदी। मानसून के चलते अद्भुत नजर आ रही है यात्रा मार्ग की प्राकृतिक सुंदरता। बारिश के बीच धुंध की मोटी चादर में लिपटी नजर आई ऊंची पहाड़ियां। हेमकुंड साहिब में भी उमड़ा आस्था का जनसैलाब। अब तक 1,92,000 से ज्यादा भक्तों ने टेका मत्था। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ जी के 149वीं भव्य रथ यात्रा से पहले ग्रैंड रिहर्सल। 30,000 से ज्यादा पुलिस समेत सुरक्षा बल तैनात। रिहर्सल से पहले जगन्नाथ मंदिर में हुई मंदिर की ध्वजारोहण और महाआरती के बाद परंपरागत नेत्रोत्सव विधि। अहमदाबाद में सुरक्षित रथ यात्रा के लिए गुजरात पुलिस की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था। 100 से ज्यादा ड्रोन से हो रही है निगरानी। देवघर में भी बालानंदा ब्रह्मचारी आश्रम में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। 2005 से निकाली जा रही है रथ यात्रा। फूलों से सजाया जाता है विशाल रथ। पुरी से लाई गई नीम की लकड़ी से बनाई जाती है भगवान की प्रतिमा। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले मॉक ड्रिल। कई एजेंसियों ने लिया हिस्सा। जवानों ने इमरजेंसी और आपदा से निपटने के लिए किया मॉक ड्रिल। सुरक्षा को भी परखा। इमरजेंसी के दौरान लोगों ने सड़कों को किया खाली। मॉक ड्रिल में एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। पूरी रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए 12,000 पुलिसकर्मी ड्रोन और एंटी ड्रोन उपकरणों की तैनाती। भुवनेश्वर पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी। निश्चलानंद सरस्वती रथ यात्रा में शामिल होंगे। हरिद्वार में जोरों पर कांवड़ यात्रा की तैयारियां, कांवड़ियों की सुरक्षा और सुगम यात्रा के लिए किए जा रहे हैं प्रबंधों का निरीक्षण। प्रशासन ने 25 जुलाई तक सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए एसएसपी के साथ, डीएम ने की यात्रा मार्ग की समीक्षा। सैलानियों से गुलजार हुई चमोली की फूलों की घाटी, अब तक 11,000 पर्यटकों ने दीदार किया। रंग बिरंगे दुर्लभ हिमालय फूलों का दिखा मनमोहक नजारा, जुलाई अगस्त के मुख्य सीजन में घाटी पर दिखता है प्राकृतिक सुंदरता का नजारा। इस साल 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दी गई है फूलों की घाटी। विरासत, आधुनिकता, पर्यटन और राष्ट्रीय सुरक्षा का बेजोड़ संगम बना जैसलमेर रेलवे स्टेशन, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास। 10 लिफ्ट और 10 स्वचालित सीढ़ियों से यात्रियों को मिलेगी सुविधा, करीब 140 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन को मिला है विस्तारीकरण रूप। प्लेटफॉर्म के बीच आसान आवाजाही के लिए बनाए गए हैं 6 मीटर चौड़ाई वाले 2 नए फुटओवर ब्रिज। अब हैप्पी सिटी के नाम से मशहूर हुआ पिंक सिटी जयपुर, दुनिया के टॉप 10 सबसे खुशहाल शहरों में शामिल। टाइम आउट 2026 की सूची में जयपुर बना दुनिया का छठा सबसे खुशहाल शहर, भारत का एकमात्र शहर है जिसने टॉप 10 में जगह बनाई है। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब दौरा, 2,500 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। बिहार के 211 नए डिग्री कॉलेजों में शुरू होगी पढ़ाई, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के 211 डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई को लेकर कल भागलपुर में करेंगे शुभारंभ। योगी सरकार में मेरठ बना स्पोर्ट्स हब, अब पारंपरिक लकड़ी के क्रिकेट बैट के साथ बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे हैं आधुनिक तकनीक से प्लास्टिक और फाइबर बैट। नई मशीनें लगाने पर मिल रही 50% तक की सब्सिडी। सैलानियों के लिए सुरक्षा के कुल्लू प्रशासन ने फैसला लिया, 15 जुलाई से 15 दिसंबर तक व्यास नदी में रिवर राफ्टिंग पर रोक। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2028-29 के अस्थायी सदस्य पद के लिए अपना अभियान शुरू कर दिया, बोले हमारा शांति विजन है कि दुनिया को संकट से बचाएगा। कैंपेन की शुरुआत करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि भारत दुनिया को अधिक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और न्याय संगत माहौल के निर्माण के लिए काम करेगा। 2028-29 कार्यकाल के लिए यूएनएससी ने के चुनाव जून 2027 में होंगे। फीफा वर्ल्ड कप के रंग में रंगा पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर, डार्क चॉकलेट और फूड कलर से बनाई लियोनेल मैसी की प्रतिमा। प्रतिमा में बहुत बारीकी से उकेरे गए हैं मैसी के चेहरे के भाव। यूपी रेरा यानी उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से घर खरीदने की अच्छी खबर, अब जीएसटी दर से ज्यादा पैसे नहीं ले सकेंगे बिल्डर। दिल्ली में आयोजित भारत टैक्स 2026 में बिहार पवेलियन का उद्घाटन हुआ, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह शामिल हुए। टेहरी में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए शानदार पहल, पुलिस ने किया टीम गौरा का गठन। सेल्फ डिफेंस और साइबर अपराध से बचाने के लिए ट्रेनिंग, महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा जागरूकता और त्वरित सहायता की सुनिश्चित। स्कूल कॉलेजेस और संवेदनशील स्थानों पर नियमित गश्त करेगी टीम। सीबीएसई ने R3 भाषा असेसमेंट फ्रेमवर्क किया जारी, 10वीं में तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं। कर्नाटक में बनेगी देश की पहली सरकारी AI यूनिवर्सिटी, मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने की घोषणा। छह दशक के बाद गीर के जंगलों में फिर से गूंज रही है इंडियन ग्रे हॉर्नबिल पक्षियों की चहचहाहट। गीर सोमनाथ में एक साथ सड़कों पर देखे 11 शेर का झुंड, लोगों ने कैमरे में कैद किया। IIT IIM धनबाद में न्यूक्लियर साइंस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ऊर्जा सुरक्षा में खनन और न्यूक्लियर साइंस की बढ़ती भूमिका पर जोर। मॉनसून के दिनों में भी जम्मू कश्मीर की कैरन घाटी में बढ़ रही है सैलानियों की भीड़। आबादी की खूबसूरती को निहारने दूर दूर से पहुंच रहे हैं सैलानी। चेन्नई में मुख्यमंत्री विजय ने बांटे नियुक्ति पत्र। हुगली में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रथ यात्राओं का किया उद्घाटन। डीएम और पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक। नर्मदा नदी में डूब रही युवती के देवदूत बनी पुलिस, नदी में कूदकर युवती को बाहर निकाला। पुलिस जवान ने मौके पर CPR देकर बचाई युवती की जान। युवती का अस्पताल में चल रहा इलाज। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन बेटे ने भरी अंतरिक्ष की उड़ान। नासा के विमान से पहुंचेंगे ISS। कजाकिस्तान के ऐतिहासिक बैकुनूर कॉस्मोड्रोम से रूसी अंतरिक्ष यात्रियों प्योत्र और अन्ना के साथ उड़ान भरी। भारतीय समय अनुसार रात 8:17 पर अंतरिक्ष यान सोयुज MS-29 में भरी उड़ान। करीब 3 घंटे बाद ISS से जुड़ेगा अंतरिक्ष यान। यूक्रेनी और भारतीय मूल के माता पिता के घर पैदा हुए अनिल मेनन अमेरिकी स्पेस फोर्स में कर्नल और इमरजेंसी मेडिसिन में फिजिशियन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के दौरे के दौरान माइक्रोग्रेविटी सेमीकंडक्टर समेत कई प्रयोग करेंगे। धुरंधर के बाद अब बॉक्स ऑफिस पर आएगी रणबीर कपूर की प्रलय। रिपोर्ट्स के अनुसार अगले महीने शुरू हो जाएगी इस मूवी की शूटिंग। तुम्बाड़ 2 में नजर आएंगी आलिया भट्ट। 3 दिसंबर 2027 को सिनेमाघरों में होने जा रही है रिलीज। पैनोरमा स्टूडियोज ने पंजाबी सिनेमा में मजबूत की अपनी पकड़। 3 पंजाबी फिल्मों अर्जेंटीना थापी और रंगछेया के वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल राइट्स हासिल किए। धमाल 4 का बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन। 85 करोड़ का आंकड़ा पार। बॉलीवुड फिल्म ईविल डैड बर्न के लिए भारत नंबर 1 मार्केट। वीकेंड पर भारत में फिल्म का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 12 करोड़। 7 साल के बाद फिर से बड़े पर्दे पर गोविंदा की एंट्री। फिल्म रूपा और दुनियादारी में आएंगे नजर। ऑपरेशन सफेद सागर का टीजर हुआ रिलीज। कारगिल युद्ध के दौरान इंडियन एयरफोर्स की मुश्किल ऑपरेशन को दिखाएगी सीरीज। वेब सीरीज आदर्श बाल विद्यालय का ट्रेलर हुआ रिलीज। इम्तियाज अली की बेटी इदा ने बॉयफ्रेंड के साथ की सगाई। परिवार के साथ लंदन वेकेशन पर दिखी प्रियंका चोपड़ा। बेटी मालती ने निकाले मां के बालों के क्लिप। आज रात खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल। फ्रांस और स्पेन के बीच बढ़त। लगातार तीसरी बार फाइनल्स में जगह पक्की करने के इरादे से होगा फ्रांस। 20 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप में आमने सामने होने जा रहे हैं फ्रांस और स्पेन। इस मुकाबले में किलियन एम्बापे और लामिन यमान जैसे सुपरस्टार्स नजर आएंगे। ओवरऑल दोनों टीमों के बीच अब तक हुए कुल 38 मुकाबले जिसमें से स्पेन ने जीते हैं 18। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में जुड़ी यादगार चीजों की होगी शानदार नीलामी। ऑक्शन की जा रही चीजों में मैच में इस्तेमाल गेंदें, टीम के खिलाड़ियों के साइन वाली जर्सी और पहले वर्ल्ड कप फाइनल हाफ टाइम शो से जुड़ी हुई चीजें शामिल। नीलामी में इस वर्ल्ड कप सीजन के ओपनिंग गेम के साथ 19 जुलाई को होने वाला फाइनल मैच की गेंद भी शामिल की जाएगी। नीलामी में पहले वर्ल्ड कप फाइनल के हाफ टाइम शो से जुड़े कपड़े और परफॉर्मेंस में इस्तेमाल चीजें भी शामिल होंगी। से 29 जुलाई तक चलेगी है ऑनलाइन सेल। फीफा ग्लोबल सिटीजन एजुकेशन फंड को दी जाएगी ऑक्शन से मिलने वाली रकम। न्यूयॉर्क में सोथबीज में होगी लगभग 38 फीट लंबे टी रैक्स के कंकाल की नीलामी। लगभग 6.7 करोड़ साल पुराने लेट क्रिटेशियस काल का है यह कंकाल। बीजिंग के ओल्ड समर पैलेस में इस साल पहली बार देखा गया चुड़वा कमल का एक दुर्लभ फूल। चांगचुन गार्डन इलाके में झील के किनारे मिला यह खूबसूरत कमल, इनमें एक ही डंठल से दो पूरी कलियां निकली है। कमल का एक दुर्लभ प्राकृतिक रूप है यह जुड़वा कमल, पारंपरिक चीनी संस्कृति में एकता सद्भाव और सौभाग्य का प्रतीक। अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक साथ खिले दो कॉप्स फ्लावर बोटेनिकल गार्डन में इस दुर्लभ नजारे को देखने के लिए लोग पहुंचे। कॉप्स फ्लावर की सबसे बड़ी पहचान है कि इसकी बदबू फूल के खिलते ही इससे आती है सड़े मांस जैसी गंध। सिर्फ 24 से 48 घंटे तक रहता है यह अनोखा नजारा। इंडोनेशिया का यह दुर्लभ पौधा 2 से 3 साल में सिर्फ एक बार खिलता है। यह फूल लोगों को संरक्षण के लिए जागरूकता करता है और ऐसे खिले हुए दुर्लभ फूल को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। फूल की बदबू पर विजिटर्स की मजेदार रिएक्शन, किसी ने इसे कूड़ेदान जैसी गंध बताया तो किसी ने इसे बदबूदार जानवर जैसा बताया। एफिल टावर पर रोशनी का शानदार नजारा, बेस्टल डे पर एफिल टावर के ऊपर आतिशबाजी। दो शोर बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, सैकड़ों ड्रोन आसमान में कई शानदार कलाकृतियां करते हुए नजर आए। फ्रांस ने पूरे देश में राष्ट्रीय पर्व बैस्टिल डे धूमधाम से मनाया, इस भव्य जश्न को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। चौदह जुलाई को मनाया जाने वाला बैस्टिल डे 1789 में बैस्टिल झील पर कब्जे और फ्रांसीसी क्रांति की याद दिलाता है। रंग बिरंगी आतिशबाजी और ड्रोन लाइट शो ने एफिल टावर के आसपास का आसमान रोशनी से भर दिया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
2: क्या गुप्त नवरात्रि सामान्य नवरात्रि से ज्यादा शक्तिशाली है? क्या गुप्त नवरात्रि में कोई भी साधना कर सकता है? गुप्त नवरात्रि में साधना और पूजा का क्या है विधान और कौन से मिलेंगे इसमें वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Hey Buena.
4: La Que Buena.
3: ESPN Radio.
5: We know LeBron has to be the best player on the planet to
3: get The Daily.
6: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
3: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम। लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर के खजाने की गिनती ने सभी को चौंका दिया। देखिए, जब मंदिर के मासिक भंडार की गिनती की गई तो पहले ही दिन 10 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा मिला। हर बार की तरह इस बार भी चतुर्दशी पर दान पात्र खोले गए और मंदिर मंडल के कर्मचारियों ने बैंक का कर्मियों की मौजूदगी में नकद की गिनती की तो पहले ही चरण में 10,11,83,000 रुपए की गणना की गई। खास बात देखिए इसमें यह रही कि ये राशि जो है सिर्फ दानपात्र से मिले नकद चढ़ावा का ही हिस्सा है। इस दानपात्र के अलावा मंदिर को मिलने वाले चेक, ऑनलाइन दान, सोने चांदी के आभूषण और अन्य चढ़ावे की गिनती अभी बाकी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है जाहिर तौर पर कि अंतिम आंकड़ा सबसे कहीं ज्यादा हो सकता है और आज अमावस्या होने की वजह से धार्मिक परंपरा के अनुसार खजाने की गिनती का काम स्थगित कर दिया गया है। कल से गिनती दोबारा शुरू की जाएगी। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह बना हुआ है। अब तक करीब 2,00,000 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। इस बीच श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। अब अमरनाथ यात्रा के लिए तीसरा रूट खोलने पर विचार हो रहा है जो पहले के दोनों मार्गों यानी पालटाल और पहलगाम से छोटा, आरामदायक और सुरक्षित होगा।

0: कठिन डगर है, लंबा सफर है, मगर उत्साह में कोई कमी नहीं। ये आस्था की मजबूत डोर ही है कि लाखों श्रद्धालु चुनौतियों को पार करते, बम बम भोले का जयकारा लगाते, बाबा बर्फानी के दर्शन के आस लिए चल पड़े हैं। एक दूसरे से अनजान लेकिन सब जाने पहचाने से, सबकी एक ही मंजिल, एक ही रास्ता जो महादेव के दर तक जाता है। खड़ी चढ़ाई, पथरीला रास्ता और पर्पल बदलता मौसम, लेकिन बाबा बर्फानी के भक्तों का जोश कम नहीं। आस्था का आलम यह है कि 3 जुलाई से शुरू हुई इस यात्रा में अब तक 2,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा में पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं।
1: इस साल की अमरनाथ यात्रा में पहले 10 दिन बीत चुके हैं और 10 दिन के ही दौरान 2,00,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह ने जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी इस बात को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या आखिर कोई और मुतबादिल रास्ता अमरनाथ गुफा की ओर जा सकता है।
0: फिलहाल अमरनाथ यात्रा पहलगाम और बालटाल 2 मार्गों से हो रही है, लेकिन भविष्य में इस यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 3रा मार्ग तैयार करने की चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि ये 3रा मार्ग छोटा भी होगा और श्रद्धालुओं के लिए आरामदायक भी। ये प्रस्तावित मार्ग लद्दाख के मीनामर्ग को करीब 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा को जोड़ेगा। ये रास्ता करीब 6 किलोमीटर का होगा, जिस पर चलकर तीर्थयात्री एक ही दिन में पवित्र गुफा पहुंच सकेंगे।
1: इसमें एक रास्ता पहलगाम से होते हुए अमरनाथ गुफा जाता है, जो रिवायती रास्ता है, सबसे लंबा रास्ता है और धार्मिक तौर पर भी श्रद्धालु उस रास्ते को चुनते हैं, क्योंकि ये लंबी यात्रा उन सभी धार्मिक पड़ावों से गुजरती है जो अमरनाथ यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे फिर वो चंदनबाड़ी हो, चाहे फिर वो शेषनाग हो, चाहे फिर वो पंचसरनी हो और फिर अमरनाथ गुफा। दूसरा रास्ता बालटल का, जो ज़्यादा पुराना नहीं है लेकिन नज़दीक रास्ता है। बालटल रास्ते से जाने के लिए श्रद्धालुओं को सोनमर्ग पहुँचना पड़ता है, लेकिन अब एक नया रास्ता लद्दाख की तरफ से अमरनाथ गुफा की ओर चर्चा में है। ये रास्ता दरअसल करगिल हाईवे में गुमरी की जगह से मात्र 6 किलोमीटर तक लंबा है और अमरनाथ गुफा सीधे पहुंचता है। अब जबकि अमरनाथ यात्रा को लेकर लोगों की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ हर साल बढ़ती जा रही है, उस बीच अब इस रास्ते को खोलने के लिए, बनाने के लिए चर्चाएं शुरू हो गई है।
0: दावा ये किया जा रहा है कि इस मार्ग की भौगोलिक परिस्थितियाँ मौजूदा बालटाल और पहलगाम मार्ग की अपेक्षा ज्यादा अनुकूल हैं। इस क्षेत्र में घाटियां चौड़ी और अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं, जिससे श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं तैयार करने के लिए पर्याप्त और सुरक्षित स्थान उपलब्ध होगा। श्रीनगर लेह मार्ग पर बन रही जोजिला टनल का काम पूरा होने के बाद सरकार अमरनाथ यात्रा का ये 3रा मार्ग खोलने पर विचार कर रही है।
1: अगर ये रास्ता बनता है और फिर श्रद्धालुओं के लिए खुलता है तो अमरनाथ यात्रा श्रद्धालुओं के लिए और तीर्थयात्रियों के लिए करना और भी आसान होगा। गुड न्यूज टुडे के लिए तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर से।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
3: दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज हवा के साथ हुई बारिश, गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, मंदिर के बाहर उमड़ा आस्था का मेला, भगवान दे रहे नवयौवन दर्शन। दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्सटाइल एक्सपो का शुभारंभ, 17 जुलाई तक चलेगा कार्यक्रम, देश विदेश से जुटेंगे उद्योगपति। जयपुर बना दुनिया का छठा सबसे खुशहाल शहर, टाइम आउट 2026 की टॉप 10 लिस्ट में शामिल, पिंक सिटी के बाद मिला एक और टाइटल। फीफा वर्ल्ड कप के रंग में रंगा केरल का त्रिशूर, ब्राजील अर्जेंटीना की जर्सी वाली धोती बनी फुटबॉल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र, मैसी की जर्सी की खासी डिमांड।

0: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम पंडित जी के साथ क्या चर्चा करने वाले हैं। आज का चर्चा का विषय है गुप्त नवरात्रि। चूंकि सभी जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है, तो आज के इस शो में पंडित जी आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं कि गुप्त नवरात्रि की महिमा क्या है और गुप्त नवरात्रि के दौरान कौन से ऐसे अचूक उपाय हैं जो आप सब कर सकते हैं जिससे आपकी किस्मत पलट सकती है। इस बारे में तमाम जानकारियां पंडित जी आपको देंगे, महामंत्र भी बताएंगे, खास उपाय के बारे में जानकारी भी देंगे, आपके सवाल भी हम इस शो में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आती है गुड लक मंत्र की।
1: गुप्त नवरात्रि में अगर आप पूजा उपासना करते हैं, अगर आप साधना करते हैं, तो अपनी पूजा उपासना

0: तक चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: और चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं पंडित जी के साथ। शुरुआत में हमने आपको बताया गुप्त नवरात्र का आज जिक्र करेंगे, लेकिन उसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करें। सवाल ये उठता है पंडित जी, क्या है नवरात्र का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व, वो समझाइए
0: जी। देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि क्या है, इसका प्रभाव क्या है, इसको गुप्त नवरात्रि कहते क्यों हैं? तो सबसे पहले नवरात्रि के बारे में जानते हैं। देखिए, नवरात्रि वास्तव में आप समझते हैं कि साल में 2 बार आती है, जबकि वास्तव में नवरात्रि साल में 4 बार मनाई जाती है। 2 बार गुप्त नवरात्रि और 2 बार सामान्य नवरात्रि। चैत्र की नवरात्रि यानी अप्रैल वाली और आश्विन की नवरात्रि यानी अक्टूबर वाली नवरात्रि ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा माघ में यानी जनवरी में और आषाढ़ लगभग जुलाई में गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। सामान्य लोग गुप्त नवरात्रि का पालन नहीं करते, गुप्त नवरात्रि गोपनीय साधनाओं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें गुप्त साधनाएं की जाती हैं, तंत्र मंत्र के उपाय किए जाते हैं, सिद्धियां हासिल की जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में शक्ति प्राप्त की जाती है और बाधाओं के नाश करने का वरदान मांगा जाता है। जो चारों नवरात्रियां पड़ती हैं, अगर आप उस समय को देखें तो वैज्ञानिक रूप से उस समय में ऋतुओं में बदलाव होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है और ऋतु परिवर्तन के समय शरीर में तमाम परिवर्तन होते हैं। शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, तो चाहे सामान्य नवरात्रि हो चाहे गुप्त नवरात्रि हो, अगर इस समय उपवास रखा जाए या खान पान का ख्याल रखा जाए तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है और इस समय साधना करने से उसकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस बार आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई से 22 जुलाई तक रहेगी।
1: और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को पंडित जी के साथ आगे बढ़ाएंगे। बारी आती है राशिफल पर आने की और पहली 3 राशियों का हाल पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। पहली 3 राशियों का नाम है मेष, वृष और मिथुन।
0: मेष राशि, रिश्तों की समस्या पर इस समय ध्यान दें, अनावश्यक तनाव न पालें, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी,

0: भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, करियर की समस्या हल होगी, मन की चिंताएं दूर होंगी, आर्थिक पक्ष अच्छा बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, आर्थिक लाभ होने के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी, सवाल ये है कि अंतर क्या होता है सामान्य और गुप्त नवरात्रि में, इस अंतर को कैसे समझा जाए और इसका प्रभाव क्या होता है?
0: देखिए, अगर सामान्य नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि के अंतर को समझना चाहें तो सामान्य नवरात्रि में, जो चैत्र और आश्विन में पड़ती है, इसमें सात्विक और तांत्रिक दोनों पूजा की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में ज्यादातर गोपनीय साधनाएं और तांत्रिक पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में आम तौर पर ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, अपनी साधना को गोपनीय रखा जाता है। गुप्त नवरात्रि की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें अपनी पूजा को और मनोकामना को आप जितना ज्यादा गोपनीय रखेंगे उतनी ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। चूंकि इसमें साधना गोपनीय होती है, साधना गुप्त रखी जाती है, इसीलिए इसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। शाक्त तंत्र के लिए, देवी के उपासकों के लिए गुप्त नवरात्रि एक बड़ा अच्छा मौका है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का फायदा लेना चाहते हैं, रात्रि

0: समय बड़ा अच्छा समय है, इसमें आप गंभीरता से गोपनीय तरीके से अपनी साधनाओं को कर सकते हैं।
1: और चलिए राशिफल पर वापस आते हैं और अगली तीन राशियों का हाल भी पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। कर्क, सिंह और कन्या वालों के भाग्यफल में आज का लिखा है, पंडित जी से जानते हैं।
0: कर्क राशि, करियर में आपके लाभकारी बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर चिंता ना करें, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, यात्राओं से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, स्थान परिवर्तन हो सकता है, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, कोई बड़ी समस्या हल होगी, धन लाभ की स्थिति बनेगी, जीवन साथी को लाभ होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब आते हैं उस सेगमेंट पर जिसका आपको इंतजार रहता है, आप सब दर्शकों के सवाल और पंडित जी के जवाब। इससे पहले कि पहले प्रश्न की तरफ बढ़ूं, आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है आपका, कोई परेशानी है उसका निवारण चाहते हैं तो अपने तमाम सवाल ईमेल के माध्यम से इस शो में भेजिए। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। पंडित जी, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ।
0: जी, आज का पहला प्रश्न प्रतिभा दीक्षित जी ने हमें लिखा है और प्रतिभा जी हमें कानपुर से मेल लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 20 अक्टूबर सन 1998, जन्म का समय रात में 10:15, जन्म स्थान है कानपुर। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा अभी एक सामान्य नौकरी करता है और आगे उच्च पद प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो क्या मेरा बेटा आगे गवर्नमेंट जॉब में जा सकेगा? प्रतिभा जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से अगर वो उच्च पद के लिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो साल 2027 में उनके सफल होने की संभावना जरूर बनती है। साल 2027 में वो सफल होंगे। एक उनको मूंगा बनवा के पहनाइए, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनाइए और उनसे कहिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो उनको लाभ होगा।
1: चलिए इसी के साथ वक्त तो चला है दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ने का और जानते हैं कि कौन से दर्शक का सवाल पंडित जी तक आया है। पंडित जी
0: जी अगला प्रश्न अभय कौशिक जी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 जून 1975 दोपहर के 2:40। जन्म स्थान है दिल्ली। अभय जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर एक मुकदमा चल रहा है, काफी समय से व्यर्थ का आरोप मेरे ऊपर लगा हुआ है, उस मुकदमे से मुझे मुक्ति कब तक मिलेगी? अभय जी आपकी कुंडली के हिसाब से जो मुकदमा व्यर्थ का आपके ऊपर चल रहा है उससे आप अगले साल तक छुटकारा पा सकेंगे। साल 2027 में आपको मुक्ति मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। 2027 के अप्रैल के बाद इस मामले का निपटारा हो सकेगा। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए और हर मंगलवार को गुड़ या हलवा पूड़ी निर्धनों में बांटिए। ऐसा करने से आपकी मुश्किल हल हो जाएगी।
1: चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पंडित जी से ये जानते हैं कि पंडित जी क्या होगी गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा विधि, किस तरह से माँ को प्रसन्न करें ताकि माँ की असीम कृपा हम सबको प्राप्त हो।
0: देखिए गुप्त नवरात्रि में भी भगवती दुर्गा की ही पूजा की जाती है, या जो लोग तंत्र साधना करते हैं वो 10 महाविद्या की पूजा भी करते हैं। तो गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा कैसे करेंगे? आप चाहें तो 9 दिनों के लिए कलश की स्थापना कर सकते हैं, और अगर आपने कलश की स्थापना की है तो दोनों समय सुबह और शाम मंत्र का जप करें, 40 पढ़ें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या साधना करें, दोनों समय सुबह भी और शाम को भी। दोनों समय आरती भी अगर आप देवी की करें तो आपके लिए अच्छा होगा। और माता की जब आप पूजा करें सुबह और शाम तो दोनों समय भोग भी लगाइएगा। सबसे सरल और उत्तम भोग है लौंग और बताशा। माता के लिए लाल फूल सर्वोत्तम होता है। माँ की पूजा में आप लाल फूल अर्पित करें, लाल फूलों से उनकी पूजा करें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन देवी को पूजा में आक, मदार, दूब और तुलसी ये आप अर्पित नहीं करेंगे। पूरे 9 दिन अपना खान पान और अपना आहार सात्विक रखेंगे। देखिए एक अलग से बात मैं बताऊं कि गुप्त नवरात्रि में आप जब विशेष साधना करना चाहते हैं या विशेष पूजा करना चाहते हैं तो मध्य रात्रि में साधना करना या मध्य रात्रि में पूजा करना ज्यादा बेहतर होगा। पूरे गुप्त नवरात्रि में मध्य रात्रि के 11 बजे से 1 बजे के बीच में अगर आप साधना करें, अगर आप पूजा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस समय में साधना करने से, इस समय में मंत्र जप करने से उसके ज्यादा बेहतर परिणाम आपको जीवन में प्राप्त होंगे। तो गुप्त नवरात्रि में भी आप कोशिश करें कि आपकी साधना अगर मध्य रात्रि की रहे तो इसके प्रभाव ज्यादा बेहतर आएंगे।
1: और चलिए राशिफल के साथ आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु वालों की बारी आती है और पंडित जी से जान लेते हैं कि इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है।
0: तुला राशि, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा, रिश्तों की समस्या आपकी दूर होगी, करियर की रुकावट दूर होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का लाभ होगा, कोई मनोकामना पूरी होगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, व्यर्थ का तनाव ना पालें, जल्दबाजी में काम करने से बचें, बड़ों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
1: और चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पंडित जी से अब ये जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि के दौरान ऐसे कौन से विशेष प्रयोग किए जा सकते हैं जिसके जरिए जीवन में आपको सफलता प्राप्त हो। पंडित जी,
0: देखिए, गुप्त नवरात्रि में आप बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं और देवी की विशेष कृपा पाकर अपनी मुश्किलों को हल कर सकते हैं। जैसे अगर आप शीघ्र रोजगार की प्राप्ति चाहते हैं, आपके रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो क्या करेंगे, देवी के समक्ष घी का एक दीपक जलाएं, 9 बताशे ले लें और हर बताशे पर 2 लौंग रखेंगे। अब एक एक करके सारे बताशे देवी को अर्पित करिए और अर्पित करने के बाद शीघ्र रोजगार के व्यवस्था की प्रार्थना करिए। बाद में उन लौंग और बताशों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। ये प्रयोग नवरात्रि में किसी भी रात को अगर आप करें, गुप्त नवरात्रि में, तो आपके रोजगार की व्यवस्था शीघ्र होगी।
1: चलिए, रोजगार के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया है, गुप्त नवरात्र के दौरान आपको क्या कुछ करना है। अब जानते हैं कि जिनका विवाह नहीं हो पा रहा, शीघ्र विवाह आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए गुप्त नवरात्र में कौन से ऐसे अचूक उपाय हैं जो आप सभी कर सकते हैं।
0: अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो तो शीघ्र विवाह के लिए गुप्त नवरात्रि में क्या करें? देवी के सामने पूरे गुप्त नवरात्रि में रोज एक घी का दीपक जलाइएगा। इसके बाद रोज उनको लाल फूलों की माला अर्पित करें या कम से कम दो लाल फूल रोज अर्पित करिएगा और इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। ये प्रयोग गुप्त नवरात्रि की हर रात को आपको करना चाहिए। अगर रोज नहीं कर पाते तो कम से कम

0: बेहतर होगा। और ये प्रयोग करके अगर आप शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें, चाहे आप पुरुष हो चाहे आप स्त्री हो, आपका विवाह शीघ्र होगा।
1: और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं अंत की तरफ और पंडित जी से जान लेते हैं अंतिम तीन राशियों का हाल भी, मकर कुंभ और मीन वालों के भाग्यफल में क्या लिखा है वो पंडित जी आपको जानकारी देंगे।
0: मकर राशि, करियर में सफलता मिलती दिखाई दे रही है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, काम की अधिकता रहेगी, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, नया काम कर सकते हैं, सेहत अच्छी होती जाएगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी दर्शकों का सवाल। तो पंडित जी ही आपको जानकारी देंगे कि कौन सा है पंडित जी के पास अगला सवाल।
0: जी, अगला प्रश्न सरिता जी ने हमें लिखा है और सरिता जी हमें मेल लिखती हैं हरियाणा से। इनकी जन्म की तारीख है 2 जनवरी 1973। जन्म का समय शाम के 5 बजे और जन्म का स्थान है कैथल हरियाणा। ये कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है और तमाम तरह की स्वास्थ्य की समस्याएं मुझे हो गई हैं, तो मेरा स्वास्थ्य और मेरा जीवन कब तक बेहतर हो सकेगा? सरिता जी, आपके साथ ज्यादातर जो समस्याएं हैं वो हड्डियों की हैं, नसों की हैं, उनका आपको ध्यान देना होगा, डॉक्टर का परामर्श मानना होगा। ज्योतिष के हिसाब से इस साल के अक्टूबर के बाद से आपके स्वास्थ्य की स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और एक माणिक्य, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार की प्रातः धारण करिए, आपको लाभ होगा।
1: चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है इस शो में दर्शकों का अंतिम सवाल लेने का। पंडित जी से जानकारी लेते हैं कि कौन से दर्शक की समस्या का समाधान पंडित जी करने वाले हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न अंबुज भटनागर ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं। 11 जून 1992 का जन्म है, जन्म का समय है रात में 8 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। अंबुज कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अंबुज आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है और ये संभावना आपके लिए बनती है कि आपकी शादी 2027 के आरंभिक समय में हो सकेगी। वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के बेहतर है और आपका विवाह दिल्ली या दिल्ली के निकट होगा, ऐसी संभावना बन रही है। एक ओपल बनवा करके पहने, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें, रोज सुबह और शाम नमः शिवाय का 108 बार जप करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 15 जुलाई को उनका बर्थडे, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 15 जुलाई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य के लिए समस्या हो सकती है, हालांकि करियर की स्थिति ठीक बनी रहेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा और साल के अंत में विदेश यात्रा के योग आपके बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए पंडित जी से अब जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: सामान्य नवरात्रि में हम अपने आहार पर ध्यान देते हैं, प्याज लहसुन मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करते हैं, तो क्या गुप्त नवरात्रि में भी आहार पर ध्यान देना चाहिए? चूंकि इस समय ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम बदलता है, इसलिए इस समय भी आहार पर ध्यान देना उचित है। जो लोग साधना करते हैं उनके लिए आहार पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी लोग भी अगर पवित्र आहार ग्रहण करें, सात्विक आहार ग्रहण करें तो उनके लिए बेहतर होगा।
1: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 15 जुलाई 2026 बुधवार के शुभपहर के बारे में।
0: दिनांक 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में माता दुर्गा को लाल फूल अर्पित करिएगा। आपके काम में जो रुकावटें चली आ रही हैं वो तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 15 जुलाई बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
1: और जैसा कि आप सबको ज्ञात है, शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुडलक राशि के बारे में। तो आज के शो की गुडलक राशि यानी आपकी राशि कौन सी है, पंडित जी से जानते हैं।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किस ग्रह का दान करना चाहिए। आज की गुडलक राशि है मेष राशि। इनको बुध और शुक्र ग्रह का दान करना अच्छा होगा। अगर ये नियमित रूप से बुध और शुक्र ग्रह का दान करें तो इससे करियर और धन की तमाम बाधाएं दूर हो जाएंगी।
1: चलिए, शो से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां उपाय तो पंडित जी ने आपसे साझा कर दिए हैं। अब बारी आती है खास उपाय के बारे में ज्ञान लेने की। तो पंडित जी से ही जानते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। पंडित जी
0: जी, गुप्त नवरात्रि में आप ऐसा क्या उपाय करें जिससे आपकी धन की मुश्किलें दूर हो जाएं, जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। पूरी गुप्त नवरात्रि में मध्य रात्रि को मिडनाइट में 11 बजे से 1 बजे के बीच में माता लक्ष्मी की उपासना करें। उनके सामने घी का दीपक जलाकर श्री सूक्तम का पाठ करें और पूरी नवरात्रि में सात्विक रहें, प्याज लहसुन मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। तो पूरी नवरात्रि में जितने दिन भी कर सकें, अगर मध्य रात्रि में श्री सूक्तम का पाठ करें तो आपका कल्याण होगा।
1: तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए जीएनटी। नमस्कार।

0: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, "Remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific." Two, when it's time, just say, "Play Hot Mics on TuneIn." And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: बात करेंगे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की, जो 16 तारीख को देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली जाएगी। लेकिन रथ यात्रा को लेकर जैसी रौनक उड़ीसा के पुरी में देखने को मिल रही है, वैसी कहीं और देखने को नहीं मिलती। आज परंपरा के मुताबिक 15 दिनों तक स्वस्थ रहने के बाद पहली बार महाप्रभु जगन्नाथ के भक्तों को नवयौवन दर्शन उन्होंने दिए। और इस बीच रथ यात्रा का जिम्मा संभाल रही तमाम एजेंसियों ने तैयारियों को परखने के लिए एक मॉक ड्रिल की, ताकि रथ यात्रा का आयोजन सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके।

0: बस एक दिन बाद भगवान जगन्नाथ के शहर पुरी में आस्था और भक्ति का अनंत सैलाब उमड़ने वाला है। पुरी की सड़कों पर चारों तरफ भक्तों की भीड़ होगी और होगा उत्सव का माहौल, जिसमें क्या आम और क्या खास, हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को बेताब है ताकि महाप्रभु के मनोहारी दर्शन का लाभ उठा पाए। इस रथ यात्रा के शुरू होने से पहले होने वाली पूजा पाठ और अनुष्ठान जोर शोर से मंदिर में चल रहे हैं। इसी कड़ी में आज 15 दिन बाद स्वस्थ होकर महाप्रभु ने भक्तों को नव यौवन दर्शन दिया, जिसके बाद मंदिर के सेवायतों ने ये सुखद खबर पुरी के राजा को दी कि भगवान जगन्नाथ अब पूरी तरह ठीक हो गए हैं।
1: ये नवयौवन दर्शन है और नेत्रोत्सव भी है। भगवान जो बुखार में थे, भगवान का तबियत ठीक नहीं था, अनासर में थे, भगवान का तबियत आज ठीक हो गया है। भगवान आज पहली बार आज भगवान आ रहे हैं और भगवान आज ठीक हो रहे हैं, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। आज भगवान कैसे भक्तों को कैसे पहली बार दर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं।
2: आज राजदरबार में क्यों गए थे? राजदरबार से भगवान का प्रसाद लेके गया था, इसको बोला महाराज आप प्रसाद लीजिए, हमारा दरवाजा आज खोलेगा।
1: क्यों?
2: क्या भगवान दवाई खा के अच्छा हो गया, इसलिए भगवान का अच्छा हो गया।
1: संदेश लेके गए,
2: एक संदेश लेके गया था, भगवान अच्छा हो गया, अब भगवान दरवाजा खोलेगा, पट खोलेगा। ठीक, कोई बात नहीं, पट खोल दियो।
0: भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू होगी, जो 24 जुलाई तक विभिन्न पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ सम्पन्न होगी। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक यात्रा करेंगे और वहीं गुंडीचा मंदिर में 9 दिन विश्राम करेंगे। इसके बाद बहुधा यात्रा के रूप में महाप्रभु वापस अपने मुख्य मंदिर लौटेंगे। इन 9 दिनों के दौरान पुरी में जैसा भक्तिमय माहौल देखने को मिलता है, वैसा कहीं और नजर नहीं आता। इसलिए ये रथ यात्रा सनातन परंपरा के सबसे भव्य और आस्थावान उत्सवों में गिनी जाती है।
1: गुंडीचा माँ के साथ भगवान का क्या रिश्ता है, कैसे क्यों मिलने जा रहे हैं?
3: गुंडीचा माँ जिसको बोलते हैं, वो राजा इंद्रदुम्न का पत्नी थे, अवंती का राजा जो थे, राजा इंद्रदुम्न, वो दर्शन करने के लिए जगन्नाथ पुरी आए थे। तब नील माधव का दर्शन नहीं हुआ, भगवान स्वप्न देश देकर दारवी तनु धारण करके उनको दर्शन दिया, जो विग्रह बना दिया गया 14 दिन में। विश्वकर्मा खुद जगन्नाथ जी वो कारपेंटर के रूप में आए थे और खुद को बनाया, और वही स्मृति के लिए भगवान जब बर उनको जो जाचा कि त्रिभुवन में ऐसा बर जो कि अमर बर, वो प्रदान किया कि वो जोड़ो हस्त में वो मना किया कि भगवान यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हो आप है तो मुझे निबंस कर दीजिए, और हर साल आपका जन्म वेदी जो गुंडीचा मंदिर यहाँ आप कृपा करके पधारिए। ये वचन को निभाने के लिए भगवान घोष यात्रा में वहाँ 9 दिनात्मक यात्रा में गुंडीचा मंदिर में जाते हैं।
0: पुरी की ये रथ यात्रा इसलिए भी बहुत विशेष है क्योंकि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपने मंदिर से बाहर आकर आम भक्तों से मिलते हैं। यही वजह है कि इस रथ यात्रा के लिए बड़ी संख्या में भक्तों के पुरी पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया है। देश ही नहीं, विदेशी धरती से भी जगन्नाथ भक्त पुरी दौड़े चले आ रहे हैं। मान्यता है कि जो श्रद्धालु सच्चे भाव से रथ की रस्सी खींचता है, उसके पाप धुल जाते हैं और मोक्ष का मार्ग खुलता है। यही वजह है कि हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं।
1: भगवान का ये रथ यात्रा क्यों मनाया जाता है?
3: रथ यात्रा मनाया जाता है क्योंकि जो लोग मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, वो लोगों का दर्शन करने के लिए जो पतित जन होते हैं, और सब लोगों को भगवान आलिंगन करने के लिए, दर्शन देने के लिए, उनको पावन बनाने के लिए ये पावन यात्रा, पतित पावन यात्रा, इसको घोष यात्रा कहा जाता है। नंदी घोष रथ में भगवान जगन्नाथ जी बैठते हैं, ताल ध्वज में बलदाव जी बड़ा भैया बैठते हैं, और देवी रथ बा दर्पदलन रथ में सुभद्रा मैया बैठते हैं। बैठ के भक्त लोगों को, जो विधर्मी लोग है जो कि साल भर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, उन लोगों को पावन करने के लिए भगवान का ये यात्रा अनुष्ठित होता है।
1: आप देख सकते हैं देश का हर कोने से भक्त यहाँ जुड़ रहे हैं, कैसे भगवान का ये भव्य लीला को देखेंगे, भगवान का ये भव्य रथ यात्रा को देखेंगे। इसलिए छोटे से लेकर बूढ़े पूरा यहाँ भीड़ जमा रहे हैं, कैसे भगवान का ये रथ यात्रा को देखेंगे, कैसे इसमें शामिल होंगे, और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह की टाइट किया जा रहा है ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो, भीड़ में कुछ असुविधा ना हो।
0: वहीं 16 तारीख को पुरी में आयोजित होने वाली रथ यात्रा से पहले एजेंसियों ने मॉक ड्रिल भी की जिसमें भगदड़ या फिर किसी तरह की प्राकृतिक आपदा से निपटने की तैयारियों को न सिर्फ परखा गया बल्कि एजेंसियों के बीच तालमेल बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया।
4: बेसिकली बिहेवियरल एस्पेक्ट में बीव किया है कि जैसे टेम्पल इनसाइड है उनका बिहेवियर टुवर्ड्स डिवोटीज दैट शुड बी लाइक फैसिलिटेशन करना है, उनको अच्छे से दर्शन कराना है, उनको गुड बिहेवियर देना है, तो एक हैसल्स फ्री दर्शन हो पाएगा और एक उनका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी रह पाएगा, उसके लिए हमने इंतजाम किया है।
0: भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर देश के दूसरे शहरों में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अहमदाबाद से लेकर देवघर तक और अकोला से लेकर उदयपुर तक महाप्रभु के महा उत्सव का जश्न बस कुछ घंटों बाद शुरू होने वाला है। पुरी से अजय नाथ, अहमदाबाद से अतुल तिवारी, देवघर से शैलेंद्र मिश्रा और उदयपुर से पंकज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: बात करेंगे दिल्ली में आज से शुरू हुए ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स की, जहां पर पारंपरिक भारतीय डिजाइनों का नया अवतार देखने को मिला। साड़ियों और लहंगों पर दिखने वाले डिजाइन को अब वेस्टर्न आउटफिट में उतारा जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी डिमांड विदेशी मार्केट में भी बढ़ रही है। 14 जुलाई से 17 जुलाई तक चलने वाला इस आयोजन में खादी के परिधानों में कस्तूरी कॉटन की एंट्री हो चुकी है, जो कभी बाजार से लगभग गायब हो गए थे। फास्ट फैशन के इस दौर में पर्यावरण संरक्षण का संतुलन बनाने की भी कोशिश है।

0: 16 लाख वर्ग फुट की छत के नीचे 1,30,000 से ज्यादा व्यापारियों के जमावड़े का उद्देश्य बेहद खास है। भारत टेक्स के बैनर तले देश की टेक्सटाइल ताकत दुनिया के सामने दिखाई जा रही है। दिल्ली के भारत मंडपम में कपड़ा उद्योग से जुड़ी पूरी दुनिया एक छत के नीचे सिमट आई है। देश के सबसे बड़े ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो की चकाचौंध के बीच 7,000 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस मेगा इवेंट का मकसद देश के कपड़ा उद्योग से जुड़े कपड़ा निर्माताओं, खरीदारों, निवेशकों और डिजाइनरों का अंतर्राष्ट्रीय मंच मुहैया कराना है। उनके उत्पाद के साथ तकनीक के इस्तेमाल को भी दुनिया के सामने लाना है। ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो में ऐसे कई डिजाइनर्स हैं जो देश के छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के बुनकरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्पाद दिखाने का मौका दे रहे हैं। पारंपरिक डिजाइनों को वेस्टर्न आउटफिट पर उतार रहे हैं ताकि नए अवतार की वजह से उनकी कला बच सके।
1: अमूमन इस तरह के डिजाइन आप इंडियन ट्रेडिशंस में किसी लहंगे पर देखते हैं, सूट पर देखते हैं या साड़ी पर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये डिजाइन एक वेस्टर्न ड्रेस पर दिखाई पड़ रहा है। शैना मेरे साथ में है जो कि निफ्ट से टेक्सटाइल डिजाइनिंग इन्होंने की है और ये सारी डिजाइन इनकी हैं, बहुत क्रिएटिव हैं और बहुत नयापन आपको इसमें दिखाई पड़ता है। कोशिश ये है कि पहला कि जो भी ये बनाएंगी वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा, दूसरा लोकल आर्टिसंस को कैसे कनेक्ट किया जाए नए डिजाइन के साथ, ये भी कोशिश शैना करते हुए दिखाई पड़ रही है। तो क्या कुछ नया आप यहाँ पर लेके आ रहे हैं?
2: मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा जो एक्सपोर्ट के और बाहर के ब्रांड्स हैं वहाँ से इंस्पायर्ड होकर ड्रेसेस को पैनल प्रिंट जैसे कि एम्ब्रॉयडरी, एम्बेलिसमेंट, सरफेस टेक्निक, मैं वो सारे ट्राई करूँ और वेस्टर्न ड्रेसेस पे उसको इनबिल्ड करूँ और न्यू तरीके से उसको शो करूँ ताकि वो अच्छा लगे और रिप्रेजेंटेटिव हो न्यू वे में।
1: ट्रेडिशनल डिजाइन को या फिर जो उसका तरीका है, जैसे हम जो भी आर्ट वर्क देख रहे हैं, साड़ी पर होता था, लहंगे पर होता था, इन्हें वेस्टर्न पर लाने का रीज़न क्या था?
2: वो पीपल थिंक कि इंडियन ड्रेसेस, बीड वर्क एंड ऑल सिर्फ साड़ियाँ और सलवार सूट पे अच्छे लग सकते हैं। देन आई थिंक कि वाई कांट वी मिक्स इट अप एंड कंटेम्पराइज एंड मेक इट इंडो वेस्टर्न।
0: कपड़ों के डिजाइन में क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं। पारंपरिक तौर पर कपड़ों की डिजाइनिंग और प्रिंटिंग में पानी की भारी बर्बादी होती है। कपड़ों की डिजाइनिंग यानी कि उनकी रंगाई में सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, फिर कपड़े को चमकाने और मुलायम बनाने में भी भारी पानी बहता है। कपड़ों से अतिरिक्त रंग और रासायनों को हटाने के लिए भी पानी से बार बार धुलाई करने की जरूरत होती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कपड़ों पर तरह तरह की डिजाइन प्रिंट करने वाली ये मेड इन इंडियन मशीन क्रांतिकारी साबित हो रही है।
1: कहा जाता था कि पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पानी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता था किसी भी कपड़े को साफ करने में, उसे डाई करने में या फिर उसको प्रोसेस करने में, लेकिन अब एक ऐसी मेक इन इंडिया मशीन तैयार कर दी गई है जिसमें जीरो वाटर यानी कि बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं होता है। आप आसानी से इससे कपड़ों के ऊपर प्रिंटिंग कर सकते हैं। मेरे साथ अरुण वासने जी हैं। सर, बिल्कुल नई तकनीक, कितना फ़ायदा एनवायरनमेंट को?
3: देखिए, ये बहुत ही इनोवेटिव टेक्निक है जिसमें हम आज तक, जैसा आपने बताया कि प्रिंटिंग के दौरान, डाइंग और प्रिंटिंग ही ऐसे दोनों सेगमेंट हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जिसमें सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन और डिस्चार्ज होता है। कलरजेट एक इंडिया का ब्रांड है और हिंदुस्तान में हम लोग ने R&D करके ये मशीन बनाई है और लगभग 40 से 50 मशीन हम हिंदुस्तान में सप्लाई कर चुके हैं। इस प्रोसेस के अंदर हम ना तो स्टीमिंग ना वॉशिंग का तकनीक जो ट्रेडिशनल प्रिंटिंग में यूज़ होता है, और आपकी जो कलर की जो गैमेट है और जो कलर का रिसेप्शन है वो बिल्कुल ही नायाब तरीके से मिलता है।
1: सर, थोड़ा मशीन भी देख लेते हैं। ये हम आपको क्वालिटी दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो इस मशीन के जरिए जो प्रिंट होकर जो कपड़ा आया है वो किस तरह का। देखिए, क्वालिटी में आपको कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ेगा। प्रिंटिंग बहुत साफ, बहुत बारीक है। अब मशीन आपको हम दिखाते हैं जो कि इंडिया में ही बन रही है और इंडियन जो पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको चेंज करने की कोशिश कर रही है। तो सर, ये पूरी मशीन जो है ये हम देख रहे हैं, इसको बनाने में, इनोवेट करने में आप लोग को कितना समय लगा?
3: देखिए, ये 3 दशकों से ये कंपनी कलरजेट डिजिटल प्रिंटिंग में है और पिछले करीब 5 या 7 साल पहले ही हमने ये इनोवेशन निकाला है। इसके अंदर हम जो कलर है वो इंक जेट प्रिंटिंग के माध्यम से आपका कपड़े के ऊपर आता है और इसमें 8 बेसिक कलर होते हैं और उस आठों कलर के कॉम्बिनेशन से आप मिलियंस ऑफ कलर बना सकते हैं। तो वो बहुत ही आज के डेट में जो भी डिज़ाइनर्स हैं, नई तरह से ब्रांड्स हैं, उनको अपने डिज़ाइंस जल्दी जल्दी चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि फास्ट फैशन का ज़माना है। कंज्यूमर चाहता है कि मैं अपने कपड़े जल्दी जल्दी नए तरह के बनाऊं, तो उसमें डिजिटल प्रिंट का काफ़ी बड़ा योगदान है।
1: सर, पहले जो एक ट्रेडिशनल प्रिंटिंग हुआ करती थी, डाइंग हुआ करती थी, आपके ख्याल से उसमें कितने पानी का इस्तेमाल होता था, जो कि अब ज़ीरो हो गया है?
3: हाँ, मतलब आप देखिए,
1: फ़र्क मतलब क्या है?
3: फ़र्क ये है कि अगर उसमें 100 लीटर लगता था, तो इसमें आप मान के चलिए मतलब 1 लीटर भी नहीं लगेगा।
0: अब खादी केवल राजनेता और बुजुर्गों का पहनावा नहीं रही, आधुनिक डिजाइन, फैशनेबल कट्स और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की तरफ आकर्षित देश के युवाओं के बीच खादी एक बड़ा फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। कस्तूरी कॉटन की भी अपनी एक अलग ही कहानी है। एक वक्त पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से गायब हो चुकी थी खादी, कस्तूरी कॉटन के लिए एक नया जीवन लेके आई है।
1: मेरे पीछे जो वॉल देख रहे हैं आप, इस वॉल पर खादी की पूरी यात्रा दिखाई गई है कि खादी किस तरह से भारत में शुरू हुआ और फिर कैसे कैसे उसकी यात्रा आगे बढ़ती है। स्वदेशी था पहले, फिर धीरे धीरे ग्लोबल हुआ। लेकिन खादी को अब भी जब हम उसकी बात करते हैं, तो हम समझते हैं कि खादी सिर्फ वही है जो पॉलिटिशियंस पहनते हैं, नेता पहनते हैं। खादी को अभी भी एक ऐसे फैशनेबल ब्रांड में बदलने की कोशिश की जा रही है जिससे यूथ कनेक्ट हो पाए, जिससे यंग लोग जुड़ पाए, और ऐसी एक कोशिश सफल होती हुई हमें यहाँ दिखाई पड़ रही है भारत टेक्स में। आप देखिए कि पहले जो खादी, अभी भी जो खादी आता है, अधिकतर वो बहुत मोटा होता है देखने में, चाहे उसका कुर्ता लें आप या शर्ट लें। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि खादी में एक कॉटन जिसका नाम है कस्तूरी कॉटन, उसको मिक्स किया गया और उसके ज़रिए इतने सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स, इस तरह के कपड़े तैयार किए गए हैं जो देख कर, छू कर, पहन कर एहसास ही नहीं होता कि इसे आप खादी है। देखिए ये शर्ट है, और ऐसे फाइन डिज़ाइंस आपको खादी में यूजुअली नहीं मिलते थे, अभी भी नहीं मिलते हैं, बहुत रेयर है ये। ऐसे ही देखिए आप कितने सारे डिज़ाइन के कॉम्बिनेशन हैं, कितने कलर कॉम्बिनेशन हैं, ना सिर्फ शर्ट्स में बल्कि ट्राउज़र्स भी जो आप देख रहे हैं, ये भी खादी से ही बनाई गई है। ये तो एक बात रही खादी की, कि खादी को कैसे जो यूथ है उससे कनेक्ट किया जा रहा है। मैं आपको एक बार डिज़ाइन भी इसके दिखा देता हूँ कि आजकल के जो डिज़ाइंस चल रहे हैं, जो कि यूथ को, यंगस्टर्स को, जेंजीज को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, वो डिज़ाइंस आपको खादी में मिल जाएंगे।
0: 16 लाख वर्ग फुट में 20,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को शोकेस किया गया है। 4 दिनों तक चलने वाले आयोजन में 14 देशों की कंपनियां और 20 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर के खजाने की गिनती ने सभी को चौंका दिया। देखिए, जब मंदिर के मासिक भंडार की गिनती की गई तो पहले ही दिन 10 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा मिला। हर बार की तरह इस बार भी चतुर्दशी पर दानपात्र खोले गए और मंदिर मंडल के कर्मचारियों ने बैंक कर्मियों की मौजूदगी में नकद की गिनती की, तो पहले ही चरण में 10,11,83,000 रुपए की गणना की गई। खास बात देखिए इसमें यह रही कि ये राशि जो है सिर्फ दानपात्र से मिले नकद चढ़ावा का ही हिस्सा है। इस दानपात्र के अलावा मंदिर को मिलने वाले चेक, ऑनलाइन दान, सोने चांदी के आभूषण और अन्य चढ़ावे की गिनती अभी बाकी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है जाहिर तौर पर कि अंतिम आंकड़ा सबसे कहीं ज़्यादा हो सकता है, और आज अमावस्या होने की वजह से धार्मिक परंपरा के अनुसार खजाने की गिनती का काम स्थगित कर दिया गया है। कल से गिनती दोबारा शुरू की जाएगी।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
7: Third period comes to an end, game two, headed to overtime.
6: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and non-stop sports talk so you don't miss a section of action.
7: They score!
6: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
4: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: क्या गुप्त नवरात्रि सामान्य नवरात्रि से ज्यादा शक्तिशाली है? क्या गुप्त नवरात्रि में कोई भी साधना कर सकता है? गुप्त नवरात्रि में साधना और पूजा का क्या है विधान? और कौन से मिलेंगे इसमें वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे,

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात जगन्नाथपुरी की। भगवान जगन्नाथ की नगरी एक बार फिर से आस्था के उत्सव में मगन है। पुरी की सड़कों पर भगवान के आगमन का इंतजार हो रहा है। बस एक दिन का वक्त बचा है। 16 जुलाई गुरुवार से जगन्नाथ रथ यात्रा का श्री गणेश हो रहा है। इसी बीच उत्सव की तैयारियों की तमाम तस्वीरें जगन्नाथ मंदिर प्रांगण से लगातार आ रही हैं और हम आपको जीएनटी पर दिखा भी रहे हैं। आज श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ का नव यौवन श्रृंगार किया गया। 14 दिनों के बाद मंदिर के कपाट खुले और भगवान ने नवयौवन रूप में भक्तों को दर्शन भी दिए। परंपरा के अनुसार भगवान के स्वस्थ होने की सूचना देने मंदिर के सेवायत पुरी के राजा के पास पहुंचे। ये उसी की तस्वीरें हैं। हर साल रथ यात्रा से पहले जगन्नाथपुरी में ये परंपरा यूं ही निभाई जाती है। मंदिर के सेवायत राजा के पास संदेश लेकर जाते हैं कि भगवान अब स्वस्थ हो गए हैं, वो भक्तों को दर्शन दे सकते हैं। श्री मंदिर के कपाट खुल गए हैं और यात्रा की आज्ञा भगवान से ले ली गई है। दरअसल मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार आ जाता है और 15 दिन तक वो बीमार रहते हैं और इस दौरान किसी को दर्शन नहीं देते। इस दौरान श्री मंदिर में उनका विधिवत तरीके से उपचार

0: जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजय नाथ।
1: बस एक ही दिन की इंतजार है, भगवान जगन्नाथ यहाँ आएंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। जुलाई 16 तारीख को भव्य रथ यात्रा मनाया जाएगा, इसलिए पूरी में अब से भक्तों का भीड़ देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन आज ये नवजौवन दर्शन है और नेत्रोत्सव भी है। भगवान जो बुखार में थे, भगवान का तबियत ठीक नहीं था, अनासर में थे, भगवान का तबियत आज ठीक हो गया है। भगवान आज पहली बार आज भगवान आ रहे हैं और भगवान आज ठीक हो रहे हैं, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। आज भगवान कैसे भक्तों को कैसे पहली बार दर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, क्या नाम है आपका?
2: हमारा नाम छवि कोठारी है।
1: आज राजदरबार में क्यों गए थे?
2: राजदरबार भगवान का प्रसाद लेके गया था, इसको बोला महाराज आप प्रसाद लीजिए, हमारा दरवाजा आज खोलेगा।
1: क्यों?
2: क्या भगवान दवाई खा के अच्छा हो गया, इसलिए भगवान का अच्छा हो गया।
1: संदेश लेके गए,
2: एक संदेश लेके गया था, भगवान अच्छा हो गया और भगवान दरवाजा खोलेगा, पट खोलेगा। ठीक, कोई बात नहीं, पट खोल दियो।
1: मतलब भगवान आज से ही पूरा दर्शन देगा?
2: पूरा दर्शन, दो घंटा दर्शन देगा।
1: फिर आज काल का क्या है?
2: काल का भगवान तो यात्रा करेगा, खिचड़ी खाएगा भगवान। काल जाएगा नहीं, परसों जाएगा। काल भगवान दिन भर भगवान भूख खाएगा, तीन बार भूख खाएगा।
1: तो भगवान बुखार में थे, भगवान का तबियत ठीक नहीं था, जो 15 दिन भगवान अनासर में थे, भगवान का तबियत अब ठीक हो गया है, ये संदेश लेके राजदरबार में पंडित लोग गए थे। राजदरबार में ये संदेश दिए कि भगवान का तबियत ठीक हो गया है और भगवान आज 2 घंटे के लिए दर्शन को भगवान भक्तों को दर्शन देंगे। और ये नवजौवन और नेत्रोत्सव, ये दर्शन देखने के लिए भक्तों का भीड़ आप देख सकते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको, ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये भगवान को देखने के लिए, भगवान का एक झलक पाने के लिए, जो भगवान 15 दिन अनासर में थे, आज अपने रूप में आ रहे हैं। और यही नवजौवन का जो दर्शन, ये दर्शन को देखने के लिए भक्तों का ये भीड़ आप देख के आपको पता चल रहा होगा कि लोगों का मन में भगवान को देखने के लिए, पूरी में ये जो भीड़ देख के ही पता चल रहा है कि भगवान को देखने के लिए इनका मन में कितना भाव है, कितना प्रेम है, कितना श्रद्धा है।
0: ये ऐसे ही अद्भुत तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे। भगवान जगन्नाथ का ये पावन धाम अपने आप में बहुत अनोखा है। श्री जगन्नाथ की मौजूदगी के चलते पुराणों में पुरी को धरती का वैकुंठ कहा गया है। ब्रह्म और स्कंद पुराण के मुताबिक यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के चलते यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। लेकिन फिर जगन्नाथ धाम की स्थापना कैसे हुई और पुरी में कैसे शुरू हुई रथ यात्रा की ये परंपरा, चलिए आज आपको सुनाते हैं वो कहानी जिसकी शुरुआत हुई थी सतयुग की एक रात में, जब उज्जैन के राजा इंद्रद्युम्न को एक सपना आया था।

0: हे राजा इंद्रदेव, समुद्र के तट पर मेरी प्रतीक्षा करो। मैं दारु ब्रह्म के रूप में प्रकट होऊंगा। मैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन के रूप में प्रकट होऊंगा।
1: ये कहानी है उनकी जिन्हें सारा संसार जगत का पालनहार बुलाता है। कहानी उनकी जिनके होने से संसार का ये भाग धरती का वैकुंठ कहलाने लगा। कथा उनकी जो स्वयं मधुरे हैं, पर जगत की हर रीत उन्हीं से पूरी होती है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी। और यहीं विराजते हैं सारे जगत के नाथ, भगवान जगन्नाथ। ये बात है सत्य।

0: की। उन दिनों आज के उज्जैन को अवंतिका या अवंती कहा जाता था। तब अवंती पर सूर्यवंश के राजा इंद्रद्युम्न का शासन था। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार एक संत ने राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु के एक बेहद दिव्य रूप नील माधव स्वरूप के बारे में बताया। बताया जाता है कि भगवान नील माधव के दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ माने जाते थे। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न भगवान नील माधव का मंदिर खोजने में जुट गए। देश के चारों कोनों में उन्होंने लोग भेजे, लेकिन उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। कहानी आगे बताती है कि वर्षों की प्रतीक्षा और आराधना के बाद आखिरकार एक रात राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनसे कहा कि वे सागर तट पर दारु ब्रह्म के रूप में प्रकट होंगे। एक रोज समुद्र की उफनती लहरों के साथ एक विशाल दिव्य लकड़ी का तना बहकर तट पर आ लगा। उस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के पवित्र चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। राजा समझ गए यही दारु ब्रह्म है। बड़े सम्मान के साथ उस दिव्य तने को महल में लाया गया। इसके बाद देव शिल्पी विश्वकर्मा एक बढ़ई के रूप में राजा के पास पहुंचे और राजा ने उन्हें लकड़ियों से भगवान की मूर्तियां बनाने का काम सौंप दिया। लेकिन काम शुरू करने से पहले बढ़ई बने विश्वकर्मा जी ने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि जब तक मूर्तियां पूरी नहीं बन जाती, तब तक कोई भी मेरे कमरे में नहीं आएगा। राजा ने उनकी बात मान ली और महल के एक कमरे में मूर्तियां बनाने का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन बढ़ई ने जब बहुत दिनों तक कमरे का दरवाजा नहीं खोला, तो एक दिन रानी गुंडीचा ने कौतूहलवश कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की। ऐसा होते ही बढ़ई ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और कहा कि आपने मेरी शर्त तोड़ दी है। मूर्तियां अब तक अधूरी हैं, लेकिन अब मैं ये काम पूरा नहीं कर सकता।
1: रानी ने परेशान होकर महाराज ने राजा जी को बोले कि हम दरवाजा खोल देंगे। तो इसी समय राजा जी ने बोले नहीं, वो कंडीशन किए हैं और हम क्यों खोलेंगे। तो रानी ने बोले देखिए, अगर वो गुजर जाएंगे कि कुछ हो जाएगा तो हमको पाप लगेगा, नरक का पाप लगेगा, तो हमको मन नहीं करे, हम खोल देंगे। जब दरवाजा खोल दिए तो देखे तो जो कारीगर जो थे महापुरुष को मूर्ति बनाने वाले वो नहीं थे, लेकिन तीनों भगवान थे। तीनों भगवान ऐसे रूप पे थे आज जो रूप में आप देख रहे हैं, हाथ पांव सब था लेकिन हाथ पांव नहीं था।
0: विचित्र दुविधा थी। राजा और रानी के सामने भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन के विग्रह मौजूद थे, लेकिन वे पूर्ण नहीं थे। हाथ अधूरे, पैर अधूरे, स्वरूप अधूरा। राजा इंद्रद्युम्न हताश हो गए। कहानी में आगे वर्णन मिलता है कि तभी आकाशवाणी हुई कि यही भगवान का इच्छित स्वरूप है और उन्हें इसी रूप में स्थापित कर दिया जाए।
1: तो राजा रानी ने चकित हो गए और महाप्रभु के पास में शरण में आ गए कि महाप्रभु कितना बड़ा भूल हमने कर दिया, दरवाजा खोल दिया, अब तो विघ्न रूप है, अभी तो पूजा नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे। तो इसी समय स्वप्नादेश हुआ महापुरुष जगन्नाथ जी की तरफ से कि नहीं नहीं, हम कलयुग में इसी रूप में पूजा पाएंगे। तो इसके बाद में महापुरुष जगन्नाथ वही इसी रूप में पूजा पा रहे हैं। हाथ पांव नहीं है, आग के पलक नहीं है, लेकिन वो सबको काम कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं, सबका हाथ हला के सबका जो दुख है उसको ले रहे हैं, हरण कर रहे हैं, और कान नहीं है लेकिन सबका बात सुन के उनका भी सब कार्य सिद्ध कर रहे हैं।
0: फिर क्या था, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की अधूरी मूर्तियों की ही प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई और पूरे विधि विधान के साथ उन्हें श्री मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया। तभी से भगवान की ऐसी ही मूर्तियों की पूजा की जा रही है। लेकिन भगवान की इन मूर्तियों को 15 साल में एक बार बदलने की परंपरा भी है। लेकिन भगवान की मूर्ति बदलने की ये प्रक्रिया बेहद रहस्यात्मक ढंग से निभाई जाती है। बताया जाता है कि जब मंदिर में मूर्तियां बदली जाती हैं, शहर की बिजली काट दी जाती है। जिस पुजारी को मूर्तियां बदलने की जिम्मेदारी मिलती है, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्यों में सबसे बड़ा आश्चर्य वो ब्रह्म पदार्थ है जिसे पुरानी मूर्तियों में से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। मान्यता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को आज तक किसी ने नहीं देखा है। माना जाता है कि ये भगवान का हृदय है जो द्वापर युग से आज तक धड़क रहा है। मूर्ति बदलने वाले आज भी भगवान की धड़कनों को महसूस करते हैं। अनोखे हैं भगवान जगन्नाथ और उतनी ही अनूठी है उनके प्राकट्य की कहानी। भगवान जगन्नाथ की महिमा और उनके प्राकट्य का सबसे विस्तृत वर्णन स्कंद पुराण के उत्कल खंड में मिलता है। भगवान जगन्नाथ की यही कहानी आगे चलकर रथ यात्रा से भी जुड़ती है। कहानी आगे बताती है कि जब से रानी गुंडीचा ने भगवान की अधूरी मूर्तियों को देखा था, वे उनसे संतान की तरह स्नेह करने लगी थी। अब जब भगवान उनके महल को छोड़ श्री मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो रहे थे, उन्हें लग रहा था मानो उनका पुत्र ही उनसे दूर जा रहा हो। कहते हैं रानी गुंडीचा के इस वात्सल्य भाव और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि वे हर वर्ष आषाढ़ माह में अपने भाई और बहन के साथ उनसे मिलने जरूर आएंगे और 7 दिनों के लिए पुत्र की तरह उनके साथ रहेंगे। भगवान के इसी वचन को निभाने के लिए रथ यात्रा का संकल्प लिया गया।

0: पुरी में शुरुआत हुई उस परंपरा की, जिसे आज भी बेहद श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाया जाता है।
1: ये रथ यात्रा बहुत सालों से चल रहा है। ये स्वयं जगन्नाथ जी ने उनका निश्रुत जो वाणी होता है वो गुंडीचा रानी को वो सत्य किए थे कि मैं 9 दिन ये यात्रा करूँगा। तो ये कीर्ति को रक्षा करने के लिए ये यात्रा हो रहा है 9 दिन का।
0: मान्यता है कि तभी से हर वर्ष भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ रथ पर सवार होकर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं और 7 दिनों तक वहीं विराजमान रहते हैं। चूंकि जगन्नाथ प्रभु की प्रतिमा का निर्माण गुंडीचा मंदिर में ही हुआ था, इसलिए इसे भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर और उनका प्राकट्य स्थल माना जाता है। पुरी के मुख्य समारोह मार्ग बड़ा डंडा के एक छोर पर श्री जगन्नाथ मंदिर है, तो उसी सड़क के दूसरे छोर पर लगभग 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर मौजूद है। ये मंदिर प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ पहुंचकर भगवान अपने भाई बहन के साथ विश्राम करते हैं और विशेष व्यंजनों का भोग लगाते हैं। इस दौरान भगवान मुख्य मंदिर के गर्भगृह से बाहर आकर बहुत करीब से सभी आम और खास भक्तों को दर्शन देते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर में भगवान को जो भी भोग लगाया जाता है उसे आड़प महाप्रसाद कहते हैं।
2: ये कलयुग का एक ही मात्र भगवान जगन्नाथ जी हैं जो रथ में एक बार साल में एक बार बाहर आते हैं और भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ के ऊपर में वो बाहर आते हैं। तीनों रथ में जगन्नाथ जी आते हैं, बलदाव जी और माता सुभद्रा देवी रथ पे आते हैं। तो जाते हैं गुंडीचा बाड़ी जनकपुरी करके, जहाँ पर महापुरुष 9 दिन तक वहाँ उनका विशेष नीतिकांत है, वहाँ भी जैसा है, वहाँ भी एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर सब व्यवस्था वहीं पर होता है।
0: ऐसी मान्यता है कि गुंडीचा मंदिर में भगवान के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। रानी गुंडीचा और भगवान जगन्नाथ के बीच वात्सल्य और प्रेम के इसी भाव के चलते गुंडीचा मंदिर को मासी माँ का मंदिर भी कहा जाता है। कहते हैं भगवान को मासी माँ के मंदिर तक ले जाने वाली इस भव्य रथ यात्रा में शामिल होना बड़े सौभाग्य की बात है। तभी तो हर साल भक्ति की इसी डोर से बंधे भक्त जगन्नाथपुरी की सड़कों पर भगवान के रथ के चारों ओर आस्था का उत्सव मनाते हैं। भक्ति का भाव और भक्तों का उल्लास पुरी रथ यात्रा की आत्मा है। पुराणों में रथ यात्रा के फल को 100 यज्ञों के बराबर बताया गया है। पुरी की पवित्र भूमि पर जब ये रथ यात्रा निकलती है तो भक्त और भगवान एकाकार नजर आते हैं। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अब देखिए, रथ यात्रा में सिर्फ एक दिन बचा है और इस यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण भगवान उनके भाई बहनों के साथ बनकर तैयार हैं रथ। चलिए आपको दिखाते हैं इस बार कैसे सजे हैं भगवान के ये रथ।
4: इस बार 2026 जुलाई 16 तारीख को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मनाया जाएगा और ये रथ यात्रा को भव्य और सुंदर करने के लिए पूरी प्रशासन और ये उड़ीसा सरकार के तरफ से हर तरह की व्यवस्था किया गया है, हर तरह की बंदोबस्त किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो रथ है ये नंदीघोष रथ है और ये नंदीघोष रथ का जो आपको ये जो दिखा रहा हूँ ये जो कलर है रेड और येलो, ये कलर भगवान को बहुत पसंद है और इसलिए भगवान को ये कपड़ा वाला रथ में लिया जाता है। नंदीघोष रथ में आप अगर देखेंगे तो 16 चक्का और 4 घोड़े रहते हैं और आप देख सकते हैं नंदीघोष के साथ बलभद्र और देवी सुभद्रा के भी अलग अलग रथ रहता है और अलग अलग रथ में अलग अलग पहिया, अलग अलग चक्का और इसके साथ अलग अलग की घोड़े भी रहते हैं। अगर हम ये बात करेंगे तालध्वज रथ का बात करेंगे तो तालध्वज रथ में 14 चक्का और 4 घोड़े। दर्पदलन रथ का अगर बात करेंगे तो दर्पदलन रथ में इस हिसाब से 12 चक्का 4 घोड़े और नंदीघोष रथ में 16 चक्का 4 घोड़े रहते हैं।
3: एक तरफ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन कड़े सुरक्षा इंतजाम कर रहा है। पूरे क्षेत्र की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। रथ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। इसी कड़ी में पुरी में पुलिस ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉक ड्रिल का भी यहाँ पर आयोजन किया।
4: पूरी प्रशासन के तरफ से पूरे शहर में हर तरह की जो व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ी और मजबूत करने के लिए व्यवस्था किया गया है, और ओडिशा सरकार के तरफ से पूरे शहर में चप्पे चप्पे में पुलिस बल की तैनात किया गया है। इस रथ यात्रा में 30 इवैक्यूएशन रूट बनाया गया है, ताकि अगर आगे के ऐसे कुछ इमरजेंसी हो तो लोगों को निकलने के लिए 30 इवैक्यूएशन रूट बनाया गया है। इसके साथ 16 अलग अलग मोबाइल टावर्स, जो मूवेबल मोबाइल टावर्स हैं, टेम्प्रारी मोबाइल टावर्स इंस्टॉल किया जाएंगे। इसके साथ 13,000 से ज़्यादा जो आर्म फोर्सेस हैं उनको मुतयन किया जाएगा। 19 IPS ऑफिसर्स को अराउंड 19 ऑफिसर जो हैं 19 ऑफिसर को ये पूरी व्यवस्था देखने के लिए, निगरानी करने के लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। इसके साथ 15 जो CFP कंपनियां हैं इनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, और इसके साथ 1700 से ज़्यादा बायो टॉयलेट्स, ताकि लोगों को टॉयलेट्स के लिए कुछ ऐसे प्रॉब्लम ना हो, इसलिए 1700 से ज़्यादा बायो टॉयलेट्स और 8 टेम्प्रारी जो मेडिकल हैं, टेम्प्रारी मेडिकल भी इंस्टॉल किया जाएंगे, और इसके साथ 476 से ज़्यादा AI CCTV कैमरा रहेंगे, ताकि हर तरह की जो काम हो रहा है, हर तरह की जो यहाँ रथ यात्रा में हर तरह की चीज़ें के ऊपर नज़र रखा जाएगा, और सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर कुछ ऐसे चूक ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी किया जा रहा है और पूरी व्यवस्था किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भक्तों का ये भीड़ देख रहे हैं। एक दिन के बाद रथ यात्रा, यानी 16 तारीख को रथ यात्रा है, लेकिन आज से ही भक्तों का ये भीड़ आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि आगे ये जो भीड़ कितना बढ़ेगा और इस बार रथ यात्रा में कितने लोग शामिल होंगे, क्योंकि हर साल लाखों भक्त यहाँ शामिल होते हैं, और ये लाखों भक्तों के बीच भगवान सालों में एक बार आते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं। जो भक्त भगवान को देखने के लिए मंदिर के अंदर नहीं जा पाते हैं सालों भर, भगवान एक बार इस रथ यात्रा में आते हैं और दर्शन देते हैं उन भक्तों को जो भक्त अंदर नहीं जा पाते हैं।
3: और चलिए इसी से जुड़ी हुई दिव्य और भव्य रथ यात्रा की तस्वीरें GNT पर लगातार आपको दिखाते रहेंगे। आज की पेशकश में फिलहाल के लिए था ही, अच्छी खबरें जारी हैं, देखते रहिए GNT।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
3: बद्रीनाथ धाम में आजकल श्रद्धालुओं की काफी चहल पहल देखी जा रही है। दरअसल मौसम यहां बेहद सुहाना बना हुआ है, बारिश रुक रुक कर होती है, इसीलिए रास्तों में भी रुकावट नाम मात्र ही नजर आती है। केवल बद्रीनाथ धाम ही नहीं, चमोली जिले में बसे हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में आस्थावान लगातार आ रहे हैं।
4: बद्रीनाथ धाम में अब तक 14,82,000 तो हेमकुंड साहिब में 1,92,000 श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं। वहीं मौसम की बात करें तो इस बार अभी तक पहाड़ों में मानसून उस तरह से सक्रिय नहीं हुआ है। हालांकि कभी कभार बारिश देखने को मिल रही है, बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, हेमकुंड साहिब में देखने को मिल रहा है।
5: उत्तराखंड के ऊंचे क्षेत्रों में खासकर चमोली जिले में इन दिनों मौसम भले ही नरम गरम है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, मॉनसून की बेरुखी भी नजर आ रही है। बावजूद इसके चारधाम यात्रा में से एक भगवान बद्री विशाल का दरबार और पवित्र हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा आस्था से गुलजार है। बद्रीनाथ धाम में कल कल बह रही अलकनंदा का इन दिनों शोर सुनाई दे रहा है, लेकिन इस शोर से कहीं ज्यादा यहाँ उमड़ रही आस्था का ही नाद है, जिसे देशी विदेशी श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के रूप में देखा भी जा सकता है। बताया जा रहा है कि पिछले सालों की तुलना में इस साल मॉनसून बेहद कमजोर है, इसलिए पहाड़ों पर खासतौर से ऊंचाई वाले इलाकों में तो बारिश कम ही दर्ज की गई है, लेकिन चारधाम दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं की आवक में अभी तक कोई खास कमी नहीं आई है। इस वर्ष 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, श्रद्धालुओं ने काफी संख्या में वहां पहुंचकर दर्शन किए और तब से लेकर अब तक 14,82,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। वहीं 23 मई को खुले हेमकुंड साहिब के कपाट के बाद अब तक 1,92,000 से ज्यादा सिख श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। यानी मौसम अनुकूल है, यात्रा मार्ग भी सुचारू है, तो चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह भी लगातार बना हुआ है, खासकर बद्रीनाथ में, जहां भले ही बारिश कम हो रही है मगर मौसम बेहद मुफीद है। ऊपर से यात्रा मार्ग पर कम बारिश होने की वजह से आवाजाही भी सुचारू है। यही कारण भी है कि श्रद्धालु बिना किसी बड़े परेशानी के भगवान बद्री विशाल के साथ ही सिख श्रद्धालु भी पवित्र हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के दर्शन कर रहे हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: दुनिया की सबसे रोमांचक रेस में गिनी जाती है सैन फर्मिन फेस्टिवल की बुल रन, जहां परंपरा का मेल रोमांच के साथ होता है। स्पेन के पाम्पलोना शहर में बुल रन का ये सदियों पुराना रिवाज आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है।
6: स्पेन के पैम्पलोना शहर में मशहूर सैन फर्मिन फेस्टिवल का आखिरी बुल रन भी पूरे जोश और रोमांच के साथ पूरा हुआ। परंपरा, रफ्तार और हिम्मत का अनोखा संगम दिखाई दिया। सुबह सुबह पैम्पलोना की सड़कों पर उत्साह साफ नजर आता है। बुल रन शुरू होने से पहले प्रतिभागी सैन फर्मिन की प्रतिमा के सामने जुटते हैं, नारे लगाते हैं और सुरक्षित दौड़ की कामना करते हैं। फिर आती है वो घड़ी जो वहाँ मौजूद सभी लोगों की धड़कनें बढ़ा देती है। एक पटाखे की आवाज और गेट खुलते ही तेज रफ्तार से बुल बाहर निकलते हैं और उनके साथ शुरू होती है दुनिया की सबसे चर्चित और रोमांचक रेस। संकरी गलियों में बुल के आगे आगे दौड़ते प्रतिभागी, दोनों तरफ खड़े हजारों दर्शक और हर मोड़ पर रोमांच अपने चरम पर नजर आता है। इस दौरान कुछ लोग फिसल कर गिर भी जाते हैं, लेकिन दौड़ लगातार आगे बढ़ती रहती है। कुछ ही मिनटों में बुल शहर की गलियों से होते हुए बुल रिंग के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। प्रतिभागी भी उनके साथ एरीना में दाखिल होते हैं और इसी के साथ इस साल आखिरी बुल रन सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है। सेन फर्मिन फेस्टिवल सिर्फ एक दौड़ भर नहीं बल्कि स्पेन की संस्कृति और परंपरा का बड़ा उत्सव है। हर साल दुनिया भर से हजारों लोग इस अनोखे आयोजन का हिस्सा बनने और इसे करीब से देखने पैम्पलोना पहुंचते हैं। यही वजह है कि बुल रन आज भी दुनिया के सबसे चर्चित पारंपरिक आयोजनों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: क्या गुप्त नवरात्रि सामान्य नवरात्रि से ज्यादा शक्तिशाली है? क्या गुप्त नवरात्रि में कोई भी साधना कर सकता है? गुप्त नवरात्रि में साधना और पूजा का क्या है विधान और कौन से मिलेंगे इसमें वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: दिल्ली एनसीआर में बदल गया मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज हवा के साथ हुई बारिश, गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, मंदिर के बाहर उमड़ा आस्था का मेला, भगवान दे रहे नव यौवन दर्शन। दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्सटाइल एक्सपो का शुभारंभ, 17 जुलाई तक चलेगा कार्यक्रम, देश विदेश से जुटेंगे उद्योगपति। जैसलमेर रेलवे स्टेशन का हुआ कायाकल्प, विरासत और आधुनिकता का दिखा अनोखा संगम, 140 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास। जयपुर बना दुनिया का छठा सबसे खुशहाल शहर, टाइम आउट 2026 की टॉप 10 लिस्ट में हुआ शामिल, पिंक सिटी के बाद मिला एक और टाइटल। फीफा वर्ल्ड कप के रंग में रंगा केरल का त्रिशूर, ब्राजील अर्जेंटीना की जर्सी वाली धोती बनी फुटबॉल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र, मैसी की जर्सी की खासी डिमांड।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
3: बात करते हैं श्री राम की नगरी अयोध्या की। रामलला के मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इस वर्ष भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हाल ही में चढ़ावा चोरी की घटनाओं के दावों के बीच भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने साफ किया है कि भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ है और ज्यादातर दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या 2025 से अधिक रही है। वहीं पुलिस कंट्रोल रूम के आंकड़ों में भी दावा किया गया है कि अयोध्या में श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बढ़ रही है। छुट्टियों और विशेष अवसरों पर दर्शनार्थियों की संख्या 1,00,000 के पार भी पहुंची है।
5: राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के बाद से अयोध्या में रामलला के दर्शनार्थियों में कोई कमी नहीं आई है। राम मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की एक रिपोर्ट वायरल हो रही है। देश के तमाम राज्यों से रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में दर्शन पूजन का क्रम सामान्य रूप से जारी भी है। श्रद्धालुओं का कहना है कि किसी एक घटना को करोड़ों लोगों की आस्था से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। रामलला हमारे आराध्य हैं और अयोध्या हमारी सनातन आस्था की प्रतीक है। रिपोर्ट के अनुसार 21 जून से 3 जुलाई के बीच 11,54,793 श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया है, जबकि इसी अवधि में पिछले साल 2025 में 9,12,540 लोगों ने मंदिर में दर्शन किए थे। राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें दर्शन व्यवस्था काफी सुव्यवस्थित और संतोषजनक लगी। दूर दराज से पहुंचे कई भक्तों ने ये भी बताया कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है, दर्शन की प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से संचालित हो रही है और प्रशासन की ओर से भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त इंतजाम भी हैं। श्रद्धालुओं ने इसके साथ ही कहा कि रामलला के दर्शन कर उन्हें आध्यात्मिक शांति और भावनात्मक संतोष की अनुभूति हुई।
9: राम जन्मभूमि का ये यात्री सुविधा केंद्र है और यहाँ पे जो आंकड़े दर्शा रहे हैं उसके साथ जो भीड़ है, जो भरमार है, वो लोगों को दिखा रहा है। सीधा सीधा 9 लाख से संख्या जब 11 लाख की होती है, 11.5 लाख तक वो पहुंचती है, ये इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है। और यहाँ पे लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि लोग कहाँ से आ रहे हैं, कब से दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे किस हिसाब से दर्शन चल रहे हैं। सीधा बात करने के लोगों को कोशिश करेंगे, यहाँ पे लोग बैठे भी हैं। आप लोग भैया कहाँ से हैं? दर्शन किया नहीं?
10: गया जी।
9: दर्शन कर लिया?
10: हाँ,
9: दर्शन बढ़िया से हो रहा है।
10: हाँ, बढ़िया से हो रहा है।
9: इसके पहले भी आए कि नहीं?
10: हाँ हाँ,
9: कितनी
10: पिछले साल आए थे नहाने के लिए, वो हुआ था ना कुंभ मेला, उसी में
9: उसमें काफी भीड़ थी।
10: बहुत भीड़।
9: आज भी भीड़ है?
10: आज भी भीड़ है, बहुत भीड़ है। लेकिन हम लोग सुबह में दर्शन किए थे पिछली बार, तो उतनी भीड़ नहीं थी, जल्दी जल्दी दर्शन हो गए।
9: इस वक्त ज्यादा भीड़ है?
10: हाँ हाँ, इस वक्त ज्यादा भीड़, आज मंगलवार भी है।
9: देखिए, दर्शनार्थी भी खुद कह रहे हैं इसके पहले भी हम आए थे वो भीड़ वो संख्या नहीं थी, लेकिन आज की जो आंकड़े बता रहे हैं वो भीड़ वो संख्या है। और यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे श्रद्धालु है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आप कहाँ से?
11: गया जी से।
9: गया जी से दर्शन किया?
11: हाँ जी, दर्शन किया।
9: भीड़ बढ़िया थी कि नहीं?
11: बहुत अच्छी भीड़ है।
9: पहले भी आप आए थे कि नहीं?
11: हाँ, आई थी कुंभ मेला में। आई थी
9: कुंभ मेला में? काफी भीड़ होगी?
11: बहुत ज्यादा, एक्सेस बहुत ज्यादा।
9: कैसे दर्शन हुए? अच्छे?
11: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दिल खुश हो गया, मन बाग बाग।
9: मैनेजमेंट कोई दिक्कत
11: नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया।
9: रामलला के अच्छे दर्शन?
11: बहुत अच्छे, रामलला की जय हो।
9: देखिए, लोग हैं यहाँ पे दर्शनार्थी है, तो काफी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और 2025 के जो आंकड़े हैं उससे जो अधिक आंकड़े दर्शाए जा रहे हैं 2026 के, वो मौजूदा हालात में है।
5: श्री राम मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इस साल भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। पुलिस कंट्रोल रूम के आंकड़े बताते हैं कि 21 जून 2026 को 94,419 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि इसी दिन 2025 में ये संख्या 81,303 थी। 28 जून 2026 को सबसे ज्यादा 1,02,672 श्रद्धालु मंदिर पहुंचे, जो इस अवधि का सबसे बड़ा आंकड़ा रहा। 26 जून को 97,603, 27 जून को 97,134 और 30 जून को 96,112 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हालांकि कुछ दिनों में 2025 की तुलना में दर्शनार्थियों की संख्या कम भी रही। 22 जून 2026 को 75,845 श्रद्धालु आए, जबकि 2025 में ये संख्या 88,756 थी। इसी तरह 29 जून 2026 को 84,102 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि साल 2025 में 84,443 श्रद्धालु पहुंचे थे। वहीं 3 जुलाई 2026 को 87,652 श्रद्धालुओं ने श्री रामलला के दर्शन किए, जबकि 2025 में यह आंकड़ा 83,863 था। पुलिस कंट्रोल रूम के आंकड़े बताते हैं कि श्री राम मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बढ़ रही है। वहीं छुट्टियों और विशेष अवसरों पर दर्शनार्थियों की संख्या 1 लाख के पार भी पहुंच रही है। ऐसे में प्रशासन भी इस बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, यातायात और दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम कर रहा है। अगर अयोध्या के उत्साह और भक्तों के जोश को समझना हो तो सरयू घाट आना बेहद जरूरी हो जाता है। यहाँ भारी संख्या में राम भक्त और दूर दूर से आए परिवार सरयू घाट पर राम की पैड़ी पर स्नान करते नजर आए।
12: हमारी मौजूदगी इस वक्त राम की पैड़ी पर है और सरयू का जो किनारा है वो भी आपको दिखा रहे हैं और राम की पैड़ी की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तमाम युवा परिवार भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। मौसम भी इस वक्त अच्छा है और सरयू का तट है, सरयू मैया का जो कलकल कर बहता जल है उससे आनंदित होते ये युवा आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभिनंदन भी इनका नगर निगम कर रहा है अयोध्या से, और इस तरीके से फिलहाल ये आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं और मौज करते भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो सामने वो राम की पैड़ी का दृश्य है जहाँ अयोध्या में कुछ महीनों बाद दीपोत्सव मनाया जाएगा, और जिस तरह का दीपोत्सव हर साल बनता है, हर साल एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है जिससे अयोध्या का नाम केवल देश में ही नहीं बल्कि ग्लोबली होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या का नाम होता है। और ये तस्वीरें जो है ना ये बताती हैं जरूर चंदा चोरी, तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, कार्रवाई भी चल रही है, एसआईटी की जांच भी चल रही है, लेकिन इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें अयोध्या पसंद है, इन्हें यहाँ का वातावरण पसंद है, इन्हें सरयू मैया का की वो जो छांव है वो पसंद है, और कहीं ना कहीं ये अयोध्या को जीने वाले लोग हैं। दूर दूर से आते हैं, ऐसा नहीं है कि सब यहाँ के हैं, होंगे यहाँ के भी, साउथ से, मध्य प्रदेश से, आप माने राजस्थान से ये लोग आए हुए हैं। कितने विदेशी आपको दिख रहे हैं आज अयोध्या में।
13: स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या पहले की तरह बनी हुई है। होटल्स, धर्मशालाएं, बाजार और धार्मिक स्थल सामान्य रूप से चल रहे हैं और पूरे शहर में धार्मिक वातावरण बना हुआ है।
14: होटल में लाइक जैसा पहले अपना ये वाला सीजन वैसे भी ऑफ सीजन हुआ करता था, और इस टाइम पे अमूमन जो है भीड़ कम ही रहती है अयोध्या में। मौसम का आप कह सकते हैं, ज्यादातर ये टाइम लोगों का हिल स्टेशन में जाने का होता है, तो ये वाला सीजन वैसे भी हम लोगों के लिए ऑफ सीजन का रहता है। तो बट हाँ, मेरे को नहीं लगता कि इस वजह से भीड़ में कुछ असर पड़ा होगा, क्योंकि हमारे अभी भी कुछ डेट्स ऐसी हैं जिसमें ऑक्यूपेंसी हमारा 80% से ऊपर है, और कुछ डेट्स तो हमारा खैर जाएगा 50% से नीचे भी है, बट कई डेट है।
13: राम मंदिर में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या ये संकेत देती है कि अयोध्या देश के सबसे प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्रों में तेजी से अपनी पहचान मजबूत कर रही है। बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे स्थानीय धार्मिक पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव और मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
15: भारत ने 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट पर दावेदारी पेश की है। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
13: भारत ने आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य पद के लिए अपना कैंपेन शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में #IndiaForUNSCPeacePlanetProgress थीम के तहत इस कैंपेन की शुरुआत की। विदेश मंत्री ने साफ संदेश दिया कि भारत दुनिया के लिए ज्यादा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और न्याय संगत माहौल बनाने का काम करेगा। यूएनएससी के चुनाव जून 2027 में होने वाले हैं। एशिया प्रशांत समूह की एकमात्र सीट के लिए भारत और ताजिकिस्तान के बीच कड़ा मुकाबला है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से भारत के सबसे बड़े वैश्विक वस्त्र और परिधान कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 की शुरुआत हो गई है। केंद्र कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने 4 दिनों तक चलने वाले इस मेगा इवेंट का शुभारंभ किया और बिहार पवेलियन का उद्घाटन किया। यह आयोजन वस्त्र, फैशन, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की वैश्विक ताकत को प्रदर्शित करता है। इस वैश्विक आयोजन में देश विदेश के खरीदार, उद्योगपति, डिजाइनर और नीति निर्माता एक मंच पर जुटे हैं। 17 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को वैश्विक टेक्सटाइल हब के रूप में स्थापित करना, निर्यात बढ़ाना और MSME और छोटे उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए टिहरी गढ़वाल की SSP ने सभी थानों में टीम गौरा शक्ति का गठन किया। प्रशिक्षित टीम स्कूल, कॉलेजों और संवेदनशील स्थानों पर नियमित गश्त करेगी, छात्राओं को आत्मरक्षा, साइबर सुरक्षा और महिला हेल्पलाइन की जानकारी देगी और साथ ही उनकी शिकायतों का तुरंत समाधान सुनिश्चित भी करेगी। जिन थानों में महिला सब इंस्पेक्टर तैनात हैं, वहां वही टीम गौरा शक्ति का नेतृत्व करेंगी, जबकि दूसरे थानों में एडिशनल सब इंस्पेक्टर और महिला हेड कांस्टेबल टीम की कमान संभालेगी। टीम गौरा शक्ति का मुख्य उद्देश्य स्कूल्स, कॉलेजेस और दूसरे संवेदनशील स्थानों पर छात्राओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। इसके लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों की छुट्टी के समय नियमित पेट्रोलिंग की जाएगी, ताकि छेड़छाड़, उत्पीड़न और दूसरी किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। हरिद्वार में सावन के महीने में कांवड़ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। डीएम खुद यहां तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। कांवड़ मार्गों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित संस्थाओं को 25 जुलाई तक सभी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस बार कांवड़ मेला और कुंभ मेले के कार्य समानांतर रूप से चल रहे हैं, तो कुंभ मेले के कार्यों में जुटी संस्थाओं के साथ कोऑर्डिनेशन से कांवड़ मेले में काम भी हो रहे हैं। यहां लगातार काम जारी है। इसके साथ ही कांवड़ मेले के शुरू होने से पहले ही कांवड़ यात्रियों के लिए मार्गों को खोल दिया जाएगा।
15: और अब बात करते हैं महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा की। देश भर में 16 तारीख को बड़ी धूमधाम से भगवान जगन्नाथ बलभद्र और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाएगी। परंपरा के मुताबिक 15 दिनों तक अस्वस्थ रहने के बाद आज पहली बार महाप्रभु जगन्नाथ ने भक्तों को नव यौवन दर्शन दिए हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है।

महाप्रभु जगन्नाथ के करोड़ों श्रद्धालु हर साल जिस पल का इंतजार करते हैं वो पावन घड़ी अब दस्तक देने वाली है। महाप्रभु जगन्नाथ की नगरी पूरी एक बार फिर आस्था और उल्लास के रंग में सराबोर होने वाली है। 16 जुलाई को वो शुभ घड़ी होगी जब महाप्रभु जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे।

0: जगन्नाथ रथ यात्रा के आरंभ से पहले ही देश और विदेश से श्रद्धालुओं ने पुरी पहुंचना शुरू कर दिया है। पुरी में मौजूद हर चेहरे पर उत्साह है, हर दिल में भक्ति का सैलाब है, क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा में अब सिर्फ एक दिन का समय बाकी है।
1: बस एक ही दिन की इंतजार है, भगवान जगन्नाथ यहां आएंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। जुलाई 16 तारीख को भव्य रथ यात्रा मनाया जाएगा, इसलिए पूरी में अब से भक्तों का भीड़ देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन आज ये नवजौवन दर्शन है और नेत्रोत्सव भी है। भगवान जो बुखार में थे, भगवान का तबियत ठीक नहीं था, अनासर में थे, भगवान का तबियत आज ठीक हो गया है। भगवान आज पहली बार आज भगवान आ रहे हैं और भगवान आज ठीक हो रहे हैं, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। आज भगवान कैसे भक्तों को कैसे पहली बार दर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, क्या नाम है आपका?
2: हमारा नाम छवि कोठारी है।
1: पंडित जी, क्या है मतलब भगवान बुखार में थे, भगवान को नहाने के बाद भगवान को बुखार हो गया था?
2: बेटा, जब भगवान जो नहाया था, बैल श्री ने भगवान का चंदन लगा हुआ था, चंदन लग कर ठंडा हुआ था, ठंडे के बाद में ठंडे का पानी दे देगा तो इंसान भुखार बन जाएगा। हम क्या, वो जो कोई हो भुखार हो जाएगा, वो दवाई खाएगा अच्छा होगा, ठंडा हो जाएगा दवाई खाएगा, दवाई के बाद में जो भगवान अच्छा हो जाएगा तो चक्का विजय होगा। चक्का विजय होगा दशम में, जो शुक्रवार जो चक्का विजय हुआ है, भगवान तीन भगवान चक्का विजय हुआ। इनका बाद में भगवान को जो एकादशी आएगा, एकादशी खली लागी होता है। खली लाग मैंने जो भगवान का जो कपड़ा जो घेरता है, इनका नाम तो खली लाग होता है। इसका बाद में भगवान जो द्वादश गया है, त्रयोदश में जो घड़ा जो लगाया है, जो घड़ा लग के भगवान का जो पेड़ा है घुमाया, इसके बाद एक दिन बिता दिया।
0: पुरी की सड़कों पर श्रद्धालुओं का सैलाब बढ़ता जा रहा है। रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट पर भक्तों के पहुंचने का सिलसिला अनवरत जारी है। देश के अलग अलग राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी भक्त महाप्रभु के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब बस इंतजार है उस दिव्य क्षण का, जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के द्वार तक पहुंचेंगे।
1: पूरी में भक्तों का भीड़ अब देखने के लिए मिल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आप ये तीनों रथ देख सकते हैं। तीनों रथ अब पूरी तरह की जो तैयारी है, ये तैयारी एक तरफ खत्म होने वाला है और बच एक ही दिन का बाकी है। एक दिन बाद यानी जुलाई 16 तारीख को भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा मैया रथ यात्रा में शामिल होंगे, भक्तों को दर्शन देंगे, भक्तों से मिलने के लिए आएंगे। जो भक्त सालों भर भगवान का मंदिर के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, वो खुद भगवान सालों में एक बार जैसे आते हैं, इस बार भी जुलाई 16 तारीख को आएंगे और भक्तों को दर्शन देंगे।
0: ये वो दुर्लभ बेला है जब भक्त भगवान के पास नहीं जाते, बल्कि भगवान स्वयं अपने भक्तों से मिलने जाते हैं। और जब जगत के नाथ श्री जगन्नाथ अपने मंदिर से बाहर आते हैं तो दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। श्री गुंडीचा मंदिर से लेकर श्री मंदिर तक पूरे मार्ग को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। हर ओर भक्ति, श्रद्धा और उत्सव का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है।
3: कुछ भी बोल नहीं सकते, मन में इतना खुशी है कि हम लोगों को स्वामी ने बुलाया हुआ है यहाँ पे।
1: मतलब रथ यात्रा आप पहले कभी देखे थे?
3: नहीं, पहली बार है, लाइफ टाइम में पहली बार है हम लोग।
4: मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे, मैं पुण्य है इधर आने का, मैं कभी नहीं आ रही हूँ इधर, भगवान ही मुझे बुलाए।
1: खुशी लग रहा है?
4: बहुत खुशी, बहुत आनंद लग रहा है।
0: भगवान बलभद्र का रथ दाल ध्वज कहलाता है, जो लाल और हरे रंग से सुसज्जित होता है। दर्प दलन या देव दलन रथ पर विराजमान होती हैं, जिसका आवरण लाल और काले रंग का होता है। वहीं भगवान जगन्नाथ नंदी घोष या गरुण ध्वज रथ पर विराजते हैं, जो लाल और पीले रंग से अलंकृत होता है।
5: यात्रा मनाया जाता है क्योंकि जो लोग मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, वो लोगों का दर्शन करने के लिए, जो पतित जन होते हैं, और सब लोगों को भगवान आलिंगन करने के लिए, दर्शन देने के लिए, उनको पावन बनाने के लिए, ये पावन यात्रा, पतित पावन यात्रा, इसको घोष यात्रा कहा जाता है। नंदी घोष रथ में भगवान जगन्नाथ जी बैठते हैं, ताल ध्वज में बलदाव जी बड़ा भैया बैठते हैं, और देवी रथ व दर्पदलन रथ में सुभद्रा मैया बैठते हैं। बैठ के भक्त लोगों को, जो विधर्मी लोग है, जो कि साल मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, उन लोगों को पावन करने के लिए भगवान का ये यात्रा अनुष्ठित होता है।
0: पूरी रथ यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं। ऐसे में प्रशासन ने भी व्यापक तैयारियां की हैं, लिहाजा यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुरी में पूरे रथ मार्ग पर पुलिस और सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे और कंट्रोल रूम के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं, एम्बुलेंस, पेयजल और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके।
6: श्री बलभद्र महाप्रभु श्री जगन्नाथ एंड देवी सुभद्रा जी का जो रथ यात्रा है अभी, उसके लिए मल्टीलेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट पुलिस ने किया हुआ है, और उसके लिए हमने 220 प्लाटून ऑफ फोर्सेस, 19 आईपीएस ऑफिसर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एडिशनल एसपीस एंड थाउजेंड्स ऑफ एसआई एंड एएसआई डिप्लॉयमेंट है। इसमें हम जो 8 वर्टिकल्स में है, बेसिकली क्राउड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का जो बंदोबस्त किया हुआ है पुलिस में, तो इनसाइड टेम्पल अरेंजमेंट हुआ है जिसमें कि सेक्टर वाइज हम डिवीजन किया हुआ है टेम्पल के, जैसे कि सिंह द्वार से बाहर घुमटी है, बाहर घुमटी से भीतर घुमटी होके जो हमारा मुक्ति मंडप होके बिमला देवी, माँ बिमला देवी है, माँ महालक्ष्मी का टेम्पल है, कीर्तन चकड़ा है, तो इस एरिया को हमने डिवाइड किया हुआ है सेक्टर वाइज। उसमें हमारा जो पुलिस ऑफिसर है जो वो ड्यूटी में रहेंगे तैनात, बेसिकली क्राउड का ओवर मैनेजमेंट करेंगे, क्राउड कंट्रोल का, एंड डिवोटी जो आएंगे उनका रिवर्स फ्लो को रोकेंगे, एंड उसमें जो बैरिकेडिंग क्रॉस नहीं करेंगे वो सब चीज़ हमने उन्हें ब्रीफ करके रखा है। बेसिकली बिहेवियरल एस्पेक्ट में ब्रीफ किया है कि जैसे टेम्पल इनसाइड है उनका बिहेवियर टुअर्ड्स डिवोटीज डेट शुड बी लाइक फैसिलिटेशन करना है, उनको अच्छे से दर्शन कराना है, उनको गुड बिहेवियर देना है।
0: श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रथ यात्रा से पहले लाइफगार्ड्स ने समंदर किनारे रेस्क्यू मॉक ड्रिल का आयोजन किया और अलग अलग तरीकों से अपनी तैयारियों को परखा। समंदर में फंसे व्यक्ति तक कैसे जल्दी से जल्दी पहुंचना है, उसे किनारे तक कैसे लाना है और फर्स्ट एड कैसे देना है, इन हालातों से निपटने के लिए अभ्यास किया गया। साथ ही आपसी तालमेल, बातचीत और इमरजेंसी रिस्पांस प्रोटोकॉल को भी परखा गया। ड्रिल के दौरान रेस्क्यू के सामान और इमरजेंसी गियर की भी जांच की गई। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सिर्फ पुरी वासियों के लिए ही एक बड़ा धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि देश और दुनिया में मौजूद तमाम जगन्नाथ भक्तों के लिए भी किसी बड़े उत्सव से ये कम नहीं है। अब इंतजार उस ऐतिहासिक क्षण का है जब विशाल रथों की रस्सियां लाखों श्रद्धालु अपने हाथों से खींचेंगे और जय जगन्नाथ के गगनभेदी जय घोष के बीच महाप्रभु भक्तों के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे। श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास है कि इन विशाल रथों की पवित्र रस्सियों को छूने मात्र से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और वे अनगिनत पापों से धुलकर पुण्य कमाते हैं। पूरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: और न्यूज मत पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर वायरल चौक पर ठहर कर उन वीडियोस को देख लेते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले हैं और कुछ इमोशनल करने वाले।
8: गाय को सनातन में माता कहा जाता है और ऐसे ही संस्कार बच्चों में बचपन से ही दिए जाते हैं। जो बता रही हैं ये वायरल तस्वीरें, खुद ही देख लीजिए। ये छोटी सी बच्ची पहले गाय को रोटी देती है, फिर प्रणाम करके आशीर्वाद लेती है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हैं और यूजर्स बच्ची को दिए जा रहे संस्कारों को सराह रहे हैं। सनातन परंपरा की झलक दिखाती है वायरल तस्वीरें देखिए। एक मंदिर में ये श्रद्धालु गरुड़ पर्व के दौरान अपने नृत्य से अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। इस घूमने वाले नृत्य को देखकर हर कोई अब उसके संतुलन के साथ स्थिरता को देख मंत्रमुग्ध है। यूजर्स इसकी आस्था और भक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। इन दिनों एक पंडित जी के कौशल का ये वीडियो भी खूब चर्चा में है, जहां पंडित जी शायद किसी घर में चल रहे कार्यक्रम में पूजा पाठ कराने के बाद घर की दीवार पर स्वास्तिक लगा रहे हैं। उन्होंने एक थाली की मदद से घर की दीवार पर बड़े कौशल और कुशलता से वो स्वास्तिक लगा दिया। अब जो देख रहा है पंडित जी के कौशल को सलाम कर रहा है। लगातार मेहनत और अनुभव का कमाल क्या होता है, इन तस्वीरों को देखिए जरा। इन मजदूरों ने अपने काम को एक खेल की तरह लिया। वो अपना काम करते हुए कितने खुश हैं ये साफ नजर आ रहा है। इसीलिए वो अपने काम में इतने पारंगत हो चुके हैं कि उनका एक दूसरे को उछाल कर दिया जा रहा सामान से भरा बोरा एक बार भी मिस नहीं हो पा रहा। सोशल मीडिया पर लोग इन तस्वीरों को खूब देख रहे हैं और इनकी तुलना दिग्गज बल्लेबाजों के साथ करते हुए बोल रहे हैं कि दिग्गज खिलाड़ियों के बल्ले से भले ही बॉल मिस हो सकती है लेकिन इन्होंने एक भी बोरा मिस नहीं किया। ये वायरल तस्वीरें आपका दिल जीत लेंगी। वीडियो में देखिए एक माँ गोदी में बच्चा लिए बारिश से भीगती हुई एक जगह शरण लेती है जहाँ मौजूद एक महिला पुलिस वाली बच्चे के कपड़े बदलने में उसकी मदद करती है। पुलिस वाली माँ की गोदी में बच्चा रोते रोते न सिर्फ शांत होता है बल्कि ऐसी मुस्कान बिखेरता है कि हर देखने वाले के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जाहिर सी बात है आप भी स्माइल कर रहे होंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में धूमधाम से मनाया गया बासिल डे। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर जहां देश और दुनिया की कई और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
9: फ्रांस की राजधानी पेरिस में बासिल डे के मौके पर ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। मशहूर आईफिल टावर के ऊपर रंग बिरंगी आतिशबाजी से पूरा आसमान जगमगा उठा। इस बार जश्न को और खास बनाने के लिए सैकड़ों ड्रोन भी उड़ाए गए जिन्होंने आसमान में अलग अलग आकृतियां बनाई। सबसे खास पल तब आया जब ड्रोन ने आसमान में आईफिल टावर की ही तस्वीर बना डाली। इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए हजारों लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए और अपने मोबाइल में इसे कैद करते नजर आए। बासिल डे फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। ये दिन साल 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति की याद में मनाया जाता है। हर साल इस मौके पर पूरे देश में परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शानदार आतिशबाजी होती है। अमेरिका के लॉस एंजेलिस में एक साथ दो कॉर्प्स फ्लावर खिले हैं। यहाँ के बोटैनिकल गार्डन में इस दुर्लभ नजारे को देखने लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कॉर्प्स फ्लावर अपनी बदबू के लिए पहचाना जाता है। इस फूल के खिलते ही इससे सड़े मांस जैसी गंध आती है। इसके खिलने का ये अनोखा नजारा सिर्फ 24 से 48 घंटे तक रहता है। इंडोनेशिया का ये दुर्लभ पौधा 2 से 3 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है। ये फूल लोगों को संरक्षण के लिए जागरूक करता है। यूरोप में भीषण गर्मी पड़ रही है। बेल्जियम समेत कई देशों में पारा 30 डिग्री के पार चला गया है और यहाँ लोग छांव और एसी तक का सहारा लेने को मजबूर हैं। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और ग्रीस में वाइल्ड फायर ने हजारों हेक्टेयर जंगल जलाए हैं। पूरा यूरोप गर्मी से बचने की जद्दोजहद में जुटा है। लोग ज्यादा से ज्यादा खुद को डिहाइड्रेट कर रहे हैं। कई देशों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। पूरे यूरोप में क्लाइमेट चेंज का बड़ा असर नजर आ रहा है। प्रशासन ने लोगों से घरों में बने रहने की अपील की है। बुजुर्गों और बच्चों को बाहर ना निकलने की भी सलाह दी गई है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान से रवाना हो गए। ये प्रक्षेपण भारतीय समय के अनुसार रात 8:17 पर कजाकिस्तान स्थित बैकनूर कॉस्मोड्रोम से हुआ। इसके साथ ही 8 महीने लंबे मिशन की शुरुआत हुई है जो अगले साल अप्रैल में पूरे चालक दल की धरती पर वापसी के साथ पूरा होगा। मेनन ने सोशल मीडिया पर कहा कि वो इस अहम मिशन के लिए पूरी तरह रेडी हैं। उन्होंने नासा, अपने परिवार और दोस्तों का उनके लगातार सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया। डॉक्टर अनिल मेनन भारतीय मूल के हैं और उनके पारिवारिक संबंध केरलम के पलक्कड़ जिले के ओट्टापालम से हैं।
10: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
7: और न्यूज पथ में मेरी यानी नवजोत संधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
11: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices. So you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here. On TuneIn.
12: क्या गुप्त नवरात्रि सामान्य नवरात्रि से ज्यादा शक्तिशाली है? क्या गुप्त नवरात्रि में कोई भी साधना कर सकता है? गुप्त नवरात्रि में साधना और पूजा का क्या है विधान और कौन से मिलेंगे इसमें वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
13: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: दिल्ली एनसीआर में बदल गया मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज हवा के साथ हुई बारिश, गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, मंदिर के बाहर उमड़ा आस्था का मेला, भगवान दे रहे नवयौवन दर्शन। दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्सटाइल एक्सपो का शुभारंभ, 17 जुलाई तक चलेगा कार्यक्रम, देश विदेश से जुटेंगे उद्योगपति। जैसलमेर रेलवे स्टेशन का हुआ कायाकल्प, विरासत और आधुनिकता का दिखा अनोखा संगम, 140 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास। जयपुर बना दुनिया का छठा सबसे खुशहाल शहर, टाइम आउट 2026 की टॉप 10 लिस्ट में हुआ शामिल, पिंक सिटी के बाद मिला एक और टाइटल। फीफा वर्ल्ड कप के रंग में रंगा केरल का त्रिशूर, ब्राजील अर्जेंटीना की जर्सी वाली धोती बनी फुटबॉल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र, मैसी की जर्सी की खासी डिमांड।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात जगन्नाथपुरी की। भगवान जगन्नाथ की नगरी एक बार फिर से आस्था के उत्सव में मगन है। पुरी की सड़कों पर भगवान के आगमन का इंतजार हो रहा है। बस एक दिन का वक्त बचा है। 16 जुलाई गुरुवार से जगन्नाथ रथ यात्रा का श्री गणेश हो रहा है। इसी बीच उत्सव की तैयारियों की तमाम तस्वीरें जगन्नाथ मंदिर प्रांगण से लगातार आ रही हैं और हम आपको जीएनटी पर दिखा भी रहे हैं। आज श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ का नव यौवन श्रृंगार किया गया। 14 दिनों के बाद मंदिर के कपाट खुले और भगवान ने नवयौवन रूप में भक्तों को दर्शन भी दिए। परंपरा के अनुसार भगवान के स्वस्थ होने की सूचना देने मंदिर के सेवायत पुरी के राजा के पास पहुंचे। ये उसी की तस्वीरें हैं। हर साल रथ यात्रा से पहले जगन्नाथपुरी में ये परंपरा यूं ही निभाई जाती है। मंदिर के सेवायत राजा के पास संदेश लेकर जाते हैं कि भगवान अब स्वस्थ हो गए हैं, वो भक्तों को दर्शन दे सकते हैं। श्री मंदिर के कपाट खुल गए।

0: जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजय नाथ।
1: बस एक ही दिन की इंतजार है, भगवान जगन्नाथ यहाँ आएंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। जुलाई 16 तारीख को भव्य रथ यात्रा मनाया जाएगा, इसलिए पूरी में अब से भक्तों का भीड़ देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन आज ये नवजौवन दर्शन है और नेत्रोत्सव भी है। भगवान जो बुखार में थे, भगवान का तबियत ठीक नहीं था, अनासर में थे, भगवान का तबियत आज ठीक हो गया है। भगवान आज पहली बार आज भगवान आ रहे हैं और भगवान आज ठीक हो रहे हैं, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। आज भगवान कैसे भक्तों को कैसे पहली बार दर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, क्या नाम है आपका?
2: हमारा नाम छवि कोठारी है।
1: आज राजदरबार में क्यों गए थे?
2: राजदरबार से भगवान का प्रसाद लेके गया था, इसको बोला महाराज आप प्रसाद लीजिए, हमारा दरवाजा आज खोलेगा।
1: क्यों?
2: क्या भगवान दवाई खा के अच्छा हो गया, इसलिए भगवान का अच्छा हो गया।
1: संदेश लेके गए,
2: यही संदेश लेके गया था, भगवान अच्छा हो गया, अब भगवान दरवाजा खोलेगा, पट खोलेगा। ठीक, कोई बात नहीं, पट खोल दियो।
1: मतलब भगवान आज से ही पूरा दर्शन देगा?
2: दर्शन 2 घंटा दर्शन देगा।
1: फिर आज काल का क्या है?
2: काल का भगवान तो यात्रा करेगा, खिचड़ी खाएगा भगवान, काल जाएगा नहीं परसों जाएगा। काल भगवान दिन भर भगवान भूख खाएगा, दिन भर भूख खाएगा।
1: तो भगवान बुखार में थे, भगवान का तबियत ठीक नहीं था, जो 15 दिन भगवान अनासर में थे, भगवान का तबियत अब ठीक हो गया है, ये संदेश लेके राजदरबार में पंडित लोग गए थे। राजदरबार में ये संदेश दिए कि भगवान का तबियत ठीक हो गया है और भगवान आज 2 घंटे के लिए दर्शन को भगवान भक्तों को दर्शन देंगे। और ये नवजौवन और नेत्रोत्सव, ये दर्शन देखने के लिए भक्तों का भीड़ आप देख सकते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको, ये जो भीड़ देख रहे हैं ये भगवान को देखने के लिए, भगवान का एक झलक पाने के लिए, जो भगवान 15 दिन अनासर में थे आज अपने रूप में आ रहे हैं। और यही नवजौवन का जो दर्शन, ये दर्शन को देखने के लिए भक्तों का ये भीड़ आप देख के आपको पता चल रहा होगा कि लोगों का मन में भगवान को देखने के लिए, पूरी में ये जो भीड़ देख के ही पता चल रहा है कि भगवान को देखने के लिए इनका मन में कितना भाव है, कितना प्रेम है, कितना श्रद्धा है।
0: ये ऐसे ही अद्भुत तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे। भगवान जगन्नाथ का ये पावन धाम अपने आप में बहुत अनोखा है। श्री जगन्नाथ की मौजूदगी के चलते पुराणों में पुरी को धरती का वैकुंठ कहा गया है। ब्रह्म और स्कंद पुराण के मुताबिक यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के चलते यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। लेकिन फिर जगन्नाथ धाम की स्थापना कैसे हुई और पुरी में कैसे शुरू हुई रथ यात्रा की ये परंपरा, चलिए आज आपको सुनाते हैं वो कहानी जिसकी शुरुआत हुई थी सतयुग की एक रात में, जब उज्जैन के राजा इंद्रद्युम्न को एक सपना आया था।

0: हे राजा इंद्रदेव, समुद्र के तट पर मेरी प्रतीक्षा करो। मैं दारु ब्रह्म के रूप में प्रकट होऊंगा। मैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन के रूप में प्रकट होऊंगा।
1: ये कहानी है उनकी जिन्हें सारा संसार जगत का पालनहार बुलाता है। कहानी उनकी जिनके होने से संसार का ये भाग धरती का बैकुंठ कहलाने लगा। कथा उनकी जो स्वयं मधुरे हैं, पर जगत की हर रीत उन्हीं से पूरी होती है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी। और यहीं विराजते हैं सारे जगत के नाथ, भगवान जगन्नाथ। ये बात है सतयुग।

0: उन दिनों आज के उज्जैन को अवंतिका या अवंती कहा जाता था। तब अवंती पर सूर्यवंश के राजा इंद्रद्युम्न का शासन था। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार एक संत ने राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु के एक बेहद दिव्य रूप नील माधव स्वरूप के बारे में बताया। बताया जाता है कि भगवान नील माधव के दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ माने जाते थे। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न भगवान नील माधव का मंदिर खोजने में जुट गए। देश के चारों कोनों में उन्होंने लोग भेजे, लेकिन उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। कहानी आगे बताती है कि वर्षों की प्रतीक्षा और आराधना के बाद आखिरकार एक रात राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनसे कहा कि वे सागर तट पर दारु ब्रह्म के रूप में प्रकट होंगे। एक रोज समुद्र की उफनती लहरों के साथ एक विशाल दिव्य लकड़ी का तना बहकर तट पर आ लगा। उस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के पवित्र चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। राजा समझ गए यही दारु ब्रह्म है। बड़े सम्मान के साथ उस दिव्य तने को महल में लाया गया। इसके बाद देव शिल्पी विश्वकर्मा एक बढ़ई के रूप में राजा के पास पहुंचे और राजा ने उन्हें लकड़ियों से भगवान की मूर्तियां बनाने का काम सौंप दिया। लेकिन काम शुरू करने से पहले बढ़ई बने विश्वकर्मा जी ने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि जब तक मूर्तियां पूरी नहीं बन जाती तब तक कोई भी मेरे कमरे में नहीं आएगा। राजा ने उनकी बात मान ली और महल के एक कमरे में मूर्तियां बनाने का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन बढ़ई ने जब बहुत दिनों तक कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो एक दिन रानी गुंडीचा ने कौतूहलवश कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की। ऐसा होते ही बढ़ई ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और कहा कि आपने मेरी शर्त तोड़ दी है। मूर्तियां अब तक अधूरी हैं, लेकिन अब मैं ये काम पूरा नहीं कर सकता।
1: रानी ने परेशान होकर महारानी ने राजा जी को बोले कि हम दरवाजा खोल देंगे। तो इसी समय राजा जी ने बोले नहीं, वो कंडीशन किए हैं और हम क्यों खोलेंगे। तो रानी ने बोले देखिए, अगर वो गुजर जाएंगे कि कुछ हो जाएगा तो हमको पाप लगेगा, नरक का पाप लगेगा, तो हमको मन नहीं करे, हम खोल देंगे। जब दरवाजा खोल दिए तो देखिए, तो जो कारीगर जो थे महापुरुष को मूर्ति बनाने वाले वो नहीं थे, लेकिन तीनों भगवान थे। तीनों भगवान ऐसे रूप पे थे आज जो रूप में आप देख रहे हैं। हाथ पांव सब था लेकिन हाथ पांव नहीं था।
0: विचित्र दुविधा थी। राजा और रानी के सामने भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन के विग्रह मौजूद थे, लेकिन वे पूर्ण नहीं थे। हाथ अधूरे, पैर अधूरे, स्वरूप अधूरा। राजा इंद्रद्युम्न हताश हो गए। कहानी में आगे वर्णन मिलता है कि तभी आकाशवाणी हुई कि यही भगवान का इच्छित स्वरूप है और उन्हें इसी रूप में स्थापित कर दिया जाए।
1: तो राजा रानी ने चकित हो गए और महाप्रभु के पास में शरण में आ गए कि महाप्रभु कितना बड़ा भूल हमने कर दिया, दरवाजा खोल दिया, अब तो विघ्न रूप है, अभी तो पूजा नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे। तो इसी समय स्वप्नादेश हुआ महापुरुष जगन्नाथ जी की तरफ से कि नहीं नहीं, हम कलयुग में इसी रूप में पूजा पाएंगे। तो इसके बाद में महापुरुष जगन्नाथ वही इसी रूप में पूजा पा रहे हैं। हाथ पांव नहीं है, आँख के पलक नहीं है, लेकिन वो सबको काम कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं, सबका हाथ तो हला के सबका जो दुख है उसको ले रहे हैं, हरण कर रहे हैं, और कान नहीं है लेकिन सबका बात सुन के उनका भी सब कार्य सिद्ध कर रहे हैं।
0: फिर क्या था, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की अधूरी मूर्तियों की ही प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई और पूरे विधि विधान के साथ उन्हें श्री मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया। तभी से भगवान की ऐसी ही मूर्तियों की पूजा की जा रही है। लेकिन भगवान की इन मूर्तियों को 15 साल में एक बार बदलने की परंपरा भी है। लेकिन भगवान की मूर्ति बदलने की ये प्रक्रिया बेहद रहस्यात्मक ढंग से निभाई जाती है। बताया जाता है कि जब मंदिर में मूर्तियां बदली जाती हैं, शहर की बिजली काट दी जाती है। जिस पुजारी को मूर्तियां बदलने की जिम्मेदारी मिलती है उसकी आँखों पर पट्टी बांधी जाती है। जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्यों में सबसे बड़ा आश्चर्य वो ब्रह्म पदार्थ है जिसे पुरानी मूर्तियों में से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। मान्यता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को आज तक किसी ने नहीं देखा है। माना जाता है कि ये भगवान का हृदय है जो जो द्वापर युग से आज तक धड़क रहा है। मूर्ति बदलने वाले आज भी भगवान की धड़कनों को महसूस करते हैं। अनोखे हैं भगवान जगन्नाथ और उतनी ही अनूठी है उनके प्राकट्य की कहानी। भगवान जगन्नाथ की महिमा और उनके प्राकट्य का सबसे विस्तृत वर्णन स्कंद पुराण के उत्कल खंड में मिलता है। भगवान जगन्नाथ की यही कहानी आगे चलकर रथ यात्रा से भी जुड़ती है। कहानी आगे बताती है कि जब से रानी गुंडीचा ने भगवान की अधूरी मूर्तियों को देखा था, वे उनसे संतान की तरह स्नेह करने लगी थी। अब जब भगवान उनके महल को छोड़ श्री मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो रहे थे, उन्हें लग रहा था मानो उनका पुत्र ही उनसे दूर जा रहा हो। कहते हैं रानी गुंडीचा के इस वात्सल्य भाव और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि वे हर वर्ष आषाढ़ माह में अपने भाई और बहन के साथ उनसे मिलने जरूर आएंगे और 7 दिनों के लिए पुत्र की तरह उनके साथ रहेंगे। भगवान के इसी वचन को निभाने के लिए रथ यात्रा का संकल्प लिया गया।

0: और पुरी में शुरुआत हुई उस परंपरा की, जिसे आज भी बेहद श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाया जाता है।
1: ये रथ यात्रा बहुत सालों से चल रहा है। ये स्वयं जगन्नाथ जी ने उनका निश्रुत जो बानी होता है वो गुंडीचा रानी को वो सत किए थे कि मैं 9 दिन ये यात्रा करूँगा। तो ये कीर्ति को रक्षा करने के लिए ये यात्रा हो रहा है 9 दिन का।
0: मान्यता है कि तभी से हर वर्ष भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ रथ पर सवार होकर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं और 7 दिनों तक वहीं विराजमान रहते हैं। चूंकि जगन्नाथ प्रभु की प्रतिमा का निर्माण गुंडीचा मंदिर में ही हुआ था, इसलिए इसे भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर और उनका प्राकट्य स्थल माना जाता है। पुरी के मुख्य समारोह मार्ग बड़ा डंडा के एक छोर पर श्री जगन्नाथ मंदिर है, तो उसी सड़क के दूसरे छोर पर लगभग 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर मौजूद है। ये मंदिर प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ पहुंचकर भगवान अपने भाई बहन के साथ विश्राम करते हैं और विशेष व्यंजनों का भोग लगाते हैं। इस दौरान भगवान मुख्य मंदिर के गर्भगृह से बाहर आकर बहुत करीब से सभी आम और खास भक्तों को दर्शन देते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर में भगवान को जो भी भोग लगाया जाता है उसे आड़प महाप्रसाद कहते हैं।
2: ये कलयुग का एक ही मात्र भगवान जगन्नाथ जी हैं जो रथ में एक बार साल में एक बार बाहर आते हैं और भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ के ऊपर में वो बाहर आते हैं। तीनों रथ में जगन्नाथ जी आते हैं, बलदाव जी और माता सुभद्रा देवी रथ पे आते हैं। तो जाते हैं गुंडीचाबाड़ी जनकपुरी करके, जहाँ पर महापुरुष 9 दिन तक वहाँ उनका विशेष नीतिकांति है, वहाँ भी जैसा है, वहाँ भी एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर सब व्यवस्था वहीं पर होता है।
0: ऐसी मान्यता है कि गुंडीचा मंदिर में भगवान के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। रानी गुंडीचा और भगवान जगन्नाथ के बीच वात्सल्य और प्रेम के इसी भाव के चलते गुंडीचा मंदिर को मासी माँ का मंदिर भी कहा जाता है। कहते हैं भगवान को मासी माँ के मंदिर तक ले जाने वाली इस भव्य रथ यात्रा में शामिल होना बड़ी सौभाग्य की बात है। तभी तो हर साल भक्ति की इसी डोर से बंधे भक्त जगन्नाथपुरी की सड़कों पर भगवान के रथ के चारों ओर आस्था का उत्सव मनाते हैं। भक्ति का भाव और भक्तों का उल्लास पुरी रथ यात्रा की आत्मा है। पुराणों में रथ यात्रा के फल को 100 यज्ञों के बराबर बताया गया है। पुरी की पवित्र भूमि पर जब ये रथ यात्रा निकलती है तो भक्त और भगवान एकाकार नजर आते हैं। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अब देखिए, रथ यात्रा में सिर्फ एक दिन बचा है और इस यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण भगवान उनके भाई बहनों के साथ बनकर तैयार हैं रथ। चलिए आपको दिखाते हैं इस बार कैसे सजे हैं भगवान के ये रथ।
4: इस बार 2026 जुलाई 16 तारीख को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मनाया जाएगा और ये रथ यात्रा को भव्य और सुंदर करने के लिए पूरी प्रशासन और ये उड़ीसा और सरकार के तरफ से हर तरह की व्यवस्था किया गया है, हर तरह की बंदोबस्त किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो रथ है ये नंदीघोष रथ है और ये नंदीघोष रथ का जो आपको ये जो दिखा रहा हूँ ये जो कलर है रेड और येलो, ये कलर भगवान को बहुत पसंद है और इसलिए भगवान को ये कपड़ा वाला रथ में लिया जाता है। नंदीघोष रथ में आप अगर देखेंगे तो 16 चक्का और 4 घोड़े रहते हैं और आप देख सकते हैं नंदीघोष के साथ बलभद्र और देवी सुभद्रा के भी अलग अलग रथ रहता है और अलग अलग रथ में अलग अलग पहिया, अलग अलग चक्का और इसके साथ अलग अलग की घोड़े भी रहते हैं। अगर हम ये बात करेंगे तालध्वज रथ का बात करेंगे तो तालध्वज रथ में 14 चक्का और 4 घोड़े। दर्पदलन रथ का अगर बात करेंगे तो दर्पदलन रथ में इस हिसाब से 12 चक्का 4 घोड़े और नंदीघोष रथ में 16 चक्का 4 घोड़े रहते हैं।
3: एक तरफ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं तो दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन कड़े सुरक्षा इंतजाम कर रहा है। पूरे क्षेत्र की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। रथ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। इसी कड़ी में पुरी में पुलिस ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉक ड्रिल का भी यहाँ पर आयोजन किया।
4: पूरी प्रशासन के तरफ से पूरे शहर में हर तरह की जो व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ी और मजबूत करने के लिए व्यवस्था किया गया है और ओडिशा सरकार के तरफ से पूरे शहर में चप्पे चप्पे में पुलिस बल की तैनात किया गया है। इस रथ यात्रा में 30 इवैक्यूएशन रूट बनाया गया है ताकि अगर आगे के ऐसे कुछ इमरजेंसी हो तो लोगों को निकलने के लिए 30 इवैक्यूएशन रूट बनाया गया है। इसके साथ 16 अलग अलग मोबाइल टावर्स जो मूवेबल मोबाइल टावर्स हैं टेम्प्रारी मोबाइल टावर्स इंस्टॉल किया जाएंगे। इसके साथ 13,000 से ज़्यादा जो आर्म फोर्सेस हैं उनको मुतैन किया जाएगा। 19 IPS ऑफिसर्स को अराउंड 19 ऑफिसर जो हैं 19 ऑफिसर को ये पूरी व्यवस्था देखने के लिए निगरानी करने के लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। इसके साथ 15 जो CFPF कंपनियां हैं इनको भी इसमें शामिल किया जाएगा और इसके साथ 1700 से ज़्यादा बायो टॉयलेट्स ताकि लोगों को टॉयलेट्स के लिए कुछ ऐसे प्रॉब्लम ना हो इसलिए 1700 से ज़्यादा बायो टॉयलेट्स और 8 टेम्प्रारी जो मेडिकल हैं टेम्प्रारी मेडिकल भी इंस्टॉल किया जाएंगे और इसके साथ 476 से ज़्यादा AI CCTV कैमरा रहेंगे ताकि हर तरह की जो काम हो रहा है हर तरह की जो यहाँ रथ यात्रा में हर तरह की चीज़ें के ऊपर नज़र रखा जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर कुछ ऐसे चूक ना हो इसके लिए पूरी तैयारी किया जा रहा है और पूरी व्यवस्था किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भक्तों का ये भीड़ देख रहे हैं। एक दिन के बाद रथ यात्रा यानी 16 तारीख को रथ यात्रा है लेकिन आज से ही भक्तों का ये भीड़ आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि आगे ये जो भीड़ कितना बढ़ेगा और इस बार रथ यात्रा में कितने लोग शामिल होंगे क्योंकि हर साल लाखों भक्त यहाँ शामिल होते हैं और ये लाखों भक्तों के बीच भगवान सालों में एक बार आते हैं भक्तों को दर्शन देते हैं। जो भक्त भगवान को देखने के लिए मंदिर के अंदर नहीं जा पाते हैं सालों भर भगवान एक बार इस रथ यात्रा में आते हैं और दर्शन देते हैं उन भक्तों को जो भक्त अंदर नहीं जा पाते हैं।
3: और चलिए इसी से जुड़ी हुई दिव्य और भव्य रथ यात्रा की तस्वीरें GNT पर लगातार आपको दिखाते रहेंगे। आज की पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। अच्छी खबरें जारी हैं, देखते रहिए GNT।

0: Looking for even more of the audio you love? Upgrade to TuneIn Premium to remove ads, like this one, and score more of the content you love. That's more curated news.
1: If one party is saying we will never raise taxes, even on millionaires and billionaires.
0: More top sports.
2: And he's going to go! There's the tying goal!
0: And everything in between.
3: This game is over!
0: Upgrade now for the premium listening experience.
4: Good news today, Pat.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
6: बद्रीनाथ धाम में आजकल श्रद्धालुओं की काफी चहल पहल देखी जा रही है। दरअसल मौसम यहां बेहद सुहाना बना हुआ है, बारिश रुक रुक कर होती है, इसीलिए रास्तों में भी रुकावट नाम मात्र ही नजर आती है। केवल बद्रीनाथ धाम ही नहीं, चमोली जिले में बसे हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में आस्थावान लगातार आ रहे हैं।
7: बद्रीनाथ धाम में अब तक 14,82,000 तो हेमकुंड साहिब में 1,92,000 श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं। वहीं मौसम की बात करें तो इस बार अभी तक पहाड़ों में मानसून उस तरह से सक्रिय नहीं हुआ है, हालांकि कभी कभार बारिश देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, हेमकुंड साहिब में देखने को मिल रहा है।
8: उत्तराखंड के ऊंचे क्षेत्रों में खासकर चमोली जिले में इन दिनों मौसम भले ही नरम गरम है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, मॉनसून की बेरुखी भी नजर आ रही है। बावजूद इसके चारधाम यात्रा में से एक भगवान बद्री विशाल का दरबार और पवित्र हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा आस्था से गुलजार है। बद्रीनाथ धाम में कल कल बह रही अलकनंदा का इन दिनों शोर सुनाई दे रहा है, लेकिन इस शोर से कहीं ज्यादा यहाँ उमड़ रही आस्था का ही नाद है, जिसे देशी विदेशी श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के रूप में देखा भी जा सकता है। बताया जा रहा है कि पिछले सालों की तुलना में इस साल मॉनसून बेहद कमजोर है, इसलिए पहाड़ों पर खासतौर से ऊंचाई वाले इलाकों में तो बारिश कम ही दर्ज की गई है, लेकिन चारधाम दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं की आवक में अभी तक कोई खास कमी नहीं आई है। इस वर्ष 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, श्रद्धालुओं ने काफी संख्या में वहां पहुंचकर दर्शन किए और तब से लेकर अब तक 14,82,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। वहीं 23 मई को खुले हेमकुंड साहिब के कपाट के बाद अब तक 1,92,000 से ज्यादा सिख श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। यानी मौसम अनुकूल है, यात्रा मार्ग भी सुचारू है, तो चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह भी लगातार बना हुआ है, खासकर बद्रीनाथ में, जहां भले ही बारिश कम हो रही है मगर मौसम बेहद मुफीद है। ऊपर से यात्रा मार्ग पर कम बारिश होने की वजह से आवाजाही भी सुचारू है। यही कारण भी है कि श्रद्धालु बिना किसी बड़ी परेशानी के भगवान बद्री विशाल के साथ ही सिख श्रद्धालु भी पवित्र हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के दर्शन कर रहे हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: दुनिया की सबसे रोमांचक रेस में गिनी जाती है सैन फर्मिन फेस्टिवल की बुल रन, जहां परंपरा का मेल रोमांच के साथ होता है। स्पेन के पाम्पलोना शहर में बुल रन का ये सदियों पुराना रिवाज आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है।
9: स्पेन के पैम्पलोना शहर में मशहूर सेंट फर्मिन फेस्टिवल का आखिरी बुल रन भी पूरे जोश और रोमांच के साथ पूरा हुआ। परंपरा, रफ्तार और हिम्मत का अनोखा संगम दिखाई दिया। सुबह सुबह पैम्पलोना की सड़कों पर उत्साह साफ नजर आता है। बुल रन शुरू होने से पहले प्रतिभागी सेंट फर्मिन की प्रतिमा के सामने जुटते हैं, नारे लगाते हैं और सुरक्षित दौड़ की कामना करते हैं। फिर आती है वो घड़ी जो वहाँ मौजूद सभी लोगों की धड़कनें बढ़ा देती है। एक पटाखे की आवाज और गेट खुलते ही तेज रफ्तार से बुल बाहर निकलते हैं और उनके साथ शुरू होती है दुनिया की सबसे चर्चित और रोमांचक रेस। संकरी गलियों में बुल के आगे आगे दौड़ते प्रतिभागी, दोनों तरफ खड़े हजारों दर्शक और हर मोड़ पर रोमांच अपने चरम पर नजर आता है। इस दौरान कुछ लोग फिसलकर गिर भी जाते हैं, लेकिन दौड़ लगातार आगे बढ़ती रहती है। कुछ ही मिनटों में बुल शहर की गलियों से होते हुए बुल रिंग के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। प्रतिभागी भी उनके साथ एरीना में दाखिल होते हैं और इसी के साथ इस साल आखिरी बुल रन सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है। सैन फर्मिन फेस्टिवल सिर्फ एक दौड़ भर नहीं बल्कि स्पेन की संस्कृति और परंपरा का बड़ा उत्सव है। हर साल दुनिया भर से हजारों लोग इस अनोखे आयोजन का हिस्सा बनने और इसे करीब से देखने पैम्पलोना पहुंचते हैं। यही वजह है कि बुल रन आज भी दुनिया के सबसे चर्चित पारंपरिक आयोजनों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
4: क्या गुप्त नवरात्रि सामान्य नवरात्रि से ज्यादा शक्तिशाली है? क्या गुप्त नवरात्रि में कोई भी साधना कर सकता है? गुप्त नवरात्रि में साधना और पूजा का क्या है विधान और कौन से मिलेंगे इसमें वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
10: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music, your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
5: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: दिल्ली NCR में बदल गया मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज हवा के साथ हुई बारिश, गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, मंदिर के बाहर उमड़ा आस्था का मेला, भगवान दे रहे नवयौवन दर्शन। दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्सटाइल एक्सपो का शुभारंभ, 17 जुलाई तक चलेगा कार्यक्रम, देश विदेश से जुटेंगे उद्योगपति। जैसलमेर रेलवे स्टेशन का हुआ कायाकल्प, विरासत और आधुनिकता का दिखा अनोखा संगम, 140 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास। जयपुर बना दुनिया का छठा सबसे खुशहाल शहर, टाइम आउट 2026 की टॉप 10 लिस्ट में हुआ शामिल, पिंक सिटी के बाद मिला एक और टाइटल। फीफा वर्ल्ड कप के रंग में रंगा केरल का त्रिशूर, ब्राजील अर्जेंटीना की जर्सी वाली धोती बनी फुटबॉल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र, मैसी की जर्सी की खासी डिमांड।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
6: बात करते हैं श्री राम की नगरी अयोध्या की। रामलला के मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इस वर्ष भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हाल ही में चढ़ावा चोरी की घटनाओं के दावों के बीच भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने साफ किया है कि भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ है और ज्यादातर दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या 2025 से अधिक रही है। वहीं पुलिस कंट्रोल रूम के आंकड़ों में भी दावा किया गया है कि अयोध्या में श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बढ़ रही है। छुट्टियों और विशेष अवसरों पर दर्शनार्थियों की संख्या 1,00,000 के पार भी पहुंची है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के बाद से अयोध्या में रामलला के दर्शनार्थियों में कोई कमी नहीं आई है। राम मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की एक रिपोर्ट वायरल हो रही है।
8: देश के तमाम राज्यों से रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में दर्शन पूजन का क्रम सामान्य रूप से जारी भी है। श्रद्धालुओं का कहना है कि किसी एक घटना को करोड़ों लोगों की आस्था से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। रामलला हमारे आराध्य हैं और अयोध्या हमारी सनातन आस्था की प्रतीक है। रिपोर्ट के अनुसार 21 जून से 3 जुलाई के बीच 11,54,793 श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया है, जबकि इसी अवधि में पिछले साल 2025 में 9,12,540 लोगों ने मंदिर में दर्शन किए थे। राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें दर्शन व्यवस्था काफी सुव्यवस्थित और संतोषजनक लगी। दूर दराज से पहुंचे कई भक्तों ने ये भी बताया कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है, दर्शन की प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से संचालित हो रही है और प्रशासन की ओर से भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त इंतजाम भी हैं। श्रद्धालुओं ने इसके साथ ही कहा कि रामलला के दर्शन कर उन्हें आध्यात्मिक शांति और भावनात्मक संतोष की अनुभूति हुई।
12: राम जन्मभूमि का ये यात्री सुविधा केंद्र है और यहाँ पे जो आंकड़े दर्शा रहे हैं उसके साथ जो भीड़ है, जो भरमार है, वो लोगों को दिखा रहा है। सीधा सीधा 9 लाख से संख्या जब 11 लाख की होती है, 11.5 लाख तक वो पहुंचती है, ये इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है। और यहाँ पे लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि लोग कहाँ से आ रहे हैं, कब से दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे किस हिसाब से दर्शन चल रहे हैं। सीधा बात करने की लोगों को कोशिश करेंगे, यहाँ पे लोग बैठे भी हैं। आप लोग भैया कहाँ से हैं? दर्शन किया नहीं?
13: गया जी,
12: दर्शन कर लिया।
13: हाँ,
12: दर्शन बढ़िया से हो रहा है।
13: हाँ, बढ़िया से हो रहा है।
12: इसके पहले भी आए कि नहीं?
13: हाँ,
12: कितनी
13: पिछले साल आए थे नहाने के लिए, वो हुआ था ना कुंभ मेला, उसी में
12: उसमें काफी भीड़ थी होगी।
13: बहुत भीड़,
12: आज भी भीड़ है?
13: आज भी भीड़ है, बहुत भीड़ है। लेकिन हम लोग सुबह में दर्शन किए थे पिछली बार, तो उतनी भीड़ नहीं थी, जल्दी जल्दी दर्शन हो गए।
12: इस वक्त ज्यादा भीड़ है?
13: हाँ, इस वक्त ज्यादा भीड़, आज मंगलवार भी है।
12: देखिए, दर्शनार्थी भी खुद कह रहे हैं, इसके पहले भी हम आए थे, वो भीड़ वो संख्या नहीं थी, लेकिन आज की जो आंकड़े बता रहे हैं वो भीड़ वो संख्या है। और यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे श्रद्धालु है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आप कहाँ से?
14: गया जी से।
12: गया जी से दर्शन किया?
14: हाँ जी, दर्शन किया।
12: भीड़ बढ़िया थी नहीं?
14: बहुत अच्छी भीड़ है।
12: पहले भी आप आए थे कि नहीं?
14: हाँ, आई थी कुंभ मेला में। आई थी
12: कुंभ मेला में? हाँ, काफी भीड़ होगी।
14: बहुत ज्यादा, एक्सेस बहुत ज्यादा।
12: कैसे दर्शन हुए? अच्छे?
14: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दिल खुश हो गया, मन बाग बाग।
12: मैनेजमेंट कोई दिक्कत
14: नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया।
12: रामलला के अच्छे दर्शन?
14: बहुत अच्छे, रामलला की जय हो।
12: देखिए, लोग हैं यहाँ पे, दर्शनार्थी है, तो काफी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और 2025 के जो आंकड़े हैं उससे जो अधिक आंकड़े दर्शाए जा रहे हैं 2026 के, वो मौजूदा हालात में है।
8: श्री राम मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इस साल भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। पुलिस कंट्रोल रूम के आंकड़े बताते हैं कि 21 जून 2026 को 94,419 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि इसी दिन 2025 में ये संख्या 81,303 थी। 28 जून 2026 को सबसे ज्यादा 1,02,672 श्रद्धालु मंदिर पहुंचे, जो इस अवधि का सबसे बड़ा आंकड़ा रहा। 26 जून को 97,603, 27 जून को 97,134 और 30 जून को 96,112 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हालांकि कुछ दिनों में 2025 की तुलना में दर्शनार्थियों की संख्या कम भी रही। 22 जून 2026 को 75,845 श्रद्धालु आए, जबकि 2025 में ये संख्या 88,756 थी। इसी तरह 29 जून 2026 को 84,102 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि साल 2025 में 84,443 श्रद्धालु पहुंचे थे। वहीं 3 जुलाई 2026 को 87,652 श्रद्धालुओं ने श्री रामलला के दर्शन किए, जबकि 2025 में यह आंकड़ा 83,863 था। पुलिस कंट्रोल रूम के आंकड़े बताते हैं कि श्री राम मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बढ़ रही है। वहीं छुट्टियों और विशेष अवसरों पर दर्शनार्थियों की संख्या 1 लाख के पार भी पहुंच रही है। ऐसे में प्रशासन भी इस बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, यातायात और दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम कर रहा है। अगर अयोध्या के उत्साह और भक्तों के जोश को समझना हो तो सरयू घाट आना बेहद जरूरी हो जाता है। यहाँ भारी संख्या में राम भक्त और दूर दूर से आए परिवार सरयू घाट पर राम की पैड़ी पर स्नान करते नजर आए।
15: हमारी मौजूदगी इस वक्त राम की पैड़ी पर है और सरयू का जो किनारा है वो भी आपको दिखा रहे हैं और राम की पैड़ी की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तमाम युवा परिवार भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। मौसम भी इस वक्त अच्छा है और सरयू का तट है, सरयू मैया का जो कलकल कर बहता जल है उससे आनंदित होते। ये युवा आप देख सकते हैं यहाँ पर, अभिनंदन भी इनका नगर निगम कर रहा है अयोध्या से, और इस तरीके से फिलहाल ये आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं और मौज करते भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो सामने वो राम की पैड़ी का दृश्य है जहाँ अयोध्या में कुछ महीनों बाद दीपोत्सव मनाया जाएगा, और जिस तरह का दीपोत्सव हर साल मनता है, हर साल एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है जिससे अयोध्या का नाम केवल देश में ही नहीं बल्कि ग्लोबली होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या का नाम होता है। और ये तस्वीरें जो है ना, ये बताती हैं जरूर चंदा चोरी, तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, कार्रवाई भी चल रही है, एसआईटी की जांच भी चल रही है, लेकिन इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें अयोध्या पसंद है, इन्हें यहाँ का वातावरण पसंद है, इन्हें सरयू मैया का की वो जो छांव है वो पसंद है, और कहीं ना कहीं ये अयोध्या को जीने वाले लोग हैं। दूर दूर से आते हैं, ऐसा नहीं है कि सब यहाँ के हैं, होंगे यहाँ के भी, साउथ से, मध्य प्रदेश से, आप माने राजस्थान से ये लोग आए हुए हैं। कितने विदेशी आपको दिख रहे हैं आज अयोध्या में।
16: स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या पहले की तरह बनी हुई है। होटल्स, धर्मशालाएं, बाजार और धार्मिक स्थल सामान्य रूप से चल रहे हैं और पूरे शहर में धार्मिक वातावरण बना हुआ है।
17: होटल में लाइक जैसा पहले अपना ये वाला सीजन वैसे भी ऑफ सीजन हुआ करता था, और इस टाइम पे अमूमन जो है भीड़ कम ही रहती है अयोध्या में। मौसम का आप कह सकते हैं, ज्यादातर ये टाइम लोगों का हिल स्टेशन में जाने का होता है, तो ये वाला सीजन वैसे भी हम लोगों के लिए ऑफ सीजन का रहता है। तो बट हाँ, मेरे को नहीं लगता कि इस वजह से भीड़ में कुछ असर पड़ा होगा, क्योंकि हमारे अभी भी कुछ डेट्स ऐसे हैं जिसमें ऑक्यूपेंसी हमारा 80% से ऊपर है, और कुछ डेट्स तो हमारा खैर जाएगा 50% से नीचे भी है, बट कई डेट है।
16: राम मंदिर में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या ये संकेत देती है कि अयोध्या देश के सबसे प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्रों में तेजी से अपनी पहचान मजबूत कर रही है। बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे स्थानीय धार्मिक पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव और मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
18: भारत ने 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट पर दावेदारी पेश की है। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
16: भारत ने आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य पद के लिए अपना कैंपेन शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में #IndiaForUNSCPeacePlanetProgress थीम के तहत इस कैंपेन की शुरुआत की। विदेश मंत्री ने साफ संदेश दिया कि भारत दुनिया के लिए ज्यादा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और न्याय संगत माहौल बनाने का काम करेगा। यूएनएससी के चुनाव जून 2027 में होने वाले हैं। एशिया प्रशांत समूह की एकमात्र सीट के लिए भारत और ताजिकिस्तान के बीच कड़ा मुकाबला है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से भारत के सबसे बड़े वैश्विक वस्त्र और परिधान कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 की शुरुआत हो गई है। केंद्र कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने 4 दिनों तक चलने वाले इस मेगा इवेंट का शुभारंभ किया और बिहार पवेलियन का उद्घाटन किया। यह आयोजन वस्त्र, फैशन, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की वैश्विक ताकत को प्रदर्शित करता है। इस वैश्विक आयोजन में देश विदेश के खरीदार, उद्योगपति, डिजाइनर और नीति निर्माता एक मंच पर जुटे हैं। 17 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को वैश्विक टेक्सटाइल हब के रूप में स्थापित करना, निर्यात बढ़ाना और एमएसएमई और छोटे उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए टिहरी गढ़वाल की एसएसपी ने सभी थानों में टीम गौरा शक्ति का गठन किया। प्रशिक्षित टीम स्कूल, कॉलेजों और संवेदनशील स्थानों पर नियमित गश्त करेगी, छात्राओं को आत्मरक्षा, साइबर सुरक्षा और महिला हेल्पलाइन की जानकारी देगी और साथ ही उनकी शिकायतों का तुरंत समाधान सुनिश्चित भी करेगी। जिन थानों में महिला सब इंस्पेक्टर तैनात हैं, वहां वही टीम गौरा शक्ति का नेतृत्व करेंगी, जबकि दूसरे थानों में एडिशनल सब इंस्पेक्टर और महिला हेड कांस्टेबल टीम की कमान संभालेगी। टीम गौरा शक्ति का मुख्य उद्देश्य स्कूल्स, कॉलेजेस और दूसरे संवेदनशील स्थानों पर छात्राओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। इसके लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों की छुट्टी के समय नियमित पेट्रोलिंग की जाएगी, ताकि छेड़छाड़, उत्पीड़न और दूसरी किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। हरिद्वार में सावन के महीने में कांवड़ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। डीएम खुद यहां तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। कांवड़ मार्गों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित संस्थाओं को 25 जुलाई तक सभी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस बार कांवड़ मेला और कुंभ मेले के कार्य समानांतर रूप से चल रहे हैं। तो कुंभ मेले के कार्यों में जुटी संस्थाओं के साथ कोऑर्डिनेशन से कांवड़ मेले में काम भी हो रहे हैं। यहाँ लगातार काम जारी है। इसके साथ ही कांवड़ मेले के शुरू होने से पहले ही कांवड़ यात्रियों के लिए मार्गों को खोल दिया जाएगा।
18: और अब बात करते हैं महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा की। देश भर में 16 तारीख को बड़ी धूमधाम से भगवान जगन्नाथ बलभद्र और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाएगी। परंपरा के मुताबिक 15 दिनों तक अस्वस्थ रहने के बाद आज पहली बार महाप्रभु जगन्नाथ ने भक्तों को नव यौवन दर्शन दिए हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है।

महाप्रभु जगन्नाथ के करोड़ों श्रद्धालु हर साल जिस पल का इंतजार करते हैं वो पावन घड़ी अब दस्तक देने वाली है। महाप्रभु जगन्नाथ की नगरी पूरी एक बार फिर आस्था और उल्लास के रंग में सराबोर होने वाली है। 16 जुलाई को वो शुभ घड़ी होगी जब महाप्रभु जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे।

0: जगन्नाथ रथ यात्रा के आरंभ से पहले ही देश और विदेश से श्रद्धालुओं ने पुरी पहुंचना शुरू कर दिया है। पुरी में मौजूद हर
1: लिए मिल रहा है, लेकिन आज ये नवजौवन दर्शन है और नेत्रोत्सव भी है। भगवान जो बुखार में थे, भगवान का तबियत ठीक नहीं था, अनासर में थे, भगवान का तबियत आज ठीक हो गया है। भगवान आज पहली बार आज भगवान आ रहे हैं और भगवान आज ठीक हो रहे हैं, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। आज भगवान कैसे भक्तों को कैसे पहली बार दर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, क्या नाम है आपका?
2: हमारा नाम छवि कोठारी है।
1: पंडित जी, क्या है मतलब भगवान बुखार में थे, भगवान को नहाने के बाद भगवान को बुखार हो गया था?
2: बेटा, जब भगवान जो नहाया था, बैल सीधे ने भगवान का चंदन लगी हुआ था, चंदन लग कर ठंडा हुआ था, ठंडे के बाद ठंडे का पानी दे देगा तो इंसान बुखार बन जाएगा। हम क्या, वो जो कोई हो बुखार हो जाएगा, वो दवाई खाएगा अच्छा होगा, ठंडा हो जाएगा दवाई खाएगा, दवाई के बाद में जो भगवान अच्छा हो जाएगा तो चक्का विजय होगा। चक्का विजय होगा दशम में, जो शुक्रवार जो चक्का विजय हुआ है, भगवान तीन भगवान चक्का विजय हुआ। इनका बाद में भगवान को जो एकादशी आएगा, एकादशी खली लागी होता है। खली लाग मैंने जो भगवान का जो कपड़ा जो घेरता है, इनका नाम तो खली लाग होता है। इसका बाद में भगवान जो द्वादश गया है, त्रयोदश में जो घड़ा जो लगाया है, जो घड़ा लग के भगवान का जो पेड़ा है घुमाया, इसके मैं एक दिन बिता दिया।
0: पुरी की सड़कों पर श्रद्धालुओं का सैलाब बढ़ता जा रहा है। रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट पर भक्तों के पहुंचने का सिलसिला अनवरत जारी है। देश के अलग अलग राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी भक्त महाप्रभु के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब बस इंतजार है उस दिव्य क्षण का, जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के द्वार तक पहुंचेंगे।
1: पुरी में भक्तों का भीड़ अब देखने के लिए मिल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आप ये तीनों रथ देख सकते हैं। तीनों रथ अब पूरी तरह की जो तैयारी है, ये तैयारी एक तरफ खत्म होने वाला है और बच एक ही दिन का बाकी है। एक दिन बाद यानी जुलाई 16 तारीख को भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा मैया रथ यात्रा में शामिल होंगे, भक्तों को दर्शन देंगे, भक्तों से मिलने के लिए आएंगे। जो भक्त सालों भर भगवान का मंदिर के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, वो खुद भगवान सालों में एक बार जैसे आते हैं, इस बार भी जुलाई 16 तारीख को आएंगे और भक्तों को दर्शन देंगे।
0: ये वो दुर्लभ बेला है जब भक्त भगवान के पास नहीं जाते, बल्कि भगवान स्वयं अपने भक्तों से मिलने जाते हैं। और जब जगत के नाथ श्री जगन्नाथ अपने मंदिर से बाहर आते हैं तो दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। श्री गुंडीचा मंदिर से लेकर श्री मंदिर तक पूरे मार्ग को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। हर ओर भक्ति, श्रद्धा और उत्सव का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है।
3: कुछ भी बोल नहीं सकते, मन में इतना खुशी है कि हम लोगों को स्वामी ने बुलाया हुआ है यहाँ पे।
1: मतलब रथ यात्रा आप पहले कभी देखे थे या?
3: नहीं नहीं, नहीं पहली बार है, लाइफ टाइम में पहली बार है। मतलब
4: मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे, मैं पुण्य है इधर आने का, मैं कभी नहीं आई हूँ इधर, भगवान ही मुझे बुलाए
1: है। खुशी लग रहा है?
4: बहुत खुशी, बहुत आनंद लग रहा है।
0: भगवान बलभद्र का रथ दाल ध्वज कहलाता है, जो लाल और हरे रंग से सुसज्जित होता है। दर्प दलन या देव दलन रथ पर विराजमान होती हैं, जिसका आवरण लाल और काले रंग का होता है। वहीं भगवान जगन्नाथ नंदी घोष या गरुण ध्वज रथ पर विराजते हैं, जो लाल और पीले रंग से अलंकृत होता है।
5: यात्रा मनाया जाता है क्योंकि जो लोग मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, वो लोगों का दर्शन करने के लिए जो पतित जन होते हैं, और सब लोगों को भगवान

0: दर्शन देने के लिए, उनको पावन बनाने के लिए ये पावन यात्रा, पतित पावन यात्रा, इसको घोष यात्रा कहा जाता है। नंदी घोष रथ में भगवान जगन्नाथ जी बैठते हैं, तालध्वज में बलदाव जी बड़ा भैया बैठते हैं, और देवी रथ व दर्पदलन रथ में सुभद्रा मैया बैठते हैं। बैठ के भक्त लोगों को, जो विधर्मी लोग है जो कि साल भर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, उन लोगों को पावन करने के लिए भगवान का ये यात्रा अनुष्ठित होता है।
1: पूरी रथ यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं, ऐसे में प्रशासन ने भी व्यापक तैयारियां की हैं, लिहाजा यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुरी में पूरे रथ मार्ग पर पुलिस और सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे और कंट्रोल रूम के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं, एम्बुलेंस, पेयजल और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके।
2: तो श्री बलभद्र महाप्रभु श्री जगन्नाथ एंड देवी सुभद्रा जी का जो रथ यात्रा है अभी, उसके लिए मल्टीलेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट पुलिस ने किया हुआ है, और उसके लिए हमने 220 प्लाटून ऑफ फोर्सेस, 19 आईपीएस ऑफिसर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एडिशनल एसपीस एंड थाउजेंड्स ऑफ एसआई एंड एएसआई डिप्लॉयमेंट है। इसमें हम जो 8 वर्टिकल्स में है, बेसिकली क्राउड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का जो बंदोबस्त किया हुआ है पुलिस में, तो इनसाइड टेम्पल अरेंजमेंट हुआ है जिसमें कि सेक्टर वाइज हम डिवीजन किया हुआ है टेम्पल के, जैसे कि सिंह द्वार से बाहर घुमटी है, बाहर घुमटी से भीतर घुमटी होके जो हमारा मुक्ति मंडप होके बिमला देवी, माँ बिमला देवी है, माँ महालक्ष्मी का टेम्पल है, कीर्तन चकड़ा है, तो इस एरिया को हमने डिवाइड किया हुआ है सेक्टर वाइज। उसमें हमारा जो पुलिस ऑफिसर है जो, वो ड्यूटी में रहेंगे तैनात, बेसिकली क्राउड का ओवर मैनेजमेंट करेंगे, क्राउड कंट्रोल का, एंड डिवोटी जो आएंगे उनका रिवर्स फ्लो को रोकेंगे, एंड उसमें जो बैरिकेडिंग क्रॉस नहीं करेंगे, वो सब चीज़ हमने उन्हें ब्रीफ करके रखा है। बेसिकली बिहेवियरल एस्पेक्ट में ब्रीफ किया है कि जैसे टेम्पल इनसाइड है, उनका बिहेवियर टुअर्ड्स डिवोटीज दैट शुड बी लाइक फैसिलिटेशन करना है, उनको अच्छे से दर्शन कराना है, उनको गुड बिहेवियर देना है।
1: श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रथ यात्रा से पहले लाइफगार्ड्स ने समुद्र किनारे रेस्क्यू मॉक ड्रिल का आयोजन किया और अलग अलग तरीकों से अपनी तैयारियों को परखा। समंदर में फंसे व्यक्ति तक कैसे जल्दी से जल्दी पहुंचना है, उसे किनारे तक कैसे लाना है और फर्स्ट एड कैसे देना है, इन हालातों से निपटने के लिए अभ्यास किया गया। साथ ही आपसी तालमेल, बातचीत और इमरजेंसी रिस्पांस प्रोटोकॉल को भी परखा गया। ड्रिल के दौरान रेस्क्यू के सामान और इमरजेंसी गियर की भी जांच की गई। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सिर्फ पुरी वासियों के लिए ही एक बड़ा धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि देश और दुनिया में मौजूद तमाम जगन्नाथ भक्तों के लिए भी किसी बड़े उत्सव से ये कम नहीं है। अब इंतजार उस ऐतिहासिक क्षण का है जब विशाल रथों की रस्सियां लाखों श्रद्धालु अपने हाथों से खींचेंगे और जय जगन्नाथ के गगनभेदी जय घोष के बीच महाप्रभु भक्तों के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे। श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास है कि इन विशाल रथों की पवित्र रस्सियों को छूने मात्र से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और वे अनगिनत पापों से धुलकर पुण्य कमाते हैं। पूरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और न्यूज पथ पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर वायरल चौक पर ठहर कर उन वीडियोस को देख लेते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले हैं और कुछ इमोशनल करने वाले।
4: गाय को सनातन में माता कहा जाता है और ऐसे ही संस्कार बच्चों में बचपन से ही दिए जाते हैं। जो बता रही हैं ये वायरल तस्वीरें, खुद ही देख लीजिए। ये छोटी सी बच्ची पहले गाय को रोटी देती है, फिर प्रणाम करके आशीर्वाद लेती है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हैं और यूजर्स बच्ची को दिए जा रहे संस्कारों को सराह रहे हैं। सनातन परंपरा की झलक दिखाती है वायरल तस्वीरें देखिए। एक मंदिर में ये श्रद्धालु गरुड़ पर्व के दौरान अपने नृत्य से अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। इस घूमने वाले नृत्य को देखकर हर कोई अब उसके संतुलन के साथ स्थिरता को देख मंत्रमुग्ध है। यूजर्स इसकी आस्था और भक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। इन दिनों एक पंडित जी के कौशल का ये वीडियो भी खूब चर्चा में है, जहां पंडित जी शायद किसी घर में चल रहे कार्यक्रम में पूजा पाठ कराने के बाद घर की दीवार पर स्वास्तिक लगा रहे हैं। उन्होंने एक थाली की मदद से घर की दीवार पर बड़े कौशल और

0: कुशलता से वो स्वास्तिक लगा दिया। अब जो देख रहा है पंडित जी के कौशल को सलाम कर रहा है। लगातार मेहनत और अनुभव का कमाल क्या होता है, इन तस्वीरों को देखिए जरा। इन मजदूरों ने अपने काम को एक खेल की तरह लिया। वो अपना काम करते हुए कितने खुश हैं, ये साफ नजर आ रहा है। इसीलिए वो अपने काम में इतने पारंगत हो चुके हैं कि उनका एक दूसरे को उछाल कर दिया जा रहा सामान से भरा बोरा एक बार भी मिस नहीं हो पा रहा। सोशल मीडिया पर लोग इन तस्वीरों को खूब देख रहे हैं और इनकी तुलना दिग्गज बल्लेबाजों के साथ करते हुए बोल रहे हैं कि दिग्गज खिलाड़ियों के बल्ले से भले ही बॉल मिस हो सकती है, लेकिन इन्होंने एक भी बोरा मिस नहीं किया। ये वायरल तस्वीरें आपका दिल जीत लेंगी। वीडियो में देखिए एक माँ गोदी में बच्चा लिए बारिश से भीगती हुई एक जगह शरण लेती है, जहाँ मौजूद एक महिला पुलिस वाली बच्चे के कपड़े बदलने में उसकी मदद करती है। पुलिस वाली माँ की गोदी में बच्चा रोते रोते ना सिर्फ शांत होता है बल्कि ऐसी मुस्कान बिखेरता है कि हर देखने वाले के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जाहिर सी बात है आप भी स्माइल कर रहे होंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में धूमधाम से मनाया गया बासिल डे। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और दुनिया की कई और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
1: फ्रांस की राजधानी पेरिस में बासिल डे के मौके पर ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। मशहूर आईफिल टावर के ऊपर रंग बिरंगी आतिशबाजी से पूरा आसमान जगमगा उठा। इस बार जश्न को और खास बनाने के लिए सैकड़ों ड्रोन भी उड़ाए गए, जिन्होंने आसमान में अलग अलग आकृतियां बनाई। सबसे खास पल तब आया जब ड्रोन ने आसमान में आईफिल टावर की ही तस्वीर बना डाली। इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए हजारों लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए और अपने मोबाइल में इसे कैद करते नजर आए। बासिल डे फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। ये दिन साल 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति की याद में मनाया जाता है। हर साल इस मौके पर पूरे देश में परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शानदार आतिशबाजी होती है। अमेरिका के लॉस एंजेलिस में एक साथ दो कॉर्प्स फ्लावर खिले हैं। यहाँ के बोटैनिकल गार्डन में इस दुर्लभ नजारे को देखने लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कॉर्प्स फ्लावर अपनी बदबू के लिए पहचाना जाता है। इस फूल के खिलते ही इससे सड़े मांस जैसी गंध आती है। इसके खिलने का यह अनोखा नजारा सिर्फ 24 से 48 घंटे तक रहता है। इंडोनेशिया का ये दुर्लभ पौधा 2 से 3 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है। ये फूल लोगों को संरक्षण के लिए जागरूक करता है। यूरोप में भीषण गर्मी पड़ रही है। बेल्जियम समेत कई देशों में पारा 30 डिग्री के पार चला गया है और यहाँ लोग छांव और एसी तक का सहारा लेने को मजबूर हैं। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और ग्रीस में वाइल्ड फायर ने हजारों हेक्टेयर जंगल जलाए हैं। पूरा यूरोप गर्मी से बचने की जद्दोजहद में जुटा है। लोग ज्यादा से ज्यादा खुद को डिहाइड्रेट कर रहे हैं। कई देशों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। पूरे यूरोप में क्लाइमेट चेंज का बड़ा असर नजर आ रहा है। प्रशासन ने लोगों से घरों में बने रहने की अपील की है। बुजुर्गों और बच्चों को बाहर ना निकलने की भी सलाह दी गई है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान से रवाना हो गए। ये प्रक्षेपण भारतीय समय के अनुसार रात 8:17 पर कजाकिस्तान स्थित बैकनूर कॉस्मोड्रोम से हुआ। इसके साथ ही 8 महीने लंबे मिशन की शुरुआत हुई है, जो अगले साल अप्रैल में पूरे चालक दल की धरती पर वापसी के साथ पूरा होगा। मेनन ने सोशल मीडिया पर कहा कि वो इस अहम मिशन के लिए पूरी तरह रेडी हैं। उन्होंने नासा, अपने परिवार और दोस्तों का उनके लगातार सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया। डॉक्टर अनिल मेनन
2: लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
0: और न्यूज पर मेरे यानी नवजोत संधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: Hi everyone, Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
4: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
5: क्या गुप्त नवरात्रि सामान्य नवरात्रि से ज्यादा शक्तिशाली है? क्या गुप्त नवरात्रि में कोई भी साधना

0: कर सकता है। गुप्त नवरात्रि में साधना और पूजा का क्या है विधान और कौन से मिलेंगे इसमें वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
3: परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: दिल्ली एनसीआर में बदल गया मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज हवा के साथ हुई बारिश, गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, मंदिर के बाहर उमड़ा आस्था का मेला, भगवान दे रहे नव यौवन दर्शन। दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्सटाइल एक्सपो का शुभारंभ, 17 जुलाई तक चलेगा कार्यक्रम, देश विदेश से जुटेंगे उद्योगपति। जैसलमेर रेलवे स्टेशन का हुआ कायाकल्प, विरासत और आधुनिकता का दिखा अनोखा संगम, 140 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास। जयपुर बना दुनिया का 6ठा सबसे खुशहाल शहर, टाइम आउट 2026 की टॉप 10 लिस्ट में हुआ शामिल, पिंक सिटी के बाद मिला एक और टाइटल। फीफा वर्ल्ड कप के रंग में रंगा केरल का त्रिशूर, ब्राजील अर्जेंटीना की जर्सी वाली धोती बनी फुटबॉल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र, मैसी की जर्सी की खासी डिमांड।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात जगन्नाथपुरी की। भगवान जगन्नाथ की नगरी एक बार फिर से आस्था के उत्सव में मगन है। पुरी की सड़कों पर भगवान के आगमन का इंतजार हो रहा है। बस एक दिन का वक्त बचा है। 16 जुलाई गुरुवार से जगन्नाथ रथ यात्रा का श्री गणेश हो रहा है। इसी बीच उत्सव की तैयारियों की तमाम तस्वीरें जगन्नाथ मंदिर प्रांगण से लगातार आ रही हैं और हम आपको जीएनटी पर दिखा भी रहे हैं। आज श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ का नव यौवन श्रृंगार किया गया। 14 दिनों के बाद मंदिर के कपाट खुले और भगवान ने नवयौवन रूप में भक्तों को दर्शन भी दिए। परंपरा के अनुसार भगवान के स्वस्थ होने की सूचना देने मंदिर के सेवायत पुरी के राजा के पास पहुंचे। ये उसी की तस्वीरें हैं। हर साल रथ यात्रा से पहले जगन्नाथपुरी में ये परंपरा यूं ही निभाई जाती है। मंदिर के सेवायत राजा के पास संदेश लेकर जाते हैं कि भगवान अब स्वस्थ हो गए हैं, वो भक्तों को दर्शन दे सकते हैं। श्री मंदिर के कपाट खुल गए हैं और यात्रा की आज्ञा भगवान से ले ली गई है। दरअसल मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार आ जाता है और 15 दिन तक वो बीमार रहते हैं और इस दौरान किसी को दर्शन नहीं देते। इस दौरान श्री मंदिर में उनका विधिवत तरीके से उपचार चलता है। भगवान के उपचार की प्रक्रिया

क्रियाओं को अनुष्ठान भी कहते हैं। उपचार के बाद भगवान ठीक हो जाते हैं। 14 दिन के अनासर काल के बाद पहली बार भगवान स्वस्थ होकर श्रृंगार करते हैं। रथ यात्रा से एक दिन पहले होने वाले इस श्रृंगार को नव यौवन श्रृंगार कहते हैं। नव यौवन दर्शन को नेत्र उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इस खास रस्म के दौरान मंदिर के सेवक भगवान की आंखों में काजल लगाते हैं, चंदन सिंदूर

0: हैं जगन्नाथपुरी से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजय नाथ।
1: बस एक ही दिन की इंतजार है, भगवान जगन्नाथ यहां आएंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। जुलाई 16 तारीख को भव्य रथ यात्रा मनाया जाएगा, इसलिए पूरी में अब से भक्तों का भीड़ देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन आज ये नवजौवन दर्शन है और नेत्रोत्सव भी है। भगवान जो बुखार में थे, भगवान का तबियत ठीक नहीं था, अनासर में थे, भगवान का तबियत आज ठीक हो गया है। भगवान आज पहली बार आज भगवान आ रहे हैं और भगवान आज ठीक हो रहे हैं, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। आज भगवान कैसे भक्तों को कैसे पहली बार दर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, क्या नाम है आपका?
2: हमारा नाम छवि कोठारी है।
1: आज राजदरबार में क्यों गए थे?
2: राजदरबार भगवान का प्रसाद लेके गया था, इसको बोला महाराज आप प्रसाद लीजिए, हमारा दरवाजा आज खोलेगा।
1: क्यों?
2: क्या भगवान दवाई खा के अच्छा हो गया, इसलिए भगवान का अच्छा हो गया।
1: संदेश लेके गए,
2: एक संदेश लेके गया था, भगवान अच्छा हो गया, अब भगवान दरवाजा खोलेगा, पट खोलेगा। ठीक, कोई बात नहीं, पट खोल दियो।
1: मतलब भगवान आज से ही पूरा दर्शन देगा?
2: दर्शन 2 घंटा दर्शन देगा।
1: फिर आज कल का क्या है?
2: कल का भगवान का रथ यात्रा करेगा, खिचड़ी खाएगा भगवान। कल जाएगा नहीं, परसों जाएगा। कल भगवान दिन भर भगवान भूख खाएगा, दिन भर भूख खाएगा।
1: तो भगवान बुखार में थे, भगवान का तबियत ठीक नहीं था, जो 15 दिन भगवान अनासर में थे, भगवान का तबियत अब ठीक हो गया है, ये संदेश लेके राजदरबार में पंडित लोग गए थे। राजदरबार में ये संदेश दिए कि भगवान का तबियत ठीक हो गया है और भगवान आज 2 घंटे के लिए दर्शन को भगवान भक्तों को दर्शन देंगे। और ये नवजौवन और नेत्रोत्सव, ये दर्शन देखने के लिए भक्तों का भीड़ आप देख सकते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको, ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये भगवान को देखने के लिए, भगवान का एक झलक पाने के लिए, जो भगवान 15 दिन अनासर में थे, आज अपने रूप में आ रहे हैं। और यही नवजौवन का जो दर्शन, ये दर्शन को देखने के लिए भक्तों का ये भीड़ आप देख के आपको पता चल रहा होगा कि लोगों का मन में भगवान को देखने के लिए, पूरी में ये जो भीड़ देख के ही पता चल रहा है कि भगवान को देखने के लिए इनका मन में कितना भाव है, कितना प्रेम है, कितना श्रद्धा है।
0: ये ऐसे ही अद्भुत तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे। भगवान जगन्नाथ का ये पावन धाम अपने आप में बहुत अनोखा है। श्री जगन्नाथ की मौजूदगी के चलते पुराणों में पुरी को धरती का वैकुंठ कहा गया है। ब्रह्म और स्कंद पुराण के मुताबिक यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के चलते यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। लेकिन फिर जगन्नाथ धाम की स्थापना कैसे हुई और पुरी में कैसे शुरू हुई रथ यात्रा ये परंपरा, चलिए आज आपको सुनाते हैं वो कहानी जिसकी शुरुआत हुई थी सतयुग की एक रात में, जब उज्जैन के राजा इंद्रद्युम्न को एक सपना आया था।

0: हे राजा इंद्रदेव, समुद्र के तट पर मेरी प्रतीक्षा करो। मैं दारु ब्रह्म के रूप में प्रकट होऊंगा। मैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन के रूप में प्रकट होऊंगा।
1: ये कहानी है उनकी जिन्हें सारा संसार जगत का पालनहार बुलाता है। कहानी उनकी जिनके होने से संसार का ये भाग धरती का बैकुंठ कहलाने लगा। कथा उनकी जो स्वयं मधुरे हैं, पर जगत की हर रीत उन्हीं से पूरी होती है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी। और यहीं विराजते हैं सारे जगत के नाथ, भगवान जगन्नाथ।

0: ये बात है सतयुग की। उन दिनों आज के उज्जैन को अवंतिका या अवंती कहा जाता था। तब अवंती पर सूर्यवंश के राजा इंद्रद्युम्न का शासन था। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार एक संत ने राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु के एक बेहद दिव्य रूप नील माधव स्वरूप के बारे में बताया। बताया जाता है कि भगवान नील माधव के दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ माने जाते थे। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न भगवान नील माधव का मंदिर खोजने में जुट गए। देश के चारों कोनों में उन्होंने लोग भेजे, लेकिन उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। कहानी आगे बताती है कि वर्षों की प्रतीक्षा और आराधना के बाद आखिरकार एक रात राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनसे कहा कि वे सागर तट पर दारु ब्रह्म के रूप में प्रकट होंगे। एक रोज समुद्र की उफनती लहरों के साथ एक विशाल दिव्य लकड़ी का तना बहकर तट पर आ लगा। उस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के पवित्र चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। राजा समझ गए यही दारु ब्रह्म है। बड़े सम्मान के साथ उस दिव्य तने को महल में लाया गया। इसके बाद देव शिल्पी विश्वकर्मा एक बढ़ई के रूप में राजा के पास पहुंचे और राजा ने उन्हें लकड़ियों से भगवान की मूर्तियां बनाने का काम सौंप दिया। लेकिन काम शुरू करने से पहले बढ़ई बने विश्वकर्मा जी ने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि जब तक मूर्तियां पूरी नहीं बन जाती तब तक कोई भी मेरे कमरे में नहीं आएगा। राजा ने उनकी बात मान ली और महल के एक कमरे में मूर्तियां बनाने का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन बढ़ई ने जब बहुत दिनों तक कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो एक दिन रानी गुंडीचा ने कौतूहलवश कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की। ऐसा होते ही बढ़ई ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और कहा कि आपने मेरी शर्त तोड़ दी है। मूर्तियां अब तक अधूरी हैं, लेकिन अब मैं ये काम पूरा नहीं कर सकता।
1: रानी ने परेशान होकर महाराज ने राजा जी को बोले कि हम दरवाजा खोल देंगे। तो इसी समय राजा जी ने बोले नहीं, वो कंडीशन किए हैं और हम क्यों खोलेंगे। तो रानी ने बोले देखिए, अगर वो गुजर जाएंगे कि कुछ हो जाएगा तो हमको पाप लगेगा, नरक का पाप लगेगा, तो हमको मन नहीं करे, हम खोल देंगे। जब दरवाजा खोल दिए तो देखे तो जो कारीगर जो थे महापुर को मूर्ति बनाने वाले वो नहीं थे, लेकिन तीनों भगवान थे। तीनों भगवान ऐसे रूप पे थे आज जो रूप में आप देख रहे हैं, हाथ पांव सब था लेकिन हाथ पांव नहीं था।
0: विचित्र दुविधा थी। राजा और रानी के सामने भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन के विग्रह मौजूद थे, लेकिन वे पूर्ण नहीं थे। हाथ अधूरे, पैर अधूरे, स्वरूप अधूरा। राजा इंद्रद्युम्न हताश हो गए। कहानी में आगे वर्णन मिलता है कि तभी आकाशवाणी हुई कि यही भगवान का इच्छित स्वरूप है और उन्हें इसी रूप में स्थापित कर दिया जाए।
1: तो राजा रानी ने चकित हो गए और महाप्रभु के पास में शरण में आ गए कि महाप्रभु कितना बड़ा भूल हमने कर दिया, दरवाजा खोल दिया, अब तो विघ्न रूप है, अभी तो पूजा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। तो इसी समय स्वप्नादेश हुआ महापुरुष जगन्नाथ जी की तरफ से कि नहीं नहीं, हम कलयुग में इसी रूप में पूजा पाएंगे। तो इसके बाद में महापुरुष जगन्नाथ वही इसी रूप में पूजा पा रहे हैं। हाथ पांव नहीं है, आग के पलक नहीं है, लेकिन वो सबको काम कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं, सबका हाथ तो हला के सबका जो दुख है उसको ले रहे हैं, हरण कर रहे हैं, और कान नहीं है लेकिन सबका बात सुन के उनका भी सब कार्य सिद्ध कर रहे हैं।
0: फिर क्या था, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की अधूरी मूर्तियों की ही प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई और पूरे विधि विधान के साथ उन्हें श्री मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया। तभी से भगवान की ऐसी ही मूर्तियों की पूजा की जा रही है। लेकिन भगवान की इन मूर्तियों को 15 साल में एक बार बदलने की परंपरा भी है। लेकिन भगवान की मूर्ति बदलने की ये प्रक्रिया बेहद रहस्यात्मक ढंग से निभाई जाती है। बताया जाता है कि जब मंदिर में मूर्तियां बदली जाती हैं, शहर की बिजली काट दी जाती है। जिस पुजारी को मूर्तियां बदलने की जिम्मेदारी मिलती है उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्यों में सबसे बड़ा आश्चर्य वो ब्रह्म पदार्थ है जिसे पुरानी मूर्तियों में से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। मान्यता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को आज तक किसी ने नहीं देखा है। माना जाता है कि ये भगवान का हृदय है जो द्वापर युग से आज तक धड़क रहा है। मूर्ति बदलने वाले आज भी भगवान की धड़कनों को महसूस करते हैं। अनोखे हैं भगवान जगन्नाथ और उतनी ही अनूठी है उनके प्राकट्य की कहानी। भगवान जगन्नाथ की महिमा और उनके प्राकट्य का सबसे विस्तृत वर्णन स्कंद पुराण के उत्कल खंड में मिलता है। भगवान जगन्नाथ की यही कहानी आगे चलकर रथ यात्रा से भी जुड़ती है। कहानी आगे बताती है कि जब से रानी गुंडीचा ने भगवान की अधूरी मूर्तियों को देखा था, वे उनसे संतान की तरह स्नेह करने लगी थी। अब जब भगवान उनके महल को छोड़ श्री मंदिर के गर्भ गृह में स्थापित हो रहे थे, उन्हें लग रहा था मानो उनका पुत्र ही उनसे दूर जा रहा हो। कहते हैं रानी गुंडीचा के इस वात्सल्य भाव और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि वे हर वर्ष आषाढ़ माह में अपने भाई और बहन के साथ उनसे मिलने जरूर आएंगे और 7 दिनों के लिए पुत्र की तरह उनके साथ रहेंगे। भगवान के इसी वचन को निभाने के लिए रथ यात्रा का संकल्प लिया गया।

0: और पुरी में शुरुआत हुई उस परंपरा की, जिसे आज भी बेहद श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाया जाता है।
1: ये रथ यात्रा बहुत सालों से चल रहा है। ये स्वयं जगन्नाथ जी ने उनका निश्रुत जो बानी होता है वो गुंडीचा रानी को वो सत किए थे कि मैं 9 दिन ये यात्रा करूँगा। तो ये कीर्ति को रक्षा करने के लिए ये यात्रा हो रहा है 9 दिन का।
0: मान्यता है कि तभी से हर वर्ष भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ रथ पर सवार होकर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं और 7 दिनों तक वहीं विराजमान रहते हैं। चूंकि जगन्नाथ प्रभु की प्रतिमा का निर्माण गुंडीचा मंदिर में ही हुआ था, इसलिए इसे भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर और उनका प्राकट्य स्थल माना जाता है। पुरी के मुख्य समारोह मार्ग बड़ा डंडा के एक छोर पर श्री जगन्नाथ मंदिर है, तो उसी सड़क के दूसरे छोर पर लगभग 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर मौजूद है। ये मंदिर प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ पहुंचकर भगवान अपने भाई बहन के साथ विश्राम करते हैं और विशेष व्यंजनों का भोग लगाते हैं। इस दौरान भगवान मुख्य मंदिर के गर्भगृह से बाहर आकर बहुत करीब से सभी आम और खास भक्तों को दर्शन देते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर में भगवान को जो भी भोग लगाया जाता है उसे आड़प महाप्रसाद कहते हैं।
2: ये कलयुग का एक ही मात्र भगवान जगन्नाथ जी हैं जो रथ में एक बार साल में एक बार बाहर आते हैं और भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ के ऊपर में वो बाहर आते हैं। तीनों रथ में जगन्नाथ जी आते हैं, बलदाव जी और माता सुभद्रा देवी रथ पे आते हैं। तो जाते हैं गुंडीचाबाड़ी जनकपुरी करके, जहाँ पर महापुरु 9 दिन तक वहाँ उनका विशेष नीतिकांत है, वहाँ भी जैसा है, वहाँ भी एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर सब व्यवस्था वहीं पर जैसा वहीं पर होता है।
0: ऐसी मान्यता है कि गुंडीचा मंदिर में भगवान के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। रानी गुंडीचा और भगवान जगन्नाथ के बीच वात्सल्य और प्रेम के इसी भाव के चलते गुंडीचा मंदिर को मासी माँ का मंदिर भी कहा जाता है। कहते हैं भगवान को मासी माँ के मंदिर तक ले जाने वाली इस भव्य रथ यात्रा में शामिल होना बड़े सौभाग्य की बात है। तभी तो हर साल भक्ति की इसी डोर से बंधे भक्त जगन्नाथपुरी की सड़कों पर भगवान के रथ के चारों ओर आस्था का उत्सव मनाते हैं। भक्ति का भाव और भक्तों का उल्लास पुरी रथ यात्रा की आत्मा है। पुराणों में रथ यात्रा के फल को 100 यज्ञों के बराबर बताया गया है। पुरी की पवित्र भूमि पर जब ये रथ यात्रा निकलती है तो भक्त और भगवान एकाकार नजर आते हैं। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अब देखिए, रथ यात्रा में सिर्फ एक दिन बचा है और इस यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण भगवान उनके भाई बहनों के साथ बनकर तैयार हैं रथ। चलिए आपको दिखाते हैं इस बार कैसे सजे हैं भगवान के ये रथ।
4: इस बार 2026 जुलाई 16 तारीख को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मनाया जाएगा और ये रथ यात्रा को भव्य और सुंदर करने के लिए पूरी प्रशासन और ये उड़ीसा सरकार के तरफ से हर तरह की व्यवस्था किया गया है, हर तरह की बंदोबस्त किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो रथ है ये नंदीघोष रथ है और ये नंदीघोष रथ का जो आपको ये जो दिखा रहा हूँ, ये जो कलर है रेड और येलो, ये कलर भगवान को बहुत पसंद है और इसलिए भगवान को ये कपड़ा वाला रथ में लिया जाता है। नंदीघोष रथ में आप अगर देखेंगे तो 16 चक्का और 4 घोड़े रहते हैं और आप देख सकते हैं नंदीघोष के साथ बलभद्र और देवी सुभद्रा के भी अलग अलग रथ रहता है और अलग अलग रथ में अलग अलग पहिया, अलग अलग चक्का और इसके साथ अलग अलग की घोड़े भी रहते हैं। अगर हम ये बात करेंगे तालध्वज रथ का बात करेंगे तो तालध्वज रथ में 14 चक्का और 4 घोड़े। दर्प दलन रथ का अगर बात करेंगे तो दर्प दलन रथ में इस हिसाब से 12 चक्का 4 घोड़े और नंदीघोष रथ में 16 चक्का 4 घोड़े रहते हैं।
3: एक तरफ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं तो दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन कड़े सुरक्षा इंतजाम कर रहा है। पूरे क्षेत्र की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। रथ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। इसी कड़ी में पुरी में पुलिस ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉक ड्रिल का भी यहां पर आयोजन किया।
4: पूरी प्रशासन के तरफ से पूरे शहर में हर तरह की जो व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ी और मजबूत करने के लिए व्यवस्था किया गया है और ओडिशा सरकार के तरफ से पूरे शहर में चप्पे चप्पे में पुलिस बल की तैनात किया गया है। इस रथ यात्रा में 30 इवैक्यूएशन रूट बनाया गया है ताकि अगर आगे के ऐसे कुछ इमरजेंसी हो तो लोगों को निकलने के लिए 30 इवैक्यूएशन रूट बनाया गया है। इसके साथ 16 अलग अलग मोबाइल टावर्स जो मूवेबल मोबाइल टावर्स हैं टेम्प्रारी मोबाइल टावर्स इंस्टॉल किया जाएंगे। इसके साथ 13,000 से ज़्यादा जो आर्म फोर्सेस हैं उनको मुतयन किया जाएगा। 19 IPS ऑफिसर्स को अराउंड 19 ऑफिसर जो हैं 19 ऑफिसर को ये पूरी व्यवस्था देखने के लिए निगरानी करने के लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। इसके साथ 15 जो CFP कंपनियां हैं इनको भी इसमें शामिल किया जाएगा और इसके साथ 1700 से ज़्यादा बायो टॉयलेट्स ताकि लोगों को टॉयलेट्स के लिए कुछ ऐसे प्रॉब्लम ना हो इसलिए 1700 से ज़्यादा बायो टॉयलेट्स और 8 टेम्प्रारी जो मेडिकल हैं टेम्प्रारी मेडिकल भी इंस्टॉल किया जाएंगे और इसके साथ 476 से ज़्यादा AI CCTV कैमरा रहेंगे ताकि हर तरह की जो काम हो रहा है हर तरह की जो यहाँ रथ यात्रा में हर तरह की चीज़ें के ऊपर नज़र रखा जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर कुछ ऐसे चूक ना हो इसके लिए पूरी तैयारी किया जा रहा है और पूरी व्यवस्था किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भक्तों का ये भीड़ देख रहे हैं। एक दिन के बाद रथ यात्रा यानी 16 तारीख को रथ यात्रा है लेकिन आज से ही भक्तों का ये भीड़ आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि आगे ये जो भीड़ कितना बढ़ेगा और इस बार रथ यात्रा में कितने लोग शामिल होंगे क्योंकि हर साल लाखों भक्त यहाँ शामिल होते हैं और ये लाखों भक्तों के बीच भगवान सालों में एक बार आते हैं भक्तों को दर्शन देते हैं। जो भक्त भगवान को देखने के लिए मंदिर के अंदर नहीं जा पाते हैं सालों भर भगवान एक बार इस रथ यात्रा में आते हैं और दर्शन देते हैं उन भक्तों को जो भक्त अंदर नहीं जा पाते हैं।
3: और चलिए इसी से जुड़ी हुई दिव्य और भव्य रथ यात्रा की तस्वीरें GNT पर लगातार आपको दिखाते रहेंगे। आज की पेशकश में फिलहाल के लिए था ही अच्छी खबरें जारी हैं देखते रहिए।

0: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
1: Schwarber
2: to right field, and it will leave.
0: From the first pitch of the season to the stretch run,
2: and that's the ball game.
0: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: बद्रीनाथ धाम में आजकल श्रद्धालुओं की काफी चहल पहल देखी जा रही है। दरअसल मौसम यहां बेहद सुहाना बना हुआ है, बारिश रुक रुक कर होती है, इसीलिए रास्तों में भी रुकावट नाम मात्र ही नजर आती है। केवल बद्रीनाथ धाम ही नहीं, चमोली जिले में बसे हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में आस्थावान लगातार आ रहे हैं।
5: बद्रीनाथ धाम में अब तक 14,82,000 तो हेमकुंड साहिब में 1,92,000 श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं। वहीं मौसम की बात करें तो इस बार अभी तक पहाड़ों में मानसून उस तरह से सक्रिय नहीं हुआ है, हालांकि कभी कभार बारिश देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, हेमकुंड साहिब में देखने को मिल रहा है।
6: उत्तराखंड के ऊंचे क्षेत्रों में खासकर चमोली जिले में इन दिनों मौसम भले ही नरम गरम है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, मॉनसून की बेरुखी भी नजर आ रही है। बावजूद इसके चारधाम यात्रा में से एक भगवान बद्री विशाल का दरबार और पवित्र हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा आस्था से गुलजार है। बद्रीनाथ धाम में कल कल बह रही अलकनंदा का इन दिनों शोर सुनाई दे रहा है, लेकिन इस शोर से कहीं ज्यादा यहाँ उमड़ रही आस्था का ही नाद है, जिसे देशी विदेशी श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के रूप में देखा भी जा सकता है। बताया जा रहा है कि पिछले सालों की तुलना में इस साल मॉनसून बेहद कमजोर है, इसलिए पहाड़ों पर खासतौर से ऊंचाई वाले इलाकों में तो बारिश कम ही दर्ज की गई है, लेकिन चारधाम दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं की आवक में अभी तक कोई खास कमी नहीं आई है। इस वर्ष 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, श्रद्धालुओं ने काफी संख्या में वहां पहुंचकर दर्शन किए और तब से लेकर अब तक 14,82,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। वहीं 23 मई को खुले हेमकुंड साहिब के कपाट के बाद अब तक 1,92,000 से ज्यादा सिख श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। यानी मौसम अनुकूल है, यात्रा मार्ग भी सुचारू है, तो चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह भी लगातार बना हुआ है, खासकर बद्रीनाथ में, जहां भले ही बारिश कम हो रही है मगर मौसम बेहद मुफीद है। ऊपर से यात्रा मार्ग पर कम बारिश होने की वजह से आवाजाही भी सुचारू है। यही कारण भी है कि श्रद्धालु बिना किसी बड़ी परेशानी के भगवान बद्री विशाल के साथ ही सिख श्रद्धालु भी पवित्र हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के दर्शन कर रहे हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: दुनिया की सबसे रोमांचक रेस में गिनी जाती है सैन फर्मिन फेस्टिवल की बुल रन, जहां परंपरा का मेल रोमांच के साथ होता है। स्पेन के पाम्पलोना शहर में बुल रन का ये सदियों पुराना रिवाज आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है।
7: स्पेन के पैम्पलोना शहर में मशहूर सेंट फर्मिन फेस्टिवल का आखिरी बुल रन भी पूरे जोश और रोमांच के साथ पूरा हुआ। परंपरा, रफ्तार और हिम्मत का अनोखा संगम दिखाई दिया। सुबह सुबह पैम्पलोना की सड़कों पर उत्साह साफ नजर आता है। बुल रन शुरू होने से पहले प्रतिभागी सेंट फर्मिन की प्रतिमा के सामने जुटते हैं, नारे लगाते हैं और सुरक्षित दौड़ की कामना करते हैं। फिर आती है वो घड़ी जो वहाँ मौजूद सभी लोगों की धड़कनें बढ़ा देती है। एक पटाखे की आवाज और गेट खुलते ही तेज रफ्तार से बुल बाहर निकलते हैं और उनके साथ शुरू होती है दुनिया की सबसे चर्चित और रोमांचक रेस। संकरी गलियों में बुल के आगे आगे दौड़ते प्रतिभागी, दोनों तरफ खड़े हजारों दर्शक और हर मोड़ पर रोमांच अपने चरम पर नजर आता है। इस दौरान कुछ लोग फिसलकर गिर भी जाते हैं, लेकिन दौड़ लगातार आगे बढ़ती रहती है। कुछ ही मिनटों में बुल शहर की गलियों से होते हुए बुल रिंग के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। प्रतिभागी भी उनके साथ एरीना में दाखिल होते हैं और इसी के साथ इस साल आखिरी बुल रन सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है। सैन फर्मिन फेस्टिवल सिर्फ एक दौड़ भर नहीं बल्कि स्पेन की संस्कृति और परंपरा का बड़ा उत्सव है। हर साल दुनिया भर से हजारों लोग इस अनोखे आयोजन का हिस्सा बनने और इसे करीब से देखने पैम्पलोना पहुंचते हैं। यही वजह है कि बुल रन आज भी दुनिया के सबसे चर्चित पारंपरिक आयोजनों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
8: जी खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: दिल्ली एनसीआर में बदल गया मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज हवा के साथ हुई बारिश, गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, मंदिर के बाहर उमड़ा आस्था का मेला, भगवान दे रहे नवयौवन दर्शन। दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्सटाइल एक्सपो का शुभारंभ, 17 जुलाई तक चलेगा कार्यक्रम, देश विदेश से जुटेंगे उद्योगपति। जैसलमेर रेलवे स्टेशन का हुआ कायाकल्प, विरासत और आधुनिकता का दिखा अनोखा संगम, 140 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास। जयपुर बना दुनिया का छठा सबसे खुशहाल शहर, टाइम आउट 2026 की टॉप 10 लिस्ट में हुआ शामिल, पिंक सिटी के बाद मिला एक और टाइटल। फीफा वर्ल्ड कप के रंग में रंगा केरल का त्रिशूर, ब्राजील अर्जेंटीना की जर्सी वाली धोती बनी फुटबॉल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र, मैसी की जर्सी की खासी डिमांड।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
4: बात करते हैं श्री राम की नगरी अयोध्या की। रामलला के मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इस वर्ष भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हाल ही में चढ़ावा चोरी की घटनाओं के दावों के बीच भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने साफ किया है कि भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ है और ज्यादातर दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या 2025 से अधिक रही है। वहीं पुलिस कंट्रोल रूम के आंकड़ों में भी दावा किया गया है कि अयोध्या में श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बढ़ रही है। छुट्टियों और विशेष अवसरों पर दर्शनार्थियों की संख्या 1,00,000 के पार भी पहुंची है।
10: राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के बाद से अयोध्या में रामलला के दर्शनार्थियों में कोई कमी नहीं आई है। राम मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की एक रिपोर्ट वायरल हो रही है। देश के तमाम राज्यों से रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में दर्शन पूजन का क्रम सामान्य रूप से जारी भी है। श्रद्धालुओं का कहना है कि किसी एक घटना को करोड़ों लोगों की आस्था से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। रामलला हमारे आराध्य हैं
6: और अयोध्या हमारी सनातन आस्था की प्रतीक है। रिपोर्ट के अनुसार 21 जून से 3 जुलाई के बीच 11,54,793 श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया है, जबकि इसी अवधि में पिछले साल 2025 में 9,12,540 लोगों ने मंदिर में दर्शन किए थे। राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें दर्शन व्यवस्था काफी सुव्यवस्थित और संतोषजनक लगी। दूर दराज से पहुंचे कई भक्तों ने ये भी बताया कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है, दर्शन की प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से संचालित हो रही है और प्रशासन की ओर से भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त इंतजाम भी हैं। श्रद्धालुओं ने इसके साथ ही कहा कि रामलला के दर्शन कर उन्हें आध्यात्मिक शांति और भावनात्मक संतोष की अनुभूति हुई।
8: राम जन्मभूमि का ये यात्री सुविधा केंद्र है और यहाँ पे जो आंकड़े दर्शा रहे हैं उसके साथ जो भीड़ है, जो भरमार है, वो लोगों को दिखा रहा है। सीधा सीधा 9 लाख से संख्या जब 11 लाख की होती है, 11.5 लाख तक वो पहुंचती है, ये इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है। और यहाँ पे लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि लोग कहाँ से आ रहे हैं, कब से दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे किस हिसाब से दर्शन चल रहे हैं, सीधा बात करने की लोगों को कोशिश करेंगे। यहाँ पे लोग बैठे भी हैं। आप लोग भैया कहाँ से हैं? दर्शन किए?
11: गया जी।
8: दर्शन कर लिया? दर्शन बढ़िया से हो रहा है?
11: हाँ, बढ़िया से हो रहा है।
8: इसके पहले भी आए कि नहीं?
11: हाँ,
8: कितनी?
11: पिछले साल आए थे नहाने के लिए, वो हुआ था ना कुंभ मेला, उसी में।
8: उसमें काफी भीड़ थी?
11: बहुत भीड़।
8: आज भी भीड़ है?
11: आज भी भीड़ है, बहुत भीड़ है, लेकिन हम लोग सुबह में दर्शन किए थे पिछली बार, तो उतनी भीड़ नहीं थी, जल्दी जल्दी दर्शन हो गए।
8: अभी इस वक्त ज्यादा भीड़ है?
11: हाँ हाँ, इस वक्त ज्यादा भीड़, आज मंगलवार भी है।
8: देखिए, दर्शनार्थी भी खुद कह रहे हैं, इसके पहले भी हम आए थे, वो भीड़ वो संख्या नहीं थी, लेकिन आज की जो आंकड़े बता रहे हैं वो भीड़ वो संख्या है। और यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे श्रद्धालु। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आप कहाँ से?
12: गया जी से।
8: गया जी से दर्शन किया?
12: हाँ जी, दर्शन किया।
8: भीड़ बढ़िया थी कि नहीं?
12: बहुत अच्छी भीड़ है।
8: पहले भी आप आए थे कि नहीं?
12: हाँ, आई थी कुंभ मेला में, आई थी
8: कुंभ मेला में। उस वक्त भी काफी भीड़ हो गई?
12: बहुत ज्यादा, एक्सेस बहुत ज्यादा।
8: कैसे दर्शन हुए? अच्छे?
12: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, दिल खुश हो गया, मन बाग बाग हो गया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया।
8: रामलला के अच्छे दर्शन?
12: बहुत अच्छे, रामलला की जय हो।
8: देखिए, लोग हैं यहाँ पे, दर्शनार्थी है, तो काफी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और 2025 के जो आंकड़े हैं उससे जो अधिक आंकड़े दर्शाए जा रहे हैं 2026 के, वो मौजूदा हालात में है।
6: श्री राम मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इस साल भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। पुलिस कंट्रोल रूम के आंकड़े बताते हैं कि 21 जून 2026 को 94,419 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि इसी दिन 2025 में ये संख्या 81,303 थी। 28 जून 2026 को सबसे ज्यादा 1,02,672 श्रद्धालु मंदिर पहुंचे, जो इस अवधि का सबसे बड़ा आंकड़ा रहा। 26 जून को 97,603, 27 जून को 97,134 और 30 जून को 96,112 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हालांकि कुछ दिनों में 2025 की तुलना में दर्शनार्थियों की संख्या कम भी रही। 22 जून 2026 को 75,845 श्रद्धालु आए, जबकि 2025 में ये संख्या 88,756 थी। इसी तरह 29 जून 2026 को 84,102 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि साल 2025 में 84,443 श्रद्धालु पहुंचे थे। वहीं 3 जुलाई 2026 को 87,652 श्रद्धालुओं ने श्री रामलला के दर्शन किए, जबकि 2025 में यह आंकड़ा 83,863 था। पुलिस कंट्रोल रूम के आंकड़े बताते हैं कि श्री राम मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बढ़ रही है। वहीं छुट्टियों और विशेष अवसरों पर दर्शनार्थियों की संख्या 1 लाख के पार भी पहुंच रही है। ऐसे में प्रशासन भी इस बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, यातायात और दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम कर रहा है। अगर अयोध्या के उत्साह और भक्तों के जोश को समझना हो तो सरयू घाट आना बेहद जरूरी हो जाता है। यहाँ भारी संख्या में राम भक्त और दूर दूर से आए परिवार सरयू घाट पर राम की पैड़ी पर स्नान करते नजर आए।
13: हमारी मौजूदगी इस वक्त राम की पैड़ी पर है और सरयू का जो किनारा है वो भी आपको दिखा रहे हैं और राम की पैड़ी की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तमाम युवा परिवार भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। मौसम भी इस वक्त अच्छा है और सरयू का तट है, सरयू मैया का जो कलकल कर बहता जल है उससे आनंदित होते ये युवा आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभिनंदन भी इनका नगर निगम कर रहा है अयोध्या से, और इस तरीके से फिलहाल ये आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं और मौज करते भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो सामने वो राम की पैड़ी का दृश्य है जहाँ अयोध्या में कुछ महीनों बाद दीपोत्सव मनाया जाएगा, और जिस तरह का दीपोत्सव हर साल बनता है, हर साल एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, जिससे अयोध्या का नाम केवल देश में ही नहीं बल्कि ग्लोबली होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या का नाम होता है। और ये तस्वीरें जो है ना, ये बताती हैं जरूर चंदा चोरी, तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, कार्रवाई भी चल रही है, एसआईटी की जांच भी चल रही है, लेकिन इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें अयोध्या पसंद है, इन्हें यहाँ का वातावरण पसंद है, इन्हें सरयू मैया का की वो जो छांव है वो पसंद है, और कहीं ना कहीं ये अयोध्या को जीने वाले लोग हैं, दूर दूर से आते हैं। ऐसा नहीं है कि सब यहाँ के हैं, होंगे यहाँ के भी, साउथ से, मध्य प्रदेश से, आप माने राजस्थान से ये लोग आए हुए हैं। कितने विदेशी आपको दिख रहे हैं आज अयोध्या में।
10: स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या पहले की तरह बनी हुई है। होटल्स, धर्मशालाएं, बाजार और धार्मिक स्थल सामान्य रूप से चल रहे हैं और पूरे शहर में धार्मिक वातावरण बना हुआ है।
14: होटल में लाइक जैसा पहले अपना ये वाला सीजन वैसे भी ऑफ सीजन हुआ करता था, और इस टाइम पे अमूमन जो है भीड़ कम ही रहती है अयोध्या में। मौसम का आप कह सकते हैं, ज्यादातर ये टाइम लोगों का हिल स्टेशन में जाने का होता है, तो ये वाला सीजन वैसे भी हम लोगों के लिए ऑफ सीजन का रहता है। तो बट हाँ, मेरे को नहीं लगता कि इस वजह से भीड़ में कुछ असर पड़ा होगा, क्योंकि हमारे अभी भी कुछ डेट्स ऐसी हैं जिसमें ऑक्यूपेंसी हमारा 80% से ऊपर है, और कुछ डेट्स तो हमारा खैर जाएगा 50% से नीचे भी है, बट कई डेट है।
10: राम मंदिर में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या ये संकेत देती है कि अयोध्या देश के सबसे प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्रों में तेजी से अपनी पहचान मजबूत कर रही है। बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे स्थानीय धार्मिक पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव और मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
15: भारत ने 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट पर दावेदारी पेश की है। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
10: भारत ने आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य पद के लिए अपना कैंपेन शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में #IndiaForUNSCPeacePlanetProgress थीम के तहत इस कैंपेन की शुरुआत की। विदेश मंत्री ने साफ संदेश दिया कि भारत दुनिया के लिए ज्यादा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और न्याय संगत माहौल बनाने का काम करेगा। यूएनएससी के चुनाव जून 2027 में होने वाले हैं। एशिया प्रशांत समूह की एकमात्र सीट के लिए भारत और ताजिकिस्तान के बीच कड़ा मुकाबला है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से भारत के सबसे बड़े वैश्विक वस्त्र और परिधान कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने 4 दिनों तक चलने वाले इस मेगा इवेंट का शुभारंभ किया और बिहार पवेलियन का उद्घाटन किया। यह आयोजन वस्त्र, फैशन, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की वैश्विक ताकत को प्रदर्शित करता है। इस वैश्विक आयोजन में देश विदेश के खरीदार, उद्योगपति, डिजाइनर और नीति निर्माता एक मंच पर जुटे हैं। 17 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को वैश्विक टेक्सटाइल हब के रूप में स्थापित करना, निर्यात बढ़ाना और एमएसएमई और छोटे उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए टिहरी गढ़वाल की एसएसपी ने सभी थानों में टीम गौरा शक्ति का गठन किया। प्रशिक्षित टीम स्कूल, कॉलेजों और संवेदनशील स्थानों पर नियमित गश्त करेगी, छात्राओं को आत्मरक्षा, साइबर सुरक्षा और महिला हेल्पलाइन की जानकारी देगी और साथ ही उनकी शिकायतों का तुरंत समाधान सुनिश्चित भी करेगी। जिन थानों में महिला सब इंस्पेक्टर तैनात हैं, वहां वही टीम गौरा शक्ति का नेतृत्व करेंगी, जबकि दूसरे थानों में एडिशनल सब इंस्पेक्टर और महिला हेड कांस्टेबल टीम की कमान संभालेगी। टीम गौरा शक्ति का मुख्य उद्देश्य स्कूल्स, कॉलेजेस और दूसरे संवेदनशील स्थानों पर छात्राओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। इसके लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों की छुट्टी के समय नियमित पेट्रोलिंग की जाएगी, ताकि छेड़छाड़, उत्पीड़न और दूसरी किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। हरिद्वार में सावन के महीने में कांवड़ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। डीएम खुद यहां तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। कांवड़ मार्गों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित संस्थाओं को 25 जुलाई तक सभी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस बार कांवड़ मेला और कुंभ मेले के कार्य समानांतर रूप से चल रहे हैं, तो कुंभ मेले के कार्यों में जुटी संस्थाओं के साथ कोऑर्डिनेशन से कांवड़ मेले में काम भी हो रहे हैं। यहां लगातार काम जारी है। इसके साथ ही कांवड़ मेले के शुरू होने से पहले ही कांवड़ यात्रियों के लिए मार्गों को खोल दिया जाएगा।
15: और अब बात करते हैं महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा की। देश भर में 16 तारीख को बड़ी धूमधाम से भगवान जगन्नाथ बलभद्र और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाएगी। परंपरा के मुताबिक 15 दिनों तक अस्वस्थ रहने के बाद आज पहली बार महाप्रभु जगन्नाथ ने भक्तों को नव यौवन दर्शन दिए हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है।

महाप्रभु जगन्नाथ के करोड़ों श्रद्धालु हर साल जिस पल का इंतजार करते हैं वो पावन घड़ी अब दस्तक देने वाली है। महाप्रभु जगन्नाथ की नगरी पूरी एक बार फिर आस्था और उल्लास के रंग में सराबोर होने वाली है। 16 जुलाई को वो शुभ घड़ी होगी जब महाप्रभु जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे।

0: जगन्नाथ रथ यात्रा के आरंभ से पहले ही देश और विदेश से श्रद्धालुओं ने पुरी पहुंचना शुरू कर दिया है। पुरी में मौजूद हर चेहरे पर उत्साह है, हर दिल में भक्ति का सैलाब है, क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा में अब सिर्फ एक दिन का समय बाकी है।
1: बस एक ही दिन की इंतजार है, भगवान जगन्नाथ यहां आएंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। जुलाई 16 तारीख को भव्य रथ यात्रा मनाया जाएगा, इसलिए पूरी में अब से भक्तों का भीड़ देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन आज ये नवजौवन दर्शन है और नेत्रोत्सव भी है। भगवान जो बुखार में थे, भगवान का तबियत ठीक नहीं था, अनासर में थे, भगवान का तबियत आज ठीक हो गया है। भगवान आज पहली बार आज भगवान आ रहे हैं और भगवान आज ठीक हो रहे हैं, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। आज भगवान कैसे भक्तों को कैसे पहली बार दर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, क्या नाम है आपका?
2: हमारा नाम छवि कोठारी है।
1: पंडित जी, क्या है मतलब भगवान बुखार में थे, भगवान को नहाने के बाद भगवान को बुखार हो गया था?
2: बेटा, जब भगवान जो नहाया था, बयालीसवें दिन भगवान का चंदन लगा हुआ था, चंदन लग कर ठंडा हुआ था, ठंडे के बाद वो ठंडे का पानी दे देगा तो इंसान भूखार बन जाएगा। हम क्या, वो जो कोई हो भूखार हो जाएगा, वो दवाई खाएगा अच्छा होगा, ठंडा हो जाएगा दवाई खाएगा, दवाई के बाद में जो भगवान अच्छा हो जाएगा तो चक्का विजय होगा। चक्का विजय होगा दशम में, जो शुक्रवार जो चक्का विजय हुआ है, भगवान तीन भगवान चक्का विजय हुआ, इनका बाद में भगवान को जो एकादशी आएगा, एकादशी खली लागी होता है। खली लाग मैंने जो भगवान का जो कपड़ा जो घेरता है, इनको नाम तो खली लाग होता है। इसके बाद में भगवान जो द्वादश गया है, त्रयोदश में जो घड़ा जो लगाया है, जो घड़ा लग के भगवान का जो पेड़ा है घुमाया, इसके बाद एक दिन बिता दिया।
0: पुरी की सड़कों पर श्रद्धालुओं का सैलाब बढ़ता जा रहा है। रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट पर भक्तों के पहुंचने का सिलसिला अनवरत जारी है। देश के अलग अलग राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी भक्त महाप्रभु के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब बस इंतजार है उस दिव्य क्षण का, जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के द्वार तक पहुंचेंगे।
1: पूरी में भक्तों का भीड़ अब देखने के लिए मिल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आप ये तीनों रथ देख सकते हैं। तीनों रथ अब पूरी तरह की जो तैयारी है, ये तैयारी एक तरफ खत्म होने वाला है और बच एक ही दिन का बाकी है। एक दिन बाद यानी जुलाई 16 तारीख को भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा मैया रथ यात्रा में शामिल होंगे, भक्तों को दर्शन देंगे, भक्तों से मिलने के लिए आएंगे। जो भक्त सालों भर भगवान का मंदिर के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, वो खुद भगवान सालों में एक बार जैसे आते हैं, इस बार भी जुलाई 16 तारीख को आएंगे और भक्तों को दर्शन देंगे।
0: ये वो दुर्लभ बेला है जब भक्त भगवान के पास नहीं जाते, बल्कि भगवान स्वयं अपने भक्तों से मिलने जाते हैं। और जब जगत के नाथ श्री जगन्नाथ अपने मंदिर से बाहर आते हैं तो दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। श्री गुंडीचा मंदिर से लेकर श्री मंदिर तक पूरे मार्ग को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। हर ओर भक्ति, श्रद्धा और उत्सव का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है।
3: कुछ भी बोल नहीं सकते, मन में इतना खुशी है कि हम लोगों को स्वामी ने बुलाया हुआ है यहाँ पे।
1: मतलब रथ यात्रा आप पहले कभी देखे थे?
3: नहीं, पहली बार है, लाइफ टाइम में पहली बार है हम लोग।
4: मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे, मैं पुण्य है इधर आने का, मैं कभी नहीं आई हूँ इधर, भगवान ही मुझे बुलाए।
1: खुशी लग रहा है?
4: बहुत खुशी, बहुत आनंद लग रहा है।
0: भगवान बलभद्र का रथ ताल ध्वज कहलाता है, जो लाल और हरे रंग से सुसज्जित होता है। दर्प दलन या देव दलन रथ पर विराजमान होती हैं, जिसका आवरण लाल और काले रंग का होता है। वहीं भगवान जगन्नाथ नंदी घोष या गरुण ध्वज रथ पर विराजते हैं, जो लाल और पीले रंग से अलंकृत होता है।
5: यात्रा मनाया जाता है क्योंकि जो लोग मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, वो लोगों का दर्शन करने के लिए, जो पतित जन होते हैं और सब लोगों को भगवान आलिंगन करने के लिए, दर्शन देने के लिए, उनको पावन बनाने के लिए, ये पावन यात्रा, पतित पावन यात्रा, इसको घोष यात्रा कहा जाता है। नंदी घोष रथ में भगवान जगन्नाथ जी बैठते हैं, तालध्वज में बलदाव जी बड़ा भैया बैठते हैं और देवी रथ बा दर्पदलन रथ में सुभद्रा मैया बैठते हैं। बैठ के भक्त लोगों को, जो विधर्मी लोग है जो कि साल मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, उन लोगों को पावन करने के लिए भगवान का ये यात्रा अनुष्ठित होता है।
0: पूरी रथ यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं। ऐसे में प्रशासन ने भी व्यापक तैयारियां की हैं, लिहाजा यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुरी में पूरे रथ मार्ग पर पुलिस और सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे और कंट्रोल रूम के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं, एम्बुलेंस, पेयजल और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके।
6: तो श्री बलभद्र महाप्रभु श्री जगन्नाथ एंड देवी सुभद्रा जी का जो रथ यात्रा है अभी, उसके लिए मल्टीलेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट पुलिस ने किया हुआ है, और उसके लिए हमने 220 प्लाटून ऑफ फोर्सेस, 19 आईपीएस ऑफिसर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एडिशनल एसपीस एंड थाउजेंड्स ऑफ एसआई एंड एएसआई डिप्लॉयमेंट है। इसमें हम जो 8 वर्टिकल्स में है, बेसिकली क्राउड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का जो बंदोबस्त किया हुआ है पुलिस में, तो इनसाइड टेम्पल अरेंजमेंट हुआ है जिसमें कि सेक्टर वाइज हम डिवीजन किया हुआ है टेम्पल के, जैसे कि सिंह द्वार से बाहर घुमटी है, बाहर घुमटी से भीतर घुमटी होके जो हमारा मुक्ति मंडप होके बिमला देवी, माँ बिमला देवी है, माँ महालक्ष्मी का टेम्पल है, कीर्तन चकड़ा है, तो इस एरिया को हमने डिवाइड किया हुआ है सेक्टर वाइज। उसमें हमारा जो पुलिस ऑफिसर है जो, वो ड्यूटी में रहेंगे तैनात, बेसिकली क्राउड का ओवर मैनेजमेंट करेंगे, क्राउड कंट्रोल का, एंड डिवोटी जो आएंगे उनका रिवर्स फ्लो को रोकेंगे, एंड उसमें जो बैरिकेडिंग क्रॉस नहीं करेंगे, वो सब चीज़ हमने उन्हें ब्रीफ करके रखा है। बेसिकली बिहेवियरल एस्पेक्ट में ब्रीफ किया है कि जैसे टेम्पल इनसाइड है, उनका बिहेवियर टुअर्ड्स डिवोटीज दैट शुड बी लाइक फैसिलिटेशन करना है, उनको अच्छे से दर्शन कराना है, उनको गुड बिहेवियर देना है।
0: श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रथ यात्रा से पहले लाइफगार्ड्स ने समुद्र किनारे रेस्क्यू मॉक ड्रिल का आयोजन किया और अलग अलग तरीकों से अपनी तैयारियों को परखा। समंदर में फंसे व्यक्ति तक कैसे जल्दी से जल्दी पहुंचना है, उसे किनारे तक कैसे लाना है और फर्स्ट एड कैसे देना है, इन हालातों से।
7: फ्रांस की राजधानी पेरिस में धूमधाम से मनाया गया बासिल डे। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश और दुनिया की कई और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
8: फ्रांस की राजधानी पेरिस में बैस्टिल डे के मौके पर ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। मशहूर आईफिल टावर के ऊपर रंग बिरंगी आतिशबाजी से पूरा आसमान जगमगा उठा। इस बार जश्न को और खास बनाने के लिए सैकड़ों ड्रोन भी उड़ाए गए, जिन्होंने आसमान में अलग अलग आकृतियां बनाई। सबसे खास पल तब आया जब ड्रोन ने आसमान में आईफिल टावर की ही तस्वीर बना डाली। इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए हजारों लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए और अपने मोबाइल में इसे कैद करते नजर आए। बैसिल डे फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। ये दिन साल 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति की याद में मनाया जाता है। हर साल इस मौके पर पूरे देश में परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शानदार आतिशबाजी होती है। अमेरिका के लॉस एंजेलिस में एक साथ दो कॉर्प्स फ्लावर खिले हैं। यहाँ के बोटैनिकल गार्डन में इस दुर्लभ नजारे को देखने लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कॉर्प्स फ्लावर अपनी बदबू के लिए पहचाना जाता है। इस फूल के खिलते ही इससे सड़े मांस जैसी गंध आती है। इसके खिलने का यह अनोखा नजारा सिर्फ 24 से 48 घंटे तक रहता है। इंडोनेशिया का ये दुर्लभ पौधा 2 से 3 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है। ये फूल लोगों को संरक्षण के लिए जागरूक करता है। यूरोप में भीषण गर्मी पड़ रही है। बेल्जियम समेत कई देशों में पारा 30 डिग्री के पार चला गया है और यहाँ लोग छांव और एसी तक का सहारा लेने को मजबूर हैं। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और ग्रीस में वाइल्ड फायर ने हजारों हेक्टेयर जंगल जलाए हैं। पूरा यूरोप गर्मी से बचने की जद्दोजहद में जुटा है। लोग ज्यादा से ज्यादा खुद को डिहाइड्रेट कर रहे हैं। कई देशों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। पूरे यूरोप में क्लाइमेट चेंज का बड़ा असर नजर आ रहा है। प्रशासन ने लोगों से घरों में बने रहने की अपील की है। बुजुर्गों और बच्चों को बाहर ना निकलने की भी सलाह दी गई है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान से रवाना हो गए। ये प्रक्षेपण भारतीय समय के अनुसार रात 8:17 पर कजाकिस्तान स्थित बैकनूर कॉस्मोड्रोम से हुआ। इसके साथ ही 8 महीने लंबे मिशन की शुरुआत हुई है, जो अगले साल अप्रैल में पूरे चालक दल की धरती पर वापसी के साथ पूरा होगा। मेनन ने सोशल मीडिया पर कहा कि वो इस अहम मिशन के लिए पूरी तरह रेडी हैं। उन्होंने नासा, अपने परिवार और दोस्तों का उनके लगातार सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया। डॉक्टर अनिल मेनन भारतीय मूल के हैं और उनके पारिवारिक संबंध केरलम के पलक्कड़ जिले के वोट्टापालम से हैं।
9: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
7: और न्यूज वक्त में मेरे यानी नवजोत संधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
10: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
11: Jack, you're killing me.
10: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: दिल्ली एनसीआर में बदल गया मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज हवा के साथ हुई बारिश, गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, मंदिर के बाहर उमड़ा आस्था का मेला, भगवान दे रहे नवयौवन दर्शन। दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्सटाइल एक्सपो का शुभारंभ, 17 जुलाई तक चलेगा कार्यक्रम, देश विदेश से जुटेंगे उद्योगपति। जैसलमेर रेलवे स्टेशन का हुआ कायाकल्प, विरासत और आधुनिकता का दिखा अनोखा संगम, 140 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास। जयपुर बना दुनिया का छठा सबसे खुशहाल शहर, टाइम आउट 2026 की टॉप 10 लिस्ट में हुआ शामिल, पिंक सिटी के बाद मिला एक और टाइटल। फीफा वर्ल्ड कप के रंग में रंगा केरल का त्रिशूर, ब्राजील अर्जेंटीना की जर्सी वाली धोती बनी फुटबॉल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र, मैसी की जर्सी की खासी डिमांड।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात जगन्नाथपुरी की। भगवान जगन्नाथ की नगरी एक बार फिर से आस्था के उत्सव में मगन है। पुरी की सड़कों पर भगवान के आगमन का इंतजार हो रहा है। बस एक दिन का वक्त बचा है। 16 जुलाई गुरुवार से जगन्नाथ रथ यात्रा का श्री गणेश हो रहा है। इसी बीच उत्सव की तैयारियों की तमाम तस्वीरें जगन्नाथ मंदिर प्रांगण से लगातार आ रही हैं और हम आपको जीएनटी पर दिखा भी रहे हैं। आज श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ का नव यौवन श्रृंगार किया गया। 14 दिनों के बाद मंदिर के कपाट खुले और भगवान ने नवयौवन रूप में भक्तों को दर्शन भी दिए। परंपरा के अनुसार भगवान के स्वस्थ होने की सूचना देने मंदिर के सेवायत पुरी के राजा के पास पहुंचे। ये उसी की तस्वीरें हैं। हर साल रथ यात्रा से पहले जगन्नाथपुरी में ये परंपरा यूं ही निभाई जाती है। मंदिर के सेवायत राजा के पास संदेश लेकर जाते हैं कि भगवान अब स्वस्थ हो गए हैं, वो भक्तों को दर्शन दे सकते हैं। श्री मंदिर के कपाट खुल गए हैं और यात्रा की आज्ञा भगवान से ले ली गई है। दरअसल मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार आ जाता है और 15 दिन तक वो बीमार रहते हैं और इस दौरान किसी को दर्शन नहीं देते। इस दौरान श्री मंदिर में उनका विधिवत तरीके से उपचार चलता है। भगवान के उपचार की प्रक्रियाओं को अनुष्ठान भी कहते हैं। उपचार के बाद भगवान ठीक हो जाते हैं। 14 दिन के अनासर काल के बाद पहली बार भगवान स्वस्थ होकर श्रृंगार करते हैं। रथ यात्रा से एक दिन पहले होने वाले इस श्रृंगार को नव यौवन श्रृंगार कहते हैं। नव यौवन दर्शन को नेत्र उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इस खास रस्म के दौरान मंदिर के सेवक भगवान की आंखों में काजल लगाते हैं, चंदन सिंदूर का उनको तिलक करते हैं। नव यौवन श्रृंगार पूजा के साथ भगवान से रथ यात्रा के लिए आज्ञा ली जाती है। यही रस्म आज निभाई गई। इस पर सीधे जगन्नाथपुरी से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजय नाथ।
1: बस एक ही दिन की इंतजार है, भगवान जगन्नाथ यहां आएंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। जुलाई 16 तारीख को भव्य रथ यात्रा मनाया जाएगा, इसलिए पूरी में अब से भक्तों का भीड़ देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन आज ये नवयौवन दर्शन है और नेत्रोत्सव भी है। भगवान जो बुखार में थे, भगवान का तबियत ठीक नहीं था, अनासर में थे, भगवान का तबियत आज ठीक हो गया है। भगवान आज पहली बार आज भगवान आ रहे हैं और भगवान आज ठीक हो रहे हैं, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। आज भगवान कैसे भक्तों को कैसे पहली बार दर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, क्या नाम है आपका?
2: हमारा नाम छवि कोठारी है।
1: आज राजदरबार में क्यों गए थे?
2: राजदरबार से भगवान का प्रसाद लेके गया था। इसको बोला महाराज आप प्रसाद लीजिए, हमारा दरवाजा आज खोलेगा।
1: क्यों?
2: क्या भगवान दवाई खा के अच्छा हो गया, इसलिए भगवान का अच्छा हो गया।
1: संदेश लेके गए,
2: संदेश लेके गया था, भगवान अच्छा हो गया, अब भगवान दरवाजा खोलेगा, पट खोलेगा। ठीक, कोई बात नहीं, पट खोल दियो।
1: मतलब भगवान आज से ही पूरा दर्शन देगा?
2: दर्शन 2 घंटा दर्शन देगा।
1: फिर आज काल का क्या है?
2: काल का भगवान तो यात्रा करेगा, खिचड़ी खाएगा भगवान। काल जाएगा नहीं, परसों जाएगा। काल भगवान दिन भर भगवान भूखाएगा, दिन भर भूखाएगा।
1: तो भगवान बुखार में थे, भगवान का तबियत ठीक नहीं था, जो 15 दिन भगवान अनासर में थे, भगवान का तबियत अब ठीक हो गया है, ये संदेश लेके राजदरबार में पंडित लोग गए थे। राजदरबार में ये संदेश दिए कि भगवान का तबियत ठीक हो गया है और भगवान आज 2 घंटे के लिए दर्शन को भगवान भक्तों को दर्शन देंगे। और ये नवजौवन और नेत्रोत्सव, ये दर्शन देखने के लिए भक्तों का भीड़ आप देख सकते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको, ये जो भीड़ देख रहे हैं ये भगवान को देखने के लिए, भगवान का एक झलक पाने के लिए, जो भगवान 15 दिन अनासर में थे आज अपने रूप में आ रहे हैं और यही नवजौवन का जो दर्शन, ये दर्शन को देखने के लिए भक्तों का ये भीड़ आप देख के आपको पता चल रहा होगा कि लोगों का मन में भगवान को देखने के लिए, पूरी में ये जो भीड़ देख के ही पता चल रहा है कि भगवान को देखने के लिए इनका मन में कितना भाव है, कितना प्रेम है, कितना श्रद्धा है।
0: ऐसे ही अद्भुत तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे। भगवान जगन्नाथ का ये पावन धाम अपने आप में बहुत अनोखा है। श्री जगन्नाथ की मौजूदगी के चलते पुराणों में पुरी को धरती का वैकुंठ कहा गया है। ब्रह्म और स्कंद पुराण के मुताबिक यहां भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के चलते यहां भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। लेकिन फिर जगन्नाथ धाम की स्थापना कैसे हुई और पुरी में कैसे शुरू हुई रथ यात्रा की ये परंपरा, चलिए आज आपको सुनाते हैं वो कहानी जिसकी शुरुआत हुई थी सतयुग की एक रात में, जब उज्जैन के राजा इंद्रद्युम्न को एक सपना आया था।

0: हे राजा इंद्रदेव, समुद्र के तट पर मेरी प्रतीक्षा करो। मैं दारु ब्रह्म के रूप में प्रकट होऊंगा। मैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन के रूप में प्रकट होऊंगा।
1: ये कहानी है उनकी जिन्हें सारा संसार जगत का पालनहार बुलाता है। कहानी उनकी जिनके होने से संसार का ये भाग धरती का

0: और यहीं विराजते हैं सारे जगत के नाथ, भगवान जगन्नाथ। ये बात है सतयुग की। उन दिनों आज के उज्जैन को अवंतिका या अवंती कहा जाता था। तब अवंती पर सूर्यवंश के राजा इंद्रद्युम्न का शासन था। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार एक संत ने राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु के एक बेहद दिव्य रूप नील माधव स्वरूप के बारे में बताया। बताया जाता है कि भगवान नील माधव के दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ माने जाते थे। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न भगवान नील माधव का मंदिर खोजने में जुट गए। देश के चारों कोनों में उन्होंने लोग भेजे, लेकिन उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। कहानी आगे बताती है कि वर्षों की प्रतीक्षा और आराधना के बाद आखिरकार एक रात राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनसे कहा कि वे सागर तट पर दारु ब्रह्म के रूप में प्रकट होंगे। एक रोज समुद्र की उफनती लहरों के साथ एक विशाल दिव्य लकड़ी का तना बहकर तट पर आ लगा। उस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के पवित्र चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। राजा समझ गए यही दारु ब्रह्म है। बड़े सम्मान के साथ उस दिव्य तने को महल में लाया गया। इसके बाद देव शिल्पी विश्वकर्मा एक बढ़ई के रूप में राजा के पास पहुंचे और राजा ने उन्हें लकड़ियों से भगवान की मूर्तियां बनाने का काम सौंप दिया। लेकिन काम शुरू करने से पहले बढ़ई बने विश्वकर्मा जी ने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि जब तक मूर्तियां पूरी नहीं बन जाती, तब तक कोई भी मेरे कमरे में नहीं आएगा। राजा ने उनकी बात मान ली और महल के एक कमरे में मूर्तियां बनाने का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन बढ़ई ने जब बहुत दिनों तक कमरे का दरवाजा नहीं खोला, तो एक दिन रानी गुंडीचा ने कौतूहलवश कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की। ऐसा होते ही बढ़ई ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और कहा कि आपने मेरी शर्त तोड़ दी है। मूर्तियां अब तक अधूरी हैं, लेकिन अब मैं ये काम पूरा नहीं कर सकता।
1: रानी ने परेशान होकर महाराज ने राजा जी को बोले कि हम दरवाजा खोल देंगे। तो इसी समय राजा जी ने बोले नहीं, वो कंडीशन किए हैं और हम क्यों खोलेंगे। तो रानी ने बोले देखिए, अगर वो गुजर जाएंगे कि कुछ हो जाएगा तो हमको पाप लगेगा, नरक का पाप लगेगा, तो हमको मन नहीं करे, हम खोल देंगे। जब दरवाजा खोल दिए तो देखे तो जो कारीगर जो थे महापुरुष को मूर्ति बनाने वाले, वो नहीं थे, लेकिन तीनों भगवान थे। तीनों भगवान ऐसे रूप पे थे आज जो रूप में आप देख रहे हैं। हाथ पांव सब था, लेकिन हाथ पांव नहीं था।
0: विचित्र दुविधा थी। राजा और रानी के सामने भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन के विग्रह मौजूद थे, लेकिन वे पूर्ण नहीं थे। हाथ अधूरे, पैर अधूरे, स्वरूप अधूरा। राजा इंद्रद्युम्न हताश हो गए। कहानी में आगे वर्णन मिलता है कि तभी आकाशवाणी हुई कि यही भगवान का इच्छित स्वरूप है और उन्हें इसी रूप में स्थापित कर दिया जाए।
1: तो राजा रानी ने चकित हो गए और महापुरु के पास में शरण में आ गए कि महापुरु कितना बड़ा भूल हमने कर दिया, दरवाजा खोल दिया, अब तो विघ्न रूप है, अभी तो पूजा नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे। तो इसी समय स्वप्नादेश हुआ महापुरुष से जगन्नाथ जी की तरफ से कि नहीं नहीं, हम कलि युग में इसी रूप में पूजा पाएंगे। तो इसके बाद में महापुरुष जगन्नाथ वही इसी रूप में पूजा पा रहे हैं। हाथ पांव नहीं है, आँख के पलक नहीं है, लेकिन वो सबको काम कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं, सबका हाथ हला के सबका जो दुख है उसको ले रहे हैं, हरण कर रहे हैं, और कान नहीं है लेकिन सबका बात सुन के उनका भी सब कार्य सिद्ध कर रहे हैं।
0: फिर क्या था, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की अधूरी मूर्तियों की ही प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई और पूरे विधि विधान के साथ उन्हें श्री मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया। तभी से भगवान की ऐसी ही मूर्तियों की पूजा की जा रही है। लेकिन भगवान की इन मूर्तियों को 15 साल में एक बार बदलने की परंपरा भी है। लेकिन भगवान की मूर्ति बदलने की ये प्रक्रिया बेहद रहस्यात्मक ढंग से निभाई जाती है। बताया जाता है कि जब मंदिर में मूर्तियां बदली जाती हैं, शहर की बिजली काट दी जाती है। जिस पुजारी को मूर्तियां बदलने की जिम्मेदारी मिलती है, उसकी आँखों पर पट्टी बांधी जाती है। जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्यों में सबसे बड़ा

आश्चर्य वो ब्रह्म पदार्थ है जिसे पुरानी मूर्तियों में से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। मान्यता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को आज तक किसी ने नहीं देखा है। माना जाता है कि ये भगवान का हृदय है जो द्वापर युग से आज तक धड़क रहा है। मूर्ति बदलने वाले आज भी भगवान की धड़कनों को महसूस करते हैं। अनोखे हैं भगवान जगन्नाथ और उतनी ही अनूठी है उनके प्राकट्य की कहानी। भगवान जगन्नाथ की महिमा और उनके प्राकट्य का सबसे विस्तृत वर्णन स्कंद पुराण के उत्कल खंड में मिलता है। भगवान जगन्नाथ की यही कहानी आगे चलकर रथ यात्रा से भी जुड़ती है। कहानी आगे बताती है कि जब से रानी गुंडीचा ने भगवान की अधूरी मूर्तियों को देखा था, वे उनसे संतान की तरह स्नेह करने लगी थी। अब जब भगवान उनके महल को छोड़ श्री मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो रहे थे, उन्हें लग रहा था मानो उनका पुत्र ही उनसे दूर जा रहा हो। कहते हैं रानी गुंडीचा के इस वात्सल्य भाव और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि वे हर वर्ष आषाढ़ माह में अपने भाई और बहन के साथ उनसे मिलने जरूर आएंगे और 7 दिनों के लिए पुत्र की तरह उनके साथ रहेंगे। भगवान के इसी वचन को निभाने के लिए रथ यात्रा का संकल्प लिया गया।

0: पुरी में शुरुआत हुई उस परंपरा की, जिसे आज भी बेहद श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाया जाता है।
1: ये रथ यात्रा बहुत सालों से चल रहा है। ये स्वयं जगन्नाथ जी ने उनका निश्रुत जो बानी होता है वो गुंडीचा रानी को वो सत किए थे कि मैं 9 दिन ये यात्रा करूँगा। तो ये कीर्ति को रक्षा करने के लिए ये यात्रा हो रहा है 9 दिन का।
0: मान्यता है कि तभी से हर वर्ष भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ रथ पर सवार होकर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं और 7 दिनों तक वहीं विराजमान रहते हैं। चूंकि जगन्नाथ प्रभु की प्रतिमा का निर्माण गुंडीचा मंदिर में ही हुआ था, इसलिए इसे भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर और उनका प्राकट्य स्थल माना जाता है। पुरी के मुख्य समारोह मार्ग बड़ा डंडा के एक छोर पर श्री जगन्नाथ मंदिर है, तो उसी सड़क के दूसरे छोर पर लगभग 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर मौजूद है। ये मंदिर प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ पहुंचकर भगवान अपने भाई बहन के साथ विश्राम करते हैं और विशेष व्यंजनों का भोग लगाते हैं। इस दौरान भगवान मुख्य मंदिर के गर्भगृह से बाहर आकर बहुत करीब से सभी आम और खास भक्तों को दर्शन देते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर में भगवान को जो भी भोग लगाया जाता है उसे आड़प महाप्रसाद कहते हैं।
2: ये कलयुग का एक ही मात्र भगवान जगन्नाथ जी हैं जो रथ में एक बार साल में एक बार बाहर आते हैं और भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ के ऊपर में वो बाहर आते हैं। तीनों रथ में जगन्नाथ जी आते हैं, बलदाव जी और माता सुभद्रा देवी रथ पे आते हैं। तो जाते हैं गुंडीचा बाड़ी जनकपुरी करके, जहाँ पर महापुरु 9 दिन तक वहाँ उनका विशेष नीतिकांति है, वहाँ भी जैसा है, वहाँ भी एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर सब व्यवस्था वहीं पर होता है।
0: ऐसी मान्यता है कि गुंडीचा मंदिर में भगवान के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। रानी गुंडीचा और भगवान जगन्नाथ के बीच वात्सल्य और प्रेम के इसी भाव के चलते गुंडीचा मंदिर को मासी माँ का मंदिर भी कहा जाता है। कहते हैं भगवान को मासी माँ के मंदिर तक ले जाने वाली इस भव्य रथ यात्रा में शामिल होना बड़ी सौभाग्य की बात है। तभी तो हर साल भक्ति की इसी डोर से बंधे भक्त जगन्नाथपुरी की सड़कों पर भगवान के रथ के चारों ओर आस्था का उत्सव मनाते हैं। भक्ति का भाव और भक्तों का उल्लास पुरी रथ यात्रा की आत्मा है। पुराणों में रथ यात्रा के फल को 100 यज्ञों के बराबर बताया गया है। पुरी की पवित्र भूमि पर जब ये रथ यात्रा निकलती है तो भक्त और भगवान एकाकार नजर आते हैं। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अब देखिए, रथ यात्रा में सिर्फ एक दिन बचा है और इस यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण भगवान उनके भाई बहनों के साथ बनकर तैयार हैं रथ। चलिए आपको दिखाते हैं इस बार कैसे सजे हैं भगवान के ये रथ।
4: इस बार 2026 जुलाई 16 तारीख को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मनाया जाएगा और ये रथ यात्रा को भव्य और सुंदर करने के लिए पूरी प्रशासन और ये उड़ीसा और सरकार के तरफ से हर तरह की व्यवस्था किया गया है, हर तरह की बंदोबस्त किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो रथ है ये नंदीघोष रथ है और ये नंदीघोष रथ का जो आपको ये जो दिखा रहा हूँ ये जो कलर है रेड और येलो, ये कलर भगवान को बहुत पसंद है और इसलिए भगवान को ये कपड़ा वाला रथ में लिया जाता है। नंदीघोष रथ में आप अगर देखेंगे तो 16 चक्का और 4 घोड़े रहते हैं और आप देख सकते हैं नंदीघोष के साथ बलभद्र और देवी सुभद्रा के भी अलग अलग रथ रहता है और अलग अलग रथ में अलग अलग पहिया, अलग अलग चक्का और इसके साथ अलग अलग की घोड़े भी रहते हैं। अगर हम ये बात करेंगे तालध्वज रथ का बात करेंगे तो तालध्वज रथ में 14 चक्का और 4 घोड़े। दर्प दलन रथ का अगर बात करेंगे तो दर्प दलन रथ में इस हिसाब से 12 चक्का 4 घोड़े और नंदीघोष रथ में 16 चक्का 4 घोड़े रहते हैं।
3: एक तरफ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं तो दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन कड़े सुरक्षा इंतजाम कर रहा है। पूरे क्षेत्र की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। रथ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। इसी कड़ी में पुरी में पुलिस ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉक ड्रिल का भी यहाँ पर आयोजन किया।
4: पूरी प्रशासन के तरफ से पूरे शहर में हर तरह की जो व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ी और मजबूत करने के लिए व्यवस्था किया गया है और ओडिशा सरकार के तरफ से पूरे शहर में चप्पे चप्पे में पुलिस बल की तैनात किया गया है। इस रथयात्रा में 30 इवैक्यूएशन रूट बनाया गया है ताकि अगर आगे के ऐसे कुछ इमरजेंसी हो तो लोगों को निकलने के लिए 30 इवैक्यूएशन रूट बनाया गया है। इसके साथ 16 अलग अलग मोबाइल टावर्स जो मूवेबल मोबाइल टावर्स हैं टेम्प्रारी मोबाइल टावर्स इंस्टॉल किया जाएंगे। इसके साथ 13,000 से ज़्यादा जो आर्म फोर्सेस हैं उनको मुतयन किया जाएगा। 19 IPS ऑफिसर्स को अराउंड 19 ऑफिसर जो हैं 19 ऑफिसर को ये पूरी व्यवस्था देखने के लिए निगरानी करने के लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। इसके साथ 15 जो CFP कंपनियां हैं इनको भी इसमें शामिल किया जाएगा और इसके साथ 1700 से ज़्यादा बायो टॉयलेट्स ताकि लोगों को टॉयलेट्स के लिए कुछ ऐसे प्रॉब्लम ना हो इसलिए 1700 से ज़्यादा बायो टॉयलेट्स और 8 टेम्प्रारी जो मेडिकल हैं टेम्प्रारी मेडिकल भी इंस्टॉल किया जाएंगे और इसके साथ 476 से ज़्यादा AI CCTV कैमरा रहेंगे ताकि हर तरह की जो काम हो रहा है हर तरह की जो यहाँ रथ यात्रा में हर तरह की चीज़ें के ऊपर नज़र रखा जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर कुछ ऐसे चूक ना हो इसके लिए पूरी तैयारी किया जा रहा है और पूरी व्यवस्था किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भक्तों का ये भीड़ देख रहे हैं। एक दिन के बाद रथ यात्रा यानी 16 तारीख को रथ यात्रा है लेकिन आज से ही भक्तों का ये भीड़ आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि आगे ये जो भीड़ कितना बढ़ेगा और इस बार रथ यात्रा में कितने लोग शामिल होंगे क्योंकि हर साल लाखों भक्त यहाँ शामिल होते हैं और ये लाखों भक्तों के बीच भगवान सालों में एक बार आते हैं भक्तों को दर्शन देते हैं। जो भक्त भगवान को देखने के लिए मंदिर के अंदर नहीं जा पाते हैं सालों भर भगवान एक बार इस रथ यात्रा में आते हैं और दर्शन देते हैं उन भक्तों को जो भक्त अंदर नहीं जा पाते हैं।
3: और चलिए इसी से जुड़ी हुई दिव्य और भव्य रथ यात्रा की तस्वीरें GNT पर लगातार आपको दिखाते रहेंगे। आज की पेशकश में फिलहाल के लिए था ही अच्छी खबरें जारी हैं, देखते रहिए GNT।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: बद्रीनाथ धाम में आजकल श्रद्धालुओं की काफी चहल पहल देखी जा रही है। दरअसल मौसम यहां बेहद सुहाना बना हुआ है, बारिश रुक रुक कर होती है, इसीलिए रास्तों में भी रुकावट नाम मात्र ही नजर आती है। केवल बद्रीनाथ धाम ही नहीं, चमोली जिले में बसे हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में आस्थावान लगातार आ रहे हैं।
4: बद्रीनाथ धाम में अब तक 14,82,000 तो हेमकुंड साहिब में 1,92,000 श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं। वहीं मौसम की बात करें तो इस बार अभी तक पहाड़ों में मानसून उस तरह से सक्रिय नहीं हुआ है। हालांकि कभी कभार बारिश देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, हेमकुंड साहिब में देखने को मिल रहा है।
5: उत्तराखंड के ऊंचे क्षेत्रों में खासकर चमोली जिले में इन दिनों मौसम भले ही नरम गरम है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, मानसून की बेरुखी भी नजर आ रही है। बावजूद इसके चारधाम यात्रा में से एक भगवान बद्री विशाल का दरबार और पवित्र हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा आस्था से गुलजार है। बद्रीनाथ धाम में कल कल बह रही अलकनंदा का इन दिनों शोर सुनाई दे रहा है, लेकिन इस शोर से कहीं ज्यादा यहाँ उमड़ रही आस्था का ही नाद है, जिसे देशी विदेशी श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के रूप में देखा भी जा सकता है। बताया जा रहा है कि पिछले सालों की तुलना में इस साल मॉनसून बेहद कमजोर है, इसलिए पहाड़ों पर खासतौर से ऊंचाई वाले इलाकों में तो बारिश कम ही दर्ज की गई है, लेकिन चारधाम दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं की आवक में अभी तक कोई खास कमी नहीं आई है। इस वर्ष 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, श्रद्धालुओं ने काफी संख्या में वहां पहुंचकर दर्शन किए और तब से लेकर अब तक 14,82,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। वहीं 23 मई को खुले हेमकुंड साहिब के कपाट के बाद अब तक 1,92,000 से ज्यादा सिख श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। यानी मौसम अनुकूल है, यात्रा मार्ग भी सुचारू है, तो चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह भी लगातार बना हुआ है, खासकर बद्रीनाथ में, जहां भले ही बारिश कम हो रही है मगर मौसम बेहद मुफीद है। ऊपर से यात्रा मार्ग पर कम बारिश होने की वजह से आवाजाही भी सुचारू है। यही कारण भी है कि श्रद्धालु बिना किसी बड़े परेशानी के भगवान बद्री विशाल के साथ ही सिख श्रद्धालु भी पवित्र हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के दर्शन कर रहे हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: दुनिया की सबसे रोमांचक रेस में गिनी जाती है सैन फर्मिन फेस्टिवल की बुल रन, जहां परंपरा का मेल रोमांच के साथ होता है। स्पेन के पाम्पलोना शहर में बुल रन का ये सदियों पुराना रिवाज आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है।
5: स्पेन के पैम्पलोना शहर में मशहूर सैन फर्मिन फेस्टिवल का आखिरी बुल रन भी पूरे जोश और रोमांच के साथ पूरा हुआ। परंपरा, रफ्तार और हिम्मत का अनोखा संगम दिखाई दिया। सुबह सुबह पैम्पलोना की सड़कों पर उत्साह साफ नजर आता है। बुल रन शुरू होने से पहले प्रतिभागी सैन फर्मिन की प्रतिमा के सामने जुटते हैं, नारे लगाते हैं और सुरक्षित दौड़ की कामना करते हैं। फिर आती है वो घड़ी जो वहाँ मौजूद सभी लोगों की धड़कनें बढ़ा देती है। एक पटाखे की आवाज और गेट खुलते ही तेज रफ्तार से बुल बाहर निकलते हैं और उनके साथ शुरू होती है दुनिया की सबसे चर्चित और रोमांचक रेस। संकरी गलियों में बुल के आगे आगे दौड़ते प्रतिभागी, दोनों तरफ खड़े हजारों दर्शक और हर मोड़ पर रोमांच अपने चरम पर नजर आता है।
6: इस दौरान कुछ लोग फिसल कर गिर भी जाते हैं, लेकिन दौड़ लगातार आगे बढ़ती रहती है। कुछ ही मिनटों में बुल शहर की गलियों से होते हुए बुल रिंग के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। प्रतिभागी भी उनके साथ एरीना में दाखिल होते हैं और इसी के साथ इस साल आखिरी बुल रन सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है। सैन फर्मिन फेस्टिवल सिर्फ एक दौड़ भर नहीं बल्कि स्पेन की संस्कृति और परंपरा का बड़ा उत्सव है। हर साल दुनिया भर से हजारों लोग इस अनोखे आयोजन का हिस्सा बनने और इसे करीब से देखने पैम्पलोना पहुंचते हैं। यही वजह है कि बुल रन आज भी दुनिया के सबसे चर्चित पारंपरिक आयोजनों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search classical hits and start listening now.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: दिल्ली एनसीआर में बदल गया मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज हवा के साथ हुई बारिश, गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, मंदिर के बाहर उमड़ा आस्था का मेला, भगवान दे रहे नव यौवन दर्शन। दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्सटाइल एक्सपो का शुभारंभ, 17 जुलाई तक चलेगा कार्यक्रम, देश विदेश से जुटेंगे उद्योगपति। जैसलमेर रेलवे स्टेशन का हुआ कायाकल्प, विरासत और आधुनिकता का दिखा अनोखा संगम, 140 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास। जयपुर बना दुनिया का छठा सबसे खुशहाल शहर, टाइम आउट 2026 की टॉप 10 लिस्ट में हुआ शामिल, पिंक सिटी के बाद मिला एक और टाइटल। फीफा वर्ल्ड कप के रंग में रंगा केरल का त्रिशूर, ब्राजील अर्जेंटीना की जर्सी वाली धोती बनी फुटबॉल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र, मैसी की जर्सी की खासी डिमांड।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के
3: बात करते हैं। श्री राम की नगरी अयोध्या की रामलला के मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इस वर्ष भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हाल ही में चढ़ावा चोरी की घटनाओं के दावों के बीच भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने साफ किया है कि भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ है और ज्यादातर दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या 2025 से अधिक रही है। वहीं पुलिस कंट्रोल रूम के आंकड़ों में भी दावा किया गया है कि अयोध्या में श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बढ़ रही है। छुट्टियों और विशेष अवसरों पर दर्शनार्थियों की संख्या 1,00,000 के पार भी पहुंची है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के बाद से अयोध्या में रामलला के दर्शनार्थियों में कोई कमी नहीं आई है। राम मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की एक रिपोर्ट वायरल हो रही है। देश के तमाम राज्यों से रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में दर्शन पूजन का क्रम सामान्य रूप से जारी भी है। श्रद्धालुओं का कहना है कि किसी एक घटना को करोड़ों लोगों की आस्था से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। रामलला हमारे आराध्य हैं
5: और अयोध्या हमारी सनातन आस्था की प्रतीक है। रिपोर्ट के अनुसार 21 जून से 3 जुलाई के बीच 11,54,793 श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया है, जबकि इसी अवधि में पिछले साल 2025 में 9,12,540 लोगों ने मंदिर में दर्शन किए थे। राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें दर्शन व्यवस्था काफी सुव्यवस्थित और संतोषजनक लगी। दूर दराज से पहुंचे कई भक्तों ने ये भी बताया कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है, दर्शन की प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से संचालित हो रही है और प्रशासन की ओर से भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त इंतजाम भी हैं। श्रद्धालुओं ने इसके साथ ही कहा कि रामलला के दर्शन कर उन्हें आध्यात्मिक शांति और भावनात्मक संतोष की अनुभूति हुई।
8: राम जन्मभूमि का ये यात्री सुविधा केंद्र है और यहाँ पे जो आंकड़े दर्शा रहे हैं उसके साथ जो भीड़ है, जो भरमार है, वो लोगों को दिखा रहा है। सीधा सीधा 9 लाख से संख्या जब 11 लाख की होती है, 11.5 लाख तक वो पहुंचती है, ये इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है। और यहाँ पे लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि लोग कहाँ से आ रहे हैं, कब से दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे किस हिसाब से दर्शन चल रहे हैं। सीधा बात करने की लोगों को कोशिश करेंगे, यहाँ पे लोग बैठे भी हैं। आप लोग भैया कहाँ से हैं? दर्शन किया?
9: गया जी,
8: दर्शन कर लिया।
9: हाँ,
8: दर्शन बढ़िया से हो रहा है।
9: हाँ, बढ़िया से हो रहा है।
8: इसके पहले भी आए कि नहीं?
9: हाँ,
8: कितनी बार?
9: पिछले साल आए थे नहाने के लिए, वो हुआ था ना कुंभ मेला, उसी में।
8: उसमें काफी भीड़ थी?
9: बहुत भीड़।
8: आज भी भीड़ है?
9: आज भी भीड़ है, बहुत भीड़ है। लेकिन हम लोग सुबह में दर्शन किए थे पिछली बार, तो उतनी भीड़ नहीं थी, जल्दी जल्दी दर्शन हो गए।
8: अभी इस वक्त ज्यादा भीड़
9: है? हाँ, अभी इस वक्त ज्यादा भीड़, आज मंगलवार भी है।
8: देखिए, दर्शनार्थी भी खुद कह रहे हैं, इसके पहले भी हम आए थे, वो भीड़ वो संख्या नहीं थी, लेकिन आज की जो आंकड़े बता रहे हैं वो भीड़ वो संख्या है। और यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे श्रद्धालु है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आप
10: गया जी से?
8: गया जी से दर्शन किया?
10: हाँ जी, दर्शन किया।
8: भीड़ बढ़िया थी नहीं?
10: बहुत अच्छी भीड़ है।
8: पहले भी आप आए थे कि नहीं?
10: हाँ, आई थी, कुंभ मेला में आई थी।
8: कुंभ मेला में? हाँ, तो भी काफी भीड़ होगी?
10: बहुत ज्यादा, एक्सेस बहुत ज्यादा।
8: कैसे दर्शन हुए? अच्छे?
10: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, दिल खुश हो गया, मन बाग बाग।
8: मैनेजमेंट कोई दिक्कत
10: नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया।
8: रामलला के अच्छे दर्शन?
10: बहुत अच्छे, रामलला की जय हो।
8: देखिए, लोग हैं यहाँ पे, दर्शनार्थी है, तो काफी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और 2025 के जो आंकड़े हैं उससे जो अधिक आंकड़े दर्शाए जा रहे हैं 2026 के, वो मौजूदा हालात में है।
5: श्री राम मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इस साल भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। पुलिस कंट्रोल रूम के आंकड़े बताते हैं कि 21 जून 2026 को 94,419 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि इसी दिन 2025 में ये संख्या 81,303 थी। 28 जून 2026 को सबसे ज्यादा 1,02,672 श्रद्धालु मंदिर पहुंचे, जो इस अवधि का सबसे बड़ा आंकड़ा रहा। 26 जून को 97,603, 27 जून को 97,134 और 30 जून को 96,112 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हालांकि कुछ दिनों में 2025 की तुलना में दर्शनार्थियों की संख्या कम भी रही। 22 जून 2026 को 75,845 श्रद्धालु आए, जबकि 2025 में ये संख्या 88,756 थी। इसी तरह 29 जून 2026 को 84,102 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि साल 2025 में 84,443 श्रद्धालु पहुंचे थे। वहीं 3 जुलाई 2026 को 87,652 श्रद्धालुओं ने श्री रामलला के दर्शन किए, जबकि 2025 में यह आंकड़ा 83,863 था। पुलिस कंट्रोल रूम के आंकड़े बताते हैं कि श्री राम मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बढ़ रही है। वहीं छुट्टियों और विशेष अवसरों पर दर्शनार्थियों की संख्या 1 लाख के पार भी पहुंच रही है। ऐसे में प्रशासन भी इस बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, यातायात और दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम कर रहा है। अगर अयोध्या के उत्साह और भक्तों के जोश को समझना हो तो सरयू घाट आना बेहद जरूरी हो जाता है। यहाँ भारी संख्या में राम भक्त और दूर दूर से आए परिवार सरयू घाट पर राम की पैड़ी पर स्नान करते नजर आए।
11: हमारी मौजूदगी इस वक्त राम की पैड़ी पर है और सरयू का जो किनारा है वो भी आपको दिखा रहे हैं और राम की पैड़ी की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तमाम युवा परिवार भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। मौसम भी इस वक्त अच्छा है और सरयू का तट है, सरयू मैया का जो कलकल कर बहता जल है उससे आनंदित होते ये युवा आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभिनंदन भी इनका नगर निगम कर रहा है अयोध्या से, और इस तरीके से फिलहाल ये आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं और मौज करते भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो सामने वो राम की पैड़ी का दृश्य है जहाँ अयोध्या में कुछ महीनों बाद दीपोत्सव मनाया जाएगा और जिस तरह का दीपोत्सव हर साल मनता है, हर साल एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है जिससे अयोध्या का नाम केवल देश में ही नहीं बल्कि ग्लोबली होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या का नाम होता है। और ये तस्वीरें जो है ना, ये बताती हैं जरूर चंदा चोरी, तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, कार्रवाई भी चल रही है, SIT की जांच भी चल रही है, लेकिन इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें अयोध्या पसंद है, इन्हें यहाँ का वातावरण पसंद है, इन्हें सरयू मैया का की वो जो छांव है वो पसंद है, और कहीं ना कहीं ये अयोध्या को जीने वाले लोग हैं, दूर दूर से आते हैं। ऐसा नहीं है कि सब यहाँ के हैं, होंगे यहाँ के भी, साउथ से, मध्य प्रदेश से, आप माने राजस्थान से ये लोग आए हुए हैं। कितने विदेशी आपको दिख रहे हैं आज अयोध्या में।
5: स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या पहले की तरह बनी हुई है। होटल्स, धर्मशालाएं, बाजार और धार्मिक स्थल सामान्य रूप से चल रहे हैं और पूरे शहर में धार्मिक वातावरण बना हुआ है।
12: होटल में लाइक जैसा पहले अपना ये वाला सीजन वैसे भी ऑफ सीजन हुआ करता था और इस टाइम पे अमूमन जो है भीड़ कम ही रहती है अयोध्या में। मौसम का आप कह सकते हैं, ज्यादातर ये टाइम लोगों का हिल स्टेशन में जाने का होता है, तो ये वाला सीजन वैसे भी हम लोगों के लिए ऑफ सीजन का रहता है। तो बट हाँ, मेरे को नहीं लगता कि इस वजह से भीड़ में कुछ असर पड़ा होगा, क्योंकि हमारे अभी भी कुछ डेट्स ऐसे हैं जिसमें ऑक्यूपेंसी हमारा 80% से ऊपर है और कुछ डेट्स तो हमारा खैर जाएगा 50% से नीचे भी है, बट कई डेट है।
5: राम मंदिर में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या ये संकेत देती है कि अयोध्या देश के सबसे प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्रों में तेजी से अपनी पहचान मजबूत कर रही है। बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं जिससे स्थानीय धार्मिक पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव और मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
13: भारत ने 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट पर दावेदारी पेश की है। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
5: भारत ने आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य पद के लिए अपना कैंपेन शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में #IndiaForUNSCPeacePlanetProgress थीम के तहत इस कैंपेन की शुरुआत की। विदेश मंत्री ने साफ संदेश दिया कि भारत दुनिया के लिए ज्यादा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और न्याय संगत माहौल बनाने का काम करेगा। यूएनएससी के चुनाव जून 2027 में होने वाले हैं। एशिया प्रशांत समूह की एकमात्र सीट के लिए भारत और ताजिकिस्तान के बीच कड़ा मुकाबला है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से भारत के सबसे बड़े वैश्विक वस्त्र और परिधान कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने 4 दिनों तक चलने वाले इस मेगा इवेंट का शुभारंभ किया और बिहार पवेलियन का उद्घाटन किया। यह आयोजन वस्त्र, फैशन, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की वैश्विक ताकत को प्रदर्शित करता है। इस वैश्विक आयोजन में देश विदेश के खरीदार, उद्योगपति, डिजाइनर और नीति निर्माता एक मंच पर जुटे हैं। 17 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को वैश्विक टेक्सटाइल हब के रूप में स्थापित करना, निर्यात बढ़ाना और MSME और छोटे उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए टिहरी गढ़वाल की SSP ने सभी थानों में टीम गौरा शक्ति का गठन किया। प्रशिक्षित टीम स्कूल, कॉलेजों और संवेदनशील स्थानों पर नियमित गश्त करेगी, छात्राओं को आत्मरक्षा, साइबर सुरक्षा और महिला हेल्पलाइन की जानकारी देगी और साथ ही उनकी शिकायतों का तुरंत समाधान सुनिश्चित भी करेगी। जिन थानों में महिला सब इंस्पेक्टर तैनात हैं वहां वही टीम गौरा शक्ति का नेतृत्व करेंगी, जबकि दूसरे थानों में एडिशनल सब इंस्पेक्टर और महिला हेड कांस्टेबल टीम की कमान संभालेगी। टीम गौरा शक्ति का मुख्य उद्देश्य स्कूल्स, कॉलेजेस और दूसरे संवेदनशील स्थानों पर छात्राओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। इसके लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों की छुट्टी के समय नियमित पेट्रोलिंग की जाएगी ताकि छेड़छाड़, उत्पीड़न और दूसरी किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। हरिद्वार में सावन के महीने में कांवड़ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। DM खुद यहां तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। कांवड़ मार्गों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित संस्थाओं को 25 जुलाई तक सभी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस बार कांवड़ मेला और कुंभ मेले के कार्य समानांतर रूप से चल रहे हैं, तो कुंभ मेले के कार्यों में जुटी संस्थाओं के साथ कोऑर्डिनेशन से कांवड़ मेले में काम भी हो रहे हैं। यहां लगातार काम जारी है। इसके साथ ही कांवड़ मेले के शुरू होने से पहले ही कांवड़ यात्रियों के लिए मार्गों को खोल दिया जाएगा।
13: और अब बात करते हैं महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा की। देश भर में 16 तारीख को बड़ी धूमधाम से भगवान जगन्नाथ बलभद्र और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाएगी। परंपरा के मुताबिक 15 दिनों तक अस्वस्थ रहने के बाद आज पहली बार महाप्रभु जगन्नाथ ने भक्तों को नव यौवन दर्शन दिए हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है।

महाप्रभु जगन्नाथ के करोड़ों श्रद्धालु हर साल जिस पल का इंतजार करते हैं वो पावन घड़ी अब दस्तक देने वाली है। महाप्रभु जगन्नाथ की नगरी पूरी एक बार फिर आस्था और उल्लास के रंग में सराबोर होने वाली है। 16 जुलाई को वो शुभ घड़ी होगी जब महाप्रभु जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे।

0: जगन्नाथ रथ यात्रा के आरंभ से पहले ही देश और विदेश से श्रद्धालुओं ने पुरी पहुंचना शुरू कर दिया है। पुरी में मौजूद हर चेहरे पर उत्साह है, हर दिल में भक्ति का सैलाब है, क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा में अब सिर्फ एक दिन का समय बाकी है।
1: बस एक ही दिन की इंतजार है, भगवान जगन्नाथ यहां आएंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। जुलाई 16 तारीख को भव्य रथ यात्रा मनाया जाएगा, इसलिए पूरी में अब से भक्तों का भीड़ देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन आज ये नवजौवन दर्शन है और नेत्रोत्सव भी है। भगवान जो बुखार में थे, भगवान का तबियत ठीक नहीं था, अनासर में थे, भगवान का तबियत आज ठीक हो गया है। भगवान आज पहली बार आज भगवान आ रहे हैं और भगवान आज ठीक हो रहे हैं, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। आज भगवान कैसे भक्तों को कैसे पहली बार दर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, क्या नाम है आपका?
2: हमारा नाम छवि कोठारी है।
1: पंडित जी, क्या है मतलब भगवान बुखार में थे, भगवान को नहाने के बाद भगवान को बुखार हो गया था?
2: बेटा, जब भगवान जो नहाया था, बैल श्री देवी भगवान का चंदन लगा हुआ था, चंदन लग कर ठंडा हुआ था, ठंडे के बाद ठंडे के पानी दे देगा तो इंसान बुखार बन जाएगा। हम क्या वो जो कोई हो बुखार हो जाएगा, वो दवाई खाएगा अच्छा होगा, ठंडा हो जाएगा दवाई खाएगा, दवाई के बाद में जो भगवान अच्छा हो जाएगा तो चक्का विजय होगा। चक्का विजय होगा दशम में, जो शुक्रवार जो चक्का विजय हुआ है, भगवान तीन भगवान चक्का विजय हुआ, इनका बाद में भगवान को जो एकादशी आएगा, एकादशी खली लागी होता है। खली लाग मैंने जो भगवान का जो कपड़ा जो घेरता है, इनको नाम तो होता खली लाग होता है। इसके बाद में भगवान जो द्वादश गया है, त्रयोदश में जो घड़ा जो लगाया है, जो घड़ा लग के भगवान का जो पेड़ा है घुमाया, इसके बाद एक दिन बिता दिया।
0: पुरी की सड़कों पर श्रद्धालुओं का सैलाब बढ़ता जा रहा है। रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट पर भक्तों के पहुंचने का सिलसिला अनवरत जारी है। देश के अलग अलग राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी भक्त महाप्रभु के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब बस इंतजार है उस दिव्य क्षण का, जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के द्वार तक पहुंचेंगे।
1: पूरी में भक्तों का भीड़ अब देखने के लिए मिल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आप ये तीनों रथ देख सकते हैं। तीनों रथ अब पूरी तरह की जो तैयारी है, ये तैयारी एक तरफ खत्म होने वाला है और बच एक ही दिन का बाकी है। एक दिन बाद यानी जुलाई 16 तारीख को भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा मैया रथ यात्रा में शामिल होंगे, भक्तों को दर्शन देंगे, भक्तों से मिलने के लिए आएंगे। जो भक्त सालों भर भगवान का मंदिर के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, वो खुद भगवान सालों में एक बार जैसे आते हैं, इस बार भी जुलाई 16 तारीख को आएंगे और भक्तों को दर्शन देंगे।
0: ये वो दुर्लभ बेला है जब भक्त भगवान के पास नहीं जाते, बल्कि भगवान स्वयं अपने भक्तों से मिलने जाते हैं। और जब जगत के नाथ श्री जगन्नाथ अपने मंदिर से बाहर आते हैं तो दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। श्री गुंडीचा मंदिर से लेकर श्री मंदिर तक पूरे मार्ग को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। हर ओर भक्ति, श्रद्धा और उत्सव का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है।
3: कुछ भी बोल नहीं सकते, मन में इतना खुशी है कि हम लोगों को स्वामी ने बुलाया हुआ है यहाँ पे।
1: मतलब रथ यात्रा आप पहले कभी देखे थे?
3: नहीं, पहली बार है, लाइफ टाइम में पहली बार है हम लोग।
4: मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मैं पुण्य है इधर आने का, मैं कभी नहीं आ रही हूँ इधर, भगवान ही मुझे बुलाए।
1: खुशी लग रहा है?
4: बहुत खुशी, बहुत आनंद लग रहा है।
0: भगवान बलभद्र का रथ ताल ध्वज कहलाता है, जो लाल और हरे रंग से सुसज्जित होता है। दर्प दलन या देव दलन रथ पर विराजमान होती हैं, जिसका आवरण लाल और काले रंग का होता है। वहीं भगवान जगन्नाथ नंदी घोष या गरुण ध्वज रथ पर विराजते हैं, जो लाल और पीले रंग से अलंकृत होता है।
5: यात्रा मनाया जाता है क्योंकि जो लोग मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, वो लोगों का दर्शन करने के लिए, जो पतित जन होते हैं और सब लोगों को भगवान आलिंगन करने के लिए, दर्शन देने के लिए, उनको पावन बनाने के लिए, ये पावन यात्रा, पतित पावन यात्रा, इसको घोष यात्रा कहा जाता है। नंदी घोष रथ में भगवान जगन्नाथ जी बैठते हैं, ताल ध्वज में बलदाव जी बड़ा भैया बैठते हैं और देवी रथ व दर्पदलन रथ में सुभद्रा मैया बैठते हैं। बैठ के भक्त लोगों को, जो विधर्मी लोग है जो कि साल भर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, उन लोगों को पावन करने के लिए भगवान का ये यात्रा अनुष्ठित होता है।
0: पूरी रथ यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं। ऐसे में प्रशासन ने भी व्यापक तैयारियां की हैं, लिहाजा यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुरी में पूरे रथ मार्ग पर पुलिस और सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे और कंट्रोल रूम के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं, एम्बुलेंस, पेयजल और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके।
6: श्री बलभद्र महाप्रभु श्री जगन्नाथ एंड देवी सुभद्रा जी का जो रथ यात्रा है अभी, उसके लिए मल्टीलेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट पुलिस ने किया हुआ है, और उसके लिए हमने 220 प्लाटून ऑफ फोर्सेस, 19 आईपीएस ऑफिसर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एडिशनल एसपीस एंड थाउजेंड्स ऑफ एसआई एंड एएसआई डिप्लॉयमेंट है। इसमें हम जो 8 वर्टिकल्स में है, बेसिकली क्राउड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का जो बंदोबस्त किया हुआ है पुलिस में, तो इनसाइड टेम्पल अरेंजमेंट हुआ है, जिसमें कि सेक्टर वाइज हम डिवीजन किया हुआ है टेम्पल के, जैसे कि सिंह द्वार से बाहर घुमटी है, बाहर घुमटी से भीतर घुमटी होके जो हमारा मुक्ति मंडप होके बिमला देवी, माँ बिमला देवी है, माँ महालक्ष्मी का टेम्पल है, कीर्तन चकड़ा है, तो इस एरिया को हमने डिवाइड किया हुआ है सेक्टर वाइज। उसमें हमारा जो पुलिस ऑफिसर है जो, वो ड्यूटी में रहेंगे तैनात, बेसिकली क्राउड का ओवर मैनेजमेंट करेंगे, क्राउड कंट्रोल का, एंड डिवोटीज जो आएंगे उनका रिवर्स फ्लो को रोकेंगे, एंड उसमें जो बैरिकेडिंग क्रॉस नहीं करेंगे, वो सब चीज़ हमने उन्हें ब्रीफ करके रखा है। बेसिकली बिहेवियरल एस्पेक्ट में ब्रीफ किया है कि जैसे टेम्पल इनसाइड है, उनका बिहेवियर टुअर्ड्स डिवोटीज दैट शुड बी लाइक फैसिलिटेशन करना है, उनको अच्छे से दर्शन कराना है, उनको गुड बिहेवियर देना है।
0: श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रथ यात्रा से पहले लाइफगार्ड्स ने समंदर किनारे रेस्क्यू मॉक ड्रिल का आयोजन किया और अलग अलग तरीकों से अपनी तैयारियों को परखा। समंदर में फंसे व्यक्ति तक कैसे जल्दी से जल्दी पहुंचना है, उसे किनारे तक कैसे लाना है और फर्स्ट एड कैसे देना है, इन हालातों से निपटने के लिए अभ्यास किया गया। साथ ही आपसी तालमेल, बातचीत और इमरजेंसी रिस्पांस प्रोटोकॉल को भी परखा गया। ड्रिल के दौरान रेस्क्यू के सामान और इमरजेंसी गियर की भी जांच की गई। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सिर्फ पुरी वासियों के लिए ही एक बड़ा धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि देश और दुनिया में मौजूद तमाम जगन्नाथ भक्तों के लिए भी किसी बड़े उत्सव से ये कम नहीं है। अब इंतजार उस ऐतिहासिक क्षण का है, जब विशाल रथों की रस्सियां लाखों श्रद्धालु अपने हाथों से खींचेंगे और जय जगन्नाथ के गगनभेदी जय घोष के बीच महाप्रभु भक्तों के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे। श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास है कि इन विशाल रथों की पवित्र रस्सियों को छूने मात्र से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और वे अनगिनत पापों से धुलकर पुण्य कमाते हैं। पूरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: और न्यूज पथ पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर वायरल चौक पर ठहर कर उन वीडियोस को देख लेते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले हैं और कुछ इमोशनल करने वाले।
8: गाय को सनातन में माता कहा जाता है और ऐसे ही संस्कार बच्चों में बचपन से ही दिए जाते हैं। जो बता रही हैं ये वायरल तस्वीरें, खुद ही देख लीजिए। ये छोटी सी बच्ची पहले गाय को रोटी देती है, फिर प्रणाम करके आशीर्वाद लेती है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हैं और यूजर्स बच्ची को दिए जा रहे संस्कारों को सराह रहे हैं। सनातन परंपरा की झलक दिखाती है वायरल तस्वीरें, देखिए। एक मंदिर में ये श्रद्धालु गरुड़ पर्व के दौरान अपने नृत्य से अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। इस घूमने वाले नृत्य को देखकर हर कोई अब उसके संतुलन के साथ स्थिरता को देख मंत्रमुग्ध है। यूजर्स इसकी आस्था और भक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। एक पंडित जी के कौशल का ये वीडियो भी खूब चर्चा में है, जहां पंडित जी शायद किसी घर में चल रहे कार्यक्रम में पूजा पाठ कराने के बाद घर की दीवार पर स्वास्तिक लगा रहे हैं। उन्होंने एक थाली की मदद से घर की दीवार पर बड़े कौशल और कुशलता से वो स्वास्तिक लगा दिया। अब जो देख रहा है पंडित जी के कौशल को सलाम कर रहा है। लगातार मेहनत और अनुभव का कमाल क्या होता है, इन तस्वीरों को देखिए जरा। इन मजदूरों ने अपने काम को एक खेल की तरह लिया। वो अपना काम करते हुए कितने खुश हैं ये साफ नजर आ रहा है। इसीलिए वो अपने काम में इतने पारंगत हो चुके हैं कि उनका एक दूसरे को उछाल कर दिया जा रहा सामान से भरा बोरा एक बार भी मिस नहीं हो पा रहा। सोशल मीडिया पर लोग इन तस्वीरों को खूब देख रहे हैं और इनकी तुलना दिग्गज बल्लेबाजों के साथ करते हुए बोल रहे हैं कि दिग्गज खिलाड़ियों के बल्ले से भले ही बॉल मिस हो सकती है लेकिन इन्होंने एक भी बोरा मिस नहीं किया। ये वायरल तस्वीरें आपका दिल जीत लेंगी। वीडियो में देखिए एक माँ गोदी में बच्चा लिए बारिश से भीगती हुई एक जगह शरण लेती है जहाँ मौजूद एक महिला पुलिस वाली बच्चे के कपड़े बदलने में उसकी मदद करती है। पुलिस वाली माँ की गोदी में बच्चा रोते रोते न सिर्फ शांत होता है बल्कि ऐसी मुस्कान बिखेरता है कि हर देखने वाले के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जाहिर सी बात है आप भी स्माइल कर रहे होंगे।
7: फ्रांस की राजधानी पेरिस में धूमधाम से मनाया गया बासिल डे। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर जहां देश और दुनिया की कई और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
9: फ्रांस की राजधानी पेरिस में बासिल डे के मौके पर ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। मशहूर आईफिल टावर के ऊपर रंग बिरंगी आतिशबाजी से पूरा आसमान जगमगा उठा। इस बार जश्न को और खास बनाने के लिए सैकड़ों ड्रोन भी उड़ाए गए जिन्होंने आसमान में अलग अलग आकृतियां बनाई। सबसे खास पल तब आया जब ड्रोन ने आसमान में आईफिल टावर की ही तस्वीर बना डाली। इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए हजारों लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए और अपने मोबाइल में इसे कैद करते नजर आए। बासिल डे फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। ये दिन साल 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति की याद में मनाया जाता है। हर साल इस मौके पर पूरे देश में परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शानदार आतिशबाजी होती है। अमेरिका के लॉस एंजेलिस में एक साथ दो कॉर्प्स फ्लावर खिले हैं। यहाँ के बोटैनिकल गार्डन में इस दुर्लभ नजारे को देखने लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कॉर्प्स फ्लावर अपनी बदबू के लिए पहचाना जाता है। इस फूल के खिलते ही इससे सड़े मांस जैसी गंध आती है। इसके खिलने का यह अनोखा नजारा सिर्फ 24 से 48 घंटे तक रहता है। इंडोनेशिया का ये दुर्लभ पौधा 2 से 3 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है। ये फूल लोगों को संरक्षण के लिए जागरूक करता है। यूरोप में भीषण गर्मी पड़ रही है। बेल्जियम समेत कई देशों में पारा 30 डिग्री के पार चला गया है और यहाँ लोग छांव और एसी तक का सहारा लेने को मजबूर हैं। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और ग्रीस में वाइल्ड फायर ने हजारों हेक्टेयर जंगल जलाए हैं। पूरा यूरोप गर्मी से बचने की जद्दोजहद में जुटा है। लोग ज्यादा से ज्यादा खुद को डिहाइड्रेट कर रहे हैं। कई देशों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। पूरे यूरोप में क्लाइमेट चेंज का बड़ा असर नजर आ रहा है। प्रशासन ने लोगों से घरों में बने रहने की अपील की है। बुजुर्गों और बच्चों को बाहर न निकलने की भी सलाह दी गई है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान से रवाना हो गए। ये प्रक्षेपण भारतीय समय के अनुसार रात 8:17 पर कजाकिस्तान स्थित बैकनूर कॉस्मोड्रोम से हुआ। इसके साथ ही 8 महीने लंबे मिशन की शुरुआत हुई है जो अगले साल अप्रैल में पूरे चालक दल की धरती पर वापसी के साथ पूरा होगा। मेनन ने सोशल मीडिया पर कहा कि वो इस अहम मिशन के लिए पूरी तरह रेडी हैं। उन्होंने नासा, अपने परिवार और दोस्तों का उनके लगातार सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया। डॉक्टर अनिल मेनन भारतीय मूल के हैं और उनके पारिवारिक संबंध केरलम के पलक्कड़ जिले के वोट्टापालम से हैं।
10: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक।
7: और न्यूज पथ में मेरे यानी नवजोत संधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
11: जैक FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
12: Jack, you're killing me.
11: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर। जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।